0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
2: मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में लहरिया घटा की खास सजावट, नीले पीले रंगों से सजा मंदिर बना भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र, श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी को झुलाया झूला। रक्षाबंधन से पहले दिल्ली सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा, दिल्ली में लक्ष्मी योजना की पहली किस्त आज होगी जारी, पात्र महिलाओं को हर महीने दी जाएगी 2,500 की आर्थिक मदद। उत्तर प्रदेश में 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को फ्री बस यात्रा, रोजाना लगभग 88,000 महिलाओं को मिलेगा लाभ, सीएम योगी आज करेंगे लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का शुभारंभ। दिल्ली NCR में आज ही बादल छाए रहने की उम्मीद, मौसम विभाग के मुताबिक कई इलाकों में हो सकती है हल्की बारिश, लेकिन उमस रहेगी बरकरार। बीजिंग में चल रहे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट्स गेम का आज होगा समापन, कुल 51 इवेंट्स में दुनिया भर के रोबोट्स ले रहे हिस्सा, रोबोट्स को इंसान की मदद के लिए तैयार करना मकसद। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। और चलिए अब देख लेते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ।
3: जब हमारे गुरु हमें पहली बार मिले थे 9 साल की आयु में, सन्यासी बाबा, इसी पेड़ के पास दादाजी हमारे जिंदा थे जिन्होंने हमें साधना दी, सिद्धि दी। रात थी अंधेरी, रात के 12 या 1 बज रहे थे, हमारी मां ने गांव से हमें भेजा यहां कि तुम्हारे दादाजी बहुत जानते हैं, कुछ मांग लाओ। हम धन मांगने आए थे, झोपड़ी में बैठते थे, वो मंदिर के बगल में झोपड़ी थी हमारे गुरु की, लंबी जटा, आंखें लाल रहती थी, आंख चढ़ा के बात करते थे, बात बहुत कम करते थे, मुस्कुराते ज्यादा थे, चाय हर घंटे में पीते थे। जैसी आज बारिश हुई ऐसी बारिश थी, रात को बड़ी बारिश बरस रही थी, बादल चमक रहे थे, बिजली गिर रही थी और हम यहां पगडंडी के सहारे, अंधेरा था, कोई लाइट वाइट तो यहां थी नहीं, अंधेरा था, यही मंदिर पर आकर के गए। अपने गुरु को हमने बात बताई कि 3 दिन से खाना नहीं बना, अब तो आप सन्यासी हो गए, पहले तो आप ग्रस्त थे, तो आपके ही नाती हैं हम, तुम्हारे बेटा के बेटा है, हालत खराब है, एक ही कुर्ता है, गांव में भी अब लोग भिक्षा नहीं देते हैं, गांव में भी लोग जाएं तो कई लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं, पिताजी हमारे कुछ कर नहीं रहे हैं, हमारी भी अवस्था बढ़ रही है, मां भी बड़ी परेशान हो रही है, कुछ दया करो, हमारे जीवन में कुछ हो जाए ठीक ठाक, कुछ दो। अंधेरी रातें काटती हैं, एक छोटा सा कमरा

0: आप लोगों में से किसी ने जन्मभूमि पे हमारे जाकर के देखा होगा, एक छोटी सी जन्मभूमि जहां पांच लोगों का परिवार एक ही जगह रहता था। पांच लोग एक ही जगह रहते थे तो छोटा सा कमरा है। आप दया करो कुछ। उस रात हमें क्या पता कि हमारे जीवन में घटना होने वाली है। और ठीक रात 12 बजे हमारे गुरु ने कहा, अकेले हम और वो थे, उस दिन बड़े बिजी थे हमारे गुरु, बड़े व्यस्त थे। गांव के पास हेडपंप था, यहां नहाने की कोई सुविधा नहीं थी। बोले जाओ नहा करके आओ। और हम स्नान करके आए, हाथ में बाल्टी ली, एक फटी हुई तौलिया थी हमारे पास, उसको हमने पहना। ठंड लगने लगी तो जो धूना गुरु ने रमा रखा था उस धूना को हम तापने लगे। रात को 12-1 बजे के बाद जहां सन्यासी बाबा की समाधि है वहां पर हमारे गुरु हमें ले गए और 40 मिनट तक दादाजी कुछ पढ़ते रहे। पता नहीं, इतना याद नहीं हमें रात का, पर कुछ पढ़ रहे थे वो। बड़ी जोर से हवा चली और हमसे उन्होंने पहले ही कह दिया था कि तुम्हें डरना नहीं, हाथ जोड़ लो। हमने हाथ जोड़ लिए। बोले डरना ना, तो इधर उधर हम देखने लगे। बच्चे ही थे, कभी पीछे देखे कभी आगे देखे, अंधेरा था, यहां इतना कुछ बना भी नहीं था, एक झोपड़ी भर थी। डरने लगे तो देखा कि जो पेड़ लगा है अभी समाधि के पास पलाश का, छेवला का, वो पेड़ बड़ा हिल रहा है। हमें लगा बारिश का मौसम है, हवा चल रही है इसलिए हिल रहा होगा। पर उससे बड़ी जोर जोर की एक आवाज आई, और एक कोई 16-17 फीट का लंबी जटाओं वाला, एकदम चमकती हुई त्वचा और हाथ में एक बड़ा सा चमीटा लिए हुए और पैर में बड़ी ऊंची खड़ाऊ पहने उतर रहा है। अब बड़े नीले रंग की एक लाइट गिरी तो हम डर गए। हमने अपने गुरु को पकड़ा, रोने लगे। बच्चे थे तो रोना स्वाभाविक था, और इतनी लंबी हाइट का कोई देख ले, हम तो तुम रोने लगोगे। रोने लगे तो हमने जोर से पकड़ा, हमारे गुरु ने थपकी मारी, डरो मत बात करो। और गए हम। थोड़ी देर में सांस आई, ठीक लगा तो पूछा डरते डरते कि कौन हो तुम। उसी रात जो पहली आवाज निकली थी हमारे गुरु की, वो बड़ी अजीब आवाज थी, आज भी हमारे कानों में वो गूंजती रहती है। अब वो सीधी सी आवाज थी, बड़ी करुणा से भरी हुई, मानो कोई रोता हुआ गला भरा हुआ बोल रहा हो। और सीधी सी आवाज कि मैं तुम्हारा बड़े दिनों से इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर आंखें मिली, थोड़ा लगा कि हम पहचान गए, तो हमने कहा कि हम नहीं पहचाने। तब हमारे दादा ने बताया पीछे से कि ये तुम्हारे गुरु हैं पिछले जन्म के, और ये तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। और तुम्हारे जन्म होने के पहले हमारे सन्यासी बाबा ने हमारे दादा को कहा था कि रामकृपाल गर्ग के जो बड़ा बेटा होगा वो जन्म के ठीक बाद हमें दे देना। तो हमने कहा कि हमें तो पता नहीं, ये बात सही है कि हम रामकृपाल के बेटा, पर हमें कुछ याद नहीं आ रहा। थोड़ी देर बातें हुई, जब याद आई लगभग 40 से 42 मिनट तक उस दिन बात हुई। बड़े दिनों बाद मिले थे हम अपने गुरु से, पिछले जन्म के बाद ही मिले थे। और बातें होती रही और 40-42 मिनट बाद उनके जाने का समय आया तो वो जाने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे, वो हमारी आंखों में आंसू थे। डर तो मानो भाग गया था कोसों दूर। और जब जाने का समय आया तब हमने उनको कहा कि आप हमारे गुरु और हम आपके चेला, पिछले जन्म के भी गुरु, इस जन्म में भी आपने अब दीक्षा दे दी है तो कुछ ना कुछ तो देना चाहिए, बिना दिए जाए कैसे आप, और हम पे कुछ है ही नहीं। इस जन्म में जो जन्म हुआ वो हालत ही खराब है, पिता कुछ करते नहीं, मां की फटी साड़ी है, अंधेरा कमरा है, भोजन की भी व्यवस्था नहीं है। अब हम आपको दें तो दें क्या, पर आपने दीक्षा दी तो गुरु को कुछ ना कुछ तो देना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हम पे कपड़े भी नहीं है कि हम कपड़े भी उतार के आपको दे दें, वो भी फटे हैं। वो भी देने योग्य नहीं। शायद इस जिंदगी हम तुम्हें खड़ाऊ ही ना पहना पाए, ये हमारी औकात नहीं है। जाते जाते हमने अपने गुरु के चरण को पकड़ा और कहा आज से हम ही तुमको अपने आप को देना चाहते, और हमारे पास कुछ नहीं। इतना कहा कि हमारे गुरु का जो जवाब था वो जवाब आज भी काम कर रहा, जा काया तेरी माया मेरी, जा करता हुआ तू दिखाई पड़ेगा पर करूंगा मैं, जा आज से तेरे तन पर मेरा हक है, तेरे शरीर पर मेरा हक है, फिर क्या। उसके बाद फिर लौट के पीछे ना देखा, मेरे पागलो तुम्हें भी मांगने का मौका मिले कभी बालाजी से तो संपत्ति मत मांगना, बालाजी को ही मांग लेना। हमने तो सिर्फ गुरु को मांगा, उसका परिणाम ये है। अभी अंदर हम बता ही रहे थे कि लीला देखो तुम, बालाजी की करामात देखो, जहां जिस गांव में भीख मांग के खाते थे उसी गांव में आज भंडारा चल रहा है। जलवा देखो बालाजी का, जिस गांव में सरपंच नहीं बैठाते थे उस गांव में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दर्शन करने आ रहे हैं। जलवा देखो जरा बजरंगबली का, अपनी बहन के विवाह में 20,000 रुपया उधार न मिले, आज देखो तो 365 दिन में 365 बेटियों का विवाह हो रहा है। जलवा तो देखो हनुमान जी का, 1 रुपया की कॉम्बी फिल्म गोली लेते थे बुखार आता था, आधी खा लेते थे आधी मोड़ के रख लेते थे दोबारा में काम आई, क्योंकि ये पक्का था कि साल में एक आध बार बुखार आए और गोली काम आ जाती थी। और जलवा तो देखो हनुमान जी का, आज अस्पताल बन रहा है। जिस गांव में लोग आने से डरते थे, डकैतों का राज रहता था दरवाजे पर गांव के बाहर, उस गांव का जलवा तो देखो, बालाजी की कृपा तो देखो, पुलिस लगी हुई है। अब इससे बड़ा भला क्या चमत्कार हो सकता, इससे भला क्या लीलाएं हो सकती। हमारे गांव के बाहर ही हमें कोई नहीं पूछता था, आज विदेशों से इनविटेशन लेटर आते कि यू कम हियर। अभी हमें जापान बुलाया गया कि आप आओ, हमने भी कह दिया चिंग चौंग फैंग चौंग आई एम कमिंग। जलवा तो देखो भाई हनुमान जी के, क्या लीलाएं हो रही। जिस लंदन की संसद में हम हनुमान चालीसा पढ़ने गए, उनके कवि अंग्रेज भारत आकर के क्या क्या नाटक नहीं करते थे, और हमारे बराबर कितना उल्टा आदमी दुनिया का होगा कोई दूसरा, इतने खड़ूस आदमी हम, इतने उल्टे आदमी हम कि उन गोरों से ही हम कहते कि गोरो हे अंग्रेजो, कभी तुम हमारे देश में आकर जिन कपड़ों को पहनकर राज करते थे आज बैंड बाजा वाले वो कपड़े पहनते हैं, उनके मुंह पे कहते हैं हम, और गजब सुनो वो ताली बजाते हैं। ये और मजा, ये और मजा है। देखो तो तुम जलवा, हाँ जलवा तो देखो। अभी हम बाली गए, अंग्रेज आए हमारे शिविर में, हमने उनको कहा कि हम तुम्हें उल्लू बना रहे हैं, अब वो ताली ठोक रहे थे। हमका बताओ इनसे बड़ा कौन उल्लू होगा, और हमारे जैसा गुरु कौन होगा जो मुंह पे कहे कि हम तुम्हें उल्लू बना रहे। कोई कह के उल्लू बनाए ऐसा गुरु होगा, और वो कह रहे हैं कि हम बन रहे हैं। एक अंग्रेज तो बोला आई नो रिपीट रिपीट रिपीट, वो कह रहा है और उल्लू बनाओ। हमने कहा वाह भैया अजब गजब बात। ये जलवा तो देखो हनुमान जी का, पागलो हम सिर्फ इतना चाहते तुम्हारी आंखों में आंसू न रहे, तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, हमने तो भोग लिया तुमको ना भोगना पड़े। इस देश में अमीरों के तो लाखों गुरु हैं, हम चाहते हम उनके गुरु बने जिनका कोई ना हो। पागलो इस संसार में जिसने भी जन्म लिया वो दुख पाएगा। जन्म लेने का मतलब यह है कि दुख पाना है, और तुम्हें सुखी आदमी कोई कर नहीं सकता सिवा तुम्हारे। सुखी होना है तो तुम ही हो सकते, तुम्हें दूसरा कोई सुखी नहीं कर सकता। अब सुखी होने का कोई हमसे मंत्र पूछे, इतना सा छोटा मंत्र हमें आता है कि शायद आप उस पर चल पाओ तो सुखी हो जाओ, शायद आप उस मंत्र को पकड़ पाओ तो सुखी हो पाओ, शायद आपको वो मंत्र याद हो जाए तो आप सुखी हो पाओगे, शायद आपके चित्त में वो बात बैठ जाए तो सुखी हो पाओगे। और वो बात बहुत छोटी सी है, इतनी सी बात है कि अपनी जिंदगी के मालिक खुद मत बनो, अपनी जिंदगी के मालिक बालाजी को बना दिया जाए। बस इतनी सी बात, किसी कंपनी का मालिक तब टेंशन में होता है जब मालिकाना हक उसका होता है। नौकरों को चिंता नहीं होती, वेतन से लेना देना, फैक्ट्री कल बंद होती है आज हो जाए दूसरी देख लेंगे, पर टेंशन मालिक की होती। शेयर गिरने लगे तो चिंता मालिक को होती, प्रोडक्शन कम हो जाए तो चिंता मालिक को होती। वैसे ही जब तक तुम अपनी जिंदगी के मालिक रहोगे चिंता तुम्हारी रहेगी, और जिस दिन तुम अपनी जिंदगी के मालिक परमात्मा को बना दोगे तो चिंता परमात्मा की हो जाएगी। पर एक अजीब बात है, हम लोगों के जीवन में सुख अंदर है, शांति अंदर है और खोजी बाहर जा रही, जैसे कि मृग कस्तूरी को खोजता है वन में, रहती उसकी नाभि में पर वो खोजता वन में। वैसे ही हम लोगों का हाल है। अरब की एक बहुत प्रसिद्ध महिला हुई मुसलमानों के देश में, बड़ी ऊंची महिला हुई, बड़ी फकीर हुई, उसका नाम था राबिया। राबिया नाम की जो महिला हुई अरब में, वो बहुत पहुंची हुई थी, बड़े बड़े लोग उसके पास दर्शन करने जाते थे। तो एक रात शाम के समय एक घटना हुई कि वो अपनी गली में घर के बाहर कुछ खोज रही थी, तो गांव के लोग आए और पूछा कि बड़ी देर से आप गली में कुछ खोज रही हो, क्या हुआ? तो उसने कहा कि मेरी जो सुई थी वो सुई खो गई है और मैं सुई को खोज रही हूं। तो गांव वाले भी लग गए, क्योंकि गांव के लोग बड़ा प्रेम करते थे उससे, और बड़ी पहुंची हुई महिला थी, बड़ा नाम था उसका, तो गांव के लोग भी सुई खोजने लगे। पर यही कोई एक घंटे हुए पर सुई ना मिली, दो घंटे हुए सुई ना मिली, और वो चिल्ला रही कि खोजो, और गांव के लोग आ गए, एक एक कोना कोना छान मारा गली का, वहां भी खोजा जहां ना खोजना चाहिए, नाले में खोजा, किनारे पर खोजा, एक एक रेत के कंकड़ कंकड़ को उठाया गया, सुई ना मिली। तो गांव वालों ने पूछा, मां आपने सुई फेंकी कहां या गिरी कहां, ऐसा कोई अंदाजा है प्रॉपर, ताकि उसी एरिया भर में खोजा जाए ताकि मिल जाए? उसने कहा गिरी तो मकान में अंदर थी। तो गांव वाले सिर पकड़ के बैठ गए कि हमें तो लग रहा है तुम पागल हो गई हो। राबिया बोली, क्यों? बोली जब गिरी अंदर है तो खोज बाहर क्यों रहे हो, और तुम क्यों बाहर खोज रही जब अंदर गिरी? तो उसने कहा दरअसल उजाला अंदर नहीं था, बाहर था, इसलिए सोचा यहां खोज लू। गांव वाले बोले फिर तो और पागल हो, उजाला अंदर बाहर है तो अंदर की वस्तु बाहर मिलने का क्या मतलब है? उजाला बाहर है तो यहां सुई ना मिलेगी, क्योंकि वो अंदर गिरी, वहां उजाला करो, सुई खोजो, वही मिलेगी। राबिया बोली यही तो तुम्हें कहना चाहते।
1: क्या लाल रंग का मंगल से कोई विशेष संबंध है? क्या तांबा मंगल के प्रभाव पर असर डाल देता है? कौन सी है मंगल की चमत्कारी वस्तुएं और क्या है उनका प्रयोग? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
8: मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में लहरिया घटा की खास सजावट, नीले पीले रंगों से सजा मंदिर बना भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र, श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी को झुलाया झूला। रक्षाबंधन से पहले दिल्ली सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा, दिल्ली में लक्ष्मी योजना की पहली किस्त आज होगी जारी, पात्र महिलाओं को हर महीने दी जाएगी 2,500 की आर्थिक मदद। यूपी में 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को फ्री बस यात्रा, रोजाना लगभग 88,000 महिलाओं को मिलेगा लाभ, सीएम योगी आज करेंगे लोकमाता अहिल्याबाई मातृ शक्ति यात्रा योजना का शुभारंभ। दिल्ली एनसीआर में आज भी बादल छाए रहने की उम्मीद, मौसम विभाग के मुताबिक कई इलाकों में हो सकती हल्की बारिश, लेकिन उमस रहेगी बरकरार। बीजिंग में चल रहे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आज होगा समापन, कुल 51 इवेंट्स में दुनिया भर के रोबोट्स ले रहे हैं हिस्सा, रोबोट्स को इंसान की मदद के लिए तैयार करना इसका मकसद।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ।
8: मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में सावन की आखिरी और सबसे खास लहरिया घटा सजाई गई, नीले पीले रंगों से सजा मंदिर भक्तों के आकर्षण का केंद्र बना। लहरिया घटा में ठाकुर द्वारकाधीश अपने परिवार और सखाओं के साथ 9 विशेष झूलों पर विराजे, भक्तों ने श्रद्धा के साथ ठाकुर जी को झूला झुलाया। मंदिर परिसर में फवारे, गायों की सीनरी, बंदर के कटआउट्स और मोर की सजावट की गई। रंग बिरंगी सजावट ने पूरे मंदिर को बेहद सुंदर बना दिया। ठाकुर जी की लहरिया घटा के दर्शन के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह दिखा। शाम 7 से 8 बजे तक मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। सावन में मंदिर में अलग अलग रंगों और रूपों की गई घटाएं सजाई गई। लहरिया घटा के साथ अब सावन की घटाओं का भव्य समापन हो गया। केरल के पथानमथिट्टा में थिरुवोनाथोनी नाव के रवाना होते ही किनारे पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी। लोग इस खास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए वहां पहुंचे। थिरुवोनाथोनी के आगे बढ़ते ही नदी किनारे ओणम का रंग दिखाई दिया। श्रद्धालु पारंपरिक नाव का स्वागत करते नजर आए। अरनमुला मंदिर के आसपास ओणम की तैयारियां तेज हो गई हैं। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की चहल पहल बढ़ी है और पारंपरिक रस्मों की तैयारी चल रही है। यात्रा के दौरान केरल की पुरानी परंपरा और संस्कृति की झलक देखने को मिली। सजाई गई नाव, नदी का सफर और किनारे खड़े लोग इस नजारे को खास बनाते हैं। अरनमुला मंदिर में ओणम के खास भोज के लिए रसोई की तैयारियां जोरों पर। इस पारंपरिक भोज को लेकर मंदिर परिसर में खास उत्साह। केरल में शहर शहर ओणम की धूम। 10 दिनों तक मनाया जाता है फसल का त्योहार ओणम। ओणम पर पर्यटन विभाग ने राज्य में जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। 1 हफ्ते तक चलेंगे कार्यक्रम। राजधानी तिरुवनंतपुरम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मुख्य मेजबान। खेल और फूलों की रंगोली प्रतियोगिता के जरिए मनाया जा रहा है त्योहार। ओणम पर रामराज कॉट ने 3,000 धोतियों से एशिया का सबसे बड़ा पुक्कलम बनाया। ओणम समारोह के लिए बनाया नया रिकॉर्ड। कोची के मॉल में 3,000 धोतियों का इस्तेमाल करके 30 फीट व्यास वाला मुड्डू कलम बनाया गया। मिला एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का अवार्ड। इंदौर में रक्षाबंधन पर खजराना गणेश को अर्पित की जाएगी विशाल सनातन राखी। करीब 2.5 महीने से गजानन के लिए बनाई जा रही है राखी। राखी को आकर्षक स्वरूप देने के लिए कोलकाता, जयपुर, मुंबई, सूरत से मंगवाया गया है सलमा सितारे, नग, मोती और जरी। राखी में दिखेगी राष्ट्र गौरव और सनातन संस्कृति की झलक। यूपी के मेरठ में छात्राओं और शिक्षाओं ने पुलिस अधिकारियों को बांधी राखी। एसएसपी को राखी बांधकर मिठाई खिलाई और लंबी उम्र की कामना की। मेरठ के एसएसपी ने छात्राओं को दिया आशीर्वाद। उनकी सुरक्षा और सम्मान के लिए सदैव तत्पर रहने का भरोसा। राजस्थान के अलवर में तेजी से चल रहा राखी बनाने का काम। 35 से ज्यादा देशों में भेजी जाती है अलवर में बनी राखियां। अलवर में राखी के कारोबार से 10,000 से ज्यादा लोगों को मिल रहा है रोजगार। राखियों के 50,000 से ज्यादा डिजाइन किए जा रहे हैं तैयार। बाजार में सोने, चांदी, हीरे और ज्वेलरी राखियों की भारी मांग। ऐसी राखियों का डिजाइन होता है खास। त्योहार के बाद इन्हें ब्रेसलेट या ज्वेलरी की तरह भी पहना जा सकता है। जयपुर में राखियों के दिख रहे हैं नए और आकर्षक ट्रेंड। राजस्थान की 400 साल पुरानी थेवा कला का राखी के साथ अनोखा मेल। थेवा राखियों में सोने की पतली परत का होता है इस्तेमाल। बजट फ्रेंडली होने से बढ़ रही है मांग। सोने की परत को रंगीन कांच के साथ जोड़कर तैयार किया जाता है। पारंपरिकता और मॉडर्न डिजाइन का कॉम्बिनेशन लोगों को आ रहा है पसंद। गुजरात के राजकोट में रेसकोर्स ग्राउंड में लगेगा सौराष्ट्र का सबसे बड़ा मेला। जोरों शोरों से चल रही है जन्माष्टमी लोक मेले की तैयारियां। इस साल मेले का नाम विरासत से विकास लोक मेला रखा गया। उद्घाटन 2 सितंबर को नेवी बैंड के साथ होगा। मेले में देश के मशहूर कलाकार देंगे परफॉर्मेंस। समापन 6 सितंबर को होगा। मेले में 10 से 12 लाख लोगों के आने की उम्मीद। मुंबई में जोरों शोरों से चल रही है गणेश उत्सव की तैयारी। पंडाल में पधारे खेतवाड़ी का लंबोदर मंडल के गणपति। इस बार किसान के अवतार में है खेतवाड़ी का लंबोदर मंडल के गणपति। प्रतिमा की ऊंचाई है 32 फीट। जेंजी युवाओं को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। 25 लाख टैबलेट मुफ्त बांटने की तैयारी। पढ़ाई से रोजगार तक डिजिटल मदद करेगी यूपी सरकार। 2026 से 27 में योजना के लिए 2374 करोड़ से ज्यादा रुपए का बजट प्रावधान। यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला, बुजुर्ग माता पिता के सम्मान और अधिकारियों की रक्षा के लिए नियमों में संशोधन। संतान या अन्य आश्रित रिश्तेदार देखभाल ना करें तो उन्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं बुजुर्ग। बुजुर्गों की मदद के लिए यूपी सरकार जल्द जारी करेगी टोल फ्री नंबर। 60 साल से ऊपर की महिलाओं को यूपी सरकार का तोहफा, रोडवेज बसों में करेंगी मुफ्त यात्रा, करीब 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा इससे लाभ। यूपी सरकार की एक जिला एक प्रोडक्ट की नीति से बुलंदशहर की खुर्जा पॉटरी कारोबार को लगे पंख, बेहतर सुविधा मिलने से खुश है कारोबारी। ओडीओपी से कारीगरों को मिल रही है बेहतर ट्रेनिंग, मालिकों को सब्सिडी पर मिल रही है वित्तीय सहायता, विदेशों में भी भेजे जा रहे हैं पॉटरी इंडस्ट्री के बड़े सामान। दिल्ली की रहने वाली सोनल और उनके पति ने पेश की मिसाल, कचरे को रिसाइकिल करके बना रहे हैं उपयोगी सामान। प्लास्टिक कचरे से तैयार किए जा रहे हैं पार्क और स्कूल के लिए बेंच, डस्टबिन, प्लांटर, पोस्टर और कई तरह के कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं। दिल्ली में मिशन समृद्ध गांव का शुभारंभ, गांव को गरीबी मुक्त और रोजगार से समृद्ध बनाना लक्ष्य। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के सीएम भी पहुंचे। स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत निपुण 31 अगस्त को नौसेना के बेड़े में होगा शामिल, लगे हैं 75% से ज्यादा स्वदेशी उपकरण। प्याज की बढ़ती कीमतों को काबू में करने की कवायद, महाराष्ट्र के नासिक से ट्रेन के जरिए दिल्ली लाया जा रहा है 800 टन प्याज। कांदा एक्सप्रेस बुधवार को दिल्ली पहुंचेगी, दिल्ली के अलावा कांदा एक्सप्रेस प्याज लेकर चेन्नई, अरनाकुलम, मदुरई और गुवाहाटी भी जाएगी। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज हुई रिमझिम बारिश, मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए जारी किया रेड अलर्ट। दिल्ली से सटे नोएडा में भी पड़ी राहत की फुहार, बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत। त्योहारी सीजन से पहले दिल्ली सरकार ने दी गुड न्यूज, लोगों को उपलब्ध कराएगी सस्ता प्याज और चीनी। रेखा गुप्ता सरकार का ऐलान, निफेड से खरीदकर दिल्ली के लोगों तक पहुंचाएंगे सस्ता प्याज। चीनी की बड़ी कीमतों के बीच बड़ा ऐलान, 35 रुपए किलो की दर पर चीनी बेचेगी दिल्ली सरकार। सीएम रेखा गुप्ता ने खाद्य मंत्री और अधिकारियों के साथ की आपात बैठक, प्याज और चीनी की कालाबाजारी करने वालों पर होगी सख्ती। यूपी के सीएम योगी ने कहा, प्रदेश में चीनी की कमी नहीं, यूपी में हर महीने 4 लाख टन चीनी की खपत होती है, इसके मुकाबले 28 लाख टन का स्टॉक है। दिल्ली के लोगों के लिए गुड न्यूज, हर घर तक साफ और बिना रुकावट पानी पहुंचाने के लिए अपने वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से तैयार कर रही है सरकार। सीएमओ ने कहा, दिल्ली जल बोर्ड को एडीबी से 2500 करोड़ की फंडिंग मिल रही है, इसका इस्तेमाल पानी की सप्लाई बेहतर करने में किया जाएगा। इंदौर में किन्नर समाज की भव्य शिवमय शोभा यात्रा निकली, बैंड बाजे की धुन पर किन्नर समाज के लोग शिव भक्ति में झूमते नजर आए। नंदलालपुरा के प्राचीन मठ से निकली शोभा यात्रा, विंटेज कार और बग्गियां और राधा कृष्ण की मनमोहक प्रस्तुतियों ने शोभा यात्रा को बना दिया खास। महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी भी यात्रा में हुई शामिल, देश में सुख शांति और अच्छी बारिश की कामना की। मॉनसून के बीच चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, दोनों धामों में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का बना रिकॉर्ड। पिछले साल बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे कुल 16,60,224 श्रद्धालु, इस साल अब तक 16,61,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को सुगमता से हो रहे हैं भगवान के दर्शन, मानसून के बाद और पितृपक्ष के दौरान यात्रा में तेजी आने की उम्मीद। हेमकुंड साहिब में पिछले साल 2,74,441 श्रद्धालु पहुंचे थे, इस साल अब तक 2,75,787 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। हेमकुंड साहिब पहुंचने वाले श्रद्धालुओं ने इंतजामों पर जताई खुशी, इस साल 10 अक्टूबर तक हेमकुंड साहिब के कपाट खुले रहेंगे। दिल्ली से, दिल्ली में बढ़ते H1N1 के मामलों पर दिल्ली सरकार की पैनी नजर, स्कूलों को लेकर जारी किया अलर्ट। दिल्ली के स्कूलों के लिए जारी की गई गाइडलाइन, स्वाइन फ्लू और H1N1 की रोकथाम को लेकर जागरूकता बढ़ाने के निर्देश। छात्रों को नियमित रूप से साबुन से हाथ धोने के लिए किया जाएगा प्रोत्साहित, खांसी, गले में खराश, बुखार, सरदर्द और सांस लेने में दिक्कत H1N1 के संभावित लक्षण। देश की सरहद की रक्षा में जुटे अग्निवीरों के लिए अच्छी खबर, उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीर रोजगार सेल बनाने का फैसला किया। स्पेशल सेल अग्निवीरों को रोजगार दिलाने में बनेगा मददगार। सीएम धामी ने कहा, अग्निवीरों के लिए स्पेशल सेल बनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3,446 प्राविधिक सहायकों और 126 मंडी सचिवों के बांटे गए नियुक्ति पत्र। लखनऊ में आयोजित हुआ एक कार्यक्रम। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने युवाओं के साथ ली सेल्फी। नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं की मांग पर उनके बीच पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। योगी सरकार ने स्कूलों के लिए करोड़ों का फंड किया मंजूर। 3,000 से ज्यादा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के पुनर्निर्माण मरम्मत के लिए 604 करोड़ का बजट। राजस्थान के स्कूल में टीचर्स की कमी पूरी करने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। विद्या संबल योजना के तहत रखे जाएंगे 76,000 टीचर्स। मुंबई के क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के 5 रेस्टोरेंट के लाइसेंस सस्पेंड। हाइजीन मानकों में खामियां मिली। सैलानियों से गुलजार श्रीनगर की ऐतिहासिक डल झील। सुहाने मौसम के बीच पर्यटक ले रहे हैं शिकारा राइड का मजा। दिल्ली में बढ़ते स्वाइन फ्लू मामलों पर एक्शन में रेखा सरकार। सरकारी अस्पतालों में टेस्टिंग बेड, दवाइयां और मेडिकल सुविधाओं की उपलब्धता की समीक्षा की गई। ग्रैंड चेस टूर 2026 के फाइनल में पहुंचे भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा। सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। भारत के एन श्रीराम बालाजी और अनिरुद्ध चंद्रशेखर ने जीता कानकुन कंट्री ओपन का खिताब। फाइनल में मेक्सिको बेलारूस की जोड़ी को हराया। यूएस ओपन में वापसी करेंगे 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रोजर फेडरर। न्यूयॉर्क के आर्थर एश स्टेडियम में खेलेंगे एक एग्जीबिशन मैच। बीजिंग में ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने पहली बार रस्साकशी में दम दिखाया। दो दो रोबोट की टीमें आमने सामने थी और 3 राउंड तक चला मुकाबला। रोबोट्स को उनके वजन के हिसाब से 2 वर्गों में बांटा गया। हल्की और भारी रोबोट्स ने अपनी अपनी कैटेगरी में मुकाबला किया। रोबोट्स फुटबॉल और रेस जैसी इंसानी खेल भी खेल रहे हैं। इन खेलों का मकसद ये देखना है कि रोबोट्स असली इंसान की तरह कितना काम कर सकते हैं। रोबोट्स को फैक्ट्री, रेस्टोरेंट्स और ऑफिस जैसे माहौल में भी परखा गया। मुश्किल हालात और इमरजेंसी में काम करने की उनकी क्षमता भी जांची गई। वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में कुल 51 इवेंट रखे गए। आज होगा इवेंट का समापन। रोबोट ने लगाई 3.4 मीटर की जबरदस्त छलांग। बीजिंग की टीम के तियांगोंग अल्ट्रा रोबोट ने हाई जंप में बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 3.4 मीटर की ऊंचाई पार कर तियांगोंग अल्ट्रा ने अपना ही पुराना रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। रोबोट की छलांग ने सबको चौंका दिया। इस मुकाबले में रोबोट की ताकत और बैलेंस की हुई कड़ी परीक्षा। महीनों से चल रही है जोरदार प्रैक्टिस का मिला फल। बीजिंग में रोबोट का जबरदस्त जलवा। ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में गैलेक्सी AI ने फ्लोर एक्सरसाइज का जीता खिताब। रोबोट केंगो ने 3 मिनट में 10 खतरनाक मूव दिखाए। 360 डिग्री का बटरफ्लाई किक देकर जज भी रह गए हैरान।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: क्या लाल रंग का मंगल से कोई विशेष संबंध है? क्या तांबा मंगल के प्रभाव पर असर डाल देता है? कौन सी है मंगल की चमत्कारी वस्तुएं और क्या है उनका प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम एक चमत्कारी धातु की बात करेंगे जिसको कहते हैं कॉपर यानी तांबा। तांबे का प्रयोग करके आपको किस किस तरह के लाभ हो सकते हैं, ज्योतिष में तांबे को किस ग्रह के साथ जोड़ते हैं, आज इस पर विस्तार से बात करेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 26 अगस्त 2026 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल मिथुन राशि में और बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज तांबे की बात कर रहे हैं, कॉपर की बात कर रहे हैं। तांबा धातु का महत्व क्या है? देखिए, तांबा हमारे जीवन में प्रयोग होने वाली एक मुख्य धातु है। तांबे को औषधीय धातु यानी मेडिसिनल धातु माना जाता है। ये विद्युत का सुचालक है और तांबे के अंदर अग्नि तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ज्योतिष में तांबे का संबंध जोड़ा जाता है मंगल और सूर्य के साथ। मंगल और सूर्य की मुख्य धातु तांबे को मानते हैं। जब आप तांबे का प्रयोग करते हैं तो ये शरीर के पित्त को और वात को नियंत्रित करता है, आपके पित्त और वात को कंट्रोल करता है। तांबे के बर्तनों का, तांबे के वस्तुओं का पूजा में या पूजा जैसे कामों में बहुत प्रयोग होता है। आम तौर पर हिंदू परंपरा में जो पूजा के बर्तन, लोटा, चम्मच, थाली, ये सब प्रयोग होते हैं, आप ज़्यादातर देखेंगे तांबे के बने हुए होते हैं, क्योंकि तांबे को सामान्यतः पवित्र धातु माना जाता है। तांबे पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जब हम तांबे का प्रयोग करते हैं तो तांबे का असर हमारे शरीर और हमारे ग्रहों पर किस प्रकार पड़ता है, कैसे तांबा हमारे जीवन को और हमारे शरीर को प्रभावित करता है। जब आप तांबे का प्रयोग करते हैं, तांबे के पात्र से जल पीते हैं या तांबा धारण करते हैं तो तांबे के प्रयोग से शरीर शुद्ध होता है और तांबे के पात्र का पानी पीने से शरीर से सारा विष बाहर निकल जाता है। जब आप तांबे का प्रयोग करते हैं तो ये मंगल को मजबूत करता है। तांबे के प्रयोग से मंगल मजबूत होता है और आपका रक्त शुद्ध होता है, रक्त आपका ठीक होता है। तांबे का प्रयोग करने से सूर्य भी मजबूत होता है,
सूर्य भी प्रबल होता है, आपके आत्मविश्वास में, आपके उत्साह में वृद्धि होती है। जब आप तांबे का प्रयोग करते हैं तो ये आपके पाचन तंत्र को, ये आपके डाइजेशन को काफी अच्छा कर देता है, आपके पेट की दिक्कतों को दूर करता है। तांबे के पात्र का जल पीने से, तांबे का जीवन में प्रयोग करने से शरीर शुद्ध होता है, और तांबे का प्रयोग करने से पेट की समस्याओं से छुटकारा मिलता है, पेट की समस्याओं से राहत मिल जाती है। तांबे के प्रयोग पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो तांबा बड़ा चमत्कारी है हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पर तांबे का गहरा असर पड़ता है। और तांबे का प्रयोग कैसे करें कि तांबे के प्रयोग से लाभ हो, तांबे का प्रयोग कैसे करेंगे? तांबे का एक छल्ला किसी भी रविवार को या मंगलवार को अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में आपको धारण करना चाहिए। अगर आप तांबे का छल्ला अनामिका अंगुली में पहने तो इससे आपका सूर्य और आपका चंद्रमा दोनों मजबूत होगा। और तांबे का छल्ला अगर आप अनामिका अंगुली में पहने तो आपका आत्मविश्वास बेहतर होगा, आपकी साहस की स्थिति बेहतर होगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। तांबे का छल्ला या तांबे का एक सिक्का धागे में डाल करके कमर में भी पहन सकते हैं। और अगर कमर में तांबा धारण करेंगे तो इससे नाभि की समस्या में और हार्मोन्स की समस्या में सुधार होगा। जिन बच्चों को चोट बहुत लगती है या जिन लोगों को बार बार चोट लगती है, उनको छेद वाला तांबे का सिक्का लाल धागे में डालकर अपने गले में पहनना चाहिए। इसको पहनने से दुर्घटनाओं से बचाव होगा। आप रात भर एक तांबे के गिलास में या लोटे में पानी भरकर रख दें और सुबह उस जल को पिएं। तांबे के पात्र का पानी पीने से शरीर विषमुक्त होता है, शरीर की गंदगी दूर होती है और पेट संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। देखिए, तांबे के पात्र से पानी पीने से त्वचा की समस्या, पेट की समस्या, शरीर में जमे हुए विष की समस्या, ये तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं। लेकिन तांबे के पात्र से दूध या दूध वाली चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि तांबे के साथ दूध मिलकर जहर की तरह काम करता है। वो आपको स्किन की दिक्कत दे सकता है, पेट में गंभीर समस्याएं आपके हो सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। देखिए, अगर सूर्य की वजह से या मंगल की वजह से आपके आत्मविश्वास में, आपके कॉन्फिडेंस में, आपके साहस में कमजोरी है, तो या तो एक तांबे का छल्ला रविवार या मंगलवार को राइट हैंड की रिंग फिंगर में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में धारण करें, या तांबे का एक कड़ा बनवा लें और इसको गंगा जल से शुद्ध करके दाहिनी कलाई में अगर आप पहने तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अगर सूर्य की वजह से या मंगल की वजह से
त्वचा की समस्या हो रही है, स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, तो तांबे के पात्र का जल पीना आरंभ करें। उसका जल पीने से त्वचा की और पेट की समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए क्या है लकी टिप। अगर आपकी संतान के जीवन में कोई समस्या चल रही है, संतान के जीवन में कोई परेशानी आ गई है, तो माता या पिता में से कोई भी नियमित रूप से शिवलिंग पर पीला फूल अर्पित करना शुरू कर दें। नियमित रूप से शिवलिंग पर पीला फूल अर्पित करके अपनी संतान के लिए प्रार्थना करें, उनके जीवन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब जान लेते हैं दिनांक 26 अगस्त 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर दें और घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लें। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।

0: 2500 की आर्थिक मदद। उत्तर प्रदेश में 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को फ्री बस यात्रा, रोजाना लगभग 88,000 महिलाओं को मिलेगा लाभ। सीएम योगी आज करेंगे लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का शुभारंभ। दिल्ली एनसीआर में आज ही बादल छाए रहने की उम्मीद। मौसम विभाग के मुताबिक कई इलाकों में हो सकती है हल्की बारिश, लेकिन उमस रहेगी बरकरार। बीजिंग में चल रहे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट्स गेम का आज होगा समापन। कुल 51 इवेंट्स में दुनिया भर के रोबोट्स ले रहे हैं हिस्सा। रोबोट्स को इंसान की मदद के लिए तैयार करना मकसद।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर।
0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे में।
2: जी नमस्कार।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मंगल की 5 चमत्कारी वस्तुओं के बारे में कि इन वस्तुओं का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और इनका हमारे जीवन में हम किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
2: अगर आपको बार बार कर्ज लेना पड़ जाता हो, ऐसी स्थितियां बार बार आती हों कि आपको कर्ज लेना पड़ता हो, तो हर मंगलवार को निर्धनों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार हलवा पूरी बांटिएगा। अगर आप हर मंगलवार को ऐसा करें तो आपको कर्ज के जंजाल से छुटकारा मिलेगा।
0: और चलिए अब जानते हैं 26 अगस्त 2026 यानी कि बुधवार का पंचांग क्या है।
2: दिनांक 26 अगस्त 2026 दिन बुधवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, प्रातः काल 7:59 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय 12:00 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और आइए अब जान लेते हैं कि तांबे का मंगल से क्या संबंध है और इसका किस प्रकार से हमें प्रयोग करना चाहिए।
2: देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं मंगल की अलग अलग वस्तुओं के बारे में और उनके प्रयोग के बारे में। सबसे पहले जानते हैं तांबे के बारे में, तांबे का मंगल से क्या संबंध है। देखिए, तांबा यानी कॉपर ये मंगल की प्रमुख धातु है। ये धातु औषधीय यानी मेडिसिनल मानी जाती है और तमाम रोगों के निवारण में, तमाम रोगों को दूर करने में तांबे का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः लोग तांबे को बहुत पवित्र मानते हैं और इतना पवित्र मानते हैं कि तांबा धारण करने के बाद मांसाहार नहीं करते। मंगल के लिए दान करने में, मंगल का रत्न धारण करने में।

0: तांबे का ही प्रयोग किया जाता है। अगर आपको आत्मविश्वास की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, साहस नहीं लगता, तो तांबे का एक कड़ा मंगलवार को अपनी दाहिनी कलाई में पहनिएगा। और अगर रक्त संबंधी कोई समस्या है तो तांबे का एक छल्ला अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में आप धारण करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तांबे के साथ दूध का प्रयोग करना मना होता है, इसीलिए तांबे के पात्र से दूध का प्रयोग ना करें और तांबे के लोटे से शिव जी को दूध अर्पित ना करें। तांबे के साथ दूध मिलने पर वो पॉइजन हो जाता है, इसीलिए तांबे के पात्र से जल पीना बहुत फायदेमंद है, लेकिन तांबे के पात्र से दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
1: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का क्या कहता है राशिफल।
0: मेष राशि, धन लाभ के योग इस समय आपके लिए बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, काफी दौड़ भाग रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, काम की अधिकता रहेगी, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
1: और अब वक्त हो गया है लाल रंग का मंगल से क्या संबंध है इसके बारे में जानने का और इसका किस प्रकार से हमें प्रयोग करना चाहिए।
0: अब जानते हैं कि लाल रंग का, रेड कलर का मंगल से क्या संबंध है और लाल रंग का प्रयोग जीवन में कैसे करना चाहिए। देखिए, लाल रंग मंगल का प्रमुख रंग है। अलग अलग ग्रहों के अलग अलग रंग बताए गए हैं। लाल रंग मंगल का प्रमुख रंग है और मंगल को शक्तिशाली करने के लिए, मंगल की शक्ति को बढ़ाने के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में मंगल निगेटिव है, अगर आपकी कुंडली में मंगल नकारात्मक है, तो लाल रंग का प्रयोग करने से आपको भयंकर नुकसान हो सकता है। अगर आपको कोल्ड कफ की दिक्कत रहती हो, ठंडक की समस्या रहती हो, सर्दी जुखाम की दिक्कत रहती हो, तो लाल रंग का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। खास तौर से लाल रंग का एक रुमाल अपने साथ रखना चाहिए। अगर जोड़ों के दर्द की, ज्वाइंट पेन की दिक्कत है आपको, तो पैरों में और हाथों के जोड़ों पर लाल धागा आपको बांधना चाहिए। देखिए, लाल रंग बड़ी तेजी से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, लेकिन लाल रंग बड़ा तीव्र कलर है, बड़ा तेज रंग है। अगर आपको सूट नहीं करेगा तो लाल रंग का प्रयोग करने से बेवजह के विवाद होंगे, बेवजह के झगड़े और दुर्घटनाएं आपको परेशान कर सकती हैं। इसलिए लाल रंग का प्रयोग करने में सावधानी बरतना जरूरी है।
1: और अब जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का क्या कहता है राशिफल।
0: कर्क राशि, करियर में आपके लिए लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग हैं, नौकरी में तरक्की होगी। वाद विवाद से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का, तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी, आज का पहला प्रश्न अपराजिता जी ने हमें लिखा है और अपराजिता जी लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25 जुलाई 1992। जन्म का समय शाम के 7:35। जन्म स्थान है लखनऊ। अपराजिता जी कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। अपराजिता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय चल रहा है साल 2026 के अंत में या 2027 के शुरुआती समय में आपका विवाह होगा और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला के बेहतर दिखाई दे रहा है। कुंडली के हिसाब से आपका विवाह लखनऊ या लखनऊ के आसपास होने की संभावना ज्यादा है। एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से उसका जवाब, तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं और हमारा ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, जानेंगे पंडित जी से कि वो आज का दूसरा सवाल किसका लेने वाले हैं।
0: जी अगला प्रश्न किरण जी ने हमें लिखा है और किरण जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म की तारीख है 8 जनवरी 2014, जन्म का समय सुबह के 8:40, जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, बिल्कुल बात नहीं सुनता, जिद्दी ज्यादा हो गया है, जिस वजह से दिक्कतें हो रही हैं, क्या उपाय करें कि बेटे का जीवन बेहतर हो जाए। देखिए किरण जी, सबसे पहले आपको बता दें कि आप अपने बेटे को लेके बहुत परेशान मत होइए, क्योंकि आने वाला समय उनका ठीक है। मंगल की ऊर्जा ज्यादा होने की वजह से ये समस्या हो रही है, तो बच्चे को किसी स्पोर्ट्स में डाल दें, खेलने कूदने के लिए भेजें, साइकिल चलाने के लिए भेजें, थोड़ा शारीरिक परिश्रम करे तो मुझे लगता है लाभ होगा। इसके अलावा आप अपने बेटे को एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिए,

0: के गले में धारण करवाएं और आप अपने बच्चे के लिए रोज सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा पढ़ें तो काफी बेहतर होगा।
1: और चलिए जानते हैं कि मिट्टी और भूमि का मंगल से क्या संबंध है और इसका किस प्रकार से हमें प्रयोग करना चाहिए।
0: अब बात करते हैं मिट्टी की और भूमि की। मिट्टी और जमीन, इसका मंगल से क्या संबंध है? ज्योतिष शास्त्र में और सामान्यतः मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है, यानी पृथ्वी पुत्र माना जाता है। जमीन और जमीन से निकलने वाली सारी चीजें मंगल के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। जमीन पर और जमीन से निकलने वाली चीजों पर मंगल का अधिकार है। मिट्टी भी मंगल से ही संबंधित चीज है, मिट्टी का संबंध भी मंगल से होता है। अगर आप मिट्टी के पात्र से जल पिए, कुल्हड़ से अगर जल पिए, तो क्रोध की मात्रा में कमी आएगी। घर में मिट्टी के गमलों में अगर आप पौधे लगाएं तो घर में सुख शांति आएगी, मंगल की पॉजिटिविटी बढ़ेगी। आप जब भी घर बनाएं, हर जगह मार्बल लगवा लें कोई बात नहीं, लेकिन घर में थोड़ी सी जगह कच्ची छोड़ देनी चाहिए। थोड़ी सी जगह मिट्टी वाली अगर आप छोड़ दें तो घर में रहने वालों की बीमारियों से रक्षा होती है। जब मंगल गड़बड़ होता है तो जमीन पर सोने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जमीन पर सोने से मंगल के तत्व ज्यादा प्रबल होते हैं और मंगल की समस्याएं दूर हो जाती हैं।
1: और अब जानेंगे गुड़ के बारे में। जी हाँ, गुड़ का मंगल से क्या संबंध है और इसका किस प्रकार प्रयोग करें, चलिए जान लेते हैं पंडित जी से।
0: अब जानते हैं गुड़ के बारे में, गुड़ का मंगल से क्या संबंध है। देखिए, गुड़ जो खाद्य पदार्थ है, खाने की चीज है, इसको मंगल से संबंधित माना जाता है। गुड़ का नियमित सेवन करने से शक्ति मिलती है और रक्त आपका बढ़ता है। अगर शरीर में रक्त की कमी है, रक्त से संबंधित दिक्कत है, तो नियमित रूप से भुना हुआ चना और गुड़ आपको खाना चाहिए। अगर आपके जीवन में सर्जरी की, शल्य चिकित्सा की संभावना बन गई है या चोट चपेट की संभावना बन गई है, तो हर मंगलवार को गुड़ का दान करना चाहिए। अगर आप हर मंगलवार को गुड़ का दान करें और मंगल आपकी कुंडली में खराब हो, तो उसकी अशुभता से आपको जल्दी छुटकारा मिल जाएगा।
1: और अब जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के राशिफल के बारे में।
0: तुला राशि, स्वास्थ्य इस समय आपका बिगड़ सकता है, करियर में समस्या हो सकती है, धन के लेन देन में सावधानी रखें, हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और अब जानेंगे जौ का मंगल से क्या संबंध है और इसका किस प्रकार से हमें प्रयोग करना चाहिए।
0: अब बात करते हैं एक अनाज की जिसका नाम है जौ। जौ का मंगल से क्या संबंध है? देखिए, जौ जो है ये शुद्ध रूप से मंगल का अनाज माना जाता है। जौ को मंगल से जोड़ा जाता है। जब आप जौ का प्रयोग करते हैं, जौ को खाते हैं, तो ये आपके शरीर को शुद्ध करता है और विषमुक्त करता है। जौ का प्रयोग करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और रक्त शुद्ध होता है। अगर आपको मुकदमे परेशान कर रहे हो, कोर्ट कचहरी का मामला, कर्ज का मामला, मुकदमे का मामला परेशान करे, तो अपने घर के किसी कमरे के कोने में जौ को भारी चीज से दबा देना चाहिए और इसको 6-6 महीने पे बदलते रहना चाहिए। अगर आपके कर्ज बढ़ते चले जा रहे हों, तो मंगलवार को चुटकी भर जौ बहते हुए पानी में प्रवाहित करना चाहिए। अगर मंगल की वजह से आपके स्वास्थ्य में दिक्कत है, अगर मंगल की वजह से स्वास्थ्य की समस्या है, तो जौ की रोटी खानी चाहिए, मंगल की स्वास्थ्य की समस्या दूर हो जाएगी।
1: गुड लक में अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं जिन लोगों की राशि है मकर, कुंभ और मीन, उनका क्या कहता है राशिफल।
0: मकर राशि, रुके हुए काम इस समय आपके पूरे होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन का लाभ होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ।

0: समस्या हो सकती है, मन परेशान हो सकता है, रिश्तों का ध्यान बनाए रखें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में कुछ परिवर्तन होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, गणेश जी की उपासना करें तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब जान लेते हैं आज का तीसरा सवाल, पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है।
0: जी, अगला प्रश्न हेमंत जी ने हमें लिखा है, पंजाब से लिखते हैं। हेमंत जी की जन्म की तारीख है 20 नवंबर 1975। जन्म का समय शाम के 7 बजे। जन्म स्थान है अमृतसर, पंजाब। ये कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है और स्वास्थ्य में लगातार मेरे दिक्कतें बनी हुई हैं, तो मुझे क्या उपाय करना चाहिए जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। देखिए हेमंत जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको केवल अपने डाइजेशन का और अपने खान पान का ध्यान रखना है। पेट के अलावा, खान पान की समस्याओं के अलावा कोई विशेष समस्या आपके लिए नहीं है। केवल खान पान सुधारें, डाइजेशन का ध्यान रखें तो आपको लाभ होगा।

0: से छोटी उंगली में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से लाभ होगा और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आप जल्दी स्वस्थ होंगे।
1: गुड लक में अब वक्त हो गया आज के अंतिम प्रश्न का, तो चलिए जानेंगे पंडित जी से आज का अंतिम और चौथा प्रश्न वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी अंतिम प्रश्न राजीव जी ने हमें लिखा है और राजीव जी हमें बेंगलोर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 फरवरी 1979, रात में 10:50 और जन्म का स्थान है वाराणसी। राजीव जी कह रहे हैं कि मेरी नौकरी में दिक्कतें बहुत आ रही हैं, तो क्या मैं अपनी नौकरी बदल पाऊंगा और भविष्य में मेरा करियर कैसा रहेगा? राजीव जी, आपकी कुंडली के हिसाब से नौकरी बदलने का समय चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि इस साल के आखिरी में आप अपनी नौकरी बदल पाएंगे, इस साल के आखिरी में आपको लाभ होगा। स्थान परिवर्तन की संभावना भी थोड़ी बहुत आपके लिए बन रही है और आने वाले समय में करियर को लेकर के या पैसे को लेकर के कोई बड़ी दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और एक माणिक्य बनवा लें, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें, आपको लाभ होगा।
1: पंडित जी, एक सवाल था, आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं मंगल के बारे में, तो अगर हमारी कुंडली में हमारा मंगल अच्छा नहीं है, उसके प्रभाव अच्छे नहीं है, तो हमें किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए ताकि वो ठीक हो जाए?
0: जी देखिए, सामान्यता आप ये समझते हैं कि मंगल खराब है, मंगल नेगेटिव है, तो हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। ज्यादातर लोग ऐसा करते भी हैं कि अगर मंगल खराब है तो हनुमान जी की पूजा करते हैं और चाहते हैं कि उससे लाभ हो। देखिए, हनुमान जी मंगल से संबंध रखने वाले देवता नहीं हैं, ये आपकी श्रद्धा और आपकी भावना है जिससे आपका कल्याण हो जाता है। लेकिन वास्तव में अगर मंगल खराब है कुंडली में, अगर मंगल जीवन में अशुभ परिणाम दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में कुमार कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। जो शिव जी के पुत्र हैं कार्तिकेय भगवान, उनकी पूजा करने से मंगल की जो अधिक से अधिक अशुभता है, उस अशुभता को आप आसानी से दूर कर सकते हैं। उनके मंत्रों का जप कर सकते हैं, भगवान कार्तिकेय की स्तुति कर सकते हैं, भगवान कार्तिकेय का दर्शन और पूजन कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करें और मंगल आपका अशुभ है, मंगल आपका निगेटिव है, तो उसकी नकारात्मक स्थिति आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी।
1: जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 26 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, करियर में बड़े जोखिम लेने से, रिस्क लेने से बचिए, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी, विवाह के मामलों में अभी विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनि देव की अगर उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और इसी के साथ वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या शाम के समय कर्ज का लेन देन नहीं करना चाहिए। देखिए शाम का समय लक्ष्मी पूजा का और माता लक्ष्मी के आगमन का समय होता है, इस समय कर्ज का लेन देन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अन्यथा लंबे समय तक आपको कर्ज की समस्या परेशान कर सकती है।
1: और अब जानेंगे शुभ पहर के बारे में। जी हाँ, 26 अगस्त 2026 यानी कि बुधवार का शुभ पहर कौन सा है, आइए जानते हैं।
0: दिनांक 26 अगस्त 2026 दिन बुधवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करके प्रार्थना करें, नौकरी संबंधी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 26 अगस्त बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
1: गुडलक में वक्त हो गया आज की गुडलक राशि के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की विशेषता क्या है, क्या ध्यान रखना चाहिए। आज की गुडलक राशि है सिंह। इनको अपने क्रोध पर और सबके ऊपर शासन करने की आदत पर ध्यान देना चाहिए, और सिंह वाले अगर थोड़ा विनम्र रहें तो जीवन में काफी तरक्की कर सकते हैं।
1: गुडलक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर बार बार आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें खराब हो रही हों तो क्या करेंगे, सफेद रंग के कागज पर छोटे छोटे लाल रंग के स्वस्तिक बनाइएगा। इनको इलेक्ट्रॉनिक्स के सामानों पर सीधा चिपका दीजिएगा, सामानों का खराब होना काफी हद तक रुक जाएगा, काफी हद तक कम हो जाएगा।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
1: क्या तांबे के प्रयोग से स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है? क्या तांबे का प्रयोग करने से आत्मविश्वास में सुधार हो सकता है? क्या है तांबे के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड सोर घाटी पिथौरागढ़ के कुमौड़ गांव में। सोमवार को आस्था का अनोखा रंग देखने को मिला। ऐतिहासिक हिल यात्रा पर्व के मौके पर हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचे। ढोल नगाड़े और पारंपरिक रंगों के बीच हर किसी की नजरें यहां टिकी थी लखिया भूत पर। मान्यता है कि लखिया भूत भगवान वीरभद्र का अवतार है और उनका आशीर्वाद सौभाग्य लेकर आता है। जी हाँ, हिल यात्रा सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि सदियों पुरानी लोक परंपरा और संस्कृति की पहचान है। पर्व के दौरान आस्था, रोमांच और लोक संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है जिसने हर किसी को अपनी ओर खींच लिया। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं पिथौरागढ़ की इस अनोखी हिल यात्रा की खास तस्वीरें।

0: उत्तराखंड की आस्था, विश्वास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है हिल जात्रा उत्सव। अलग अलग तरह के मुखौटों से सजा सोर घाटी की ऐतिहासिक कुमौड़ हिल जात्रा का आयोजन आस्था, उत्साह और लोक संस्कृति के रंगों के बीच हुआ है। कुमौड़ के मैदान में जब लखिया भूत को उसके मंदिर से जंजीरों से बांधकर लाया गया तो हजारों लोग उस पल के गवाह बने। ये परंपरा ही हिल जात्रा की सबसे खास पहचान भी है।
1: सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और ये देखने को मिल रहा है कि लोग अभी भी अपनी संस्कृति और कल्चर से जुड़े हुए हैं। लोग अभी भी देखने आ रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं कि उनकी हिस्ट्री और उनका कल्चर क्या है, और वो सामने जाके लोगों को बता पा रहे हैं कि हमारा इतिहास है और इसमें हम जीते हैं, और ये ओरिजिनली नेपाल से ज्वाइन हुआ है और यहाँ पे दिख रहा है। तो लोग बहुत खुश हो रहे हैं ये देख के। इवन मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सालों से यहाँ पे हिल यात्रा देखने आ रही हूँ और मुझे हमेशा वैसा ही उत्साह देखने को मिलता है, और मैं लोगों को आगे जाके बता पाती हूँ कि मैं यहाँ से आती हूँ और ये मेरा कल्चर है।
2: पुरानी संस्कृति है, इतने सालों से चलती हुई आ रही है, और मतलब ये सोर की बहुत प्रसिद्ध हिल यात्रा है। हिल यात्रा का मतलब होता है हिल माने कीचड़ और यात्रा माने कीचड़ में खेले जाने वाला खेल। तो मतलब ये हमारा लखिया बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए बहुत भारी संख्या में यहाँ पे कुवाल लोग आए हैं।
0: काला परिधान, गले में रुद्राक्ष, कमर में रस्सी और हाथ में काला चंवर लिए लखिया भूत का जब मैदान में प्रवेश होता है तो भक्त उसके आगे श्रद्धा से सिर झुकाते हैं और पुष्प वर्षा कर आशीर्वाद लेते हैं। स्थानीय मान्यता में लखिया भूत को भगवान शिव का गण और कुमौड़ का ग्राम देवता माना जाता है। इस लोक पर्व की जड़ें नेपाल की प्रसिद्ध इंद्र यात्रा से जुड़ी हुई मानी जाती हैं।
3: देखिए, आस्था, संस्कृति, लोक संस्कृति और वीरता की जो गाथा हिल यात्रा है वो लगभग 500 सालों से पहले चली आ रही है, और हमारे पूर्वजों ने हमको ये सजो के दी है, और हमारी जिम्मेदारी हमको दी है कि हम आने वाली पीढ़ी को, जो जेंजी है, जो अल्फा है, उनको बताएं कि हमारी संस्कृति क्या है, परंपरा क्या है। और ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ, लखिया बाबा का जो एक रौद्र रूप है, जो वीरभद्र का रूप यहाँ पे है, वो तमाम क्षेत्र में जो दर्शक हैं, जो लोग हमारे गाँव घर के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएँ हैं, युवा हैं, हमारी दीदियाँ बहनें हैं, हमारे रिश्तेदार नातेदार हैं, वो इस पर्व के लिए आते हैं और लखिया बाबा का आशीर्वाद यहाँ पे ग्रहण करते हैं। ये एक वीरता की गाथा है।
0: माना जाता है कि हिल यात्रा की परंपरा 500 सालों से चली आ रही है और हर साल इसका आयोजन धूमधाम से होता है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया जाता है।
4: इसका 500 साल पुराना इतिहास है। ये हमारे पूर्वजों के द्वारा नेपाल में एक इंद्र यात्रा नाम से उत्सव चलता था। वहाँ पे जब तीर्थाटन के लिए गए थे तो वहाँ पे राजा की शर्तानुसार एक भैंसे की बलि दी गई थी, और इस भैंसे की बलि के बाद प्रसन्न होकर नेपाल के नरेश के द्वारा हमें ये जो मुखौटे हैं, इन मुखौटों को उपहार स्वरूप हमें यहाँ पे दिया गया था, और लगातार 500 सालों से इस हिल यात्रा का यहाँ पे अनवरत यहाँ पे आयोजन किया जाता है, और भारी मात्रा में श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर भगवान लखिया के दर्शन करने के लिए आते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं।
0: हिल यात्रा की दूसरी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें पहाड़ का पारंपरिक जीवन किसी मंच या पर्दे पर नहीं बल्कि खुले मैदान में जीवंत किया जाता है। अलग अलग मुखौटे और पारंपरिक वेशभूषा में कलाकार खेती, पशुपालन और ग्रामीण जीवन के रंगों को प्रस्तुत करते हैं। कहीं बैलों के जरिए खेत में होने वाले काम दिखाए जाते हैं तो कहीं धान की रोपाई और ग्रामीण महिलाओं के कामकाज का चित्रण होता है। हिरण, चीतल जैसे पात्र पहाड़ के जंगल और प्रकृति से इंसान के पुराने रिश्ते को सामने लाते हैं। यही नहीं, गलिया बैल, छोटी हौल, नेपाली हौल, बड़ी हौल, हिरण और चीतल जैसे पात्र आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहते हैं। ढोल, नगाड़े, हुड़के और मंजीरी की धुन इन प्रस्तुतियों में जान डाल देती है। हल खेती का प्रमुख औजार है और यात्रा का संबंध उत्सव से है। समय के साथ इसका प्रचलित नाम हिल यात्रा हो गया। नाम से लेकर आयोजन तक इस लोक पर्व में पहाड़ की कृषि संस्कृति की छाप दिखाई देती है। पिथौरागढ़ से राकेश पंत, गुड न्यूज़ टुडे।
5: विदेश की धरती पर जब भारतीय मंदिर आकार लेते हैं तो ये सिर्फ इमारतें नहीं होती, इनके साथ भारत की आस्था, संस्कृति और संस्कार भी वहां पहुंचते हैं। पेरिस के पास बना बाप्स स्वामी नारायण मंदिर भी ऐसी ही एक खूबसूरत पहचान है। सितंबर में बाप्स के इस मंदिर का भव्य उत्सव के दौरान उद्घाटन कार्यक्रम है। जी हाँ, स्वामी नारायण मंदिर की खूबसूरती जितनी खास है उतनी ही खास है इनकी कहानी। विदेश में बना ये मंदिर भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की झलक दिखाता है। यहाँ आने वालों को पूजा के साथ साथ भारत की कला, वास्तुकला और संस्कारों का भी एहसास होता है। यानी सात समंदर पार भी भारत की मिट्टी की खुशबू और संस्कृति की रोशनी कायम है। आइए देखते हैं।
6: भारतीय मठ मंदिर देश की संस्कृति, परंपराओं का विस्तार और भारतीय विरासत के वैश्विक प्रसार की ही अनमोल संपदा हैं। विदेशों में बने भारतीय मंदिर न केवल आस्था का केंद्र हैं, बल्कि वो भारतीय कला, वास्तुकला, संस्कार और तीज त्योहारों को भी दुनिया भर में पहुंचाने का काम बखूबी निभाते आ रहे हैं। ऐसी ही एक धार्मिक और सांस्कृतिक संपदा फ्रांस में पेरिस से करीब 30 किलोमीटर दूर बुसी सेंट जॉर्जेस में खड़ी की गई है, जो बाप्स स्वामी नारायण हिंदू मंदिर के रूप में भारतीय संस्कृति के विस्तार का एक और अध्याय लिखने के लिए तैयार है। बाप्स यानी बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, जिसके द्वारा बनाया गया ये मंदिर फ्रांस का पहला बड़ा हिंदू मंदिर बताया जा रहा है। इसका उद्घाटन अगले महीने यानी सितंबर में होगा। 2 से लेकर 14 सितंबर तक 13 दिन का यहाँ फेस्टिवल ऑफ कल्चर आयोजित होगा। इस दौरान हिंदू परंपरा, भारतीय कला, संगीत और संस्कृति से जुड़े कई कार्यक्रम होंगे। 2 से लेकर 13 सितंबर तक खास तौर से यहाँ वैदिक महायज्ञ आयोजित होगा। उद्घाटन और उत्सव कार्यक्रम में भारतीय मूल के लोगों के साथ हिंदू समुदाय और भारतीय संस्कृति में रुचि रखने वाले लोगों के शामिल होने की काफी उम्मीद है। समझाया जा रहा है कि इस दौरान आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति को करीब से जानने और साथ ही पेरिस की धरती पर हिंदू मंदिर बनने की कहानी को भी समझने का मौका मिलेगा। तो आपको बता दें कि फ्रांस में हिंदू मंदिर बनाने का विचार साल 1970 में आया था। इसके करीब 25 साल बाद 1995 में पेरिस में मंदिर बनाने की योजना पर काम आगे बढ़ा। साल 2017 में बुसी सेंट जॉर्जेस में मंदिर के लिए जमीन मिली, जिसके बाद साल 2021 में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया और आखिरकार करीब 56 साल बाद अब 2026 में मंदिर बनकर तैयार है। पेरिस के पास बना ये स्वामी नारायण मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं होगा, बल्कि यहाँ समय समय पर सांस्कृतिक और सामुदायिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। 50 के दशक से ऊपर का समय लगाते हुए इस मंदिर को बनाने में काफी मेहनत और मेधा का इस्तेमाल हुआ है। इस मंदिर को बनाने में भारत से लाए गए खास पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, जिन्हें भारत में करीब 1000 साल पुरानी नक्काशी की तकनीकों से तैयार किया गया। कई हिस्सों पर तो कारीगरों ने हाथ से बारीक नक्काशी की है। मंदिर निर्माण के काम में भारतीय कारीगरों के साथ फ्रांस के विशेषज्ञ भी शामिल रहे, जिनमें नोट्रे डैम कैथेड्रल की मरम्मत से जुड़े कारीगर भी थे। इस मंदिर में भारतीय शिल्पकला और फ्रांस की आधुनिक निर्माण तकनीक का मेल भी देखने को मिलता है। वहीं मंदिर की संरचना में गुंबद, स्तंभ और शिखर जैसी पारंपरिक हिंदू वास्तुकला भी शामिल है। बता दें कि बाप्स के बनाए गए सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में दिल्ली का स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर भी शामिल है। इसके अलावा गुजरात के गांधीनगर में भी अक्षरधाम परिसर है। दिल्ली का अक्षरधाम पारंपरिक भारतीय शैली में बनाया गया है, जिसे बनाने में हजारों कारीगरों और स्वयंसेवकों ने काम किया था। बाप्स के अनुसार दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर को पारंपरिक वास्तु और शिल्प परंपराओं के अनुसार तैयार किया गया। बेशक एक वैश्विक हिंदू संस्था के रूप में बाप्स न सिर्फ धार्मिक गतिविधियों का संचालन कर रहा है, बल्कि शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक सेवा भी करता रहा है। इस तरह से भारत के अलावा विदेशी धरती पर भी ये संस्था हिंदू धर्म के मूल्यों और संस्कारों को सींच रही है। बाप्स के मंदिर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोप के कई देशों में हैं, जहां पूजा और धार्मिक कार्यक्रमों के साथ भारतीय संस्कृति, भाषा, संगीत, कला और बच्चों से जुड़े कार्यक्रम होते रहे हैं। बाप्स की ऑफिशियल वेबसाइट कहती है कि गुजरात के बोचासन में स्वामी नारायण परंपरा को मानने वाले शास्त्री जी महाराज ने ही साल 1907 में इस संस्था को बनाया। मौजूदा वक्त में संस्था के प्रमुख महंत स्वामी महाराज हैं। बाप्स के दुनिया भर में 1300 से ज्यादा मंदिर हैं और इसका नेटवर्क 50 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है और पेरिस के पास बना बाप्स स्वामी नारायण मंदिर भी इसी वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा है। निश्चित तौर पर पेरिस जैसे वैश्विक सांस्कृतिक केंद्र में भारतीय पारंपरिक वास्तुकला और हिंदू आध्यात्मिक परंपरा का ये नया केंद्र भारतीय समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है। यही वजह है कि सितंबर में होने वाला मंदिर महोत्सव इस लंबे निर्माण सफर के समापन और एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: रक्षाबंधन पर देश के कई राज्यों में बहनों के लिए उपहार का ऐलान किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया के जरिए तीन बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। इसके मुताबिक पुलिस दीदी यानी अभया ब्रिगेड के लिए 4,700 स्कूटर और मोटरसाइकिल का लोकार्पण और फ्लैग ऑफ किया जाएगा। इन वाहनों का इस्तेमाल स्कूल और कॉलेजेस जाने वाली छात्राओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए किया जाएगा। छात्राओं को 10,000 रुपए की PhD फेलोशिप मिलेगी। करीब 1,000 छात्राओं को 4 साल तक की फेलोशिप दी जाएगी। कारोबार और स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना भी शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत 50,000 से 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इन सब के अलावा रक्षाबंधन के अवसर पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से 27 और 28 अगस्त को महिलाओं और छात्राओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा भी मिलेगी। तो रक्षाबंधन पर बिहार के अलावा कई दूसरे राज्यों में भी लड़कियों और महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा की घोषणा की गई है। यूपी सरकार ने 27 अगस्त से 29 अगस्त तक लड़कियों और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा सुविधा देने का ऐलान किया है, जिसमें एक सहयात्री भी रह सकता है। उत्तराखंड सरकार ने 28 और 29 अगस्त को रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है। हरियाणा में राज्य परिवहन की साधारण बसों में महिलाओं के लिए सफर मुफ्त होगा। 27 अगस्त की दोपहर 12 बजे से 28 अगस्त की रात 12 बजे तक बहनों के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। महिलाओं के साथ 15 वर्ष तक के बच्चों को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा। इसमें हरियाणा के साथ ही चंडीगढ़ और दिल्ली तक की यात्रा भी शामिल है। राजस्थान सरकार ने 28 और 29 अगस्त को साधारण और एक्सप्रेसवे बसों में लड़कियों और महिलाओं के लिए राज्य की सीमा के भीतर मुफ्त सफर का ऐलान किया है। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं उन वायरल वीडियोस पर जिन्हें सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
7: जिंदगी की असली खुशी दूसरों की खुशी में ही छिपी होती है। ये नन्ही बच्ची बड़े प्यार से चिड़ियों को दाना खिला रही है। बच्ची के चेहरे की खुशी साफ बता रही है कि उसे ये छोटा सा काम कितना सुकून दे रहा है। वहीं चिड़िया भी बिना किसी डर के उसके हाथ से दाना चुग रही है। ये नज़ारा इंसान और प्रकृति के बीच के निश्चल प्रेम, भरोसे और अपनापन की खूबसूरत मिसाल है। बच्ची का ये दयालु अंदाज वाकई दिल जीतने वाला है। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, कभी कभी एक छोटा सा पल भी दिलों को जोड़ देता है। रास्ते से गुजर रहे एक अनजान शख्स को छोटी सी बच्ची ने प्यार से राखी बांध दी। शख्स ने भी बच्ची के सामने सिर झुकाकर उसका आशीर्वाद लिया। दोनों के बीच का ये पल बेहद भावुक करने वाला था। बच्ची ने राखी के पवित्र धागे से एक अनजान इंसान को भाई बना लिया। सोशल मीडिया पर सामने आया ये वीडियो रिश्तों और इंसानियत की खूबसूरत तस्वीर दिखा रहा है। जो चीज हमें देखने में बेहद आसान लगती है, उसके पीछे कई घंटों और दिनों की मेहनत छिपी होती है। इस वीडियो में लाइन से बैठे कलाकार नजर आ रहे हैं और उनके ऊपर से छलांग लगाना कोई मामूली काम नहीं है। इसके लिए जबरदस्त अभ्यास, संतुलन और हिम्मत की जरूरत होती है। कलाकारों ने अपने हुनर और शानदार तालमेल से ऐसा प्रदर्शन किया कि देखने वाले हैरान रह गए। यही वजह है कि वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। बच्चों की मासूमियत और उनकी प्यारी सी मुस्कान किसी का भी दिल जीत सकती है। वीडियो में पिंक फ्रॉक पहनी एक नन्ही बच्ची अपने पापा से पैरों में पायल पहनवा रही है। पायल पहनते वक्त बच्ची के चेहरे पर खिली मुस्कान बेहद प्यारी लग रही है। पापा और बेटी के बीच का ये खूबसूरत पल लोगों का ध्यान खींच रहा है। बच्ची की क्यूटनेस और उसकी मासूम अदाएं सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहे हैं। पढ़ाई अगर मजेदार अंदाज में हो तो बच्चों को चीजें आसानी से समझ आती हैं। चीन में दो शिक्षक बच्चों को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी स्थिर बिजली का प्रयोग मजेदार तरीके से समझा रहे थे, लेकिन प्रयोग के दौरान जैसे ही बच्चों के बाल ऊपर की तरफ सीधे खड़े हुए, पूरा माहौल हंसी से गूंज उठा। बच्चे एक दूसरे के बाल देखकर खूब हंसने लगे। शिक्षकों का ये मजेदार तरीका और बच्चों की मासूम हंसी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को भी खूब गुदगुदा रहा है।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: क्या तांबे के प्रयोग से स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है? क्या तांबे का प्रयोग करने से आत्मविश्वास में सुधार हो सकता है? क्या है तांबे के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: कोई चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
3: बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का आखिरी जत्था पहुंचा पुंछ, फूलों की माला से श्रद्धालुओं का स्वागत। 28 अगस्त को समाप्त होगी यात्रा। रक्षाबंधन पर देश के कई राज्यों में बहनों के लिए उपहार का ऐलान। यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान में 27 से 29 अगस्त तक महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा। रक्षाबंधन से पहले दिल्ली सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा। दिल्ली में लक्ष्मी योजना की पहली किस्त आज होगी जारी, हर महीने मिलेगी 2,500 की आर्थिक मदद। देश भर में रक्षाबंधन की तैयारियां, अकोला में राखियों से सजे बाजार, खरीदारों की लगी भीड़। यूपी में 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को फ्री बस यात्रा की सौगात। सीएम योगी आज करेंगे लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का शुभारंभ। बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्म टॉक्सिक। हैदराबाद में सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए उमड़े फैंस, थिएटर के बाहर यश के लगाए गए कटाव। बीजिंग में चल रहे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का समापन आज, खोले 51 इवेंट्स में दुनिया भर के रोबोट्स ले रहे हैं हिस्सा।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत। सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत, नई सुबह नई आशा, गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा। बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की उन 5 खबरों पर जिनमें इंडिया के लिए शुभ समाचार।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: शुभ समाचार की शुरुआत राखी के साथ करेंगे। राखी में बस 2 दिन बाकी है। इस पावन अवसर पर देश भर के बाजार गुलजार हैं, जगह जगह राखी की दुकानें सजी हुई हैं, जहां पारंपरिक से लेकर मॉडर्न डिजाइन की राखियों के एक से बढ़कर एक विकल्प मौजूद हैं। महाराष्ट्र के अकोला से लेकर राजस्थान के अलवर तक में राखी की दुकानों में खरीदारों की लाइन लग रही है, तो राखी के ये रंग भी आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन भी आपको करवाएंगे। सावन महीने में ठाकुर जी की भक्ति के रंग में पूरा ब्रज क्षेत्र सराबोर रहता है। ऐसे में मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में इस पूरे महीने में अलग अलग घटाओं का आयोजन होता है। साथ ही इसी कड़ी में लहरिया घटा का दिव्य आयोजन हुआ और ठाकुर जी को परिवार समेत 9 विशेष झूलों पर झुलाया गया, तो इस विशेष अवसर पर कैसी रही मंदिर में रौनक बताएंगे आगे।
4: तो टीम इंडिया ने कोलंबो टेस्ट में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। आज मैच का 4th दिन है। कल मैच के 3rd दिन श्रीलंका की टीम ने 265 रन बना लिए, लेकिन भारत ने उसके 8 विकेट चटका लिए। ऐसे में आज भारत की कोशिश जल्द से जल्द मेजबान टीम को समेटने पर होगी। इसके लिए भारत की कैसी है रणनीति, ये भी आगे आपको बताएंगे।
3: वहीं आज पर्दे पर फिल्म टॉक्सिक आ रही है। आखिरकार वो दिन आ ही गया। अभिनेता यश के फैंस को इसका बेसब्री से इंतजार था। यश पूरे 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर लौट रहे हैं, तो फैंस का क्रेज कैसा है आपको दिखाएंगे आगे।
4: इसके अलावा बात ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स की भी होगी। आज बीजिंग में ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का समापन हो रहा है और इन 5 दिनों में रोबोट्स ने सिर्फ दौड़ भाग नहीं की, बल्कि ऐसा खेल दिखाया है जिसे देखकर इंसान भी हैरान रह जाए, तो ये कसरत भी आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है फटाफट अंदाज में सुबह 9 बजे की 9 गुड न्यूज का।
3: मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में सावन की आखिरी और सबसे खास लहरिया घटा सजाई गई। नीले पीले रंगों से सजा मंदिर भक्तों के आकर्षण का केंद्र बना। लहरिया घटा में ठाकुर द्वारकाधीश अपने परिवार और सखाओं के साथ 9 विशेष झूलों पर विराजे। भक्तों ने श्रद्धा के साथ ठाकुर जी को झूला झुलाया। मंदिर परिसर में फव्वारे, गाय की सीनरी, बंदरों के कटआउट और मोर की सजावट की गई।

0: केरल में ओणम की रौनक देखने को मिल रही है। इस मौके पर पर्यटन विभाग ने राज्य में जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। ये सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम एक हफ्ते तक चलेंगे। खेल और फूलों की रंगोली प्रतियोगिता में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फसल का त्यौहार ओणम 10 दिनों तक मनाया जाता है। देश भर में रक्षाबंधन के त्यौहार की भी तैयारी तेज है। इस बीच यूपी के मेरठ में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर छात्राओं और शिक्षिकाओं ने पुलिस अधिकारियों को राखी बांधी। एसएसपी ने भी छात्राओं को आशीर्वाद दिया और उनकी सुरक्षा और सम्मान के लिए सदैव तत्पर रहने पर भरोसा दिया।
1: गुजरात के राजकोट में जन्माष्टमी लोक मेले की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इस साल मेले का नाम विरासत से विकास लोक मेला रखा गया। इस भव्य मेले का उद्घाटन 2 सितंबर को नेवी बैंड के साथ होगा और इसका समापन 6 सितंबर को होगा। इस मेले में देश के मशहूर कलाकार प्रस्तुति देंगे।
0: मुंबई में गणेश उत्सव की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। इस बीच मुंबई के चर्चित गणेश पंडाल में से एक खेतवाड़ी का लंबोदर मंडल के गणपति बप्पा पधार चुके हैं। इस दौरान खेतवाड़ी का लंबोदर मंडल के गणपति पंडाल में पधारे हैं और खेतवाड़ी का लंबोदर मंडल के गणपति इस बार किसान के अवतार में है। पप्पा की इस भव्य मूर्ति की ऊंचाई लगभग 32 फीट है। समाज में बेहतर संदेश देने के उद्देश्य से इस बार किसान बचाओ थीम पर काम किया गया।
1: दिल्ली एनसीआर आज भी दिल्ली में बादल छाए रहने वाले हैं और झमाझम बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावनाएं हैं। दोपहर से शाम के बीच दोबारा बहुत हल्की से हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन उमस बरकरार रहेगी।
0: दो मैच की टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट में भारत मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है। टीम इंडिया 238 रन से आगे।

0: और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका केजीएफ स्टार यश के फैंस को बेसब्री से इंतजार था। आज यश की फिल्म टॉक्सिक बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है। इसी के साथ यश पूरे 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं। दर्शक अपने चहेते स्टार को भरपूर प्यार दे रहे हैं।
1: तो बीजिंग में वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आज समापन होगा। इनमें कुल 51 इवेंट्स में दुनिया भर के रोबोट्स हिस्सा ले रहे हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने पहली बार रस्साकशी में दम दिखाया। रोबोट्स फुटबॉल और रेस जैसे इंसानी खेल भी खेल रहे हैं। रोबोट्स को फैक्ट्री, रेस्टोरेंट और साथ ही ऑफिस जैसे माहौल में भी परखा गया है।

बस दो दिन बाकी हैं और सज गए हैं बाजार, आ रही है भाई बहन के प्यार का त्योहार। पूरे देश में रक्षाबंधन की रौनक दिखाई दे रही है। इस पावन अवसर पर देश भर के बाजार गुलजार हैं। जगह जगह राखी की दुकानें सजी हुई हैं, जहां पारंपरिक से लेकर मॉडर्न डिजाइन की राखियों के एक से एक विकल्प मौजूद है। बड़ों से लेकर बच्चों तक को ध्यान में रखकर ये राखियां बनाई गई हैं। महाराष्ट्र के अकोला से लेकर राजस्थान के अलवर तक में राखी की दुकानों में खरीदारों की लाइन लग रही है। खास बात यह है कि इस बार सराफा बाजार में भी राखी की खास रौनक देखने को मिल रही है। दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, मुंबई में सोने चांदी की राखियों की चमक भी देखने को मिल रही है। राखी से पहले बहनें भाइयों के लिए मनपसंद राखी खरीद रही हैं और भाई बहनों के लिए उपहार भी।

0: भाई बहन के पावन त्योहार रक्षाबंधन को लेकर देश भर के बाजार गुलजार हैं। यहाँ एक से बढ़कर एक राखी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के अकोला के बाजार भी रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर सजे हुए हैं। अपने भाइयों के लिए राखी पसंद करने दुकानों पर बहनों की भीड़ जुट रही है। यहाँ की दुकानों पर पारंपरिक राखियों से लेकर मॉडर्न
1: दुकान यहाँ पर लग चुके हैं राखियों के। और ये जो राखी है, ये जो है मोतियों की राखी है, कोई रुद्राक्ष वाली है, कोई माला वाली यहाँ पर राखी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये लुम्बी राखी इसे कहा जाता है। ये सुंदर राखियां जो है वो ये भैया भाभी की राखी इसे कहा जाता है। और इस तरीके के अलग अलग वेराइटी जो है, देखिए ये बैंगल के साथ ये राखी इस तरीके की दी है। और खासकर यहाँ देखिए जो है एक कमल के फूल पर ये जो राखी है, ये बहुत ही अच्छी इस वक्त की ट्रेंडिंग है।
0: भाई भाभी के लिए कपल राखी, तो बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली राखियाँ। इन सब के अलावा डायमंड लुक वाली राखी, रिंग राखी और ज्वेलरी डिजाइन की राखियाँ भी दुकानों में मिल रही हैं। कोई बहन अपने भाई के लिए राखी पसंद कर रही है तो किसी ने खरीद भी ली है।
2: जो अच्छे से अच्छी राखी मिलेंगी वो ले लेंगे।
3: मैंने अपने भाई के लिए बहुत हीरे जैसी राखी ली है, आप देख सकते हैं बहुत शानदार हीरा लगा हुआ है। मेरा भाई भी हीरे जैसा ही है, मुझे बहुत प्यार करता है, मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा और भाई का रिश्ता बहुत ही अनमोल है मेरे लिए।
0: अलग अलग डिजाइन के हिसाब से राखियों की कीमत भी अलग अलग है।
4: 5 रुपए से लेके तो 500 रुपए तक की अवेलेबल है। 500-400 रुपए वाला माल था वो सबसे पहले खत्म हो जाता है। हैवी रेंज की राखी के ट्रेड डिमांड सबसे ज्यादा थी। अब की बार स्टोन डायमंड की राखी, इसकी डिमांड हर साल रहती है, इस साल कुछ ज्यादा ही थी। और कार्टून की राखी की विशेष डिमांड है ये बार। लाइट के स्पिनर कार्टून की राखी में इस टाइप की राखी सबसे ज्यादा चल रही है।
0: अकोला से लेकर अलवर तक में राखियों की दुकानें सजी हुई हैं। राजस्थान के अलवर की राखियों की डिमांड विदेश तक में है। हजारों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कारोबार से जुड़े रहते हैं। यहाँ की राखियाँ देखने में सुंदर होने के साथ ही सस्ती भी मिलती है।
5: एक गोदाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर तरह तरह की राखियाँ हैं। मैं दिखाना चाहूंगा ये कार्टून कैरेक्टर की राखियाँ हैं। ये राखियों के साथ ही इरेजर का भी काम करती हैं। छोटे बच्चों को ये राखियाँ खास पसंद आ रही हैं, जिसमें अलग अलग तरह के डिजाइंस, एस्ट्रोनॉट तरह के जो कार्टून कैरेक्टर होते हैं उन कैरेक्टर के रूप में इनको तैयार किया गया है। और इन राखियों को रक्षाबंधन के बाद बच्चे अपने बैग, स्कूल बैग में भी काम में ले सकते हैं। इरेजर का ये काम करेंगी। इसके अलावा तरह तरह की राखियां कार्टून कैरेक्टर के रूप में, लाइट वाली राखियां, म्यूजिक वाली राखियों की डिमांड सबसे ज्यादा है।
0: यहाँ के बाजार में 1 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की अलग अलग तरह की आकर्षक राखियां मिल रही हैं। इस बार खासकर बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर, लाइटिंग और म्यूजिक के साथ ही पतली डोरे वाली राखियों की डिमांड सबसे ज्यादा है।
6: हमारे पास सब तरह की वैरायटी है, फैंसी राखियां भी हैं, बच्चों के लिए एक से एक स्पेशल आइटम बनाए हुए हैं हमने। इस बार बच्चों के लाइटिंग में जैसे ये सब लाइटिंग वाली आइटम है, ये देखिए इस तरह की लाइटिंग वाली आइटम है, ये छोटे बच्चों के आइटम है सारी, ये सब म्यूजिकल लाइट बच्चों के साथ में लाइटिंग वाली आइटम आएगी इस तरीके से। ये पर्स वाली आइटम है, जैसे बच्चों के बेल्ट मारने वाला होता है, इसके अंदर बच्चों के टॉयज वगैरह सब कुछ मौजूद है इसके अंदर। ये वाली सब म्यूजिकल लाइट के साथ है, ट्यूनिंग लाइटिंग के साथ आ रहा है अपना। इस तरह की आइटम बच्चों के छोटे करेक्टर वगैरह बहुत सारे आइटम है। मतलब
0: यहाँ कई बड़े राखी व्यापारी हैं जो देश विदेश में राखियाँ सप्लाई करते हैं।
7: इस साल हमने करीब 50,000 से ज्यादा डिजाइन बनाए हैं और सप्लाई ऑल ओवर इंडिया तो है ही, और अवार्ड में भी हो रही है, करीब 30-35 कंट्रीज में माल जा रहा है।
0: यहाँ रक्षाबंधन के पर्व को लेकर सजी दुकानों में बहन अपने भाइयों के लिए राखी खरीदने लगातार पहुँच रही हैं।
8: राखियों के इतने डिजाइन मिलते हैं शायद कहीं भी पॉसिबल नहीं है। अलवर छोड़ो, इंडिया छोड़ो, एशिया तक इनकी राखी फेमस है कि यहाँ की राखियाँ जो है ऑल इंडिया में फेमस है, इसीलिए हम हर साल यहाँ आते हैं राखी लेने।
0: अलवर के शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में राखी बनाई जाती है, जिसके चलते यहाँ 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। अकोला से धनंजय सावले और अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: 28 तारीख यानी शुक्रवार को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा और अब जान लेते हैं कि इस दिन राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है।
10: अगर हम शुभ मुहूर्त की बात करते हैं तो राखी वाले दिन सुबह का शुभ मुहूर्त जो है वो बहुत ही खास है, जो कि शुरू होगा सुबह 5:57 से लेकर सुबह 9:48 तक। हालांकि राखी उदय तिथि के हिसाब से आप सारा दिन मना सकते हैं, लेकिन ये मुहूर्त सबसे खास है। राखी में आपको राहु काल का विशेष ध्यान रखना है कि राहु काल में आपको राखी नहीं बांधनी है, और राहु काल हमारा शुरू होगा 10:46 से लेकर 12:22 तक राहु काल रहने वाला है, तो इस समय में आपको राखी नहीं बांधनी है। चंद्र ग्रहण की वजह से राखी पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, और इस बार भद्रा का भी साया राखी पे नहीं है, क्योंकि भद्रा जो है वो 28 से पहले ही खत्म हो जाएगी, तो इस बार राखी पे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं है।
11: भाई बहन के पवित्र रिश्ते का ये पर्व अब बेहद नजदीक है। ऐसे बाजार रक्षाबंधन के त्योहार के लिए पूरी तरह से सज चुके हैं। बाजार में एक से बढ़कर एक राखियां बिक रही हैं, लेकिन इस बार सोने चांदी से बनी राखियों की बेहद डिमांड है। अलग अलग डिजाइन्स और स्टाइल वाली राखियां लोगों को पसंद आ रही हैं। इनमें डायमंड राखी से लेकर हल्के स्टाइल वाली गोल्ड राखी का भी क्रेज दिख रहा है।
12: रक्षाबंधन का त्यौहार करीब है, और ऐसे में बाजारों में जो रौनक है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर रंग बिरंगी राखियों की बात करें तो हर एक स्टाइल में आपको राखियां जो है वो मिलेगी, चाहे वो आपकी भाभी के लिए हो, भाई के लिए हो, या फिर बच्चों के लिए हो। अलग अलग स्टाइल का जो राखियां हैं उससे पूरा बाजार जो है भर चुका है इस वक्त। लेकिन इन्हीं ट्रेडिशनल राखियों के बीच अब प्रीमियम राखियों का भी जमाना आ गया है। पूरी तरीके से ट्रेंड जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है, और लोग अब प्रीमियम राखियों की ओर भी जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही दिखाने की मैं आपको कोशिश कर रही हूँ, और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इन प्रीमियम सिल्वर राखी की। और आप देख सकते हैं कि आपको जो है सामने बहुत सारे ऑप्शन जो है राखी के दिखने वाले। तो ये 925 स्टर्लिंग सिल्वर की राखियां हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और इस सीजन में जो है ये खास होने वाली है, वो इसलिए क्योंकि सिर्फ राखी के फेस्टिवल के बाद जो है आप एक धागे की तरह इसको उतार कर नहीं रख सकते, बल्कि आप बाद में भी जो है इसको कैरी कर सकते हैं, एक ब्रेसलेट के तौर पर जो है आप इसको पहन सकते हैं, और पूरे साल जो है इसको आप बहन भाई की जो प्यार की निशानी है उसके साथ जो है इसको कैरी कर सकते हैं। तो ऑप्शंस मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ किस तरीके से आपको सिल्वर के ऑप्शन जो है वो नजर आने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम बच्चों की राखी से शुरू करेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑप्शन जो है आपको दिखेंगे। शुरुआती मैं इन छोटी छोटी राखियों से करूंगी, आपको दिखेगा कि किस तरीके बच्चों को कार्टून करेक्टर्स वाली राखियां पसंद होती है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि आपको स्पॉन्ज बॉब की राखी की बात करें या फिर एंग्री बर्ड की राखी की बात करें, आपको बच्चों के लिए हर एक ऑप्शन जो है नजर आने वाले हैं। आप यहां पे भी देखेंगे तो आपको लड़कियों के लिए यूनिकॉर्न वाली राखियां जो है वो दिख जाएगी, आपको मिकी माउस वाली राखियां जो है वो दिख जाएगी, और सभी प्योर सिल्वर में आपको ये राखियां जो है दिखने वाली है। सिल्वर की अगर हम बात करें तो आपको ये वैरायटी दिखने वाली है। अच्छा, अगर इनकी कीमतों की बात करूं तो ये सभी जो जितनी भी धागे वाली राखियां जो आप देख रहे हैं सिल्वर के साथ, इनकी कीमत जो 1000 से सिर्फ 1500 के बीच में आपको नजर आ जाएगी। वही अगर आप कुछ इस स्टाइल के राखियों की बात करें, ये स्पेशली जो ऊपर की राखियां मैं आपको दिखा रही हूँ सिल्वर में, ये भाभियों के लिए राखी है। अगर आपको अपनी भाभी को पहनाना है तो आप इस तरीके का ट्रेडिशनल लुक के साथ आप इनको कुछ ऐसी राखियां जो है पहना सकते हैं कि राखी का त्यौहार भी मने और साथ ही साथ कुछ परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस तरीके का ट्रेडिशनल लुक वो जो है पहन सके। आपको कुछ इस सिल्वर में इस तरीके की राखियां भी जो है वो मार्केट में दिख जाएगी, और इनकी अगर रेट की बात करें तो ये कभी आपको 3 से 4 हज़ार के बीच में जो है पड़ेगी। और भाई बहन के लिए जिस तरीके से कहते हैं कि कपल जो एक राखी होती है भाई भाभी की राखी, वो आपको ये राखियाँ मिल जाएगी कि भाई भाभी भी मेंशन है। तो सिल्वर की हम ऑप्शन दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर अच्छी खासी जो वेराइटी है वो दिखने वाली है, क्योंकि प्रीमियम राखियों की तरफ हर कोई रुख जो है लेता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जब बात सोने की हो तो सोने की चमक के आगे आपको हर कुछ फीका लगता है। तो सोने की आपको मैं वैरायटी दिखा रही हूँ, और उसके साथ ही डायमंड, प्रीमियम डायमंड जो है अमेरिकन डायमंड कट के साथ जो है वो राखियों के ऑप्शन भी आपको दिखने वाले हैं। हालांकि कस्टमाइज आप करवा सकते हैं, लेकिन ये कुछ राखियों के मैं ऑप्शन आपको दिखा रही हूँ जो कि आपको यहाँ पर नजर आने वाला है, और सोने की छोटी सी प्लेट आपको बीच में नजर आ जाएगी। आपको चाहे भगवान गणेश जी की बात करें या फिर ओम के डिजाइन की बात करें, एक, एक आपको यहाँ पे आपको माता रानी का डिजाइन जो है वो दिख जाएगा। तो और बारीक धागे के साथ, क्योंकि कोई धागे को बहुत ही पवित्र मानता है, तो धागे के साथ इन्होंने गोल्ड को जो है अटैच करने की पूरी तरीके से कोशिश की है। अगर उसके साथ ये भी आप देख सकते हैं कि आपको इसमें काला धागा नजर आएगा, क्योंकि लोग जो है काला धागा जरूर पहनाते ताकि नज़र से जो है वो बचा जा सके। तो गोल्ड की राखियों में कई तरह के डिज़ाइन जो है आपको नज़र आ जाएंगे। कुछ राखी आपको बेहद ही मिनिमल डिज़ाइन के साथ दिखेगी, तो कुछ में आपको इस तरीके का कट जो है वो नज़र आ जाएगा। और ये जितनी भी ये राखियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 22 कैरेट गोल्ड में जो है आपको नज़र आने वाली है। लेकिन जिनका बजट थोड़ा कम है लेकिन त्यौहार भी मनाना है, तो उनके लिए ये नीचे के ऑप्शंस आपको नज़र आ जाएंगे कि ये आपके 14 कैरेट गोल्ड से इनका आपको ये राखियाँ जो है वो उपलब्ध है। इसके अंदर आपको डायमंड कट जो है वो नज़र आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि 14 कैरेट गोल्ड की आपको चेन नज़र आ जाएगी, लेकिन अगर आप बीच में डिज़ाइंस की बात करेंगे तो आपको ये डायमंड में सारे ऑप्शंस जो है वो मिलने वाले हैं। तो मार्केट में ट्रेडिशनल राखियां अपने ही क्रेज़ पर है, उनका क्रेज़ जो है, उनकी डिमांड जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती। हर कोई जो है रंग बिरंगे धागे वाली, रुद्राक्ष वाली, मोतियों वाली राखियाँ जो है वो लेना पसंद करता है। लेकिन उसी के बीच जो है प्रीमियम राखियों का डिज़ाइन अब बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, उनके ट्रेंड जो है वो आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसी बीच हर एक शॉप में जो है इस तरीके का कलेक्शन जो है आपको दिखने वाला है, चाहे फिर वो गोल्ड की राखी हो, डायमंड की राखी हो या फिर सिल्वर की राखी। कैमरा पर्सन शैलेंद्र कुमार के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।
9: तो रक्षाबंधन पर देश के कई राज्यों में बहन के लिए उपहार का ऐलान किया गया। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया के जरिए 3 बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। क्या है वो योजना? इसके मुताबिक पुलिस दीदी यानी कि अभया ब्रिगेड के लिए 4,700 स्कूटर और मोटरसाइकिल का लोकार्पण और फ्लैग ऑफ किया जाएगा। वहीं इन वाहनों का इस्तेमाल स्कूल और कॉलेज जाने वाली छात्राओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए किया जाएगा। छात्राओं को 10,000 रुपए की PhD फेलोशिप मिलेगी। करीब 1,000 छात्राओं को 4 साल तक ये फेलोशिप दी जाएगी। तो वहीं कारोबार और स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना भी शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत 50,000 से 2,00,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इन सब के अलावा रक्षाबंधन के अवसर पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से 27 और 28 अगस्त को महिलाओं और छात्राओं को मुफ्त में बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। तो रक्षाबंधन पर बिहार के अलावा कई दूसरे राज्यों में भी लड़कियों और महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा की घोषणा की गई है। यूपी सरकार ने 27 अगस्त से 29 अगस्त तक लड़कियों और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा सुविधा देने का ऐलान किया है, जिसमें एक सहयात्री भी रह सकता है। उत्तराखंड सरकार ने 28 और 29 अगस्त को रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है। हरियाणा में राज्य परिवहन की साधारण बसों में महिलाओं के लिए सफर मुफ्त होगा। 27 अगस्त की दोपहर 12 बजे से 28 अगस्त की रात 12 बजे तक बहनों के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो महिलाओं के साथ 15 वर्ष तक के बच्चों को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा। इसमें हरियाणा के साथ ही चंडीगढ़ और दिल्ली तक की यात्रा शामिल है। तो वहीं राजस्थान सरकार ने 28 और 29 अगस्त को साधारण और एक्सप्रेस बसों में लड़कियां और महिलाओं के लिए राज्य की सीमा के भीतर मुफ्त सफर का ऐलान भी किया है।
11: और उज्जैन में महाकाल के साथ पर्व त्योहार के शुरू होने की परंपरा है। रक्षाबंधन का पर्व भी बाबा महाकाल को राखी अर्पित करने के साथ शुरू होगा। इस दिन बाबा को महाभोग लगाया जाता है और फिर भक्तों के बीच वो प्रसाद बांटा जाता है। इस महाभोग के लिए 1,25,000 लड्डू बनाने का काम शुरू हो चुका है।

0: भाई बहन के अटूट प्रेम और रक्षा के संकल्प का पर्व रक्षाबंधन। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में किसी भी पर्व का शुभारंभ बाबा महाकाल के दरबार से होने की परंपरा है। इसीलिए रक्षाबंधन के त्योहार की शुरुआत भी सबसे पहले बाबा महाकाल को राखी बांधकर की जाती है। रक्षाबंधन पर भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल को राखी अर्पित की जाती है। इसके बाद 125,000 लड्डुओं का महाभोग लगाया जाता है। वर्षों से चली आ रही ये परंपरा श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर 28 अगस्त को भी मनाई जाएगी, जिसकी महाकाल के दरबार में तैयारी शुरू हो चुकी है। रक्षाबंधन के त्योहार पर बाबा को लगाए जाने वाले महाभोग के लिए मंदिर के पंडित पुजारियों ने पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ भट्टी पूजन किया। उसके बाद लड्डू प्रसाद बनाने का काम शुरू हुआ।
1: श्रावणी जो पूर्णिमा होती है, रक्षाबंधन पर्व जिसको अपन बोलते हैं, इसी दिन रक्षाबंधन पर्व महाकाल जी बाबा को अपन भस्म आरती के समय से भोग लगा के एक लड्डू का अन्नकूट लगाते हैं, जिसमें असंख्य लड्डू होते हैं, 125,000 लड्डू बोलते हैं अपन, उससे भी ज़्यादा बनते हैं लड्डू। तो वो सारे लड्डू का प्रसाद जो लगता है, भोग लगने का अन्नकूट स्वरूप दर्शन भी होते हैं बाबा का अभिषेक स्थल पर, उसके पश्चात भस्म आरती के बाद में ये प्रसाद सभी भक्तजनों में वितरण होगा। जितने यात्री आएंगे दर्शन करने, सबको लड्डू का प्रसाद दिया जाएगा, बांटा जाएगा।
0: भगवान के भोग के लिए बेसन और शुद्ध घी से लड्डू प्रसाद तैयार किया जाता है। मंगलवार को लड्डू प्रसाद निर्माण के लिए आई महिला कर्मचारियों ने भजनों के साथ प्रसाद बनाने का काम शुरू किया, जो 27 अगस्त की रात तक चलेगा।
1: ये शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। जितने भी लोग अपने यहाँ बनाने वाले हैं, अपने जो प्रसाद बनाएंगे, निर्माण करेंगे लड्डू निर्माण में, वो साफ सफाई पूरा घी, शुद्ध घी का, पूरा शुद्ध घी का ही लड्डू बनेंगे। इसमें कोई मतलब बाबा का आनंद है तो बाबा का प्रसाद है, इस पर जितना अच्छे से अच्छा अपन बना सकते हैं उतना अपन प्रयास करते हैं।
0: रक्षाबंधन पर भस्म आरती के दौरान राखी अर्पित करने के बाद बाबा महाकाल को महाभोग अर्पित होगा। इसके बाद बाबा के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के बीच महाभोग का लड्डू प्रसाद बांटा जाएगा, जो उनके लिए प्रसाद के साथ ही बाबा का आशीर्वाद भी होता है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: फिलहाल वक्तों के एक छोटे से ब्रेक का आपका ही मच जाएगा। ब्रेक के बाद देखिए पर्दे पर टॉक्स।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
4: क्या तांबे के प्रयोग से स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है? क्या तांबे का प्रयोग करने से आत्मविश्वास में सुधार हो सकता है? क्या है तांबे के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
6: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीज
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का आखिरी जत्था पहुंचा पुंछ, फूलों की माला से श्रद्धालुओं का स्वागत, 28 अगस्त को समाप्त होगी यात्रा। रक्षाबंधन पर देश के कई राज्यों में बहनों के लिए उपहार का ऐलान, यूपी बिहार उत्तराखंड हरियाणा राजस्थान में 27 से 29 अगस्त तक महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा। रक्षाबंधन से पहले दिल्ली सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा, दिल्ली में लक्ष्मी योजना की पहली किस्त आज होगी जारी, हर महीने मिलेगी 2,500 की आर्थिक मदद। देश भर में रक्षाबंधन की तैयारियां, अकोला में राखियों से सजे बाजार, खरीदारों की लगी भीड़। यूपी में 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को फ्री बस यात्रा की सौगात, सीएम योगी आज करेंगे लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का शुभारंभ। बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्म टॉक्सिक, हैदराबाद में सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए उमड़े फैंस, थिएटर के बाहर यश के लगाए गए कटआउट।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
3: अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका शुभ समाचार में, और अब बात बड़े पर्दे पर, यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म टॉक्सिक की रिलीज हो चुकी है। रिलीज के साथ ही फैंस का जोश भी सातवें आसमान पर पहुंच गया है। मुंबई से लेकर हैदराबाद और बेलगावी समेत दक्षिण भारत के कई शहरों में सिनेमाघरों के बाहर सुबह से ही फैंस की भीड़ नजर आई, कहीं बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए तो कहीं फैंस ने अपने पसंदीदा स्टार के कटआउट्स और पोस्टर के साथ फिल्म का जश्न मनाया। यश की करीब 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी को लेकर पहले से ही जबरदस्त क्रेज था, और अब थिएटर्स के बाहर का ये माहौल साफ बता रहा है कि टॉक्सिक को लेकर फैंस में किस कदर दीवानगी छाई हुई है। तो वहीं बेंगलुरु में ढोल नगाड़ों के बीच फैंस नाचते गाते नजर आए हैं, कई जगहों पर आतिशबाजी, जश्न का माहौल भी देखने को मिला। सिनेमा घरों के बाहर लगे पोस्टर और फैंस का जोश ऐसा है कि मानो फिल्म की रिलीज नहीं बल्कि कोई बड़ा त्योहार हो। टॉक्सिक को लेकर फैंस की दीवानगी साफ बता रही है कि यश की स्क्रीन पर वापसी का उन्हें कितनी बेसब्री से इंतजार था। और कर्नाटक के रायचूर में टॉक्सिक की रिलीज का जबरदस्त क्रेज देखने को मिला, सिनेमाघर के बाहर सुबह से ही फैंस की भारी भीड़ जुटी। आलम यह रहा कि फिल्म का पहला शो ही सुपरहिट रहा। तो वही मुंबई में भी टॉक्सिक की रिलीज के साथ सिनेमाघरों के बाहर यश के फैंस का जोश देखने को मिला। सुबह के शो से पहले ही थिएटर के बाहर फैंस अपने पसंदीदा स्टार की एक झलक पाने के लिए फिल्म का पहला शो देखने के लिए पहुंच गए। कहीं पर पोस्टर कटआउट्स नजर आए तो कहीं पर फैंस ने नारे लगाकर अपनी एक्साइटमेंट भी जाहिर की है।
4: बहुत एक्साइटेड है सर,
5: कब से रहा देख रहे थे,
4: बहुत दिन से यश का सर का आने का वेट ही कर रहे थे, कब ये पिक्चर आए, कब आए रिलीज, मतलब डेट पे डेट दे जा रहे थे, हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। ये उनकी दाढ़ी बियर्ड बाल एकदम एक्साइटेड है बहुत सर, 5 दिन पहले टिकट लेके रखी है।
6: मेरा नाम हितेश पुरोहित है, टॉक्सिक के लिए बहुत एक्साइटमेंट है और 5 दिन पहले ही 4 टिकट हमने अपने दोस्तों के लिए 6 फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए खरीदी है, और आज हम वो दिन आ गया देखने के लिए
4: और हम बहुत एक्साइटेड है।
7: जब से वो पोस्टपोन हुआ है ना धुरंधर के बाद, तब से आई बीन वेटिंग फॉर दिस, बट या लेट द वेट इज ओवर नाउ.
8: ये लोग मेरे दोस्त लोग हैं, हम लोग फाइनली यश की इतनी देर बाद उसकी मूवी आई है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसकी मूवी देखने के लिए. बेसिकली उनका ऑलरेडी एक्शन रिलेटेड ही होता है जो भी मूवी होता है, और उसमें उतना सस्पेंस होता है कि जो ऑडियंस को लुक अट्रैक्ट कर सकता है. मैं खुश हूँ क्योंकि वो जल्दी रिलीज कर दिया है उन्होंने, क्योंकि सब लोग को बहुत एक्साइटेड थे कि कब आ रही है. तो फाइनली मैंने दोस्त लोग के साथ प्लान बनाया कि कुछ कोई ना हो पर हम तीनों जन जाके मिलके देख के आते हैं.
3: तो मध्य प्रदेश में रामगंज मंडी और भोपाल रूट पर ट्रेन्स को बहुत जल्द नई रफ्तार मिलने वाली है. नए ट्रैक पर कल 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन संचालन का सफल ट्रायल हुआ. इस परियोजना से इस रूट पर सफर करने वाले मुसाफिरों को खासा सहूलियत मिलेगी. इसके साथ ही इस रूट पर माल ढुलाई में भी कम वक्त लगेगा.

0: रेल मुसाफिरों को एक नई सौगात दे दी है। रामगंज मंडी और भोपाल के बीच नई रेल परियोजना के तहत ब्यावरा और सोनकच के बीच पहली बार ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी। इस नए ट्रैक के सफल ट्रायल के बाद बहुत जल्द इस रूट पर पैसेंजर और माल गाड़ियों के संचालन को हरी झंडी मिल जाएगी। रामगंज मंडी भोपाल रेल परियोजना के तहत 276 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनना है। इसमें से 226 किलोमीटर का ट्रैक तैयार हो चुका है। व्यावरा और सोनकच के बीच 24.5 किलोमीटर के नए ट्रैक का ट्रायल 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर ट्रेन संचालन का ट्रायल सफल।
1: आज
0: मुंबई से आए कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की टीम ने इस नए ट्रैक का जायजा लिया और इसकी सुरक्षा जांच पर मुहर भी लगा दी। साथ ही ये भी दावा किया गया है कि इस पूरे रूट का काम तय वक्त पर ही पूरा कर लिया जाएगा। राजगढ़ से पंकज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो आज बीजिंग में ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का समापन हो रहा है। दरअसल इन 5 दिनों में रोबोट्स ने सिर्फ दौड़ भाग नहीं की है बल्कि ऐसा खेल दिखाया है जिसे देखकर इंसान भी हैरान रह जाए। मंगलवार को पहली बार दो दो रोबोट्स के बीच रस्साकशी हुई, यानी ताकत की सीधी टक्कर। इसके अलावा रोबोट्स ने फुटबॉल, जिम्नास्टिक और हाई जंप जैसे खेलों में भी हिस्सा लिया। फ्लोर एक्सरसाइज में कैंगो रोबोट ने 307 डिग्री का बेहद मुश्किल बटरफ्लाई किक लगाया, यानी कि दौड़ते हुए हवा में घूमकर पैर को पूरा घुमाया। वहीं त्यांगोंग अल्ट्रा ने हाई जंप में 3.4 मीटर की छलांग लगाकर नया रिकॉर्ड बना दिया। खास बात यह है कि इससे पहले इंसानों का रिकॉर्ड भी टूट चुका है और इन गेम्स में 51 मुकाबले हुए जिनमें 30 खेल से जुड़े और 21 असली जिंदगी जैसे हालात पर आधारित थे, जैसे फैक्ट्री, रेस्टोरेंट और इमरजेंसी में काम करना। यानी बात सिर्फ रोबोट खेलने की नहीं है, सवाल ये भी है कि आने वाले वक्त में रोबोट हमारे साथ कितना काम कर पाएंगे।
3: और लंदन में इंसानों के साथ अब डॉग्स भी मार्केट हॉल में खास खाने का मजा ले सकेंगे। लंदन के वॉक्सहॉल इलाके में एक फूड हॉल ने नेशनल डॉग डे के मौके पर डॉग्स के लिए स्पेशल मेन्यू तैयार किया। इस मेन्यू में डॉगी गिनीज नाम का ड्रिंक भी है जो हड्डियों से बने शोरबे और ऊपर व्हिप्ड क्रीम से तैयार किया गया है। वहीं एप और रोल स्प्रिट्स में गाजर का जूस, नारियल पानी और संतरे का स्वाद है। खाने में डॉग्स के लिए सैल्मन्स और चावल, चिकन राइस, चिकन नूडल्स, चिकन टाको और छोटे स्टेक के साथ फ्राइज भी रखे गए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ डॉग्स के लिए खास पिज्जा और संडे रोस्ट भी बनाया गया है। फूड हॉल के मुताबिक इन सभी डिशेज में डॉग्स के लिए सुरक्षित चीजों का इस्तेमाल किया गया है।
2: तो वहीं पिछले कुछ दिनों में प्याज की कीमतों में भी भारी उछाल देखने को मिल रहा है। सरकार ने प्याज की महंगाई पर लगाम लगाने के लिए कुछ उपाय भी किए हैं। प्याज की सप्लाई और महंगाई पर सरकार की नजर बनी हुई है। ऐसे में केंद्र सरकार ने 35 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज बेचने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार की लोगों को सस्ता प्याज मुहैया कराएगी ये पहल है। वहीं सरकार निफेड से प्याज खरीद कर जनता के बीच सप्लाई करेगी। इस बीच नाशिक से प्याज की सप्लाई बढ़ाने का इंतजाम भी किया गया है। प्याज की सप्लाई के लिए नाशिक से कांदा एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। 24 अगस्त से प्याज की ढुलाई शुरू हो गई है और पहले चरण में चेन्नई, मदुरई, कोची को प्याज की सप्लाई की जा रही है। इसके बाद दिल्ली गुवाहाटी भी कांदा एक्सप्रेस से सप्लाई होगी। प्याज की जमाखोरी करने वालों पर सरकार कड़ी कार्रवाई भी करेगी।
3: और लगातार बढ़ते चीनी के दाम पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कुछ कारगर उपाय किए हैं। दिल्ली सरकार ने 35 रुपए किलो चीनी जनता को मुहैया कराने का इंतजाम किया है। इसके साथ ही चीनी की कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमारी की जाएगी। चीनी की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस सिलसिले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री की एक अहम बैठक भी हुई है। वहीं चीनी की महंगाई पर ब्रेक लगाने के लिए यूपी में चीनी का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में 15 अक्टूबर से चीनी मिलों की शुरुआत हो जाएगी। आने वाले दिनों में यूपी में 90 लाख टन चीनी उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
2: चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सावन महीने में ठाकुर जी की भक्ति के रंग से पूरा ब्रज क्षेत्र सराबोर रहता है। ऐसे में मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में इस पूरे महीने में अलग अलग घटाओं का आयोजन होता है और उसी कड़ी में मंगलवार शाम को लहरिया घटा का दिव्य आयोजन हुआ। इस विशेष अवसर पर मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा।

0: रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर मंदिर, दिव्य सजावट, आकर्षक झूलों से झूलते ठाकुर जी और भाव विभोर श्रद्धालु। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर की ये छटा लहरिया घटा की है। द्वारकाधीश मंदिर में मंगलवार की शाम लहरिया घटा सजाई गई और भगवान द्वारकाधीश ने लहरिया घटा में भक्तों को दर्शन दिए। लहरिया घटा के लिए पूरे मंदिर परिसर को सतरंगी लहरिया कपड़ों से सजाया गया। अलग अलग तरह की रंग बिरंगी रोशनी और फूल पत्तियों से मंदिर को आकर्षक रूप दिया गया। इस भव्य सजावट के बीच लगाए गए 9 हिंडोले श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध करते रहे।
1: ये द्वारकाधीश मंदिर में 9 झूले हैं, जो है सोने के और चांदी के भी। तो ये देखकर और झांकी जो सजी है उसको देखकर बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है।
2: आज के दिन लहरिया घटा है अपने द्वारकाधीश के मंदिर में। 3 सोने चांदी के झूले हैं, 3 लकड़ी के झूले हैं और 3 फल फूलों के झूले हैं। मनोहर दर्शन है आज के, अद्भुत, जिसका वर्णन नहीं कर सकते।
3: एकदम आनंद आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है यहाँ पे। राधे राधे।
0: इस लहरिया घटा के आयोजन के लिए लाए गए फब्बारों से लेकर गायों की सीनरी, मोर की खूबसूरत आकृति, बंदरों के कटआउट हर किसी को आकर्षित कर रहे थे।
3: श्रावण मास समाप्त हो रहा है, तो इसलिए जो लहरिया घटा है वो मंदिर प्रांगण में सजाई गई है। पूरे मंदिर को दिव्यता और भव्यता के साथ सजाया गया है। 9 झूले हैं आज, और 9 झूला में ठाकुर जी अपने ग्वाल ग्वालों के साथ, अपने परिवार के साथ विराज कर झूला झूल रहे हैं। और जो तो ये स्वर्ण हिडोला लगा हुआ है और रजत हिडोला लगा हुआ है, तो सोने के हिडोले में भी ठाकुर जी झूल रहे हैं और उधर लकड़ी के हिडोले में भी ठाकुर जी झूल रहे हैं। तो ठाकुर जी का जो उत्सव है ना सावन का पूरा, वो बड़ा अद्भुत और अनोखा है, क्योंकि ठाकुर जी बाल रूप में यहाँ विराजते हैं। तो बाल रूप में बालक को मंदिर परिसर से बाहर नहीं ले जाया जाता, वो मंदिर में ही रखा जाता है। सावन में ब्रज में बड़े श्रद्धालु आते हैं और भगवान के दर्शन कर जो झूला उत्सव है उसको मनाते हैं।
0: पूरे सावन माह में मंदिर में 9 तरह की घटाएं सजाई जाती है। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में जिस दिन सावन मास प्रारंभ होता है, उस दिन ठाकुर जी को स्वर्ण और रजत हिंडोले में झुलाया जाता है। झूला झुलाने की ये परंपरा पूरे ब्रजमंडल में है। द्वारकाधीश मंदिर में लहरिया घटा की छटा देखने हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर में विराजमान ठाकुर जी बाल स्वरूप में है, इसीलिए उन्हें बाहर नहीं ले जाया जाता, लेकिन उन्हें बाहर के मौसम की अनुभूति कराने के लिए सावन मास में काली घटा, गुलाबी घटा, लहरिया घटा, सफेद घटा जैसी 9 घटाओं का आयोजन होता है। इस परंपरा के तहत अलग अलग स्वरूपों और सजावट के माध्यम से ठाकुर जी के दर्शन कराए जाते हैं।
3: बाहर के मौसम की अनुभूति कराने के लिए घटाओं के आयोजन होते हैं, क्योंकि तो आज बाहर का मौसम गुलाबी है तो गुलाबी घटा का आयोजन है। आज बाहर का मौसम सफ़ेद हो रहा है तो वो सबसे लास्ट घटा होती है सफ़ेद वाली घटा। काली घटा बीच में होती है, बड़ी फेमस घटा होती है। तो इस प्रकार से लगभग 9 घटाओं का आयोजन ठाकुर मंदिर द्वारकाधीश में होता है। और श्रावण मास जब तक रहता है तब तक ठाकुर जी हिडोले में प्रतिदिन 5-10 से 5-40 झूलते हैं। घटाओं का जो टाइमिंग है वो सायंकाल 7 बजे से 8 बजे तक रहता है, और एक दिन छोड़ के, क्योंकि तिथि घड़ी पल और नक्षत्र के हिसाब से सभी घटाओं के आयोजन होते हैं। पूर्णमासी जैसे 28 को है तो 27 को सफ़ेद घटा का आयोजन होगा, इससे यह माना जाएगा बाहर का मौसम बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है और श्रावण मास समाप्त हो गया।
0: लहरिया घटा के अनुरूप नीले पीले रंग की लहरिया छटा से की गई दिव्य सजावट के बीच ठाकुर जी को झूला झूलाते देखकर श्रद्धालु भक्ति के रंग में पूरी तरह डूब गए। एक सुर में भक्त गोविंद गोपाल की जय जय करने के अलावा अपने अपने अंदाज में ठाकुर जी के प्रति अपने भक्ति भाव को प्रदर्शित करते दिखे।
4: तेरी कृपा को है खेल अनुपम, बाकी पार के पाई भी को कौन सोचारो।
5: लहरिया घटा और 9 झूले, लाला झूलन पधारो झोंके आए बदला, लाला झूलन पधारो।
0: मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भुवनेश्वरी।
6: और सावन के पावन महीने में देश के अलग अलग हिस्सों में झूलनोत्सव चल रहा है। कहीं भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ झूले पर विराजमान हैं, तो कहीं प्रभु श्री राम माता सीता के साथ झूले पर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। देखिए अलग अलग हिस्सों में कैसे मनाया जा रहा है झूलनोत्सव।

0: ठाकुर जी जब राधा रानी संग झूले पर दिखे तो ये मनमोहक दृश्य भक्तों की आंखों में बस गया। ब्रज में इन दिनों हर तरफ झूलन उत्सव का उल्लास दिख रहा है। द्वारकाधीश मंदिर में ठाकुर जी ने स्वर्ण और रजत हिंडोल झूला में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दिया। मधुसूदन के इस स्वरूप ने पूरे मंदिर परिसर को भक्ति के रंग में सराबोर कर दिया। झूले पर देवकी नंदन के दर्शन मिलते ही हर तरफ राधे कृष्ण के जयकारे गूंज उठे। सावन का महीना शुरू होते ही पूरे ब्रज में झूलन उत्सव की रौनक दिखने लगती है। झूलन उत्सव में द्वारकाधीश मंदिर को हर दिन अलग ढंग से सजाया जाता है। सिर्फ ब्रज क्षेत्र ही नहीं बल्कि देश के तमाम हिस्सों में इन दिनों झूलन उत्सव पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान राम की नगरी अयोध्या में तमाम मंदिरों में झूलन उत्सव की मनोरम झांकियां सजाई गई है। प्रभु श्री राम और माता जानकी के विग्रह स्वर्ण और रजत जड़ित झूलों पर विराजमान होकर श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में श्री लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में झूलनोत्सव में कई प्रकार की झांकियां सजाई गई हैं। यहां भगवान जानकी बल्लभ का विशेष श्रृंगार पुष्कर से मंगाए गए फूलों से किया गया। फूलों से सुसज्जित झूले में ठाकुर जी और राधा रानी की प्रतिमाएं स्थापित हुई और दूर दूर से आए भक्तों ने भगवान के दर्शन किए। राजस्थान के पाली में इन दिनों अलग अलग मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण झूले पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। यहाँ के रघुजी मंदिर में भगवान की लीलाओं को खूबसूरत झांकियों के रूप में दिखाया गया है। प्राचीन रघुनाथ मंदिर और गोपीनाथ मंदिर में झूलनोत्सव की खास सजावट दिखाई दे रही है।
1: जानकी वल्लभ जी के मंदिर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हर साल तो 5 दिन के रहते झूले, लेकिन इस बार 6 दिन के भगवान को उत्सव होगा झूले का। ये आदिकाल से सतयुग से ये रक्षाबंधन का उत्सव चलता आ रहा है, जो अभी तक भारतीय संस्कृति के अनुसार भारतीय परंपरा के अनुसार ये अलग अलग तरह के भगवान के भोग लगते हैं, भगवान की झांकियां लगती है।
0: सावन के महीने में झूलनोत्सव की रौनक ने भक्तों का उत्साह और बढ़ा दिया है। भगवान श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम के मंदिरों में तो इन दिनों आस्था उमड़ रही है। सावन माह की पूर्णिमा तक मंदिरों की रौनक इसी तरह बरकरार रहेगी और श्रद्धालुओं को झूले पर विराजमान भगवान के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। मथुरा से मदन गोपाल, अयोध्या से मयंक, फतेहपुर शेखावटी से राकेश कुमार के साथ पाली से भारत भूषण, गुड न्यूज टुडे।
2: वही मुंबई में अब गणेश उत्सव का उल्लास देखने को मिल रहा है। बप्पा की प्रतिमाएं पंडाल में लाई जा रही हैं। बड़ी संख्या में लोग गजानन के स्वागत के लिए पहुंच रहे हैं। ढोल ताशा के साथ बप्पा के आगमन का जश्न भी मनाया जा रहा है। हर गणपति प्रतिमा की अलग अलग खूबियां हैं। खेतवाड़ी के लंबोदर में बप्पा को एक किसान के रूप में दिखाया गया है।

0: गणेशोत्सव का उल्लास और हर तरफ गणपति बाप्पा के जयकारे। बाप्पा के आगमन की खुशी और उत्सव के रंग में रंगी मुंबई नगरी। गणेशोत्सव में अभी कुछ दिन बाकी है, लेकिन मुंबई में इन दिनों हर तरफ इसी पर्व के रंग बिखरे हैं। एक एक करके बाप्पा की प्रतिमाएं अपने पंडाल में विराजमान हो रही हैं। बड़ी संख्या में लोग ढोल ताशों के साथ भगवान गणेश का स्वागत करने के लिए जुटे हैं। बाप्पा की प्रतिमा के आगमन के साथ ही गणेशोत्सव के त्योहार का जश्न भी बढ़ता जा रहा है। मुंबई में पूरे साल लोग इस पर्व की प्रतीक्षा करते हैं, और जब बाप्पा की सवारी अपने पंडाल की तरफ बढ़ती है तो इस त्योहार के सबसे खूबसूरत रंग दिखने लगते हैं। ये जोश, ये उत्साह और ये खुशी भगवान गणेश के हर भक्त के चेहरे पर झलकती है। बाप्पा के पंडाल में विराजमान होने के बाद दूर दूर से लोग बाप्पा के दर्शन के लिए भी आने लगते हैं। गणेशोत्सव की औपचारिक शुरुआत भले ही 14 सितंबर को हो रही है, लेकिन इस त्योहार की रौनक तो पंडाल में अभी से दिखने लगी है। मुंबई के सबसे चर्चित गणेश पंडालों में से एक खेतवाड़ीचा लंबोदर मंडल के गणपति बाप्पा भी अपने पंडाल में पधार चुके हैं। बाप्पा की इस प्रतिमा की ऊंचाई करीब 32 फीट है और यहां भगवान गणेश को एक किसान के रूप में दिखाया गया है। समाज में एक शुभ संदेश देने के मकसद से खेतवाड़ीचा लंबोदर मंडल ने इस बार किसान बचाओ थीम पर पंडाल सजाया है।
1: तैयारी मुंबई में जोरों शोरों से शुरू है। खासियत यह है कि बड़ी बड़ी प्रतिमाएं जो हैं वो पंडालों में लानी शुरू हो गई है। मेरे पीछे आप एक सक्रिय गली देख रहे हैं, बड़ी छोटी सी गली है, इसी से उस बड़ी प्रतिमाओं को लाया गया है और पंडाल में स्थापित किया गया। खास बात यह है कि मैं जहां मौजूद हूं, इलाके का नाम है खेतवाड़ी, और यहां पर इस तरह की जो छोटी छोटी गलियां हैं कई हैं, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार, पांच, छह, सात, फिलहाल मैं चौथी गली में हूं जहां के बप्पा इस समय लाए गए हैं और विराजमान कर दिए गए हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि खेतवाड़ी के लंबोदर के दरबार में इस समय मौजूद हूं और एक दो दिन पहले ही बप्पा को यहां पर बकायदा धूमधाम से लाया गया है। देखिए कितना विशाल स्वरूप, कितना विशाल रूप बप्पा का यहां पर देखने मिल रहा है। खास बात यह है कि इस तरह से जो लंबी लंबी प्रतिमाएं गणेश जी की होती हैं उनके साथ बहुत बढ़िया बढ़िया थीम भी लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए रखी जाती है। इस बार की जो थीम है खेतवाड़ी के लंबोदर की, शेतकरी मराठी वर्ड है जिसको हिंदी में कहते हैं कि किसान। किसान अक्सर ही जो है अपने बोझ तले जो लोन लिए रहते हैं, आत्महत्या जैसी कोशिश करते हैं, ऐसी जो घटनाएं हैं उन पर रोक लगाने के लिए एक अच्छी नीयत के साथ किसान का रूप लेकर के बप्पा को यहाँ विराजमान किया गया है।
0: खेतवाड़ी चा लंबोदर पंडाल इस बार अपनी 68वीं सालगिरह मना रहा है। इस बार पंडाल को भी अलग अंदाज में सजाने की तैयारी है। यही वजह है कि बाप्पा की प्रतिमा पहले ही स्थापित कर दी गई है ताकि साज सजा का काम पूरी तसल्ली से और बेहतरीन ढंग से हो सके।
2: हम लोग हर साल कुछ न कुछ नया संदेश देते हैं, वैसे ही हम लोग इस बार किसान के ऊपर ही हम लोग ने सजेशन किया है। जैसे मोरारजी देसाई बोले थे जय जवान जय किसान, वैसे हम लोग ने नारा लगाया है। इस बार भी वही थीम है। अभी सिचुएशन करेंगे, बोर्ड ऐसा अपना नाके पे लगेगा बहुत शान से कि भाई जय जवान जय किसान।
0: मुंबई में इन दिनों एक एक करके अलग अलग इलाकों में गणपति प्रतिमाओं के आने का सिलसिला जारी है। कालाचौकी के महाराजा पहले ही अपने पंडाल तक पहुंच चुके हैं। कामराज चा महाराजा भी पंडाल में विराजमान है। जैसे जैसे गणेशोत्सव करीब आ रहा है श्रद्धालुओं का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। अब भक्तों को बेसब्री से इंतजार है गणेश चतुर्थी पूजन का, जिसके बाद 10 दिनों तक बाप्पा अपने भक्तों के बीच विराजमान रहेंगे और श्रद्धालुओं को गजानंद की आराधना का अनुपम अवसर मिलेगा। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और चलिए इंस्टा स्टोरी में अब आपको उन कलाकारों की इंस्टा रील दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने और गुदगुदाने में भी पीछे नहीं है। देखिए जिया मानिक की फनी इंस्टा स्टोरी।
4: भैया तुम्हें पता है क्यूट लोग इतने बिजी क्यों होते हैं? बाद में बताऊंगा, अभी मैं बिजी हूँ।
5: लोग अब लड़ते नहीं, बस फोटो लाइक करना बंद कर देते हैं। आजकल लड़ाई भी डिजिटल हो गई।
3: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
3: रक्षाबंधन पर देश के कई राज्यों में बहनों के लिए उपहार का ऐलान, यूपी बिहार उत्तराखंड हरियाणा राजस्थान में 27 से 29 अगस्त तक महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा। देश भर में रक्षाबंधन की तैयारियां, अकोला में राखियों से सजे बाजार, खरीदारों की लगी भीड़। झांसी में हरियाली तीज की धूम, भक्ति गीतों पर महिलाओं ने जमकर किया डांस, सरहद पर तैनात जवानों को भेजी राखियां। बूढ़ा अमरनाथ अमरनाथ यात्रा का श्रद्धालुओं का आखिरी जत्था पहुंचा पुंज। फूलों की माला से श्रद्धालुओं का स्वागत। 28 अगस्त को समाप्त होगी यात्रा। बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्म टॉक्सिक। हैदराबाद में सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए उमड़े फैंस। थिएटर के बाहर यश के लगाए गए कटआउट।

दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं कि आज का पंचांग क्या है। 26 अगस्त 2026 दिन बुधवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, प्रातः 7:59 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 26 अगस्त 2026 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य बुध और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल मिथुन राशि में और बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज तांबे की बात कर रहे हैं, कॉपर की बात कर रहे हैं। तांबा धातु का महत्व क्या है? देखिए, तांबा हमारे जीवन में प्रयोग होने वाली एक मुख्य धातु है। तांबे को औषधीय धातु यानी मेडिसिनल धातु माना जाता है। ये विद्युत का सुचालक है और तांबे के अंदर अग्नि तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ज्योतिष में तांबे का संबंध जोड़ा जाता है मंगल और सूर्य के साथ। मंगल और सूर्य की मुख्य धातु तांबे को मानते हैं। जब आप तांबे का प्रयोग करते हैं तो ये शरीर के पित्त को और वात को नियंत्रित करता है, आपके पित्त और वात को कंट्रोल करता है। तांबे के बर्तनों का, तांबे के वस्तुओं का पूजा में या पूजा जैसे कामों में बहुत प्रयोग होता है। आम तौर पर हिंदू परंपरा में जो पूजा के बर्तन, लोटा चम्मच थाली ये सब प्रयोग होते हैं, आप ज़्यादातर देखेंगे तांबे के बने हुए होते हैं, क्योंकि तांबे को सामान्यतः पवित्र धातु माना जाता है। तांबे पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष वृषभ मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में आपके

सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी, धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, काफी दौड़ भाग रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, काम की अधिकता रहेगी, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, करियर में लाभ होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। गणेश जी की अगर आप उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। अब जब हम तांबे का प्रयोग करते हैं तो तांबे का असर हमारे शरीर और हमारे ग्रहों पर किस प्रकार पड़ता है, कैसे तांबा हमारे जीवन को और हमारे शरीर को प्रभावित करता है। जब आप तांबे का प्रयोग करते हैं, तांबे के पात्र से जल पीते हैं या तांबा धारण करते हैं तो तांबे के प्रयोग से शरीर शुद्ध होता है और तांबे के पात्र का पानी पीने से शरीर से सारा विष बाहर निकल जाता है। जब आप तांबे का प्रयोग करते हैं तो ये मंगल को मजबूत करता है। तांबे के प्रयोग से मंगल मजबूत होता है और आपका रक्त शुद्ध होता है, रक्त आपका ठीक होता है। तांबे का प्रयोग करने से सूर्य भी मजबूत होता है, सूर्य भी प्रबल होता है, आपके आत्मविश्वास में, आपके उत्साह में वृद्धि होती है। जब आप तांबे का प्रयोग करते हैं तो ये आपके पाचन तंत्र को, ये आपके डाइजेशन को काफी अच्छा कर देता है, आपके पेट की दिक्कतों को दूर करता है। तांबे के पात्र का जल पीने से, तांबे का जीवन में प्रयोग करने से शरीर शुद्ध होता है और तांबे का प्रयोग करने से पेट की समस्याओं से छुटकारा मिलता है, पेट की समस्याओं से राहत मिल जाती है। तांबे के प्रयोग पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, इस समय यात्रा पर जा सकते हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।

तुला राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, करियर में समस्या हो सकती है, धन के लेन देन में सावधानी रखिएगा। हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। गणेश जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तो तांबा बड़ा चमत्कारी है हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पर तांबे का गहरा असर पड़ता है। और तांबे का प्रयोग कैसे करें कि तांबे के प्रयोग से लाभ हो, तांबे का प्रयोग कैसे करेंगे? तांबे का एक छल्ला किसी भी रविवार को या मंगलवार को अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में आपको धारण करना चाहिए। अगर आप तांबे का छल्ला अनामिका अंगुली में पहने तो इससे आपका सूर्य और आपका चंद्रमा दोनों मजबूत होगा। और तांबे का छल्ला अगर आप अनामिका अंगुली में पहने तो आपका आत्मविश्वास बेहतर होगा, आपकी साहस की स्थिति बेहतर होगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। तांबे का छल्ला या तांबे का एक सिक्का धागे में डाल करके कमर में भी पहन सकते हैं। और अगर कमर में तांबा धारण करेंगे तो इससे नाभि की समस्या में और हार्मोन्स की समस्या में सुधार होगा। जिन बच्चों को चोट बहुत लगती है या जिन लोगों को बार बार चोट लगती है, उनको छेद वाला तांबे का सिक्का लाल धागे में डालकर अपने गले में पहनना चाहिए। इसको पहनने से दुर्घटनाओं से बचाव होगा। आप रात भर एक तांबे के गिलास में या लोटे में पानी भरकर रख दें और सुबह उस जल को पिएं। तांबे के पात्र का पानी पीने से शरीर विषमुक्त होता है, शरीर की गंदगी दूर होती है और पेट संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। देखिए, तांबे के पात्र से पानी पीने से त्वचा की समस्या, पेट की समस्या, शरीर में जमे हुए विष की समस्या, ये तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं। लेकिन तांबे के पात्र से दूध या दूध वाली चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि तांबे के साथ दूध मिलकर जहर की तरह काम करता है। वो आपको स्किन की दिक्कत दे सकता है, पेट में गंभीर समस्याएं आपके हो सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन का लाभ होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर में समस्या हो सकती है, मन परेशान हो सकता है, रिश्तों का ध्यान बनाए रखें,
हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में कुछ परिवर्तन होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, अगर सूर्य की वजह से या मंगल की वजह से आपके आत्मविश्वास में, आपके कॉन्फिडेंस में, आपके साहस में कमजोरी है, तो या तो एक तांबे का छल्ला रविवार या मंगलवार को राइट हैंड की रिंग फिंगर में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में धारण करें, या तांबे का एक कड़ा बनवा लें और इसको गंगा जल से शुद्ध करके दाहिनी कलाई में अगर आप पहने तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अगर सूर्य की वजह से या मंगल की वजह से त्वचा की समस्या हो रही है, स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, तो तांबे के पात्र का जल पीना आरंभ करें। उसका जल पीने से त्वचा की और पेट की समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए क्या है लकी टिप। अगर आपकी संतान के जीवन में कोई समस्या चल रही है, संतान के जीवन में कोई परेशानी आ गई है, तो माता या पिता में से कोई भी नियमित रूप से शिवलिंग पर पीला फूल अर्पित करना शुरू कर दें। नियमित रूप से शिवलिंग पर पीला फूल अर्पित करके अपनी संतान के लिए प्रार्थना करें, उनके जीवन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब जान लेते हैं दिनांक 26 अगस्त 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर दें और घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लें। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
2: जब हमारे गुरु हमें पहली बार मिले थे 9 साल की आयु में, सन्यासी बाबा, इसी पेड़ के पास दादाजी हमारे जिंदा थे, जिन्होंने हमें साधना दी, सिद्धि दी। रात थी अंधेरी, रात के 12 या 1 बज रहे थे। हमारी मां ने गांव से हमें भेजा यहां कि तुम्हारे दादाजी बहुत जानते हैं, कुछ मांग लाओ। हम धन मांगने आए थे, झोपड़ी में बैठते थे, वो मंदिर के बगल में झोपड़ी थी हमारे गुरु की, लंबी जटा, आंखें लाल रहती थी, आंख चढ़ा के बात करते थे, बात बहुत कम करते थे, मुस्कुराते ज्यादा थे, चाय हर घंटे में पीते थे। जैसी आज बारिश हुई ऐसी बारिश थी, रात को बड़ी बारिश बरस रही थी, बादल चमक रहे थे, बिजली गिर रही थी, और हम यहां पगडंडी के सहारे, अंधेरा था, कोई लाइट वाइट तो यहां थी नहीं, अंधेरा था, यही मंदिर पर आकर के गए। अपने गुरु को हमने बात बताई कि 3 दिन से खाना नहीं बना, अब तो आप सन्यासी हो गए, पहले तो आप ग्रस्त थे, तो आपके ही नाती हैं हम, तुम्हारे बेटा के बेटा है, हालत खराब है, एक ही कुर्ता है, गांव में भी अब लोग भिक्षा नहीं देते हैं, गांव में भी लोग जाएं तो कई लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं, पिताजी हमारे कुछ कर नहीं रहे हैं, हमारी भी अवस्था बढ़ रही है, मां भी बड़ी परेशान हो रही है, कुछ दया करो, हमारे जीवन में कुछ हो जाए ठीक ठाक, कुछ दो। अंधेरी रातें काटती हैं, एक छोटा सा कमरा था, आप लोगों में से किसी ने जन्मभूमि पे हमारे जाकर के देखा होगा, एक छोटी सी जन्मभूमि जहां 5 लोगों का परिवार एक ही जगह रहता था, 5 लोग एक ही जगह रहते थे, तो छोटा सा कमरा है, आप दया करो कुछ। उस रात हमें क्या पता कि हमारे जीवन में घटना होने वाली, और ठीक रात 12 बजे हमारे गुरु ने कहा, अकेले हम और वो थे, उस दिन बड़े बिजी थे हमारे गुरु, बड़े व्यस्त थे, गांव के पास हेडपंप था, यहां नहाने की कोई सुविधा नहीं थी, बोले जाओ नहा करके आओ, और हम स्नान करके आए, हाथ में बाल्टी ली, एक फटी हुई तौलिया थी हमारे पास, उसको हमने पहना, ठंड लगने लगी, तो जो धूना गुरु ने रमा रखा था उस धुना को हम तापने लगे। रात को 12-1 बजे के बाद जहां सन्यासी बाबा की समाधि है वहां पर हमारे गुरु हमें ले गए, और 40 मिनट तक दादाजी कुछ पढ़ते रहे, पता नहीं इतना याद नहीं हमें रात का, पर कुछ पढ़ रहे थे वो, बड़ी जोर से हवा चली और हमसे उन्होंने पहले ही कह दिया था कि तुम्हें डरना नहीं, हाथ जोड़ लो, हमने हाथ जोड़ लिए, बोले डरना ना, तो ये इधर उधर हम देखने लगे, बच्चे ही थे, कभी पीछे देखे कभी आगे देखे, अंधेरा था, यहां इतना कुछ बना भी नहीं था, एक झोपड़ी भर थी, डरने लगे, तो देखा कि जो पेड़ लगा है अभी समाधि के पास पलाश का छेवला का, वो पेड़ बड़ा हिल रहा है, हमें लगा बारिश का मौसम है, हवा चल रही है इसलिए हिल रहा होगा, पर उससे बड़ी जोर जोर की एक आवाज आई, और एक कोई 16-17 फिट का लंबी जटाओं वाला, एकदम चमकती हुई त्वचा, और हाथ में एक बड़ा सा चमीटा लिए हुए, और पैर में बड़ी ऊंची खड़ाऊ पहने उतर रहा है, अब बड़े नीले रंग की एक लाइट गिरी, तो हम डर गए, हमने अपने गुरु को पकड़ा, रोने लगे, बच्चे थे तो रोना स्वाभाविक था, और इतनी लंबी हाइट का कोई देख ले, हम तो तुम रोने लगोगे, रोने लगे, तो हमने जोर से पकड़ा, हमारे गुरु ने थपकी मारी, डरो मत बात करो। और गए हम, थोड़ी देर में सांस आई, ठीक लगा तो पूछा डरते डरते कि कौन हो तुम। उसी रात जो पहली आवाज निकली थी हमारे गुरु की, वो बड़ी अजीब आवाज थी, आज भी हमारे कानों में वो गूंजती रहती है। अब वो सीधी सी आवाज थी, बड़ी करुणा से भरी हुई, मानो कोई रोता हुआ गला भरा हुआ बोल रहा हो। वो सीधी सी आवाज कि मैं तुम्हारा बड़े दिनों से इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर आंखें मिली, थोड़ा लगा कि हम पहचान गए, तो हमने कहा कि हम नहीं पहचाने। तब हमारे दादा ने बताया पीछे से कि ये तुम्हारे गुरु है पिछले जन्म के, और ये तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। और तुम्हारे जन्म होने के पहले हमारे सन्यासी बाबा ने हमारे दादा को कहा था कि रामकृपाल गर्ग के जो बड़ा बेटा होगा वो जन्म के ठीक बाद हमें दे देना। तो हमने कहा कि हमें तो पता नहीं, ये बात सही है कि हम रामकृपाल के बेटा, पर हमें कुछ याद नहीं आ रहा। थोड़ी देर बातें हुई, जब याद आई, लगभग 40 से 42 मिनट तक उस दिन बात हुई, बड़े दिनों बाद मिले थे हम अपने गुरु से, पिछले जन्म के बाद ही मिले थे। और बातें होती रही, और 40-42 मिनट बाद उनके जाने का समय आया तो वो जाने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे, वो हमारी आंखों में आंसू थे, डर तो मानो भाग गया था कोसों दूर। और जब जाने का समय आया तब हमने उनको कहा कि आप हमारे गुरु और हम आपके चेला, पिछले जन्म के भी गुरु, इस जन्म में भी आपने अब दीक्षा दे दी है तो कुछ ना कुछ तो देना चाहिए, बिना दिए जाए कैसे आप, और हम पे कुछ है ही नहीं, इस जन्म में जो जन्म हुआ वो हालत ही खराब है, पिता कुछ करते नहीं, मां की फटी साड़ी है, अंधेरा कमरा है, भोजन की भी व्यवस्था नहीं है, अब हम आपको दें तो दें क्या, पर आपने दीक्षा दी तो गुरु को कुछ ना कुछ तो देना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, हम पे कपड़े भी नहीं है कि हम कपड़े भी उतार के आपको दे दें, वो भी फटे हैं, वो भी देने योग्य नहीं, शायद इस जिंदगी हम तुम्हें खड़ाऊ भी ना पहना पाए, ये हमारी औकात नहीं है। जाते जाते हमने अपने गुरु के चरण को पकड़ा और कहा आज से हम ही तुमको अपने आप को देना चाहते, और हमारे पास कुछ नहीं है। इतना कहा कि हमारे गुरु का जो जवाब था वो जवाब आज भी काम कर रहा, जा काया तेरी माया मेरी, जा करता हुआ तू दिखाई पड़ेगा पर करूंगा मैं, जा आज से तेरे तन पर मेरा हक है, तेरे शरीर पर मेरा हक है, फिर क्या, उसके बाद फिर लौट के पीछे ना देखा। मेरे पागलो, तुम्हें भी मांगने का मौका मिले कभी बालाजी से तो संपत्ति मत मांगना, बालाजी को ही मांग लेना। हमने तो सिर्फ गुरु को मांगा, उसका परिणाम ये है, अभी अंदर हम बता ही रहे थे कि लीला देखो तुम, बालाजी की करामात देखो, जहां जिस गांव में भीख मांग के खाते थे उसी गांव में आज भंडारा चल रहा है, जलवा देखो बालाजी का, जिस गांव में सरपंच नहीं बैठाते थे उस गांव में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दर्शन करने आ रहे हैं, जलवा देखो जरा बजरंगबली का, अपनी बहन के विवाह में 20,000 रुपया उधार न मिले, आज देखो तो 365 दिन में 365 बेटियों का विवाह हो रहा है, जलवा तो देखो हनुमान जी का, 1 रुपया की कॉम्बी फिल्म गोली लेते थे बुखार आता था, आधी खा लेते थे आधी मोड़ के रख लेते थे, दोबारा में काम आई, क्योंकि ये पक्का था कि साल में एक आध बार बुखार आए और गोली काम आ जाती थी। और जलवा तो देखो हनुमान जी का, आज अस्पताल बन रहा है, जिस गांव में लोग आने से डरते थे डकैतों का राज रहता था दरवाजे पर गांव के बाहर, उस गांव का जलवा तो देखो, बालाजी की कृपा तो देखो, पुलिस लगी हुई है, अब इससे बड़ा भला क्या चमत्कार हो सकता है, इससे भला क्या लीलाएं हो सकती। हमारे गांव के बाहर ही हमें कोई नहीं पूछता था, आज विदेशों से इनविटेशन लेटर आते कि यू कम हियर, अभी हमें जापान बुलाया गया कि आप आओ, हमने भी कह दिया चिंग चौंग फैंग चौंग आई एम कमिंग। जलवा तो देखो भाई हनुमान जी के, क्या लीलाएं हो रही। जिस लंदन की संसद में हम हनुमान चालीसा पढ़ने गए, उनके कवि अंग्रेज भारत आकर के क्या क्या नाटक नहीं करते थे, और हमारे बराबर कितना उल्टा आदमी दुनिया का होगा कोई दूसरा। इतने खड़ूस आदमी हम, इतने उल्टे आदमी हम कि उन गोरों से ही हम कहते कि गोरो हे अंग्रेजो, कभी तुम हमारे देश में आकर जिन कपड़ों को पहनकर राज करते थे, आज बैंड बाजा वाले वो कपड़े पहनते हैं। उनके मुंह पे कहते हैं हम, और गजब सुनो वो ताली बजाते हैं। ये और मजा, ये और मजा है। देखो तो तुम जलवा, हाँ जलवा तो देखो। अभी हम बाली गए, अंग्रेज आए हमारे शिविर में, हमने उनको कहा कि हम तुम्हें उल्लू बना रहे हैं, अब वो ताली ठोक रहे थे। हमका बताओ इनसे बड़ा कौन उल्लू होगा, और हमारे जैसा गुरु कौन होगा जो मुंह पे कहे कि हम तुम्हें उल्लू बना रहे। कोई कह के उल्लू बनाए ऐसा गुरु होगा? अब वो कह रहे हैं कि हम बन रहे हैं। एक अंग्रेज तो बोला आई नो रिपीट रिपीट रिपीट, वो कह रहा है और उल्लू बनाओ। हमने कहा वाह भैया अजब गजब बात, ये जलवा तो देखो हनुमान जी का, पागलो। हम सिर्फ इतना चाहते तुम्हारी आंखों में आंसू न रहे, तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े। हमने तो भोग लिया, तुमको ना भोगना पड़े। इस देश में अमीरों के तो लाखों गुरु हैं, हम चाहते हम उनके गुरु बने जिनका कोई ना हो। पागलो, इस संसार में जिसने भी जन्म लिया वो दुख पाएगा। जन्म लेने का मतलब ये है कि दुख पाना है, और तुम्हें सुखी आदमी कोई कर नहीं सकता सिवा तुम्हारे। सुखी होना है तो तुम ही हो सकते, तुम्हें दूसरा कोई सुखी नहीं कर सकता। अब सुखी होने का कोई हमसे मंत्र पूछे, इतना सा छोटा मंत्र हमें आता है कि शायद आप उस पर चल पाओ तो सुखी हो जाओ, शायद आप उस मंत्र को पकड़ पाओ तो सुखी हो पाओ, शायद आपको वो मंत्र याद हो जाए तो आप सुखी हो पाओगे, शायद आपके चित्त में वो बात बैठ जाए तो सुखी हो पाओगे। और वो बात बहुत छोटी सी है, इतनी सी बात है कि अपनी जिंदगी के मालिक खुद मत बनो, अपनी जिंदगी के मालिक बालाजी को बना दिया जाए। बस इतनी सी बात, किसी कंपनी का मालिक तब टेंशन में होता है जब मालिकाना हक उसका होता है। नौकरों को चिंता नहीं होती, वेतन से लेना देना, फैक्ट्री कल बंद होती हो आज हो जाए दूसरी देख लेंगे, पर टेंशन मालिक की होती। शेयर गिरने लगे तो चिंता मालिक को होती, प्रोडक्शन कम हो जाए तो चिंता मालिक को होती। वैसे ही जब तक तुम अपनी जिंदगी के मालिक रहोगे चिंता तुम्हारी रहेगी, और जिस दिन तुम अपनी जिंदगी के मालिक परमात्मा को बना दोगे तो चिंता परमात्मा की हो जाएगी। पर एक अजीब बात है, हम लोगों के जीवन में सुख अंदर है, शांति अंदर है, और खोजी बाहर जा रही। जैसे कि मृग कस्तूरी को खोजता है वन में, रहती उसकी नाभि में पर वो खोजता वन में, वैसे ही हम लोगों का हाल है। अरब की एक बहुत प्रसिद्ध महिला हुई मुसलमानों के देश में, बड़ी ऊंची महिला हुई, बड़ी फकीर हुई, उसका नाम था राबिया। राबिया नाम की जो महिला हुई अरब में, वो बहुत पहुंची हुई थी, बड़े बड़े लोग उसके पास दर्शन करने जाते थे। तो एक रात शाम के समय एक घटना हुई, कि वो अपनी गली में घर के बाहर कुछ खोज रही थी। तो गांव के लोग आए और पूछा कि बड़ी देर से आप गली में कुछ खोज रही हो, क्या हुआ? तो उसने कहा कि मेरी जो सुई थी वो सुई खो गई है और मैं सुई को खोज रही हूं। तो गांव वाले भी लग गए, क्योंकि गांव के लोग बड़ा प्रेम करते थे उससे, और बड़ी पहुंची हुई महिला थी, बड़ा नाम था उसका। तो गांव के लोग भी सुई खोजने लगे, पर यही कोई एक घंटे हुए पर सुई ना मिली, दो घंटे हुए सुई ना मिली, और वो चिल्ला रही कि खोजो। और गांव के लोग आ गए, एक एक कोना कोना छान मारा गली का, वहां भी खोजा जहां ना खोजना चाहिए, नाले में खोजा, किनारे पर खोजा, एक एक रेत के कंकर कंकर को उठाया गया, सुई ना मिली। तो गांव वालों ने पूछा, मां आपने सुई फेंकी कहां या गिरी कहां? ऐसा कोई अंदाजा है प्रॉपर ताकि उसी एरिया भर में खोजा जाए ताकि मिल जाए? उसने कहा गिरी तो मकान में अंदर थी। तो गांव वाले सिर पकड़ के बैठ गए कि हमें तो लग रहा है तुम पागल हो गई हो। राबिया बोली, क्यों? बोली जब गिरी अंदर है तो खोज बाहर क्यों रहे हो, और तुम क्यों बाहर खोज रही जब अंदर गिरी? तो उसने कहा दरअसल उजाला अंदर नहीं था, बाहर था, इसलिए सोचा यहां खोज लू। गांव वाले बोले फिर तो और पागल हो, उजाला अंदर बाहर है तो अंदर की वस्तु बाहर मिलने का क्या मतलब है? उजाला बाहर है तो यहां सुई ना मिलेगी क्योंकि वो अंदर गिरी, वहां उजाला करो, सुई खोजो, वही मिलेगी। राबिया बोली यही तो तुम्हें कहना चाहते। गांव वाले बोले मतलब? बोले सुख अंदर है और तुम बाहर खोज रहे हो, जहां है ही नहीं वहां तुम कितना भी खोजो तुम्हें मिलेगी थोड़ी, सुई अंदर गिरी है बाहर ना मिलेगी चाहे जितना खोजो। वैसे ही सुख और शांति बाहर है ही नहीं तो तुम्हें मिलेगी कहां से? है तो वो अंदर, जब अंदर खोजा जाएगा तो मिलेगी। और मेरे पागलो, उस शांति और सुख का एक नाम है, वो बड़ा प्यारा नाम है, और चाहो तो तुमसे बड़ा कोई अमीर ना होगा दुनिया में, यदि तुम बनना चाहो तो, नहीं बनना चाहते हो तो बहुत बड़ी आदमी, यदि तुम बहुत अमीर आदमी बनना चाहते हो तो उसका भी हमारे पास बहुत अच्छा मंत्र है। अब वो ये है, जो भी तुम्हारे पास अभी है उसी में संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि तुम पर जो अभी है उसको पाने के लिए भी करोड़ों लोग लाइन में लगे, लाखों लोग लाइन में लगे। तुम पे आंखें हैं और लाखों लोग ऐसे हैं जिनके आंखें नहीं है। अब हुए तुम अमीर के नहीं, तुम पर परिवार है, लाखों लोग ऐसे हैं कि जिनके परिवार नहीं। तुम पर खाने के लिए थोड़ी व्यवस्था है, लाखों लोग ऐसे हैं कि जो भीख मांग के खाते। तुम्हारे पास चलने के लिए पांव है, लाखों लोग ऐसे हैं जिन पर पैर ही नहीं। तुम उन्हें मत देखो जो हवा में उड़ रहे हैं, तुम उन्हें देखो जो नीचे घिसट रहे हैं। तुम पाओगे तुमसे ज्यादा अमीर दुनिया में कोई नहीं, और पूरी दुनिया में आदमी दुखी ही इसीलिए कि उसके पास जो है उसकी कद्र नहीं कर रहा, और जो है नहीं उसकी इज्जत कर रहा। पड़ोसी की घास ज्यादा हरी नजर आती, खुद की कम। पड़ोसी की गाड़ी ज्यादा चमकती, खुद की कम। दूसरों की लुगाई या दूसरों का पति बड़ा समझदार और बढ़िया लगता है, खुद की और खुद का। ये भावना ही तुमको गरीब बनाए।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
2: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
5: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
1: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
1: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
8: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
1: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
9: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
9: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना क्या मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था,
11: सब पलंग पे ही हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
1: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
12: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
13: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब देखो मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
14: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
15: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
1: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
16: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
1: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
17: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
1: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
8: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेंपरेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेंपरेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
18: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
3: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था। पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
19: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी। पर जब से ये फौजी 360 लिया है, कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
20: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
2: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
20: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
0: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है तकरार तो कहीं नए रिश्ते की शुरुआत। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: यूपी में 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को फ्री बस यात्रा की सौगात। सीएम योगी ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का किया शुभारंभ, बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रक्षाबंधन पर

0: जमकर किया डांस, सरहद पर तैनात जवानों को भेजी राखियां। देश भर में जन्माष्टमी की तैयारियां तेज, दिल्ली के इस्कॉन मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। 4 सितंबर को मनाया जाएगा भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का श्रद्धालुओं का आखिरी जत्था पहुंचा पुंज, फूलों की माला से श्रद्धालुओं का किया गया स्वागत। 28 अगस्त को समाप्त होगी यात्रा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
0: देश भर में रक्षाबंधन को लेकर तैयारियां तेज, दिल्ली में स्वदेशी और हाथ से बनी राखियां तैयार करने में जुटी महिला उद्यमी और स्थानीय कारीगर। इस साल बाजारों में विकसित भारत, नारी वंदन, आत्मनिर्भर भारत जैसी नई थीम वाली राखी आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी। महिलाएं रंग बिरंगे धागों मोतियों से सजा रही हैं राखियां। रक्षाबंधन से पहले दिल्ली समेत देश भर के बाजारों में खरीदारी तेज, इस साल रक्षाबंधन पर 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार होने की उम्मीद। आगरा में नेचुरल स्टोन से निर्मित राखियां बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र, सफेद संगमरमर और रंग बिरंगे पत्थरों का इस्तेमाल करके बनाई जा रही राखियां। इन राखियों को अपने हाथों से तराशते हैं आगरा के पारंपरिक कारीगर, जिससे प्रत्येक राखी का डिजाइन अपने आप में होता है अनोखा। रक्षाबंधन के पवित्र मौके पर देश भर से सरहद पर तैनात जवानों को भेजी जा रही है राखियां। उधमपुर के छात्रों ने अपने हाथों से तैयार की सैनिकों के लिए विशेष राखियां। राखी के साथ छात्रों ने देश की सुरक्षा में तैनात फ्रंट लाइन जवानों के लिए अपने हाथों से ग्रीटिंग कार्ड भी तैयार किए, देश की रक्षा के लिए जताया उनका आभार। रक्षाबंधन से पहले झांसी की बहनों का सैनिक भाइयों को खास तोहफा, 500 राखियों के साथ भेजा स्नेह भरा संदेश। हरियाली तीज का कार्यक्रम किया गया था आयोजित, जिसमें महिलाओं ने राखी तैयार करने के साथ साथ भक्ति गीतों पर जमकर डांस भी किया। जवानों के प्रति कृतज्ञता के भाव से तैयार की गई हैं ये खास राखियां। भाई बहन के इस पवित्र त्योहार पर परिवार से दूर देश की सीमाओं पर तैनात जवान भी मना सके त्योहार। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में सावन के आखिरी और सबसे खास लहरिया घटा सजाई गई, नीले पीले रंग से सजा मंदिर भक्तों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बना। लहरिया घटा में ठाकुर द्वारकाधीश अपने परिवार और सखाओं के साथ 9 विशेष झूलों पे विराजते हैं। भक्तों ने श्रद्धा के साथ ठाकुर जी को झूला झुलाया। मंदिर परिसर में फव्वारे, गांव की सीनरी, बंदरों के कटआउट्स और मोर की सजावट की गई। विशेष तौर पे रंग बिरंगी सजावट ने पूरे मंदिर को बेहद सुंदर बना दिया। ठाकुर जी की लहरिया घटा के दर्शन के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। शाम 7 से 8 बजे तक मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। सावन में मंदिर में अलग अलग रंगों और रूपों की गई घटाएं सजाई गई। लहरिया घटा के साथ अब सावन की घटाओं का भव्य समापन हो गया। जन्माष्टमी को लेकर दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में भव्य तैयारियां। 4 सितंबर को मनाया जाएगा भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव। जन्माष्टमी से पहले मंदिर को सजाने, संवारने और रंग रोगन का काम लगातार जारी, जगह जगह लगाए जा रहे हैं पंडाल। आज से शुरू हो जाएगा कृष्ण जन्मोत्सव का यह कार्यक्रम। शोभा यात्रा में गूंजेगा हरि नाम संकीर्तन। मंदिर परिसर में लगातार जारी भजन कीर्तन का कार्यक्रम, इस साल 5 लाख से ज्यादा भक्तों के आने की यहां पर उम्मीद। 4 सितंबर को मुख्य आयोजन में भगवान को लगेगा 251 से अधिक व्यंजनों का भोग, आधी रात तक होंगे भगवान के दर्शन। केरल में शहर ओणम की धूम, 10 दिनों तक मनाया जाता है फसल का त्योहार ओणम। केरल के पथानमथीटा में ओणम उत्सव से जुड़ी पवित्र और ऐतिहासिक नाव थिरुवोना थोनी रवाना, पारंपरिक भोज ओणम संध्या के लिए आवश्यक सामग्री लेकर निकली है ये नाव। ओणम उत्सव के दौरान इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बनने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे यहाँ पे श्रद्धालु। पूरी श्रद्धा के साथ नाव को किया गया रवाना। महाबली की कथा से जुड़ी है ये सदियों पुरानी परंपरा, जिसमें मंदिर के लिए भेजी जाती है आवश्यक खाद्य सामग्री और रसद।

बरनमुला मंदिर में ओणम के खास भोज के लिए रसोई की तैयारियां जोरों पर। इस पारंपरिक भोज को लेकर मंदिर परिसर में खास उत्साह। केरल के तिरुवनंतपुरम में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। तिरुवोणम दिवस पर श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में एकत्रित हुए भक्त। इस पवित्र दिन पर भगवान के दर्शन पाने के लिए मंदिरों में भक्तों का लगातार मंदिर में की गई विशेष तौर पर सजावट। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी किया गया आयोजन। 10 दिवसीय ओणम उत्सव का 10वां और सबसे महत्वपूर्ण दिन है तिरुवोणम दिवस। दैत्य राज महाबली का अपनी प्रजा से धरती पर आकर मिलने की है मान्यता। केरल के वायनाड में लगी फूलों के अंबार, आज ओणम के 10वें दिन पूजा के लिए रंग बिरंगे फूलों की बंपर डिमांड। तिरुवोणम दिवस पर घरों के आंगन में फूलों की सुंदर और बड़ी रंगोली सजाने की है परंपरा। पुक्कलम कहलाती है घरों में बनने वाली खास फूलों की रंगोली। पुडुचेरी में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है ओणम का त्यौहार। मलयाली समुदाय द्वारा बड़े हर्षोल्लास से पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। स्कूल कॉलेजों में सजाए गए फूलों से सुंदर पुक्कलम, कई जगह फूलों की रंगोली बनाने का कॉम्पिटिशन। ओणम के मौके पे महिला कॉलेज में छात्राओं ने पेश किए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम। नजर आए केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत। पूरी स्थित प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मंगला आरती के साथ सुबह की हुई शुरुआत। वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद और घंटियों से गूंजा पूरा मंदिर परिसर। इस पावन मेला में भगवान जगन्नाथ बलभद्र देवी सुभद्रा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और दूर दूर से आते हैं। यहाँ पे भक्त महाप्रभु के जयकारों से गूंजा पूरा मंदिर परिसर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद मिलाद उन नबी की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अवसर समाज में एकजुटता और खुशियां बढ़ाने का मौका है। दिल्ली में ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर जुलूस से मोहम्मदी आयोजित, हजारों लोग उसमें शामिल। मुंबई में ईद मिलाद उन नबी पर लोगों ने अदा की नमाज। इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है ये दिन। श्रीनगर में हजरत बल दरगाह पे ईद मिलाद उन नबी पर लोगों ने नमाज अदा की, चारों तरफ सुंदर सजावट। छतरपुर में ईद मिलाद उन नबी का जश्न, सुंदर सजावट के बीच रोशनी से जगमगाती दिखी सड़कें। दिल्ली में लक्ष्मी योजना का हुआ शुभारंभ, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जारी की 2500 रुपए की पहली किस्त। योजना के तहत लगभग 4000 महिलाओं को दी गई ये किस्त, करीब 6 लाख से ज्यादा महिलाओं ने अब तक किया इसके लिए रजिस्ट्रेशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का किया शुभारंभ। यूपी में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा की मिलेगी इससे सुविधा। रक्षाबंधन के खास अवसर पर माताओं, बहनों और बेटियों के लिए योगी सरकार का विशेष उपहार, महिलाओं के लिए उपलब्ध रहेंगी यूपी रोडवेज की विशेष बसें। उत्तर प्रदेश में श्रमिकों के लिए नियुक्ति पत्र अनिवार्य, हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच। दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई रॉकिंग स्टार यश की फिल्म टॉक्सिक। फिल्म में यश के साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मणी वसंत आ रही हैं नजर। टॉक्सिक के साथ सिल्वर स्क्रीन पे यश ने 4 साल बाद की है वापसी। इससे पहले साल 2022 में ब्लॉकबस्टर फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 में नजर आए थे यश। सिद्धार्थ मल्होत्रा, तमन्ना भाटिया की अपकमिंग फिल्म द वन का धमाकेदार टीजर जारी, 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी ये फिल्म। प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी फिल्म है जिसका ट्रेलर हुआ रिलीज। इमरान हाशमी की फिल्म गनमास्टर G9 का टीजर हुआ रिलीज। इमरान हाशमी के साथ मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे जेनेलिया देशमुख और अपार शक्ति खुराना, 27 नवंबर को रिलीज होगी ये फिल्म। बीजिंग में ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने पहली बार रस्सा कशी में अपना दम दिखाया। दो रोबोट की टीमें आमने सामने थी और 3 राउंड तक चला ये मुकाबला। रोबोट्स को उनके वजन के हिसाब से 2 वर्गों में बांटा गया। हल्के और भारी रोबोट्स ने अपनी अपनी कैटेगरी में मुकाबला दिखाया। रोबोट्स फुटबॉल और रेस जैसे इंसानी खेल भी खेल रहे हैं। इन खेलों का मकसद ये दिखाना है कि रोबोट असली इंसान की तरह कितना काम कर सकते हैं। रोबोट्स को फैक्ट्री, रेस्टोरेंट और ऑफिस जैसे माहौल में भी परखा गया। मुश्किल हालात और इमरजेंसी में काम करने की उनकी क्षमता भी जांची गई। वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में कुल 51 इवेंट रखे गए, आज होगा इवेंट का समापन। रोबोट ने लगाई 3.4 मीटर की जबरदस्त छलांग। बीजिंग की टीम के टियांगोंग अल्ट्रा रोबोट ने हाई जंप में बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 3.4 मीटर की ऊंचाई पार कर टियांगोंग अल्ट्रा ने अपना ही पुराना रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। रोबोट की इस छलांग ने सभी को हैरान कर दिया। इस मुकाबले में रोबोट की ताकत और बैलेंस की हुई कड़ी परीक्षा, महीनों से चल रही जोरदार प्रैक्टिस का मिला फल। बीजिंग में रोबोट का जबरदस्त जलवा। ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में गैलेक्सी AI ने फ्लोर एक्सरसाइज का जीता खिताब। रोबोट केंगो ने 3 मिनट में 10 खतरनाक मूव्स दिखाए। 360 डिग्री का बटरफ्लाई किक देखकर जज भी हैरान रह गए। नासा के एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन और ESA की सोफी स्पेस वॉक पर निकले। दोनों ने स्पेस स्टेशन के बाहर तेज इंटरनेट जैसे डेटा कनेक्शन वाली एंटीना पर काम किया। अनिल मेनन और सोफी एडेनो ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर किया काम। उनका मकसद धरती और स्पेस स्टेशन के बीच डेटा भेजने वाला सिस्टम पूरा करना था। स्पेस स्टेशन पे लगाया जा रहा है एंटीना हाई स्पीड, डेटा भेजने में करेगा मदद। इससे नासा के ह्यूस्टन कंट्रोल सेंटर और स्पेस स्टेशन के बीच तेजी से जानकारी पहुंचाई जा सकेगी। स्पेस वॉक के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने खास एंटीना लगाने का काम आगे बढ़ाया। ये एंटीना स्पेस स्टेशन और धरती के बीच तेज संपर्क की अहम कड़ी बनेगा। स्पेस स्टेशन से लगातार तस्वीरें और दूसरी अहम जानकारी धरती पर भेजी जा रही है। नया हाई स्पीड एंटीना इस डेटा ट्रांसफर को और भी बेहतर बनाएगा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है तकरार तो कहीं नए रिश्ते की शुरुआत। दोपहर 1:28 से 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
3: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है वादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है, तो सुनिए इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूँ। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा, जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूर्यकंद, यह है सूर्यकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो, सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, ये है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: उत्तर प्रदेश में 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को फ्री बस यात्रा की सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का किया शुभारंभ। बसों को हरी झंडी दिखाकर किया उन्हें रवाना। रक्षाबंधन पर देश के कई राज्यों में बहनों के लिए उपहार का ऐलान। यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान में 27 से 29 अगस्त तक महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा। देश भर में रक्षाबंधन की तैयारियां। अकोला में राखियों से सजे बाजार, खरीदारों की लगी भीड़। झांसी में हरियाली, तीज की धूम, भक्ति गीतों पर महिलाओं ने जमकर किया डांस। सरहद पर तैनात जवानों को भेजी राखियां। देश भर में जन्माष्टमी की तैयारियां तेज। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा। 4 सितंबर को मनाया जाएगा भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन के त्योहार और चंद्र ग्रहण की। देखिए, बड़ा संयोग है कि जिस दिन राखी बांधी जाएगी उसी दिन करीब 5 घंटे का चंद्र ग्रहण भी है। साल का ये आखिरी चंद्र ग्रहण है, और ऐसे में क्या राखी के त्योहार पर इसका कोई असर पड़ने वाला है, और क्या ग्रहण की वजह से राखी बांधने का मुहूर्त वो बदलेगा? इन सवालों को लेकर लोगों के मन में तमाम तरीके की उलझने हैं, इसलिए आज हम आपको ग्रहण के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। और इसके बाद हम आपको ये भी समझाएंगे कि इस साल राखी पर कौन से शुभ योग बन रहे हैं, और ग्रहों की चाल की वजह से ये राखी क्यों इतनी ज्यादा खास बताई जा रही है। देखिए, बात करेंगे 28 अगस्त को राखी बांधने के सबसे शुभ मुहूर्त की, और दिखाएंगे सोने और चांदी की राखियां। बदलते दौर में परंपरा और प्यार के साथ प्रीमियम लुक वाली ये राखियां काफी ज्यादा डिमांड में है। आपको राजस्थान की थेवा कला में बनी शानदार रॉयल राखियां भी दिखाएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं ग्रहण से। तो राखी के त्योहार पर इस बार एक खास संयोग बनने जा रहा है। 28 अगस्त को भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन मनाया जाएगा, और इसी दिन साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भी लगेगा। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि क्या ग्रहण की वजह से राखी का त्यौहार प्रभावित होगा, इसका कोई असर पड़ने वाला है राखी के त्यौहार पर, क्या सूतक मान्य होगा, और भाई की कलाई पर राखी बांधने का शुभ समय आखिरकार क्या रहेगा, शुभ मुहूर्त क्या है। तो चलिए ऐसे में इन तमाम सवालों के जवाब और चंद्र ग्रहण से जुड़ी जानकारी आपको दे देते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में।

0: नीली पीली लाल गुलाबी रंग बिरंगी राखी। छोटे के लिए खिलौने वाली, बड़े के लिए डिजाइनर वाली। कोई चांदी से बनी है, कोई मोती जड़ी है। कोई ट्रेडिशनल, कोई इमोशनल, तो कुछ मॉडर्न या कहें जेन ज़ी टाइप। बाजार में राखियों की रौनक है, घरों में त्योहार का उत्साह। साल भर बहनें जिसका इंतजार करती हैं, वो दिन करीब है। 28 अगस्त को भाई के माथे पर तिलक लगाकर कलाई पर प्यार का धागा बांधा जाएगा। लेकिन एक वजह से इस साल राखी खास हो गई है। संजोग ऐसा कि रक्षाबंधन पर ही यानी शुक्रवार को साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, यानी जब राखी का त्योहार मनाया जाएगा तब ग्रहण होगा जो 5 घंटे 39 मिनट तक रहेगा।
1: इस साल रक्षाबंधन का पर्व एक खास खगोलीय संयोग के साथ आ रहा है। 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन है और इसी तारीख को अंशिक चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। इसलिए स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में ये सवाल है कि ये ग्रहण रक्षाबंधन के पर्व को प्रभावित करेगा।
0: एक तरफ कलाई पर राखी का धागा, तो दूसरी तरफ आसमान में चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया। तो फिर त्योहार कब मनेगा? चंद्र ग्रहण का समय सुबह से दोपहर तक है और इसी दौरान रक्षाबंधन की पूर्णिमा भी रहेगी। स्वाभाविक है कि इस संयोग को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। उलझन इस बात को लेकर है कि क्या ग्रहण के साए में राखी बांधना शुभ होगा, क्या ग्रहण का सूतक भारत में मान्य होगा, क्या चंद्र ग्रहण की वजह से रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त में कोई बदलाव होगा। इस साल रक्षाबंधन की तिथि को लेकर भी थोड़ी बहुत माथापच्ची है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त की सुबह करीब 9:08 से शुरू होकर 28 अगस्त की सुबह करीब 9:48 तक रहेगी। लेकिन उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का पर्व शुक्रवार 28 अगस्त 2026 को ही मनाया जाएगा। यानी 28 अगस्त की सुबह पूर्णिमा भी रहेगी, राखी का त्योहार भी होगा और उसी दौरान चंद्र ग्रहण भी होगा। लेकिन जानकार मान रहे हैं कि इस चंद्र ग्रहण से चिंता वाली कोई बात नहीं। 28 अगस्त को ग्रहण सुबह 6:55 से शुरू होगा और दोपहर 12:30 खत्म होगा, पर यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। बेशक अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्सों में चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा, लेकिन भारत में उसी समय रक्षाबंधन का पर्व पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाएगा।
1: वैज्ञानिक रूप से चंद्र ग्रहण सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक विशेष स्थिति के कारण होने वाली एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है। वहीं ज्योतिषियों के अनुसार ग्रहण के प्रभावों का आंकलन ग्रहों की स्थिति, राशि और नक्षत्र आदि के आधार पर किया जाता है। दुनिया के जिन हिस्सों में ये ग्रहण दिखाई देगा, वहाँ लोग इसका प्रत्यक्ष खगोलीय अनुभव कर पाएंगे।
0: अब रही बात सूतक काल की, तो यस्य दृश्यम तस्य फलम, मतलब ग्रहण जहाँ आँखों से दिखाई देता है वहीं सूतक काल धार्मिक निषेध और उसके अशुभ प्रभाव मान्य होते हैं। चूँकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में सूतक काल नहीं लगेगा। मंदिर के कपाट बंद करने, भोजन वर्जित रखने या शुभ कार्यों को रोकने जैसे नियम भी लागू नहीं होंगे।
1: यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए भारत में इसे लेकर वही ग्रहण संबंधी धार्मिक प्रभाव नहीं माने जाएंगे जो किसी दिखाई देने वाले ग्रहण के समय माने जाते हैं। ऐसे में केवल ये संयोग को देखकर डरने की जरूरत नहीं है। रक्षाबंधन का मूल भाव प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का है, इसलिए इस दिन रिश्तों को मजबूत करना और सकारात्मक भाव रखने पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए भारत में रक्षाबंधन के सामान्य धार्मिक अनुष्ठानों पर ग्रहण के कारण कोई विशेष रोक नहीं मानी जाएगी। इस बार सबसे ज्यादा भ्रम इसी बात को लेकर है कि अगर 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण है तो क्या रक्षाबंधन से पहले भारत में सूतक काल लग जाएगा। सामान्य भारतीय धार्मिक पंचांग परंपरा के अनुसार भारत में इस चंद्र ग्रहण के लिए सूतक काल मान्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए भारत में रक्षाबंधन के दिन केवल ग्रहण के नाम पर पूजा पाठ रोकने, मंदिर बंद करने या सामान्य धार्मिक गतिविधियों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है।
0: यानी मन में कोई शंका या सवाल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रक्षाबंधन पर ग्रहण का साया नहीं माना जाएगा। इसलिए बहनें 28 अगस्त को दिन भर शुभ मुहूर्त में अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। राखी की तारीख भी तय है और ग्रहण को लेकर तस्वीर भी साफ है। तो अब आपको बताते हैं कि राखी बांधने का शुभ समय कौन सा है। असल में रक्षाबंधन पर भद्रा को लेकर भी विशेष सावधानी बरती जाती है, क्योंकि भद्रा में मांगलिक और शुभ कार्य नहीं किया जाता। पर इस साल 27 अगस्त को भद्रा का प्रभाव सुबह 9:08 से रात 9:32 तक रहेगा। यानी 27 अगस्त की रात तक भद्रा का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। मायने ये कि 28 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाने में भद्रा की बाधा नहीं रहेगी। यही कारण है कि बहनें 28 अगस्त को अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मना सकती हैं। फिर भी जानकारों की राय है कि 28 अगस्त की सुबह 6:23 से 9:48 तक का समय राखी बांधने के लिए सबसे शुभ है। ध्यान ये रखना है कि सुबह 10:12 से दोपहर 12:20 तक राहु काल होगा, जिसमें राखी नहीं बांधनी चाहिए। इसके अलावा आप पूरे दिन राखी बांध सकते हैं।
2: सूर्योदय से लेकर 9:48 तक पूर्णमासी का समापन होने तक पूर्णतया सबसे सुंदर शुभ मुहूर्त है। इस बीच में रक्षा सूत्र अपनी भाई को बांध सकती है बहनें।
0: अगर सुबह और दोपहर में राखी बांधना संभव नहीं है तो शाम के समय भी करीब 7 राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड डेज टुडे।
3: रक्षाबंधन की तैयारी तो आप सबने कर ही ली होगी। देखिए, वैसे रक्षाबंधन पर भाई की कलाई सजाने के लिए बाजारों में इस बार राखियों की अनोखी रेंज देखने को मिल रही है। बात जयपुर की करें तो जयपुर में करीब 400 साल पुरानी थेवा कला ने राखी को शाही अंदाज दे दिया है। सोने की परत, रंगीन कांच और चांदी से तैयार ये राखियां परंपरा के साथ आधुनिकता का भी मेल है। वहीं सूरत में गाय के गोबर और लकड़ी से बनी इको फ्रेंडली राखियां भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही हैं। यानी कहीं सोने चांदी की है तो कहीं प्रकृति से जुड़ी सादगी

0: सोने की चमक, चांदी की खनक, कहीं डायमंड का ग्लैमर तो कहीं मोतियों की नजाकत। भाई की कलाई के लिए इस बार बाजार में एक से बढ़कर एक राखी है, लेकिन इसी चमक दमक के बीच एक राखी ऐसी भी है जो आपको चौंका देगी। न सोना न चांदी, बल्कि गाय के गोबर और लकड़ी से तैयार, यानी एक तरफ शान और शौकत तो दूसरी तरफ सादगी और प्रकृति से जुड़ाव। राखियों की इस रेंज में हर पसंद का रंग है और हर धागे में भाई बहन के रिश्ते की खास मिठास। रिश्तों की डोर जब प्यार से बंधती है तो उसमें सिर्फ धागा नहीं होता, भावनाएं होती हैं, यादें होती हैं और अपनों के लिए कुछ खास करने का जज्बा होता है। रक्षाबंधन पर इसी एहसास को इस बार बाजार ने एक नया अंदाज दिया है। कहीं 400 साल पुरानी राजस्थान की फेवा कला सोने चांदी के साथ भाई की कलाई तक पहुंच रही है, तो कहीं गाय के गोबर और लकड़ी से तैयार राखी पर्यावरण और परंपरा का संदेश दे रही है, यानी एक ही त्योहार में शाही चमक भी है और मिट्टी से जुड़ी सादगी भी। जयपुर के बाजारों में इस बार राखियों की दुनिया काफी रंगीन नजर आ रही है। सोने चांदी और डायमंड से सजी डिजाइनर राखियों की मांग बनी हुई है। सोने के दाम बढ़ने के बावजूद बहनों का उत्साह कम नहीं हुआ है। दुकानों पर अलग अलग डिजाइन तैयार किए जा रहे हैं ताकि भाई की कलाई पर इस बार कुछ खास नजर आए। लेकिन इन चमकदार राखियों के बीच राजस्थान की करीब 400 साल पुरानी थेवा कला ने अपनी अलग पहचान बनाई है। प्रतापगढ़ से निकली ये पारंपरिक कला अब आधुनिक डिजाइन के साथ राखियों में दिखाई दे रही है।
1: देश भर में रक्षाबंधन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। एक तरफ बहनें अपने भाई के लिए सबसे सुंदर सबसे प्यारी राखी ढूंढ रही हैं, तो वही भाई मार्केट में अपनी बहन के लिए सबसे खूबसूरत तोहफे की तलाश में हैं। अगर मैं कहूं कि जयपुर में एक ऐसी जगह है जहां पे राखियां भी मिलेगी और उसी के साथ में बहुत ही खूबसूरत तोहफे भी मिलेंगे, और वो भी आम तोहफे या फिर आम राखियां नहीं, 400 साल पुरानी ठेवा कला से बनी हुई सोने की जो राखियां हैं वो, और साथ ही में चांदी की भी बहुत खूबसूरत राखियां हैं वो इस जगह पे मिलेगी। और सोने के भाव क्योंकि अभी आसमान छू रहे हैं, तो ये जो सोना है वो इतना महंगा नहीं होने वाला है। इनकी जो कीमत होगी वो असल में जो सोने की राखियां मिलती हैं उसके 1/10 कही जा सकती है, क्योंकि इसमें काम बहुत ज्यादा है पर सोने की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम इस्तेमाल की जाती है, बजट फ्रेंडली है। और यही ऑप्शंस ज्वेलरी में भी अवेलेबल है, और ऐसी ज्वेलरी जो कि सभी भाई जो हैं वो अपनी बहनों के लिए ले सकते हैं, उनको गिफ्ट कर सकते हैं। राखियां मैं एक बार दिखाऊंगी कितनी खूबसूरत ये राखियां हैं। थेवा कला इसको कही जाती है, प्रतापगढ़ से आई है, 400 साल पुरानी कला है जो कांच के साथ बनती है, इसके ऊपर सोने का काम है।
0: थेवा कला में बेहद पतली सोने की परत को रंगीन कांच के साथ जोड़ा जाता है। इसके आधार में कांच और चांदी का इस्तेमाल होता है, जबकि सोने की मात्रा बहुत कम रहती है। इसी तकनीक की वजह से असली सोने की खूबसूरती वाली ये राखियां सामान्य गोल्ड ज्वेलरी के मुकाबले कम कीमत में तैयार की जा सकती हैं।
1: क्या ये इनोवेशन है, कैसे काम होता है और राखियों में किस तरीके से आप इसको लेके आई है?
2: जी, राखियां जो है हमेशा एक बहनों के लिए बड़ा उनके प्यार का बंधन होता है भाइयों का, तो एक स्पेशल उस हमने चाहा कि राखी खाली भाई एक ही दिन नहीं पहने, जो भी बहन उसको गिफ्ट करे वो पूरे साल पहने, तो इसलिए हम थेवा के साथ में नए इनोवेशन लेके आए हैं जिसमें वो अपने भाई का नाम भी डाल सकती है। कुछ आपको अगर किसी स्पिरिचुअल कोई भगवान को मानते हैं, गणेश हो गया, शिव जी हो गया, ओम हो गया, साथिया हो गया, हर तरह के पैटर्न की राखियां हैं।
0: यानी भाई की कलाई पर सोने का स्पर्श भी और जेब पर अपेक्षाकृत कम बोझ भी। इनकी खासियत सिर्फ खूबसूरत डिजाइन तक सीमित नहीं है। ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार कांच का रंग, आकृति, स्टोन, चेन और धागा चुन सकते हैं। रुद्राक्ष, देवी देवताओं की आकृतियां और दूसरे आध्यात्मिक प्रतीकों को भी डिजाइन में शामिल किया जा रहा है।
1: आप अपनी पसंद से बनवा सकते हैं, जैसे भी आप चाहें, तो आप इनको डिजाइन बता सकते हैं। ओम इसमें लिखा है, आप कोई और भगवान या फिर अपने भाई के नाम का इनिशियल भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे रुद्राक्ष है वैसे ही अलग अलग टाइप की बीड्स लग सकती हैं, बाद में चेंज किया जा सकता है, कलर अपने हिसाब से, चेन अपने हिसाब से, तो एक पर्सनलाइज जो टच होता है वो इन राखियों में आप कर सकते हैं। लाल कलर का कांच इसमें इस्तेमाल किया गया है, आप चाहे तो हरा या नीला भी कर सकते हैं। मैम आप ये बताइए कि किस किस तरीके से कस्टमाइज की जा सकती है, ये जो मेन इसका वो है आपने मुझे बताया था पेंडेंट भी बन सकता है, तो किस तरीके से क्या हो सकता है?
2: जैसे ये अभी ओम है तो अपन चाहे तो इसको पूरा यहाँ से निकाल के ब्रेसलेट पेंडेंट भी बना सकते हैं। इसके कलर ऑप्शन चेंज कर सकते हो, ग्रीन, व्हाइट, ब्लैक, इसके शेप अपन चेंज कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपको इसका पूरा बड़ा राउंड में चाहिए, स्क्वायर में चाहिए, ट्रायंगल में चाहिए, कोई भी शेप इसके अंदर आ सकता है। तो इस तरह से हम पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज सारे ऑप्शंस देते हैं।
1: अच्छा, सोना बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है और आपने बताया कि 1/10 प्राइस ही पड़ता है, कैसे इसकी बनावट है कि उसकी जो कीमत है वो इतनी कम हो जाती है?
2: इसकी बनावट ये है कि इसमें गोल्ड यूज होता है, बिल्कुल प्योर सोना, ऑथेंटिक गोल्ड ही यूज करते हैं, लेकिन एक पतली सी परत सोने की होती है, शीट होती है, उसको बारीकी से नक्काशी करते हैं और फिर रंगीन कांच के साथ उसको फ्यूज किया जाता है हीट एंड प्रेशर के साथ। एंड ये जो फ्यूजन टेक्निक है दिस इज अ वेरी सीक्रेट, एक सीक्रेट कला है ये। कुछ 15 से 20 कारीगर ही है जो इस कला को करते हैं, तो डिजाइनिंग हम करके पूरा उनसे बनवाते हैं। पीछे जो इसका कवर है वो पूरा चांदी का होता है, गोल्ड प्लेटिंग में होता है, तो इसीलिए ये एक बहुत खास सोना, चांदी और हैंडवर्क का एक नायाब नमूना ही कहो आप।
0: जयपुर की ज्वेलर विनीता मालवीय थेवा की इस पारंपरिक तकनीक को नए नए प्रयोगों के साथ आगे बढ़ा रही हैं। खास बात ये है कि राखी में चेन जोड़कर इसे बाद में पेंडेंट की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी त्योहार गुजरने के बाद भी ये खूबसूरत निशानी अलमारी में बंद नहीं होगी।
1: तो राखियों के बारे में आप
2: जी, सिल्वर राखियों में अभी हमने इसलिए सिल्वर में भी कस्टमाइज राखियां काफी सारी बनवाई है, भाई के नाम से, कृष्ण जी के नाम से, सारे भगवान के नाम से, ताकि एक अगर सिल्वर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते तो आपको पता है सिल्वर भी आजकल कोई कम तो रहा नहीं है, सिल्वर इन्वेस्टमेंट भी बड़ी है, 2.25 लाख आज चांदी है, तो नेक्स्ट ईयर 3 लाख 4 लाख जो भी है चांदी के भाव। तो ये भी चीज एक ऐसी हमेशा साथ में रखने वाली, ये नहीं कि भाई ने आज पहनी और कल वो राखी डस्टबिन में जाएगी, नहीं, उसको भाई हमेशा पहनेगा।
0: रक्षाबंधन की खरीदारी सिर्फ भाइयों तक नहीं रुकी है, गिफ्टिंग के लिए नेक पीस, रिंग, इयररिंग्स, ब्रेसलेट, मांग टीका और कई दूसरे ज्वेलरी पीसेस भी पसंद किए जा रहे हैं। चांदी और गोल्ड प्लेटेड सिल्वर के विकल्प भी मौजूद हैं, जो देखने में आकर्षक हैं और बजट का ध्यान रखते हैं।
1: बहनों की जब हमने बात कर ही लिए तो भाइयों का भी काम आसान किया जाए, यहाँ पे ना ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जब बहन सोने की या फिर चांदी की राखी लेके आ रही है तो जाहिर सी बात है कि भाई को भी उतना अच्छा तोहफा देना ही पड़ेगा। तो ऐसे में हमारे पास में यहाँ पे चांदी के बहुत सारे जो बहुत ही डेलिकेट पर बहुत ही मिनिमल ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे मौजूद है, कई सारी चेन्स हैं, कलरफुल ऑप्शंस हैं, इनके बारे में जानेंगे। क्या कुछ ऑप्शंस हैं गिफ्टिंग के लिए?
2: गिफ्टिंग के बहुत सारे ऑप्शंस हमने सिल्वर ज्वेलरी के अंदर भी निकाले हैं, जिसमें सिल्वर के अंदर अगर आपको बजट आपका 5,000, 10,000, 15,000 जो भी बजट है, हर बजट में, हर कैटेगरी में, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं उनका पॉकेट मनी से गिफ्ट करना है तो वो उस अमाउंट में भी गिफ्ट कर सकते हैं, सिल्वर के, प्योर सिल्वर के रियल गिफ्ट्स।
1: चलिए हम एक बार आपको इस तरफ दिखाते हैं कि क्या कुछ ऑप्शंस है। मैम हमें बताइए कि यहाँ पे बहुत सारे सेट्स लगे हुए हैं, मिनिमल ऑप्शंस हमने देखे क्रेमे की, कौन से ब्रेसलेट्स हैं, कौन सी चेन्स हैं, सेट्स की बारी है तो सेट्स लड़कियां कौन से ज्यादा पसंद कर रही हैं या फिर सबसे ज्यादा भाई कौन सा लेना चाहेंगे?
2: देखिए अब जो जिनकी बहनें मैरिड हो चुकी हैं उनकी चॉइस थोड़ी सी हैवी हो जाती है, तो हैवी ब्राइडल ज्वेलरी में जाएंगे तो थेवा ज्वेलरी एंड ज्यादा बड़े बड़े पीसेस वो हैवी वाले हो जाएंगे। जो शादी के बाद बहनें पहनना पसंद करती है, मंगलसूत्र ऑप्शन आ गया लाइट में, ये भी बहनें जो है वो शादी के बाद पहनेंगी, और जो मैम अनमैरिड है वो इस टाइप की अनमैरिड गर्ल्स के हिसाब से ऑप्शंस है।
0: लेकिन बाजार की कहानी सिर्फ सोने चांदी की चमक तक नहीं है, बल्कि सूरत में रक्षाबंधन के लिए एक बिल्कुल अलग पहल देखने को मिल रही है। माधव गौशाला में गाय के गोबर और लकड़ी से इको फ्रेंडली राखियां तैयार की जा रही हैं। इनका उद्देश्य त्योहार को प्रकृति और भारतीय परंपरा से जोड़ना है।
3: पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले विधाता ने गौ माता की उत्पत्ति की, और गौ माता अमरेश हमारे लिए सर्वोपरि है। जब तक गाय बचेगी तब तक देश बचेगा, और गाय हमारे पर्यावरण से जुड़ी हुई है, इसका महत्व है, जिसमें पंच तत्व है, गोबर, गोमूत्र और घी और ये सब इसके पंच तत्व से बड़ी बीमारियों का इलाज होता है। राखी के इस हिंदुत्व के सनातन के इस पर्व पर हम राखी के माध्यम से हमारी माता बहनों ने जो हमारा एक गौ माँ राष्ट्रीय अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि एक भाई एक बहन अपने भाई की कलाई पर और ये गौ में राखी बांधे जिससे रेडिएशन का कम हो, गुरुत्वाकर्षण कम हो और चीनी जो स्पर्श चली हुई है, चीनी जो राखियां आ रही है उसको हम खत्म करना चाहते हैं।
0: प्राकृतिक सामग्री से बनी ये राखियां इस्तेमाल के बाद मिट्टी में मिल सकती हैं, जिससे प्लास्टिक और दूसरे कृत्रिम पदार्थों से होने वाले कचरे को कम करने में मदद मिल सकती है। इन राखियों के जरिए गौ सेवा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जा रहा है। बनाने वालों का मानना है कि त्योहारों के दौरान प्लास्टिक और दूसरे गैर जैविक सामान की जगह प्राकृतिक विकल्प अपनाए जाएं।
4: रक्षाबंधन का त्योहार जो है हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्योहार है, पूरे भारत का त्योहार है, ये सभी जाति और सभी धर्म के लोग मनाते हैं। इस त्योहार के अंतर्गत इको फ्रेंडली राखी हमने बनाई है, क्योंकि अभी प्लास्टिक का प्रचलन ज्यादा है, राखियां जो है चाइना से आ रही है, प्लास्टिक की राखियां ज्यादा आ रही है, तो ये इको फ्रेंडली राखी, इसके अंदर गोबर का उपयोग किया गया है, लकड़ी के लोगों का उपयोग किया गया है, मतलब पूर्णतया इको फ्रेंडली है। गोबर का उपयोग करने का उद्देश्य ये है कि लोगों के साथ में गाय माता का जुड़ाव बढ़े, जो गो आधारित जो चीजें हैं वो ज्यादा लोग यूज में करें, और गौ माता का जो गोबर है वो रेडिएशन से हमको मुक्ति दिलाता है। आजकल रेडिएशन बहुत ज्यादा हो गया है, लोगों के पास मोबाइल है, टावर के तहत रेडिएशन आता है, ये सब रेडिएशन से निजात पालने के लिए हमने ये राखी जो है वो बनाई है।
0: गौशाला से जुड़ी इस पहल को देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने की तैयारी भी है। सूरत के अलावा दूसरे शहरों में रहने वाले लोग भी इन्हें मंगवा सकते हैं। इस बार बाजार में राखियों के कई रंग हैं, कहीं सोने की चमक है, कहीं थेवा की विरासत और कहीं गौमय से जुड़ी प्रकृति की सादगी। बदलते समय के साथ राखी का अंदाज भले ही बदल गया हो, लेकिन भाई बहन के रिश्ते की गर्माहट आज भी वही है जो एक छोटे से धागे को भी अनमोल बना देती है। जयपुर से रिदम जैन, सूरत से संजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड सुरे।
5: तो देखिए, रक्षाबंधन के रंग हम जीएनटी पर आपको लगातार दिखाते रहेंगे। इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: लगातार बढ़ते चीनी के दाम पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कुछ कारगर उपाय किए हैं। देखिए, दिल्ली सरकार ने 35 रुपए किलो चीनी जनता को मुहैया कराने का इंतजाम किया है। इसके साथ ही चीनी की कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमारी की जाएगी। चीनी की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस सिलसिले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री की एक अहम बैठक भी हुई है। वहीं चीनी की महंगाई पर ब्रेक लगाने के लिए यूपी में चीनी का उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर से चीनी मिलों की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में 90 लाख टन चीनी उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में कहीं है तकरार तो कहीं नए रिश्ते की शुरुआत। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
3: प्रेजेंटेड बाय

0: रक्षाबंधन पर देश के कई राज्यों में बहनों के लिए उपहार का ऐलान। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान में 27 से 29 अगस्त तक महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा।
1: चमोली में भारत चीन सीमा पर तैनात जवानों को महिलाओं ने कलाई पर बांधी राखी। सुरक्षा बलों ने बहनों को दिया आशीर्वाद। पारंपरिक परिधान में महिलाओं ने किया डांस।
0: झांसी में हरियाली, तेज की धूम, भक्ति गीतों में महिलाओं ने जमकर किया डांस। सरहद पर तैनात जवानों को भेजी राखियां।
1: अंतिम चरण में अमरनाथ यात्रा शेषनाग पहुंची। पवित्र छड़ी मुबारक विधि विधान के साथ साधु संतों ने की पूजा अर्चना। हर हर महादेव के लगाए जयकारे।
0: देशभर में जन्माष्टमी की तैयारियां तेज। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा। 4 सितंबर को मनाया जाएगा भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
1: सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शगुफ्ता साहिलदे।
0: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषाएं नहीं है। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर वायरल न्यूज तक हर अहम खबर दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर।
1: अपने अंतिम चरण में अमरनाथ यात्रा पारंपरिक पड़ाव के तहत शेषनाग पहुंचा पवित्र छड़ी मुबारक का जुलूस। देशभर में रक्षाबंधन को लेकर तैयारियां तेज। दिल्ली में स्वदेशी हाथ से बनी राखियां तैयार करने में जुटी महिला उद्यमी और स्थानीय कारीगर। आगरा में नेचुरल स्टोन से निर्मित राखियां बनी आकर्षण का केंद्र। सफेद संगमरमर और रंग बिरंगे पत्थरों का इस्तेमाल करके बनाई जा रही राखियां। चमोली में देखी भाई बहन के प्रेम और देशभक्ति की अनोखी मिसाल। नीति घाटी की महिलाओं ने बॉर्डर कैंप में सेना के जवानों के साथ मनाया रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के पवित्र मौके पर देशभर से सरहद पर तैनात जवानों को भेजी जा रही राखियां। उधमपुर के छात्रों ने अपने हाथों से तैयार की सैनिकों के लिए राखियां।
0: मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में सावन की आखिरी और सबसे खास लहरिया घटा सजाई गई। नीले पीले रंगों से सजा मंदिर भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। जन्माष्टमी को लेकर दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में भव्य तैयारियां। 4 सितंबर को मनाया जाएगा भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव। मुंबई में जोर शोर से चल रही है गणेश उत्सव की तैयारी। पंडाल में पधारे खेतवाड़ी का लंबोदर मंदिर में गणपति। केरल के पथानमथीटा में ओणम उत्सव से जुड़े पवित्र और ऐतिहासिक नाव थिरुवोना थोनी रवाना। पारंपरिक भोज ओणम संध्या के आवश्यक सामग्री लेके निकली है नाव। पुडुचेरी में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है ओणम का त्यौहार। स्कूल कॉलेजों में सजाए गए फूलों से सुंदर पुक्कलम। छात्राओं ने पेश किए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम।
1: पीएम मोदी ने देशवासियों को ईद मिलाद उन नबी की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अवसर समाज में एकजुटता और खुशियां बढ़ाने का अवसर। मुख्यमंत्री योगी ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का शुभारंभ किया। यूपी में 60 साल से ज्यादा आयु की महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा। दिल्ली में लक्ष्मी योजना का शुभारंभ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जारी की 2500 रूपये की पहली किस्त। दिल्ली पहुंच रही 800 मीट्रिक टन प्याज की खेप, कीमतों पर मिलेगी राहत। कांगड़ा एक्सप्रेस से प्याज दिल्ली लाई जाएगी। स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट बोट निपुण 31 अगस्त को नौसेना के बेड़े में होगा शामिल। लगे हैं 75% से ज्यादा स्वदेशी उपकरण।
0: दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई रॉकिंग स्टार यश की मच अवेटेड फिल्म टॉक्सिक। फिल्म में यश के साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मणी बसंत हैं। टॉक्सिक के साथ सिल्वर स्क्रीन पर यश ने पूरे 4 साल बाद की है वापसी। इससे पहले साल 2022 में ब्लॉकबस्टर फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 में नजर आए थे यश। सिद्धार्थ मल्होत्रा, तमन्ना भाटिया की अपकमिंग फिल्म द वन का धमाकेदार टीजर जारी। 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी ये फिल्म।

0: प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी फिल्म का ट्रेलर हुआ रिलीज। 18 साल बाद फिर बड़े पर्दे में नजर आएंगी अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी। इमरान हाशमी की फिल्म गन मास्टर G9 का टीजर हुआ रिलीज। इमरान हाशमी के साथ मुख्य भूमिकाओं में है जेनेलिया देशमुख और अपार शक्ति खुराना। 27 नवंबर को रिलीज होगी ये फिल्म।
1: बीजिंग में चल रहे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आज होगा समापन। कुल 51 इवेंट्स में दुनिया भर के रोबोट्स हिस्सा ले रहे। इन रोबोट्स को फैक्ट्री, रेस्टोरेंट, ऑफिस जैसे माहौल में भी परखा गया है। मुश्किल हालात और इमरजेंसी में काम करने की उनकी क्षमता भी जांची गई है। नासा के एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन और ESA की सोफी एडेनो स्पेस वॉक पर निकले। दोनों ने स्पेस स्टेशन के बाहर तेज इंटरनेट जैसे डाटा कनेक्शन वाले एंटीना पर काम किया। अर्जेंटीना में टैंगो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो गई है शुरू। दुनिया भर के 800 से ज्यादा कपल डांस के इस मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं। लंदन के एक फूड हॉल में डॉग्स के लिए खास खाना तैयार किया गया। मेन्यू में डॉगी, गिनीज और ए पॉ रोल, स्प्रिट्स जैसे ड्रिंक्स भी शामिल।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
0: तो बच्चे से अच्छी खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से आपके लिए। खबरों की प्लेट तैयार है
1: तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की तमाम ट्रेंडिंग न्यूज के साथ।
0: रक्षाबंधन से पहले दिल्ली सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा। दिल्ली में लक्ष्मी योजना की पहली किस्त जारी। हर महीने मिलेगी 2500 रुपए की आर्थिक मदद।
1: यूपी में 7 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को फ्री बस यात्रा की सौगात। सीएम योगी ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का शुभारंभ किया।
0: बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का श्रद्धालुओं का आखिरी जत्था पहुंचा पुंज। फूलों की माला से श्रद्धालुओं का किया गया विशेष तौर पर स्वागत। 28 अगस्त को समाप्त होगी यह यात्रा।
1: देशभर में जन्माष्टमी की तैयारियां तेज। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। 4 सितंबर को मनाया जाएगा भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव।
0: बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई रॉकिंग स्टार यश की फिल्म टॉक्सिक। हैदराबाद के सिनेमाघरों में फिल्म देखने के लिए उमड़े फैंस। थिएटर के बाहर यश के लगाए गए कटआउट्स।

0: चलिए इस खबर की शुरुआत करें उससे पहले सरगम से जानना चाहूंगी। सरगम, राखी की शॉपिंग हो गई?
1: मुझे लग रहा था ये सवाल आने वाला है। राखी की शॉपिंग हो गई है, लेकिन भाई मेरा मुंबई रहता है तो थोड़ा सा दिल में एक मलाल होता है ना कि काश,
0: मतलब डिटो, आई शेयर द सेम फीलिंग विद यू। अब देखिए, हम तो अपनी शॉपिंग दोनों करते रहेंगे, लेकिन लंच टाइम में भी यही खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं। भाई बहनों के प्यार के प्रतीक त्योहार रक्षाबंधन की बात, जिसे लेकर देश भर के बाजार सज गए हैं। रंग बिरंगी फैशनेबल फ्रेंडली राखियां आपको मिल जाएंगी। इस बीच कई राज्य सरकारों ने रक्षाबंधन पर बहनों को सौगात दी है। दिल्ली में रेखा सरकार ने महिलाओं के लिए लक्ष्मी योजना की शुरुआत की, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब देखिए, बिहार सरकार ने छात्राओं के लिए 10000 रुपए की पीएचडी फेलोशिप देने का भी ऐलान किया है। बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना के तहत 2,00,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही राखी पर अभ्या ब्रिगेड के तहत छात्राओं की सुरक्षा के लिए 4,700 स्कूटर और मोटरसाइकिल का लोकार्पण और फ्लैग ऑफ किया जाएगा। दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, बिहार में महिलाओं को राखी पर मुफ्त बस सफर की सुविधा दी जाएगी। इस त्योहार में मिठास खोलने के लिए दिल्ली सरकार ने पहल की है। दिल्ली सरकार ने 35 रुपए किलो चीनी जनता को मुहैया करवाने का इंतजाम किया है, जबकि प्याज भी 35 रुपए की रियायती दर पर अब बेचे जाएंगे।
1: तो देखिए, बात यहाँ पे रक्षाबंधन की हो रही है, तो रक्षाबंधन पर देश के कई राज्यों में बहनों के लिए उपहार का ऐलान किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया के जरिए 3 बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। देखिए, इसके मुताबिक यहाँ पे ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि पुलिस दीदी यानी अभया ब्रिगेड के लिए 4,700 स्कूटर और मोटरसाइकिल का लोकार्पण और फ्लैग ऑफ किया जाएगा। इन वाहनों का इस्तेमाल स्कूल और कॉलेज जाने वाली छात्राओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए किया जाएगा। छात्राओं को 10,000 रुपए की पीएचडी फेलोशिप मिलेगी। करीब 1,000 छात्राओं को 4 साल तक ये फेलोशिप दी जाएगी। कारोबार और स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना की भी शुरुआत की जाएगी। देखिए, बात इस योजना की करें तो इस योजना के तहत 50,000 से 2,00,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। और इन सब के अलावा रक्षाबंधन के अवसर पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से 27 और 28 अगस्त को महिलाओं और छात्राओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा भी मिलने वाली है। तो देखिए, रक्षाबंधन पर बिहार के अलावा कई दूसरे राज्यों में भी लड़कियों और महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा की घोषणा की गई है। देखिए, यूपी सरकार ने 27 अगस्त से 29 अगस्त तक लड़कियों और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा सुविधा देने का ऐलान किया है, जिसमें एक सह यात्री भी साथ में रह सकता है, यानी को पैसेंजर भी हो सकता है। उत्तराखंड सरकार ने 28 और 29 अगस्त को रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में राज्य परिवहन की साधारण बसों में महिलाओं के लिए सफर मुफ्त होगा। 27 अगस्त की दोपहर 12 बजे से 28 अगस्त की रात 12 बजे तक बहनों के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। महिलाओं के लिए 15 वर्ष तक के बच्चों को भी इस सुविधा का लाभ मिलने वाला है। इसमें हरियाणा के साथ ही चंडीगढ़ और दिल्ली तक की यात्रा भी शामिल है। राजस्थान सरकार ने 28 और 29 अगस्त को साधारण और एक्सप्रेस बसों में लड़कियों और महिलाओं के लिए राज्य की सीमा के भीतर मुफ्त सफर का ऐलान किया है।
0: अब देखिए, पिछले कुछ दिनों से प्याज की कीमतों में भारी उछाल आपने देखा होगा। सरकार ने प्याज की महंगाई पर लगाम लगाने के लिए कुछ उपाय दिए हैं जो आपके लिए फायदेमंद होंगे। प्याज की सप्लाई और महंगाई पर सरकार की नजर तो बनी हुई है। अब केंद्र सरकार ने 35 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज बेचने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार भी लोगों को सस्ता प्याज मुहैया करवाएगी। सरकार नेफेड से प्याज खरीद कर जनता के बीच में सप्लाई करेगी। इसी बीच नासिक से प्याज की सप्लाई बढ़ाने का इंतजाम भी सरकार ने कर दिया है। प्याज की सप्लाई के लिए नासिक से कांदा एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है। 24 अगस्त से प्याज की ढुलाई भी शुरू हो गई है। पहले चरण में चेन्नई, मदुरै, कोची को प्याज की सप्लाई की जा रही है। इसके बाद दिल्ली, गुवाहाटी भी कांदा एक्सप्रेस से सप्लाई होगी। प्याज की जमाखोरी करने वालों पर सरकार बड़ी कार्रवाई भी करेगी।
1: देखिए, लगातार बढ़ते चीनी के दाम पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कुछ कारगर उपाय किए हैं। दिल्ली सरकार ने 35 रुपए किलो चीनी जनता को मुहैया कराने का इंतजाम कर दिया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही चीनी की कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमारी की जाएगी। चीनी की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस सिलसिले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री की एक अहम बैठक भी हुई है। वहीं चीनी की महंगाई पर ब्रेक लगाने के लिए यूपी में चीनी का उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर से चीनी मिलों की शुरुआत हो जाएगी और आने वाले दिनों में यूपी में 90 लाख टन चीनी उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
0: चलिए बात कर लेते हैं राखी के त्योहार की। भाई बहनों के अटूट रिश्ते के प्रतीक रक्षाबंधन पर डाक विभाग ने बहनों को अपनी ओर से सौगात दी है। राखियां समय पर पहुंच सकें, बारिश में राखियां खराब ना हो, डाकघरों में बहनों को ज्यादा इंतजार ना करना पड़े, इन सब बातों को ख्याल में रखते हुए डाकघरों ने विशेष इंतजाम किए हैं। इंतजाम क्या है वो भी देख लीजिए। डाकघरों की तरफ से राखी पर स्पेशल गिफ्ट बॉक्स का इंतजाम किया गया है। छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल ने 520 रुपए में एक स्पेशल बॉक्स पेश किया है जिसमें दो राखियां, अक्षत, कुमकुम, पोस्टकार्ड और कीरिंग जैसी चीजें शामिल हैं। गुजरात समेत कई डाक क्षेत्रों में 35 से 50 रुपए के वाटरप्रूफ लिफाफे जारी किए हैं ताकि देश विदेश में राखी सुरक्षित पहुंच सके। अंबेडकर नगर गया के डाकघरों में मात्र 10 रुपए में वाटरप्रूफ लिफाफे उपलब्ध करवाए गए हैं। स्पीड पोस्ट के जरिए राखी भेजने पर 10% की विशेष छूट दी जा रही है। देश के प्रमुख शहरों में स्पीड पोस्ट से राखी 24 से 48 घंटों में पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। भीड़ से बचने और तत्काल बुकिंग के लिए प्रमुख डाकघरों में विशेष राखी काउंटर्स बनाए गए हैं जो अवकाश और रविवार के दिन भी खुल रहे हैं।
1: देखिए, पाली के भारतीय डाक विभाग ने जिले के सभी डाकघरों में विशेष वाटरप्रूफ राखी लिफाफे और राखी बॉक्स उपलब्ध कराए हैं जिसे लेकर बहनें भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रही हैं। देखिए, इनकी मदद से बहनें अपनी राखी सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से भेज रही हैं।
2: मैंने अपने भाई को राखी भेजने के लिए यहाँ से ये लिफाफे वगैरह परचेज किए हैं। ये बारिश में भी नहीं भीगेंगे। इस बार इसी तरह से इनका एकदम सेफ और सुरक्षित तरीके से निर्माण किया गया है।
3: एनवेलप खरीदा है अपने भाइयों को राखी भेजने के लिए। ये बहुत ही सही है। इसमें वाटर प्रूफ है, पानी लगने की कोई भी इसमें वैसे नहीं है। और आप भी आइए और यहाँ से जो है एनवेलप खरीदिए और अपने भाइयों को दूर दूर जहाँ भेजना है, विदेश में कहीं भी आप इसको भेज सकते हैं।
0: अब देखिए, पूरे देश में रक्षाबंधन की रौनक साफ दिखाई दे रही है। इस पावन मौके पर देशभर के बाजार गुलजार हैं, जगह जगह राखी की दुकानें सज गई हैं, जहां पारंपरिक से लेकर मॉडर्न डिजाइन की राखियां एक से बढ़कर एक ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। बड़ों से लेकर बच्चों तक को ख्याल में रखकर ये राखियां तैयार की गई हैं। महाराष्ट्र के अकोला से लेकर राजस्थान के अलवर तक राखी की दुकानों में खरीददारों की लाइनें लग गई हैं। खास बात यह है कि इस बार सर्राफा बाजार में राखी की खास रौनक देखने को मिल रही है। दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, मुंबई में सोने चांदी की राखी की चमक भी आपको देखने को मिलेगी। राखी से पहले बहनें अपने भाइयों के लिए मनपसंद राखी खरीद रही हैं और भाई बहनों के लिए उपहार भी खरीद रहे हैं।

0: भाई बहन के पावन त्योहार रक्षाबंधन को लेकर देश भर के बाजार गुलजार हैं। यहाँ एक से बढ़कर एक राखी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के अकोला के बाजार भी रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर सजे हुए हैं। अपने भाइयों के लिए राखी पसंद करने दुकानों पर बहनों की भीड़ जुट रही है। यहाँ की दुकानों पर पारंपरिक राखियों से लेकर मॉडर्न डिजाइन वाली राखियाँ मौजूद हैं।
1: रक्षाबंधन के त्योहार के लिए जो है बाजारों में जो है दुकान यहाँ पर लग चुके हैं राखियों के। और ये जो राखी है ये जो है मोतियों की राखी है, कोई रुद्राक्ष वाली है, कोई माला वाली यहाँ पर राखी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये लुम्बी राखी इसे कहा जाता है। ये सुंदर राखियाँ जो है वो ये भैया भाभी की राखी इसे कहा जाता है। और इस तरीके के अलग अलग वेराइटी जो है, देखिए ये बैंगल के साथ ये राखी इस तरीके की दी है। और खासकर यहाँ देखिए जो है एक कमल के फूल पर ये जो राखी है ये बहुत ही अच्छी इस वक्त की ट्रेंडिंग है।
0: भाई भाभी के लिए कपल राखी तो बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली राखियाँ, इन सब के अलावा डायमंड लुक वाली राखी, रिंग राखी और ज्वेलरी डिजाइन की राखियाँ भी दुकानों में मिल रही हैं। कोई बहन अपने भाई के लिए राखी पसंद कर रही है तो किसी ने खरीद भी ली है।
2: जो अच्छे से अच्छी राखी मिलेंगी वो ले लेंगे।
3: मैंने अपने भाई के लिए बहुत हीरे जैसी राखी ली है, आप देख सकते हैं बहुत शानदार हीरा लगा हुआ है। मेरा भाई भी हीरे जैसा ही है, मुझे बहुत प्यार करता है, मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा और भाई का रिश्ता बहुत ही अनमोल है मेरे लिए।
0: अलग अलग डिजाइन के हिसाब से राखियों की कीमत भी अलग अलग है।
4: 5 रुपए से लेके तो 500 रुपए तक की अवेलेबल है। 500-400 रुपए वाला माल था वो सबसे पहले खत्म हो जाता है। हैवी रेंज की राखी के ट्रेड डिमांड सबसे ज्यादा थी। अब की बार स्टोन डायमंड की राखी इसकी डिमांड हर साल रहती है, इस साल कुछ ज्यादा ही थी। और कार्टून की राखी की विशेष डिमांड है ये बार, लाइट के स्पिनर कार्टून की राखी में इस टाइप की राखी सबसे ज्यादा चल रही है।
0: अकोला से लेकर अलवर तक में राखियों की दुकानें सजी हुई है। राजस्थान के अलवर की राखियों की डिमांड विदेश तक में है। हजारों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कारोबार से जुड़े रहते हैं। यहाँ की राखियाँ देखने में सुंदर होने के साथ ही सस्ती भी मिलती है।
5: एक गोदाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर तरह तरह की राखियाँ हैं। मैं दिखाना चाहूंगा ये कार्टून कैरेक्टर की राखियाँ हैं। ये राखियों के साथ ही इरेजर का भी काम करती हैं। छोटे बच्चों को ये राखियाँ खास पसंद आ रही हैं, जिसमें अलग अलग तरह के डिजाइंस, एस्ट्रोनॉट तरह के जो कार्टून कैरेक्टर होते हैं उन कैरेक्टर के रूप में इनको तैयार किया गया है। और इन राखियों को रक्षाबंधन के बाद बच्चे अपने बैग, स्कूल बैग में भी काम में ले सकते हैं। इरेजर का ये काम करेंगी। इसके अलावा तरह तरह की राखियां कार्टून कैरेक्टर के रूप में, लाइट वाली राखियां, म्यूजिक वाली राखियों की डिमांड सबसे ज्यादा है।
0: यहाँ के बाजार में 1 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की अलग अलग तरह की आकर्षक राखियां मिल रही हैं। इस बार खासकर बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर, लाइटिंग और म्यूजिक के साथ ही पतली डोरे वाली राखियों की डिमांड सबसे ज्यादा है।
6: हमारे पास सब तरह की वैरायटी है, फैंसी राखियां भी हैं, बच्चों के लिए एक से एक स्पेशल आइटम बनाए हुए हैं हमने। इस बार बच्चों के लाइटिंग में जैसे ये सब लाइटिंग वाले आइटम है, ये देखिए इस तरह की लाइटिंग वाली आइटम है, ये छोटे बच्चों के आइटम है सारी, ये सब म्यूजिकल लाइट बच्चों के साथ में लाइटिंग वाली आइटम आएगी इस तरीके से। ये पर्स वाली आइटम है, जैसे बच्चों के बेल्ट मारने वाला होता है इसके अंदर, बच्चों के टॉयज वगैरह सब कुछ मौजूद है इसके अंदर। ये वाली सब म्यूजिकल लाइट के साथ है, ट्यूनिंग लाइटिंग के साथ आ रहा है अपना। इस तरह के आइटम बच्चों के छोटे करेक्टर वगैरह बहुत सारे आइटम है मतलब कहने का।
0: यहाँ कई बड़े राखी व्यापारी हैं जो देश विदेश में राखियाँ सप्लाई करते हैं।
7: इस साल हमने करीब 50,000 से ज्यादा डिजाइन बनाए हैं और सप्लाई ऑल ओवर इंडिया तो है ही, और अवार्ड में भी हो रही है, करीब 30-35 कंट्रीज में माल जा रहा है।
0: यहाँ रक्षाबंधन के पर्व को लेकर सजी दुकानों में बहन अपने भाइयों के लिए राखी खरीदने लगातार पहुँच रही हैं।
8: राखियों के इतने डिजाइन मिलते हैं शायद कहीं भी पॉसिबल नहीं है। अलवर छोड़ो, इंडिया छोड़ो, एशिया तक इनकी राखी फेमस है। यहाँ की राखियाँ जो है ऑल इंडिया में फेमस है, इसीलिए हम हर साल यहाँ आते हैं राखी लेने।
0: अलवर के शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में राखी बनाई जाती है, जिसके चलते यहाँ 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। अकोला से धनंजय सावले और अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी राखी के त्योहार को लेकर खूब रौनक देखने को मिल रही है। यहाँ के स्कूली बच्चियों ने सरहद पर देश की रक्षा में तैनात वीर जवानों के लिए खुद अपने हाथों से विशेष तौर पर राखियां तैयार की हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस जतन से ये सभी छात्राएं स्केच और रंगों से कागज पर राखियां तैयार कर रही हैं। जितनी सुंदर इनके हैंडमेड राखियां हैं, उतनी ही सुंदर इनके विचार भी हैं।
10: जो हमारे आर्मी सोल्जर्स हैं, जो हल पर हमारी रक्षा करते हैं, और हम जो सांसें ले रहे हैं वो भी उन्हीं की वजह से ले रहे हैं, तो उनको तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है। तो इसीलिए हमारे विद्यालय की तरफ से 200 या 300 से भी अधिक राखियां हम आर्मी ऑफिसर्स को भेज रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही उत्साह की बात है। राखियां भेजनी है सोल्जर्स को, क्योंकि वो ही हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए हमारे स्कूल से भी राखियां जाएंगी, 300 या 200 से तक जाएंगी, और वो हमारी इतनी रक्षा करते हैं, इसलिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
11: मैंने अपने हाथों से कार्ड बनाया है, और ये कार्ड हम हर साल रक्षाबंधन पे बनाते हैं, और ये हम आर्मी सोल्जर्स के लिए बेचते हैं, ताकि वो अच्छे से इसको पढ़ सके। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि वो हमारी रक्षा करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो इसलिए हम उन्हें ये बेचते हैं, ताकि उनको अच्छी से अच्छी विशेष मिल सके।
12: एक मौका मिलता है कि देश के सैनिक जो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, उनके तक ये राखियां पहुंचाने का, ये बड़ा बहुत बड़ा सौभाग्य हमारे लिए, बड़ी गर्व की बात है कि ये सब नन्हे मुन्ने बच्चे अपने मन से संदेश भी लिखते हैं, ग्रीटिंग कार्ड भी बनाते हैं, ये सब पैक होके उन तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि वो इस वक्त घरों से दूर हैं, और वो ये ना समझे कि हम दूर हैं, उनको राखी भेजी भी जाएगी, और हम कोशिश प्रयास करते हैं कि जगह जगह हम इन बच्चों को भी लेते हैं और उनको बांधते भी हैं।
9: और देखिए, रक्षाबंधन के पावन पर्व से पहले झांसी की महिलाओं ने देश की सरहदों पर तैनात वीर जवानों के लिए अनूठी पहल की है। भारत विकास परिषद प्रमुख की ओर से बीती रात हरियाली तीज का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 500 से 600 महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस खास मौके पर महिलाओं ने देश की रक्षा में जुटे सैनिक भाइयों के लिए 500 राखियां तैयार की। खास बात यह रही कि महिलाओं ने हर राखी के साथ सैनिकों के लिए अपने हाथों से छोटे छोटे संदेश भी लिखे। झांसी की इन महिलाओं ने उन बहनों की भावनाओं को सैनिक भाइयों तक पहुंचाने की कोशिश की है, जिनके भाई रक्षाबंधन के भी अपने घर परिवार से दूर देश की सीमाओं की रक्षा में तैनात रहेंगे।
13: एक हम लोगों ने राखी का भी एक प्रोग्राम रखा हुआ था, जो अपने देश पे, जो हमारे वीर सैनिक हमारे देश पे, जो हमारी रक्षा की सुरक्षा के लिए वहाँ पे तैनात है, उनके लिए हम लोगों ने 500 राखियाँ पैक करके यहाँ से भिजवाई हैं।
14: ने सैनिक भाइयों के लिए राखी 500 राखी पैक करके सैनिक भाइयों के लिए भेजे, जिनकी वजह से हम लोग सुरक्षित हैं। जो भाई देश के लिए लड़ते हैं, जिनकी वजह से हम लोग आज़ादी से घूमते फिरते हैं, उनके लिए हम लोगों ने राखी भेजी।
9: भाई बहन के पवित्र रिश्ते का ये पर्व बेहद नजदीक है। ऐसे में जो बाजार है वो रक्षाबंधन के त्योहार के लिए पूरी तरीके से सज चुके हैं। बाजार में एक से बढ़कर एक राखियां बिक रही हैं, लेकिन इस बार सोने चांदी से बने राखियों की खूब डिमांड है। अलग अलग डिजाइन स्टाइल वाली राखियां लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही हैं, और इनमें डायमंड राखी से लेकर हल्के स्टाइल वाली गोल्ड राखी का भी क्रेज खूब देखने को मिल रहा है।
15: रक्षाबंधन का त्यौहार करीब है, और ऐसे में बाजारों में जो रौनक है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर रंग बिरंगी राखियों की बात करें तो हर एक स्टाइल में आपको राखियां जो है वो मिलेगी, चाहे वो आपकी भाभी के लिए हो, भाई के लिए हो, या फिर बच्चों के लिए हो। अलग अलग स्टाइल का जो राखियां हैं उससे पूरा बाजार जो है भर चुका है इस वक्त। लेकिन इन्हीं ट्रेडिशनल राखियों के बीच अब प्रीमियम राखियों का भी जमाना आ गया है। पूरी तरीके से ट्रेंड जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है, और लोग अब प्रीमियम राखियों की ओर भी जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही दिखाने की मैं आपको कोशिश कर रही हूँ, और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इन प्रीमियम सिल्वर राखी की। और आप देख सकते हैं कि आपको जो है सामने बहुत सारे ऑप्शन जो है राखी के दिखने वाले। तो ये 925 स्टर्लिंग सिल्वर की राखियां हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और इस सीजन में जो है ये खास होने वाली है, वो इसलिए क्योंकि सिर्फ राखी के फेस्टिवल के बाद जो है आप एक धागे की तरह इसको उतार कर नहीं रख सकते, बल्कि आप बाद में भी जो है इसको कैरी कर सकते हैं, एक ब्रेसलेट के तौर पर जो है आप इसको पहन सकते हैं, और पूरे साल जो है इसको आप बहन भाई की जो प्यार की निशानी है उसके साथ जो है इसको कैरी कर सकते हैं। तो ऑप्शंस में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ किस तरीके से आपको सिल्वर के ऑप्शन जो है वो नजर आने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम बच्चों की राखी से शुरू करेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑप्शन जो है आपको दिखेंगे। शुरुआती मैं इन छोटी छोटी राखियों से करूंगी, आपको दिखेगा कि किस तरीके से बच्चों को कार्टून करेक्टर्स वाली राखियाँ पसंद होती है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि आपको स्पॉन्ज बॉब की राखी की बात करें या फिर एंग्री बर्ड की राखी की बात करें, आपको बच्चों के लिए हर एक ऑप्शन जो है नज़र आने वाले हैं। आप यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको लड़कियों के लिए यूनिकॉर्न वाली राखियाँ जो है वो दिख जाएगी, आपको मिकी माउस वाली राखियाँ जो है वो दिख जाएगी, और सभी प्योर सिल्वर में आपको ये राखियाँ जो है दिखने वाली है। सिल्वर की अगर हम बात करें तो आपको ये वेराइटी दिखने वाली है। अच्छा, अगर इनकी कीमतों की बात करूँ तो ये सभी जो जितनी भी धागे वाली राखियाँ जो आप देख रहे हैं सिल्वर के साथ, इनकी कीमत जो 1000 से सिर्फ 1500 के बीच में आपको नज़र आ जाएगी। वही अगर आप कुछ इस स्टाइल की राखियों की बात करें, ये स्पेशली जो ऊपर की राखियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ सिल्वर में, ये भाभियों के लिए राखी है। अगर आपको अपनी भाभी को पहनाना है तो आप इस तरीके का ट्रेडिशनल लुक के साथ आप इनको कुछ ऐसी राखियाँ जो है पहना सकते हैं कि राखी का त्यौहार भी मने और साथ ही साथ कुछ परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस तरीके का ट्रेडिशनल लुक वो जो है पहन सके। आपको कुछ इस सिल्वर में इस तरीके की राखियाँ भी जो है वो मार्केट में दिख जाएगी। और इनकी अगर रेट की बात करें तो ये कभी आपको 3 से 4 हज़ार के बीच में जो है पड़ेगी। और भाई बहन के लिए जिस तरीके से कहते हैं कि कपल जो एक राखी होती है भाई भाभी की राखी, वो आपको ये राखियाँ मिल जाएगी कि भाई भाभी भी मैंशन है। तो सिल्वर की हम ऑप्शन दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर अच्छी खासी जो वेराइटी है वो दिखने वाली है, क्योंकि प्रीमियम राखियों की तरफ हर कोई रुख जो है लेता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जब बात सोने की हो तो सोने की चमक के आगे आपको हर कुछ फीका लगता है। तो सोने की आपको मैं वैरायटी दिखा रही हूँ और उसके साथ ही डायमंड, प्रीमियम डायमंड जो है अमेरिकन डायमंड कट के साथ जो है वो राखियों के ऑप्शन भी आपको दिखने वाले हैं। हालांकि कस्टमाइज आप करवा सकते हैं, लेकिन ये कुछ राखियों के मैं ऑप्शन आपको दिखा रही हूँ जो कि आपको यहाँ पर नज़र आने वाला है। और सोने की छोटी सी प्लेट आपको बीच में नज़र आ जाएगी। आपको चाहे भगवान गणेश जी की बात करें या फिर ओम के डिज़ाइन की बात करें, एक आपको यहाँ पे आपको माता रानी का डिज़ाइन जो है वो दिख जाएगा। तो और बारीक धागे के साथ, क्योंकि कोई धागे को बहुत ही पवित्र मानता है, तो धागे के साथ इन्होंने गोल्ड को जो है अटैच करने की पूरी तरीके से कोशिश की है। अगर उसके साथ ये भी आप देख सकते हैं कि आपको इसमें काला धागा नज़र आएगा, क्योंकि लोग जो है काला धागा ज़रूर पहनाते ताकि नज़र से जो है वो बचा जा सके। तो गोल्ड की राखियों में कई तरह के डिज़ाइन जो है आपको नज़र आ जाएंगे। कुछ राखी आपको बेहद ही मिनिमल डिज़ाइन के साथ दिखेगी, तो कुछ में आपको इस तरीके का कट जो है वो नज़र आ जाएगा। और ये जितनी भी ये राखियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 22 कैरेट गोल्ड में जो है आपको नज़र आने वाली है। लेकिन जिनका बजट थोड़ा कम है लेकिन त्यौहार भी मनाना है, तो उनके लिए ये नीचे के ऑप्शंस आपको नज़र आ जाएंगे कि ये आपके 14 कैरेट गोल्ड से इनका आपको ये राखियाँ जो है वो उपलब्ध है। इसके अंदर आपको डायमंड कट जो है वो नज़र आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि 14 कैरेट गोल्ड की आपको चेन नज़र आ जाएगी, लेकिन अगर आप बीच में डिज़ाइंस की बात करेंगे तो आपको ये डायमंड में सारे ऑप्शंस जो है वो मिलने वाले हैं। तो मार्केट में ट्रेडिशनल राखियाँ अपने ही क्रेज़ पर है, उनका क्रेज़ जो है, उनकी डिमांड जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती। हर कोई जो है रंग बिरंगे धागे वाली, रुद्राक्ष वाली, मोतियों वाली राखियाँ जो है वो लेना पसंद करता है। लेकिन उसी के बीच जो है प्रीमियम राखियों का डिज़ाइन अब बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, उनके ट्रेंड जो है वो आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसी बीच हर एक शॉप में जो है इस तरीके का कलेक्शन जो है आपको दिखने वाला है, चाहे फिर वो गोल्ड की राखी हो, डायमंड की राखी हो या फिर सिल्वर की राखी। कैमरा पर्सन शैलेंद्र कुमार के साथ।
9: चलिए, राखियों के बहुत सारे ऑप्शंस आपको बाजार में मिल जाएंगे, जैसा कि मनीषा ने बताया है। बदलते वक्त के साथ देखिए राखियां भी ट्रेंडी हो चुकी हैं। राखी को लेकर भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। आगरा में रक्षाबंधन के लिए पत्थरों से खास राखियां बनाई जा रही हैं। कारीगर इन राखियों को बनाने में दिन रात जुटे हैं। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन राखियों को तैयार करने में मेहनत काफी लग रही है। ये राखियां जितनी मजबूत हैं उतनी ही आकर्षक भी। रंग बिरंगे पत्थर की ये राखियां इतनी खूबसूरत हैं कि किसी का भी मन इन्हें खरीदने के लिए मचल उठेगा।
16: हम लोगों के द्वारा एक नया कॉन्सेप्ट तैयार करा गया, क्योंकि मार्केट के अंदर पहले से बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिक की राखी, ब्रास की राखी, सिल्वर की राखी आती थी, जो आदमी कुछ वक्त के लिए यूज़ करता था, फिर उसको उठा के रख दिया करता था, और फिर हर नए त्यौहार पे एक नई चीज़ को खरीदने की आवश्यकता पड़ती थी। तो हमने ये सब चीज़ें सोचते हुए इस बार मार्केट के अंदर हमने एक नया कॉन्सेप्ट तैयार किया। हमने नेचुरल सेमी प्रेशर स्टोन्स की राखियों को तैयार कराया, जो कि कारीगरों के द्वारा तैयार करा गया है। हमने इसके अंदर न्यूजीलैंड से मदर ऑफ पर्ल को मंगाया, अफ्रीका से जो है मलाकाइट स्टोन को मंगाया, और ब्राज़ील से हमने एगेट्स को मंगाया, और उसके बाद एक आर्ट वर्क तैयार करके एक राखी बनाई गई है, जो एक स्पेशल ओकेशन के लिए है, जिसके अंदर एक भाई बहन का जो प्यार है वो एक प्रेम का धागा है, जो जीवन टू जीवन चलता है, कैरी फॉरवर्ड होता है जनरेशन टू जनरेशन। तो उन सब चीज़ों को सोचते हुए हमने इस स्पेशल राखी को तैयार किया है, और इसके अंदर हमने कोई हाई प्राइजिंग, ओवर प्राइजिंग नहीं रखी है, क्योंकि एक बहुत प्यार का त्यौहार है। इसके अंदर हम चाहते हैं कि जो कारीगर की मजदूरी है, जो एक नॉमिनल जो उसका एक आर्ट वर्क है, उसको उसका मेहनताना मिल जाए, और उसके अलावा हम इसके अंदर कोई ओवर प्राइसिंग या ओवर प्रॉफिटिंग नहीं चाहते।
9: देखिए, उज्जैन में महाकाल के साथ ही पर्व त्योहार की शुरुआत होने की भी परंपरा है। रक्षाबंधन का पर्व भी बाबा महाकाल को राखी अर्पित करने के साथ ही शुरू होगा, और इस दिन बाबा को महाभोग भी लगाया जाता है और फिर भक्तों के बीच प्रसाद को बांटा जाता है। इस महाभोग के लिए 125,000 लड्डू बनाने का काम भी शुरू हो गया है।

0: भाई बहन के अटूट प्रेम और रक्षा के संकल्प का पर्व रक्षाबंधन। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में किसी भी पर्व का शुभारंभ बाबा महाकाल के दरबार से होने की परंपरा है। इसीलिए रक्षाबंधन के त्योहार की शुरुआत भी सबसे पहले बाबा महाकाल को राखी बांधकर की जाती है। रक्षाबंधन पर भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल को राखी अर्पित की जाती है। इसके बाद 125,000 लड्डुओं का महाभोग लगाया जाता है। वर्षों से चली आ रही ये परंपरा श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर 28 अगस्त को भी मनाई जाएगी, जिसकी महाकाल के दरबार में तैयारी शुरू हो चुकी है। रक्षाबंधन के त्योहार पर बाबा को लगाए जाने वाले महाभोग के लिए मंदिर के पंडे पुजारियों ने पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ भट्टी पूजन किया। उसके बाद लड्डू प्रसाद बनाने का काम शुरू हुआ।
1: श्रावणी जो पूर्णिमा होती है, रक्षाबंधन पर्व जिसको अपन बोलते हैं, इसी दिन रक्षाबंधन पर्व महाकाल जी बाबा को अपन भस्म आरती के समय से भोग लगा के एक लड्डू का अन्नकूट लगाते हैं, जिसमें असंख्य लड्डू होते हैं। 125,000 लड्डू बोलते हैं अपन, उससे भी ज़्यादा बनते हैं लड्डू। तो वो सारे लड्डू का प्रसाद जो लगता है, भोग लगने का अन्नकूट स्वरूप दर्शन भी होते हैं बाबा का अभिषेक स्थल पर। उसके पश्चात भस्म आरती के बाद में ये प्रसाद सभी भक्तोंजनों में वितरण होगा। जितने यात्री आएंगे दर्शन करने, सबको लड्डू का प्रसाद दिया जाएगा, बांटा जाएगा।
0: भगवान के भोग के लिए बेसन और शुद्ध घी से लड्डू प्रसाद तैयार किया जाता है। मंगलवार को लड्डू प्रसाद निर्माण के लिए आई महिला कर्मचारियों ने भजनों के साथ प्रसाद बनाने का काम शुरू किया, जो 27 अगस्त की रात तक चलेगा।
1: ये शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। जितने भी लोग अपने यहाँ बनाने वाले हैं, अपने जो प्रसाद बनाएंगे, निर्माण करेंगे लड्डू निर्माण में, वो साफ सफाई पूरा घी शुद्ध घी का, पूरा शुद्ध घी का ही लड्डू बनेंगे। इसमें कोई मतलब बाबा का आनंद है तो बाबा का प्रसाद है, इस पर जितना अच्छे से अच्छा अपन बना सकते हैं उतना अपन प्रयास करते हैं।
0: रक्षाबंधन पर भस्म आरती के दौरान राखी अर्पित करने के बाद बाबा महाकाल को महाभोग अर्पित होगा। इसके बाद बाबा के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के बीच महाभोग का लड्डू प्रसाद बांटा जाएगा, जो उनके लिए प्रसाद के साथ ही बाबा का आशीर्वाद भी होता है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मुंबई में गणपति उत्सव की धूम।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
4: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है तकरार तो कहीं नए रिश्ते की शुरुआत। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: देश भर में रक्षाबंधन की तैयारियां जोरों पर, पुरी में भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के लिए बनाई जा रही दुनिया की सबसे बड़ी राखी, पटारा बिसोए सेवक कर रही तैयारी।
5: चमोली में भारत चीन सीमा पर तैनात जवानों को महिलाओं ने कलाई पर बांधी राखी, सुरक्षा बलों ने बहनों को दिया आशीर्वाद, पारंपरिक परिधान में महिलाओं ने किया डांस।
4: यूपी में 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को फ्री बस यात्रा की सौगात, सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का किया शुभारंभ, बसों को हरी झंडी दिखाकर किया उन्हें रवाना।
5: अंतिम चरण में अमरनाथ यात्रा शेषनाग पहुंची, पवित्र छड़ी मुबारक विधि विधान से साधु संतों ने की पूजा अर्चना, हर हर महादेव के लगाए जयकारे।
4: देश भर में जन्माष्टमी की तैयारियां तेज, दिल्ली के इस्कॉन मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा, 4 सितंबर को मनाया जाएगा भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
5: और चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं लंच टाइम। मुंबई की तस्वीरें आपको दिखाना बनता है क्योंकि गणेशोत्सव का जिक्र हो और मुंबई का जिक्र ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। यहां पर उल्लास अभी से दिखने लगा है, बप्पा की प्रतिमाएं पंडाल में लाई जा रही हैं, बड़ी संख्या में लोग गजानन के स्वागत के लिए पहुंच रहे हैं, ढोल ताशे के साथ बप्पा के आगमन का जश्न मनाया जा रहा है। हर गणपति प्रतिमा की अलग अलग खूबियां हैं, खेतवाड़ी के लंबोदर में बप्पा को एक किसान के रूप में दिखाया गया है, देखिए तस्वीरें।

0: गणेश उत्सव का उल्लास और हर तरफ गणपति बाप्पा के जयकारे। बाप्पा के आगमन की खुशी और उत्सव के रंग में रंगी मुंबई नगरी। गणेश उत्सव में अभी कुछ दिन बाकी है, लेकिन मुंबई में इन दिनों हर तरफ इसी पर्व के रंग बिखरे हैं। एक एक करके बाप्पा की प्रतिमाएं अपने पंडाल में विराजमान हो रही हैं। बड़ी संख्या में लोग ढोल ताशों के साथ भगवान गणेश का स्वागत करने के लिए जुटे हैं। बाप्पा की प्रतिमा के आगमन के साथ ही गणेशोत्सव के त्योहार का जश्न भी बढ़ता जा रहा है। मुंबई में पूरे साल लोग इस पर्व की प्रतीक्षा करते हैं, और जब बाप्पा की सवारी अपने पंडाल की तरफ बढ़ती है तो इस त्योहार के सबसे खूबसूरत रंग दिखने लगते हैं। ये जोश, ये उत्साह और ये खुशी भगवान गणेश के हर भक्त के चेहरे पर झलकती है। बाप्पा के पंडाल में विराजमान होने के बाद दूर दूर से लोग बाप्पा के दर्शन के लिए भी आने लगते हैं। गणेश उत्सव की औपचारिक शुरुआत भले ही 14 सितंबर को हो रही है, लेकिन इस त्योहार की रौनक तो पंडाल में अभी से दिखने लगी है। मुंबई के सबसे चर्चित गणेश पंडालों में से एक खेतवाड़ीचा लंबोदर मंडल के गणपति बाप्पा भी अपने पंडाल में पधार चुके हैं। बाप्पा की इस प्रतिमा की ऊंचाई करीब 32 फीट है, और यहां भगवान गणेश को एक किसान के रूप में दिखाया गया है। समाज में एक शुभ संदेश देने के मकसद से खेतवाड़ीचा लंबोदर मंडल ने इस बार किसान बचाओ थीम पर पंडाल सजाया है।
1: तैयारी मुंबई में जोरों शोरों से शुरू है। खासियत यह है कि बड़ी बड़ी प्रतिमाएं जो हैं वो पंडालों में लानी शुरू हो गई है। मेरे पीछे आप एक सक्रिय गली देख रहे हैं, बड़ी छोटी सी गली है, इसी से उस बड़ी प्रतिमाओं को लाया गया है और पंडाल में स्थापित किया गया। खास बात यह है कि मैं जहां मौजूद हूं, इलाके का नाम है खेतवाड़ी, और यहां पर इस तरह की जो छोटी छोटी गलियां हैं कई हैं, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार, पांच, छह, सात, फिलहाल मैं चौथी गली में हूं जहां के बप्पा इस समय लाए गए हैं और विराजमान कर दिए गए हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि खेतवाड़ी के लंबोदर के दरबार में इस समय मौजूद हूं, और एक दो दिन पहले ही बप्पा को यहां पर बकायदा धूमधाम से लाया गया है। देखिए कितना विशाल स्वरूप, कितना विशाल रूप बप्पा का यहां पर देखने मिल रहा है। खास बात यह है कि इस तरह से जो लंबी लंबी प्रतिमाएं गणेश जी की होती हैं, उनके साथ बहुत बढ़िया बढ़िया थीम भी लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए रखी जाती है। इस बार की जो थीम है खेतवाड़ी के लंबोदर की, शेतकरी मराठी वर्ड है जिसको हिंदी में कहते हैं कि किसान। किसान अक्सर ही जो है अपने बोझ तले जो लोन लिए रहते हैं, आत्महत्या जैसी कोशिश करते हैं, ऐसी जो घटनाएं हैं उन पर रोक लगाने के लिए एक अच्छी नीयत के साथ किसान का रूप लेकर के बप्पा को यहाँ विराजमान किया गया है।
0: खेतवाड़ीचा लंबोदर पंडाल इस बार अपनी 68वीं सालगिरह मना रहा है। इस बार पंडाल को भी अलग अंदाज में सजाने की तैयारी है। यही वजह है कि बाप्पा की प्रतिमा पहले ही स्थापित कर दी गई है, ताकि साज सजा का काम पूरी तसल्ली से और बेहतरीन ढंग से हो सके।
2: हम लोग हर साल कुछ न कुछ नया संदेश देते हैं, वैसे ही हम लोग इस बार किसान के ऊपर ही हम लोग ने सजेशन किया है। जैसे मोरारजी देसाई बोले थे जय जवान जय किसान, वैसे हम लोग ने नारा लगाया है। इस बार भी वही थीम है, अभी सिचुएशन करेंगे, बोर्ड आइसर अपना नाके पे लगेगा बहुत शान से कि भाई जय जवान जय किसान।
0: मुंबई में इन दिनों एक एक करके अलग अलग इलाकों में गणपति प्रतिमाओं के आने का सिलसिला जारी है। कालाचौकी के महाराजा पहले ही अपने पंडाल तक पहुंच चुके हैं। कामराज चा महाराजा भी पंडाल में विराजमान है। जैसे जैसे गणेशोत्सव करीब आ रहा है, श्रद्धालुओं का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। अब भक्तों को बेसब्री से इंतजार है गणेश चतुर्थी पूजन का, जिसके बाद 10 दिनों तक बाप्पा अपने भक्तों के बीच विराजमान रहेंगे और श्रद्धालुओं को गजानंद की आराधना का अनुपम अवसर मिलेगा। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के रामगंज मंडी और भोपाल रूट पर ट्रेनों को बहुत ही जल्दी नई रफ्तार मिलने वाली है। नए ट्रैक पे कल 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन का संचालन शुरू होगा। ये इसका ट्रायल रन होगा और इस परियोजना से इस रूट पर सफर करने वाले मुसाफिरों को खासी सहूलियत मिलेगी, और इसके साथ ही इस रूट पर माल ढुलाई में भी काफी सहायता होगी।

0: रेल मुसाफिरों को एक नई सौगात दे दी है। रामगंज मंडी और भोपाल के बीच नई रेल परियोजना के तहत ब्यावरा और सोनकच्छ के बीच पहली बार ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी। इस नए ट्रैक के सफल ट्रायल के बाद बहुत जल्द इस रूट पर पैसेंजर और माल गाड़ियों के संचालन को हरी झंडी मिल जाएगी। रामगंज मंडी भोपाल रेल परियोजना के तहत 276 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनना है। इसमें से 226 किलोमीटर का ट्रैक तैयार हो चुका है। ब्यावरा और सोनकच्छ के बीच 24.5 किलोमीटर के नए ट्रैक का ट्रायल 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर ट्रेन संचालन का ट्रायल सफल।
1: आज इसकी
0: मुंबई से आए कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की टीम ने इस नए ट्रैक का जायजा लिया और इसकी सुरक्षा जांच पर मुहर भी लगा दी। साथ ही ये भी दावा किया गया है कि इस पूरे रूट का काम तय वक्त पर ही पूरा कर लिया जाएगा। राजगढ़ से पंकज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: आज बीजिंग में ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का समापन हो रहा है। इन 5 दिनों में रोबोट्स ने सिर्फ दौड़ भाग नहीं बल्कि ऐसा खेल दिखाया जिसे देखकर इंसान हैरान रह जाए। मंगलवार को पहली बार दो दो रोबोट्स के बीच में रस्सा कशी हुई, यानी ताकत की सीधी रखकर। इसके अलावा रोबोट्स ने फुटबॉल, जिम्नास्टिक और हाई जम्प जैसे खेलों में हिस्सा लिया। फ्लोर एक्सरसाइज में कैंगो रोबोट ने 360 डिग्री का बेहद मुश्किल बटरफ्लाई किक लगाया, यानी दौड़ते हुए हवा में घूमकर पैर को पूरा घुमाया। वहीं त्यांगोंग अल्ट्रा ने हाई जंप में 3.4 मीटर की छलांग लगाकर नया रिकॉर्ड बना दिया। खास बात यह है कि इससे पहले इंसानों का रिकॉर्ड भी टूट चुका है। इन गेम्स में 51 मुकाबले हुए जिनमें 30 खेलों से जुड़े और 21 असली जिंदगी जैसे हालात पर बेस थे, जैसे फैक्ट्री, रेस्टोरेंट और इमरजेंसी में काम करना। यानी बात सिर्फ रोबोट के खेलने की नहीं, सवाल ये भी है कि आने वाले वक्त में ये रोबोट हमारे साथ कितने काम कर पाएंगे और हमारे कितने काम आएंगे।
3: लंदन में इंसानों के साथ अब डॉग्स भी मार्केट हॉल में खास खाने का मजा ले सकेंगे। लंदन के वॉक्सहॉल इलाके में एक फूड हॉल ने नेशनल डॉग डे के मौके पे डॉग्स के लिए स्पेशल मेन्यू तैयार किया है। इस मेन्यू में डॉगी गिनीज नाम का ड्रिंक भी शामिल है जो हड्डियों से बने शोरबे और ऊपर व्हिप्ड क्रीम से तैयार किया गया है। वहीं एपा रोल स्पिट्स में गाजर का जूस, नारियल पानी और संतरे का स्वाद है। खाने में डॉग्स के लिए सैल्मन और चावल, चिकन राइस, डक, चिकन नूडल्स, चिकन टैको और छोटे स्टेक के साथ फ्राइज भी रखे गए हैं। और देखिए इतना ही नहीं, यहाँ पे डॉग्स के लिए खास पिज्ज़ा और संडे रोस्ट भी तैयार किया गया है। फूड हॉल के मुताबिक इन सभी डिशेस में डॉग्स के लिए सुरक्षित चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है ताकि उन्हें किसी तरीके की मुसीबत का सामना ना करना पड़े।
2: चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे, एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए लंच टाइम।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
3: तो ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब बात कर लेते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया की। तो देखिए, बड़े पर्दे पर यश की मच अवेटेड फिल्म टॉक्सिक रिलीज हो चुकी है। रिलीज के साथ ही फैंस का जोश भी साथ में आसमान पर पहुंच चुका है। फिल्म तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से फैंस क्रेजी हो रहे हैं रश की इस फिल्म के लिए। मुंबई से लेकर हैदराबाद और बेलगावी समेत दक्षिण भारत के कई शहरों में सिनेमाघरों के बाहर सुबह से ही फैंस की भीड़ नजर आई। कहीं बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए तो कहीं फैंस ने अपने पसंदीदा स्टार की कटआउट्स और पोस्टर के साथ फिल्म का जश्न भी मनाया। यश के करीब 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी को लेकर पहले से ही बहुत जबरदस्त क्रेज था और बस भी बना हुआ था उनकी इस फिल्म को लेकर। और अब थिएटर के बाहर का ये माहौल साफ बता रहा है कि टॉक्सिक को लेकर फैंस में किस तरीके से दीवानगी जो है वो देखने को मिल रही है।

0: चलिए अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जयपुर के एक वायरल किट के साथ, जो महज 9 साल की है लेकिन इस छोटी सी उम्र में सिनाया बयानी हुला हूप की कला में एक अलग मुकाम बना रही हैं। वर्ल्ड गिनीज बुक में उनका नाम दर्ज है। सिनाया अलग अलग मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुकी हैं और हुला हूप के जरिए लगातार नए करतब भी दिखा रही हैं। सिनाया से 13 से ज्यादा वर्कशॉप्स में 820 से ज्यादा बच्चों और बड़ों को हुला हूपिंग सिखा चुकी हैं। सिनाया की खासियत सिर्फ हुला हूप को तेजी से घुमाना नहीं, उन्होंने इसे राजस्थान की पारंपरिक संस्कृति से जोड़कर अपनी एक अलग पहचान बनाई। घूमर और हुला हूप का उनका फ्यूजन लोगों को खासा पसंद आ रहा है। हाल ही में 15 और 16 अगस्त को जयपुर में निकली भव्य तीज माता की सवारी में सिनाया की प्रस्तुति ने उन्हें एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया। सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस मिलियन में जा रहे हैं और लोग उनकी कला को खूब पसंद कर रहे हैं, और यही वजह है कि सिनाया को अब जयपुर की वायरल किट भी कहने लगे हैं।
1: देखिए, टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती है, और ये मुझे लगता है कि भारत के बच्चे जो हैं बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर रहे हैं। अलग अलग टैलेंट्स आजकल हमें पूरे देश में देखने को मिलते हैं, और एक ऐसा ही टैलेंट जयपुर में इन दिनों नजर आ रहा है, और वो टैलेंट राजपूती पोशाक में हाल ही में हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल भी हो रहा है। जयपुर की ये हूपर सिनाया बयानी हमारे साथ में मौजूद है, जो जिसका दूसरा नाम या फिर कह सकते हैं सोशल मीडिया पे उसका नाम जयपुर हूपर नाम से है, और अभी भारत में हर एक व्यक्ति इन्हीं की चर्चा कर रहा है, किस तरीके से बहुत ही कम उम्र में, महज 9 साल की उम्र में ये हुला हूप जो है वो करती है और अपना टैलेंट जो है उसमें बना चुकी है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, महज 30 सेकंड में 101 बार जो राउंड्स हैं वो लेके। इनसे ही जानते हैं क्या इनकी कहानी है, कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा सिनाया, आप मुझे बताइए कि कौन सी क्लास में और कौन सी एज में आपने स्टार्ट किया?
2: मैं जब फर्स्ट ग्रेड में थी तब मैंने स्टार्ट किया था, एंड आई वाज 6 इयर्स ओल्ड।
1: मुझे पता चला कि आपने बहुत सारी जगह परफॉर्म भी किया है, कितनी जगह परफॉर्म किया है और सबसे पहला परफॉर्मेंस क्या था वो बताइए।
2: मैंने अभी तक 72 शोज में परफॉर्म किया है, एंड मेरा जो फर्स्ट परफॉर्मेंस था वो मैंने मेरे सर की अकेडमी के शो में किया था।
1: अब मुझे ये चीज बताओ कि आपको 3 इयर्स हो गए हैं और आपने 72 जगह परफॉर्म किया है, तो वो वाला जो मूवमेंट था, क्योंकि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आप बना चुके हो, तो वो प्रोसेस आप मुझे बताओ कहाँ कैसे आप वहां तक पहुंचे, और फिर उसके बाद में जैसे पता चला कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो वो वाली फीलिंग कैसी थी?
2: जहाँ मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन मेरे पापा ने मुझे बताया था कि ऐसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है एंड आप ट्राई कर सकते हो बनाने के लिए, तो मैंने बनाने की कोशिश किया है, प्रैक्टिस्ड लाइक फॉर 3 to 4 मंथ्स। मैं एवरी डे हाफ एन आवर प्रैक्टिस करती थी, एंड आफ्टर दैट वो जो बन गया था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, आई वॉज वेरी हैप्पी, जॉयफुल, एंड मैं बहुत ही थैंकफुल भी थी एंड ग्रेटफुल भी थी।
1: सिनाया ने हमें ये बताया कि खुद तो सीखती ही हैं पर सिखाती भी है, तो अब वो समय आ गया है जब हम भी सीखें कि क्यों जयपुर हूपर अब सभी के दिलों पे छाया हुआ है, और वैसा जो टैलेंट है जैसे ये अपना नाम अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती है, तो आगे भी ये टैलेंट स्प्रेड हो और कई सारे जो नए चेहरे हैं, यूथ है, वो ये सीख पाए और आगे हुला हूप का जो नाम है वो और बढ़ पाए और ज्यादा लोग ये टैलेंट जो है वो जान पाए, सीख पाए ये एक्टिविटी करना। और जैसे कि ओलंपिक्स में ये है, वैसे और भी जो छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, युवा हैं, वो पूरे विश्व में इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाए। कैमरामैन मनोज के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे जयपुर।
0: तो चलिए इसी के साथ लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही, और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए, अक्षर पॉजिटिव खबरें दिन भर जारी है, हम देखते रहिए जीएनटी।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है तकरार तो कहीं नए रिश्ते की शुरुआत। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना, हमारी तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
3: HRIT University गाजियाबाद शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
4: रक्षाबंधन से पहले दिल्ली सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा, सीएम रेखा गुप्ता ने की लक्ष्मी योजना की शुरुआत, हर महीने मिलेंगे 2,500 रुपए। देश भर में रक्षाबंधन की तैयारियां जोरों पर, पुरी में भगवान जगन्नाथ और बालभद्र के लिए बनाई जा रही है दुनिया की सबसे बड़ी राखी, पटारा बिसोई सेवक कर रहे हैं तैयार। चमोली में भारत चीन सीमा पर तैनात जवानों को महिलाओं ने कलाई पर बांधी राखी, सुरक्षा बलों ने बहनों को दिया आशीर्वाद, पारंपरिक परिधान में महिलाओं ने डांस किया। उत्तर प्रदेश में 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को फ्री बस यात्रा की सौगात, सीएम योगी ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा का आयोजन योजना का शुभारंभ किया, बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अंतिम चरण में अमरनाथ यात्रा शेषनाग पहुंची, पवित्र छड़ी मुबारक, विधि विधान से साधु संतों ने की पूजा, हर हर महादेव के लगाए जयकारे। देशभर में जन्माष्टमी की तैयारियां तेज, दिल्ली के इस्कॉन मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है, 4 सितंबर को मनाया जाएगा भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
4: अपने अंतिम चरण में है अमरनाथ यात्रा, पारंपरिक पड़ाव के तहत शेषनाग पहुंचा पवित्र छड़ी मुबारक का जुलूस, विधि विधान से साधु संतों ने की पवित्र छड़ी मुबारक की पूजा, हर हर महादेव के लगाए जयकारे। इसके बाद पंचतरणी पहुंचेगी पवित्र छड़ी, 27 अगस्त तक पंचतरणी में रात्रि विश्राम। अमरनाथ यात्रा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण का प्रतीक है छड़ी मुबारक जुलूस, जो पहलगाम, चंदनवाड़ी, शेषनाग और पंचतरणी होते हुए पवित्र गुफा की ओर बढ़ती है। रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर अमरनाथ गुफा पहुंचेगी पवित्र छड़ी, जहां अंतिम पूजा और अनुष्ठान होंगे संपन्न। झांसी में श्रावण मास के दौरान पारंपरिक झूलनोत्सव की रौनक, मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को झूले पर किया गया विराजमान। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने नगर सेठ श्री ठाकुर जी की प्रतिमा को भव्य

झांकियां भी की गई पेश। इसमें श्री कृष्ण लीला और राम वनवास की कथा का किया गया चित्रण। मंदिर को भी रंग रोगन कर आकर्षक ढंग से सजाया गया, बेहद सुंदर नजर आया। दूधिया रंग से रोशनी से नहाया हुआ मंदिर। मेले के दौरान भक्तों की सुरक्षा के लिए पुलिस भी पूरी तरह से सतर्क। भगवान के दर्शन के लिए रोजाना हजारों की संख्या में आ रहे हैं भक्त। देशभर में रक्षाबंधन को लेकर तैयारियां तेज। दिल्ली में स्वदेशी और हाथ से बनी राखियां तैयार करने में जुटी महिला उद्यमी और स्थानीय कारीगर। इस साल बाजारों में विकसित भारत, नारी वंदन, आत्मनिर्भर भारत जैसी नई थीम वाली राखियां आकर्षण का केंद्र। महिलाएं रंग बिरंगे धागों मोतियों से सजा रही हैं अपनी राखियां। रक्षाबंधन से पहले दिल्ली समेत देशभर के बाजारों में खरीदारी तेज। इस साल रक्षाबंधन पर 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार होने की उम्मीद। आगरा में नेचुरल स्टोन से निर्मित राखियां बनी आकर्षण का केंद्र। सफेद संगमरमर और रंग बिरंगे पत्थरों का इस्तेमाल करके बनाई जा रही हैं राखियां। इन राखियों को अपने हाथों से तराशते हैं आगरा के पारंपरिक कारीगर, जिसपे प्रत्येक राखी का डिजाइन अपने आप में होता है अनोखा। रक्षाबंधन के पवित्र मौके पर देशभर से सरहद पर तैनात जवानों को भेजी जा रही है राखी। उधमपुर के छात्रों ने अपने हाथों से तैयार की सैनिकों के लिए राखियां। राखी के साथ छात्रों ने देश की सुरक्षा में तैनात फ्रंटलाइन जवानों के लिए अपने हाथों से ग्रीटिंग कार्ड भी किए तैयार। देश की रक्षा के लिए जताया आभार। रक्षाबंधन से पहले झांसी की बहनों का सैनिक भाइयों को खास तोहफा। 500 राखियों के साथ भेजा स्नेह भरा संदेश। हरियाली तीज का कार्यक्रम किया गया था आयोजित, जिसमें महिलाओं ने राखी तैयार करने के साथ भक्ति गीतों पर महिलाओं ने जमकर डांस किया। जवानों के प्रति कृतज्ञता के भाव से तैयार की गई राखियां। भाई बहन के पवित्र त्यौहार पर परिवार से दूर देश की सीमाओं पर तैनात जवान भी मना सके त्यौहार। भारत चीन सीमा पर दिखाई दी भाई बहन के प्रेम और देशभक्ति की अनोखी मिसाल। नीति घाटी की महिलाओं ने बॉर्डर कैंप में सेना के जवानों के साथ मनाया रक्षाबंधन। पारंपरिक वेशभूषा में पहुंची नीति घाटी के जुम्मा और कागा गांव की महिलाएं। कलाई पर राखी बंधवाते हुए जवान हुए भावुक। गुजरात में राजकोट के रेसकोर्स ग्राउंड में लगेगा सौराष्ट्र का सबसे बड़ा मेला। जोरों शोरों से चल रही है जन्माष्टमी लोक मेले की तैयारियां। इस साल मेले का नाम विरासत से विकास लोक मेला रखा गया। उद्घाटन 2 सितंबर को नेवी बैंड के साथ होगा। मेले में देश के मशहूर कलाकार देंगे परफॉर्मेंस। समापन 6 सितंबर को होगा। मेले में 10 से 12 लाख लोगों के आने की उम्मीद। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में सावन की आखिरी और सबसे खास लहरिया घटा सजाई गई। नीले पीले रंगों से सजा मंदिर भक्तों के आकर्षण का केंद्र बना। लहरिया घटा में ठाकुर द्वारकाधीश अपने परिवार और सखाओं के साथ 9 विशेष झूले पर विराजे। भक्तों ने श्रद्धा के साथ ठाकुर जी को झूला झुलाया। मंदिर परिसर में फवारे, गाय की सीनरी, बंदरों के कटआउट्स और मोर की सजावट की गई। रंग बिरंगी सजावट ने पूरे मंदिर को बेहद सुंदर बना दिया। ठाकुर जी की लहरिया घटा के दर्शन के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह दिखा। शाम 7 से 8 बजे तक मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। सावन में मंदिर में अलग अलग रंगों और रूपों की गई घटाएं सजाई गई। लहरिया घटा के साथ अब सावन की घटाओं का भव्य समापन होगा। जन्माष्टमी को लेकर दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में भव्य तैयारियां। 4 सितंबर को मनाया जाएगा भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव। जन्माष्टमी से पहले मंदिर को सजाने संवारने और रंग रोगन का काम तेज। जगह जगह लगाए जा रहे हैं पंडाल। आज से शुरू हो जाएगा कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम। शोभा यात्रा में गूंजेगा हरि नाम संकीर्तन। मंदिर परिसर में लगातार जारी भजन कीर्तन का कार्यक्रम। इस साल 5 लाख से ज्यादा भक्तों के आने की उम्मीद। 4 सितंबर को मुख्य आयोजन में भगवान को लगेगा 251 से अधिक व्यंजनों का भोग। आधी रात तक होंगे दर्शन। केरल में शहर शहर ओणम की धूम। 10 दिनों तक मनाया जाता है फसल का त्योहार ओणम। केरल के पथानम थिट्टा में ओणम उत्सव से जुड़ी पवित्र और ऐतिहासिक नाव थिरुवोनाथोनी रवाना। पारंपरिक भोज, ओणम आस्था संध्या के साथ आवश्यक सामग्री लेकर निकली नाव। ओणम उत्सव के दौरान इस पवित्र यात्रा का हिस्से बनने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे हैं श्रद्धालु। पूरी श्रद्धा के साथ नाव को किया रवाना। महाबली की कथा से जुड़ी है ये सदियों पुरानी परंपरा, जिसमें मंदिर के लिए भेजी जाती है आवश्यक

0: खाद्य सामग्री और रसद। हरनमुला मंदिर में ओणम के खास भोज के लिए रसोई की तैयारियां जोरों पर। इस पारंपरिक भोज को लेकर मंदिर परिसर में खासा उत्साह। केरल के तिरुवनंतपुरम में उमड़ा आस्था का सैलाब। तिरुवोणम दिवस पर श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में एकत्र हुए भक्त। इस पवित्र दिन पर भगवान के दर्शन पाने के लिए मंदिरों में भक्तों का तांता। मंदिरों में फूलों से भव्य सजावट की गई। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। 10 दिवसीय ओणम उत्सव का 10वां और सबसे महत्वपूर्ण दिन है तिरुवोणम दिवस। दैत्यराज महाबली का अपनी प्रजा से धरती पर आकर मिलने की इसमें मान्यता। केरल के वायनाड में लगी फूलों का अंबार। आज ओणम के 10वें दिन पूजा के लिए रंग बिरंगे फूलों की बंपर डिमांड। तिरुवोणम दिवस पर घरों के आंगन में फूलों की सुंदर और बड़ी रंगोली सजाने की परंपरा। पुक्कलम कहलाती है घरों में बनने वाली खास फूलों की रंगोली। पुडुचेरी में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है ओणम का त्यौहार। मलयाली समुदाय द्वारा बड़े हर्षोल्लास से पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। स्कूल कॉलेजेस में सजाए गए फूलों से सुंदर पुक्कलम। कई जगह फूलों की रंगोली बनाने का कॉम्पिटिशन। ओणम के मौके पर महिला कॉलेज में छात्राओं ने पेश किए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम। नजर आई केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत। पुरी स्थित प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मंगला आरती के साथ सुबह की शुरुआत। वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद और घंटियों से गूंजा पूरा मंदिर परिसर। इस पावन मेला में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और दूर दूर से आए भक्त। महाप्रभु के जयकारों से गूंजा परिसर। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को ईद मिलाद उन नबी की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अवसर समाज में एकजुटता और खुशियां बढ़ाने का। दिल्ली में ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर जुलूस से मोहम्मदी आयोजित, हजारों लोग उसमें शामिल हुए। मुंबई में ईद मिलाद उन नबी पर लोगों ने अदा की नमाज। इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है ये दिन। श्रीनगर में हजरत बल दरगाह पर ईद मिलाद उन नबी का लोगों ने नमाज अदा की। चारों तरफ सुंदर सजावट। छतरपुर में ईद मिलाद उन नबी का जश्न। सुंदर सजावट के बीच रोशनी से जगमगाती दिखी सड़कें। दिल्ली में लक्ष्मी योजना का शुभारंभ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जारी की 2500 रुपए की पहली किस्त। योजना के तहत लगभग 4000 महिलाओं को दी गई किस्त। करीब 6 लाख से ज्यादा महिलाओं ने अब तक किया रजिस्ट्रेशन। मुख्यमंत्री योगी ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का किया शुभारंभ। यूपी में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा। रक्षाबंधन के अवसर पर माताओं, बहनों और बेटियों के लिए योगी सरकार का विशेष उपहार। महिलाओं के लिए उपलब्ध रहेंगी यूपी रोडवेज की विशेष बसें। यूपी में श्रमिकों के लिए नियुक्ति पत्र अनिवार्य। हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अगले 15 से 20 वर्षों के खतरों की पहचान अभी से कर उन्हें बड़ा संकट बनने से पहले रोकना होगा। दिल्ली में राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड द्वारा सागर संवाद का आयोजन। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हुए शामिल। कृषि विश्वविद्यालय के 36वें वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कृषि क्षेत्र में नए शोध को प्रयोगशालाओं से खेतों तक ले जाने पर दिया जोर। अगरतला में कृषि आधारित प्रदर्शनी में शामिल हुए त्रिपुरा के गवर्नर। आत्मनिर्भरता और खेती से ज्यादा आमदनी के लिए बागवानी पर जोर दे रहे हैं त्रिपुरा सरकार। स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट पोत निपुण 31 अगस्त को नौसेना के बेड़े में होगा शामिल। लगे हैं 75% से ज्यादा स्वदेशी उपकरण। त्योहारी सीजन से पहले दिल्ली सरकार ने दी गुड न्यूज। लोगों को उपलब्ध कराएगी सस्ता प्याज और चीनी। रेखा गुप्ता सरकार का ऐलान। नाफेड से खरीदकर दिल्ली के लोग तक पहुंचाएंगे सस्ता प्याज। चीनी की बड़ी कीमतों के बीच बड़ा ऐलान। 35 रुपए किलो की दर पर चीनी बेचेगी दिल्ली सरकार। सीएम रेखा गुप्ता ने खाद्य मंत्री और अधिकारियों के साथ की आपात बैठक। प्याज और चीनी की कालाबाजारी करने वालों पर होगी सख्ती। यूपी के सीएम योगी ने कहा प्रदेश में चीनी की कमी नहीं। यूपी में हर महीने 4 लाख टन चीनी की खपत होती है। इसके मुकाबले 28 लाख टन का स्टॉक है। दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई रॉकिंग स्टार यश की फिल्म टॉक्सिक। फिल्म में यश के साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरेशी, तारा सुतारिया और रुक्मणी वसंत। टॉक्सिक के साथ सिल्वर स्क्रीन पर यश ने पूरे 4 साल बाद की वापसी। इससे पहले 2022 में ब्लॉकबस्टर फिल्म के जीएफ चैप्टर 2 में नजर आए थे यश। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की अपकमिंग फिल्म द वन का धमाकेदार टीजर जारी किया गया। 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी ये फिल्म। प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी फिल्म हैवान का ट्रेलर रिलीज। 18 साल बाद फिर बड़े पर्दे पर नजर आएगी अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी। इमरान हाशमी की फिल्म गनमास्टर G9 का टीजर रिलीज। इमरान हाशमी के साथ मुख्य भूमिकाओं में है जेनेलिया देशमुख और अपार शक्ति खुराना। 27 नवंबर को होगी रिलीज। बीजिंग में ह्यूमनॉइड रोबोट से पहली बार रस्साकशी में दम दिखाया। दो रोबोट्स की टीमें आमने सामने थी और 3 राउंड तक चला मुकाबला। रोबोट्स को उनके वजन के हिसाब से 2 वर्गों में बांटा गया। हल्के और भारी रोबोट्स ने अपनी अपनी कैटेगरी में मुकाबला किया। रोबोट्स फुटबॉल और रेस जैसे इंसानी खेल भी खेल रहे हैं। इन खेलों का मकसद ये देखना है कि रोबोट्स असली इंसान की तरह कितना काम कर सकते हैं। रोबोट्स को फैक्ट्री रेस्टोर और ऑफिस जैसे माहौल में भी परखा गया। मुश्किल हालात और इमरजेंसी में काम करने की उनकी क्षमता भी जांची गई। वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में कुल 51 इवेंट रखे गए हैं। आज होगा इवेंट का समापन। रोबोट ने लगाई 3.4 मीटर की जबरदस्त छलांग। बीजिंग की टीम ने तांगोंग अल्ट्रा रोबोट ने हाई जंप में बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 3.4 मीटर की ऊंचाई पार कर तांगोंग अल्ट्रा ने अपना ही पुराना रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। रोबोट की इस छलांग ने सबको चौंका दिया। इस मुकाबले में रोबोट की ताकत और बैलेंस की हुई कड़ी परीक्षा। महीनों से चल रही जोरदार प्रैक्टिस का मिला फल। बीजिंग में रोबोट का जबरदस्त जलवा। ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में गैलेक्सिया एआई ने फ्लोर एक्सरसाइज से जीता खिताब। रोबोट केंगो ने 3 मिनट में 10 खतरनाक मूव्स दिखाए। 360 डिग्री का बटरफ्लाई किक देखकर जज भी रह गए हैरान। नासा के एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन और ईएसए की सेफिया डोना स्पेस वॉक पर निकले। दोनों ने स्पेस स्टेशन के बाहर तेज इंटरनेट जैसे डेटा कनेक्शन वाले एंटीना पर काम किया। अनिल मेनन और सोफिया डोना ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर किया काम। उनका मकसद धरती और स्पेस स्टेशन के बीच डेटा भेजने वाला सिस्टम पूरा करना था। स्पेस स्टेशन पर लगाया जा रहा एंटीना हाई स्पीड डेटा भेजने में करेगा मदद। इससे नासा के ह्यूस्टन कंट्रोल सेंटर और स्पेस स्टेशन के बीच तेजी से जानकारी पहुंचेगी। स्पेस वॉक के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने खास एंटीना लगाने का काम आगे बढ़ाया। ये एंटीना स्पेस स्टेशन और धरती के बीच तेज संपर्क की अहम कड़ी बनेगा। स्पेस स्टेशन से लगातार तस्वीरें और दूसरी अहम जानकारी धरती पर भेजी जाती है। नया हाई स्पीड एंटीना इस डेटा ट्रांसफर को और ज्यादा बेहतर बनाएगा। अर्जेंटीना में टेंगो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो गई है शुरू। दुनिया भर से 800 से ज्यादा कपल डांस के इस मुकाबले में ले रहे हैं हिस्सा। हर जोड़ी शानदार डांस के जरिए जजों को प्रभावित करने की कर रही है कोशिश। बेहद रोमांचक हो चुका है मुकाबला। अर्जेंटीना के अलावा कई देशों से डांसर्स इस प्रतियोगिता में पहुंचे हैं। कुछ कपल्स ने अलग अलग देशों में हुए क्वालिफाइंग मुकाबलों के जरिए यहां जगह बनाई है। 1 और 2 सितंबर को खेले जाएंगे टैंगो चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले। विजेता बनने के लिए कपल्स अब सेमीफाइनल्स में अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं। यह महोत्सव दुनिया के सबसे बड़े टैंगो आयोजनों में गिना जाता है। 19वीं सदी के आखिर में हुआ था डांस की इस विधा का ईजाद। लंदन के एक फूड हॉल में डॉग्स के लिए खास खाना तैयार किया गया। मेन्यू में डॉगी ग्यूनेस और ए पॉ रोल्स फिट्स जैसे ड्रिंक्स भी शामिल। डॉग्स के लिए चिकन राइस, सैल्मन डक नूडल्स और चिकन टैकोस भी परोसे गए। मेन्यू में मिनी स्टेक और फ्राइज भी रखे गए। फूड हॉल के दुकानदारों ने डॉग्स के लिए खास पिज्जा और संडे रोस्ट भी बनाया। इन सभी चीजों में डॉग्स के लिए सुरक्षित सामग्री का इस्तेमाल किया गया। यह खास मेन्यू नेशनल डॉग डे के मौके पर शुरू किया गया है। नेशनल डॉग डे हर साल 26 अगस्त को मनाया जाता है। डॉग्स के लिए बना खास फूड फेस्टिवल नेशन ऑल डॉग डे से पहले डॉग्स को इंसानों की तरह अलग अलग डिश चखने का मौका मिला।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
2: सास बहु बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में कहीं है तकरार तो कहीं नए रिश्ते की शुरुआत। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: और अब बात कर लेते हैं लगातार बढ़ते हुए चीनी के दाम की। सरकार ने इस पर लगाम लगाने के लिए कुछ कारगर उपाय किए हैं। दिल्ली सरकार ने 35 रुपए किलो चीनी जनता को मुहैया कराने का इंतजाम किया है। इसके साथ ही चीनी की कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमारी की जाएगी। चीनी की जमाखोरी करने वालों के लिए इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस सिलसिले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री की एक अहम बैठक भी हुई है। वहीं चीनी की महंगाई पर ब्रेक लगाने के लिए यूपी में चीनी का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में 15 अक्टूबर से चीनी मिलों की शुरुआत हो जाएगी। आने वाले दिनों में यूपी में 90 लाख टन चीनी उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। और चलिए चीनी के बाद अब बात कर लेते हैं प्याज की। पिछले कुछ दिनों से प्याज की कीमतों में भी भारी उछाल देखने को मिल रहा है। सरकार ने प्याज की महंगाई पर लगाम लगाने के लिए कुछ खास उपाय किए हैं। प्याज की सप्लाई और महंगाई पर सरकार की नजर बनी हुई है। केंद्र सरकार ने 35 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज बेचने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार भी लोगों को सस्ता प्याज मुहैया कराएगी। सरकार नाफेड से प्याज खरीद कर जनता के बीच सप्लाई करेगी। इस बीच नाशिक से प्याज की सप्लाई बढ़ाने का इंतजाम भी किया गया है। प्याज की सप्लाई के लिए नाशिक से कांदा एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है। 24 अगस्त से प्याज की ढुलाई शुरू भी हो गई है। पहले चरण में चेन्नई, मदुरई, कोची को प्याज की सप्लाई की जा रही है। इसके बाद दिल्ली, गुवाहाटी भी कांदा एक्सप्रेस से सप्लाई होगी। प्याज की जमाखोरी करने वालों पर सरकार बड़ी कार्रवाई करेगी। रक्षाबंधन पर देश के कई राज्यों में बहनों के लिए उपहार का ऐलान किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया के जरिए तीन बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। इसके मुताबिक पुलिस दीदी यानी अभया ब्रिगेड के लिए 4,700 स्कूटर और मोटरसाइकिल का लोकार्पण और फ्लैग ऑफ किया जाएगा। इन वाहनों का इस्तेमाल स्कूल और कॉलेजेस जाने वाली छात्राओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए किया जाएगा। छात्राओं को 10,000 रुपए की PhD फेलोशिप मिलेगी। करीब 1,000 छात्राओं को 4 साल तक की फेलोशिप दी जाएगी। कारोबार और स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना भी शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत 50,000 से 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इन सब के अलावा रक्षाबंधन के अवसर पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से 27 और 28 अगस्त को महिलाओं और छात्राओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा भी मिलेगी। तो रक्षाबंधन पर बिहार के अलावा कई दूसरे राज्यों में भी लड़कियों और महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा की घोषणा की गई है। यूपी सरकार ने 27 अगस्त से 29 अगस्त तक लड़कियों और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा सुविधा देने का ऐलान किया है, जिसमें एक सहयात्री भी रह सकता है। उत्तराखंड सरकार ने 28 और 29 अगस्त को रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है। हरियाणा में राज्य परिवहन की साधारण बसों में महिलाओं के लिए सफर मुफ्त होगा। 27 अगस्त की दोपहर 12 बजे से 28 अगस्त की रात 12 बजे तक बहनों के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। महिलाओं के साथ 15 वर्ष तक के बच्चों को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा। इसमें हरियाणा के साथ ही चंडीगढ़ और दिल्ली तक की यात्रा भी शामिल है। राजस्थान सरकार ने 28 और 29 अगस्त को साधारण और एक्सप्रेसवे बसों में लड़कियों और महिलाओं के लिए राज्य की सीमा के भीतर मुफ्त सफर का ऐलान किया है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: रक्षाबंधन से पहले दिल्ली सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा, सीएम रेखा गुप्ता ने की लक्ष्मी योजना की शुरुआत, हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। देश भर में रक्षाबंधन की तैयारियां जोरों पर, पुरी में भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के लिए बनाई जा रही है दुनिया की सबसे बड़ी राखी, पटारा भिसोई सेवक कर रहे हैं तैयार। चमोली में भारत चीन सीमा पर तैनात जवानों को महिलाओं ने कलाई पर बांधी राखी, सुरक्षा बलों ने बहनों को दिया आशीर्वाद, पारंपरिक परिधान में महिलाओं ने डांस किया। उत्तर प्रदेश में 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को फ्री बस यात्रा की सौगात, सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का किया शुभारंभ, बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अंतिम चरण में अमरनाथ यात्रा, शेषनाग पहुंची पवित्र छड़ी मुबारक, विधि विधान से साधु संतों ने की पूजा, हर हर महादेव के लगाए जयकारे। देश भर में जन्माष्टमी की तैयारियां तेज, दिल्ली के इस्कॉन मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है, 4 सितंबर को मनाया जाएगा भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए।
3: गुड आफ्टरनून, नमस्कार, मैं हूं पारुल चौधरी, लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए सास बहू और पेटियां यानी एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। वैसे कहते हैं कि खूबसूरती ना सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं होती, ये जो आपकी उंगलियों पर सजे छोटे छोटे नाखून है ना जिन पर हम नेल पेंट लगाते हैं, वेल ये भी कभी कभी हमारे लुक को उभार देते हैं और कर देते हैं कमाल। कहीं पर क्लासिक रेड, पेस्टल पिंक या फिर फ्रेंच टिप्स, और आजकल तो जेल नेल्स, नेल आर्ट और उसके साथ साथ क्रोम नेल पेंट्स भी कर रहे हैं ट्रेंड। लेकिन देखिए, जरूरी नहीं है कि उंगलियों को खूबसूरत दिखाने के लिए आप सिर्फ नेल पेंट लगाएं, जरूरी है कि किस तरह आप नेल केयर करें, सही मैनिक्योर करें और नेल पेंट्स को किस तरह आप अपने नेल से रिमूव करें। तो आज तो शेयर करेंगे हम आपके साथ ढेर सारी ब्यूटी टिप्स और उसके साथ साथ है यहाँ पर ढेर सारा ग्लैमर और ढेर सारा एंटरटेनमेंट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे ये एपिसोड हेडलाइंस के साथ।
4: बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, अनशन पर बैठेगी दादी, दादी को चाहिए राध्या और प्रथम से घर का वारिस।
5: देखो जरा इधर देखो, गुस्सा छोड़ दादी माँ।
4: शुरू होगी ईशा और सूरज के बीच प्यार और तकरार, साथी होंगे मिहिका के लिए परेशान।
6: उसका मिट्टी का वो हाल कर
7: उसके पास नहीं जाऊं।
6: पर क्यों नहीं जाऊं?
7: अरे तुम मेरी बात,
6: ईशा जी आप मुझे समझते ही नहीं है।
7: अरे मैं समझती हूं, पर मैं
6: हमेशा हमेशा अंडरएस्टिमेट करती हूं।
4: जगधात्री के सामने होगा सच का खुलासा।
8: किसने उन मासूमों की जान पर अटैक करने का ऑर्डर दिया तुम्हें? अपने बॉस का नाम बताओ, कौन था वो? कुछ तो अच्छा करके जाओ, नाम बताओ।
4: होगी जानवी और निहाल की हल्दी की रस्म, शगुन में होगा अपशगुन। होई गुम यादे के दिग्विजय यानी कि अर्जुन पुंज संग करेंगे डे आउट, मिलेंगे उनके परिवार से, दिखेगी अर्जुन और गुरदीप की केमिस्ट्री, जानेंगे ये सभी बातें सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: कभी क्लासिक रेड, कभी ब्राइट पिंक, तो कभी नेल आर्ट। इसी तरह पति और पत्नी के रिश्ते में भी रंगों की कमी नहीं होती। तो क्या कुछ हो रहा है पति ब्रह्मचारी की इस कहानी में, आज देखिए कहानी कहां से शुरू हुई थी और कहां पहुंच गई है। रिश्तों में इतनी उथल पुथल, इतने सारे उतार चढ़ाव, लेकिन तभी तो है हमारे लिए भरपूर एंटरटेनमेंट। लेकर चलते हैं आपको यहाँ।
1: कभी तकरार तो कभी प्यार,
2: मैं बस इतना जानती हूँ कि हमें भीखा को आकाश से दूर रखना है, वरना उसकी तबीयत और खराब हो सकती है।
3: ईशा जी, हमें भीखा को कमजोर नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग बनाना है।
1: मेघा के लिए सूरज और ईशा दोनों ही परेशान।
3: वो हाल कर क्यों नहीं जाऊँ? ईशा जी, आप मुझे समझते ही नहीं है। हमेशा हमेशा डिस्कनेक्ट करते हैं।
1: क्या घर से जाने का फैसला करेगी मेघा? टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आकाश के कारनामों के चलते सूरज और ईशा दोनों ही बेहद परेशान हो रहे हैं और उनकी परेशानी तो बहसबाजी में तब्दील हो गई है। जरा देखिए कैसे सूरज और ईशा आकाश के चक्कर में लड़ झगड़ रहे हैं।
2: मैं बस इतना जानती हूँ कि हमें भीखा को आकाश से दूर रखना है, वरना उसकी तबीयत और खराब हो सकती है।
3: ईशा जी, हमें भीखा को कमजोर नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग बनाना है। आप उसकी रोल मॉडल हैं और मैं उसका सुपर हीरो। अगर हम ऐसे ही मुसीबतों से भागते रहेंगे तो क्या सीखेगी भला वो हमसे? आप ही बताइए। मुझे एक बार आकाश से बात करनी हो।
2: तुम आकाश के पास नहीं जाओगे।
3: पर क्यों?
2: हम एक प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए दूसरी प्रॉब्लम नहीं शुरू कर सकते।
3: यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी, कि आप अपने पति को अंडरएस्टिमेट करते रहती है। मैं उस कमीने का वो हाल कर
2: दूंगा। नहीं, सूरज, मैंने कहा ना तुमसे मिलने नहीं जाओगे।
3: अरे पर क्यों नहीं जाऊं ईशा जी?
2: आप
3: मुझे नहीं समझती।
1: भाई दोनों की बहसबाजी बढ़ती चली जा रही है, तो वहीं दरवाजे पर मेघा और ब्लूटूथ दोनों ही खड़े होकर उनकी लड़ाई देख रहे हैं। और कहीं न कहीं मेघा को लग रहा है कि ये सब उसी के चक्कर में हो रहा है। खैर, सूरज और ईशा अपनी लड़ाई पर ब्रेक लगाते हैं और ब्लूटूथ और मेघा दोनों को सुला देते हैं। अगले ही दिन ईशा मेघा को लेकर परेशान है। सोती हुई मेघा के पास बैठी ईशा सिर्फ इमोशनल हो रही है, तो वहीं कमरे में आ जाता है सूरज, जो करता है मेघा के बैग की तैयारी। बस फिर क्या, वो बैग की तैयारी देख ईशा परेशान हो जाती है और उसे लगता है कि सूरज मेघा को उससे दूर कर देगा।
2: दाइमा की खुशी के लिए तुम ही कहा हमसे दूर भेजते थे। सच, तुमने एक बार भी नहीं परवाह की कि मैं क्या चाहती हूँ, मैंने क्या कहा, कुछ भी नहीं सोचा।
3: ऐसी बातें कर रही हैं शशिया? आप जो चाहती हैं, मैं जो चाहता हूँ, अलग थोड़ी रहे। आपको झूठ लगता है कि आकाश से डर के मैं मेघा को कहीं दूर भेज दूँ?
2: तो फिर ये बैग क्यों पैक कर रहे थे?
3: इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बैग पैक कर रहा हूँ शशि, ठीक तैयार करके रख रहा हूँ। कल घर में शादी है, कितने सारे काम होंगे, कितने लोग होंगे, और ऐसे में आकाश जरूर कोई ना कोई तो चाल चलेगा सब। इसलिए ये इनहेलर और मेडिसिन का एक अलग किट तैयार करके रख दो।
4: नहीं, घर से निकालने का इरादा नहीं है। एक्चुअली घर में शादी है अगले दिन, काव्या और बंटी की शादी है, तो वो उस शादी में बहुत सारे कियोस्क मचने वाला, भीड़ भड़का होगा, मेहमान आएंगे, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, सबका आओ भगत करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सूरज को ये लग रहा है कि आकाश जो है धमकी देकर गया है, तो अपनी अगली चाल कुछ ना कुछ तो चलेगा ही है। तो बेटर मतलब कि मेघा का जो प्रिकॉशन वाली चीज़ें है, लाइक उसका अस्थमा पंप है एंड ऑल, ये सारी चीज़ें, मेडिसिन एंड ऑल, वो सारी चीज़ें इकट्ठा करके रख रहा है। बिकॉज अगर आकाश आके कोई अस्थमा वगैरह का कुछ तोड़ भी दे, तो ये एक बैकअप के लिए मेरे पास रहे इमरजेंसी में, जिसे मेघा को कुछ ना हो, उसकी जान पे कोई भी खतरा ना हो। सो दैट्स इट। और ईशा जी को लगता है कि मैं मेघा को वापस भेजने की प्लानिंग कर रहा हूँ, तो समझाता ही है कि ऐसा नहीं है ईशा जी, आप जो चाहती हैं वही मैं भी चाहता हूँ। ठीक है, और ये मेरा बैकअप है, और ईशा जी बहुत परेशान होती है, टेंशन में रहती है, तो बस सांत्वना देता है, मोरल सपोर्ट देता है, और एज अ हस्बैंड जितना हो सकता है वो ईशा जी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, दैट्स इट।
1: भाई सूरज ने तो ईशा की गलतफहमी को ना सिर्फ दूर किया बल्कि ईशा जो कि इमोशनल हो रही है और आकाश के चलते परेशान हो रही है, उसको देखिए कैसे सूरज हौसला दिला रहा है और उसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, साथ ही साथ अपनी शिकायत भी जता रहा है।
3: मैं समझ सकता हूँ ईशा जी कि आप इस वक्त बहुत परेशान हैं, लेकिन आप ये सोचिए ना, जब हम सब एक साथ एक टीम बनके इतना बड़ा आतंकवादी अटैक रोक सकते हैं, तो आकाश को भी रोक सकते हैं। हाँ, लेकिन एक शिकायत है मुझे आपसे कि आपने ताई माँ की शर्त क्यों मानी?
2: आकाश के बच्चे को पकड़ के लॉकअप में डाला और इतना पीटू उसे कि फिर डर लग जाता है सूरज कि इन सब से आकाश को कोर्ट में सिंपैथी कार्ड ले देने का मौका ना मिल जाए, आपसे दूर ना हो जाए।
3: आकाश से तो हम बाद में निपट लेंगे ईशा जी,
4: वो हमेशा नो टच वाली चीजें हैं हमारे शो में, जो कि पूरी दुनिया ने 2.5 करोड़ की आबादी ने एक्सेप्ट किया है, तो उसके लिए तहे दिल से थैंक यू। बस ईशा जी को स्वेट हो रहे हैं, पसीना आ रहे हैं, तो वो पोच भी देता है, बिकॉज जितना पॉसिबल हो सकता है ब्रह्मचर्य में कि पालन कर सकता है वो, उस चीज़ों को बाउंड्री लाइन पे रखते हुए, थिन लेयर डिसाइड करते हुए ये सारी चीजें कर सकता है ईशा जी के साथ।
1: अब सूरज और ईशा दोनों ही मिहिका से बहुत प्यार करते हैं, ऐसे में वो मिहिका को अपने से दूर जाने नहीं देना चाहते, लेकिन मिहिका, उसे लगता है कि उसी के चक्कर में आकाश सूरज और ईशा दोनों को परेशान कर रहा है, इसलिए देखिए कैसे वो अपना फैसला सुनाती है।
5: अगर आप लोग मुझे उनके पास नहीं छोड़ के आए तो मैं फिर से भाग जाऊंगी।
3: हमें कुछ भी नहीं पता,
5: क्या पता नहीं है?
3: यही कि तुम इस घर को छोड़कर क्यों भागी थी। तुम इसलिए भागी थी ताकि आकाश हमें परेशान करना बंद कर दे, है ना?
2: हमारी परेशानी की वजह आप वो ही हैं। वो आपको ले जाने के लिए हमें परेशान नहीं कर रहे, अपनी बात मनवाने के लिए हमें परेशान।
3: और तुम्हें क्या लगता कि अगर तुम आकाश के पास वापस चले जाओगे तो क्या आकाश हमें परेशान करना बंद कर देगा?
4: मेघा को एक्चुअली ये लगता है कि घर में ईशा जी और मेरी मतलब की बहस हो रही है, मतलब इन शॉर्ट लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ आकाश, कि आकाश अपनी बच्ची वापस ले जाना चाहते हैं, मतलब कि मेहिका को। तो मेहिका को ये लगता है शायद मैं यहाँ से भाग जाऊंगी तो सारी चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगी, और मतलब कि सुपर हीरो एंड मेरी जो आइडियल है वो लड़ाई झगड़ा बंद कर देंगे एक दूसरे से। तो वो भाग गई रहती है, और भागने के बाद फाइनली हम उसे ढूंढ लेते हैं, ढूंढ के वापस घर में लेकर आए हैं। उसके बाद भी वो जैसे ही नींद से उठती है, एक्चुअली सपने में बोलते रहती है कि इशू की मिशू मुझे आपके ही पास रहना है, दूर मत जाना है, जैसे ही आंखें खुलती है देखती है हम दोनों पास में बैठे, फिर वो एक्ट करने लगती है। फिर सूरज समझाता है कि तुम्हें क्या लगता है हम बच्चे हैं, हमें सब पता है कि तुम एक्ट कर रही हो, तुम घर छोड़ के क्यों भागी, सारी चीजें बताता है, एंड उसके बाद भी वो एक्ट करती है, बोलती नहीं मुझे जाना है।
1: अब सूरज और ईशा दोनों ने ही मिहिका को समझाने की खूब कोशिश की, इतना ही नहीं ईशा ने तो आकाश को कॉल तक लगा दिया, जिसमें मिहिका अपनी इच्छा जाहिर करती है, साथ ही आकाश का असली चेहरा मिहिका के सामने भी आ जाता है।
2: अच्छा एक काम करते हैं, आप खुद आकाश से बात करके पूछ।
6: हेलो आईपीएस मैडम।
5: आईपीएस मेरे पास में नहीं है पापा, उनके फोन से मैं बात कर रही हूँ। पापा मैं आपके पास आने के लिए तैयार हूँ, प्रॉमिस मी कि आप आज के बाद इस घर के लोगों को कभी परेशान नहीं करोगे।
6: ये पागल हो गई क्या तू? आके दो थप्पड़ मारो ना सही रहेगी, मेरा काम तेरे वहाँ रहने से होगा, समझी? चल फोन लग।
1: भाई मिहिका तो अपनी तरफ से बस इतना ही चाहती है कि आकाश और सूरज के बीच सब अच्छा रहे, इसीलिए वो अपना फैसला सुना देती है। ऐसे में सूरज भी उसके जाने की तैयारी शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, घर के बाकी लोगों को भी बुलाकर ये जानकारी देता है, जिसे सुनकर ब्लूटूथ बड़ा ही परेशान होता है। इतना ही नहीं, मेहका के जाने की तैयारी चल ही रही थी कि तभी ब्लूटूथ भी अपना बैग पैक कर मेहका के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है।
2: मैंने बैग पैक कर लिया, तू नहीं रुकेगी तो मैं भी तेरे साथ रुकूंगा।
3: हाँ, ऐसे आइडिया बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ।
2: हाँ, मैं भी चलूंगा और हम भी। हाँ, हम सब निशु के साथ चलेंगे।
1: भाई घर में सभी का ये फैसला सुनकर मेहका कहीं न कहीं इमोशनल हो गई और उसे पता चल गया कि कैसे सूरज और ईशा का पूरा परिवार उसे कितना प्यार करता है। इतना ही नहीं, मेहका ईशा के गले जा लगी और उससे सॉरी बोला और तो और सूरज को भी प्यार जताकर उससे माफी मांगी और उन्हीं के साथ उनके परिवार में रहने का फैसला कर लिया। भाई देखना होगा कि मेहका का ये फैसला सूरज और ईशा पर कितना भारी पड़ने वाला है। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
0: समय कम होना तो सिंपल न्यूड पिंक या पीच नेल पेंट लगाइए, क्योंकि क्लीन फिनिश्ड ग्रूम्ड नेल्स, देखिए आपका लुक ना यू एलिगेंट बन जाता है, जो है बहुत ही जरूरी, क्योंकि प्रेजेंटेबल होना ज्यादा जरूरी है बजाय आप किसी भी तरह की नेल आर्ट फ्लॉन्ट करें। तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जहां पर है आपके लिए एंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट दोनों एक साथ। कैसे? ऐसे।

मंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में जल्द ही निहाल और जानवी शादी के बंधन में बंधने वाले हैं और ऐसे में यहां शुरू हो गई है शादी की सभी रस्में और आज सभी पीले रंग में रंगे हुए हैं क्योंकि आज हो रही है निहाल और जानवी की हल्दी की रस्म।

ऐसे में देखिए कैसे दोनों आसपास ही बैठे हुए हैं। भई नाच गाकर इस हल्दी की रस्म की शुरुआत हुई। ढोल नगाड़े बुलाए गए, सभी लोग काफी खुश हैं। जहां परिवार वाले भी आज पीले रंग में रंग गए हैं, क्योंकि यही तो है शगुन का रंग।

0: शुरू हुई हल्दी की ये रस्म। बेनिहाल तो ये शादी ही नहीं करना चाहता, इसीलिए बेमन से वो ये सारी रस्में निभा रहा है। तो वहीं जानवी को भी निहाल से प्यार नहीं है, मजबूरन दोनों एक दूसरे को शगुन वाली हल्दी लगा रहे हैं। और ऐसे में उनके बीच बैठी है रुचिता।
1: मेरे यार की शादी है, मेरे यार।
0: इन सब के बीच यहाँ पहुँच जाते हैं बाकी के घर वाले।

और इस नन्ही सी बच्ची से लगाई जाती है हल्दी। पहले तो वो निहाल को हल्दी लगाती है और फिर बारी आती है दुल्हन को हल्दी लगाने की, लेकिन बच्ची जानवी की जगह रुचिता को हल्दी लगा देती है, जिसके बाद फिर एक बार नानी का गुस्सा फूट जाता है और वो रुचिता को इस हल्दी की रस्म से बाहर चले जाने के लिए कहती है। ऐसे में सभी घर वाले भी शौक हैं। उन्हें लगता है कि इस शगुन में अब शगुन जो हो गया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि रुचिता का साया भी जानवी पर ना पड़े।

0: से तो किस्मत बार बार इशारा कर रही है कि बनने वाली है निहाल और रुचिता की जोड़ी, लेकिन घर वाले चाहते हैं कि जानवी का रिश्ता निहाल से जुड़े। अब देखना होगा कि शादी तक क्या जानवी निहाल से शादी के बंधन में बनती है या फिर रुचिता। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: अब जेल नेल्स और नेल एक्सटेंशंस बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन उन्हें मेंटेन करना भी जरूरी है। उसी तरह जिंदगी में जब मुश्किल वक्त आता है ना, तो खुद को संभाले रखना और हिम्मत रखना ये भी बहुत जरूरी है। और बिल्कुल ऐसी ही स्ट्रेंथ की कहानी है जगदात्री। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको जगदात्री और शिवाय के पास और देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है इनकी कहानी में आज। आइए दिखाते हैं आपको इस कहानी का क्विक अपडेट।
2: किसने उन मासूमों की जान पर अटैक करने का ऑर्डर दिया तुम्हें? अपने बॉस का नाम बताओ, कौन था वो?
0: जगदात्री की जिद।
2: कुछ तो अच्छा करके जाओ, नाम बताओ।
0: सच का खुलासा। जी टीवी के सीरियल जगदात्री में जगदात्री के हाथों एक सबूत लगा था जो सच का खुलासा कर सकता है, लेकिन वो भी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। लेकिन ऐसे में जगदात्री ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। देखिए, वो पहुंच गई है उसी आदमी से सच जानने के लिए। वो आदमी मौत की कगार पर है, लेकिन जगदात्री वो जिद पर है और उस आदमी का नाम पता करने की कोशिश में लगी है।
2: देखो जिसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की है, उसने तुम्हें बचाने के बारे में एक भी बार नहीं सोचा। तुम्हारे सारे साथी मर चुके हैं, सिर्फ तुम बचे हो।
3: मैं बात समझ क्यों नहीं रही है, मर जाएगा ये।
2: बताओ मुझे।
4: अरे क्या करिए, चलिए यहां से।
0: एक तरफ डॉक्टर जगदात्री को मना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नर्स उसे खींच कर वहां से हटा रही है, लेकिन जगदात्री वो अड़ी हुई है सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति का नाम जानने के लिए जिसने देशमुख परिवार में बवाल मचा रखा है, जिसकी वजह से जगदात्री की माँ की मौत हुई थी। ऐसे में जगदात्री की जिद इस हद तक बढ़ गई कि उस मरते हुए व्यक्ति ने आखिरकार उस व्यक्ति का नाम बता दिया।
2: जिसे तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो, उसने तुम्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। नाम बताओ उसका।
3: मैम प्लीज, मर जाएगा ये, अब जाइए प्लीज।
2: चलिए चलिए यहाँ से। पॉइजन दिया है, तुम्हारे जीवित रहने के चांसेस भी बहुत कम है। कुछ तो अच्छा करके जाओ, नाम बताओ। किसने उन मासूमों की जान पर अटैक करने का ऑर्डर दिया तुम्हें? अपने बॉस का नाम बताओ, कौन था वो? बॉस का नाम बताओ।
3: रुद्र।

0: भाई रुद्र का नाम सुनते ही जगधात्री के पैर उतले जमीन खिसक गई और अब वो ये सोचकर हैरान है कि आखिर वो शिवाय को कैसे बताएगी। इसी बीच वहाँ पर आ जाती है जानवी भी, जो जगधात्री पर नाराज होती है, लेकिन जगधात्री उसे बताती है कि उसे पता चल गया है कि आखिर वो कौन है। भाई उस बदमाश ने नाम बताकर मौत को गले तो लगा लिया, लेकिन जगधात्री के पास सबूत नहीं है। ऐसे में वहाँ पर शिवाय भी आता है जो जानना चाहता है, लेकिन जगधात्री खामोश खड़ी है क्योंकि चाहकर भी वो शिवाय को नाम जो नहीं बता सकती। अब देखना होगा कैसे शिवाय को पता चलेगा कि उसका भाई रुद्र ही सारे षड्यंत्रों के पीछे था। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: तो फिर चलिए आपकी जिंदगी में भी हम बिखेर देते हैं इन नेल पेंट्स की तरह एंटरटेनमेंट के रंग। अब लेकर चल रहे हैं आप सबको आपके फेवरेट सेगमेंट की ओर। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आज हमारी टीम सास बहू और पीटिया ने किससे की है ये प्यारी सी मुलाकात आपके फेवरेट सितारे से। जानना चाहते हैं आप उन्हें अप क्लोज एंड पर्सनल, सो गेट सेट गो।

0: रियल लाइफ में ये है गुरदीप कोहली के पति और दो प्यारे बच्चों के पापा।
1: इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी।
0: भाई ये अपने बेटे के साथ वीडियो गेम्स खेलते हैं। अपनी पत्नी गुरदीप का रसोई घर में हाथ बटाते हैं और फिर तैयार व्यार होकर निकल जाते हैं इतने सीरियल के सेट पर, जहां उनकी कनों की रियल फैमिली है। भाई ये बनने जा रहे हैं डॉक्टर सृष्टि के दूल्हे। जी हाँ, एक लंबे समय के बाद अर्जुन पुष लौट कर आए हैं हुई गुम यादें के साथ और अब सीरियल में उनकी शादी का ट्रैक आ रहा है और ये बनने वाले हैं दूल्हे, वो भी सृष्टि के। तो एक एक्टर की रियल लाइफ और रियल लाइफ क्या होती है, घर पर कैसे अर्जुन अपनी पत्नी गुरदीप के साथ रोमांस लड़ाते हैं, लेकिन पर्दे पर जाकर सच धज कर बन जाते हैं डॉक्टर सृष्टि के दूल्हे, जिनकी शादी है ट्विस्ट वाली। कलाकार से किरदार तक की जर्नी आज सास बहू और बेटियां में हम देखेंगे अभिनेता अर्जुन पुंज के साथ। जाएंगे उनके घर, मिलेंगे उनकी फैमिली से, देखेंगे कि उनका घर कैसा है, रसोई घर में वो क्या करते हैं, क्या है उनके डब्बे में, सेट पर उनके वैनिटी में कैसे बन जाते हैं अपने किरदार दिग्विजय के रूप में, कैसे है सेट पर उनके संगीत साथी। मैं ये सब जानने के लिए आज हम करने वाले हैं अर्जुन पुंज के साथ एक घर वाला डे आउट, जहां पर हम देखेंगे इस कलाकार को किरदार में ढलते हुए। तो सीधा चलते हैं अर्जुन के घर पर, बजाते हैं उनके घर की घंटी और उन्हें कहते हैं हेलो।
2: सास बहू और बेटियां, वेलकम होम, आइए। Please have a little tour. Meet our little boy, Leo.
3: Leo,
2: say hi. And this is our dining area, जहाँ मेरी wife गुरदीप बहुत yummy खाना बनाती हैं. And that's my son.
3: Hello.
2: He's Mahir.
0: तो ये है अर्जुन पुंज की real life family. अर्जुन पुंज मुंबई में अपनी पत्नी गुरदीप कोहली के साथ रहते हैं। गुरदीप एक जानी पहचानी एक्ट्रेस है जो कुमकुम भाग्य से लेकर संजीवनी जैसे शोज में दिखी हैं। वैसे संजीवनी वो शो था जिसने गुरदीप और अर्जुन को मिलाया और एक बार फिर से वो एक मेडिकल शो था और एक बार फिर से एक लंबे समय के बाद वो मेडिकल शो से लौट कर आए हैं। तो चलते हैं अर्जुन के घर पर और मिलते हैं उनकी वाइफ गुरदीप से और जानते हैं कि संजीवनी की ये जोड़ी आखिर कैसे बनी थी और पूरे 24 साल बाद भी ये जोड़ी अभी भी महक रही है अपने रोमांस के साथ।
4: आज मैं अपने रियल किरदार में हूँ, गुरदीप पुंज, अर्जुन पुंज की बीवी, माहिर पुंज की माँ और महर पुंज जो मेरी डॉटर है वो कॉलेज में है। सो वेलकम होम, गुड टू हैव यू। गृहिणी के रूप में आप मुझे देख रहे हैं, ना ही कि कोई टीवी स्टार की माँ के रोल में या कोई बहू के रोल में। तो एक्चुअली आज मैं अपने घर पर हूँ और इस रूप में अर्जुन के साथ।
2: Well, हमने शुरू तो किया था एज को एक्टर्स एक शो में जो 2003 में मैंने ज्वाइन किया था, गुरदीप वो 2002 से कर रही थी, उसका नाम था संजीवनी मेडिकल बोन। तो जहाँ पे हम डॉक्टर जूही से पहली बार रूबरू हुए थे तो मैंने पहली बार गुरदीप, हाय आई एम अर्जुन, हाय आई एम गुरदीप, तो ऐसे करके बहुत बात शुरू हुई थी। बट जिंदगी ने एक ऐसा टर्न लिया कि इनकी रियल लाइफ में किसी और के साथ शादी हुई, लेकिन रियल लाइफ में मेरे साथ हैप्पी मैरिज। अभी भी याद आता है तो अच्छी बात है।
4: माय गॉड, अर्जुन 23-24 साल हो गए हैं एक्चुअली।
2: यस, इट्स बीन 23।
4: इट्स सो गुड यू नो कि जब आपके एक शो के थ्रू लोग आपको जाने पहचाने और जुड़े और इतना प्यार मिलता रहे इतने सालों तक। हम जाते हैं बाहर तो बहुत सारे शोज किए हैं, लेकिन हाँ, संजीवनी, डॉक्टर रमन और डॉक्टर जूही का जिक्र हमेशा होता है। सो दैट्स, थैंक यू फॉर ऑल द ऑडियंस टू गिव अस सो मच लव।
2: वेल, मैं अंदर की बात तो नहीं बताऊंगा, लेकिन सॉरी लेकिन नहीं, वाकई बहुत बढ़िया जर्नी रही है। इनफैक्ट जब हमने ये शुरू किया था तो मैं डॉक्टर जूही का एक फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन बाद में मैं नेगेटिव टर्न कर गया था। तो ऑडियंस उस शो को इतना ज़्यादा सीरियसली लेती थी कि जब हम बाहर कभी डिनर पे जाते थे या मैं हम लोग डेट पे जाते थे तो कितने लोग आते थे और बोलते थे डॉक्टर जूही ये आप इसके साथ क्यों घूम रही हैं, ये नेगेटिव है, ये कुछ गलत प्लान कर रहा है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। तो ऐसी शुरुआत हुई थी लेकिन टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस इज बीन दिस दिसंबर इट विल बी 23 years and it's going really well and we have two beautiful kids, so it's been a great journey so far. Yes,
4: I am really grateful ke logon ne pyar tabhi bhi diya aur abhi bhi pyar mil raha hai Arjun ko, so mujhse zyada khush koi nahi ho sakta. It's been a very long wait you know for him, so we are very very grateful to have him back on screen.
2: ब्रेक तो बहुत जरूरी था क्योंकि गुरदीप नॉन स्टॉप शी वॉज वर्किंग एट वर्क। मैंने थोड़ा शुरू किया था ब्रेक के साथ, देन हमने कुछ और वेंचर आउट किया, कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह, बट ड्यू टू कोविड एंड ऑल थिंग्स डिडंट वर्क आउट। उसके बाद जब मुझे वापस आना था इस फील्ड में तो यस, काफ़ी स्ट्रगल थी, काफ़ी साल लग गए, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस अभी चीज़ें गाड़ी चल पड़ी है तो things are looking good, thank you God.
0: तो गुरदीप और अर्जुन को आपने संजीवनी में देखा, उसके बाद नच बलिए में और दिया और बातिया में, लेकिन रियल लाइफ में आज भी इनकी जोड़ी देखिए कितनी रोमांटिक है भाई। सुबह सुबह घर की शुरुआत मियां बीवी की थोड़ी सी नोक झोंक प्यार और डांस के साथ होती है और उसके बाद रसोई घर में गुरदीप बनाती है अर्जुन के लिए लंच, क्योंकि अर्जुन एक लंबे समय के बाद लौट कर आए हैं टेलीविजन पर। और सुबह सुबह की जद्दोजहद में गुरदीप एज अ हाउस वाइफ उनका ध्यान रखती है और साथ साथ अपने दोनों बच्चों का भी।
2: यस, वैसे तो घर पे गुरदीप बॉस हैं, वो जो बोलती हैं क्या बनना है, क्या खाना है, कैसे करना है, तो हम उसी को फॉलो करते हैं। तो गुरदीप आप मेरे साथ आइए और प्लीज़ एक टूर दे दीजिएगा।
4: सबसे पहले मेरे पति ना खाने के बहुत ज्यादा शौकीन है, सो थैंक यू। मैंने अपने करियर में कुछ कुकिंग शोज भी किए हैं क्योंकि जब से मैं यू नो मैंने होश संभाला है तब से मैं काम कर रही थी, तो ये कुकिंग शोज ने मुझे थोड़ा सा यू नो तैयार कर लिया था टू फीड हिम यू नो। ही लव्स दाल मखनी बटर चिकन, ही इज अ प्योर डेलियाइट एंड बटर चिकन दाल मखनी आप उनमें से नहीं निकाल सकते, तो मुझे इसमें बहुत
2: गुरदीप के हाथ के आलू के पराठे विद वाइट मक्खन।
4: आई कैन से इफ ही इज हैप्पी विद माय कुकिंग देन आई एम अ गुड कुक। ये खुद भी बहुत ही अच्छा बेहतरीन खाना बनाते हैं और खाने के शौकीन और बनाने के शौकीन है, सो वी बोथ एक्चुअली लव कुकिंग एंड लव फीडिंग पीपल। सो अभी अगर हमारे दोस्त नहीं आते तो हमारे बच्चों के दोस्तों की लाइन लगी होती है, तो बटर चिकन अर्जुन बहुत अच्छा बनाते हैं, नॉन वेज ही लव्स टू मेक एंड ईट, सो आई शुड से ही मेक्स वेरी गुड मटन एंड चिकन वेरी वेरी वेल।
2: तो कुछ लाइट लाइक साडू ब्रेड हो गया या एग हो गया, स्क्रैम्बल्ड एग हो गया, ऐसा कुछ कर लेंगे अगर ज्यादा फैंसी नहीं लगेगा बट चलेगा ना।
4: हमेशा रात को होती है, दिन में हम घास फूस खा लेते हैं।
0: तो चलते हैं गुरदीप और अर्जुन की रसोई में और देखते हैं कि सुबह सुबह दो अभिनेताओं की रसोई में आखिर क्या पकता है।
2: किचन,
4: आई कैन कॉल माय स्पेस किचन प्लीज, ये मेरा स्पेस रहने दो,
2: ये गुरदीप का ही स्पेस है। वीकेंड पे कभी कभी संडे को शाम को जैसे गुरदीप ने बताया मैं कुछ बनाता हूँ तो मेरा स्पेस बन जाता है, तो ये
4: और इससे मैं ये हमारी लाइफलाइन अस्मिता, शी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन माय लाइफ बिकॉज़ शी इज एक्चुअली माय लाइफ सेवर, माय हाउस हेल्प।
2: तो जब से ये आती है और जब जाती है तो पूरे घर अस्मिता ये करना ये किधर है वो किधर, सब कुछ अस्मिता को ही पता है कि कहाँ पड़ा है, फ्रॉम मेहर माहिर टू मी एंड गुरदीप।
4: सो लेट मी बिगिन, क्योंकि अर्जुन बिजी हैं, बात ही कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए पड़ाकर उनका सालों सैंडविच बना के लंच तो वो घर पे खाएंगे, लेकिन सब कुछ देना पड़ता है क्योंकि 12 आवर्स ऑफ वर्क। यू वांट टू हेल्प मी?
2: यस श्योर, आई विल हेल्प यू। तो इफ यू कैन जस्ट टेक केयर ऑफ द माइक।
4: सो दैट्स
2: हमारा साडो ब्रेड, इसमें हम डालेंगे थोड़ा ये डिप जो होममेड डिप है,
4: चिपोटले डिप,
2: चिपोटले डिप।
4: आई हैव एक्चुअली पुट पनीर इन विद इट,
2: या अदर बटर पुट इट एंड देन आई विल पुट द लेटस हियर, सम पनीर, यम, I'm sure it's going to taste yum also.
5: and some cucumber, well sliced. Yeah, Gurdeep, cutting is too good.
4: वही ना, करती सब कुछ मैं हूँ.
5: और हाँ, एंड का क्रेडिट मैं लेके चला जाता हूँ. ये ऐसा है,
4: हमेशा ही होता है ना, सब बीवियों के साथ ऐसा होता होगा. आई एम सो श्योर.
5: और जैसे आप देख सकते हैं, ये बन गया है हमारा एक साड़ो.
4: इट गोज इन योर बॉक्स.
5: दिस गोज इन माय बॉक्स. थैंक यू वेरी मच.
4: Yes, so he is a good cook, right? Sandwich बनाना cooking होता है. Well, कोई बात नहीं, अगली बार आइए तो देखिए कुछ क्या बनाते हैं वो.
5: अब मैं आपको next time serious invite करूँगा और आप मेरी cooking का जलवा देखेंगे आप.
6: दिल ने दस्तरखान बिछाया, दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है.
4: कि जब मैं शूट नहीं करती हूँ तो पूरी माँ की ड्यूटीज करती हूँ और अभी पत्नी की ड्यूटीज निभा रही हूँ, तो आइस बॉक्स रेडी कर रही हूँ अपने पति के लिए.
5: कितना शूट कितना मिस करती है गुरदीप?
4: शूटिंग मिस करती हूँ, लेकिन अब ये थोड़ी ड्यूटीज भी जरूरी है तो ये भी करने में मजा आ रहा है. बट वेरी सून यू आर सीइंग मी. आई एम नॉट अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि माय शूटिंग और मैं लाइक ऐसे हैं, तो मैं बहुत जल्द आपको देखने मिलने वाली हूँ, लाइक इन अ मंथ और टू.
0: तो देखिए कैसे गुरदीप कोहली अपने हस्बैंड अर्जुन के लिए सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनाती हैं. वैसे अर्जुन अब रेडी हो रहे हैं क्योंकि वो अपने सीरियल हुई गुम याद के सेट पर जाने वाले हैं. तो उससे पहले उन्होंने हमें घर का टूर कराया.
5: यस, ये है हमारा डाइनिंग टेबल. यहाँ से वी आर सीइंग अ नाइस व्यू ऑफ साउथ साइड ऑफ मुंबई और एक क्लियर डे पे तो आप वर्ल्डली और ये सब वहाँ की बिल्डिंग्स भी देख सकते हैं. एंड अगर आप बाहर आना चाहें तो आइए, प्लीज कम. ऑन अ क्लियर डे यू कैन सी द सी राइट देयर. अभी थोड़ा क्लाउडी है इसलिए थोड़ा समझ नहीं आ रहा है. तो ये है एक हमारे घर की व्यू. मैं सुबह की चाय मेरी हमेशा यहाँ पे होती है और अखबार, लाइक टिपिकल अंकल स्टाइल. बट हाँ, आई लाइक माय न्यूज़पेपर. आई डोंट लाइक टू रीड ऑन द फोन ऐप पे, नहीं. मुझे एक प्रॉपर क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी चाहिए होती है न्यूज़पेपर की. और मेरा चाय इधर होता है एवरी मॉर्निंग. एंड इफ इट्स रेनिंग तो कभी कभी वो कांदा भजिया भी हो जाती है. तो अभी ये हमारा हॉल है जहाँ हम लोग गप्पे मारते हैं फैमिली के या दोस्त लोग आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा चिट चैट होता है. शाम को थोड़ा म्यूजिक व्यूजिक चल के थोड़ा बस चिल करने का एरिया है. और अब आते हैं हमारे रूम में. आई होप इट्स नॉट दैट मेसी. नहीं, वैसे ठीक ठाक है. ये हमारा रूम है. वेल, ये बोलते हैं कि आप अपने बेड साइड पे रखिए तो प्रॉस्पेरिटी होती है. तो हमने बोला यस, श्योरली वी विल कीप अ ब्यूटीफुल फिगर.

0: गया है, तो ये तो हम अभी रिसेंटली दुबई होके आए हैं, तो ये एयरलाइन एक आपको आपके पास आता है, आपकी सीट्स पे आके पोलरॉइड खींचता है. तो दिस इज आर, ये है हमारे जब हम दुबई वी वर डिपार्टिंग एंड दिस व्हेन वी वर अराइविंग टू इंडिया. तो ये दोनों टाइम वी वेलकम गुड जी. तो ये जैसे मैं कह रहा था, मेरा चिल जोन है यहाँ पे, मैं आके रिलैक्स करता हूँ. मेरा रिमोट है यहाँ पे, और यहाँ पे फिर दरवाजा बंद करके कोई पापा नहीं, कोई चिक चिक नहीं, कोई कुछ नहीं, ये मेरा मी टाइम होता है. ओ सॉरी, नहीं मैं दोनों का टाइम होता है, सिर्फ मी टाइम नहीं. गुरदीप का भी रूम है. यस यस यस जाना है. यस यस, मैं आपको फ्रैंकली बात बताऊँ, बड़ी मुश्किल से मी टाइम मिलता है यार. जा रिलैक्स करो, मैंने आपको बोला कोई चिक चिक नहीं. और एनी वेज बोल नहीं सकते. तो ये थोड़ा मेरा चिल जोन है, तो यहाँ पे मैं आके रिलैक्स करता हूँ, कभी म्यूज़िक चला के रिलैक्स, कभी टीवी. और फिर सुबह जैसे शूटिंग के लिए उठना पड़ता है, तो यहाँ से फिर भागो. आइए, अब हमको जाना है शूटिंग पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं आजकल जब मतलब जब शूटिंग शूट पे होता हूँ, तो थोड़ा लाइट रखता हूँ, अपना टिफिन, अपना इनटेक ऑफ फूड.
1: रियल लाइफ में अर्जुन पुंछ दो बच्चों के प्राउड पापा हैं और अपने पापा होने का कर्तव्य बखूबी निभाते हैं. फिर चाहे बेटे के साथ वीडियो गेम्स खेलना हो या अपनी बेटी को चेयर अप करना, तो आइए देखते हैं अर्जुन पुंछ का रियल लाइफ पिता वाला रूप, जो आपने उनके किसी शो में भी अब तक नहीं देखा होगा.
0: हाय माहिर, आर यू इनसाइड? से हेलो. हाउ आर यू? विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे.
2: थैंक यू.
0: स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज.
2: थैंक यू.
0: थैंक यू. यू गॉट टू से एनीथिंग टू द ऑडियंस?
2: I don't know.
0: You don't know?
3: पापा के लिए क्या बोलोगे?
2: Good luck.
0: Good luck. For my shooting.
3: आप सीरियल देख रहे हो?
2: Yeah. Few episodes.
0: What's my name in the show?
2: Diggy.
0: Diggy. Yes. Thank you. Are you liking Diggy?
2: Yeah.
0: Great. चलो, I'll not disturb you. Yes. ये इसका favorite corner है. यहाँ पे ये Spiderman, Superman सब मिलेगा. तो ये है माहिर का रूम. माहिर अभी बड़ा हो गया है, तो ही नीड्स अ सेपरेट रूम कभी कभी, लेकिन वो आ जाता है पापा मम्मी के पास. ओके, नो ही एंड हिज सिस्टर स्लीप टुगेदर, बट नाउ ही वांट्स हिज रूम, उसको अपना रूम चाहिए. तो मैं कभी शूटिंग से आता हूँ, कभी जल्दी पैकअप होता है, तो आई लव टू प्ले PS5 विद माहिर. हम लोग थोड़ी गेम्स खेलते हैं. माहिर सॉरी, कैन आई जस्ट, एम आई प्लेइंग वेल? एक्चुअली मैं माहिर से ये सीखता हूँ ये गेम, क्योंकि मैं इतना अच्छा हूँ नहीं. माहिर पुंज वैसे ही माहिर है हर चीज़ में, तो दिखाता रहता है मुझको, पापा ऐसा नहीं, ऐसे खेलते हैं. तो कभी कभी मैं इसका जो कमाया हुआ पॉइंट्स है, स्कोर है, वो कभी घट जाते मेरी वजह से. वेल, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जहाँ हम यहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं और पावर्स मिलती हैं, तो मुझे वो करना पड़ता है. तो ये भाई साहब मुझे अच्छी तरीके से मेरा जूस निकाल देते हैं गेम में. राइट माहिर?
2: नो.
0: यस.
2: नो.
0: ओके, एंड दैट्स लियो. उसको भी अच्छा लगता है जब हम लोग कभी यहाँ पे चिल कर रहे होते हैं. ही वॉन्ट्स टू बी ए पार्ट ऑफ यू नो व्हेन वी आर प्लेइंग. उसको समझ शायद आता होगा, देखता बड़े गौर से है. अभी तो चलो मस्ती कर रहे हैं वो. लियो वांट्स से हाय. He's busy sniffing. ये था हमारा गेमिंग स्नीक पीक ऑफ आर गेमिंग सेशन विद माहिर. वो एक्चुअली ज्यादा अच्छा खेलता है मेरे से, आई हैव टू एडमिट दैट. बट माहिर, आई एम बेटर इन बास्केटबॉल. हमारी डॉटर मेहर, दैट्स मेहर जिनका मैंने अभी रूम दिखाया. ये अभी कॉलेज में है, अपना ए लेवल्स कर रही है मीडिया स्टडीज में. वैसे हाय मेहर.
4: हाय, आई एम जस्ट रियली हैप्पी दैट ही गॉट दिस प्रोजेक्ट आफ्टर रियली लॉन्ग, एंड आई कैन नाउ, आई एम ग्रोन अप, सो आई कैन सी हिज शोज एंड अंडरस्टैंड हिज एक्टिंग मच बेटर. सो आई एम रियली योर प्राउड डॉटर.
0: थैंक यू, दैट्स सो स्वीट. गॉड ब्लेस, प्लीज यू गो चेंज. तो proud daughter, proud father, sorry. proud daughter, yes. Good proud father. My daughter's room. This is, ये आपको थोड़ा स्पिक एंड स्पैन लगेगा, क्योंकि मेरी बेटी थोड़ा हर चीज़ एकदम ठीक जगह पे, सब ठीक होना चाहिए. She's very particular.

0: अब वक्त है अर्जुन का सच पर जाने के लिए। उनका टप्पा रेडी है, गुरदीप ने उनकी सब तैयारी कर दी है।
1: रेडी, गुरदीप हैज मेड एवरीथिंग रेडी फॉर मी एंड अभी कॉल टाइम थोड़ी देर में है हमारा, तो आई थिंक लेट्स गो, रास्ते में बात करेंगे, सेट पे चलते हैं, आइए। ओके गाइस, बाय, सी यू,
2: बाय, सी यू,
1: ओके, बाय माहिर, बाय महर, बाय गुरदीप, बाय, सी यू।
0: उन्होंने बाय बाय किया सबको और निकल पड़े अपने सेट की ओर। सवार हो जाते हैं अर्जुन पुज की गाड़ी में और निकल पड़ते हैं उनके सेट की ओर। भाई घर से सेट तक के दौरान वो म्यूजिक सुनते हुए जाते हैं, ट्रैफिक को चीरते हुए जाते हैं क्योंकि उन्हें पहुंचने में पूरे 40 मिनट लगते हैं।
1: जैसे आप देख सकते हैं आप मेरे साथ बैठे हैं, ड्राइवर नहीं मेरे पास, ड्राइवर है लेकिन वो बच्चों के लिए और गुरदीप यूज करते हैं। आई लाइक टू ड्राइव, मैं अपना खुद मेरा एक एक रिलैक्स मोमेंट रहता है जब मैं ड्राइव करता हूँ। मेरे गाने, मेरी प्लेलिस्ट रहती है साथ में। सेट पे जाना और वापस घर आना एक मी टाइम रहता है, अपने थॉट्स रहते हैं, ख्याल रहता है, तो मुझे बहुत मैं एंजॉय करता हूँ। आई नो ट्रैफिक थोड़ा है लेकिन स्टिल आई एंजॉय दिस टाइम और मैं खुद ही ड्राइव करता हूँ, ड्राइवर जैसे मैंने कहा, बच्चों के लिए और वाइफ के लिए। वेल, मुझे ना लॉन्ग ड्राइव बहुत पसंद है, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था हाल ही में हमने एक फैमिली वेकेशन लिया था दुबई, तो हमने मुझे ड्राइविंग का मतलब वहाँ की तो रोड बहुत अच्छी थी और गाड़ियाँ भी अच्छी, तो मैंने एक गाड़ी रेंट पे ली थी। तो हम दुबई टू आबू धाबी गए थे और वहाँ पे बच्चों को फरारी वर्ल्ड दिखाया था हमने। तो दुबई और आबू धाबी की जो ड्राइव है अप्रॉक्सीमेटली एक घंटा दस मिनट ही है, तो हमने बहुत इन्जॉय किया और वहाँ की लेन्स बहुत फास्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे चला रहा हूँ 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, तो वहाँ पे चल रही थी 140-150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। तो मतलब हाँ, वो लेफ्ट हैंड ड्राइव है, तो मतलब ऐसे मत जाइएगा, आपको ड्राइवर्स इंटरनेशनल ड्राइवर परमिट लेना पड़ता है एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ द रूल्स कि वहाँ पे फाइन्स बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे मत जाइएगा, पूरा सोच समझ के थोड़ा सीख के जाइएगा।
0: घर से सेट तक के सफर के दौरान अर्जुन पुज ने सुनाया अपना जीवन का सफर। बतौर अभिनेता अर्जुन ने 2001 में तेरे लिए नाम की फिल्म से डेब्यू किया था जिसका दिल धपाक गाना काफी हिट हुआ था। फिल्म तो हिट नहीं हुई लेकिन अर्जुन ने उसके बाद कुछ दक्षिण भारतीय फिल्में और हिंदी फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें प्रसिद्धि मिली 2003 में संजीवनी में डॉक्टर अमन बनकर, उसके बाद 2005 में वो रहने वाली महलों की, उसके बाद साथ ही रहे जैसे शोज किए। उसके बाद एक लंबा गैप था, इस बीच उन्होंने दिया बाती और नच पलिए जैसे शोज की, लेकिन अब वो लंबे समय के बाद लौट कर आए हैं हुई गुम यादें में। तो जानते हैं अर्जुन का सफर।
1: well, मेरी करियर की शुरुआत एक फिल्म से, मैं बॉम्बे आया था 1999 में अगस्त में और मुझे 99 दिसंबर में एक फिल्म मिली थी तेरे लिए, जिसके डायरेक्टर फेमस संजय गढ़वी थे और सभी उसमें थे, राजकुमार हिरानी की एडिटर थे, जीत प्रीतम का म्यूजिक था, जहाँ प्रीतम अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अब्बास टायर वाला जिन्हें गाने लिखे थे, अहमद खान ने कोरियोग्राफ किया था, उस फिल्म में मैंने शाहिद कपूर को रिप्लेस किया था, वो एक बैंड म्यूजिक बैंड की ऊपर फिल्म थी, और गाने बहुत अच्छे थे लेकिन फिल्म इतनी नहीं चल पाई, तो काफ़ी डिसहार्टन, काफ़ी बुरा लगा। और उसके बाद मैंने की दो साउथ फिल्म, मैं हैदराबाद चला गया था तेलुगु फिल्म्स के, जिसके बीच में मुझे संजीवनी का फ़ोन आया था एज डॉक्टर राहुल, लेकिन सिद्धार्थ जो तब सिनेमिस्ट आप अलकाइमी के जो प्रोड्यूसर हैं, उनको मैंने बोला कि सिद्धार्थ मैं तो अभी हैदराबाद में हूँ और मैं नहीं कर पाऊँगा डॉक्टर राहुल का, तो नहीं बट वी वॉन्ट यू, चैनल वॉन्ट्स यू, ऐसा करके बात हुई, लेकिन नहीं, डेट्स नहीं मैच कर पाए। फिर कुछ महीने बाद मैं वापस आया, फ्रेंकली मेरा मन इतना नहीं लगा वहाँ पे, क्योंकि यहाँ बॉम्बे में अपना, मुंबई में एक अपनापन है, अपने लोग हैं, वहाँ पे हैं अपने लोग, लेकिन थोड़ा बातचीत, खाना पीना बहुत काफ़ी अलग है, और वहाँ पे एकदम अकेले रहना, यहाँ पे क्या यार दोस्त सब थे। तो आके फिर मुझे सिद्धार्थ ने फ़ोन किया कि तुम आ गए हो वापस, मैंने बोला हाँ, ये एक रोल है डॉक्टर अमन का जो जूही की लाइफ में आता है, ऐसे हाँ मैं बिल्कुल करूँगा। तो कुछ भी नहीं था, कोई ऑडिशन नहीं, कुछ लुक टेस्ट नहीं, सीधा मुझे सेट पे बुलाया और हमने शुरू किया. और फिर आप जैसे घर पे आए तो वहां से फिर गुरदीप और मेरा बातचीत शुरू हुई. बाय द वे गुरदीप ने मुझे प्रपोज किया था शादी के लिए, ये भी मैं क्लियर कर दूं. She could not resist. मार पड़ेगी मुझको. अब फिर संजीवनी के बाद, संजीवनी में खत्म हुआ तो मुझको ऑफर आया राजश्री से. राजश्री पहली बार टीवी इंडस्ट्री में आना चाहते थे तो मुझे ऑफिस बुलाया गया. पहली बार मैं सूरज जी से मिला, सूरज भरजाटिया जी से. बहुत ही दिलचस्प मुलाकात थी. उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताने शुरू किए. मैंने प्यार किया कि हम आपके हैं कौन के. तो मैं वो जब बात करते हैं तो बस आप सुनते ही रहते हैं उनकी, वो इतनी अच्छी बात करते हैं. तो उन्होंने फिर मुझे पूछा कि क्या आप करना चाहेंगे. तो मैंने बोला जरूर सर, आपकी प्रोडक्शन है. मैं तब उनका प्रेम था. हालांकि फिर स्क्रिप्ट में नेम चेंज किया गया, राज हुआ और उसके बाद प्रिंस हुआ. तो मैं बोला बिल्कुल करना चाहूँगा. और सब चीज़ें फाइनलाइज हुई और उन्होंने जब नरेशन देना शुरू किया, जैसे कि कहा जाता है सूरज जी इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट नरेटर्स हैं. नरेशन जब देते हैं तो हीरोइन की भी एक्टिंग करेंगे, हीरो की भी. एक दूध वाली होगी, काम वाला भाई भी होगा, ड्राइवर भी होगा, टफ जैसे हम आपके गाँव में टफी भी है उसका भी बताएंगे. तो इज अ ग्रेट नरेटर ऑफ अ स्टोरी. तो मैं तो बस मैसेमराइज था. तो मैंने राजश्री का फर्स्ट शो ऑन टेलीविजन किया सहारा के लिए, जहाँ पे द शो जनरेटेड द मैक्सिमम TRP. सो दे वर वेरी हैप्पी. तो 3 साल किया. उसके बाद एक छोटा शो था संजय बाजवा का, स्फेयर ओरिजिन्स का, साथ
0: अर्जुन बुक के करियर में सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन था उनकी गुरदीप कोहली से शादी. दोनों ने नचपलिए भी किया, दियाबाती में साथ भी किया और साथ साथ दोनों बिजनेस पार्टनर्स भी हैं. दोनों रेस्टोरेंट के बिजनेस में ही थे और इसी बिजनेस के चलते वो लंबे समय से टेलीविजन से गायब थे.
1: गुरदीप और मुझे नचपलिए मिला. हम दोनों ने वी डिड नचपलिए Part 2 और हमारा शुरू हुआ था सितंबर में और हमारी शादी हमने डिसाइड की दिसंबर में. तो उन्होंने बोला भाई ऐसा है, लेकिन हम लोग दिसंबर में माई डेट से, क्योंकि हमारी शादी दिल्ली में थी. तो उन्होंने बोला नहीं, बट यू जॉइन इट, बट फॉर द डेट्स वी हैड टू गो. नहीं तो लोग बोल रहे थे कि हम ही विनर हैं. बट उस शो में बहुत मज़ा आया. वहाँ पे सरोज खान थी हमारी जज, कुणाल कोहली थे और मलाइका अरोड़ा देवर आर जजेस. तो दैट वाज अ गुड फन एंड गुड एक्सपीरियंस. उसके बाद थोड़ा गैप रहा, क्योंकि जो हमारे टेलीविजन शोज हैं वो थोड़ा गांव विलेज में चले गए, दादी साहब भाभी साहब और ये सब. तो मेरे को इतना मज़ा नहीं आ रहा था उस स्क्रिप्ट सुन के और सेट पे जाने के लिए. तो मेरा हमेशा रहता कि मोटिवेशन होनी चाहिए. आप अपने अलार्म क्लॉक को स्नूज नहीं करो आप, बल्कि अपने अलार्म जब लगाए उसके 10 मिनट पहले उठो, क्योंकि आप एक्साइटेड हो काम पर जाने के लिए. तो ये मेरा हमेशा से फंडा रहा है. तो मुझे एक्साइट नहीं किया. फिर मैंने थोड़ा सा डाइवर्ट किया, कुछ लोग मिले, एक दो रेस्टोरेंट्स खोले. उसमें फिर मैं थोड़ा बिजी हो गया. रेस्टोरेंट्स वर डूइंग वेरी वेल. फिर हमारा कोविड हिट हो गया. कोविड टाइम थोड़ा बहुत ही डरावना और बहुत ही डल था फॉर रेस्टोरेंट्स. हम लोग क्लाउड किचन नहीं कर पाए, सिर्फ डिलीवरी. तो हमने फिर इवेंचुअली उसको बंद किया. और इसलिए मुझे इतना गैप लग गया वापस आने में. फिर मैंने बोला नहीं, अभी बच्चे भी बड़े हैं. पापा वी यू आप काम करते थे, लेकिन अभी हमको भी देखना है आपको स्क्रीन पे और वी हैव टू वॉच यू कि कैसा है. तो मेरी वहाँ से फिर स्ट्रगल शुरू हुई काम के लिए. फिर काम लोगों को लगा कि मैं दिखता हूँ कोई फादर का रोल करने वाला, कोई 20 साल का बच्चा मेरा, 20 साल का लड़का मेरा बच्चा है, अब लड़की बने डॉटर बने. लेकिन जब मैं जाता था ऑडिशन के लिए तो कन्विंस नहीं होते थे, नहीं सर आप तो लगते नहीं है. तो वहाँ पे थोड़ी फिर स्ट्रगल हुई. फिर इवेंचुअली मुझे सोबो से फ़ोन आया, सोनी सब से, कि ऐसा रोल है और बहुत ही अच्छा है, रिलैक्स है, बहुत ही मैच्योर आदमी है. जो हीरोइन सृष्टि है जिस टर्मोइल से गुजर रही है वो संभालता है सबको. और उसके कुछ बच्चा नहीं है, उसको सृष्टि से शादी करनी, एक लव ट्राइंगल है. तो आई सेड यस साउंड्स गुड. और फिर काफ़ी समय बाद एक अच्छा शो मिला है. और हैरानी की बात यह है कि एकदम नॉस्टैल्जिक था, क्योंकि जब मैं पहले दिन सेट पे गया तो वो भी एक हॉस्पिटल था, और जब मैं 2003 में जब पहली बार टेलीविजन सेट एंटर किया तो वो भी एक हॉस्पिटल था, तो बहुत ही नॉस्टैल्जिक और अनरियल एक्सपीरियंस था मेरे लिए. मेरा थ्रो, माय गला वाज हैवी, माय आईज वर नम, मुझे बहुत काफ़ी इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए कि ये वापस कैसे, यू नो. तो अच्छा है, और मैं ये दिग्विजय का किरदार मैं प्ले कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है करने में, और सेट पे बहुत मज़े हैं. मोस्टली मेरे सीन्स गुलकी के होते हैं, अभी आयशा है और इकबाल के साथ भी काफ़ी सीन्स थे, वेरी चिल्ड आउट, हम लोग बहुत मस्ती बहुत करते हैं, और जब उसी कैमरा रोल होता है तो फिर संभल जाते हैं, कई बार डायरेक्टर को बोलना पड़ता है भाई ऐसे टाइम पे बैकअप नहीं होगा अगर मस्ती चलती रहेगी. और मस्ती इसलिए चलती है क्योंकि जो आपके को एक्टर्स हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट पहले लोग हैं और फिर कॉन्फिडेंट एक्टर्स हैं, तो कोई सुनने में आता है इसने उसकी लाइन छीन ली, उसने उसको फेस ही नहीं दिया, जो भी है वैसा, यहाँ पे टच वुड बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा कुछ नहीं है. वो हम लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं और एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनते हैं, ऐसा एटमॉस्फेयर है ये सेट पे, बहुत ही अच्छी कैमराडरी, बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप और सुपर पॉजिटिव एनर्जीज ऑन सेट. बिल्कुल आप रियल फैमिली से मिलेंगे, आप मिलेंगे आई साहिब से जो हमारी माँ बनी है, वो भी रानी है अपनी जगह की जहाँ से वो आई है. सृष्टि, डॉक्टर सृष्टि जिनके साथ शादी होने वाली है, अभी हम वही सेट पे जाने वाले हैं जहाँ पे शादी है. यूजली हमारा सेट पास है लेकिन ये जो शादी वाला सेट है ये थोड़ा दूर है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है.
0: बातें करते करते सास बहू और बेटिया संग अर्जुन पुंज अपने सीरियल हुई गुम यादें के सेट पर पहुंचे.

0: यस, हम अपने शूट पे पहुंच चुके हैं. ये हमारा, ये मेरा मेकअप रूम है वैनिटी वैन में. ये मेरी स्क्रिप्ट है जो अभी मुझे पढ़नी है. और ये क्या है, ये मेरी कॉस्ट्यूम है जो भी हम पहनने वाले हैं. ये खास इसलिए है क्योंकि आज एक बहुत ही खास इवेंट होने वाला है. आज एक बहुत बड़ा फंक्शन है. आज फाइनली दिग्विजय और सृष्टि की शादी है. तो बने रहिए और कॉस्ट्यूम में देखेंगे एकदम. और पगड़ी भी इसके साथ होने वाली है. यहाँ पे इन्होंने स्पेशली एक पगड़ी वाला बनाया है जो अभी थोड़ी देर में मुझको तैयार करेगा. तो आई होप अच्छा लगे.
1: अब वक्त है अर्जुन पुंज के रेडी होने का. भाई दिग्विजय को दूल्हा बनना है और इसके लिए उनका आज खास मेकअप हो रहा है. तो देखते हैं कैसे रेडी होते हैं अर्जुन पुंज अपने किरदार के लिए.

0: नहीं तो मेरा मेकअप ज्यादा दिख रहा है ऐसे, लेकिन बहुत हिसाब से बहुत कम ही है, क्योंकि इनको लगता है कि इतना मेकअप चाहिए नहीं। लेकिन जब ज्यादा रात को शूट करते हैं तो वापस आते हैं तो ऐसे आईज ऐसे हो जाती है, तो मैं बोलता हूँ यार थोड़ा अंडर आईज कर दे ठीक से।
1: अर्जुन का जहाँ मेकअप हो रहा है साथ साथ वो अपनी लाइनें भी याद कर रहे हैं, क्योंकि आज के सीन में उन्हें ढेर सारी डायलॉग्स भी बोल रहे हैं। फाइनली झट से उनका मेकअप हो गया रेडी और अब वक्त है कॉस्ट्यूम चेंज का।

0: और मेकअप मेरा ऐसे खत्म हो गया, मुझे ज्यादा मेकअप लगता नहीं है। बस मैं अभी अपने कॉस्ट्यूम दादा की वेट कर रहा हूँ, आपको कॉस्ट्यूम दिखाई थी, बस अभी वो पहनेंगे, इस गेटअप में आएंगे और फिर मैं आपको मिलता हूँ जल्द ही। तो मैं अर्जुन से अब दिग्विजय बन गया हूँ, ये मेरी दूल्हे वाली लुक है। लेकिन अभी भी भूतना पिक्चर बाकी है, थोड़ी इनकम्प्लीट है। हमारे दादा आए हैं स्पेशली, अभी कुछ करेंगे हमारे से। आइए दादा, ये हमारे पगड़ी वाले दादा हैं, ये बहुत एक्सपर्ट हैं पगड़ी में, ये सब टाइप की पगड़ी बांधते हैं, तो आज ये अपना जलवा दिखाएंगे। लोग बोलते हैं कि हीरोइन को काफी टाइम लगता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, हीरो लोगों को भी टाइम लगता है तैयार होने में।
1: दिग्विजय दूल्हा बन रहा है और उसमें सबसे खास है उसकी ये पगड़ी। तो देखिए अर्जुन को आज जो पगड़ी बांधने आए हैं वो कितना स्पेशल अंदाज में उन्हें पगड़ी बांध रहे हैं। ठरपट कर पगड़ी वगड़ी बांध कर पूरे गहनों से लदकर अब वो दूल्हा बनकर रेडी है।

0: यस सो फाइनली ये लुक रेडी है. मैंने भी लाइफ में काफी शोज किए लेकिन इतना भारी और अच्छा कॉस्ट्यूम विद दिस पगड़ी, जैसे आपने देखा है एक स्पेशल पग वाले आए थे जिन्होंने पगड़ी बांधी थी. पहली बार किया है जब मैंने कॉस्ट्यूम पहली बार ऐसे हैंगर में टंगी हुई देखी थी तो मैंने बोला यार ये क्या कर रहे हैं, मुझे क्या बनवा रहे हैं, एकदम राजा बाबू टाइप जोकर टाइप में लगूँ मैं. लेकिन जैसे ही पहनी इसकी फिट और जो काम किया है बहुत पसंद है मुझे. आई एम रियली लाइकिंग माई लुक. गले में हार हो गया है और ये एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता ही बोलेंगे आई थिंक इसको, साथ में धोती विद दी शूज. आई थिंक बहुत डिटेलिंग की गई है हमारे क्रिएटिव्स प्रोड्यूसर और चैनल की तरफ से कि काफी तगड़ा और भारी लुक दिया है, लग रहा है कि रॉयल बंदा है.
1: अर्जुन पुंज अब रेडी है अपने कॉस्ट्यूम हेयर मेकअप के साथ और अब चलते हैं सेट पर जहां आज बड़ा ही तामझाम है. सबसे मिलते मिलाते हेलो हाय बोलते हुए अब मिलते हैं अर्जुन के होने वाली दुल्हनिया डॉक्टर सृष्टि यानी गुलकी जोशी से. वैसे पर्दे के पीछे दोनों बहुत मस्ती करते हैं.

0: और ये है हमारी डॉक्टर सृष्टि गुलकी जी, जो हमारी शादी करने वाली है शायद, फाइनली हमारी शादी होने वाली है। कॉस्ट्यूम देख के तो ऐसे ही लग रहा है होने वाली, पता नहीं इनके भी क्या चल रहा है अभी दिमाग में, करेंगे या नहीं पता चले।
1: इस दुल्हन के बहुत नखरे, झेल पाओगे?
0: यही बात ठीक है, सब तो झेल लिया अभी तो, मिट गया सब, लेकिन सब झेल लिए थे।
1: प्यार हल्का है, मिट गया दिग्विजय।
0: आपको भी पता चलने वाला है क्या होने वाला है।
2: वैसे अर्जुन पुनकी शो में एंट्री के साथ साथ कुछ नए चेहरे भी शो में आ गए हैं, जैसे उषा बच्चानी जो आई साहब बनी है, और छवि पांडे जिनका खास रोल है। तो आइए मिलते हैं अर्जुन पुंज के रील के साथियों से।
1: मैं आपको गुड मॉर्निंग, और
3: गुड मॉर्निंग।
0: ये एक और हमारे ब्रैट है, एक और मस्ती खोर है हमारे सेट में। Yes.
1: Do I look like
0: she doesn't look like, absolutely.
3: So, actors are very positive here, and कहीं कुछ ऐसा नहीं लगता है कि किसी को attitude है। Everybody has come to work, ये मैं star हूँ, मैं star नहीं हूँ, वो feeling ही नहीं आ रही। So that is one thing I have to say about this production.
0: Well, इनका character बहुत ही सख्त तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ही एक correct character है, और अपने बेटे से दिग्विजय से बहुत प्यार करती हैं। और बहुत इनके साथ पहला दिन शूट जब मैंने किया तो एकदम एक लगा कि हम पहले भी मिल चुके हैं और काम कर चुके हैं, इतना कंफर्टेबल है इनके साथ काम करने में, बहुत मज़ा आता है। और ऑफ कैमरा जब कट होता है तो हम काफ़ी मस्तियाँ भी करते हैं।
3: ओ ही इज़ अ स्वीट हार्ट। मैं इससे बहुत सालों पहले मिली थी, व्हेन आई वाज वर्किंग विद हिज वाइफ, एंड बट तब हम अच्छे से मिले नहीं थे। पहले दिन ही ऐसा लगा कि मैं सबको बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत टाइम से काम कर रही हूँ। वन ऑफ द थिंग्स आई हैव टू से अबाउट दिस यूनिट इज द एक्टर्स आर अमेजिंग।
0: या गुलकी एंड आई साहब आर स्क्रीन पे जो दिखता है इनका, लेकिन ऑफ कैमरा जरा हाउस ऑन फायर, दोनों इतनी मस्ती करते हैं।
3: हाँ, वी विल डू अ ठुमका देन।
2: हुई गुम यादें में अब शादी का मंडप सज चुका है, जहां दिग्विजय दूल्हा है और डॉक्टर सृष्टि दुल्हन है। लेकिन इनकी शादी होगी कि नहीं, ये सस्पेंस है जो आपको सीरियल में देखने को मिलेगा।
0: Well, it's great to be back on television. और उससे भी अच्छी बात, I'm back on सास बहू एंड बेटियां। जैसे हमने एपिसोड में दिखाया था कि काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग आए, मेरे साथ पूरा दिन बताया, देखा पूरे दिन में मैं क्या करता हूँ, फैमिली के साथ कैसे रहता हूँ, खाना पीना, ट्रैवल, और फिर सेट, और फिर कॉस्ट्यूम। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई होप आप ये शो देख रहे हैं हुई गुम यादें, और प्लीज़ दिग्विजय के कैरेक्टर को प्यार देते रहिए जैसे आप हमेशा देते रहे हैं मेरे पहले कैरेक्टर्स को। थैंक यू सो मच, इट वॉज अ ग्रेट डे विद यू गाइस।
2: तो ये थे अर्जुन पुंज, और उनके परिवार से हमने आपको मिलाया उनकी पत्नी गुरदीप कोहली, और दोनों बच्चों के साथ उनकी रियल जिंदगी के साथ साथ पर्दे पर गुलकी जोशी के साथ उनके बाकी कलाकार की लाइफ हमने आज दिखाई, सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में। तो उम्मीद है इस कलाकार के बारे में आपको ढेर सारी बातें पता चली होंगी। मुंबई से रूपल बावची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: सिर्फ खूबसूरत चेहरा ही नहीं, खूबसूरत मन भी एक इम्पोर्टेंट ब्यूटी एक्सेसरी है। नेल आर्ट आपके नाखूनों पर हो या ना हो, लेकिन आपकी जिंदगी में अगर खुशियां होना तो बस आपके चेहरे पर ऐसा ग्लो आ जाता है जो आप ढेरों प्रोडक्ट्स यूज करके भी नहीं ला सकते। कुछ ऐसा ही कह रही हैं आज हमसे हमारी राध्या। तो क्या कुछ हो रहा है राध्या और प्रथम की इस कहानी में, चलिए पता कर कर आते हैं, लेकर चलते हैं आप सबको मन अति सुंदर के सेट पर।
5: अनशन पर बैठी दादी
6: नहीं, तब तक हम अनशन पे रहेंगे।
5: राध्या और प्रथम के बच्चे को लेकर दादी की जिद

0: एप्पल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में आज हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है, जहां फिर एक बार दादी ने नया तमाशा खड़ा कर दिया है। असल में दादी अनशन पर बैठ गई है खाना पीना छोड़कर, क्योंकि वो चाहती है कि जल्द से जल्द राध्या और प्रथम इस घर का वारिस उन्हें दे, यानी कि घर गूंजे किलकारियां। लेकिन राध्या और प्रथम इसकी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन राध्या और प्रथम देखिए इस बात से परेशान है, क्योंकि दादी चाहती है कि एक साल के अंदर अंदर बच्चा हो, जिस बात के लिए प्रथम और राध्या एग्री नहीं करते। हालांकि उन्होंने दादी से कहा जरूर है कि वो कोशिश करेंगे, लेकिन दादी को तो गारंटी चाहिए।
1: तो क्या लगा? जैसे मनपसंद खाना ले आओ

0: प्रथम और आगे के बच्चे की किनकारी नहीं पूछेगी तब तक हम अनशन पे रहेंगे।
1: ऐसे में दादी को मनाना भी तो जरूरी है। ऐसे में प्रथम, राध्या और बाकी के सभी घर वाले देखिए कैसे दादी माँ को मना रहे हैं नाच गाकर।

0: तो भाई नाच और गाना खत्म होते होते राध्या दादी को ये जूस देती है और सबको लगता है कि दादी जूस पीकर अपना अनशन तोड़ देगी। लेकिन दादी तो दादी है, उसने अनशन तो नहीं तोड़ा लेकिन ग्लास जरूर फेंक कर तोड़ दिया और फिर शुरू किया नया तमाशा।
1: जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम अनशन नहीं तोड़ेंगे।
2: दादी क्या देते?
1: उससे बात कर सकते
3: हैं। अगर आपने जिद करने का फैसला कर ही लिया है तो कोई बात नहीं, हम कुछ और करना है।

0: वैसे ये सब तो दादी का ड्रामा है, उसने सच में अनशन नहीं किया है। देखिए कैसे वो छुप छुपा कर खाना खा रही है। खैर तभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं बाकी के घर वाले एक और कोशिश करने कि वो दादी को मना पाए। ऐसे में दादी का गुस्सा तो फूटता ही जा रहा है। वो राधे और प्रथम से इन पेपर्स पर साइन भी करवाना चाहती है, लेकिन प्रथम पेपर्स फाड़ देता है और फिर असली बवाल शुरू होता है।
1: माँ के मुंह कितने सूख रहे हैं, पिछले 5 घंटे से एक बूंद पानी भी नहीं पिया माँ ने। अरे वो तो मैंने पहना ही है। क्या है कि जो इंसान अन्न जल छोड़ देता है वो तो भगवान के रूप का होता है ना।
2: अब तो आपकी मैं आपके सामने आ गया।
3: चलो प्रथम इस पर लिख कर दो कि तुम दोनों अपना परिवार आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करो और मुझे एक साल के अंदर पड़पोते या पड़पोती का सुख दो।
4: दादी हमने कहा ना कि हम कोशिश करेंगे, लेकिन एक साल में बच्चा हो जाएगा इसकी क्या गारंटी है।
3: तुमने कागज नहीं बल्कि हमारी आखिरी इच्छा को पढ़ा है, हमारी इच्छा का अपमान किया है तुमने।
4: दादी हमने एक बार कह दिया आपको कि हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे, फिर ये दूसरी शर्त लाने का क्या मतलब है।
3: मैं तुम दोनों का भरोसा ही नहीं है कि तुम परिवार बनाने का प्रयास भी करोगे, इसीलिए हमें तुम दोनों से लिख लेते।

0: इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी प्रथम कोशिश कर रहा है जैसे तैसे दादी का अनशन टूट जाए। ऐसे में वो देखिए कैसे एक खेल खेलता है और दादी की आंखों पर बांध देता है पट्टी और राध्या को दादी को लड्डू खिलाने के लिए कहता है। लेकिन दादी बड़ी चालाक है, वो भी पहचान जाती है और राध्या का हाथ पकड़ लेती है।
1: हम कहते हैं

0: अच्छा नहीं होगा, और जिस बात की गारंटी नहीं है वो बचत आपको कैसे देता हूँ।
1: इस गुस्से में दादी से एक गलती हो जाती है, वो चीजें फेंक रही होती है कि दादी की बोतल भी सामने आ जाती है और घर वाले हो जाते हैं शॉक। तभी उर्मी बताती है कि दादी ने पहले से ही फैसला कर लिया था कि वो अनशन तोड़ेगी। बड़ी ही चालाकी से दादी का ये झूठ छुपा लिया गया। ऐसे में खुशी खुशी प्रथम ने दादी को पानी पिलाया और हो गया ऑल इज वेल। लेकिन दादी अब भी अपनी जिद पर अड़ी है कि उसे जल्द से जल्द राध्या और प्रथम से खुशखबरी चाहिए। अब देखना होगा कि दादी के ये अरमान पूरे होते हैं या नहीं।

0: मेरा फोन है किसी के पास, पुलिस को फोन करो 100, जल्दी जल्दी फोन लगा। हेलो पुलिस, बमपुरगंज आ जाइए, सक्सेना निवास। हाँ ये अर्जेंट है जी।
1: भाई जीत ने कोशिश तो की कि सौम्या सभी के सामने रूप माथुर का खुलासा कर दे, लेकिन सौम्या ऐसा कुछ कर नहीं पाई और जीत को पुलिस के हवाले कर दिया गया। ऐसे में जीत तो सलाखों के पीछे चला गया है, लेकिन सौम्या अपने आप को कोस रही है और अंदर ही अंदर घुट रही है। इसी बीच रूप माथुर की बीवी, जो कि सब सच जानती है, उन्हें लगता है कि सारा मामला सुलट गया है।
2: सब कुछ पहले की तरह शांत है, इस बात को और हवा नहीं देते। दोनों किसी को कुछ कहोगे नहीं ना? मत कहना, ये घर बिखर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरी छोड़ो सौम्या की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।
1: भाई कहीं ना कहीं सौम्या की माँ भी सच जानती है, लेकिन अपनी बेटी की इज्जत के आगे खामोश है। इसी बीच रूप माथुर भी घर के अंदर आता है, लेकिन अंदर ही अंदर इतना बौखलाया हुआ है कि सभी के सामने अपना गुस्सा जाहिर करने लगता है।

0: भाई सौम्या की माँ ने तो डिसाइड कर लिया है कि वो अपने पति को सब सच बता देंगी, लेकिन सौम्या सिर्फ एक ही बात सोच रही है कि जो उसके साथ हुआ है वो पीहू के साथ ना हो। हालांकि वो समय भी याद कर रही है जब पीहू अवार्ड लेकर घर आई थी और सभी उसकी बड़ाई कर रहे थे क्योंकि पीहू ने सच की लड़ाई जो लड़ी थी।
1: अगर किसी के साथ गलत हो रहा हो तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ना कि चुप रहना चाहिए। और इसीलिए मैं सौम्या मार्कस हमेशा सच का नाम दूंगी।
0: भाई पीहू ने अवार्ड जीता है, ऐसे में रूप माथुर ने सभी के सामने कह दिया कि इसी जीत की खुशी में अब पीहू को उनसे संगीत सीखना होगा। बस यही बात सोचकर सौम्या परेशान हो रही है क्योंकि अब वो संगीत के बहाने पीहू के साथ भी वही करेंगे जो उन्होंने सौम्या के साथ किया था। देखना होगा क्या सौम्या हिम्मत जुटा पाएगी और क्या अपने पापा के सामने रूप माथुर का खुलासा कर पाएगी।
2: कहने को आज मैं इस लॉकअप में हूँ, लेकिन मेरी नजरों से देखो सौम्या, तो तुम कैद हो और मुझे छुड़ाने से पहले खुद को रिहा करो। अपने घर वालों को अपने ताऊ जी का सच बताकर।
3: सौम्या अकेले इतनी रात को कहाँ गई थी? अरे बोलना कहाँ गई थी?
0: मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट,
4: नेल आर्ट भी। तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको एक ऐसे ही सेगमेंट की ओर जिसमें से कुछ खबरें तो लेकर आएंगी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट, लेकिन हो सकता है कुछ खबरें आपको चौंका दे। जी हाँ, आप तो समझ गए होंगे मेरा इशारा, ये तो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
5: पेश है बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। नजर डालते हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी के सेट से ये बिहाइंड द सीन नजारों पर, जहां पर स्मृति ईरानी संग मस्ती करते नजर आए रोहित सुचांती। देख लीजिए इनका ये फन वीडियो।
6: इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डे टुडे वर्किंग विद द बेस्ट। ऐसा बोलो ना आप मेरे बारे में।
7: आप
6: कुछ के बारे में
7: Hello.
6: She's a fan. Sorry.

0: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है ये?
1: जल्द आने वाली है फिल्म द वन, जिसमें बनी है सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की जोड़ी। इसके अलावा इस फिल्म में नजर आने वाले हैं श्वेता तिवारी और सुनील ग्रोवर भी। सामने आया है फिल्म का टीजर।

वही बिग बॉस सीजन 20 की खबरें थी कि इस सीजन में बतौर कंटेस्टेंट नजर आने वाली है शिवांगी जोशी, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डाला है जिसमें उन्होंने बताया है कि ये खबर कम्प्लीटली फेक है

0: तो दोस्तों यही था आज का नेल पेन स्पेशल। कैसी लगी आपको हमारी ये ब्यूटी टिप्स? आप इन्हें जरूर आजमाइएगा और हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चाहे हो सिंपल नेल्स, ग्लैमरस एलैबोरेट नेल आर्ट, जेल नेल्स या फिर कुछ और, देखिए हर लुक की ना अपनी ही खूबसूरती है। लेकिन एक बात आप जरूर याद रखिए, खूबसूरत नेल्स से ज्यादा जरूरी है हेल्दी नेल्स, खूबसूरत लुक से ज्यादा जरूरी है आपका कॉन्फिडेंस। बट अब इसी बात पर लेते हैं आपसे विदा, मुलाकात होगी आपसे कल जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ग्लैमरस, बाय बाय।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
3: रक्षाबंधन से पहले दिल्ली सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा, सीएम रेखा गुप्ता ने की लक्ष्मी योजना की शुरुआत, हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। देशभर में रक्षाबंधन की तैयारियां जोरों पर, पुरी में भगवान जगन्नाथ और बालभद्र के लिए बनाई जा रही दुनिया की सबसे बड़ी राखी, पटारा बिसोई सेवक कर रहे थे तैयार। फतेहपुर के ठाकुर बाड़ी मंदिर में झूलन उत्सव की धूम, भगवान कृष्ण और राधा को पालने में झुलाया गया झूला, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, स्नातक में पढ़ने वाले 50,000 छात्राओं को मिलेगी स्कूटी, अक्टूबर या नवंबर में शुरू होगी रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। भारतीय नौसेना की और बढ़ेगी ताकत, विशाखापट्टनम में 31 अगस्त को नौसेना में शामिल होगा दूसरा DSV निपुण, पनडुब्बी रेस्क्यू में भी निभाएगा अहम भूमिका। देशभर में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन के त्यौहार की तैयारियां तेज, अलग अलग थीम और रंगों की सुंदर राखियों से सजे बाजार, बड़ी रौनक। पुरी में भी रक्षाबंधन को लेकर विशेष तैयारी, भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र के लिए तैयार की जा रही दुनिया की सबसे बड़ी राखी। छोटे भाई भगवान जगन्नाथ के लिए लाल और पीले रंग की होती है राखी, जबकि बड़े भाई भगवान बलभद्र के लिए नीले और बैंगनी रंग की राखी बनाई जाती है। विशेष रेशमी वस्त्र से तैयार की जाती है राखी, देवी सुभद्रा की ओर से उनके भाइयों को बांधी जाती है ये खास राखी। पूरे मंदिर के विशेष पटारा बिसोई सेवक तैयार करते हैं ये राखी, मंदिर प्रशासन द्वारा इसके लिए उपलब्ध कराया जाता है बासुंगा पाटा नामक विशेष कपड़ा। दिल्ली में रक्षाबंधन को लेकर

भर के बाजारों में खरीदारी तेज। इस साल रक्षाबंधन के मौके पर 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार होने की उम्मीद है। आगरा में नेचुरल स्टोन से निर्मित राखियां बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। सफेद संगमरमर और रंग बिरंगे पत्थरों का इस्तेमाल करके बनाई जा रही हैं खास तरीके की राखी। इन राखियों को अपने हाथों से तराशते हैं आगरा के पारंपरिक कारीगर, जिससे प्रत्येक राखी का डिजाइन अपने आप में होता है खास। रक्षाबंधन के पवित्र मौके पर देश भर से सरहद पर तैनात जवानों को भेजी जा रही राखी। उधमपुर के छात्रों ने अपने हाथों से तैयार की सैनिकों के लिए राखियां। राखी के साथ छात्रों ने देश की सुरक्षा में तैनात फ्रंटलाइन जवानों के लिए अपने हाथों से ग्रीटिंग कार्ड भी तैयार किया। देश की रक्षा के लिए जताया उनका आभार। रक्षाबंधन से पहले झांसी की बहनों का सैनिक भाइयों को खास तोहफा, 500 राखियों के साथ भेजा स्नेह भरा संदेश। हरियाली तीज का कार्यक्रम किया गया था आयोजित, जिसमें महिलाओं ने राखी तैयार करने के साथ ही भक्ति गीतों पर जमकर डांस भी किया। जवानों के प्रति कृतज्ञता के भाव से तैयार की गई राखियां। भाई बहन के इस पवित्र त्यौहार पर परिवार से दूर देश की सीमाओं पर तैनात जवान भी मना सके त्यौहार। भारत चीन सीमा पर दिखी भाई बहन के प्रेम और देशभक्ति की अनोखी मिसाल। नीति घाटी के महिलाओं ने बॉर्डर कैंप में सेना के जवानों के साथ मनाया रक्षाबंधन। पारंपरिक वेशभूषा में पहुंची नीति घाटी के जुमा और कागा गांव की महिलाएं, कलाई पर राखी बंधवाते हुए जवान भावुक हो गए। यूपी के मेरठ में छात्राओं और शिक्षकों ने पुलिस अधिकारियों को बांधी राखी। एसएसपी को राखी बांधकर मिठाई खिलाई गई और उनकी लंबी उम्र की कामना की। इंदौर में रक्षाबंधन पर खजुराना गणेश को अर्पित की जाएगी विशाल सनातन राखी। करीब 2.5 महीने से गजानन के लिए बनाई गई है ये खास तौर पर राखी। राखी को आकर्षक स्वरूप देने के लिए कोलकाता, जयपुर, मुंबई, सूरत से मंगवाए गए सलमा सितारे, नग, मोती और जरी। राखी में दिखेगी राष्ट्र गौरव और सनातन संस्कृति की झलक। अपने अंतिम चरण में है अमरनाथ यात्रा। पारंपरिक पड़ाव के तहत शेषनाग पहुंचा पवित्र छड़ी मुबारक का जुलूस। विधि विधान से साधु संतों ने की पवित्र छड़ी मुबारक की पूजा। हर हर महादेव के लगाए जयकारे। इसके बाद पंचतरणी पहुंचेगी पवित्र छड़ी मुबारक। 27 अगस्त तक पंचतरणी में रात्रि विश्राम। अमरनाथ यात्रा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण का प्रतीक है छड़ी मुबारक जुलूस, जो पहलगाम, चंदनवाड़ी, शेषनाग और पंचतरणी होते हुए पवित्र गुफा की ओर बढ़ती है। रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर अमरनाथ गुफा पहुंचेगी पवित्र छड़ी मुबारक, जहां अंतिम पूजा और अनुष्ठान संपन्न होंगे। श्रावण मास के दौरान फतेहपुर के ठाकुरबाड़ी मंदिर में पारंपरिक झूलन उत्सव की दिखी रौनक। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को झूलों पर किया गया विराजमान। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने नगर सेठ श्री ठाकुर जी की प्रतिमा को भव्य तरीके से विशेष तौर पर सजाया। कमल पुष्प के बीच सजा श्री लक्ष्मीनाथ महाराज का दरबार। पूरे मंदिर परिसर में धार्मिक झांकियां की गई पेश, इसमें श्री कृष्ण लीला और राम वनवास की कथा का किया गया चित्रण। मंदिर को भी रंग रोगन कर आकर्षक ढंग से सजाया गया, बेहद सुंदर नजर आया। दूधिया रंग से रोशनी से नहाया मंदिर। मेले के दौरान भक्तों की सुरक्षा के लिए पुलिस भी पूरी तरीके से सतर्क। भगवान के दर्शनों के लिए रोजाना हजारों की संख्या में आ रहे भक्त। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में सावन की आखिरी और सबसे खास लहरिया घटा सजाई गई। नीले पीले रंगों से सजा मंदिर भक्तों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बना। लहरिया घटा में ठाकुर द्वारकाधीश अपने परिवार और सखाओं के साथ 9 विशेष झूलों पर विराजते हैं। भक्तों ने श्रद्धा के साथ ठाकुर जी को झूला झुलाया। मंदिर परिसर में फवारे, गायों की सीनरी, बंदरों के कटआउट और मोर की सजावट की गई। रंग बिरंगी सजावट ने पूरे मंदिर को और भी खूबसूरत बना दिया। ठाकुर जी की लहरिया घटा के दर्शन के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह दिखा। शाम 7 से 8 बजे तक मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। सावन में मंदिर में अलग अलग रंगों और रूपों की घटाएं सजाई गई। लहरिया घटा के साथ अब सावन की घटाओं का भव्य समापन हो गया है। जन्माष्टमी को लेकर दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में भव्य तैयारियां। 4 सितंबर को मनाया जाएगा भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। जन्माष्टमी से पहले मंदिर को सजाने, उसे संवारने और रंग रोगन का काम लगातार तेजी से हो रहा है। जगह जगह लगाए जा रहे हैं पंडाल। आज से शुरू हो जाएगा कृष्ण जन्मोत्सव का एक कार्यक्रम। शोभा यात्रा में गूंजेगा हरिनाम संकीर्तन। मंदिर परिसर में लगातार जारी भजन कीर्तन का कार्यक्रम। इस साल 5 लाख से ज्यादा भक्तों के आने की उम्मीद।
4 सितंबर को मुख्य आयोजन में भगवान को लगेगा 251 से अधिक व्यंजनों का भोग। आधी रात तक होंगे भगवान के

0: केरल के थिरुवनंतपुरम में उमड़ा आस्था का सैलाब। थिरुवोणम दिवस पर श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में एकत्रित हुए भक्त। इस पवित्र दिन पे भगवान के दर्शन पाने के लिए मंदिरों में भक्तों का लगा तांता। मंदिरों को पूरे फूलों से सजाया गया। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी हुआ आयोजन। 10 दिवसीय ओणम उत्सव का 10वां और सबसे महत्वपूर्ण दिन है थिरुवोणम दिवस। दैत्यराज महाबली का अपनी प्रजा से धरती पर आकर मिलने की है मान्यता। केरल के वायनाड में लगी फूलों के अंबार। आज ओणम के 10वें दिन पूजा के लिए रंग बिरंगे फूलों के बंपर डिमांड। थिरुवोणम दिवस पर घरों के आंगन में फूलों की सुंदर और बड़ी रंगोली सजाने की परंपरा है। पुक्कलम कहलाती है घरों में बनने वाली खास फूलों की रंगोली। पुडुचेरी में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है ओणम का त्यौहार। मलयाली समुदाय द्वारा बड़े हर्षोल्लास से पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। स्कूल कॉलेजों में सजाए गए फूलों से सुंदर पुक्कलम। कई जगह फूलों की रंगोली बनाने का कॉम्पिटिशन। ओणम के मौके पर महिला कॉलेज में छात्राओं ने पेश किए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम। नजर आए केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत। पुरी स्थित प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मंगला आरती के साथ सुबह की हुई शुरुआत। वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद और घंटियों से गूंजा पूरा मंदिर परिसर। इस पावन बेला में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और दूर दूर से आए भक्त। महाप्रभु के जयकारों से गूंजा पूरा मंदिर परिसर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असर कारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है, इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंधपत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में ये है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजनकरी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भसम, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं, फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
3: रक्षाबंधन से पहले दिल्ली सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा, सीएम रेखा गुप्ता ने की लक्ष्मी योजना की शुरुआत, हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। देश भर में रक्षाबंधन की तैयारियां जोरों पर, पुरी में भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के लिए बनाई जा रही दुनिया की सबसे बड़ी राखी, पटारा बिसोई सेवक कर रहे हैं इसे तैयार। फतेहपुर के ठाकुर बाड़ी मंदिर में झूलनोत्सव की धूम, भगवान कृष्ण और राधा को पालने में झुलाया गया, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए भगवान के दर्शन। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, स्नातक में पढ़ने वाली 50,000 छात्राओं को मिलेगी स्कूटी, अक्टूबर या नवम्बर में शुरू होगी रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। भारतीय नौसेना की और बढ़ेगी ताकत, विशाखापट्टनम में 31 अगस्त को नौसेना में शामिल होगा दूसरा डीएसवी निपुण, पनडुब्बी रेस्क्यू में भी निभाएगा भूमिका।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन।
3: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं धर्म और ज्योतिष पर आधारित हमारा एक खास कार्यक्रम यानी कि प्रार्थना हो स्वीकार। तो देखिए, आदि अनंत महादेव देवों के देव हैं, उनकी महिमा का बखान, उनकी शक्तियों का पता लगाना किसी के वश में नहीं है। वो रुद्र हैं तो साथ ही भोले भी, सच्चे मन से की गई भक्ति से वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि महादेव बहुत भोले हैं। उनकी कृपा पाने के लिए, उन्हें मनाने के लिए एक ऐसे स्रोत की महिमा का गुणगान आज हम आपको बताएंगे जो स्वयं रावण द्वारा रचित है। माना जाता है कि स्रोत का पाठ करने से कई तरह की सिद्धियों की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं इस अद्भुत पाठ की महिमा के बारे में।

0: शिव भक्त रावण ने रचा एक अमोघ अस्त्र और आत्मबल में वृद्धि का है ये शस्त्र। चंद्र बिराजे एक स्तोत्र जिससे अति प्रसन्न होते हैं त्रिपुरारी, रुद्र और आनंद के भाव में है महादेव की लीला सारी। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि महादेव की उपासना का सबसे सरल माध्यम है जलाभिषेक, लेकिन उनका एक प्रिय स्तोत्र भी उन्हें सबसे अधिक भाता है। माना जाता है कि स्तोत्र की रचना लंकापति रावण ने की थी।
1: शिव का तांडव करते का वर्णन शिव तांडव कहलाता है, क्योंकि भगवान के परम भक्त के मन से निकला, हृदय से निकले हुआ ऐसा स्वर है, साक्षात वेद की गर्जना के समान। भगवान ने इतनी अनंत प्राप्त हुई कि प्रसन्नता में जिसको ज्ञान दे रहे थे, जिसकी है ना किसी प्रकार की उसकी क्षुद्रता को भी दंडित कर रहे थे, उसके पश्चात प्रसन्न होकर उसको भी पुरस्कार दिया, वो है शिव तांडव स्तोत्र।
0: मान्यता है कि शिव तांडव स्तोत्र बहुत शक्तिशाली है, लेकिन क्या आप तांडव का सही अर्थ समझते हैं? आखिर महादेव के इस दिव्य नृत्य को तांडव ही क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका अर्थ जानने के बाद आपको शिव तांडव स्तोत्र की शक्ति का अंदाजा हो जाएगा। तांडव का रहस्य। तांडव शब्द तंदूल से बना हुआ है जिसका अर्थ है उछलना। तांडव में ऊर्जा और शक्ति से उछलना होता है। ऐसा करने से दिमाग और मन शक्तिशाली बनता है। भगवान शिव को खुश करने के लिए जिस स्तोत्र को रावण ने रचा, उससे भगवान शिव अति प्रसन्न हुए, इसीलिए शिव तांडव स्तोत्र शिव जी को प्रिय है। शिव तांडव स्तोत्र की रचना कैसे हुई, क्या है इसकी महिमा, आइए ये जाने।
1: इसमें एक उल्लेख आता है, शिव तांडव स्तोत्र का वर्णन रावण के द्वारा किया गया है। भगवान को एक बार अपने मद वश होकर कि भगवान के दर्शन करने के लिए मुझे कैलाश आना पड़ता है, तो मैं क्यों ना कैलाश को ही मैं अपनी भव्य सुंदर स्वर्ण जटित लंका में ही ले चलूं। तो ये विचार करके उसने भगवान के कैलाश को भी अपने दोनों हाथों से उठाने का प्रयास करा और हिला भी दिया कैलाश को, पर भगवान शिव ने उसकी उद्दंडता को समझते हुए अपने पैर के अंगूठे से मात्र थोड़ा सा कैलाश के ऊपर दबाव बढ़ाया, तब उसके दोनों हाथ दब गए। अपनी भक्ति प्रकट करते हुए भगवान के लिए जो उसने गान गाया, उसी को कहते हैं शिव तांडव स्तोत्र।
0: शिव तांडव स्तोत्र की रचना भगवान शिव के भक्त रावण ने की थी। शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव की एक खास स्तुति है। ये स्तुति छंदात्मक है और इसमें बहुत सारे अलंकार है। एक कथा के मुताबिक रावण कैलाश लेकर जाने लगा था, तब भगवान शिव ने अंगूठे से कैलाश को दबा दिया। कैलाश वहीं रह गया और रावण उसके नीचे दब गया था। तब रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ये स्तुति की। ये स्तुति शिव तांडव स्तोत्र कहलाई। जहां रावण दबा था वो जगह राक्षस ताल के नाम से प्रसिद्ध हुई। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि रावण परम ज्ञानी और तपस्वी था, उसे सबसे बड़ा शिव भक्त भी माना जाता है। इसीलिए रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और भगवान शिव को प्रसन्न करके उनका कृपा पात्र बना।
1: शिव को अति प्रिय श्रावण मास और शिव को प्रिय अपने भक्तों का प्रेम और साथ में अनन्य भक्त रावण के द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र जब श्रावण मास में भगवान को सुनाया जाता है तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। और भगवान जो शिव को तांडव स्तोत्र सुनने से प्रसन्नता प्राप्त कर वर मिला रावण को, उसी प्रकार से आपको अभय वर, रोग मुक्ति, आपके मन की पीड़ा शांति और साथ में मन की इच्छा कामना का वरदान प्राप्त होता है।
0: जानकार बताते हैं कि कोई भी इंसान भगवान शिव को खुश करने के लिए इस स्तोत्र का पाठ कर सकता है, लेकिन कुछ खास दशाओं में अगर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया जाए तो उसका अद्भुत प्रभाव पड़ता है। तांडव स्तोत्र के पाठ से अति प्रसन्न होते हैं महादेव। तो चलिए आपको बताते हैं किन दशाओं में आप इसका पाठ कर सकते हैं। कब पढ़ें शिव तांडव स्तोत्र? जब सेहत की समस्याओं का समाधान ना निकल रहा हो, जब शत्रु या विरोधी आपको परेशान करे, जब आर्थिक या रोजगार की समस्याएं आ रही हो, जब जीवन में कोई विशेष उपलब्धि पानी हो मगर ना मिल रही हो, जब किसी भी ग्रह की कोई बुरी दशा हो, तब शिव तांडव स्तोत्र का पाठ लाभदायक होता है। हम सभी जानते हैं कि महादेव आदि और अनंत से परे हैं। वो भक्तों के लिए ढाल हैं और दुष्टों के लिए काल हैं। शिव तांडव स्तोत्र की शक्ति को परखना आसान नहीं, लेकिन ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि इसके पाठ से आपकी सेहत में सुधार होने लगता है, क्योंकि इस तांडव को करने में आपको शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करना होता है। ये तो आपने जान लिया कि तांडव क्या है, शिव तांडव स्तोत्र की रचना कैसे हुई, लेकिन शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कैसे करें, ये हम आपको आगे बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। शिव की कृपा पाने का चूक मंत्र है शिव तांडव स्त्रोत। शिव तांडव स्त्रोत का पाठ करने वाला पार शक्ति का अनुभव तो करता ही है, शिव की कृपा भी उसे जरूर मिलती है। शिव तांडव स्त्रोत बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। ऐसे में कुछ खास दशाओं में अगर शिव तांडव स्त्रोत का पाठ कर दिया जाए तो उसका अद्भुत प्रभाव पड़ता है।

0: शक्तिशाली है शिव तांडव स्तोत्र, कल्याणकारी है शिव तांडव स्तोत्र। शिव की कृपा पाने का अचूक मंत्र शिव तांडव स्तोत्र करेगा दुखों का अंत। मान्यता है कि महादेव को प्रसन्न करने का शक्तिशाली उपाय महादेव का प्रिय स्तोत्र है शिव तांडव स्तोत्र। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, उनसे कृपा और शक्ति पाने के लिए अद्भुत, चमत्कारी और फलकारी है शिव तांडव स्तोत्र।
1: उसका रहस्य यह है, ये विशेष तांत्रिक वो है। यदि किसी प्रकार से आप कहीं तंत्र से पीड़ित हैं या किसी भी प्रकार की मन में पीड़ा है, आप किसी को दिखावे नहीं पा रहे, तो भगवान के समक्ष बैठकर जब आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं तो भगवान अति प्रसन्न होकर आपकी उन पीड़ाओं को शांत करते हैं। ये रावण के द्वारा अपनी नाड़ियों के संधान करने के बाद उसको बनाकर सामवेद के ऋचाओं के माध्यम से गाया गया, अति प्रिय भगवान को है।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि इस पाठ को करने वाला अपार शक्ति का अनुभव तो करता ही है, भगवान शिव की कृपा भी उसे जरूर मिलती है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि महादेव दो स्थितियों में तांडव करते हैं। जब क्रोध में महादेव अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो सामने जो कोई भी आता है वो जलकर भस्म हो जाता है, ये शिव का प्रलय स्वरूप है। दूसरा, जब वो डमरू बजाते हुए तांडव करते हैं तो भगवान शिव परम आनंद की प्राप्ति करते हैं। धर्म ग्रंथों में तांडव की स्तुति की कई व्याख्याएं मिलती हैं। चलिए आपको बताते हैं कि धर्म ग्रंथों में कब कब तांडव की स्तुति की गई है। कथा है कि माता काली ने बाणासुर की पुत्री को तांडव सिखाया था। माँ भगवती ने महिषासुर को मारने के बाद तांडव किया था। गजमुख की पराजय के बाद भगवान गणेश के तांडव करने का जिक्र मिलता है। नृत्य की जितनी भी विद्याएं हैं उनके मूल में तांडव ही है। मान्यता है कि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से जीवन में चमत्कारिक लाभ होता है। जानकारों की माने तो शिव के रौद्र रूप की उपासना करने के कुछ विशेष नियम भी हैं। शिव के तांडव के दो स्वरूप हैं। पहला, उनके क्रोध का परिचायक प्रलयकारी रौद्र तांडव। दूसरा, आनंद प्रदान करने वाला आनंद तांडव। ज्यादातर लोग तांडव शब्द को भगवान शिव के क्रोध का पर्याय ही मानते हैं। रौद्र तांडव करने वाले शिव रुद्र कहे जाते हैं, आनंद तांडव करने वाले शिव नटराज। शिव के आनंद तांडव से ही सृष्टि अस्तित्व में आती है और उनके रौद्र तांडव में सृष्टि का विलय हो जाता है।
1: भगवान को अति प्रिय अपना स्तोत्र ये है, आप कभी भी कर सकते हैं, पर मुख्यतया यदि आप किसी से पीड़ित हैं, अर्थात शरीर में पीड़ा है, व्यक्त भी नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों के दबाव में हैं, आपके मन में किसी प्रकार का दंभ या अहंकार वश आपके सब लोग आपसे दूर हो जा रहे हैं, आपके इष्ट भी आपसे दूर होने, तब शिव तांडव स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करने वाला शिव की कृपा तुरंत प्राप्त करता है।
0: तो देखा आपने, जो शिव सृजन करते हैं वही शिव संहार भी करते हैं, यही सृष्टि का नियम है। माना जाता है कि शिव तांडव स्तोत्र के नियमित पाठ करने से आत्मबल में वृद्धि होती है, वाणी की शुद्धि होती है। यहाँ तक कि अगर आपके ग्रह आपको बाधा दे रहे हो तो ऐसे अनिष्टकारी ग्रहों से मुक्ति का मार्ग भी खोलता है शिव तांडव स्तोत्र। ज्योतिषी कहते हैं कि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने में नियमों का ध्यान रखते हुए सच्चे मन से शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें तो महादेव की महाकृपा मिल सकती है। वो नियम क्या होंगे आगे समझिए।
2: शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भोलेनाथ को अति प्रिय है। ये पाठ इतना प्रभावी है, इतना प्रभावशाली है कि इसके पाठ से रावण ने कैलाशपति से विशेष कृपा और शक्तियां हासिल कर ली थी। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ बेहद चमत्कारी और कल्याणकारी है, लेकिन इसके कुछ नियम हैं जिनका ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। कौन से हैं वो नियम, आइए आपको बताते हैं।

0: तांडव, जिसका नाम आते ही महादेव का क्रोध सामने आता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि शिव का परम ज्ञान है तांडव। शंभुनाथ की महालीला है तांडव। नृत्य, चित्रकला, लेखन, योग, ध्यान, समाधि आदि सिद्धियाँ भगवान शिव से ही संबंधित है। इसीलिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने वाले को इनमें सफलता सहज ही मिलने लगती है। लेकिन अगर आप शास्त्रों में वर्णित मान्यताओं का पालन करते हुए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपकी उपासना ज्यादा प्रभावी होगी।
1: शिव तांडव स्तोत्र पढ़ने के लिए सबसे पहले मन को एकाग्र करें, मन में केवल शिव का भाव रखते हुए शिव से अभय वर प्राप्त करने हेतु फिर पवित्र स्थान पर बैठकर फिर करना शुरू करें और अपने श्वास पर नियंत्रण लगाकर त्रिपुंड धारण करके, भस्म धारण करके, रुद्र धारण करके अर्थात रुद्राक्ष धारण करके फिर भगवान को जल हाथ में लेकर संकल्प पूर्वक मन कामना भगवान को कहकर फिर करना आरंभ करें।
0: कैसे पढ़ें शिव तांडव स्तोत्र? प्रातः काल या प्रदोष काल में इसका पाठ सर्वोत्तम होगा। पहले भगवान शिव को प्रणाम करें, उन्हें धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद गा गा कर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। अगर नृत्य के साथ इसका पाठ करें तो सर्वोत्तम होगा। पाठ के बाद शिव जी का ध्यान करें और अपनी प्रार्थना करें। माना जाता है कि इसका पाठ करने या सुनने से व्यक्ति को अपार शक्ति, सौंदर्य और आत्मिक बल की प्राप्ति होती है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने का कोई विशेष समय नहीं और ये किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन कुछ विशेष तिथियों पर इसका पाठ करने से चमत्कारिक परिणाम हासिल होते हैं। आपको बताते हैं कि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने की वो तिथियां कौन कौन सी हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि ग्रहण के समय शिव तांडव स्तोत्र कल्याणकारी होता है। ग्रहण के समय इसका पाठ करने से इसके प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। शिव तांडव स्तोत्र सभी ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम कर देता है। ब्रह्म मुहूर्त में शिव तांडव स्तोत्र का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। त्रयोदशी तिथि को इसका पाठ सभी पापों का नाश करने वाला होता है। माना जाता है कि शिव तांडव स्तोत्र सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है, जिससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ज्योतिष के जानकार तो यहाँ तक बताते हैं कि जब स्वास्थ्य की समस्याओं का कोई तत्काल समाधान ना निकल पा रहा हो तो ऐसे में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ बेहद लाभदायक होता है। चलिए आपको बताते हैं कि इसके पाठ से आपके जीवन में कौन कौन से लाभ हो सकते हैं।
1: आपके मनों की हर कामना शिव तांडव स्तोत्र से पूर्ण हो सकती है, परंतु किसी प्रकार से आपसे अहंकारवश कोई गलती हो गई, चाहे वो इष्ट है, चाहे परिवारजन है, चाहे मित्र है, चाहे समाज में है, उसकी मुक्ति, उससे प्राप्त होने वाली पीड़ा को शांत करता है ये शिव तांडव स्तोत्र।
0: इसका नियमित पाठ मन, वाणी और विचारों को शुद्ध करता है। इससे एकाग्रता और सकारात्मकता में वृद्धि होती है। इसके पाठ से नकारात्मक ऊर्जा, भय और संकट दूर होते हैं। साहस और आत्मविश्वास का संचार होता है। ये स्तोत्र आत्मिक बल प्रदान करता है। तो आप भी पूरे मनोयोग से करें शिव तांडव स्तोत्र का पाठ, जो न सिर्फ आपका जीवन सुख समृद्धि से भर देगा बल्कि दिलाएगा महादेव की असीम कृपा। योर रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: चलिए बात कर लेते हैं मुंबई की। तो मुंबई में अब गणेश उत्सव का उल्लास दिखने लगा है। बप्पा की प्रतिमाएं पंडाल में लाई जा रही हैं। बड़ी संख्या में लोग गजानन के स्वागत के लिए यहां पे पहुंच रहे हैं। ढोल ताशे के साथ बप्पा के आगमन का जश्न मनाया जा रहा है। हर गणपति प्रतिमा की अलग अलग खूबियां हैं। खेतवाड़ी के लंबोदर में बप्पा को एक किसान के रूप में दिखाया गया है।

0: गणेश उत्सव का उल्लास और हर तरफ गणपति बाप्पा के जयकारे। बाप्पा के आगमन की खुशी और उत्सव के रंग में रंगी मुंबई नगरी। गणेशोत्सव में अभी कुछ दिन बाकी है, लेकिन मुंबई में इन दिनों हर तरफ इसी पर्व के रंग बिखरे हैं। एक एक करके बाप्पा की प्रतिमाएं अपने पंडाल में विराजमान हो रही हैं। बड़ी संख्या में लोग ढोल ताशों के साथ भगवान गणेश का स्वागत करने के लिए जुटे हैं। बाप्पा की प्रतिमा के आगमन के साथ ही गणेशोत्सव के त्योहार का जश्न भी बढ़ता जा रहा है। मुंबई में पूरे साल लोग इस पर्व की प्रतीक्षा करते हैं, और जब बाप्पा की सवारी अपने पंडाल की तरफ बढ़ती है तो इस त्योहार के सबसे खूबसूरत रंग दिखने लगते हैं। ये जोश, ये उत्साह और ये खुशी भगवान गणेश के हर भक्त के चेहरे पर झलकती है। बाप्पा के पंडाल में विराजमान होने के बाद दूर दूर से लोग बाप्पा के दर्शन के लिए भी आने लगते हैं। गणेशोत्सव की औपचारिक शुरुआत भले ही 14 सितंबर को हो रही है, लेकिन इस त्योहार की रौनक तो पंडाल में अभी से दिखने लगी है। मुंबई के सबसे चर्चित गणेश पंडालों में से एक खेतवाड़ीचा लंबोदर मंडल के गणपति बाप्पा भी अपने पंडाल में पधार चुके हैं। बाप्पा की इस प्रतिमा की ऊंचाई करीब 32 फीट है, और यहां भगवान गणेश को एक किसान के रूप में दिखाया गया है। समाज में एक शुभ संदेश देने के मकसद से खेतवाड़ीचा लंबोदर मंडल ने इस बार किसान बचाओ थीम पर पंडाल सजाया है।
1: तैयारी मुंबई में जोरों शोरों से शुरू है। खासियत यह है कि बड़ी बड़ी प्रतिमाएं जो हैं वो पंडालों में लानी शुरू हो गई है। मेरे पीछे आप एक सक्रिय गली देख रहे हैं, बड़ी छोटी सी गली है, इसी से उस बड़ी प्रतिमाओं को लाया गया है और पंडाल में स्थापित किया गया। खास बात यह है कि मैं जहां मौजूद हूं, इलाके का नाम है खेतवाड़ी, और यहां पर इस तरह की जो छोटी छोटी गलियां हैं कई हैं, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार, पांच, छह, सात, फिलहाल मैं चौथी गली में हूं जहां के बप्पा इस समय लाए गए हैं और विराजमान कर दिए गए हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि खेतवाड़ी के लंबोदर के दरबार में इस समय मौजूद हूं, और एक दो दिन पहले ही बप्पा को यहां पर बकायदा धूमधाम से लाया गया है। देखिए कितना विशाल स्वरूप, कितना विशाल रूप बप्पा का यहां पर देखने मिल रहा है। खास बात यह है कि इस तरह से जो लंबी लंबी प्रतिमाएं गणेश जी की होती हैं, उनके साथ बहुत बढ़िया बढ़िया थीम भी लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए रखी जाती है। इस बार की जो थीम है खेतवाड़ी के लंबोदर की, शेतकरी मराठी वर्ड है जिसको हिंदी में कहते हैं कि किसान। किसान अक्सर ही जो है अपने बोझ तले जो लोन लिए रहते हैं, आत्महत्या जैसी कोशिश करते हैं, ऐसी जो घटनाएं हैं उन पर रोक लगाने के लिए एक अच्छी नीयत के साथ किसान का रूप लेकर के बप्पा को यहाँ विराजमान किया गया है।
0: खेतवाड़ी चा लंबोदर पंडाल इस बार अपनी 68वीं सालगिरह मना रहा है। इस बार पंडाल को भी अलग अंदाज में सजाने की तैयारी है। यही वजह है कि बाप्पा की प्रतिमा पहले ही स्थापित कर दी गई है, ताकि साज सजा का काम पूरी तसल्ली से और बेहतरीन ढंग से हो सके।
2: हम लोग हर साल कुछ न कुछ नया संदेश देते हैं, वैसे ही हम लोग इस बार किसान के ऊपर ही हम लोग ने सजेशन किया है। जैसे मोरारजी देसाई बोले थे जय जवान जय किसान, वैसे हम लोग ने नारा लगाया है। इस बार भी वही थीम है। अभी सिचुएशन करेंगे, बोर्ड आइसर अपना नाके पे लगेगा बहुत शान से कि भाई जय जवान जय किसान।
0: मुंबई में इन दिनों एक एक करके अलग अलग इलाकों में गणपति प्रतिमाओं के आने का सिलसिला जारी है। कालाचौकी के महाराजा पहले ही अपने पंडाल तक पहुंच चुके हैं। कामराज चा महाराजा भी पंडाल में विराजमान है। जैसे जैसे गणेशोत्सव करीब आ रहा है, श्रद्धालुओं का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। अब भक्तों को बेसब्री से इंतजार है गणेश चतुर्थी पूजन का, जिसके बाद 10 दिनों तक बाप्पा अपने भक्तों के बीच विराजमान रहेंगे और श्रद्धालुओं को गजानंद की आराधना का अनुपम अवसर मिलेगा। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो लगातार बढ़ते चीनी के दाम पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कुछ कारगर उपाय किए हैं। देखिए, दिल्ली सरकार ने 35 रुपए किलो चीनी जनता को मुहैया कराने का इंतजाम जो है वो कर लिया है, और इसके साथ ही चीनी की कालाबाजारी ना हो, कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमारी भी की जाएगी। जानकारी आ रही है चीनी की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी, और इसी सिलसिले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री की एक अहम बैठक भी हुई है। वहीं चीनी की महंगाई पर ब्रेक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर से चीनी मिलों की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में 90 लाख टन चीनी उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, सिर्फ चीनी ही नहीं बल्कि पिछले कुछ दिनों से प्याज की कीमतों में भी भारी उछाल देखने को मिल रही है। सरकार ने प्याज की महंगाई पर लगाम लगाने के कुछ उपाय कर दिए हैं। प्याज की सप्लाई और महंगाई पर सरकार की नजर जो है वो लगातार बनी हुई है। केंद्र सरकार ने 35 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज बेचने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार भी लोगों को सस्ता प्याज मुहैया कराएगी। सरकार निफेड से प्याज खरीदकर जनता के बीच सप्लाई करेगी, ये जानकारी सामने आ रही है। और इस बीच नाशिक से प्याज की सप्लाई बढ़ाने का इंतजाम भी सरकार ने कर लिया है। प्याज की सप्लाई के लिए नाशिक के कांदा एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है। खासतौर पर 24 अगस्त से प्याज की ढुलाई भी शुरू हो जाएगी। पहले चरण में चेन्नई, मदुरई, कोची को प्याज की सप्लाई की जा रही है और इसके बाद दिल्ली, गुवाहाटी भी कांदा एक्सप्रेस से प्याज सप्लाई यहां पर किया जाएगा। प्याज की जमाखोरी करने वालों पर सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करेगी। रक्षाबंधन पर देश के कई राज्यों में बहनों के लिए उपहार का ऐलान किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया के जरिए 3 बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। इसके मुताबिक पुलिस दीदी यानी अभयता ब्रिगेड के लिए 4,700 स्कूटर और मोटरसाइकिल का लोकार्पण और फ्लैग ऑफ किया जाएगा। इन वाहनों का इस्तेमाल स्कूल और कॉलेज जाने वाली छात्राओं की सुरक्षा और उनके संरक्षण के लिए किया जाएगा। छात्राओं को 10,000 रुपए की PhD फेलोशिप भी मिलेगी। करीब 1,000 छात्राओं को 4 साल तक की फेलोशिप दी जाएगी। कारोबार और स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना की भी शुरुआत की जाएगी। देखिए, इस योजना के तहत 50,000 से 2,00,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। और इन सबके अलावा रक्षाबंधन के अवसर पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से 27 और 28 अगस्त को महिलाओं और छात्राओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा भी मिलेगी। यानी रक्षाबंधन पर बिहार के अलावा कई दूसरे राज्यों में भी लड़कियों और महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा की घोषणा की गई है। तो देखिए, यूपी सरकार ने 27 अगस्त से 29 अगस्त तक लड़की और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा सुविधा देने का ऐलान किया है, जिसमें एक सह यात्री भी रह सकता है, यानी को पैसेंजर भी सवार हो सकता है बस में, कोई पैसे नहीं लगेंगे उसके। उत्तराखंड सरकार ने 28 और 29 अगस्त को रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में राज्य परिवहन की साधारण बसों में महिलाओं के लिए जो सफर है वो मुफ्त होगा। 27 अगस्त की दोपहर 12 बजे से 28 अगस्त की रात 12 बजे, ये टाइम पीरियड है, इस तक बहनों के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है और महिलाओं के साथ 15 साल तक के बच्चों को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा। इसमें हरियाणा के साथ ही चंडीगढ़ और दिल्ली तक की यात्रा भी शामिल है। वहीं देखिए, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान सरकार ने 28 और 29 अगस्त को साधारण और एक्सप्रेस बसों में लड़की और महिलाओं के लिए राज्य की सीमा के भीतर मुफ्त सफर का ऐलान किया है।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
3: रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को दिल्ली सरकार का तोहफा, लक्ष्मी योजना की पहली किश्त जारी, हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। यूपी की 50,000 बेटियों को मिलेगी स्कूटी, सीएम योगी का ऐलान, अक्टूबर या नवंबर में शुरू होगी रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, मुंबई के महाराजा नाम से मशहूर करीब 47 फीट के बप्पा का आगमन, नरसिंह रूप में विराजमान है गणपति। देशभर में रक्षाबंधन की तैयारियां तेज, पुरी में भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के लिए बनाई जा रही है दुनिया की सबसे बड़ी राखी, पटारा बिसोई सेवक कर रहे हैं तैयार। फतेहपुर के ठाकुरबाड़ी मंदिर में झूलनोत्सव की धूम, भगवान कृष्ण और राधा को पालने में झुलाया गया झूला, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।

शुभ योगों वाला रक्षाबंधन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। बस एक दिन बाद रक्षाबंधन का पर्व है। किस तरह के साथ शुभ योग और संयोग बन रहे हैं, आज हम इसी को लेकर चर्चा आगे करेंगे। बाजार सज चुके हैं, भाई बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन आने वाला है, तो राखी का त्योहार लाया खुशियां पार। भाई को किस मुहूर्त में बांधे राखी, राखी से पहले पूर्णिमा, क्या है संयोग और इन्हीं तमाम पहलुओं पर आज होगी चर्चा। हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य मौजूद रहेंगे।

0: में सज गई हैं। पारंपरिक से लेकर मॉडर्न डिजाइन वाली राखियों से पूरी तरह से बाजार पटे पड़े हैं। बड़ों से लेकर बच्चों तक सबको ध्यान में रखते हुए इस बार राखियां बनाई गई। महाराष्ट्र के अकोला से लेकर राजस्थान के अलवर तक में राखी की दुकानों पर खरीदारी की जा रही है और अच्छी खासी लाइनें वहां पर देखी जा रही हैं। खास बात यह है कि इस बार सराफा बाजार में भी राखी की रौनक देखने को मिल रही है, चाहे वो दिल्ली हो, लखनऊ हो, जयपुर, मुंबई, हर जगह पर इस बार डिमांड सोने और चांदी की राखियों की भी है। राखी से पहले बहनें भाइयों के लिए मनपसंद राखी खरीद रहे हैं और भाई बहनों के लिए उपहार। तो रक्षाबंधन के पावन पर्व आ रहा है। शुक्रवार यानी कि 28 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व है। इसी दिन सुबह चंद्र ग्रहण भी लगेगा। तो रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 28 अगस्त सुबह 5:57 से सुबह 9:48 तक है। और अगर हम अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो 28 अगस्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:48 पर यह अभिजीत मुहूर्त रहेगा। और रक्षाबंधन का पर्व सावन पूर्णिमा पर आता है। पूर्णिमा व्रत गुरुवार को रखा जाएगा और शुक्रवार को इसका पारण होगा। श्रावण पूर्णिमा 27 अगस्त यानी कि कल सुबह 9:08 से परसों सुबह 28 अगस्त को सुबह 9:48 तक रहेगी। इसके अलावा राहत की बात यह भी है कि 27 अगस्त को सुबह 8:31 से रात 8:54 तक भद्रा है, यानी कि भद्रा के प्रभाव से रक्षाबंधन का पर्व थोड़ा दूर है। इस बार भद्रा का सार नहीं है। 27 अगस्त की रात 8:54 से भद्रा समाप्त हो जाएगी और इसी रक्षाबंधन पर बहुत सारे शुभ संयोग भी बन रहे हैं। जैसे शतदिशा नक्षत्र में यह रक्षाबंधन है। शतदिशा नक्षत्र का वरुण देव से खास संबंध माना जाता है। इसमें पूजा पाठ दान का बहुत खास महत्व है और साथ ही साथ रक्षाबंधन पर सुकर्मा योग भी बन रहा है। ये बाधा रहित शुभ काम की शुभ घड़ी मानी जाती है। वहीं त्रिपुष्कर का शुभ संयोग भी बन रहा है और इसका अर्थ सीधे तौर पर यह है कि जो भी कार्य इस दिन किया जाता है उसका 3 गुना ज्यादा फल मिलता है। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग शुभ फल देने वाला योग ये भी है। बुधादित्य राजयोग भी रक्षाबंधन पर है तो इस दौरान रवि योग का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। ये भी बताते चले कि कर्क राशि में गुरु की स्थिति को भी शुभ माना जाता है और इस बीच देश भर में राखी के पर्व की तैयारियां तेज है। रंग बिरंगी राखियों से बाजार सज चुके हैं। बहनें राखी खरीद रही हैं, भाई अपनी बहनों के लिए उपहार ले रहे हैं।
1: अगर हम शुभ मुहूर्त की बात करते हैं तो राखी वाले दिन सुबह का शुभ मुहूर्त जो है वो बहुत ही खास है, जो कि शुरू होगा सुबह 5:57 से लेकर सुबह 9:48 तक। हालांकि राखी उदय तिथि के हिसाब से आप सारा दिन मना सकते हैं, लेकिन ये मुहूर्त सबसे खास है। राखी में आपको राहु काल का विशेष ध्यान रखना है कि राहु काल में आपको राखी नहीं बांधनी है और राहु काल हमारा शुरू होगा 10:46 से लेकर 12:22 तक राहु काल रहने वाला है, तो इस समय में आपको राखी नहीं बांधनी है। चंद्र ग्रहण की वजह से राखी पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है और इस बार भद्रा का भी साया राखी पे नहीं है, क्योंकि भद्रा जो है वो 28 से पहले ही खत्म हो जाएगी, तो इस बार राखी पे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं है।
0: तो चलिए, बहुत सारे शुभ संयोगों के साथ इस बार रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे और बहुत कुछ खास है इस बार रक्षाबंधन पर। क्या खास है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब बताने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रुति खरबंदा एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ मौजूद है। वाने आयरा जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा और संजय शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माने जी, जब हम शुभ योगों संयोगों की बात कर रहे हैं और आज का जो हमारा हेडर है वो भी यही कि 7 बड़े और शुभ योग संयोग बन रहे हैं। सबसे पहले गुड न्यूज कौन सी इस बार राखी पे मिल रही है ग्रह नक्षत्रों की तरफ से, ये बताइए।
2: थैंक यू नवजोत जी, जैसे हम गुड न्यूज टुडे पर बैठे हैं तो गुड न्यूज देनी बहुत जरूरी है, तो इसमें इस बार की गुड न्यूज ये है कि राखी जो है इस बार बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि इस बार राखी में कोई भी भद्रा का साया नहीं है और राखी पर बहुत सारे खास योग और संयोग जो है वो बन रहे हैं। राखी पर हंस महापुरुष योग बन रहा है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जो है वो अपनी उच्चस्थ राशि में है। इसके अलावा सूर्य देव जो है वो अपनी सिंह राशि में है और साथ ही जो है वो बुध के साथ बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं। सिंह राशि में 3 जो है एक ग्रह

0: एक साथ हैं सूर्य, बुध और केतु। इसके अलावा जो है आपका जो है इस टाइम पर सुकर्मा योग जो है वो भी बन रहा है, सर्वार सिद्धि योग जो है इस दिन पर वो भी बन रहा है, और पूर्णिमा तिथि जो है आपकी, आपको ये चीज जो है बहुत खास ध्यान रखनी है कि पूर्णिमा तिथि जो है 28 अगस्त को 9:48 AM पर खत्म हो जाएगी। तो आप कोशिश करिए, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप अपनी राखी को जो है 9:48 से पहले अपना राखी का जो भी सेरेमनी है वो अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है। ये टाइम बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस है, शतभिषा नक्षत्र है इस टाइम पर, और इस टाइम पर जो है चंद्र ग्रहण का भी आप देखिए कि भारत में जो है कोई सूतक मान्य नहीं है और भारत में जो है उसका कोई भी किसी भी तरह का इम्पैक्ट नहीं है। तो आप बिल्कुल भी डरे नहीं, आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, अपने राखी को बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ, ऑस्पिशियसनेस के साथ मनाएं। राखी एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल फेस्टिवल है, तो जो भी उसके आपके रिचुअल्स हैं, जैसे आपकी जो पूजा की थाली है, जैसे एक एक चीज को जो है आप बहुत ही अपनी प्योर इंटेंशंस के साथ आप जल्दी उठें और सुबह जो है आप नहा धो के अच्छे से साफ कलरफुल ब्राइट कलर्स पहने। शुक्रवार का दिन है और इस दिन माता लक्ष्मी का भी दिन होता है, अपने भाइयों के लिए इस दिन आप खीर जो है वो जरूर बनाएं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूं कि आज के दिन, राखी के दिन, हमेशा जब आप अपने भाइयों को राखी बांधते हैं तो उससे पहले आप राखी जो है अपने ईष्ट देव, जिससे आपकी एनर्जी कनेक्ट करती है, उन अपने देवी देवताओं को जो है, देवियों को नहीं, देवताओं को आप राखी जरूर बांधें। और कई जगह भाभियों को भी राखी बांधने का चलन होता है, तो आप अपनी देवियों को भी राखी बांध कर सकते हैं, आप पीपल के वृक्ष को भी राखी बांध सकते हैं, ताकि आप अपने पूर्वजों से जो है कनेक्ट करें। और जब भी आप अपने भाइयों को राखी बांधे तो पहले उनके हाथ पर कलावा जरूर बांधे, उसके बाद जो है आपको रक्षा सूत्र बांधना है, और उस टाइम पर आपकी जो भाइयों के फेस की डायरेक्शन होनी चाहिए वो टुवर्ड्स ईस्ट होनी चाहिए या फिर टुवर्ड्स नॉर्थ होनी चाहिए, और आपकी प्लेट में जो राखी होनी चाहिए वो कोशिश करें कि आप इवन नंबर में हो, जैसे 2 की संख्या 4 की संख्या इस तरह से। और आप एक चीज और ध्यान रखें कि राखी के टाइम पर आपके भाइयों का सिर जो है हमेशा ढका होना चाहिए और बहनों का सिर भी ढका होना चाहिए। जब आप अपने भाई की आरती करते हैं तो वो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करें और अक्षत जो है थोड़े से उसके ऊपर जरूर छिड़कें। गायत्री मंत्र का 3 बार जो है जाप जरूर करें, याद रखें अपने भाई, और अगर आप व्रत भी रख सकते हैं इस दिन तो बहुत अच्छा है। और इस बार आपको पूरा दिन व्रत रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूर्णिमा तिथि जो है वो आपकी 9:48 AM पर जो है 28 अगस्त को वो भी ओवर हो जाएगी।
1: तो मैं आगे बढ़ू उससे पहले, तो इसका मतलब जो पूर्णिमा उपवास है वो कल होगा
0: 27 अगस्त को। हाँ जी,
1: और फिर उसके बाद मॉर्निंग में आप उसका,
0: हाँ, मॉर्निंग में आप अपनी राखी के रिचुअल्स कंप्लीट करके 9:48 पर आपकी तिथि खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप अपने फास्ट को ब्रेक कर
1: ठीक है। अब डॉक्टर नितिशा, मैं आपके पास आती हूँ, सारी बातें लगातार हो रही है, बहुत से शुभ योग संयोग है, इस पर तो आप अपनी बात रखिएगा ही, लेकिन साथ ही साथ देखिए, जब ग्रहण शब्द आ जाता है ना, ग्रहण वैसे भी चंद्र ग्रहण है, भले ही भारत में ना तो सूतक मान्य है ना भारत में लग रहा है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में एक तरह का डर भय रहता है, इसको भी क्लियर करते चलिए, क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व है और इस बीच ग्रहण क्या असर होगा नहीं होगा, हमें डरना चाहिए नहीं, सावधानी रखनी चाहिए नहीं, और अगर हाँ तो क्या किया जा सकता है।
2: थैंक यू नवजोत जी और जीएनटी के सभी दर्शकों को राधे राधे, जय मां पीताम्बरा और आने वाली नावली पूर्णिमा की, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, ये जो पूर्णमासी है ये अपने आप में वैसे भी बहुत स्पेशल है, हर पूर्णमासी पे हम सत्यनारायण की कथा करते हैं, श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं, लेकिन इस पूर्णमासी पर हम समुद्र देव और वरुण देव की भी पूजा करते हैं। कहा जाता है कि मानसून को एक ग्रैटिट्यूड देते हैं कि वो हमारे जीवन में आया और वो हमारे जीवन को जो कल है, जो दुर्घटनाएं हो सकती थी उससे मुक्त करते हुए हमारे जीवन को उसने आगे बढ़ाया, तो हम वरुण देव को ग्रैटिट्यूड देंगे। साथ ही साथ चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है जो 18 इयर्स के बाद सावन में पड़ने जा रहा है, तो ये चंद्र ग्रहण जो हमारे मन पर कंट्रोल करने का ग्रह है चंद्रमा, देखिए चंद्रमा को शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया हुआ, यानी हमारे मन की जो इच्छाएं हैं वो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, शिव जी हमें ये दिखाते हैं। और सावन में शिव भक्तों ने शिव भक्ति करके अपने चंद्रमा को कहीं ना कहीं पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा है, इसलिए जीएनटी के दर्शकों को इस चंद्र ग्रहण पर डरने की कोई जरूरत नहीं बनती है, बल्कि मैं कहूंगी इस चंद्र ग्रहण पर जितना आप सफेद चीजों का दान कर सकते हैं, चांदी का, चावल का, चंद्रमा से संबंधित चीजों का, मंगल की से संबंधित चीजों का, उतना आपकी मानसिक ऊर्जाएं बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। और इस दिन इतने निराले सहयोग बन रहे हैं, जैसे कि आपने भी त्रिपुष्कर योग के बारे में बताया, सुकर्मा योग, रवि पुष्कर योग, सर्वात सिद्ध योग, हंस नामक राजयोग, बुद्धा आदित्य राजयोग, इतने सारे राजयोग बनने के साथ साथ ये दिन अपने आप में बेहद शुभ हो जाता है। सबसे पहले भद्रामुक्त है ये दिन, इसलिए भद्रामुक्त होने के कारण शुभ स्थितियों का सहयोग सावन की इस पूर्णमासी रक्षाबंधन पर बन रहा है। सुकर्मा योग कहा जाता है कि रक्षाबंधन के सुबह ही सुकर्मा योग लग रहा है जो पूरा दिन रहेगा, इसलिए जो भी कार्य हम करते हैं उसके उससे ग्रेटिट्यूड दें और अपने जीवन को और भी ज्यादा सफल बनाएं। शतभिषा नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे, जो कुंभ राशि शनि की राशि है, शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है और इस नक्षत्र की जो स्वामी है वो 100 तारों का समूह है, यानी आध्यात्मिक ऊर्जा का पूरी तरह से मनुष्य जीवन में एक तरह से बढ़ना। तो इस समय जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, उसकी ऊर्जाएं भी बढ़ जाती है। बुद्धादित राजयोग, इससे हमारी वाक्पटुता, व्यापार सिद्धि, ये सब चीजें हमें प्राप्त होती है। गुरु का हंस नामक राजयोग, ये भी बहुत फेमस है क्योंकि कहा जाता है कि इस समय हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा और ज्ञान बढ़ता है। इसलिए मैं सबसे पहले कहूंगी, जिस समय आप अपने भाई को तिलक करें उस समय दूध और रोली का तिलक बनाएं या हल्दी और दूध का तिलक बनाएं, ताकि आप गज केसरी राजयोग को वहां पे स्थापित कर सके। अगर आप कुमकुम या केसर से तिलक कर रहे हैं तो उसमें हल्दी मिलाना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि आपके भाई के जीवन में भी सुख समृद्धि बढ़े। पूरणमासी पे खीर बनाने का हमारे घर में बहुत बड़ा सहयोग होता है, तो खीर जरूर बनाएं, लेकिन खीर में इस बार केसर और गुड़ डालना बिल्कुल ना भूले, ताकि मंगल और गुरु की स्थिति चंद्रमा को सपोर्ट दे और जो चंद्र ग्रहण का साया है, जो भारत में देखने को तो नहीं मिलेगा लेकिन मानसिक ऊर्जा कहीं ना कहीं विचलित हो सकती है और इस दिन समुद्री क्षेत्रों के आसपास कुछ बड़ी तेज ऊर्जा हमें देखने को मिलेगी। इसलिए अपने भाई को जब खीर खिलाएं तो उसमें गुड़ और थोड़ी सी हल्दी या केसर जरूर मिला दें, इससे ऊर्जाएं बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी। गज केसरी राजयोग बनेगा, लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, जिससे भाई के जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। और त्रिपुष्कर योग में तो जो भी किया जाता है उसका हमें 3 गुना फल मिलता है। तो इस दिन जो भी हम रेमेडी कर रहे हैं, अपने भाई की झोली में नारियल रखते हैं, उनको तिलक लगाते हैं ताकि वो सुख समृद्धि से भरे रहे, उनको मुंह मीठा करते हैं ताकि उनका जीवन मिठास से भरा रहे, तो वो जो भी त्रिपुष्कर योग में हम करेंगे उसका हमें 3 गुना फल मिलेगा। और सर्वात सिद्ध योग में तो, रवि पुष्कर योग में तो हम जानते ही हैं कि जो भी कार्य करते हैं वो शुभ ही फल को लेकर के आता है। तो ये दिन, ये सावन की आखिरी दिन जिस दिन रक्षाबंधन हम मना रहे हैं पूरणमासी, वो बहुत ही स्पेशल है 2026।
1: चलिए, कुल मिलाकर इस बार कम से कम ग्रहण से तो डरने की किसी को जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री होके एंजॉय करते हुए रक्षाबंधन का पर्व आप मना सकते हैं। श्रुति खरबंदा जी, आपके पास आना चाहूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दिन। अगर हम, मैं देखिए, शुभ योग नक्षत्र क्या है ये तो हमने वान्या जी और नितिशा जी से जान लिया, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी, जब पूजा की थाली सजाई जाती है कौन सी अहम चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जिनका ख्याल खास तौर पर रखना है?
3: बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जीएनटी के माध्यम से जो है मैं सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। थाली में क्या रखें क्या ना रखें ये समझने से पहले मुझे लगता है कि हमें रक्षाबंधन को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये लूनर फेस्टिवल है जो कि चंद्रमा की स्थिति को देखकर मनाया जाता है। जैसे नेपाल में जनई पूर्णिमा कहते हैं, महाराष्ट्र में जो है इसको तटीय इलाकों में कई बार नारियल पूर्णिमा कहते हैं, तो यहाँ नारियल का बहुत ज्यादा महत्व आ जाता है। और जो रक्षाबंधन है यानी सूत्र जिसको बांधा जाता है, वो क्योंकि रक्षा का सूत्र है तो उसमें लाल पीला रंग वो होना जरूरी है। उसका कलावा जैसे बना लेते हैं, क्योंकि लाल जो है वो ऊर्जा का प्रतीक है, रक्षा का प्रतीक है, और जो पीला रंग है वो शुभता का प्रतीक है। तो यही हम ध्यान में रखते हैं, जो है अपनी थाली सजाते हैं कि उसमें जो है रोली हो, कुमकुम जिसे कहते हैं, साथ में अक्षत, बिना टूटा हुआ अक्षत हो, मिठास हो, शुक्र का प्रतीक है। इस तरह की कुछ चीजें जो है अगर हम अपनी थाली में सजा लेते हैं भाई को राखी बांधते समय, तो ये बहुत अच्छा रहता है। लेकिन वो बहनें जो नहीं जा सकती हैं तो वो पहले ही राखी भिजवा सकती हैं, तो भाई जो भी बहन समान महिलाओं के जीवन में हो उनसे वो सूत्र जो है वो बंधवा सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ। देखें, रक्षाबंधन जो है बहुत पुराना त्योहार है, हमें द्रौपदी और कृष्ण की कथा यहाँ पर सुनने को मिलती है, हमें इंद्र इंद्राणी की कथा सुनने को मिलती है, क्योंकि वॉरियर्स को बांधा जाता था तो इंद्राणी ने भी इंद्र को बांधा था, ये रक्षा के लिए बांधा जाता है। और बहुत लेटेस्ट मॉडर्न हिस्ट्री में 1905 में जो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन थे, बंगाल को हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते थे, तब रविंद्रनाथ टैगोर ने इस त्योहार को हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी है उसको प्रमोट करने के लिए जो है यूज किया था। तो ये जो पहले के जमाने में अगर हम देखें तो ये बहुत ओपन और होलिस्टिक रहता था,
0: जी
3: और अब जो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये भाई बहन का मात्र बन के रह गया। तो ये है वैसे रक्षा सूत्र का, और थाली जब भी सजाएं तो मैं ये चाहूंगी कि बहनें हमेशा ये ध्यान रखें कि भाई सपोर्ट करेगा, देखिए म्यूचुअल सपोर्ट होना चाहिए, भाई की रक्षा के लिए आप कामना कर रही हैं, और भाई भी जब बहन से राखी बंधवाएं, अगर बड़ी बहन हो तो उनके पांव छुएं और अगर छोटी हो तो उनको आशीर्वाद दें,
0: बिल्कुल
3: और थाली में गिफ्ट रखना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर नटखट और आपका रिलेशनशिप है तो आप मांग भी सकती हैं।
1: अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, स्क्रीन पे सिर्फ आपकी तस्वीर थी और हमारे ग्राफिक्स चल रहे थे। गिफ्ट रखना कंपलसरी नहीं है, आप वान्या जी जोर से हंसी हैं क्योंकि वो इस बात को मानती हैं कि गिफ्ट देना जरूरी है। नितिशा जी, गिफ्ट दिया जाए कि नहीं?
3: हो जाता है, पहले लड़ जाते हैं, रियल लाइफ में जब भाई की शादी हो जाती है तो भाई भाभी कभी कभी जिंदगी की जो दौड़ है उसमें वो एक बर्डन सा बन जाता है,
4: पर गिफ्ट बहनों को भी भाइयों को देना चाहिए।
1: एक बार नितिशा जी से भी पूछ लेते हैं, वो भी कुछ उम्मीदें लगा के बैठी होगी।
2: नहीं, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि गिफ्ट मिलना चाहिए, और नवजोत जी मेरा तो खैर भाई नहीं, मैं तो ठाकुर जी को और बजरंग बली को राखी बांधती हूँ और उन्हीं से गिफ्ट की अपेक्षा करती हूँ, वो मुझे गिफ्ट हर साल देते हैं, लेकिन गिफ्ट मिलना चाहिए। गिफ्ट महंगा हो या सस्ता हो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गिफ्ट होना चाहिए,
1: होना
2: उससे
1: बहुत
2: आपका खुद
1: जरूरी
2: भी
1: है।
2: मजबूत होता है।
1: बिल्कुल, सब बहनों को गिफ्ट मिलना चाहिए। संजय जी, बहुत जेब ढीली करनी पड़ेगी इस बार आपको। जी बताइए, इस बार का रक्षाबंधन किन मायनों में बहुत खास है?
5: जी देखो, ये रक्षाबंधन जो है बड़ा ही शुभ है, क्योंकि कहा जाता है कि इस वर्ष जो योग बन रहे हैं बड़े शुभ योग बन रहे हैं। बड़ा अच्छी तरीके से नितेशा जी ने भी और वान्या जी ने भी बड़े अच्छे से विस्तार से बताया कि देखो सुकर्मा योग बन रहा है, और एक ना त्रियोग जिसको त्रिपुष्कर योग भी बोलते हैं। तो मैं एक बात बता देता हूँ आपको बड़े अच्छे से, कहते हैं कि गांठ जो है जैसे रक्षा का जो सूत्र होता है उसका एक मंत्र है, ओम ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन बदनामी रक्षेशु माचले माचल। कहते हैं कि जब भी हम कोई भी राखी बंधवाएं या कोई भी धागा कलावा बंधवाएं तो हमारे हाथ में अक्षत अन्न रुपया धन कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी बहन से रक्षा का सूत्र बंधवाएं या किसी ब्राह्मण से ही बंधवाएं, किसी से बंधवाएं, क्योंकि हमारा कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। और उसमें तीन सूत्र की जो बात की गई है, तीन धागे हैं। पहला जो धागा होता है वो भाई की लंबी आयु के लिए होता है, पहली गांठ भी बोल सकते हो आप उसको एक धागा, और दूसरी गांठ जो होती है बहन की लंबी आयु, और तीसरा जो धागा है या गांठ है वो दोनों के प्रेम और स्नेह और समर्पण को आपस में बना करके रखे और भाई बहन में सदा प्रेम रहे। कहते कि रक्षा सूत्र किसी को भी बांधा जा सकता है, और आपने जो है कथाएं कई सुनी, इंद्राणी वाली जो बताई इन्होंने, और दूसरी यमराज और यमुना की कहानी है, कृष्ण और द्रौपदी की, जब भगवान कृष्ण को जो है चक्र से आघात हो गए थे तो द्रौपदी जी ने जो है अपना जो है पल्लू फाड़ करके जो है भगवान कृष्ण को बांध दिया था, और उसी से भगवान ने आगे जाकर के उनकी रक्षा करी। तो इस प्रकार से जो कहानी है, पौराणिक कथाएं हैं, और राजा बलि वाली जो कहानी है कि लक्ष्मी जी जो है भगवान विष्णु जो है चले गए और पाताल लोक में, तो लक्ष्मी जी जो है उनको जो है कहते हैं कि अपना भाई बना करके जो है और लेकर के आई वापस पति को, और कहा जाता है कि जब वामन अवतार हुए थे तब जो है वामन अवतार में उन्होंने पूरी पृथ्वी मांग ली, और तीन पद में वो भी प्रसन्न हो गए भगवान भी, उनको वो जो है पृथ्वी लोक के अंदर चले गए। तो भगवान नारद ने कहा कि अपने पति को लाने के लिए आप जो है एक रक्षा सूत्र बांध दें उनको। तो कहा जाता है कि जब आप रक्षा सूत्र किसी को बांध देते हैं तो सोच लें कि आपका वो हो गया, और भाई बहन का जो ये त्योहार है हमारे जीवन में सुख को देने वाला है। और ये त्योहार जो प्रारंभ हो रहा है इसमें जो समय है 3 घंटे और 51 मिनट का समय रहेगा, और इसमें रक्षा सूत्र जो है सुबह सुबह आप अर्ली मॉर्निंग भी बांध सकते हैं, और जो लोग नहीं बांध सकते अर्ली मॉर्निंग उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में, वो 9 बज करके और 48 मिनट से पहले पहले ही रक्षा सूत्र बांधें, और सूर्य भी जो है इस वक्त सिंह राशि में रहेंगे, गुरु भी उक्त राशि में रहेंगे, तो इतने बढ़िया योगों में जब ये आ रहा है त्योहार, और सद्विशा नक्षत्र जो राहु का नक्षत्र पर चंद्रमा राहु का ग्रहण भी है यहाँ पर, क्योंकि ग्रहण क्या है, मानसिक पीड़ा देता है, मन को अशांत करता है, तो इस वक्त जो है घर के उत्तर के कोने में आप चाहें तो एक जल का पात्र भर करके रख लें, जिससे कि आपको मानसिक अशांति ना हो। और कहते हैं कि घर के अंदर, पूरे घर के अंदर चांदी गिलास में जल लेकर के और छींटा दे दें, जिससे कि आपके जीवन में उस दिन विषयोग बन रहा है। कहा जाता है कि सुबह 8:04 से लेकर के और 11:12 तक ग्रहण भी पड़ेगा, पर भारत में प्रदर्शित नहीं है, परंतु क्या है, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी कोई भी ग्रहण होता है तो उसका प्रकृति और नेचर के ऊपर जो है जरूर फर्क पड़ता है, क्योंकि ग्रहण तो ग्रहण ही है, क्योंकि राशि के अंदर जब आता है किसी भी राशि में तो उस राशि को इफेक्ट करता है। कुंभ राशि के अंदर जो है ये विषयोग बन रहा है और राहु का नक्षत्र भी है वहां पर सद्दिशा, तो आपको मानसिक संतुलन की जरूरत है और ध्यान मग्न हो, और इस वक्त भगवान विष्णु का ध्यान अवश्य करें और त्रिदेवों का ध्यान भी करते रहें, जिससे
1: एक बार वाणी जी आपके पास आते हैं संक्षेप में छोटा सा जवाब, क्योंकि हम राशियों पर भी आगे बढ़ेंगे। अब क्योंकि संजय जी ने ग्रहण की बात की, मैं वही एक जवाब आपसे लेना चाहूंगी। नितिशा जी बता रही थी कि ग्रहण का कोई असर नहीं है भारत में, क्योंकि न सूतक मान्य है, तो तमाम जो नियम है वो मान्य नहीं रखते हैं भारत में खासतौर पर, लेकिन विदेशों में जहां जहां ग्रहण लग रहा है वहां पर भी सनातन को मानने वाले बहुत से लोग हैं और वहां भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा, तो उनके लिए प्रिकॉशन क्या होनी चाहिए?
0: जी, तो जो लोग भी जीएनटी के माध्यम से हमें ऑल ओवर दी ग्लोब देख रहे हैं, तो उन जिन भी देशों में जहां पर ये जो ग्रहण का सूतक जो है वो मान्य है, तो आप लोगों से मैं यही कहूंगी, आप ओम सोम सोमाय नमा का जो है आप जाप करते रहिए, ओम चंद्रमसे नमा का जो है आप लोग जो है जाप करते रहिए। इसके अलावा जैसे जो आपकी टाइम जोन के हिसाब से जो पूर्णिमा तिथि है उस हिसाब से आप अपनी कंट्री के हिसाब से आप राखी जो है मना सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि मेंटल स्ट्रेस आ रहा है, कुछ मेंटल एग्जॉशन आ रहा है, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है और चंद्रमा मन का कारक होता है, तो वहां पर जो है आप अपने माता के सानिध्य में रहिए, और अगर ग्रहण आपकी कंट्री में विजिबल है तो प्लीज आप उस टाइम पर आप घर से बाहर ना निकलिए और मानसिक जाप और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल श्रुति जी, चलिए आपके पास आती हूं। अब हम सीधा राशियों की तरफ आगे बढ़ेंगे। किस रंग की राशि, या साथ ही साथ हम तोहफे की भी बात करते चलते हैं, अब क्योंकि यहाँ मेजॉरिटी सब महिलाओं की है तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि गिफ्ट हमको मिले, तो किस रंग की राशि, राशि के हिसाब से किस रंग की राखी बांधनी चाहिए भाइयों को?
3: देखें यहाँ पे मेष और वृषभ राशि के लिए आपने कहा,
1: मेष वृषभ मिथुन,
3: हाँ मेष वृषभ मिथुन की हम बात कर लेते हैं, लेकिन राखी में देखें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लाल पीला रंग। जैसा मैंने कहा था मंगल, देखिये लूनर फेस्टिवल है, श्रावण मास की पूर्णिमा है, श्रावण के बाद इसके अगले दिन से भाद्रपद का जो भादो का महीना जो है उसकी शुरुआत होती है। भाद्रपद एक नक्षत्र है जो कि बहुत अनुकूल नहीं माना जाता है सेहत को लेके, तो ये भी मुझे लगता है कि एक ज्योतिष का कॉन्टेक्स्ट है जिसकी वजह से हम ये रक्षा सूत्र इस समय पे आज के बांधते हैं, ताकि एक महीना जो खासतौर पर आने वाले 1 से लेकर 3 महीने जो है वो सेहत को कोई नुकसान ना हो, और इस तरह का जो भी हम किसी एक्टिविटी में जाते हैं तो वहां से हम विक्ट्री लेकर वापस आए, तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी राशि हो जब वो बांधे राखी तो उसके साथ एक कलावा जो लाल और पीले धागे का हो वो जरूर बांधे। अब हम बात कर लेते हैं मेष राशि की, तो देखें भाई क्या कर सकते हैं, भाई बहन को कोई रेड कलर का कोई भी गिफ्ट दे सकते हैं, चाहे वो कोई ड्रेस हो या रेड कलर का कोई बैग हो, एनीथिंग जो उनको लगता है कि वो ऐसा कर सके, और कुछ नहीं तो 9 नंबर के अमाउंट में, 9 से देख लीजिए आपको कितने 0 आगे लगाने हैं, उस अमाउंट से आप उसको जो है एक जैसे कहते हैं ना सगन, वो आप उसको एक शगुन वो दे सकते हैं, ये बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। सिमिलरली बहनों के लिए ये कहा जाएगा, चूंकि मेष राशि की जो महिलाएं हैं जो भाई को गिफ्ट राखी बांधना चाह रही हो, साथ में कुछ गिफ्ट देना चाह रही है, तो वो केसरिया लड्डू जो है अपनी राखी की थाल में वो जरूर रखें, तो वो वहां शुभ फल उनके लिए लेकर आ सकता है। धन लाभ के योग बने हुए हैं मेष राशि के जातकों के लिए, स्पेशली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को लेकर या मार्केटिंग को लेकर, यात्राओं को लेकर भी। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के जातकों की, तो देखिये इनके दूसरे भाव में मंगल गोचर कर रहा है, तो फैमिली में थोड़ा सा अगर खटपट हो पड़े तो गुस्से पे कंट्रोल करके रखें, और अगर बहनें राखी बांध रही हैं तो साथ में वो इत्र जो है थाल में रख सकती हैं, और सफेद अक्षत रखना ना भूलें, वो भी पूरे फुल लेंथ के जो चावल होते हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर आ जाता है इनकी राशि के हिसाब से। और अगर इसी राशि के भाई हैं जो बहनों को गिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं कहूंगी वो परफ्यूम या कोई भी शुक्र से जुड़ी, जैसे कहते हैं ना फैंसी चीज, या कोई गहने या इस तरह की चीजें जो है वो बहनों को दे सकते हैं। मिथुन राशि की अगर हम यहाँ पर बात कर ले, तो इनके तो लग्न से मंगल गोचर कर रहा है, तो हम यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं। दे आर ऑलरेडी वेरी एनर्जेटिक, इनको तो जो बस इतना करना है कि बन आके चलनी है, इनकी ऊर्जा की वजह से ये ना हो कि आपका भाई या बहन जो है वो आपके सामने जो है सप्रेस हो जाए, क्योंकि आपके पास अभी बहुत एनर्जी है, कम से कम बहस करने की तो और भी ज्यादा एनर्जी है, लेकिन आपको विजडम स्पीक थ्रू। बहन को जब भी आप कुछ गिफ्ट करें तो उसमें येलो कलर की इन्वॉल्वमेंट जरूर रखें, और
1: जी
3: अगर आप बहन हैं भाई को राखी बांध रही है तो वो येलो कलर का जो कोई गिफ्ट है, मैं कहूँ कि बेसन के लड्डू जो है वो मिष्ठान में अगर आप प्रयोग करेंगे तो वो बहुत ज्यादा इनके लिए जो है बेनिफिशियल
1: ठीक
3: रहेगा,
1: है।
3: आर्थिक और सेहत दोनों के लाभ को देखते हो।
1: चलिए बाकी राशियों की बात आगे करेंगे, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। और रक्षाबंधन पर कौन सा शुभ योग संयोग बन रहे, कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ।

परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: सात शुभ योगों वाला रक्षाबंधन, योग संयोग कौन से अच्छे बन रहे हैं, इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार डॉक्टर निशा आपके पास आना चाहूंगी। जब हम रक्षाबंधन की बात करते हैं, शुभ योगों संयोगों की बात कर रहे हैं, ग्रह गोचर भी बताते चलिए साथ ही साथ कि इस बार कैसा है, किसके लिए ज्यादा फेवरेबल है इस बार ग्रह गोचर।
1: जी बिल्कुल नवजोत जी, तो देखिए हंस नामक राजयोग बन रहा है जो कर्क राशि में जब गुरु उच्च की स्थिति में होता है उसी समय बनता है। तो जो हंस नामक राजयोग है उसकी स्थिति बहुत अच्छी है और कर्क राशि के स्वामी ग्रह को ही इस समय चंद्र ग्रह लग रहा है जो सुबह 6:00 शुरू हो रहा है 6:53 से, और इसका जो पीक टाइम रहेगा वो 9:30 के लगभग रहेगा, लेकिन चंद्र ग्रहण समाप्त होते होते 12:30 लगभग बज जाएगा। इसलिए 12:30 के साथ जो हमें अभिजीत नक्षत्र का 12:15 से योग मिल रहा है वो बेहद शुभ रहेगा, जिस समय हम रक्षाबंधन कर सकते हैं। एक चीज और कहना चाहूंगी, इसके साथ साथ सूर्य और बुध का बुद्धादित्य राजयोग भी बनता है। शुक्र महाराज नीच राशि से गोचर कर रहे हैं लेकिन कन्या राशि के लिए भी यह समय अच्छा है और बुरा नहीं रहने वाला है, क्योंकि शुक्र का कन्या राशि से गोचर करना भी कन्या राशि को कहीं ना कहीं सेफेस्ट पॉइंट पे रख रहा है। इस समय जो सबसे ज्यादा थोड़ी बहुत परेशानियां रह सकती हैं वो रह सकती हैं वृश्चिक राशि पर, मीन राशि पर और कर्क राशि पर, लेकिन कर्क राशि को तो देव गुरु बृहस्पति ने पूरा प्रोटेक्शन अपनी छतरी दी हुई है, तो मुझे लगता है कि कर्क राशि सिर्फ चंद्रमा के मंत्रों का जाप करके अपनी पूरी वो संवेदनता जो निगेटिविटी है जो ब्रह्मांड में होगी उसको समाप्त कर सकते हैं। वैसे तो सभी को चंद्र ग्रहण का पूरा लाभ उठाना चाहिए, अपने मंत्र जाप करने चाहिए, अपनी मालाओं को, अपनी अंगूठियों को, अपने क्रिस्टल्स को इस समय पूरी तरह एक्टिवेट करिए और अपनी ऊर्जाओं को इस समय जितना आप एक सीध पे, कमर को एक सीध में रखते हुए बैठते हैं, क्योंकि सुबह का समय है नवजोत जी, किसी के लिए ये भी कहने की जरूरत नहीं है कि छुट्टी का दिन नहीं था या टाइम नहीं था, सुबह का समय है। अपने आप को मौन धारण करके थोड़ी देर मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि ये दिन सच में ग्रहण को, चीजों को ग्रहण करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए बोला गया है कि आप कैसे समाज को, दुनिया को, अपनी इच्छाओं को कैसे एक्सेप्ट करते हो। तो शिव जी से हमें सीखने को मिलना चाहिए कि जब विष कोई धारण नहीं कर पा रहा तो हम विष धारण कर सकते हैं अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने खुद के लिए भी, सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए।
0: बिल्कुल। एक बार संजय जी आपके पास आना चाहूंगी। जब रक्षाबंधन की बात आती है, बहनें राखी बांधती हैं भाई की कलाई पर, तो उस नॉट का कितना महत्व हो जाता है, उस गांठ का कितना महत्व होता है, क्या उसकी भी कोई काउंटिंग होती है?
2: जी बिल्कुल काउंटिंग होती है। मैं भी यही समझा रहा था कि हमेशा जो गांठ से बांधते हैं, पहला जो धागा होता है, पहली गांठ जो होती है वो क्या है कि भाई की लंबी आयु, क्योंकि दीर्घ आयु रहे भाई की। जो भी अक्षत रखते हैं, चावल रखते हैं, धन रखते हैं मुट्ठी के अंदर, कि हमारा हाथ सदा के लिए जो है धन से भरा रहे, हमारे जीवन में कभी भी खाली ना हो हमारा। पहला रक्षा जब बांधते हैं वो इसीलिए बांधते हैं कि भाई की लंबी आयु हो। दूसरी जो गांठ बांधी जाती है वो इसलिए कि बहन की लंबी आयु हो, क्योंकि बहन और भाई का जो प्रेम है वो सदा बना रहे। तीसरी जो है कि दोनों में प्रेम अटूट रहे और जीवन पर्यंत रहे। कहते हैं कि जिस प्रकार से त्रिदेव है उसी प्रकार से बहन भाई के अंदर सदा प्यार और मोहब्बत बनी रहे और दोनों का प्रेम युग युग तक रहे, क्योंकि भाई और बहन का प्रेम अटूट होता है। और उसमें क्या है कि गिफ्ट वाली बात आपने बड़ी अच्छी बोली है, परंतु क्या है बहन भाई के बीच में कभी गिफ्ट की बात नहीं होती कभी, क्योंकि भाई जो श्रद्धा अनुसार जो भी गिफ्ट दे देता है वो बहन एक्सेप्ट कर लेती है, और बहन अगर कुछ अपने भाई को दे देती है तो एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि ये प्रेम का बंधन है। रक्षाबंधन जो है प्रेम का बंधन है, अटूट बंधन है, जो हमारे जीवन में, क्योंकि हमारी पौराणिक कथाओं में भी यही आया है कि आप देखें कि बिना किसी उसके जो है भगवान कृष्ण की उंगली, जब उंगली कटी चक्र से तो सीधा उन्होंने जो है टुकड़ा बांध दिया राखी का, तो वो क्या है कि राखी नहीं है, वो बैंड, एक तरीके से आप बैंड समझे, राखी समझे या धागा समझे या फिर जो है एक कपड़ा समझे, क्योंकि एक मन और श्रद्धा और विश्वास के साथ जब भी आप किसी को पूरे प्रेम के साथ जब बांध देते हैं वो अटूट विश्वास हो जाता है और वो प्रेम का सहयोग होता है। तो इसीलिए तीन धागों की बात कही गई है, तीन गांठों की बात कही गई है, जो हमारे त्रिदेवों को रिप्रेजेंट करता है, हमारी प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है। कहा कहते हैं कि आकाश, पृथ्वी और जल तीनों को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे जो तत्व है, हमारा बैलेंसिंग तत्व जो मन का तत्व है, हमारा शरीर भी तीन भागों में ही डिवाइड है। पहला जो हमारा जो सर के ऊपर का, दूसरा मिड पार्ट, तीसरा निचला पार्ट। तो ऐसी तीन जो चीजें हैं उनको जोड़ करके जो है हमारी हमारे शरीर की भी संरचना हुई है उसी प्रकार से
0: जी जी बिल्कुल जी। चलिए श्रुति जी आपके पास आऊंगी, अगली तीन राशियों की बात करेंगे, कर्क सिंह और कन्या। श्रुति गर्बंधा मेरी आवाज आप तक आ रही है?
3: जी बिल्कुल मैं आपको सुन पा रही हूँ।
0: जी जी अगली तीन राशियां कर्क सिंह कन्या।
3: जी कर्क राशि की अगर यहाँ बात कर लें तो ये अगर अपने भाई या बहन को कोई भी व्हाइट या सिल्वर टोन गिफ्ट्स देते हैं तो मुझे लगता है ये इनके लिए बहुत ज्यादा शुभ रह सकता है। खासतौर पर गुरु जो इनके लग्न से गोचर कर रहा है उनकी सेहत के लिए भी अच्छा, और कहीं ना कहीं पार्टनरशिप्स में जो है मुझे ये ग्रहण वो फायदा लाता हुआ दिख रहा है, चाहे वो मॉनेटरी फायदा हो या इमोशनल फायदा हो। कर्क राशि वालों के लिए सेहत पे अगर थोड़ा सा ध्यान, फिर भी मैं कहूंगी लापरवाही ना बरतें क्योंकि आगे के आने वाले ये मौसम चेंज का महीना भी होता है, इसको ग्रह अनुसार हम ये भी देख लेते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिंह राशि के जातकों की। तो देखिए सिंह राशि के जातक है अगर आप भाई हैं या बहन है, मैं दोनों के लिए बता रही हूँ, डिपेंड्स अपॉन हु यू आर। तो अगर यहाँ पे सिंह राशि के आप जातक हैं तो आप ऐसा करेंगे, आप अपने भाई को या बहन को जो है वो गोल्डन या कॉपर टोन का कुछ भी गिफ्ट कर सकते हैं, चाहे वो यूटेंसिल हो, कोई गिफ्ट हो, इस तरह की चीजें। अगर गोल्डन या कॉपर टोन या फिर मेटल, अगर जैसे भी आप सक्षमता अनुसार अगर ये गिफ्ट करते हैं तो यहाँ आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन गिफ्टिंग का एक ये खास ये भी मकसद होता है कि जैसे इन्होंने कहा था ना, अभी आचार्य जी बता रहे थे कि द्रौपदी ने कृष्ण को वो जो राखी बांधी, जिसको राखी रक्षा सूत्र मान लिया गया, तो कृष्ण ने कैसे समय आने पे उनकी जो है रक्षा वाकई करी। तो ये एक इसलिए भी कहते हैं कि आपने एक वो जो फेवर है वो रिटर्न किया, क्योंकि आप इंसान का जन्म लेते हैं तो इसलिए वो नेग या मिठाई या सक्षमता अनुसार जो भी होता है वो गिफ्ट करना जो है वो बहुत उचित रहता है। अब बात कर लें कन्या राशि के जातकों की, तो कन्या राशि के जातक जो है वो ग्रीन टोन में अगर कुछ भी गिफ्ट कर लेते हैं या बुक्स या प्लानर भी अगर वो गिफ्ट करते हैं तो ये उनके लिए जो है बहुत अच्छा रह सकता है। और साथ ही साथ मैं कहूंगी कोई हरी या पिस्ते की मिठाई भी आप अपनी राखी की थाल में यहाँ पर रख सकते हैं। इनको बस एक बात जरूर ध्यान देने की जरूरत रहेगी, कितना भी वाद विवाद हो आप अगर चुप रहेंगे तो यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ग्रह अनुसार जो है गोचर देखते हुए, क्योंकि शुक्र है एक तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है कि आपकी पर्सनालिटी में वहां पे चार चांद लग जाते हैं। सो बी सिलेक्टिव व्हेन यू टॉक। अब हमने तीन राशियों की यहाँ पे बात करी, कर्क सिंह और कन्या।
0: बिल्कुल मैं लौटूंगी आपके पास, बाकी राशियों का जिक्र करेंगे लेकिन इसके पीछे की कथा वाणी जी जरा संक्षेप में बता दीजिए।
4: जी राखी के पीछे की बहुत सारी डिफरेंट पौराणिक कथाएं हैं। यहाँ पर जो है द्रौपदी ने अपनी साड़ी का जो पल्लू है वो फाड़ के जो है भगवान श्री कृष्ण के कलाई पर बांधा था और उन्होंने चीरहरण के टाइम पर उनकी जो है रक्षा की थी। इसके अलावा जो है माँ यमुना ने यम जी को भी जो है ये रक्षा सूत्र बांधा था और यम ने जो है उन्हें जो है कि उनके जीवन में उनके लाइफ में कभी भी जो है अकाल मृत्यु का कुछ भी ऐसा ना बने, तो इस तरह की भी चीज़ें। और माता लक्ष्मी ने भी बलि राजा बलि को जो है रक्षा सूत्र बांधा था और वो जो है बैटल को जो है जीत के आए थे और माता लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु के लिए जो है बैकुंठ लोक जो है वो भी गई थी। तो बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस हैं, बट एक जस्ट एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूंगी कि यहाँ पर जो भी बहनें अपने भाइयों को आप लोग जब राखी बांधते हो तो अपने भाइयों को इतना ज़्यादा आप ब्लेस करो और अपने भाइयों को लाइफ में कैसे हम अपनी लाइफ में इंटेग्रिटी प्रिंसिपल्स और ऑथेंटिसिटी से अपनी लाइफ को आगे लेके जा सकते हैं। और भाइयों को मैं ये कहना चाहूंगी कि आप टाइम टू टाइम अपने बहनों से कन्वर्स करते रहें कि उनकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना आए, ताकि हमारे देश में जैसे जो सिया जैसी और ये सब चीजें इस तरह की जो स्थितियां बनती हैं वो ना बने, ताकि पहले से आपके भाई बहन एक दूसरे के साथ थिक्स एंड थिन्स में एक दूसरे के साथ खड़े रहें और टाइम टू टाइम एक दूसरे का हाल चाल पूछते रहें। और आज के दिन आपके अपने भाई बहनों के बीच में कोई भी मन मुटाव हो तो उसको आप जरूर अपनी लाइफ में क्लियर कर लें,
0: कम्युनिकेशन गैप नहीं रहना चाहिए। चलिए तुला वृश्चिक धनु, श्रुति जी।
3: तुला राशि की अगर हम बात करें तो इनके लिए भी यही सेम एडवाइस है कि व्हाइट या सिल्वर टोन जो है वो स्टाइलिश एक्सेसरी कोई जो है वो गिफ्ट कर सकते हैं, या अपनी थाली में परफ्यूम या इत्र जो मैं कहूंगी चंदन अगर आप रखेंगे तो वो भी रेप्लिकेट कर जाएगा। इट विल वर्क इक्वली गुड बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स वीनस, तो कहीं ना कहीं प्रोस्पेरिटी भी आपके रिलेशनशिप में आती है और उनका विजडम जो है हाइटन होता है, जो कि अल्टीमेटली अल्टीमेट प्रोटेक्टर है शुक्र जिसे कहा जाता है। तो ये तुला राशि के जातकों की बात थी। अब बात है वृश्चिक राशि के जातक, अगर ये अपनी जो थाली है उसमें लाल रंग का कुछ पीप मिठाई रखते हैं और अगर गिफ्ट करना चाहते हैं तो प्रोटेक्टिव गियर या जिम किट होती है इस तरह का कुछ, वो एथलेटिक्स से जुड़ा हुआ, मंगल से जुड़ा हुआ अगर ऐसा कोई गिफ्ट करते हैं, या रेड कलर की क्लोथिंग भी आ जाती है, व्हाटएवर जैसे भी आपके सक्षमता अनुसार अगर आप ये चीजें गिफ्ट करें तो ये आपके लिए बहुत अनुकूल रह सकता है। अगर आपको लगता है कि ये सब जो है बहुत महंगा जा रहा है तो कोई भी कॉपर का यूटेंसिल जो है उसमें कुछ खाने का मिठाई डाल के वो भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। बात हम यहाँ पे कर लेते हैं धनु राशि के जातकों की। तो देखिए धनु राशि के जातक जो है, येलो कलर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। येलो कलर का चाहे वो फैमिली फोटो फ्रेम हो या येलो कलर का कोई भी जो है बुक या इस तरह से आप गिफ्ट कर सकते हैं, वो आपके उसमें अगर इनकॉर्पोरेट हो जाता है वो कहीं ना कहीं शुभता लेकर आता है, वो विजडम लेकर आता है जो आपकी सेहत को प्रोटेक्ट करता है, रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करता है। येलो कलर हल्दी इस तरह से जुड़ी हुई और साथ में जैसे पीली ही मिठाई जैसे बेसन की मिठाई होती है वो आप अपनी थाली में जरूर रखिए।
0: बाकी राशियों की बात करेंगे, डॉक्टर निशा आपके पास पहले आऊंगी। हम तमाम चीजें तो बात कर ही रहे हैं, हर चीज का जिक्र हो गया क्या करना चाहिए, लेकिन डोंट्स की बात हमने नहीं की। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो बिल्कुल बहुत खास ख्याल रखना है कि ये बातें तो इस दिन नहीं होनी चाहिए।
1: जी नवजोत जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। अभी आपने नॉट्स की भी बात की थी संजय जी से, तो मैं यही कहना चाहूंगी, देखिए भाइयों को, क्योंकि मनुस्मृति में भी हमें मिलता है कि अगर हम अपने भाई को रक्षाबंधन का सूत्र बांध रहे तो उसमें त्रिशक्ति को, ये हमारी आध्यात्मिक और हमारी संस्कृति की ऊर्जा को भी दिखाता है। तो तीन गांठे मांगनी चाहिए। पहली गांठ ब्रह्मा जी का नाम लेते हुए, ब्रह्मा जी सृष्टि को बना रहे हैं, रचयिता है, तो हमारे जीवन में वो रचने वाली जो कला है, हम चीज घर बनाए, प्रॉपर्टी बनाए, गाड़ी बनाए, तो हम अपने भाई को ब्लेस करते हैं कि तुम भी अपने जीवन में वंश वृद्धि करो, चीजों को बनाओ, और ब्रह्मा जी का नाम लेके उसके बाजू पर वो कला गांठ पहली बांधते हैं। दूसरी गांठ विष्णु जी के नाम से बांधते हैं, सुख समृद्धि की आस्था रखते हुए कि मेरे भाई के जीवन में श्री हरि विष्णु के नाम से सुख समृद्धि बढ़े, और तीसरी शिव जी के नाम से त्रिशक्ति को मेंटेन करते हुए कि जो नकारात्मक शक्तियां वो उससे दूर रहे और उसकी आयु लंबी रहे, वो तीन गांठे बांधते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हनुमान जी को या ठाकुर जी को राखी बांध रहे हैं तो तीन गांठे नहीं बांधी जाती नवजोत जी, वहां पे आठ गांठियां बांधी जाती।
0: ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है कि आठ गांठे, वक्त अभी इतना ही, लेकिन चलते चलते तीन राशियां भी बची है, मकर कुंभ और मीन। श्रुति जी जल्दी से।
3: मकर राशि के जातकों की अगर बात करें तो रक्षाबंधन पे ये जो है नेवी ब्लू आइटम्स जो है अपने गिफ्ट में, वो अगर आप गिफ्ट करना चाह रहे हैं तो वो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, या कोई वर्क एक्सेसरी, कार्य स्थल से जुड़ी हुई कोई एक्सेसरी जो आपकी बहन के काम आए। और अगर बहने भाई को कुछ अपनी थाली में खास तौर पर ध्यान रखना चाह रही है तो वो भी मैं कहूंगी कि जल या इस तरीके की चीजें अपनी थाली में, जल हाँ एक जरूर रखा जाता है, कोकोनट अगर आप नारियल पूजा की थाली में रखते हैं तो ये बहुत शुभ रहेगा, खासतौर पे ग्रह गोचर को देखते हुए जब आप राखी बांध लें उसके बाद जो भी मिष्ठान आप खिलाएंगे तो वो नारियल जो है प्रसाद के रूप में वितरण कर दीजिएगा, कहीं वो आत्मकता भी दूर होगी, पॉजिटिविटी अंदर आएगी। अब अगर हम अगली राशि की बात कर ले, कुंभ राशि के जातक जो है अगर वो अफोर्ड कर सके तो कोई गैजेट इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर गिफ्ट करते हैं तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, कहीं ना कहीं से वो जो कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स हैं वो आपके दूर होते हैं। पर यहाँ पे हम प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। वैसे प्रैक्टिकली भी अगर देखा जाए, अगर कोई बहन उसको आईफोन मिल जाएगा या कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिल जाएगा तो वो बहुत खुश होने वाली है, पर यहाँ हम सक्षमता अनुसार बात कर रहे हैं, तो चाहे वो फिटनेस बैंड हो, क्योंकि ब्लैक और नेवी ब्लू आइटम्स है तो ब्लैक अवॉइड करी जाएगी, यहाँ पे नेवी ब्लू आइटम्स जो है वो आप कुछ ऐसा गिफ्ट कर सकते हैं, क्लोदिंग और इस तरह की चीजें जो साज सज्जा से चीजें हो। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की, तो यहाँ पे येलो कलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्पिरिचुअल आइटम अगर आप गिफ्ट करते हैं तो वो बहुत अच्छा है। जैसे हमारे अक्सर घरों में ये प्रश्न रहता है कि हम शिव उपासना की किताब या कोई चालीसा, हम दुर्गा चालीसा या हनुमान चालीसा घर में पढ़ते हैं, कभी कभी नहीं होती तो हम कहते हैं आप ये हमारे हाथ से ले लीजिए, वरना आप इस तरह की चीजें अलग निकाल दें इस दिन और मंदिर में जाके दान करें, वो बहुत अच्छा है। और अपनी थाली में जो है हल्दी और चंदन जरूर रखिएगा जब आप ये रक्षा सूत्र बांधने का जो कार्य कर रहे होंगे तो वो आपके लिए बहुत स्पेशल।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। साथ शुभ संयोग कौन से बन रहे, इसी को लेकर आज हमने चर्चा किया। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: तो 2 दिन बाद रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार मनाया जाएगा, और इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को यूपी रोडवेज की बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोकमाता अहिल्या भाई मातृशक्ति यात्रा योजना का शुभारंभ किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर बुजुर्ग महिलाओं के साथ सेल्फी भी ली, और इस योजना के तहत जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है, उन्हें यूपी परिवहन निगम की किसी भी बस में टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी। इनके लिए पूरे राज्य में सफर मुफ्त रहेगा। रक्षाबंधन को लेकर देश भर के बाजार गुलजार हैं। जगह जगह पर राखी की दुकानें सज चुकी हैं, जहां पारंपरिक से लेकर मॉडर्न डिजाइन की राखियां उपलब्ध हैं। बड़ों से लेकर बच्चों तक को ध्यान में रखकर ये राखियां बनाई गई हैं। महाराष्ट्र के अकोला से लेकर राजस्थान के अलवर तक में राखी की दुकानों में खरीदारी की लंबी लाइनें लगी हैं।

0: भाई बहन के पावन त्योहार रक्षाबंधन को लेकर देश भर के बाजार गुलजार हैं। यहाँ एक से बढ़कर एक राखी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के अकोला के बाजार भी रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर सजे हुए हैं। अपने भाइयों के लिए राखी पसंद करने दुकानों पर बहनों की भीड़ जुट रही है। यहाँ की दुकानों पर पारंपरिक राखियों से लेकर मॉडर्न डिजाइन वाली राखियाँ मौजूद हैं।
1: रक्षाबंधन के त्योहार के लिए जो है बाजारों में जो है दुकान यहाँ पर लग चुके हैं राखियों के। और ये जो राखी है ये जो है मोतियों की राखी है, कोई रुद्राक्ष वाली है, कोई माला वाली यहाँ पर राखी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये लुम्बी राखी इसे कहा जाता है। ये सुंदर राखियाँ जो है वो ये भैया भाभी की राखी इसे कहा जाता है। और इस तरीके के अलग अलग वेराइटी जो है, देखिए ये बैंगल के साथ ये राखी इस तरीके की दी है। और खासकर यहाँ देखिए जो है एक कमल के फूल पर ये जो राखी है ये बहुत ही अच्छी इस वक्त की ट्रेंडिंग है।
0: भाई भाभी के लिए कपल राखी तो बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली राखियाँ, इन सब के अलावा डायमंड लुक वाली राखी, रिंग राखी और ज्वेलरी डिजाइन की राखियाँ भी दुकानों में मिल रही हैं। कोई बहन अपने भाई के लिए राखी पसंद कर रही है तो किसी ने खरीद भी ली है।
2: जो अच्छे से अच्छी राखी मिलेंगी वो ले लेंगे।
3: मैंने अपने भाई के लिए बहुत हीरे जैसी राखी ली है, आप देख सकते हैं बहुत शानदार हीरा लगा हुआ है। मेरा भाई भी हीरे जैसा ही है, मुझे बहुत प्यार करता है, मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा और भाई का रिश्ता बहुत ही अनमोल है मेरे लिए।
0: अलग अलग डिजाइन के हिसाब से राखियों की कीमत भी अलग अलग है।
4: 5 रुपए से लेके तो 500 रुपए तक की अवेलेबल है। 500-400 रुपए वाला माल था वो सबसे पहले खत्म हो जाता है। हैवी रेंज की राखी के ट्रेड डिमांड सबसे ज्यादा थी। अब की बार स्टोन डायमंड की राखी इसकी डिमांड हर साल रहती है, इस साल कुछ ज्यादा ही थी। और कार्टून की राखी की विशेष डिमांड है ये बार, लाइट के स्पिनर एंड कार्टून की राखी में इस टाइप की राखी सबसे ज्यादा चल रही है।
0: अकोला से लेकर अलवर तक में राखियों की दुकानें सजी हुई हैं। राजस्थान के अलवर की राखियों की डिमांड विदेश तक में है। हजारों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कारोबार से जुड़े रहते हैं। यहाँ की राखियाँ देखने में सुंदर होने के साथ ही सस्ती भी मिलती है।
5: एक गोदाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर तरह तरह की राखियाँ हैं। मैं दिखाना चाहूंगा ये कार्टून कैरेक्टर की राखियाँ हैं। ये राखियों के साथ ही इरेजर का भी काम करती हैं। छोटे बच्चों को ये राखियाँ खास पसंद आ रही हैं, जिसमें अलग अलग तरह के डिजाइंस, एस्ट्रोनॉट तरह के जो कार्टून कैरेक्टर होते हैं उन कैरेक्टर के रूप में इनको तैयार किया गया है। और इन राखियों को रक्षाबंधन के बाद बच्चे अपने बैग, स्कूल बैग में भी काम में ले सकते हैं। इरेजर का ये काम करेंगी। इसके अलावा तरह तरह की राखियां कार्टून करेक्टर के रूप में, लाइट वाली राखियां, म्यूजिक वाली राखियों की डिमांड सबसे ज्यादा है।
0: यहाँ के बाजार में 1 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की अलग अलग तरह की आकर्षक राखियां मिल रही हैं। इस बार खासकर बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर, लाइटिंग और म्यूजिक के साथ ही पतली डोरे वाली राखियों की डिमांड सबसे ज्यादा है।
6: हमारे पास सब तरह की वैरायटी है, फैंसी राखियां भी हैं, बच्चों के लिए एक से एक स्पेशल आइटम बनाए हुए हैं हमने। इस बार बच्चों के लाइटिंग में जैसे ये सब लाइटिंग वाले आइटम है, ये देखिए इस तरह के लाइटिंग वाले आइटम है, ये छोटे बच्चों के आइटम है सारी, ये सब म्यूजिकल लाइट बच्चों के साथ में लाइटिंग वाली आइटम आएगी इस तरीके से। ये पर्स वाली आइटम है, जैसे बच्चों के बेल्ट मारने वाला होता है, इसके अंदर बच्चों के टॉयज वगैरह सब कुछ मौजूद है इसके अंदर। ये वाली सब म्यूजिकल लाइट के साथ है, ट्यूनिंग लाइटिंग के साथ आ रहा है अपना। इस तरह की आइटम बच्चों के छोटे करेक्टर वगैरह बहुत सारे आइटम है। मतलब कहने का
0: यहाँ कई बड़े राखी व्यापारी हैं जो देश विदेश में राखियाँ सप्लाई करते हैं।
7: इस साल हमने करीब 50,000 से ज्यादा डिजाइन बनाए हैं और सप्लाई ऑल ओवर इंडिया तो है ही, और अवार्ड में भी हो रही है, करीब 30-35 कंट्रीज में माल जा रहा है।
0: यहाँ रक्षाबंधन के पर्व को लेकर सजी दुकानों में बहन अपने भाइयों के लिए राखी खरीदने लगातार पहुँच रही हैं।
8: राखियों के इतने डिजाइन मिलते हैं शायद कहीं भी पॉसिबल नहीं है। अलवर छोड़ो, इंडिया छोड़ो, एशिया तक इनकी राखी फेमस है कि यहाँ की राखियाँ जो है ऑल इंडिया में फेमस है, इसीलिए हम हर साल यहाँ आते हैं राखी लेने।
0: अलवर के शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में राखी बनाई जाती है, जिसके चलते यहाँ 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। अकोला से धनंजय सावले और अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा, स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। आज की चाय इसलिए भी खास है क्योंकि जिसका इंतजार था आखिरकार वो फिल्म रिलीज हो गई है। बात हम कर रहे हैं मच अवेटेड फिल्म टॉक्सिक की। मुंबई से लेकर हैदराबाद और बेलगावी समेत दक्षिण भारत के थिएटर्स में कैसा है यश स्टारर टॉक्सिक को लेकर दर्शकों का क्रेज और फिल्म को लेकर कैसी है दीवानगी, उसकी तस्वीरें आज देखिएगा आगे।
3: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए, मानसूनी बहार की बात करेंगे, उत्सवी मौसम की भी बात करेंगे क्योंकि एक तरफ ओणम का रंग जमा हुआ है तो दूसरी तरफ बप्पा के आने की तैयारियां हो रही हैं। तो भाई बहन के त्यौहार राखी और जन्माष्टमी को लेकर भी रौनक दिखनी शुरू हो गई है। फेस्टिव मोड पर आए देश की छटा आपको दिखाएंगे।
2: नमस्कार, मैं शगुफ्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। देखिए, उम्र सिर्फ 9 साल मगर हुला हूप की दीवानी इस बच्ची की उपलब्धियों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि बड़े बड़े नाम पीछे छूट गए हैं। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने वाली सिनाया बियानी से भी आपकी आज मुलाकात कराएंगे, दिखाएंगे छोटी सी उम्र में सिनाया के बिग अचीवमेंट्स की कहानी कैसी है।
4: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंचश्रीवास्तव। से देखिए, एंटरटेनमेंट की बात होगी और साथ ही बात वंदे भारत ट्रेन की उस वायरल तस्वीर की भी होगी जिसमें वो कोहरे की चादर, घना जंगल और पहाड़ों के बीच से रफ्तार भरती हुई नजर आई। आपको बताएंगे ऑरेंज स्नेक की तरह बलखाती ये ट्रेन आखिर तस्वीर में कहां नजर आ रही है।
5: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। देखिए, आज इंटरनेशनल डॉग डे भी मनाया जा रहा है तो वो दिन जब डॉग्स को प्यार जताते, उनके अडॉप्शन को बढ़ावा देने का संदेश दिया जाता है, ऐसे में लंदन में कैसे इंसानों के साथ उनके स्पेशल फ्रेंड्स के लिए खास बना दिया गया है ये दिन, इसकी प्यारी प्यारी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन देख लेते हैं अभी तक की बड़ी खबरें।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
7: रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को दिल्ली सरकार का तोहफा, लक्ष्मी योजना की पहली किश्त जारी, हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। यूपी की 50,000 बेटियों को मिलेगी स्कूटी, सीएम योगी का ऐलान, अक्टूबर या नवंबर में शुरू होगी रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, मुंबई के महाराजा नाम से मशहूर करीब 47 फीट के बप्पा का आगमन, नरसिंह रूप में विराजमान है गणपति। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज, अब मंदिर में मिलेगी निःशुल्क शीघ्र दर्शन की सुविधा, प्रशासन के फैसले से लोगों में खुशी। फतेहपुर के ठाकुरबाड़ी मंदिर में झूलनोत्सव की धूम, भगवान कृष्ण और राधा को पालने में झुलाया गया झूला, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
3: चलिए, चाय पर चर्चा की शुरुआत करेंगे और आज त्योहारी सीजन को लेकर और क्या कौन कौन से त्यौहार है सबकी बात करेंगे, लेकिन फिल्मों के त्यौहार की बात कर लेते हैं क्योंकि भाई मच अवेटेड फिल्म जिसका इंतजार था, हमने ट्रेलर्स दिखाए थे, हमने यश की बात की थी, टॉक्सिक इज फाइनली रिलीज। तो रिलीज हो गई है टॉक्सिक भाई बड़े पर्दे पर और रिलीज के साथ ही फैंस का एक्साइटमेंट भी अपने पीक पर पहुंच गया है। मुंबई हो या हैदराबाद, बेलगावी हो या दक्षिण भारत के दूसरे शहर, सिनेमाघरों के बाहर सुबह से ही फैंस की लंबी कतारें और जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। हम सब कई बार देख चुके हैं और हम विजुअल्स भी दिखा चुके हैं कि भाई दक्षिण भारत में जब फिल्म रिलीज होती है तो देखा है दूध से पोस्टर्स को नहलाया जाता है,
5: भगवान माना जाता है। मैंने देखा था कि किस तरीके से लोग पूछते हैं उनको, और कोई फिल्म आती है ना वो लोग इतने एक्साइटेड होते हैं कि मतलब बॉलीवुड का कोई कंपैरिजन उससे नहीं हो पाता। और यश तो सुपरस्टार है, फिर उसमें कियारा आडवाणी भी नजर आ रही है, हुमा कुरैशी भी नजर आ रही है, और क्राइम थ्रिलर है तो फिर तो मतलब
8: आपका बोलना बंद
9: है। बॉलीवुड और साउथ का एक कॉकटेलिस्ट पूरी फिल्म में।
3: रणवीर सिंह को यहाँ पे ये तो नहीं हो जाएगा, वो क्या था उनका,
9: रणवीर
8: ये रणवीर अपनी जगह है और यश अपनी जगह है ना।
4: एक और रीजन जो है ना कि why people are looking forward to it, वो ये भी है क्योंकि वो साल 2022 के बाद बहुत लंबे समय के बाद
3: ना, चार साल बाद वो आ रहे हैं,
4: चार पांच साल बाद वापसी हो रही है ना, तो वैसे भी यश को लेकर दीवानी की, और सोचिए पांच साल बाद बड़े पर्दे पर आ रहे हैं, वो भी साउथ के स्टार,
8: साउथ के स्टार,
4: तो कट आउट सी लगेंगे।

बहुत कुछ बता चुके हैं, लेकिन देखिए कहानी यही है कि 4 साल के बाद यश की बड़े पर्दे पर वापसी ने फैंस की एक्साइटमेंट को किस हद तक बढ़ा दिया है वो आपको दिखा देते हैं अब फाइनली।

0: स्टार पावर क्या होती है, सिनेमाघरों के बाहर सड़कों पर सेलिब्रेशन की तस्वीरें बयां कर रही हैं। चार साल के लंबे इंतजार के बाद साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म टॉक्सिक रिलीज हुई तो बेंगलुरु से मुंबई तक यश के फैंस खुशी से झूम उठे। बेंगलुरु के नर्तकी थिएटर के बाहर का ये नजारा बताने के लिए काफी है कि सेलिब्रेशन का आलम कैसा है। फिल्म के रिलीज से पहले ही बड़ी संख्या में फैंस थिएटर्स के बाहर पहुंच चुके हैं। फूलमाला से लकदक यश के विशाल कटआउट्स और पोस्टर फैंस का मानो हौसला बढ़ा रहे हों। ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के बीच नाचते गाते फैंस का जोश ऐसा था मानो फिल्म की रिलीज नहीं कोई बड़ा त्योहार मनाया जा रहा हो। थिएटर्स के अंदर का नजारा भी बाहर से कुछ कम नहीं था। स्क्रीन पर फिल्म चलती रही और फैंस ने इसे अपने मोबाइल कैमरों में रिकॉर्ड किया। बड़ी देर तक फैंस अपनी अपनी सीटों से खड़े होकर यश को स्टैंडिंग ओवेशन देते भी नजर आए।
1: यश एक बार फिर रॉकिंग स्टार बनके पूरी तरह छा जाते हैं। एक्शन हो या डायलॉग बाजी वो कम्प्लीटली अपने एलिमेंट में है, लेकिन जब कैरेक्टर वल्नरेबल होता है तब आपको स्टार पावर के पीछे का एक्टर भी नजर आता है। यश का चार्म और करिश्मा इतना मैग्नेटिक है कि स्क्रीन पर उनसे नजर हटाना मुश्किल है और गीतू उन्हें ऐसा कैरेक्टर देती है जहां वो दोनों साइड्स को एक्सप्लोर कर पाते हैं। यश का डबल रोल भी है और जहां राया आपका प्यार गुस्सा और सिंपथी सब जीत लेता है वहीं टिकट के साथ ऐसा नहीं होता है और क्यों ये आप सब फिल्म देखकर ही समझ जाएंगे।
0: कर्नाटक के रायचूर में टॉक्सिक के रिलीज का जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। सिनेमा घरों के बाहर सुबह से ही फैंस की भारी भीड़ जुटी हुई थी। आलम ये था कि फिल्म का पहला शो पूरी तरह से सुपरहिट रहा। यश कन्नड़ फिल्म स्टार हैं, लिहाजा कर्नाटक के सभी सिनेमा हॉल्स फर्स्ट डे फर्स्ट शो में हाउसफुल नजर आए। बेलगावी के चंदन सिनेमा हॉल में भी फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा। टॉक्सिक को लेकर फैंस की दीवानगी साफ बता रही है कि अपने चहेते रॉकी भाई की स्क्रीन पर वापसी का उन्हें कितना बेसब्री से इंतजार था।
2: बहुत बहुत खुशी है सर, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं।
3: एक्सपेक्टेशंस
2: है सर, एक्सपेक्टेशंस से ज्यादा वो क्या ब्लॉकबस्टर होगा क्या कंफर्मेशन है।
4: हम लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखते हैं और अभी तक तो अंदर गए नहीं रॉकी भाई के लिए, अब अंदर जाते ही धूम मचाना है बस।
0: हैदराबाद के सुदर्शन थिएटर के बाहर का नजारा तो कर्नाटक के सिनेमा घरों जैसा जोशीला नहीं था, लेकिन न तो सिने प्रेमियों के जोश और उत्साह में कोई कमी थी और न ही उनकी तादाद किसी भी लिहाज से कम नजर आई। मुंबई में भी टॉक्सिक की रिलीज के साथ ही सिनेमा घरों के बाहर यश के फैंस का जोश देखने को मिला। मिराज थिएटर में फैंस अपने पसंदीदा स्टार के फर्स्ट शो को देखने के लिए पहुंच गए। कहीं पोस्टर और कटआउट्स नजर आए तो कहीं फैंस ने नारे लगाकर अपने एक्साइटमेंट जाहिर की।
1: सच कहे तो टॉक्सिक एक ब्रदर सिस्टर की कहानी है, फादर सन की भी कहानी है और एक लव स्टोरी भी, लेकिन इनमें से कोई भी वैसी नहीं है जैसे हम बुक्स में पढ़ते आए हैं। टाइटल की तरह ही ये ग्रोनअप्स के लिए एक फेरी टेल है। सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, कंफ्यूजिंग है, उदास है, गुस्सा है और बेसिकली टॉक्सिक है।
0: टॉक्सिक एक पीरियड गैंगस्टर ड्रामा मूवी है जो गोवा की ड्रग माफिया और अंडरवर्ल्ड की डार्क दुनिया को दिखाती है। इस एक्शन थ्रिलर में यश राया रूमी के दमदार और इंटेंस अवतार में है। फिल्म में यश के साथ पांच हीरोइंस हैं, नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, रुक्मणी वसंत और हुमा कुरैशी, यानी बॉलीवुड और साउथ का पूरा संगम।
5: सुपरस्टार यश, रॉकिंग स्टार यश जो है वो पूरी फिल्म के करता धरता

0: है उन्हीं के कंधों पर पूरी फिल्म को चलना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 80% ऑफ द स्क्रीन टाइम उनका है और उन्होंने अपना काम बखूबी तरीके से किया है। फर्स्ट हाफ में उनका एक अलग प्रकार का किरदार है, सेकंड हाफ में एक अलग प्रकार का किरदार है, तो वो शेड देख के मुझे अच्छा लगा।
1: करीब 500 करोड़ के मेगा बजट में बनी टॉक्सिक को पैन इंडिया प्रोजेक्ट के तौर पर डिजाइन किया गया है, जिसमें इंटरनेशनल अपील है और इसकी रिलीज डेट भी काफी सोच समझ कर रखी गई, 26 अगस्त, जब ओणम के त्योहार की धूम है। इसके बाद 28 अगस्त को रक्षाबंधन और वर महालक्ष्मी का फेस्टिवल मनाया जाएगा और उसके बाद वीकेंड यानी ये हफ्ता तो टॉक्सिक के लिए पूरी तरह से पैसा वसूल साबित होने वाला है। मुंबई से सना फरजीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: फिल्मी फेस्टिवल के बाद बात इंडिया के फेस्टिवल की। देश भर में फिलहाल त्योहारों की रौनक दिखाई दे रही है, दक्षिण से लेकर पश्चिम तक और उत्तर तक उत्सव की रौनक बढ़ती जा रही है। केरल में इन दिनों ओणम का रंग नजर आ रहा है और पूरी तरह से केरल एक तरीके से ओणम के रंग में रंगा हुआ है। फूलों से घर सजाए गए, हर तरफ खुशियों का उत्साह नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ तैयारियां, बप्पा के उत्सव की ओर विशाल और भव्य प्रतिमाएं पंडालों में पहुंचने लगी हैं, बस इंतजार बप्पा के आगमन का है।
3: बिल्कुल, कहीं बप्पा के आगमन का इंतजार है, कहीं ओणम की रौनक देखने को मिल रही है। तो देखिए, त्योहारों की इस रौनक में जो बाजार हैं वो भी पीछे नहीं है, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षाबंधन को लेकर दुकानों पर रंग बिरंगी राखियों की चमक जो है वो दिखाई देने लगी है। बहनें अपने भाइयों के लिए पसंदीदा राखियां चुन रही हैं और इधर जन्माष्टमी की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। देखिए, मंदिर जो है वो सज रहे हैं, बाजारों में लड्डू गोपाल की पोशाकों से लेकर झांकियों तक की खरीदारी तेज हो गई है। यानी पूरे भारत में इन दिनों आस्था, उमंग और उत्सव का शानदार संगम देखने को मिल रहा है।
4: तो चलिए बात मुंबई की करते हैं। देखिए, मुंबई में गणेशोत्सव की रौनक अब साफ नजर आने लगी है। गली मोहल्ले से लेकर बड़े बड़े पंडालों तक हर तरफ बस बप्पा के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। कहीं ढोल ताशे की गूंज है तो कहीं गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे हैं। बप्पा की भव्य प्रतिमाएं पंडालों में पहुंच रही हैं और उनके दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ भी उमड़ रही है। यानी मुंबई की फिजाओं में अभी से घुल गया है बप्पा के आगमन का उत्साह।
5: बिल्कुल, आपको बता दिया, और इस बार बप्पा के रूप भी बेहद खास हैं। हर प्रतिमा अपने आप में एक अलग कहानी कह रही है। खेतवाड़ी के मशहूर लंबोदर में बप्पा का अनोखा रूप देखने को मिल रहा है, जहां गणपति को किसान के रूप में सजाया गया है। यानी बप्पा सिर्फ आस्था के देव नहीं, बल्कि मेहनत, मिट्टी और किसान के सम्मान का संदेश भी दे रहे हैं।

0: गणेश उत्सव का उल्लास और हर तरफ गणपति बाप्पा के जयकारे। बाप्पा के आगमन की खुशी और उत्सव के रंग में रंगी मुंबई नगरी। गणेशोत्सव में अभी कुछ दिन बाकी है, लेकिन मुंबई में इन दिनों हर तरफ इसी पर्व के रंग बिखरे हैं। एक एक करके बाप्पा की प्रतिमाएं अपने पंडाल में विराजमान हो रही हैं। बड़ी संख्या में लोग ढोल ताशों के साथ भगवान गणेश का स्वागत करने के लिए जुटे हैं। बाप्पा की प्रतिमा के आगमन के साथ ही गणेशोत्सव के त्योहार का जश्न भी बढ़ता जा रहा है। मुंबई में पूरे साल लोग इस पर्व की प्रतीक्षा करते हैं, और जब बाप्पा की सवारी अपने पंडाल की तरफ बढ़ती है तो इस त्योहार के सबसे खूबसूरत रंग दिखने लगते हैं। ये जोश, ये उत्साह और ये खुशी भगवान गणेश के हर भक्त के चेहरे पर झलकती है। बाप्पा के पंडाल में विराजमान होने के बाद दूर दूर से लोग बाप्पा के दर्शन के लिए भी आने लगते हैं। गणेश उत्सव की औपचारिक शुरुआत भले ही 14 सितंबर को हो रही है, लेकिन इस त्योहार की रौनक तो पंडाल में अभी से दिखने लगी है। मुंबई के सबसे चर्चित गणेश पंडालों में से एक खेतवाड़ीचा लंबोदर मंडल के गणपति बाप्पा भी अपने पंडाल में पधार चुके हैं। बाप्पा की इस प्रतिमा की ऊंचाई करीब 32 फीट है, और यहां भगवान गणेश को एक किसान के रूप में दिखाया गया है। समाज में एक शुभ संदेश देने के मकसद से खेतवाड़ीचा लंबोदर मंडल ने इस बार किसान बचाओ थीम पर पंडाल सजाया है।
1: तैयारी मुंबई में जोरों शोरों से शुरू है। खासियत यह है कि बड़ी बड़ी प्रतिमाएं जो हैं वो पंडालों में लानी शुरू हो गई है। मेरे पीछे आप एक सक्रिय गली देख रहे हैं, बड़ी छोटी सी गली है, इसी से उस बड़ी प्रतिमाओं को लाया गया है और पंडाल में स्थापित किया गया है। खास बात यह है कि मैं जहां मौजूद हूं, इलाके का नाम है खेतवाड़ी, और यहां पर इस तरह की जो छोटी छोटी गलियां हैं कई हैं, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार, पांच, छह, सात, फिलहाल मैं चौथी गली में हूं जहां के बप्पा इस समय लाए गए हैं और विराजमान कर दिए गए हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि खेतवाड़ी के लंबोदर के दरबार में इस समय मौजूद हूं, और एक दो दिन पहले ही बप्पा को यहां पर बकायदा धूमधाम से लाया गया है। देखिए कितना विशाल स्वरूप, कितना विशाल रूप बप्पा का यहां पर देखने मिल रहा है। खास बात यह है कि इस तरह से जो लंबी लंबी प्रतिमाएं गणेश जी की होती हैं, उनके साथ बहुत बढ़िया बढ़िया थीम भी लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए रखी जाती है। इस बार की जो थीम है खेतवाड़ी के लंबोदर की, शेतकरी मराठी वर्ड है जिसको हिंदी में कहते हैं कि किसान। किसान अक्सर ही जो है अपने बोझ तले जो लोन लिए रहते हैं, आत्महत्या जैसी कोशिश करते हैं, ऐसी जो घटनाएं हैं उन पर रोक लगाने के लिए एक अच्छी नीयत के साथ किसान का रूप लेकर के बप्पा को यहाँ विराजमान किया गया है।
0: खेतवाड़ीचा लंबोदर पंडाल इस बार अपनी 68वीं सालगिरह मना रहा है। इस बार पंडाल को भी अलग अंदाज में सजाने की तैयारी है। यही वजह है कि बाप्पा की प्रतिमा पहले ही स्थापित कर दी गई है, ताकि साज सजा का काम पूरी तसल्ली से और बेहतरीन ढंग से हो सके।
2: हम लोग हर साल कुछ न कुछ नया संदेश देते हैं, वैसे ही हम लोग इस बार किसान के ऊपर ही हम लोग ने सजेशन किया है। जैसे मोरारजी देसाई बोले थे जय जवान जय किसान, वैसे हम लोग ने नारा लगाया है। इस बार भी वही थीम है, अभी सिचुएशन करेंगे, बोर्ड ऐसा अपना नाके पे लगेगा बहुत शान से कि भाई जय जवान जय किसान।
0: मुंबई में इन दिनों एक एक करके अलग अलग इलाकों में गणपति प्रतिमाओं के आने का सिलसिला जारी है। कालाचौकी के महाराजा पहले ही अपने पंडाल तक पहुंच चुके हैं। कामराजचा महाराजा भी पंडाल में विराजमान है। जैसे जैसे गणेशोत्सव करीब आ रहा है, श्रद्धालुओं का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। अब भक्तों को बेसब्री से इंतजार है गणेश चतुर्थी पूजन का, जिसके बाद 10 दिनों तक बाप्पा अपने भक्तों के बीच विराजमान रहेंगे और श्रद्धालुओं को गजानंद की आराधना का अनुपम अवसर मिलेगा। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: चलिए, गणेशोत्सव के रंग तो आपको लगातार दिखाते रहेंगे। एक और उत्सव आने वाला है, बस आने को ही है, रक्षाबंधन का त्योहार। उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो बड़े ऐलान कर दिए हैं। पहला तोहफा है रक्षाबंधन के मौके पर 3 दिनों तक बसों में महिलाओं का सफर पूरी तरह मुफ्त रहेगा, और दूसरा बड़ा ऐलान है 60 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं को अब आजीवन मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलेगी।
4: रक्षाबंधन के इस खास मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को बधाई देते हुए कहा है कि प्रदेश की मातृशक्ति के लिए सरकार ने ये सौगात दी है। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम और सिटी बसों में 3 दिनों तक महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी, ताकि बहनें अपने भाइयों से राखी, अपने भाइयों को राखी बांधने आसानी से पहुंच सकें।
5: महिला स्वावलंबन का एक आदर्श उदाहरण बनेगा। इस पूरी सुविधा का नाम है लोकमाता अहिल्याबाई निशुल्क बस यात्रा। रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और सिटी बस सेवा दोनों में हर बेटी, हर बहन, हर माता को 3 दिन के लिए निशुल्क बस सेवा प्रारंभ करने के लिए और इस सुविधा के लिए प्रदेश भर की पूरी मातृशक्ति का अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं।
6: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का मास्टर स्ट्रोक और सभी 60 वर्ष से ऊपर महिलाओं को फ्री निशुल्क यात्रा। आप देखिए ये सारी जो बसें हैं इन्हीं बसों से मातृशक्ति योजना के तहत उनको फ्री एक तरीके से अब आजीवन ये सेवा दी जाएगी। और ये मास्टर स्ट्रोक योगी आदित्यनाथ का माना जा रहा है। ये महिलाएं देखिए जो 60 साल से ऊपर की हैं वो सभी इससे निशुल्क यात्रा कर पाएंगी। पूरे प्रदेश में जहां भी उनको जाना है वो इस बस के जरिए जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल कैबिनेट में इसको पास करने के बाद आज इसका इनॉग्रेशन है। आप देखिए कई महिलाएं अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए तैयार हैं।
7: हमारे योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, वो हमको यात्रा करवा रहे हैं हमारे लोग बुजुर्ग मेरी औरतों को, और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ
6: तो सब फ्री हो गया, पूरे यूपी में कहीं भी
7: यूपी, हाँ, कहीं भी जाएंगे।
6: कैसी सुविधा है ये जो फ्री कर दिया है सबको?
8: बस फ्री कर दिया है हमने यात्रा करने के लिए, फ्री कर दिया।
6: जो 60 वर्ष की महिलाएं हैं वो बैठी हैं और उन सबके लिए फ्री किया गया है। चूंकि ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने इसको कैबिनेट में पास करने के बाद अब ये महिलाओं के लिए एक बड़ा उपलब्धि मानी जा रही है कि वो किस तरीके से अब इसी बसों के जरिए पूरे प्रदेश में कहीं भी जा सकती हैं, इन बसों से फ्री यात्रा कर सकती हैं, आजीवन निःशुल्क यात्रा कर सकती हैं, जिनसे कोई भी चार्ज, कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव।
3: तो देखिए रक्षाबंधन के बाद अब बात आस्था की कर लेते हैं। तो अमरनाथ यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। बाबा बर्फानी के दरबार में आस्था की सबसे पवित्र निशानी छड़ी मुबारक ने शेषनाग तक का सफर पूरा कर लिया है। मंगलवार को चंदनवाड़ी से कठिन चढ़ाई शुरू करने के बाद छड़ी मुबारक शेषनाग ट्रांजिट कैंप पहुंची, जहां दशनामी अखाड़े के महंत दीपेंद्र गिरी की अगुवाई में साधु संतों और श्रद्धालुओं ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र छड़ी का भव्य स्वागत किया।
9: और देखिए शेषनाग की खूबसूरत झील के किनारे शाम की पारंपरिक आरती हुई, चारों तरफ मंत्रोच्चार, बाबा के जयकारे और श्रद्धालुओं की आस्था का अद्भुत नजारा दिखाई दिया। अब इंतजार उस ऐतिहासिक पल का है जब छड़ी मुबारक बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा की ओर अंतिम कदम बढ़ाएगी।

0: पहाड़ियों के बीच गूंजते भोलेनाथ के जयकारे, हाथों में पवित्र छड़ी, चारों तरफ वैदिक मंत्रों की गूंज और मंजिल अब बिल्कुल करीब। बाबा बर्फानी की पावन धरती पर इस साल की अमरनाथ यात्रा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। महादेव की पवित्र छड़ी मुबारक कठिन पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए शेषनाग पहुंची, फिर पंचतरणी की ओर बढ़ चली। अब इंतजार है उस पावन पल का जब रक्षाबंधन के दिन सूर्योदय से पहले छड़ी अमरनाथ गुफा में प्रवेश करेगी और विधि विधान से बाबा बर्फानी की मुख्य पूजा सम्पन्न होगी। चंदनवाड़ी में रात्रि विश्राम के बाद मंगलवार सुबह छड़ी मुबारक ने शेषनाग की कठिन चढ़ाई शुरू की। ऊंचे पहाड़, दुर्गम रास्ते, ठंडी हवाएं और हर कदम के साथ बढ़ती आस्था। दशनामिया अखाड़े के महंत दीपेंद्र गिरी की अगुवाई में साधु संतों का जत्था पवित्र छड़ी लेकर आगे बढ़ा। शेषनाग ट्रांजिट कैंप पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह के साथ छड़ी मुबारक का स्वागत किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विशेष पूजा अर्चना हुई। इसके बाद सुरमई शेषनाग झील के किनारे पारंपरिक संध्या आरती का आयोजन किया गया। इस आध्यात्मिक माहौल में बड़ी संख्या में साधु और श्रद्धालु शामिल हुए। अब छड़ी मुबारक की यात्रा अगले पड़ाव यानी कि पंचतरणी की तरफ बढ़ चुकी है। यहां दो दिन रुकने के बाद पवित्र छड़ी बाबा अमरनाथ की गुफा की ओर प्रस्थान करेगी। रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा का दिन इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होगा। 28 अगस्त को सूर्योदय से पहले छड़ी मुबारक पवित्र गुफा में प्रवेश करेगी। गुफा के भीतर वैदिक परंपरा और पूरे विधि विधान के साथ मुख्य पूजा सम्पन्न होगी।
1: अमरनाथ यात्रा की छड़ी मुबारक अब अमरनाथ गुफा की ओर जा रही है। रक्षाबंधन के दिन शुक्रवार को अमरनाथ गुफा में छड़ी मुबारक पहुंचेगी, जहां पर उसकी पूजा के साथ ही इस साल की अमरनाथ यात्रा संपन्न हो जाएगी। अभी फिलहाल अमरनाथ यात्रा की छड़ी मुबारक अनंतनाग से निकलकर अब पहलगाम और फिर चंदनवाड़ी और शेषनाग में पहुंचकर उसके बाद पंचतरणी में और आखिरी यानी शुक्रवार को वो छड़ी मुबारक अमरनाथ गुफा में पहुंचेगी, जहां पर उस छड़ी मुबारक की पूजा के साथ ही इस साल की अमरनाथ यात्रा समाप्त होगी। अमरनाथ यात्रा की छड़ी के साथ श्रद्धालुओं के साथ साथ साधु संत भी सफर कर रहे हैं।
0: मुख्य पूजा के साथ आम श्रद्धालुओं के लिए इस साल के बाबा बर्फानी के दर्शन का औपचारिक समापन भी हो जाएगा। इसके बाद छड़ी मुबारक वापसी के सफर पर निकलेगी। 28 और 29 अगस्त को पंचतरणी, शेषनाग और चंदनवाड़ी से होते हुए पवित्र छड़ी 29 अगस्त को पहलगाम पहुंचेगी। इसके अगले दिन यानी कि 30 अगस्त को पहलगाम में अंतिम पूजा होगी। इसके बाद पारंपरिक जल विसर्जन की रस्म पूरी की जाएगी। जल विसर्जन के साथ ही वर्ष 2026 की वार्षिक अमरनाथ तीर्थ यात्रा पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद बाबा के धाम के कपाट अगले साल की यात्रा तक बंद कर दिए जाएंगे। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर गुफा में होने वाली मुख्य पूजा के साथ ही छड़ी मुबारक अपनी इस साल की यात्रा पूरी करेगी, लेकिन बाबा बर्फानी के दर्शन की पावन स्मृतियां श्रद्धालुओं के मन में अगले सावन तक बनी रहेंगी। श्रीनगर से अशरफ आनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और आपको बता दें कि केरल में ओणम की धूम है। खेतों में लहलहाती फसल और घर आंगन में फूलों की रंगोली के बीच केरल अपने सबसे बड़े त्यौहार का जश्न मना रहा है। 24 अगस्त से शुरू हुए इस उत्सव में राजधानी तिरुवनंतपुरम समेत राज्य भर में एक हफ्ते तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है।
0: ओणम सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि राजा महाबली के सुशासन और उनके स्वागत की परंपरा से जुड़ा केरल की सांस्कृतिक पहचान भी है। लेकिन इस बार ओणम का अंदाज थोड़ा नया है। कॉलेज कैंपस में स्टूडेंट्स और टीचर्स मिलकर ओणम के रंग में रंगे नजर आए। कहीं फूलों की रंगोली की प्रतियोगिता हुई तो कहीं पारंपरिक खेलों का आयोजन।

0: केरल में आज रंग है, उमंग है, खेतों से लेकर कैंपस तक और परंपरा से लेकर सोशल मीडिया तक, हर तरफ बस ओणम का रंग चढ़ा हुआ है। कहीं फूलों की खुशबू है, कहीं गीतों की गूंज है, कहीं ढोल की थाप है, तो कहीं पारंपरिक परिधानों में झूमता युवा जोश है। यानी पूरा केरल आज ओणम के जश्न में डूबा है। ये वही ओणम है जिसका इंतजार हर मलयाली साल भर करता है। मान्यता है कि 10 दिनों तक चलने वाले इस त्यौहार में राजा महाबली अपनी प्रजा से मिलने धरती पर आते हैं और अपने प्रिय राजा के स्वागत में पूरा केरल सज उठता है। घरों के आंगन में फूलों से खूबसूरत उकलम सजता है, गीतों की गूंज सुनाई देती है और केले के पत्ते पर परोसी जाने वाली स्वाद से भरपूर साध्या के साथ त्यौहार की खुशियां और भी बढ़ जाती हैं। लेकिन इस बार ओणम की सबसे खूबसूरत और दिलचस्प तस्वीरें केरल के कैंपस से सामने आ रही हैं। कई फूलों से खूबसूरत पुकल्लम बनाने की होड़ है, कहीं ओणम गेम्स का रोमांच है, तो कहीं रस्सा कशी में पूरा कैंपस एक टीम बनकर अपनी ताकत और जोश दिखा रहा है। लड़के हो या लड़कियां, पारंपरिक परिधानों में सजे छात्र छात्राएं कभी खेल के मैदान में अपना दम दिखा रहे हैं, तो कभी दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हुए ओणम के इस खूबसूरत पलों को कैमरे में कैद कर रहे हैं। और यही तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर पहुंचती हैं, तो ओणम का रंग और भी नया हो जाता है। रील्स बन रही हैं, सेल्फी क्लिक हो रही हैं और ट्रेंडिंग म्यूजिक के साथ युवा अपने अंदाज में इसकी खुशियां मना रहे हैं। एक तरह से कह लीजिए ये है आज का जेन ज़ी वाला ओणम, जहां परंपरा भी पूरी शिद्दत से निभाई जा रही है और सेलिब्रेशन का अंदाज भी बिल्कुल नया है। उकल्लम वही है, पारंपरिक परिधान वही है, महाबली के स्वागत की भावना वही है, लेकिन उसे कैमरे में कैद करने और दुनिया तक पहुंचाने का तरीका बदल गया है। क्योंकि ओणम सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, बल्कि उस दौर की याद है जब राजा महाबली के शासन को खुशहाली, समानता और भाईचारे की मिसाल माना जाता था। शायद यही वजह है कि केरल हो या दुनिया का कोई भी कोना, मलयाली जहां भी है वहां ओणम जरूर है और महाबली के स्वागत की ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी उसी उत्साह के साथ आगे बढ़ रही है। बदलते वक्त के साथ त्यौहार मनाने का अंदाज जरूर बदला है। अब हाथों में फूलों के साथ कैमरा भी है, पुकल्लम के साथ रील्स भी है और पारंपरिक गीतों के साथ सोशल मीडिया का ट्रेंडिंग म्यूजिक भी है। लेकिन इन सबके बीच एक चीज आज भी बिल्कुल नहीं बदली और वो है अपनों के साथ खुशियां बांटने का जज्बा। यही तो है केरल का ओणम, जहाँ परंपरा के रंग है, नई पीढ़ी का जोश है, सेलिब्रेशन का अपना अलग अंदाज है और हर चेहरे पर अपनों के साथ खुशियां बांटने की चमक है। महाबली के स्वागत में सजा ये केरल आज भी कह रहा है ओणम आया है, खुशियां लाया है और हर दिल को अपने रंग में रंग गया है। शिवी मोल केजी, गुड न्यूज टुडे, तिरुवनंतपुरम। अब देखिए ओणम की रौनक केरलम ही नहीं बल्कि देश के कई भागों में छाई हुई है। हमारी सहयोगी अपूर्वा चेन्नई से इसी उत्सव की खुशियों और पारंपरिक पहलुओं के बारे में आपको जानकारी दे रही है, देखिए तस्वीरें।
1: आज कई सारे लोग ना कि सिर्फ केरला में या भारत में, कई देशों में ओणम के त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। ओणम केरला का एक बहुत ही खूबसूरत और महत्वपूर्ण त्योहार है। ये 10 दिनों के लिए ये त्योहार मनाई जाती है और ये सारे के सारे 10 दिनों एक तरफ फूलों के साथ कोलम लगाते हैं और दूसरी तरफ हर तरह का व्यंजन, पायसम, सब कुछ लोग बहुत ही खुशी के साथ पकाते हैं और लोगों के साथ बांटते हैं और ये त्योहार मनाई जाती है। ओणम का त्योहार हार्वेस्ट सीजन का एक शुरुआत मनाया जाता है और ये जो त्योहार एक तरफ हार्वेस्ट सीजन का माना जाता है, दूसरी तरफ राजा महाबली का घर वापसी का भी एक तरफ से ये ओणम का तैयारियां करते हैं। गुड न्यूज डे के हर दर्शकों को हमारे तरफ से ओणम की शुभकामनाएं। वीडियो जर्नलिस्ट रूप सिंह के साथ अपूर्वा जयचंद्रन, गुड न्यूज डे।
2: तो चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे जयपुर की उस नन्ही बच्ची से जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा।
3: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने

मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। इससे पहले आगे बढ़े, नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद मिशन जिंदगी तेज, प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से की बात, भारत की ओर से भेजा जा रहा राहत सामान, यूपी बिहार में प्रशासन अलर्ट। यूपी की 50,000 बेटियों को मिलेगी स्कूटी, सीएम योगी का ऐलान, अक्टूबर या नवंबर में शुरू होगी रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, मुंबई के महाराजा नाम से मशहूर करीब 47 फीट के बप्पा का आगमन, नरसिंह रूप में विराजमान है गणपति। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज, अब मंदिर में मिलेगी निःशुल्क शीघ्र दर्शन की सुविधा, प्रशासन के फैसले से लोगों में खुशी। फतेहपुर के ठाकुर बाड़ी मंदिर में झूलनोत्सव की धूम, भगवान कृष्ण और राधा को पालने में झुलाया गया झूला, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन।
3: देखिए उम्र महज 9 साल लेकिन हुनर ऐसा कि बड़े बड़े नाम भी पीछे छोड़ जाएं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज, 70 से ज्यादा स्टेज परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर लाखों करोड़ों व्यूज और राजस्थान की संस्कृति को कला में उतारने की खास पहचान। जयपुर की सिनाया बियानी अब अपनी प्रतिभा से देश भर में अपनी अलग पहचान बनाने में लगी हुई है।
4: बिल्कुल, ये पूरी स्टोरी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने वो देखा था वहां तीज पे शायद यात्रा निकली थी, जब ये सबसे ज्यादा मतलब सोशल मीडिया में आप लोगों ने इनको जानना शुरू किया, हुला हूप इन्होंने किया था और बिल्कुल इन्होंने राजस्थानी वो राजपूताना जो ड्रेस होता है वो पहन करके किया था।
5: मैंने देखे हैं विजुअल, बहुत वायरल हुई है ये बच्ची, उसको देखने के बाद लगा कि सीख सकते हैं हुला हूप, ऐसे किसी भी एज में है ना, टैलेंट तो सीखा जा सकता है,
6: जस्ट जस्ट जब आपका मन करे आप तब वो काम कर सकते
4: हैं। लेकिन जैसे स्केटिंग हम देखते हैं, स्केट्स पहना हुआ है और साड़ी पहन के कोई स्केट करता है तो वो बड़ा मुश्किल होता है, मतलब
5: आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने अपने स्कूल कॉलेज में किया है साड़ी पहनकर स्केट्स चलाना,
4: क्या बात है,
5: बहुत ही अलग फीलिंग होती है कि आपने अपने ट्रेडिशंस को फॉलो किया है फिर आप स्केटिंग से, वो एक फैशन शो था बेसिकली, तो बहुत मजा आया था।
4: एग्जैक्टली, और इसलिए भी इनकी बात हम कर रहे हैं, वो भी इसलिए और ज्यादा अभी लोगों की नजरों में आई क्योंकि उन्होंने हाल ही में इस तरह का किया था तीज के त्योहार के मौके पर। हाल ही में आपको बता दें जयपुर में तीज माता की भव्य सवारी में सिनाया ने शानदार प्रस्तुति दी थी, 15 और 16 अगस्त की उनकी परफॉर्मेंस ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर धूम मचा दी, उनके डांस वीडियो मिलियन व्यूज बटोर रहे हैं और हर तरफ हो रही है उनकी तारीफ, इसलिए अब सिनाया को लोग प्यार से कह रहे हैं जयपुर की वायरल किड।
7: राजस्थानी संस्कृति की खुशबू से सजा ये प्यारा सा चेहरा आप इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब देख रहे होंगे। जयपुर की वायरल किड बनी ये सिनाया बियानी है, जिन्होंने हाल ही में 15 और 16 अगस्त को शहर में निकाली गई भव्य तीज माता की सवारी में हुला हूप और राजस्थानी परंपरा के कॉम्बो के साथ ऐसी दमदार परफॉर्मेंस दी कि लोग देखते ही रह गए। महज 30 सेकंड में 101 हुला हूप का शानदार प्रदर्शन कर गिनीज रिकॉर्ड बनाने वाली सिनाया बियानी ने अपनी छोटी सी उम्र में वो कमाल किया जो इस खेल विधा के अच्छे अच्छे महारथी आज तक नहीं कर पाए।
8: देखिए टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती है और ये मुझे लगता है कि भारत के बच्चे जो हैं बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर रहे हैं, अलग अलग टैलेंट्स आजकल हमें पूरे देश में देखने को मिलते हैं और एक ऐसा ही टैलेंट जयपुर में इन दिनों नजर आ रहा है और वो टैलेंट राजपूती पोशाक में हाल ही में हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल भी हो रहा है। जयपुर की ये हूपर सिनाया बियानी हमारे साथ में मौजूद है जो जिसका दूसरा नाम या फिर कह सकते हैं सोशल मीडिया पे उसका नाम जयपुर हूपर नाम से है।
7: महज 6 साल की उम्र में हुला हूप से रूबरू हुई जयपुर की सिनाया आज की तारीख तक कमाल की कलाबाजियों को दर्शा चुकी हैं। आज सिनाया 9 बरस की हैं, लेकिन बीते 3 सालों में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 70 से ज्यादा स्टेज परफॉर्मेंस और लाखों करोड़ों सोशल मीडिया व्यूज जैसे ये सम्मान इस छोटी सी बच्ची के उज्ज्वल भविष्य की ही ताकीद कर रहे हैं, जिसके लिए उसने हुला हूप की दिन रात प्रैक्टिस की।
9: जहाँ मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन मेरे पापा ने मुझे बताया था कि ऐसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है एंड आप ट्राई कर सकते हो बनाने के लिए, तो मैंने बनाने की कोशिश किया है, प्रैक्टिस्ड लाइक फॉर 3 to 4 मंथ्स, मैं एवरी डे हाफ एन आवर प्रैक्टिस करती थी एंड आफ्टर दैट वो जो बन गया था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, आई वॉज वेरी हैप्पी, जॉयफुल एंड मैं बहुत ही थैंकफुल भी थी एंड ग्रेटफुल भी थी।
7: वैसे सिनाया की हुला हूप को लेकर दिलचस्पी बढ़ने की कहानी भी कम रोचक नहीं है। उन्होंने बताया कि राजस्थानी संस्कृति को हुला हूप आर्ट में पिरोने का खास स्किल सीखने में उन्हें उनके माता पिता की काफी मदद मिली।
9: मैं मेरे एक फ्रेंड नचिकेत के साथ एक कार्निवल में गई थी, तो मैंने देखा कि खूब सारी हुला हूप्स रखी हुई थी एक ग्रास पे, तो मैंने बोला मम्मा को, मम्मा मैं जल्दी से एक बार ट्राई करके आ रही हूँ फिर चलेंगे, तो मम्मा ने बोला ठीक है। फिर हम गए, मैंने और नचिकेत ने ट्राई किया, मुझसे हो गया। जब मैं घर आ गई थी तो मम्मा ने बोला कि मज़ा आया इस कार्निवल में, तो मैंने बोला हाँ मम्मा आज तो बहुत ही मज़ा आया, जो मैंने हुला हूप ट्राई किया था आप वो मुझे दिलाओगे क्या, तो मम्मा ने बोला ठीक है दिला दूंगी। तो मैं बहुत ज़्यादा लाइक क्यूरियस हो गई थी कि मम्मा ये हुला हूप क्या होता है, इसकी कुछ क्लासेस होती है या ऐसे, तो मम्मा ने बोला कि ठीक है मैं सर्च करूंगी एंड जब मम्मा ने सर्च किया तो जयपुर में सिर्फ एक ही क्लास थी ADA एंड मैं वहाँ गई एंड मैंने वहाँ पे खूब सारी ट्रिक सीखी एंड मुझे बहुत मजा आया।
7: लेकिन ऐसा नहीं है कि सिनाया का फोकस सिर्फ हुला हूप की परफॉर्मेंस पर ही रहा है, उनका स्केड्यूल काफी अनुशासित है। हुला हूप प्रैक्टिस के साथ ही सिनाया पढ़ाई और दूसरी एक्टिविटीज में भी काफी एक्टिव है। आज सिनाया अपने हुनर को सिर्फ स्टेज तक सीमित नहीं रखना चाहती, वो अपनी इस कला को सेवा का भाव भी देने की कोशिश कर रही है। सिनाया अब तक 13 से ज्यादा वर्कशॉप्स में 820 से ज्यादा बच्चों और बड़ों को हुला हूपिंग सिखा चुकी हैं। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों तक ये एक्टिविटी पहुंचाने के लिए वो 250 से ज्यादा हुला हूप भी बांट चुकी हैं। YouTube पर उनकी लर्निंग सीरीज भी है, जहां बच्चे घर बैठे हुला हूप की बेसिक ट्रिक्स सीख सकते हैं। सिनाया अपने पेड शोज, वर्कशॉप्स और ब्रांड कोलैबोरेशन से मिलने वाली 100% कमाई को जयपुर फुट को दान करती हैं। अब तक वो 77,000 रुपए दान कर चुकी हैं, जिससे 12 जरूरतमंद लोगों को आर्टिफिशियल पैर उपलब्ध कराने में सहयोग मिला है। यानी सिनाया के लिए हुला हूप का हर नया शो सिर्फ एक परफॉर्मेंस भर नहीं, किसी की जिंदगी में बदलाव लाने का भी मौका है। ये होनहार अब हुला हूप के साथ लठ और तलवारबाजी जैसी पारंपरिक कला का भी प्रदर्शन कर रही है। सिनाया का सफर अभी शुरू ही हुआ है, इसलिए वो अपनी हुला हूप की कला को और बेहतर बनाने के लिए सपनों की ऊंची उड़ान पर निकली हुई है। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: वैसे ऐसे बच्चे ना इंस्पिरेशन भी बनते हैं, क्यों शगुफ्ता?
5: बिल्कुल, मैं तो हुई इंस्पिरेशन कई लोगों के लिए, बट आप लोग भी हैं इंस्पिरेशन।
6: मैं बच्चों की बात
5: में नहीं बेस नहीं, मैं जब बच्ची थी तो मैं भी थी, जो थी ट्रस्ट मी। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है इसी स्टोरी को लेकर, 6 साल में आपको याद है कि आप क्या कर रहे थे? Do you really remember?
3: की तो मतलब थोड़ी थोड़ी memories वैसे मुझे हैं।
5: हाँ, क्या कर रही थी आप?
3: मुझे याद है मैं प्ले में थी और मैं स्क्वेरल बनी थी, मतलब I still have, मतलब ग्लिम्स आते हैं ना कभी कभी, 6 साल में I still remember वैसे।
5: दीपिका, याद है आपको?
10: बिल्कुल भी नहीं।
5: आपको याद है?
10: पर मुझे ऐसा लगता है जो मैंने इस चीज से सीखा कि पेरेंटिंग कितनी इम्पोर्टेंट हो गई है ना, कि आप लोग डिसाइड, क्योंकि हम बचपन में नहीं डिसाइड कर पाते कि हमें क्या करना है, लेकिन पेरेंट्स आपको मोटिवेट करते हैं। अब तो क्या होता है ना कि स्कूल से ज्यादा ना को करिकुलर एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस किया जाता है, स्कूल से भी बहुत होने लगे हैं। पहले क्या होता था, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, अभी थोड़ा चेंज हो गया है, तो आगे भी ऐसी चीजें होंगी तो मुझे लगता है टैलेंट।
6: पहले अगर हम कभी कह देते थे ना कि हमें ये चीज पसंद है, नहीं पहले पढ़ाई करो, अपनी पढ़ाई फिनिश करो उसके बाद। आजकल आपने सही कहा,
10: एकेडमिक
6: सोच
10: बदल, पेरेंट्स में भी काफी बदलाव,
6: मतलब वी एज अ पेरेंट आर लाइक मच बेटर, कूल पेरेंट्स।
5: यू आर पेरेंट्स ऑफ अ जेन जी आल्सो, जेन जी एंड
6: जेन अल्फा के पेरेंट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते, अगली खबर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। प्लास्टिक कचरे को आम तौर पर हमारे दिमाग में सिर्फ प्रदूषण और गंदगी की तस्वीर ही आती है जब हम इसकी चर्चा करते हैं, लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू आज आपको दिखाएंगे। जिस प्लास्टिक को हम इस्तेमाल के बाद बिल्कुल बेकार समझ के फेंक देते हैं, उसी से जब पार्क्स की बेंच, डस्टबिन, रोजमर्रा के काम आने वाली चीजें तैयार हों तो कैसा लगे।
10: यानी कि प्लास्टिक से मुक्ति का रास्ता सिर्फ उसे हटाने में नहीं है बल्कि उसे नए इस्तेमाल में लाने की सोच में छिपा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं प्लास्टिक वाला ये खास स्टार्टअप आखिर क्या है।
7: ये जो खूबसूरत टेबल, बेंच और रंग बिरंगे गमले आप देख रहे हैं, इन्हें देखकर शायद ही कोई अंदाजा लगा पाए कि इनका सफर प्लास्टिक के कचरे से शुरू हुआ है। बेकार समझे जाने वाले प्लास्टिक को ऐसा रूप दिया गया कि अब ये बेहद खूबसूरत नजर आ रहे हैं।
11: पीछे भी और जिसपे मैं बैठी हूँ और आसपास भी देख सकते हैं कि आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दिख जाएगी जो उसी प्लास्टिक के कचरे से जो है बनी है। इसकी जो शुरुआत हुई है उसी प्लास्टिक के कचरे से हुई है जिसको आप और मैं बेकार समझकर जो है फेंक देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर बेंचेस जो है वो नजर आ जाएगी, आपको टेबल नजर आ जाएगी, आपको बहुत सारी यहाँ पर जो है चीजें नजर आने वाली है जो कि रिसाइकल प्लास्टिक से जो है वो बनाई गई है।
7: आम सोच यही है कि इस्तेमाल के बाद प्लास्टिक हमारे लिए कचरा बन जाता है, लेकिन सही तरीके से रिसाइकिल किया जाए तो यही कचरा दोबारा उपयोगी भी बन सकता है। दिल्ली की रहने वाली सोनल और उनके पति ने इसी सोच को अपना मिशन बनाया हुआ है।
12: हमारा थॉट था इनिशियली कि हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे घरों को ब्यूटिफाई कर सकें, बट फिर हमें समझ में आया कि हम सिर्फ प्लास्टिक को कन्वर्ट करके एक प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, हम लोगों में एक ऐसी हैबिट लेके आना चाहते हैं जो नॉट जस्ट रिसाइकिलिंग बस रीड्यूस और रीयूज के कॉन्सेप्ट को भी हम आगे लेके आए। सो हमने ई कॉन्शियस लिया, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इको कॉन्शियस जो हमें बताता है कि हमें हर एक चीज़, कोई भी प्रोडक्ट हमें खरीदना हो, फेंकना हो, हम उसको कॉन्शियसली एक थॉट प्रोसेस के साथ में लेके चलें।
7: दोनों ने मिलकर एक ऐसा स्टार्टअप शुरू किया जिससे प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल कर उसे दोबारा उपयोगी बनाया जा सके। इसी सोच के तहत प्लास्टिक कचरे से ऐसी चीजें तैयार की जा रही हैं जिन्हें आसानी से इस्तेमाल किया जा सके।
13: इसके पीछे का हमारा थॉट था कि अब जो वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है या इस टाइप के कोई और इवेंट है जहाँ पे इस टाइप का प्लास्टिक इकट्ठा होता है, तो अब वो उसको हम मतलब किसी तरीके के वो इकट्ठा करके उनको ही कन्वर्ट करके हम कुछ स्कूल के बेंचेस हम बनाए, वहाँ के लिए पार्कों के लिए बेंचेस बनाए, तो इस पे हम काम कर रहे हैं।
7: इनके बनाए प्लास्टिक के कचरे से पार्कों और स्कूलों के लिए बेंच तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा डस्टबिन और कई तरह के दूसरे प्रोडक्ट भी बनाए जा रहे हैं।
11: पीछे आप डस्टबिन देख सकते हैं कि इसी प्लास्टिक के कचरे से जो है ये डस्टबिन जो है वो तैयार किया गया है, वेट वेस्ट के लिए अलग और ड्राई वेस्ट के लिए अलग, और ऐसी भी तमाम बहुत सारी चीजें हैं जो ये लोग जो है बनाते हैं रिसाइकल प्लास्टिक से।
7: खास बात यह है कि इस काम के लिए घरों और हाउसिंग सोसाइटी से प्लास्टिक कचरा इकट्ठा किया जाता है, यानी जिस प्लास्टिक को लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं वही आगे चलकर किसी सार्वजनिक जगह की जरूरत पूरी करता है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
10: चलिए बढ़ते आगे, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में रामगंज मंडी और भोपाल रूट पर ट्रेनों को बहुत जल्द नई रफ्तार मिलने वाली है। नए ट्रैक पर कल 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन संचालन का सफल ट्रायल हुआ। और देखिए, इस परियोजना से इस रूट पर सफर करने वाले मुसाफिरों को खास सहूलियत मिलेगी। इसके साथ ही इस रूट पर माल ढुलाई में भी कम वक्त लगेगा।

0: रेल मुसाफिरों को एक नई सौगात दे दी है। रामगंज मंडी और भोपाल के बीच नई रेल परियोजना के तहत ब्यावरा और सोनकच्छ के बीच पहली बार ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी। इस नए ट्रैक के सफल ट्रायल के बाद बहुत जल्द इस रूट पर पैसेंजर और माल गाड़ियों के संचालन को हरी झंडी मिल जाएगी। रामगंज मंडी भोपाल रेल परियोजना के तहत 276 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनना है। इसमें से 226 किलोमीटर का ट्रैक तैयार हो चुका है। ब्यावरा और सोनकच्छ के बीच 24.5 किलोमीटर के नए ट्रैक का ट्रायल 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर ट्रेन संचालन का ट्रायल सफल।
1: आज इसकी पूरा इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में इसकी डेडलाइन ये फाइनेंशियल ईयर 26-27 में हो जाएगा।
0: मुंबई से आए कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की टीम ने इस नए ट्रैक का जायजा लिया और इसकी सुरक्षा जांच पर मुहर भी लगा दी। साथ ही ये भी दावा किया गया है कि इस पूरे रूट का काम तय वक्त पर ही पूरा कर लिया जाएगा। राजगढ़ से पंकज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चलिए फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे लंदन में कैसे मनाया गया इंटरनेशनल डॉग डे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: पालतू जानवर धरती के वो जीव हैं जो घर की खुशियों और दिल के सबसे वफादार दोस्त होते हैं और उनका प्यार भी बगैर किसी शर्त के होता है।
6: बिल्कुल, आपको बता दें चूंकि आज इंटरनेशनल डॉग डे है तो ये जानवर सिर्फ पेट नहीं होते हैं बल्कि थोड़ा सा प्यार मिलने पर ही बदले में अपनी पूरी दुनिया दे देते हैं।

0: लंदन के वॉक्सहॉल के एक मार्केट प्लेस फूड हॉल में मंगलवार को नजारा कुछ अलग दिखा। यहाँ इंसानों के साथ उनके स्पेशल दोस्तों के लिए भी खास इंतजाम किए गए। नेशनल डॉग डे के मौके पर डॉग्स के लिए एक खास लिमिटेड मेन्यू तैयार हुआ, जिसपे स्वाद भी था और डॉग फ्रेंडली इंग्रेडिएंट्स भी थे। डॉग्स की इस पार्टी में स्वाद के तमाम इंतजाम रहे। उन्हें राइस के साथ सैल्मन और स्प्रेड्स भी दिए गए। चिकन विद राइस का मजा भी इन डॉग्स ने लिया। चिकन के साथ एग नूडल्स भी इन स्पेशल मेहमानों को परोसा गया। और तो और, मिनी स्टेक विद फ्राइज भी मेन्यू का हिस्सा था।
1: We wanted to create a nice, lovely menu of dog-friendly dishes, something that both the humans and the dogs can enjoy.
0: यानी कोशिश यही है कि जब इंसान टेबल पर खाना एंजॉय करे तो उसका स्पेशल दोस्त भी खुद को पार्टी से बाहर महसूस न करे।
1: We have quite a lovely array. So we have dog pizza, so we have a dog poke bowl as well. We have duck, we even have dog tacos.
0: लंदन की ये तस्वीरें भले ही डॉग्स के लिए खास खाने की हों, लेकिन इनके पीछे का संदेश इससे कहीं बड़ा है। क्योंकि डॉग सिर्फ एक पेट नहीं बल्कि इंसान का ऐसा साथी है जो बिना किसी शर्त के प्यार करता है। इसी रिश्ते और इंसान के साथ डॉग्स की खास बॉन्डिंग को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 26 अगस्त को इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत साल 2004 में एनिमल वेलफेयर एडवोकेट और पेट एक्सपर्ट कोलीन पेज ने की थी। 26 अगस्त की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि इसी दिन उन्होंने अपने परिवार संग अपने पहले पालतू कुत्ते शेल्टी को गोद लिया था। डॉग्स को पालने को लेकर भले ही दुनिया में अलग अलग मत हों, लेकिन तमाम रिसर्च कहती हैं कि डॉग्स के साथ वक्त बिताना सिर्फ आपको खुश ही नहीं करता बल्कि आपकी मानसिक सेहत के लिए भी सकारात्मक असर डाल सकता है। किसी डॉग का आपके पास होना, उसका आपको देखकर खुश होना, आपका इंतजार करना, ये छोटे छोटे एहसास ही अकेलेपन और उदासी को कम करने में मदद कर सकते हैं। खासकर बुजुर्गों या अकेले रहने वाले लोगों के लिए तो डॉग्स का साथ बेहद अहम हो सकता है, क्योंकि एक डॉग आपको जिम्मेदारी का एहसास देता है, रोज टहलने की वजह देता है, लोगों से मिलने जुलने का मौका बढ़ाता है और सबसे बड़ी बात, आपको ये एहसास कराता है कि कोई है जो बिना किसी शर्त के आपका इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपका ही मजा आएगा कि खबरें अभी जारी।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: तो चलिए अब आपको दिखा दे आसमान का सतरंगी नजारा कि किस तरह से आसमान में छाए बादलों के बीच इंद्रधनुष छटा बिखरी नजर आई। इसकी एक बेहद ही खूबसूरत तस्वीर लद्दाख में नजर आ रही है।
3: बिल्कुल, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल वैज्ञानिक भाषा में बादलों की इस तस्वीर को क्लाउड इरिडेसेंस कहते हैं, जो रोशनी से जुड़ी एक दुर्लभ घटना है। इसमें दरअसल सूरज की रोशनी बादलों में मौजूद पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल से टकराकर फैलती है और इंद्रधनुष जैसे अद्भुत रंग बनाती है। देखने में ये AI जनरेटेड लगती है, लेकिन आपको बताते हैं एकदम रियल फोटो।
0: तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही, कल होगी आपसे मुलाकात शाम 5 बजे चाय पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: क्या आपका तालमेल आपके बॉस के साथ अच्छा नहीं रहता? किसी भी नौकरी में उच्चाधिकारियों के साथ संबंधों की दिक्कत हो जाती है? कौन से ग्रह बैठाते हैं सामंजस्य, बनाते हैं तालमेल, जानिए मेरे साथ।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़
2: और प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
3: नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद मिशन जिंदगी तेज, प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से की बात, भारत की ओर से भेजा जा रहा राहत सामान, यूपी बिहार में प्रशासन अलर्ट।

0: यूपी की 50,000 बेटियों को मिलेगी स्कूटी। सीएम योगी का ऐलान, अक्टूबर या नवंबर में शुरू होगी रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज। मुंबई के महाराजा नाम से मशहूर करीब 47 फीट के बप्पा का आगमन, नरसिंह रूप में विराजमान है गणपति। देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम में स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज, अब मंदिर में मिलेगी निःशुल्क शीघ्र दर्शन की सुविधा। प्रशासन के फैसले से लोगों में खुशी की लहर। फतेहपुर के ठाकुरबाड़ी मंदिर में झूलनोत्सव की धूम, भगवान कृष्ण और राधा को पालने में झुलाया गया झूला, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात रंग, राशि और राखी के संयोग की। राखी क्या है? एक डोर है, प्रेम और दोस्ती के धागों से बुनी हुई। और ये प्यारा सा त्योहार उसी रिश्ते का तो प्रतीक है। तभी तो रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई पर प्रेम से कोई एक धागा भी बांध देना काफी होता है। और जहां तक बात है गिफ्ट की, तो बहन के लिए भाई का प्यार और साथ ही सबसे बड़ा उपहार है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कुछ खास रंगों की राखी इस रिश्ते में स्नेह के रंगों को और गहरा कर सकती है। ज्योतिष विज्ञान के मुताबिक राखी के दिन राशि के मुताबिक रंगों की राखी भाई की कलाई पर बांध उनके जीवन में शुभता और सौभाग्य ला सकता है। तो वहीं अगर बहना के लिए उपहार उसकी राशि के अनुसार चुना जाए तो उसके जीवन में मंगल और सौभाग्य की बरसात हो सकती है। तो चलिए आइए ज्योतिषाचार्य से जान लेते हैं कि बहनें अलग अलग राशियों के आधार पर अपने भाइयों को कौन कौन सी राखी बांध सकती हैं और भाई अपने बहन को ढेर सारे प्यार के साथ और कौन सा उपहार दे सकते हैं।
1: बात करते हैं कि राशि के अनुसार आप अपने भाई को कौन से रंग की राखी बांध सकते हैं और भाई अपनी बहनों को राशि के अनुसार क्या गिफ्ट दे सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें लाल या मैरून कलर की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन मेष राशि की है तो आप उन्हें लाल रंग के कपड़े गिफ्ट कर सकते हैं। आप उन्हें स्पोर्ट्स एक्सेसरीज गिफ्ट कर सकते हैं, रेड कलर का हैंड बैग, मैरून कलर का हैंड बैग या कोई फिटनेस रिलेटेड आइटम आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। बात करेंगे वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें पेस्टल शेड की राखी, सिल्वर कलर की या पिंक कलर की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन वृषभ राशि की है तो आप उन्हें पेस्टल शेड के कपड़े, परफ्यूम, इत्र या फिर कॉस्मेटिक आइटम्स आप अपनी बहन को गिफ्ट कर सकते हैं। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप अपने भाई को हरे रंग की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन मिथुन राशि की है तो आप उन्हें उनकी राशि के अनुसार ग्रीन एमरल्ड दे सकते हैं। आप उन्हें बुक्स गिफ्ट कर सकते हैं, आप उन्हें गैजेट्स गिफ्ट कर सकते हैं या फिर उन्हें ग्रीन कलर के कपड़े भी गिफ्ट कर सकते हैं।
0: यानी भाई बहन इन उपायों को अपनाकर रिश्तों में और मिठास खोल सकते हैं। बाकी की राशि वाले भाई बहनों के लिए क्या कुछ उपाय हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं वो अनोखी राखियां जिन्हें संसार की सबसे बड़ी राखी बताया जा रहा है। ये राखियां प्रेम और आस्था के धागों से बुनी गई हैं। श्रद्धालुओं ने अपने हाथों से इन्हें अपने आराध्य के लिए बनाया है और तैयार किया है।

0: हर साल जाते जाते सावन का महीना हमारे लिए प्रेम के उस पर्व की सौगात छोड़ जाता है जो भाई बहन के स्नेह और लगाव का सबसे बड़ा पर्व है। सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को आने वाला रक्षाबंधन पर्व सनातन धर्म का बेहद खास त्योहार है। वो त्योहार जहां बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधकर उसके आयुष्मान होने और उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं, तो वहीं भाई भी अपनी लाडली बहन की रक्षा और हर हाल में उसका साथ निभाने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर समर्पण और सुभाशीष का कुछ ऐसा ही आदान प्रदान भक्त अपने आराध्य के साथ भी किया करते हैं। तभी तो राखी की तैयारी का असर देश भर के मंदिरों में भी नजर आने लगा है। जगन्नाथपुरी में हर साल की तरह भगवान जगन्नाथ के लिए बेहद खास राखी तैयार की जा रही है। भक्तों का ये दावा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी राखी है जिसे भगवान जगन्नाथ को रक्षा बंधन के दिन अर्पित किया जाएगा। जगन्नाथ मंदिर के खास सेवायत पटारा बिसोई पीढ़ियों से भगवान के लिए राखी बनाने का काम करते आ रहे हैं। अब की बार भी जगन्नाथ प्रभु की ये खास राखी बनकर तैयार है।
1: ये जो राखी, ये दुनिया का सबसे बड़ा राखी है और ये जब महाप्रभु परिधान करेंगे तो दिल से बहुत खुशी मिलती है और ये सब सिर्फ भाग्यवान बहुत खुद को फील होता है। और ये मैं बहुत छोटे से दादाजी के साथ करता आ रहा हूँ। यह जो सेवा है, ये हमारा पीढ़ी पे पीढ़ी सेवा है।
0: जगन्नाथ धाम में हर साल ये परंपरा निभाई जाती है। अब की बार रक्षा बंधन के लिए रेशम के चार रंग वाले धागों को पिरोकर चार विशालकाय राखियां बनाई जा रही हैं। इसके साथ ही सुपारी के पत्तों की विशाल मालाएं भी तैयार हो रही हैं।
2: ये जो राखी जो हम जो बना रहे हैं, ये प्रस्तुत हो रहा है बासुंगा टसर पाट से। ये बासुंगा पाट को हम चार कलर में विभक्त करके लाल और हलूद और नीला सबुज चार कलर में बनाते हैं और इसका साथ में और भी चार सुपारी का माला बनाते हैं। ये एक सुपारी का माला में 54 सुपारी रख के इसके अंदर डाल के इसको फूल की तरह बनाते हैं।
0: श्रावण महीने की अमावस्या से ही राखियां बनाने का काम शुरू हो जाता है। पटारा बिसोई सेवायत 10 से 12 दिनों में इन विशाल राखियों को बनाने का काम पूरा करते हैं। आखिरकार राखी के दिन भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र को ये राखी और मालाएं अर्पित की जाती हैं।
2: ये चार गुआमल और चार राखी महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर के अंदर हम प्रभु जी को देंगे। वो इन्होंने जगन्नाथ जी महाप्रभु दो राखी परिधान कर

0: रक्षाबंधन से पहले आस्था के रंगों में पगी कुछ ऐसी ही तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर से भी आई हैं। इंदौर में भक्तों ने खजराना गणेश भगवान के लिए दुनिया की सबसे बड़ी राखी बनाने का दावा किया है। रक्षाबंधन के अवसर पर इस बार भगवान खजराना गणेश को 40 इंच बाय 40 इंच की भव्य सनातन राखी अर्पित की जाएगी। पिछले कई सालों से इस मंदिर में खास राखी अर्पित करने की परंपरा रही है। अब की बार खजराना गणेश जी के लिए बनी विशेष राखी में सनातन संस्कृति, राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक संदेशों को समाहित किया गया है।
1: यह 40 बाय 40 इंच की राखी विश्व की सबसे बड़ी राखी है। हम लोग हर साल एक थीम बेस राखी बनाते हैं और वंदे मातरम को जो 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं उसको हमने दर्शाते हुए एक सनातन धर्म पे राखी बनाई है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमने कमल के अंदर विराजित जगन्नाथ जी, और जैसा कि सावन का महीना चल रहा है और बाबा महाकाल ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो बाबा महाकाल, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी सभी हमने इसमें वो किया है। खजराना गणेश जी को यह राखी सिर्फ चिंतामण गणेश जी, महाकालेश्वर, वीर बगीचे, हनुमान मंदिर ऐसे कई मंदिरों में अर्पित की जाएगी।
0: बताया जा रहा है कि इस राखी को 10 से 15 लोगों की टीम ने करीब 2.5 महीनों की मेहनत से तैयार किया है। इसे बनाने में कोलकाता, जयपुर, मुंबई और सूरत से मंगवाई गई विशेष सामग्री का उपयोग किया गया है। भारत की कई समृद्ध हैंडीक्राफ्ट कलाओं की झलक इस राखी पर नजर आ रही है।
1: 10 से 15 लोग मिलके हम ये राखी बनाते हैं और करीबन हमको 1 से 2 महीना लगता है इस राखी को कंप्लीट करने में। और इसमें आप देखें कि सूरत के मोती और जयपुर, कलकत्ता का बारीक काम किया है। पूरा हैंडवर्क की राखी है और हैंडमेड राखी है।
0: ये केवल एक राखी नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान, सांस्कृतिक एकता और धार्मिक चेतना का जीवंत प्रतीक है। जब राखी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ये राखी भगवान खजराना गणेश को अर्पित की जाएगी तो आस्था के भाव के साथ साथ ये राखी देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के दर्शन का माध्यम भी बनेगी। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो अभी हमने आपको बताया था कि मेष से मिथुन राशि वाले भाई बहन अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। अब ये जान लेते हैं कि ज्योतिष के आधार पर कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोग भाई बहन से संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठा सकते हैं।
3: अगर आपके भाई कर्क राशि के हैं तो कर्क राशि वाले भाइयों को आप सिल्वर या व्हाइट कलर की राखी बांध सकते हैं। वहीं भाई अपनी बहनों को जो कि कर्क राशि की हैं उन्हें सिल्वर की कोई आइटम गिफ्ट कर सकते हैं। आप सिल्वर कलर के क्लोथ गिफ्ट कर सकते हैं, पर्ल आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, पर्ल की ज्वेलरी गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें कोई भी ऐसा लिक्विड आइटम जो कि उनकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो, उनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करे, ऐसा आप उन्हें कुछ गिफ्ट कर सकते हैं। बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें ऑरेंज या ब्राइट येलो कलर की राखी जरूर बांधे। और वहीं अगर आपकी बहन सिंह राशि की है तो आप उन्हें गोल्ड के आइटम आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें तांबे की कोई अच्छी सी मूर्ति गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें ऑरेंज या कॉपर शेड के कपड़े गिफ्ट कर सकते हैं जिससे कि उनकी जिंदगी में प्रगति आए। कन्या राशि की यदि हम बात करें तो कन्या राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें हरे या पेस्टल शेड या फिर अर्दी शेड की राखी आप उन्हें बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन कन्या राशि की है तो आप उनको कुछ प्रीमियम प्लानर या फिर डेस्क ऑर्गेनाइजर या फिर कुछ स्मार्ट वॉच या फिर ग्रीन कलर के कपड़े या ग्रीन कलर की ज्वेलरी जैसे कि एमरल्ड हो गई, ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल हो गया, ये आप अपनी बहनों को गिफ्ट कर सकते हैं।
2: चूंकि भाई बहन के पवित्र रिश्ते का ये पर्व बेहद नजदीक आ गया है, ऐसे में बाजार रक्षाबंधन के त्योहार के लिए पूरी तरह सज चुके हैं। बाजार में एक से बढ़कर एक राखियां बिक रही हैं। रंग बिरंगी राखियों के बीच में इस बार सोने चांदी से बनी राखियों की खूब डिमांड है। अलग अलग डिजाइन और स्टाइल वाली राखियां लोगों को खूब पसंद आ रही हैं। इनमें डायमंड राखी से लेकर हल्के काम वाली गोल्ड राखी का भी क्रेज दिखाई दे रहा है।
4: शुरुआत करेंगे इन प्रीमियम सिल्वर राखी की, और आप देख सकते हैं कि आपको जो है सामने बहुत सारे ऑप्शन जो है राखी के दिखने वाले। तो ये 925 स्टर्लिंग सिल्वर की राखियां हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और इस सीजन में जो है ये खास होने वाली है वो इसलिए क्योंकि सिर्फ राखी के फेस्टिवल के बाद जो है आप एक धागे की तरह इसको उतार कर नहीं

0: रख सकते हैं, बल्कि आप बाद में भी जो है इसको कैरी कर सकते हैं, एक ब्रेसलेट के तौर पर जो है आप इसको पहन सकते हैं और पूरे साल जो है इसको आप बहन भाई की जो प्यार की निशानी है उसके साथ जो है इसको कैरी कर सकते हैं। तो ऑप्शंस मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ किस तरीके से आपको सिल्वर के ऑप्शन जो है वो नजर आने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम बच्चों की राखी से शुरू करेंगे क्योंकि बच्चों के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑप्शन जो है आपको दिखेंगे। शुरुआती मैं इन छोटी छोटी राखियों से करूँगी, आपको दिखेगा कि किस तरीके से बच्चों को कार्टून करेक्टर्स वाली राखियाँ पसंद होती है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि आपको स्पॉन्ज बॉब की राखी की बात करें या फिर एंग्री बर्ड की राखी की बात करें, आपको बच्चों के लिए हर एक ऑप्शन जो है नजर आने वाले हैं। आप यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको लड़कियों के लिए यूनिकॉर्न वाली राखियाँ जो है वो दिख जाएगी, आपको मिकी माउस वाली राखियाँ जो है वो दिख जाएगी और सभी प्योर सिल्वर में आपको ये राखियाँ जो है दिखने वाली है। सिल्वर की अगर हम बात करें तो आपको ये वेराइटी दिखने वाली है। अच्छा, अगर इनकी कीमतों की बात करूँ तो ये सभी जो जितनी भी धागे वाली राखियाँ जो आप देख रहे हैं सिल्वर के साथ, इनकी कीमत जो 1000 से सिर्फ 1500 के बीच में आपको नजर आ जाएगी। वही अगर आप कुछ इस स्टाइल के राखियों की बात करें, ये स्पेशली जो ऊपर की राखियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ सिल्वर में, ये भाभियों के लिए राखी है। अगर आपको अपनी भाभी को पहनाना है तो आप इस तरीके का ट्रेडिशनल लुक के साथ आप इनको कुछ ऐसी राखियाँ जो है पहना सकते हैं कि राखी का त्यौहार भी मने और साथ ही साथ कुछ परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस तरीके का ट्रेडिशनल लुक वो जो है पहन सके। आपको कुछ इस सिल्वर में इस तरीके की राखियाँ भी जो है वो मार्केट में दिख जाएगी और इनकी अगर रेट की बात करें तो ये कभी आपको 3 से 4 हज़ार के बीच में जो है पड़ेगी। और भाई बहन के लिए जिस तरीके से कहते हैं कि कपल जो एक राखी होती है भाई भाभी की राखी, वो आपको ये राखियाँ मिल जाएगी कि भाई भाभी भी मेंशन है। तो सिल्वर की हम ऑप्शन दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर अच्छी खासी जो वेराइटी है वो दिखने वाली है, क्योंकि प्रीमियम राखियों की तरफ हर कोई रुक जो है लेता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जब बात सोने की हो तो सोने की चमक के आगे आपको हर कुछ फीका लगता है। तो सोने की आपको मैं वैरायटी दिखा रही हूँ और उसके साथ ही डायमंड, प्रीमियम डायमंड जो है अमेरिकन डायमंड कट के साथ जो है वो राखियों के ऑप्शन भी आपको दिखने वाले हैं। हालांकि कस्टमाइज आप करवा सकते हैं, लेकिन ये कुछ राखियों के मैं ऑप्शन आपको दिखा रही हूँ जो कि आपको यहाँ पर नजर आने वाला है। और सोने की छोटी सी प्लेट आपको बीच में नजर आ जाएगी। आपको चाहे भगवान गणेश जी की बात करें या फिर ओम के डिजाइन की बात करें, एक आपको यहाँ पे आपको माता रानी का डिजाइन जो है वो दिख जाएगा। तो और बारीक धागे के साथ, क्योंकि कोई धागे को बहुत ही पवित्र मानता है, तो धागे के साथ इन्होंने गोल्ड को जो है अटैच करने की पूरी तरीके से कोशिश की है। अगर उसके साथ ये भी आप देख सकते हैं कि आपको इसमें काला धागा नजर आएगा, क्योंकि लोग जो है काला धागा ज़रूर पहनाते ताकि नज़र से जो है वो बचा जा सके। तो गोल्ड की राखियों में कई तरह के डिज़ाइन जो है आपको नज़र आ जाएंगे। कुछ राखी आपको बेहद ही मिनिमल डिज़ाइन के साथ दिखेगी तो कुछ में आपको इस तरीके का कट जो है वो नज़र आ जाएगा। और ये जितनी भी ये राखियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 22 कैरेट गोल्ड में जो है आपको नज़र आने वाली है। लेकिन जिनका बजट थोड़ा कम है लेकिन त्यौहार भी मनाना है, तो उनके लिए ये नीचे के ऑप्शंस आपको नजर आ जाएंगे कि ये आपके 14 कैरेट गोल्ड से इनका आपको ये राखियां जो है वो उपलब्ध है। इसके अंदर आपको डायमंड कट जो है वो नजर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि 14 कैरेट गोल्ड की आपको चेन नज़र आ जाएगी, लेकिन अगर आप बीच में डिजाइन की बात करेंगे तो आपको ये डायमंड में सारे ऑप्शंस जो है वो मिलने वाले हैं।
1: तो राखियों के इन ट्रेंड के बाद अब एक बार फिर से लेकर चलते हैं ज्योतिषाचार्य के पास और जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले भाई बहन इस त्यौहार को खास बनाने के लिए कौन कौन से रंग वाली राखी और सौगात तैयार कर सकते हैं।
2: अगर आपके भाई तुला राशि के हैं तो आप अपने भाइयों को पिंक कलर की या सिल्वर कलर की या फिर रेशम की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहनें तुला राशि की हैं तो तुला राशि वाली बहनों को आप सिल्क की साड़ी, सिल्क का सूट दे सकते हैं, कुछ कॉस्मेटिक आइटम दे सकते हैं, कुछ सिल्वर की ज्वेलरी या फिर आप डायमंड या अमेरिकन डायमंड की ज्वेलरी आप उन्हें दे सकते हैं, या फिर आप उन्हें रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल भी दे सकते हैं जिससे आपकी बहनों की जिंदगी में खुशियां भर जाए। वहीं बात करते हैं वृश्चिक राशि की, अगर आपके भाई हैं तो आप अपने भाई को रेड कलर, ऑरेंज कलर या फिर मरून कलर की आप उन्हें राखी दे सकते हैं। और वहीं अगर आपकी बहन वृश्चिक राशि की है तो आप उन्हें रेड मैरून कलर की ज्वेलरी आइटम दे सकते हैं या कपड़े दे सकते हैं, साथ ही आप उन्हें कॉपर शेड का कोई ड्रेस मटेरियल भी देके दे सकते हैं, आप उन्हें तांबे के बर्तन लेके दे सकते हैं और साथ ही आप उन्हें रेड कोरल ज्वेलरी जो है उसकी भी ज्वेलरी आप उन्हें दे सकते हैं या फिर रेड जैस्पर क्रिस्टल भी आप अपनी बहनों को गिफ्ट कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं धनु राशि की, अगर आपके भाई धनु राशि के हैं तो आप उन्हें पीले रंग की राखी जरूर बांधे या फिर गोल्डन कलर की राखी बांधे। वहीं अगर आपकी बहन धनु राशि की है तो आप उन्हें येलो कलर के कपड़े या गिफ्ट आइटम्स, येलो मिठाई, येलो कलर का कुछ बैग या गोल्डन बैग, या फिर आप उन्हें गोल्ड की ज्वेलरी, या फिर आप उन्हें पंच धातु की कोई ज्वेलरी, या फिर आप उन्हें जो है येलो सफायर या येलो सिट्रीन क्रिस्टल आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं।
1: चलिए अब हम आपको राशि के हिसाब से परफेक्ट राखियां तो बता ही रहे हैं, साथ ही आपको ये भी दिखा रहे हैं कि आजकल ट्रेंडिंग राखियां कौन कौन सी हैं। दरअसल बदलते वक्त के साथ राखियां भी ट्रेंडी हो चुकी हैं। राखी को लेकर भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। मसलन आगरा में रक्षाबंधन के लिए पत्थरों से खास राखियां बनाई जा रही हैं। ये उसी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कारीगर इन राखियों को बनाने में दिन रात जुटे हैं। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन राखियों को तैयार करने में मेहनत भी काफी लग रही है। ये राखियां यूनिक तो है ही, आकर्षक भी हैं। रंग बिरंगी पत्थर की ये राखियां इतनी खूबसूरत हैं कि किसी का भी मन इन्हें खरीदने के लिए मचल उठेगा। इसी तरह अलग अलग स्टाइल की राखियां शहर शहर इन दिनों नजर आ रही हैं। शहर शहर राखी की दुकानें सजी हुई हैं, जहां पारंपरिक से लेकर मॉडर्न डिजाइन की तमाम राखियां उपलब्ध हैं। बच्चों और बड़ों सभी को ख्याल में रखकर अलग अलग राखियां डिजाइन की गई हैं। महाराष्ट्र का अकोला हो या राजस्थान का अलवर, राखी के लिए हमेशा से मशहूर रहे बाजार इन दिनों खरीदारों के साथ गुलजार हैं।

0: भाई बहन के पावन त्योहार रक्षाबंधन को लेकर देश भर के बाजार गुलजार हैं। यहाँ एक से बढ़कर एक राखी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के अकोला के बाजार भी रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर सजे हुए हैं। अपने भाइयों के लिए राखी पसंद करने दुकानों पर बहनों की भीड़ जुट रही है। यहाँ की दुकानों पर पारंपरिक राखियों से लेकर मॉडर्न डिजाइन वाली राखियाँ मौजूद हैं।
1: रक्षाबंधन के त्योहार के लिए जो है बाजारों में जो है दुकान यहाँ पर लग चुके हैं राखियों के। और ये जो राखी है ये जो है मोतियों की राखी है, कोई रुद्राक्ष वाली है, कोई माला वाली यहाँ पर राखी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये लुम्बी राखी इसे कहा जाता है। ये सुंदर राखियाँ जो है वो ये भैया भाभी की राखी इसे कहा जाता है। और इस तरीके के अलग अलग वेराइटी जो है, देखिए ये बैंगल के साथ ये राखी इस तरीके की दी है। और खासकर यहाँ देखिए जो है एक कमल के फूल पर ये जो राखी है ये बहुत ही अच्छी इस वक्त की ट्रेंडिंग है।
0: भाई भाभी के लिए कपल राखी तो बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली राखियाँ, इन सब के अलावा डायमंड लुक वाली राखी, रिंग राखी और ज्वेलरी डिजाइन की राखियाँ भी दुकानों में मिल रही हैं। कोई बहन अपने भाई के लिए राखी पसंद कर रही है तो किसी ने खरीद भी ली है।
2: जो अच्छे से अच्छी राखी मिलेंगी वो ले लेंगे।
3: मैंने अपने भाई के लिए बहुत हीरे जैसी राखी ली है, आप देख सकते हैं बहुत शानदार हीरा लगा हुआ है। मेरा भाई भी हीरे जैसा ही है, मुझे बहुत प्यार करता है, मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा और भाई का रिश्ता बहुत ही अनमोल है मेरे लिए।
0: अलग अलग डिजाइन के हिसाब से राखियों की कीमत भी अलग अलग है।
4: 5 रुपए से लेके तो 500 रुपए तक की अवेलेबल है। 500-400 रुपए वाला माल था वो सबसे पहले खत्म हो जाता है। हैवी रेंज की राखी के ट्रेड डिमांड सबसे ज्यादा थी। आपके पास स्टोन डायमंड की राखी इसकी डिमांड हर साल रहती है, इस साल कुछ ज्यादा ही थी। और कार्टून की राखी की विशेष डिमांड है ये बार, लाइट के स्पिनर कार्टून की राखी में इस टाइप की राखी सबसे ज्यादा चल रही है।
0: अकोला से लेकर अलवर तक में राखियों की दुकानें सजी हुई हैं। राजस्थान के अलवर की राखियों की डिमांड विदेश तक में है। हजारों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कारोबार से जुड़े रहते हैं। यहाँ की राखियाँ देखने में सुंदर होने के साथ ही सस्ती भी मिलती है।
5: एक गोदाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर तरह तरह की राखियाँ हैं। मैं दिखाना चाहूंगा ये कार्टून कैरेक्टर की राखियाँ हैं। ये राखियों के साथ ही इरेजर का भी काम करती हैं। छोटे बच्चों को ये राखियाँ खास पसंद आ रही हैं, जिसमें अलग अलग तरह के डिजाइंस, एस्ट्रोनॉट तरह के जो कार्टून कैरेक्टर होते हैं उन कैरेक्टर के रूप में इनको तैयार किया गया है। और इन राखियों को रक्षाबंधन के बाद बच्चे अपने बैग, स्कूल बैग में भी काम में ले सकते हैं। इरेजर का ये काम करेंगी। इसके अलावा तरह तरह की राखियां कार्टून कैरेक्टर के रूप में, लाइट वाली राखियां, म्यूजिक वाली राखियों की डिमांड सबसे ज्यादा है।
0: यहाँ के बाजार में 1 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की अलग अलग तरह की आकर्षक राखियां मिल रही हैं। इस बार खासकर बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर, लाइटिंग और म्यूजिक के साथ ही पतली डोरे वाली राखियों की डिमांड सबसे ज्यादा है।
6: हमारे पास सब तरह की वैरायटी है, फैंसी राखियां भी हैं, बच्चों के लिए एक से एक स्पेशल आइटम बनाए हुए हैं हमने। इस बार बच्चों के लाइटिंग में जैसे ये सब लाइटिंग वाली आइटम है, ये देखिए इस तरह की लाइटिंग वाली आइटम है, ये छोटे बच्चों के आइटम है सारी, ये सब म्यूजिकल लाइट बच्चों के साथ में लाइटिंग वाली आइटम आएगी इस तरीके से। ये पर्स वाली आइटम है, जैसे बच्चों के बेल्ट मारने वाला होता है इसके अंदर, बच्चों के टॉयज वगैरह सब कुछ मौजूद है इसके अंदर। ये वाली सब म्यूजिकल लाइट के साथ है, ट्यूनिंग लाइटिंग के साथ आ रहा है अपना। इस तरह की आइटम बच्चों के छोटे करेक्टर वगैरह बहुत सारी आइटम है। मतलब कहने का मतलब
0: यहाँ कई बड़े राखी व्यापारी हैं जो देश विदेश में राखियाँ सप्लाई करते हैं।
7: इस साल हमने करीब 50,000 से ज्यादा डिजाइन बनाए हैं और सप्लाई ऑल ओवर इंडिया तो है ही, और अवार्ड में भी हो रही है, करीब 30-35 कंट्रीज में माल जा रहा है।
0: यहाँ रक्षाबंधन के पर्व को लेकर सजी दुकानों में बहन अपने भाइयों के लिए राखी खरीदने लगातार पहुँच रही हैं।
8: राखियों के इतने डिजाइन मिलते हैं शायद कहीं भी पॉसिबल नहीं है। अलवर छोड़ो, इंडिया छोड़ो, एशिया तक इनकी राखी फेमस है कि यहाँ की राखियाँ जो है ऑल इंडिया में फेमस है, इसीलिए हम हर साल यहाँ आते हैं राखी।
0: अलवर के शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में राखी बनाई जाती है, जिसके चलते यहाँ 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। अकोला से धनंजय सावले और अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: चले अब आखिर में जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि वाले भाई बहन इस राखी पर राशि के मुताबिक कौन कौन से रंगों को चुनकर अपने त्योहार में खुशियों और शुभता के रंग भर सकते हैं।
10: शनि की दो राशियां मकर और कुंभ राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें नीले या बैंगनी रंग की राखी बांध सकते हैं या फिर फिरोजी रंग की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन मकर या कुंभ राशि की हैं तो आप उन्हें लेदर से रिलेटेड कोई भी आइटम गिफ्ट कर सकते हैं, कोई प्रीमियम बैग गिफ्ट कर सकते हैं या फिर उन्हें कुछ होम गैजेट्स गिफ्ट कर सकते हैं जो उनकी किचन में या उनके होम में एक्सेसरीज में काम आए। और साथ ही आप उन्हें ब्लू सफायर या ब्लू सफायर की ज्वेलरी भी गिफ्ट कर सकते हैं या फिर आप उन्हें नीले या बैंगनी रंग के कपड़े भी गिफ्ट कर सकते हैं। अंत में बात करेंगे मीन राशि की कि अगर आपके भाई मीन राशि के हैं तो आप उन्हें पीले या गोल्डन कलर की राखी जरूर बांधें और अगर आपकी बहन मीन राशि की है तो आप उन्हें गोल्डन कलर के कपड़े, गोल्डन कलर की एक्सेसरीज गिफ्ट कर सकते हैं या फिर आप उन्हें कोई रिलीजियस बुक्स गिफ्ट कर सकते हैं या फिर कोई सुंदर सी भगवान की मूर्ति गिफ्ट कर सकते हैं। गोल्ड के आइटम भी आप अपनी बहन को गिफ्ट कर सकते हैं। आप सभी को राखी के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
9: तो चलिए रक्षाबंधन के त्यौहार से जुड़ी हुई ऐसी ही कुछ और तस्वीरें भी लगातार जीएनटी पर आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल आज की इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।

0: आपका तालमेल आपके बॉस के साथ अच्छा नहीं रहता, किसी भी नौकरी में उच्चाधिकारियों के साथ संबंधों की दिक्कत हो जाती है, कौन से ग्रह बैठाते हैं सामंजस्य, बनाते हैं तालमेल, जानिए मेरे साथ।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद मिशन जिंदगी तेज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से की बातचीत, भारत की ओर से भेजा जा रहा है राहत सामान, उत्तर प्रदेश बिहार में प्रशासन अलर्ट। उत्तर प्रदेश की 50,000 बेटियों को मिलेगी स्कूटी, मुख्यमंत्री योगी का ऐलान, अक्टूबर या नवंबर में शुरू होगी रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज, मुंबई में महाराजा नाम से मशहूर करीब 47 फीट के बप्पा का आगमन, नरसिंह रूप में विराजमान है गणपति। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज, मंदिर में मिलेगी निःशुल्क शीघ्र दर्शन की सुविधा, प्रशासन के फैसले से लोगों को मिली खुशी। फतेहपुर के ठाकुरबाड़ी मंदिर में झूलन उत्सव की धूम, भगवान कृष्ण और राधा को पालने में झुलाया गया झूला, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर।
7: देश भर में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन के त्योहार की तैयारियां, तेज, अलग अलग थीम और रंगों की सुंदर राखियों से सजे बाजार। पुरी में भी रक्षाबंधन को लेकर विशेष तैयारियां, भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र की तैयारियों को लेकर दुनिया की सबसे बड़ी राखी। छोटे भाई भगवान जगन्नाथ के लिए लाल और पीले रंग की होती है राखी, जबकि बड़े भाई भगवान बलभद्र के लिए नीले और बैंगनी रंग की होती है राखी। विशेष रेशमी वस्त्र से तैयार की जाती है राखी, देवी सुभद्रा की ओर से उनके भाइयों को बांधी जाती है खास राखियां। पूरी मंदिर के विशेष पटारा बिस्सोई सेवक तैयार करते हैं विशेष राखी। दिल्ली में रक्षाबंधन को लेकर तैयारियां तेज, स्वदेशी और हाथ से बनी राखियां तैयार करने में जुटी महिला उद्यमी और स्थानीय कारोबार। इस साल बाजारों में विकसित भारत की नारी वंदन आत्मनिर्भर भारत जैसी नई थीम वाली राखियां आकर्षण का मुख्य केंद्र, महिलाएं रंग बिरंगे धागों मोतियों से सजा रही हैं राखियां। रक्षाबंधन से पहले दिल्ली समेत देश भर के बाजारों में खरीदारी तेज, इस साल रक्षाबंधन पर 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होने की उम्मीद। आगरा में नेचुरल स्टोन से निर्मित राखियां बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। सफेद संगमरमर और रंग बिरंगे पत्थरों का इस्तेमाल करके बनाई जा रही राखियां। इन राखों को अपने हाथों से तराशते हैं आगरा के पारंपरिक कारीगर, जिससे प्रत्येक राखी का डिजाइन अपने आप में होता है खास। रक्षाबंधन के पवित्र मौके पर देश भर से सरहद पर तैनात जवानों को भेजी जा रही हैं राखियां। उधमपुर के छात्रों ने अपने हाथों से तैयार की सैनिकों के लिए राखी। राखी के साथ छात्रों ने देश की सुरक्षा में तैनात फ्रंटलाइन जवानों के लिए अपने हाथों से ग्रीटिंग कार्ड भी तैयार किए। रक्षाबंधन से पहले झांसी की बहनों का सैनिक भाइयों को खास तोहफा, 500 राखियों के साथ भेजा स्नेह भरा संदेश। हरियाली तीज का कार्यक्रम भी किया गया था आयोजित, जिसमें महिलाओं ने राखी तैयार करने के साथ ही भक्ति गीतों पर महिलाओं ने जमकर डांस किया। जवानों के प्रति कृतज्ञता के भाव से तैयार की गई राखियां। भारत चीन सीमा पर देखिए भाई बहन के प्रेम और देशभक्ति की अनोखी मिसाल। नीति घाटी की महिलाओं ने बॉर्डर कैंप्स में महिलाओं के जवानों के साथ मनाया रक्षाबंधन। पारंपरिक वेशभूषा में पहुंची नीति घाटी के जुम्मा और कागा गांव की महिलाएं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में छात्राओं और शिक्षिकाओं ने पुलिस अधिकारियों को बांधी राखी। एसएसपी को राखी बांधकर मिठाई खिलाई और लंबी उम्र की दुआ की। इंदौर में रक्षाबंधन पर खजराना गणेश को अर्पित की जाएगी विशाल सनातन राखी। राखी को आकर्षक रूप देने के लिए कोलकाता, जयपुर, मुंबई, सूरत में मंगाए गए सलमा सितारे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्नेह की डोर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिलाओं ने सुरक्षा बलों के जवानों को बांधी राखी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। महिलाओं ने मुख्यमंत्री साय को भी बांधी राखी। वाराणसी के जूनियर साइंटिस्ट श्याम चौरसिया ने सैनिकों के लिए बनाई स्पेशल एयर राखी। सैनिकों को संचार और सुरक्षा में मदद मिलेगी। श्याम चौरसिया ने एक निजी स्कूल की छात्राओं के साथ मिलकर बनाई यह अनोखी राखी। उत्तर प्रदेश की 50,000 बेटियों को मिलेगी स्कूटी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया। अपने अंतिम चरण में अमरनाथ यात्रा, पारंपरिक पड़ाव के तहत शेषनाग पहुंचा पवित्र छड़ी मुबारक का जुलूस। विधि विधान के साथ साधु संतों ने पवित्र छड़ी मुबारक की पूजा अर्चना की। हर हर महादेव के जयकारे। इसके बाद पंचतरणी पहुंचेगी पवित्र छड़ी। 27 अगस्त तक पंचतरणी में रात्रि विश्राम। अमरनाथ यात्रा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक माना जाता है छड़ी मुबारक जुलूस। रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर अमरनाथ गुफा पहुंचेगी पवित्र छड़ी। श्रावण मास के दौरान फतेहपुर के ठाकुर बाड़ी मंदिर में पारंपरिक झूलनोत्सव की रौनक। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को झूलों पर किया गया विराजमान। इस मौके पर श्रद्धालु नगर सेठ और ठाकुर जी की प्रतिमा को भव्य तरीके से सजाया। पूरे मंदिर परिसर में धार्मिक झांकियां भी पेश की गई। इसमें श्री कृष्ण लीला और राम वनवास की कथा का चित्रण। मंदिर को भी रंग रोगन और आकर्षण ढंग से सजाया गया। मेले के दौरान भक्तों की सुरक्षा के लिए पुलिस भी पूरी तरीके से तैनात। भगवान के दर्शन करने के लिए रोजाना हजारों की संख्या में पहुंच रहे भक्त। जन्माष्टमी को लेकर दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में भव्य तैयारियां। 4 सितंबर को मनाया जाएगा भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव। जन्माष्टमी से पहले मंदिर को सजाने संवारने का काम तेज। आज से शुरू हो जाएगा कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम। शोभा यात्रा में गूंजेगा हरिनाम संकीर्तन। मंदिर परिसर में लगातार भारी भजन कीर्तन का कार्यक्रम तेज। 4 सितंबर को मुख्य आयोजन में भगवान को लगेगा 251 से ज्यादा अधिक व्यंजनों का भोग। केरल के थिरुवनंतपुरम में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। थिरुवोणम दिवस पर पद्मनाभ स्वामी मंदिर में एकत्र हुए भक्त। इस पवित्र दिन पर भगवान के दर्शन पाने के लिए मंदिरों में भक्तों का तांता। इस दिवसीय ओणम में 10वां और सबसे महत्वपूर्ण दिन थिरुवोणम दिवस। केरल के वायनाड में लगी फूलों की अंबार। आज ओणम के 10वें दिन पूजा पाठ के लिए डिमांड। थिरुवोणम दिवस पर घरों के आंगन में फूलों से हुई शानदार सजावट। पुडुचेरी में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है ओणम का त्यौहार। मलयाली समुदाय द्वारा बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्कूल कॉलेजों में सजाए गए हैं फूलों से सुंदर पूक्कलम। ओणम के मौके पर महिला कॉलेज में छात्राओं ने पेश किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। पुरी स्थित प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मंगला आरती के साथ सुबह की शुरुआत। इस पावन मेला में भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचते हैं। केरल में शहर शहर ओणम की धूम 10 दिनों तक मनाया जाता है फसल का त्यौहार। केरल के पथान मथिट्टा में ओणम उत्सव से जुड़ी पवित्र और ऐतिहासिक नाव थिरुवोनाथोनी रवाना। ओणम उत्सव के दौरान इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बनने के लिए हजारों की संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। महाबली की कथा से जुड़ी हुई है ये सदियों पुरानी परंपरा। करनमुला मंदिर में ओणम के खास भोज के लिए रसोई की तैयारियां जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद मिलाद उल नबी की शुभकामनाएं दी। दिल्ली में ईद मिलाद उल नबी के अवसर पर जुलूस ए मोहम्मदी आयोजित किया गया। मुंबई में ईद उल मिलाद उन नबी पर लोगों ने अदा की नमाज। श्रीनगर में हजरत बल दरगाह पर ईद मिलाद उल नबी पर लोगों ने नमाज अदा की। छतरपुर में ईद मिलाद उन नबी का जश्न सुंदर सजावट के बीच रोशनी से जगमाया सड़कें। मुंबई में खेतवाड़ी की गली नंबर 11 में लगी गणपति बप्पा की सबसे ऊंची प्रतिमा साल नरसिम्हा अवतार में। 47 फीट ऊंची है मुंबई की महाराजा बप्पा की यह मूर्ति। 14 सितंबर से शुरू हो रहे हैं गणपति उत्सव की तैयारियां जारी। महाराष्ट्र के संभाजीनगर से आई हिंदू मुस्लिम भाईचारे की शानदार तस्वीर। ईद के मौके पर हिंदू समाज के लोगों ने जुलूस में शामिल लोगों को मिठाई खिलाई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पानी से भरे गड्ढे में गिरी कार में सवार लोगों का हुआ रेस्क्यू। मौके पर मौजूद लोगों ने जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई। उत्तर प्रदेश के संभल में जल्द शुरू होगा 24 कोसी परिक्रमा मार्ग का निर्माण। फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार करने में जुटे अफसर। बाबा बैद्यनाथ धाम के स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज। बाबा बैद्यनाथ के शीघ्र दर्शन निःशुल्क कर सकेंगे स्थानीय श्रद्धालु। शीघ्र दर्शन करने के लिए स्थानीय श्रद्धालुओं को नहीं देनी होगी 600 रुपए की फीस। अब वैध लोकल पहचान पत्र दिखाकर कर सकेंगे दर्शन। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान से बदल रही है युवाओं की जिंदगी। फिरोजाबाद के सतीश ने नौकरी छोड़कर शुरू किया अपना काम। अब हर महीने 20,000 से 25,000 कमाते हैं फिरोजाबाद के सतीश। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से राजधानी की महिलाओं को रक्षाबंधन पर बड़ा तोहफा। महिलाओं के लिए लक्ष्मी योजना का अप्रूवल पत्र। योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने आएंगे 2,500 रुपए। करीब 9,00,000 से ज्यादा महिलाओं ने अब तक किया रजिस्ट्रेशन। मुख्यमंत्री योगी ने लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का शुभारंभ कर दिया। उत्तर प्रदेश में 60 वर्ष से ज्यादा आयु की महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा। रक्षाबंधन के अवसर पर माताओं बहनों और बेटियों के लिए योगी सरकार का विशेष उपहार। महिलाओं के लिए उपलब्ध रहेंगी उत्तर प्रदेश रोडवेज की विशेष बसें। यूपी में श्रमिकों के लिए नियुक्ति पत्र का अनिवार्य। हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह का अगले 15 से 20 वर्षों के खतरों की पहचान अभी से करनी होगी। दिल्ली में राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड द्वारा सागर संवाद का आयोजन। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल शामिल हुए। कृषि विश्वविद्यालयों के 36वें वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। अगरतला में कृषि आधारित प्रदर्शनी में शामिल हुए त्रिपुरा के गवर्नर। आत्मनिर्भरता और खेती से ज्यादा आमदनी के लिए प्रेरित किया। स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत निपुण 31 अगस्त को नौसेना के बेड़े में होगा शामिल। नोएडा की सड़कों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी 17 साल की रोहिणी महिलाओं को देती हैं सिलाई कढ़ाई बुनाई की ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बाद महिलाओं को काम भी उपलब्ध कराती हैं रोहिणी। कपड़ा उद्योग से निकले कतरन से उपयोगी चीजें तैयार करती हैं रोहिणी। कतरन की उपयोगी चीजें बनाकर पर्यावरण की भी रक्षा करती हैं रोहिणी। काम की ट्रेनिंग मिलने और फिर रोजगार मिलने से सशक्त हो रही हैं महिलाएं। यहां काम करने वाली महिलाओं को हुनर और रोजगार मिलने के साथ साथ होने वाली आमदनी से सुधर रहा है उनका जीवन। दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है रॉकिंग स्टार यश की फिल्म टॉक्सिक। फिल्म यश के साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी नजर आएंगे। टॉक्सिक के साथ सिल्वर स्क्रीन पर रैश, पूरे 4 साल बाद उन्होंने की वापसी। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की अपकमिंग फिल्म द वन का धमाकेदार टीजर हुआ आउट, 25 सितंबर को देगी दस्तक। दर्शन के निर्देशन में बनी फिल्म हैवान का ट्रेलर हुआ आउट, 18 साल बाद फिर बड़े पर्दे पर नजर आएंगे अक्षय कुमार सैफ अली खान। इमरान हाशमी की फिल्म गनमास्टर G9 का टीजर हुआ आउट, इमरान हाशमी के साथ मुख्य भूमिकाओं में हैं जनरल लिया देशमुख और अपार शक्ति खुराना। बीजिंग में ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने पहली बार रस्साकशी में दम दिखाया, दो दो रोबोट की टीमें आमने सामने। रोबोट्स को उनके वजन के हिसाब से दो वर्गों में बांट दिया गया, हल्के और भारी रोबोट्स ने अपनी अपनी कैटेगरी के मुकाबला किया। रोबोट्स फुटबॉल और रेस जैसे इंसानी खेल भी लगातार खेल रहे हैं। इन खेलों का मकसद ये दिखाना है कि रोबोट असली इंसान की तरह कितना काम कर सकते हैं। रोबोट्स को फैक्ट्री, रेस्टोरेंट्स और ऑफिस जैसे माहौल में भी बरखा गया, मुश्किल हालात और इमरजेंसी में काम करने में माहिर। वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में कुल 51 इवेंट्स रखे गए, आज होगा इवेंट का समापन। अर्जेंटीना में टैंगो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो गई है शुरू, दुनिया भर के 800 से ज्यादा कपल डांस इस मुकाबले में हिस्सा ले रहे। हर जोड़ी शानदार डांस के जरिए जजों को प्रभावित करने में जुटी हुई है, बहुत रोमांचक है मुकाबला। अर्जेंटीना के अलावा कई देशों से डांसर्स इस प्रतियोगिता में पहुंचे, कुछ कपल्स ने अलग अलग देशों में हुए क्वालिफाइंग मुकाबलों के जरिए जगह बनाई। एक और 2 सितंबर को खेले जाएंगे टैंगो चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले, विजेता बनने के लिए कपल्स अब सेमीफाइनल्स में अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं। यह महोत्सव दुनिया के सबसे बड़े टैंगो आयोजन में गिना जाता है, 19वीं सदी के आखिर में हुआ था डांस की सुविधा का इजाद।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती हैं।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है।
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
7: रक्षाबंधन पर देश के कई राज्यों में बहनों के लिए उपहार का ऐलान किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया के जरिए 3 बड़ी योजनाओं की घोषणा कर दी है। इसके मुताबिक देखिए, पुलिस दीदी यानी अभिया ब्रिगेड के लिए 4,700 स्कूटर और मोटरसाइकिल का लोकार्पण और फ्लैग ऑफ किया जाएगा। इन वाहनों का इस्तेमाल स्कूल और कॉलेज जाने वाली छात्राओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए किया जाएगा। साथ ही साथ बता दें, छात्राओं को 10,000 रुपए की PhD फेलोशिप मिलेगी। करीब 1,000 छात्राओं को 4 साल तक ये फेलोशिप दी जाएगी। कारोबार और स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना भी शुरू कर दी जाएगी। इस योजना के तहत 50,000 से 2,00,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। और इन सब के अलावा रक्षाबंधन के अवसर पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से 27 और 28 अगस्त को महिलाओं और छात्राओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी जाएगी। देखिए, रक्षाबंधन पर बिहार के अलावा कई दूसरे राज्यों भी लड़कियों और महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा की घोषणा कर दी गई है। अब तो उनमें देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 27 अगस्त से 29 अगस्त तक लड़कियों को महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा सुविधा देने का ऐलान कर दिया है, जिसमें देखिए एक सहयात्री भी इसमें शामिल रह सकता है। उत्तराखंड सरकार ने 28 और 29 अगस्त को रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा उपलब्ध करा दी है। हरियाणा में राज्य परिवहन साधारण बसों में महिलाओं के लिए सफर मुफ्त हो जाएगा। 27 की दोपहर 12 बजे से लेकर 28 अगस्त की रात 12 बजे तक बहनों के लिए इस सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। महिलाओं के लिए 15 वर्ष तक के बच्चों को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा। इसमें देखिए, हरियाणा के साथ ही चंडीगढ़ और दिल्ली तक की यात्रा भी शामिल है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान सरकार ने 28 और 29 अगस्त को साधारण और एक्सप्रेस बसों में लड़कियां और महिलाओं के लिए राज्य की सीमा के भीतर मुफ्त सफर का ऐलान कर दिया है। यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म टॉक्सिक बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है और रिलीज के साथ ही फैंस का एक्साइटमेंट भी अपने पीक पर पहुंच चुका है। मुंबई हो या हैदराबाद, बेलगावी हो या फिर दक्षिण भारत के दूसरे शहर, सिनेमा घरों में उसके बाहर जो है सुबह से ही फैंस की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। कहीं यश के विशाल पोस्टर्स नजर आ रहे हैं तो कहीं पर फैंस अपने फेवरेट स्टार के कटआउट के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं।

0: स्टार पावर क्या होती है, सिनेमाघरों के बाहर सड़कों पर सेलिब्रेशन की तस्वीरें बयां कर रही हैं। चार साल के लंबे इंतजार के बाद साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म टॉक्सिक रिलीज हुई तो बेंगलुरु से मुंबई तक यश के फैंस खुशी से झूम उठे। बेंगलुरु के नर्तकी थिएटर के बाहर का ये नजारा बताने के लिए काफी है कि सेलिब्रेशन का आलम कैसा है। फिल्म के रिलीज से पहले ही बड़ी संख्या में फैंस थिएटर्स के बाहर पहुंच चुके हैं। फूलमाला से लकदक यश के विशाल कटआउट्स और पोस्टर फैंस का मानो हौसला बढ़ा रहे हों। ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के बीच नाचते गाते फैंस का जोश ऐसा था मानो फिल्म की रिलीज नहीं कोई बड़ा त्योहार मनाया जा रहा हो। थिएटर्स के अंदर का नजारा भी बाहर से कुछ कम नहीं था। स्क्रीन पर फिल्म चलती रही और फैंस ने इसे अपने मोबाइल कैमरों में रिकॉर्ड किया। बड़ी देर तक फैंस अपनी अपनी सीटों से खड़े होकर यश को स्टैंडिंग ओवेशन देते भी नजर आए।
1: यश एक बार फिर रॉकिंग स्टार बनके पूरी तरह छा जाते हैं। एक्शन हो या डायलॉग बाजी वो कम्प्लीटली अपने एलिमेंट में है, लेकिन जब कैरेक्टर वल्नरेबल होता है तब आपको स्टार पावर के पीछे का एक्टर भी नजर आता है। यश का चार्म और करिश्मा इतना मैग्नेटिक है कि स्क्रीन पर उनसे नजर हटाना मुश्किल है और गीतू उन्हें ऐसा कैरेक्टर देती है जहां वो दोनों साइड्स को एक्सप्लोर कर पाते हैं। यश का डबल रोल भी है और जहां राया आपका प्यार गुस्सा और सिंपथी सब जीत लेता है वही टिकट के साथ ऐसा नहीं होता है और क्यों ये आप सब फिल्म देखकर ही समझ जाएंगे।
0: कर्नाटक के रायचूर में टॉक्सिक के रिलीज का जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। सिनेमा घरों के बाहर सुबह से ही फैंस की भारी भीड़ जुटी हुई थी। आलम ये था कि फिल्म का पहला शो पूरी तरह से सुपरहिट रहा। यश कन्नड़ फिल्म स्टार हैं, लिहाजा कर्नाटक के सभी सिनेमा हॉल्स फर्स्ट डे फर्स्ट शो में हाउसफुल नजर आए। बेलगावी के चंदन सिनेमा हॉल में भी फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा। टॉक्सिक को लेकर फैंस की दीवानगी साफ बता रही है कि अपने चहेते रॉकी भाई की स्क्रीन पर वापसी का उन्हें कितना बेसब्री से इंतजार था।
2: बहुत बहुत खुशी है सर, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं।
3: एक्सपेक्टेशंस
2: से ज्यादा वो क्या ब्लॉकबस्टर होगा क्या कंफर्मेशन है।
4: हम लोग फर्स्ट डे फर्स्ट ही देखते हैं और अभी तक तो अंदर गए नहीं रॉकी भाई के लिए, अब अंदर जाते ही धूम मचाना है बस।
0: हैदराबाद के सुदर्शन थिएटर के बाहर का नजारा तो कर्नाटक के सिनेमाघरों जैसा जोशीला नहीं था, लेकिन न तो सिने प्रेमियों के जोश और उत्साह में कोई कमी थी और न ही उनकी तादाद किसी भी लिहाज से कम नजर आई। मुंबई में भी टॉक्सिक की रिलीज के साथ ही सिनेमाघरों के बाहर यश के फैंस का जोश देखने को मिला। मिराज थिएटर में फैंस अपने पसंदीदा स्टार के फर्स्ट शो को देखने के लिए पहुंच गए। कहीं पोस्टर और कटआउट्स नजर आए तो कहीं फैंस ने नारे लगाकर अपने एक्साइटमेंट जाहिर की।
1: सच कहें तो टॉक्सिक एक ब्रदर सिस्टर की कहानी है, फादर सन की भी कहानी है और एक लव स्टोरी भी, लेकिन इनमें से कोई भी वैसी नहीं है जैसे हम बुक्स में पढ़ते आए हैं। टाइटल की तरह ही ये ग्रोनअप्स के लिए एक फेरी टेल है। सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, कंफ्यूजिंग है, उदास है, गुस्सा है और बेसिकली टॉक्सिक है।
0: टॉक्सिक एक पीरियड गैंगस्टर ड्रामा मूवी है जो गोवा के ड्रग माफिया और अंडरवर्ल्ड की डार्क दुनिया को दिखाती है। इस एक्शन थ्रिलर में यश राया रूमी के दमदार और इंटेंस अवतार में है। फिल्म में यश के साथ पांच हीरोइंस हैं, नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, रुक्मणी वसंत और हुमा कुरैशी, यानी बॉलीवुड और साउथ का पूरा संगम।
5: सुपरस्टार यश, रॉकिंग स्टार यश जो है वो पूरी फिल्म के कर्ता धरता है, उन्हीं के कंधों पर पूरी फिल्म को चलना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 80% ऑफ द स्क्रीन टाइम उनका है और उन्होंने अपना काम बखूबी तरीके से किया है। फर्स्ट हाफ में उनका एक अलग प्रकार का किरदार है, सेकंड हाफ में एक अलग प्रकार का किरदार है, तो वो शेड देख के मुझे अच्छा लगा।
0: करीब 500 करोड़ के मेगा बजट में बनी टॉक्सिक को पैन इंडिया प्रोजेक्ट के तौर पर डिजाइन किया गया है जिसमें इंटरनेशनल अपील है और इसकी रिलीज डेट भी काफी सोच समझ कर रखी गई। 26 अगस्त जब ओणम के त्योहार की धूम है, इसके बाद 28 अगस्त को रक्षाबंधन और वर महालक्ष्मी का फेस्टिवल मनाया जाएगा और उसके बाद वीकेंड यानी ये हफ्ता तो टॉक्सिक के लिए पूरी तरह से पैसा वसूल साबित होने वाला है। मुंबई से सना फरजीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: क्या आपका तालमेल आपके बॉस के साथ अच्छा नहीं रहता? किसी भी नौकरी में उच्चाधिकारियों के साथ संबंधों की दिक्कत हो जाती है? कौन से ग्रह बैठाते हैं सामंजस्य, बनाते हैं तालमेल, जानिए मेरे साथ।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
9: नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद मिशन जिंदगी तेज, प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से की बात, भारत की ओर से भेजा जा रहा राहत सामान, यूपी बिहार में प्रशासन अलर्ट। यूपी की 50,000 बेटियों को मिलेगी स्कूटी, सीएम योगी का ऐलान, अक्टूबर या नवंबर में शुरू होगी रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, मुंबई के महाराजा नाम से मशहूर करीब 47 फीट के बप्पा का आगमन, नरसिंह रूप में विराजमान है गणपति। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज, अब मंदिर में मिलेगी निःशुल्क शीघ्र दर्शन की सुविधा, प्रशासन के फैसले से लोगों में खुशी। फतेहपुर के ठाकुरबाड़ी मंदिर में झूलनोत्सव की धूम, भगवान कृष्ण और राधा को पालने में झुलाया गया झूला, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी।
9: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। राखी का त्यौहार सभी भाई बहनों के लिए खास होता है। बहन अपने भाई के लिए राखियां खरीदती है और अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। अब परसों राखी है और राखी के लिए बाजार सज चुके हैं। ऐसे में आज की हमारी जो पहली गुड न्यूज है वो है राखी के रंग अनेक। जी हाँ, आपको बता दें कि अलग अलग रंग और डिजाइनों की राखियों से बाजार सज चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड डिजाइनर राखियों की है। वहीं इंदौर के खजराना गणेश जी के लिए विशाल राखी तैयार हो चुकी है।
13: भाई बहनों के बीच अटूट प्यार का त्योहार राखी में अब चंद दिन ही बचे हुए हैं। ऐसे में राखी के बाजारों में रौनक है। अलग अलग रंग और डिजाइन की राखियों से मार्केट गुलजार है। यहाँ की दुकानों पर पारंपरिक राखियों से लेकर अलग अलग नए डिजाइन वाली राखियाँ बहनों को लुभा रही हैं। इंदौर में रक्षाबंधन के अवसर पर इस बार भगवान खजराना गणेश को विशाल 40 इंच बाई 40 इंच की भव्य सनातन राखी अर्पित की जाएगी। पिछले 24 सालों से सामाजिक और धार्मिक कार्यों में सक्रिय पाल रेचा परिवार द्वारा तैयार की जा रही इस विशेष राखी में सनातन संस्कृति, राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक संदेशों को समाहित किया गया है। ये राखी करीब 2.5 महीने की मेहनत से तैयार हुई है और इसमें देश के विभिन्न सांस्कृतिक केंद्रों से मंगवाई गई विशेष सामग्री का उपयोग किया गया है।
14: 25 सालों से पालरेचा परिवार द्वारा बनाई गई राखी खजराना गणेश जी को राखी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त के दिन अर्पित की जाएगी। यह 40 बाई 40 इंच की राखी विश्व की सबसे बड़ी राखी है। हम लोग हर साल एक थीम बेस राखी बनाते हैं और वंदे मातरम को जो 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं उसको हमने दर्शाते हुए एक सनातन धर्म पर राखी बनाई है।
13: इस वर्ष राखी की थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने पर आधारित है। राखी में भगवान जगन्नाथ, बाबा महाकाल, माँ वाग्देवी, महाकाली और महालक्ष्मी के स्वरूपों के माध्यम से राष्ट्र गौरव, सनातन संस्कृति, समृद्धि, शक्ति और सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया गया है। पुरी में भी भगवान जगन्नाथ के लिए विशाल राखी तैयार की गई है जिसे उन्हें रक्षाबंधन के दिन पहनाया जाएगा। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन के लिए विशेष पारंपरिक और भव्य राखियां तैयार की जाती हैं। ये विशेष राखियां पासुंगा पाट नाम की पवित्र रेशमी कपड़े और पारंपरिक प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती हैं।
15: उन्होंने जगन्नाथ जी महाप्रभु 2 राखी परिधान करेंगे और बलभद्र महाप्रभु 2 राखी परिधान करेंगे। इसका साथ में 2 माला भी, सुपारी माला भी परिधान करेंगे। ये हम इसको चिताला की अमावस्या से शुरू करते हैं। इसमें हम बनाने के लिए 10-12 दिन लगता है। ये अभी काम कंप्लीट हो गया है।
13: महाराष्ट्र के अकोला के बाजार भी रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर सजे हैं। अपने भाइयों के लिए राखी पसंद करने दुकानों पर बहनों की भीड़ जुट रही है। यहाँ की दुकानों पर पारंपरिक राखियों से लेकर मॉडर्न डिजाइन वाली राखियाँ मौजूद हैं।
16: भाई बहन के पवित्र रक्षाबंधन के त्योहार के लिए जो है बाजारों में जो है दुकान यहाँ पर लग चुके हैं राखियों के। एक सुंदर सुंदर राखियाँ जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है संपूर्ण दुकान में लगी हुई है। और ये जो राखी है ये जो है मोतियों की राखी है, कोई रुद्राक्ष वाली है, कोई माला वाली यहाँ पर राखी यहाँ पर दिखाई दे रही है।
13: भाई भाभी के लिए कपल राखी तो बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली राखियाँ। इन सब के अलावा डायमंड लुक वाली राखी, रिंग राखी और ज्वेलरी डिजाइन की राखियाँ भी दुकानों में मिल रही हैं। कोई बहन अपने भाई के लिए राखी पसंद कर रही है तो किसी ने खरीद भी ली है। अकोला से लेकर अलवर तक में राखियों की दुकानें सजी हुई हैं। राजस्थान के अलवर की राखियों की डिमांड विदेशों तक है। हजारों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर इस कारोबार से जुड़े रहते हैं। यहाँ की राखियाँ देखने में सुंदर होने के साथ ही सस्ती भी मिलती हैं।
17: मैं इस समय एक गोदाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर तरह तरह की राखियाँ हैं। मैं दिखाना चाहूंगा ये कार्टून कैरेक्टर की राखियाँ हैं। ये राखियों के साथ ही इरेजर का भी काम करती हैं। छोटे बच्चों को ये राखियाँ खास पसंद आ रही हैं, जिसमें अलग अलग तरह के डिजाइंस, एस्ट्रोनॉट तरह के जो कार्टून कैरेक्टर होते हैं उन कैरेक्टर के रूप में इनको तैयार किया गया है। और इन राखियों को रक्षाबंधन के बाद बच्चे अपने बैग, स्कूल बैग में भी काम में ले सकते हैं। इरेजर का ये काम करेंगी। इसके अलावा तरह तरह की राखियां कार्टून कैरेक्टर के रूप में, लाइट वाली राखियां, म्यूजिक वाली राखियों की डिमांड।
13: यहाँ के बाजार में 1 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की अलग अलग तरह की आकर्षक राखियां मिल रही हैं। इस बार विशेषकर बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर, लाइटिंग और म्यूजिक के साथ ही पतली डोरे वाली राखियों की डिमांड सबसे ज्यादा है। अलवर की शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में राखियां बनाई जाती हैं, जिसके चलते यहां 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा, अकोला से धनंजय साबले और अलवर से

हमें श्रद्धालु जुटते हैं, लिहाजा यहां पर अभी से मंदिर को सजाने का काम शुरू हो चुका है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है श्री कृष्ण जन्मोत्सव के लिए सज रहा इस्कॉन। आपको बता दें कि जन्माष्टमी के लिए इस्कॉन मंदिर को रंग बिरंगी खूबसूरत लाइटों से सजाया जा रहा है। वहीं राजकोट के रेस कोर्स ग्राउंड में होने वाले सौराष्ट्र के सबसे बड़े जन्माष्टमी लोक मेले की तैयारियां भी आखिरी दौर में पहुंच चुकी है।

0: भगवान श्री कृष्ण के भव्य जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में विशेष तैयारी की जा रही है। दरअसल ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित इस्कॉन मंदिर में भव्य तरीके से जन्माष्टमी का आयोजन किया जाता है, जिसको लेकर यहां महीनों पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस साल 4 सितंबर को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाने वाला है, जिसके लिए इस्कॉन मंदिर में भव्य तैयारियां अभी से ही शुरू हो चुकी हैं। मंदिर को सजाया सवारा जा रहा है। मंदिर को खूबसूरत रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। इस मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर लाखों श्रद्धालु जुटते हैं। ऐसे में उन्हें यहाँ किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए विशेष इंतजाम अभी से ही किए जा रहे हैं।
1: आगामी 4 सितंबर को इस्कॉन मंदिरों में जन्माष्टमी मनाई जानी है, जिसको लेकर भव्य तैयारियां शुरू कर दी गई है। अभी हम दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित इस्कॉन मंदिर में हैं और यहां पर भी 4 सितंबर को जन्माष्टमी मनाई जाएगी, जिसको लेकर के यहां पर तैयारियां की जा रही है। पूरे मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है और उसको लेकर टेंट लगाए जा रहे हैं, अन्य सजावट की जा रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से टेंट वगैरह आपको लगाया जा रहा है। अलग अलग कपड़ों से, प्लास्टिक के ऊपर, उसके नीचे सब कपड़ों के लगाए जा रहे हैं।
0: मंदिर परिसर में विशेष पंडाल बनाया जा रहा है और इसके लिए जन्माष्टमी के मौके पर श्रद्धालुओं को मंदिर में क्या क्या लेकर आना वर्जित है, इसके लिए भी बाकायदा बोर्ड लगाए गए हैं। इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी पर भव्य उत्सव का आयोजन होता है, जिसमें लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं, जिसे लेकर करीब 2 महीने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। इधर गुजरात के राजकोट के रेस कोर्स ग्राउंड में होने वाले सौराष्ट्र के सबसे बड़े जन्माष्टमी लोक मेले की तैयारी भी अपने आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। हर साल की तरह इस साल भी आम जनता से यहां पर लगने वाले मेले के नाम मंगाए गए थे। हजारों नामों में से इस बार मेले का नाम विरासत से विकास लोक मेला रखा गया है। जन्माष्टमी के मौके पर लगने वाले इस मेले के लिए 10 करोड़ रुपए का पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस और 2 करोड़ रुपए का इवेंट कैंसिलेशन इंश्योरेंस लिया गया है।
2: मेले के तमाम टेंडर्स जो हैं, सिक्योरिटी, ड्रोन, वीडियोग्राफी, सिविल वर्क तथा मंडप की कामगिरी जो है, उन सबके टेंडर जो है वो पूर्ण हो चुके हैं। डिजास्टर को ध्यान में रखते हुए मेले के लिए 10 करोड़ का पब्लिक लायबिलिटी का इंश्योरेंस और 2 करोड़ का इवेंट कैंसिलेशन का इंश्योरेंस है, वो ले लिया गया है। मेले में डिजास्टर को प्राइम इंपॉर्टेंस देते हुए एक सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स के ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज जो हैं वो रहेंगे।
0: 2 से 6 सितंबर तक चलने वाले इस मेले में 228 स्टॉल्स होंगे और लोग 34 बड़ी मैकेनिकल राइड्स का मजा भी ले सकेंगे। मेले का उद्घाटन 2 सितंबर को नेवी बैंड के साथ होगा और मेले में 5 दिनों में लोग 6 मशहूर कलाकारों के साथ 40 लोकल कलाकारों की परफॉर्मेंस भी देख पाएंगे। 5 दिन के दौरान इस मेले में 10 से 12 लाख लोगों के आने का अनुमान है। यहाँ आने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। क्राउड कंट्रोल के लिए लोक मेले में ड्रोन द्वारा AI बेस्ड सर्विलांस सिस्टम से निगरानी का इंतजाम किया गया है। इस मेले का काफी महत्व है, क्योंकि यहाँ सिर्फ राजकोट से नहीं बल्कि पूरे सौराष्ट्र और गुजरात भर से लोग मेले का आनंद उठाने आते हैं। दिल्ली से आशुतोष कुमार और राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: मुंबई में अब गणेशोत्सव का उल्लास दिखने लगा है। बप्पा की प्रतिमाएं पंडाल में लाई जा रही हैं। बड़ी संख्या में लोग गजानन के स्वागत के लिए पहुंच रहे हैं। ढोल ताशा के साथ बप्पा के आगमन का जश्न मनाया जा रहा है। हर गणपति प्रतिमा की अलग अलग खूबियां हैं। खेतवाड़ी के लंबोदर में बप्पा को एक किसान के रूप में दिखाया गया है। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है, पंडालों में विराजने लगे बप्पा।

0: गणेशोत्सव में अभी कुछ दिन बाकी है, लेकिन मुंबई में इन दिनों हर तरफ इसी पर्व के रंग बिखरे हुए हैं। एक एक करके बापा की प्रतिमाएं अपने पंडाल में विराजमान हो रही हैं। मुंबई के सबसे चर्चित गणेश पंडालों में से एक खेतवाड़ी चालंबोदर मंडल के गणपति बप्पा भी अपने पंडाल में पधार चुके हैं। बप्पा की इस प्रतिमा की ऊंचाई करीब 32 फीट है और यहाँ भगवान गणेश को एक किसान के रूप में दिखाया गया है। समाज में एक शुभ संदेश देने के मकसद से खेतवाड़ी चालंबोदर मंडल ने इस बार किसान बचाओ थीम पर पंडाल सजा रखा है। खेतवाड़ी चालंबोदर मंडल इस बार अपनी 68वीं सालगिरह मना रहा है और यही वजह है कि बापा की प्रतिमा पहले ही स्थापित कर दी गई है ताकि पंडालों की साज सज्जा का काम पूरी तसल्ली से और बेहतरीन ढंग से हो सके। मुंबई में इन दिनों एक एक करके अलग अलग इलाकों में गणपति प्रतिमाओं के आने का सिलसिला जारी है। अब भक्तों को बेसब्री से इंतजार है गणेश चतुर्थी पूजन का, जिसके बाद 10 दिनों तक बप्पा अपने भक्तों के बीच विराजमान रहेंगे और श्रद्धालुओं को गजानन की आराधना का अनुपम अवसर मिलेगा।
1: गणेश उत्सव की तैयारी मुंबई में जोरों शोरों से शुरू है। खासियत यह है कि बड़ी बड़ी प्रतिमाएं जो हैं वो पंडालों में लानी शुरू हो गई है। मेरे पीछे आप एक सक्रिय गली देख रहे हैं, बड़ी छोटी सी गली है, इसी से उस बड़ी प्रतिमाओं को लाया गया है और पंडाल में स्थापित किया गया है। खास बात यह है कि मैं जहां मौजूद हूं, इलाके का नाम है खेतवाड़ी और यहां पर इस तरह की जो छोटी छोटी गलियां हैं कई हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 6 7, फिलहाल मैं 4थी गली में हूं जहां के बप्पा इस समय लाए गए हैं और विराजमान कर दिए गए हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि खेतवाड़ी के लंबोदर के दरबार में इस समय मौजूद हूं और एक दो दिन पहले ही बप्पा को यहां पर बकायदा धूमधाम से लाया गया है। देखिए कितना विशाल स्वरूप, कितना विशाल रूप बप्पा का यहां पर देखने मिल रहा है। खास बात यह है कि इस तरह से जो लंबी लंबी प्रतिमाएं गणेश जी की होती हैं उनके साथ बहुत बढ़िया बढ़िया थीम भी लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए रखी जाती है। इस बार की जो थीम है खेतवाड़ी के लंबोदर की, शेतकरी मराठी वर्ड है जिसको हिंदी में कहते हैं कि किसान। किसान अक्सर ही जो है अपने बोझ तले जो लोन लिए रहते हैं, आत्महत्या जैसी कोशिश करते हैं, ऐसी जो घटनाएं हैं उन पर रोक लगाने के लिए एक अच्छी नीयत के साथ किसान का रूप लेकर के बप्पा को यहाँ विराजमान किया गया है।
0: केरलम की जीवन परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और अन्नदाताओं की समृद्धि का उत्सव ओणम धूमधाम से मनाया जा रहा है। 24 अगस्त से शुरू हुए इस उत्सव में राजधानी तिरुवनंतपुरम समेत पूरे राज्य में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो 4थी गुड न्यूज है वो है मन रहा अन्नदाताओं का समृद्ध उत्सव ओणम। आपको बता दें कि उमंगों से सजा ये पर्व जीवन में नई खुशियां, समृद्धि और सुख शांति लेकर आता है और इस बार ओणम के मौके पर कॉलेज कैंपस में स्टूडेंट्स और टीचर्स इस त्योहार के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। कहीं फूलों की रंगोली की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तो कहीं पारंपरिक खेलों का मुकाबला नजर आया।
2: केरल में आज रंग है, उमंग है, खेतों से लेकर कैंपस तक और परंपरा से लेकर सोशल मीडिया तक हर तरफ बस ओणम का रंग चढ़ा हुआ है। कहीं फूलों की खुशबू है, कहीं गीतों की गूंज है, कहीं ढोल की थाप है तो कहीं पारंपरिक परिधानों में झूमता युवा जोश है। यानी पूरा केरल आज ओणम के जश्न में डूबा है। ये वही ओणम है जिसका इंतजार हर मलयाली साल भर करता है। मान्यता है कि 10 दिनों तक चलने वाले इस त्यौहार में राजा महाबली अपनी प्रजा से मिलने धरती पर आते हैं और अपने प्रिय राजा के स्वागत में पूरा केरल सज उठता है। घरों के आंगन में फूलों से खूबसूरत उकलम सजता है, गीतों की गूंज सुनाई देती है और केले के पत्ते पर परोसी जाने वाली स्वाद से भरपूर साध्या के साथ त्यौहार की खुशियाँ और भी बढ़ जाती हैं।
3: आज कई सारे लोग न कि सिर्फ केरला में या भारत में, कई देशों में ओणम के त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। ओणम केरला का एक बहुत ही खूबसूरत और महत्वपूर्ण त्योहार है। ये 10 दिनों के लिए ये त्योहार मनाई जाती है और ये सारे के सारे 10 दिनों एक तरफ फूलों के साथ कोलम लगाते हैं और दूसरी तरफ हर तरह का व्यंजन, पायसम, सब कुछ लोग बहुत ही खुशी के साथ पकाते हैं।
2: लेकिन इस बार ओणम की सबसे खूबसूरत और दिलचस्प तस्वीरें केरल के कैंपस से सामने आ रही हैं। कहीं फूलों से खूबसूरत पुकल्लम बनाने की होड़ है, कहीं ओणम गेम्स का रोमांच है, तो कहीं रस्सा कशी में पूरा कैंपस एक टीम बनकर अपनी ताकत और जोश दिखा रहा है। लड़के हों या लड़कियां, पारंपरिक परिधानों में सजे छात्र छात्राएं कभी खेल के मैदान में अपना दम दिखा रहे हैं, तो कभी दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हुए ओणम के इस खूबसूरत पलों को कैमरे में कैद कर रहे हैं। और यही तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर पहुंचती हैं, तो ओणम का रंग और भी नया हो जाता है। रील्स बन रही हैं, सेल्फी क्लिक हो रही हैं और ट्रेंडिंग म्यूजिक के साथ युवा अपने अंदाज में इसकी खुशियां मना रहे हैं।
3: ओणम का त्योहार हार्वेस्ट सीजन का एक शुरुआत मनाया जाता है और ये जो त्योहार एक तरफ हार्वेस्ट सीजन का माना जाता है, दूसरी तरफ राजा महाबली का घर वापसी का भी एक तरफ से ये ओणम का तैयारियां करते हैं।
2: बदलते वक्त के साथ त्योहार मनाने का अंदाज जरूर बदला है। अब हाथों में फूलों के साथ कैमरा भी है, पुकल्लम के साथ रील्स भी हैं और पारंपरिक गीतों के साथ सोशल मीडिया का ट्रेंडिंग म्यूजिक भी है। लेकिन इन सबके बीच एक चीज आज भी बिल्कुल नहीं बदली और वो है अपनों के साथ खुशियां बांटने का जज्बा। यही तो है केरल का ओणम, जहाँ परम्परा के रंग है, नई पीढ़ी का जोश है, सेलिब्रेशन का अपना अलग अंदाज है और हर चेहरे पर अपनों के साथ खुशियां बांटने की चमक है। महाबली के स्वागत में सजा ये केरल आज भी कह रहा है ओणम आया है, खुशियां लाया है और हर दिल को अपनी रंग में रंग गया है। शिवी मोल केजी, गुड न्यूज टुडे, तिरुवनंतपुरम।
0: और पहाड़ों में मॉनसून के बीच भी चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बना हुआ है। इस वर्ष बद्रीनाथ धाम की यात्रा ने पिछले वर्ष 2025 के रिकॉर्ड को अगस्त महीने में ही पीछे छोड़ दिया है। पिछले साल बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद होने तक कुल 16,60,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। वहीं इस वर्ष 24 अगस्त तक ही 16,61,000 से ज्यादा यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि पांचवी गुड न्यूज इसी से जुड़ी है। चुनौतियों के पार बद्रीनाथ धाम में पर्यटन अपार। बद्रीनाथ धाम में पिछले वर्ष की पूरी यात्रा का रिकॉर्ड इस बार अगस्त में ही टूट गया है। इस साल बद्रीनाथ धाम में अब तक 16,61,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जो कि पिछले साल 16,60,224 श्रद्धालुओं से कहीं ज्यादा है, जबकि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर मध्य तक यात्रा का समय शेष है। ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। मॉनसून के बीच यात्रा मार्गों पर बारिश और चुनौतियों के बावजूद श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बद्रीनाथ धाम में यात्रा नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ रही है। श्रद्धालु इस बार यात्रा व्यवस्था, दर्शन और मार्गों को लेकर भी संतोष जताते नजर आ रहे हैं। वहीं चमोली के जिलाधिकारी के मुताबिक इस वर्ष यात्रा बहुत अच्छी तरह से संचालित हो रही है और श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन लगातार व्यवस्थाओं पर नजर बनाए है। जिस प्लास्टिक को हम इस्तेमाल के बाद बेकार समझकर फेंक देते हैं, उसी से अब पार्कों के बेंच, डस्टबिन और रोजमर्रा के काम आने वाली चीजें तैयार हो रही हैं। ये कमाल किया है दिल्ली के एक दंपत्ति ने, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए एक नया स्टार्टअप शुरू किया है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। प्लास्टिक के पुनर्जन्म से साफ होगा पर्यावरण। जी हाँ, दिल्ली की रहने वाली सोनल और उनके पति ने मिलकर ई कॉन्शियस नाम का स्टार्टअप शुरू किया है, जिसका मकसद पहले से पैदा हो चुके प्लास्टिक कचरे को रीसाइकल करके ऐसी चीजें तैयार करना है जिनका इस्तेमाल सार्वजनिक जगहों पर किया जा सके।
4: ये जो खूबसूरत टेबल, बेंच और रंग बिरंगे गमले आप देख रहे हैं, इन्हें देखकर शायद ही कोई अंदाजा लगा पाए कि इनका सफर प्लास्टिक के कचरे से शुरू हुआ है। बेकार समझे जाने वाले प्लास्टिक को ऐसा रूप दिया गया कि अब ये बेहद खूबसूरत नजर आ रहे हैं।
5: पीछे भी और जिसपे मैं बैठी हूँ और आसपास भी देख सकते हैं कि आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दिख जाएगी जो उसी प्लास्टिक के कचरे से जो है बनी है। इसकी जो शुरुआत हुई है उसी प्लास्टिक के कचरे से हुई है, जिसको आप और मैं बेकार समझकर जो है फेंक देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर बेंचेस जो है वो नजर आ जाएगी, आपको टेबल नजर आ जाएगी, आपको बहुत सारी यहाँ पर जो है चीजें नजर आने वाली है जो कि रिसाइकल प्लास्टिक से जो है वो बनाई गई है।
4: आम सोच यही है कि इस्तेमाल के बाद प्लास्टिक हमारे लिए कचरा बन जाता है, लेकिन सही तरीके से रिसाइकिल किया जाए तो यही कचरा दोबारा उपयोगी भी बन सकता है। दिल्ली की रहने वाली सोनल और उनके पति ने इसी सोच को अपना मिशन बनाया हुआ है।
6: हमारा थॉट था इनिशियली कि हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे घरों को ब्यूटिफाई कर सकें, बट फिर हमें समझ में आया कि हम सिर्फ प्लास्टिक को कन्वर्ट करके एक प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, हम लोगों में एक ऐसी हैबिट लेके आना चाहते हैं जो नॉट जस्ट रिसाइकलिंग बस रीड्यूस और रीयूज के कॉन्सेप्ट को भी हम आगे लेके आए. सो हमने इकॉन्शियस लिया, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इको कॉन्शियस जो हमें बताता है कि हमें हर एक चीज़, कोई भी प्रोडक्ट हमें खरीदना हो, फेंकना हो, हम उसको कॉन्शियसली एक थॉट प्रोसेस के साथ में लेके चले.
7: दोनों ने मिलकर एक ऐसा स्टार्टअप शुरू किया जिससे प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल कर उसे दोबारा उपयोगी बनाया जा सके. इसी सोच के तहत प्लास्टिक कचरे से ऐसी चीजें तैयार की जा रही हैं जिन्हें आसानी से इस्तेमाल किया जा सके.
8: इसके पीछे का हमारा थॉट था कि अब जो वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है या इस टाइप के कोई और इवेंट है जहाँ पे इस टाइप का प्लास्टिक इकट्ठा होता है, तो अब वो उसको हम मतलब किसी तरीके के वो इकट्ठा करके उनको ही कन्वर्ट करके हम कुछ स्कूल के बेंचेस हम बनाए, वहाँ के लिए पार्कों के लिए बेंचेस बनाए, तो इस पे हम काम कर रहे हैं.
7: इनके बनाए प्लास्टिक के कचरे से पार्कों और स्कूलों के लिए बेंच तैयार किए जाते हैं. इसके अलावा डस्टबिन और कई तरह के दूसरे प्रोडक्ट भी बनाए जा रहे हैं.
5: पीछे आप डस्टबिन देख सकते हैं कि इसी प्लास्टिक के कचरे से जो है ये डस्टबिन जो है वो तैयार किया गया है, वेट वेस्ट के लिए अलग और ड्राई वेस्ट के लिए अलग. और ऐसी भी तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये लोग जो है बनाते हैं रिसाइकल प्लास्टिक से.
7: खास बात यह है कि इस काम के लिए घरों और हाउसिंग सोसाइटी से प्लास्टिक कचरा इकट्ठा किया जाता है, यानी जिस प्लास्टिक को लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं वही आगे चलकर किसी सार्वजनिक जगह की जरूरत पूरी करता है. दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे.
0: रक्षाबंधन का पावन पर्व देश भर में खुशी, प्यार और मिठास की नई बहार लेकर आया है. हर तरफ उमंग, तरंग और उत्साह का माहौल है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार राखी का रंग कुछ खास ही निखरा हुआ है. इसकी वजह भी है भाई के तोहफे से पहले ही प्रदेश की मातृशक्ति को सरकार की तरफ से कई सौगातें मिल चुकी हैं. ऐसे में हमारी आज की सातवीं और आखिरी गुड न्यूज, रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए तोहफे ही तोहफे. जी हां, यूपी में अब 7 साल या उससे अधिक उम्र की बुजुर्ग महिलाएं राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा कर सकेंगी. यही नहीं, रक्षाबंधन पर 27 और 28 अगस्त पर भी बहनों की यात्रा मुफ्त रहेगी. साथ ही 50,000 छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का भी ऐलान किया गया है.
9: माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के परिवर्तनकारी नेतृत्व में माताओं और बहनों की सुगम और सुरक्षित यात्रा को नई दिशा देने जा रही है लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना.
10: उत्तर प्रदेश में इस बार राखी की उमंग कुछ ज्यादा ही खास है, क्योंकि यहां बहनों को भाइयों के तोहफे का इंतजार करने से पहले ही सरकार की ओर से कई बड़ी सौगातें मिल चुकी हैं. कहीं मुफ्त बस यात्रा का तोहफा है, तो कहीं स्कूटी से बेटियों के सपनों को पंख देने की तैयारी. यूपी में लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना की शुरुआत हो चुकी है. इस योजना के तहत 60 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाएं यूपी राज्य परिवहन निगम यानी UPSRTC की सभी बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा कर सकेंगी.
11: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का मास्टर स्ट्रोक और सभी 60 वर्ष से ऊपर महिलाओं को फ्री निःशुल्क यात्रा. आप देखिए ये सारी जो बसें हैं, इन्हीं बसों से मातृशक्ति योजना के तहत उनको फ्री एक तरीके से अब आजीवन ये सेवा दी जाएगी. और ये मास्टर स्ट्रोक योगी आदित्यनाथ का माना जा रहा है. ये महिलाएं देखिए जो 60 साल से ऊपर की हैं, वो सभी इससे निःशुल्क यात्रा कर पाएंगी. पूरे प्रदेश में जहां भी उनको जाना है वो इस बस के जरिए जा सकती हैं.
10: लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना के तहत 60 साल या उससे अधिक आयु की पात्र महिलाएं आधार या वोटर आईडी दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकेंगी. महिलाओं को स्थानीय पते का आधार कार्ड या वोटर आईडी दस्तावेज के रूप में दिखाना होगा. इससे उनकी आयु का भी वेरिफिकेशन हो सकेगा. इस योजना के तहत हर दिन 88,000 से ज्यादा महिला यात्रियों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा. खास बात यह है कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए महिलाओं को किसी अलग आवेदन प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा. यानी बुजुर्ग महिलाओं के लिए अब यूपी की रोडवेज बसों में सफर करना न सिर्फ आसान होगा बल्कि रोजमर्रा के आने जाने का खर्च भी कम होगा.
12: ये जो सरकार आज आपके लिए इस योजना का शुभारंभ कर रही है, सबसे पहली बात तो जो यहाँ पर कहा गया, योजना का नाम हम लोगों ने रखा है लोक माता अहिल्याबाई निःशुल्क बस यात्रा. लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का महिला स्वावलंबन में बहुत बड़ा नाम है।
10: लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना का लाभ 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को मिलने का अनुमान है। महिलाओं को मुफ्त बस सेवा देने में सरकार को हर महीने का खर्च करीब 22.5 करोड़ रुपए आएगा।
13: हमारे योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, वो हमको यात्रा करवा रहे हैं, हमारे लोग बुजुर्ग मेहरी औरतों को, और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ
11: तो सब फ्री हो गया, पूरे यूपी में कहीं भी जाए। हाँ।
10: बात सिर्फ सफर की नहीं है, बेटियों के सपनों को रफ्तार देने की भी कोशिश यूपी सरकार की है। सरकार ने 50,000 छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का ऐलान किया है। इस साल अक्टूबर नवंबर तक स्नातक की पढ़ाई कर रही 50,000 छात्राओं को स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी। रक्षाबंधन पर बहनों के लिए सौगातों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। त्योहार के मौके पर यूपी सरकार ने रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का भी ऐलान किया है। ये सुविधा 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक लागू रहेगी। इस बार विशेष व्यवस्था के तहत महिला यात्री के साथ उनके एक सहयोगी को भी मुफ्त यात्रा की सुविधा है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
16: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद मिशन जिंदगी तेज, प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से बात की, भारत की ओर से भेजा जा रहा है राहत सामान, यूपी बिहार में प्रशासन अलर्ट पर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने रचा कीर्तिमान, नई बसों के मामले में देश में यूपी नंबर वन, महिलाओं के लिए पैनिक बटन से लेकर हेल्पलाइन की कनेक्टिविटी। देशभर में रक्षाबंधन की तैयारियां तेज, वाराणसी में बनाई गई खास एआई राखी, रायपुर में सुरक्षा बल के जवानों को बांधी गई राखियां। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, मुंबई के महाराजा नाम से मशहूर करीब 47 फीट के बप्पा का आगमन, नरसिंह रूप में विराजमान है गणपति। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज, अब मंदिर में मिलेगी निःशुल्क शीघ्र दर्शन की सुविधा, प्रशासन ने फैसले से लोगों में खुशी।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
1: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं, आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है, और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं और इन्हें आगे शेयर कर देते हैं। यही शुरू होती है अफवाहों की आंधी, लेकिन फैक्ट चेक के जरिए हम सच और झूठ के बीच की रेखा, धुंधली रेखा को साफ करते हैं और खबरों की पड़ताल करते हैं। सही और सच्ची खबर हम आप तक लेकर आते हैं। ऐसी दो खबरों की पड़ताल आज हम करने जा रहे हैं, जिसमें आज सबसे पहले वायरल हो रहे उस दावे की सच्चाई की पड़ताल हम करेंगे, जिसके जरिए कहा यह जा रहा है कि सांसद कंगना रनौत पर दूसरी बार हमला हुआ है, जेनजी पर विवादित टिप्पणी करने के बाद उन पर चप्पल फेंकी गई। क्या है सच्चाई, आगे जानिए। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो के से जुड़ी होगी, जिसके जरिए कहा जा रहा है कि ईरान की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी तैयार है, जिसे ईरान ने समंदर में उतार दिया है। क्या है इसकी सच्चाई, आगे बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
1: मीडिया पर एक्ट्रेस बीजेपी सांसद कंगना रनौत का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए लोग कह रहे हैं कि जेनजी पर विवादित टिप्पणी के बाद उन पर चप्पल फेंकी गई है, हमला किया गया है, लेकिन इस हमले की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती ये रिपोर्ट देखिए।

0: हिमाचल प्रदेश की मंडी से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद अभिनेत्री कंगना रनौत ने हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले हुए छात्र आंदोलन के दौरान इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा के लिए जेनजी को गटर जनरेशन कहा था। इस बयान के बाद काफी हंगामा मचा, जिसके बाद कंगना रनौत ने सफाई देते हुए ये कहा कि उनका बयान पूरी युवा पीढ़ी या जेनजी के लिए नहीं था। ये टिप्पणी केवल जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले कुछ विशेष लोगों के लिए थी जो खुद को कॉकरोच कहते हैं और गटर से निकलते हैं। इसके बाद अब सोशल मीडिया पर कंगना रनौत का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो किसी जगह पर पुलिस से घिरी हुई दिख रही हैं। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर दावा कर रहे हैं कि एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता ने कंगना रनौत पर चप्पल फेंकी है, उन पर दूसरी बार हमला हुआ है। एक इंस्टाग्राम यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि प्रोग्राम के दौरान कंगना रनौत के मुंह पर चप्पल फेंकी, पुलिस ने तुरंत संभाला। कंगना पर दूसरी बार अटैक, चप्पल फेंकने वाला भी बीजेपी का था। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल हाल के दिनों में बीजेपी सांसद कंगना रनौत काफी सुर्खियों में है अपने विवादित बयानों की वजह से। वो सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर है और खास तौर पर जेनजी को लेकर उनके विवादित टिप्पणियों की वजह से उन पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। हालांकि जब विवाद बढ़ने लगा तब कंगना रनौत ने सफाई देते हुए कहा कि उनका बयान पूरी युवा पीढ़ी की या फिर जेनजी के लिए नहीं था, ये टिप्पणी केवल जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले कुछ विशेष लोगों के लिए थी जो खुद को कॉकरोच कहते हैं और गटर से निकलते हैं। इन सब के बीच सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा और वीडियो किसी स्थल पर पुलिस से घिरी हुई कंगना रनौत को यहां पर दिखाया गया। इस वीडियो को शेयर करते हुए यूजर्स ये कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कंगना रनौत पर चप्पल फेंकी, उन पर दूसरी बार हमला हुआ है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। इसमें इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। हमने इसकी पड़ताल शुरू की और दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान वीडियो में एक जगह पर जहां से कंगना एंट्री ले रही है वहां पर नजर आ रहे बोर्ड पर हमारा ध्यान गया, उसमें मराठी में कुछ लिखा हुआ नजर आया था। इससे यह इशारा मिलता है कि वायरल हो रहा वीडियो महाराष्ट्र का हो सकता है। साथ ही वीडियो में आ रही आवाजों को भी जब हमने गौर से सुना तो सामने आया कि यह मराठी भाषा है, लेकिन सर्च के दौरान ऐसी कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। क्योंकि वाकई अगर ऐसा हुआ होता तो फिर जाहिर सी बात है कि अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होती। सर्च के दौरान ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं मिली। इसके अलावा वीडियो में कहीं पर भी कंगना पर चप्पल फेंकते हुए किसी भी शख्स को देखा भी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर कंगना पर हमला हुआ होता तो वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी एक्शन में जरूर नजर आते। फैक्ट चेक टीम ने कंगना रनौत के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी खंगाला, लेकिन वहां पर भी ऐसी कोई पोस्ट हमें नहीं मिली। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही था कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की तहकीकात में जुटी। सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि हाल फिलहाल में अगर ऐसी कोई घटना हुई होती तो वो सुर्खियों में जरूर होती। इसके बाद हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक इंस्टाग्राम अकाउंट मिला। 18 अगस्त को इस अकाउंट से वायरल वीडियो शेयर किया गया था। जानकारी के अनुसार ये वीडियो मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर का है जहां कंगना गई थी। एक वेबसाइट पर 18 अगस्त को छपी एक रिपोर्ट में कंगना के मंदिर जाने की क्लिप भी मिली। इस रिपोर्ट के अनुसार कंगना 18 अगस्त को सिद्धि विनायक और मुंबा देवी के मंदिर पहुंची। खबर में हमें कहीं भी वायरल दावे जैसा कोई जिक्र नहीं मिला। कंगना के इंस्टाग्राम हैंडल से भी 18 अगस्त को कुछ तस्वीरों को पोस्ट करते हुए जानकारी दी गई थी कि वो मुंबई में सिद्धि विनायक और मुंबा देवी मंदिर गई। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वायरल वीडियो मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर का है जहां वो 18 अगस्त को गई थी। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे।
1: ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये कह रहे हैं कि ये ईरान की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है जिसे ईरान ने समंदर में उतार दिया है। लेकिन सच्चाई क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में।
2: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। अमेरिका ने ईरान पर भारी वित्तीय शिकंजा कसने और उसकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह अलग थलग करने की चेतावनी दी है, जिसके जवाब में ईरान ने होर्मुज में सख्ती बढ़ा दी है। दोनों देश झुकने को तैयार नहीं है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक पनडुब्बी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पनडुब्बी पानी में धीरे धीरे उतर रही है। इस वीडियो के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि ये ईरान की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। इसी दावे के साथ सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पनडुब्बी लॉन्च की तस्वीरें धड़ल्ले से शेयर की जा रही हैं। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इसे लगातार शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच कुछ लोग वीडियो के जरिए ये कह रहे हैं कि ये ईरान की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है जिसे अब समंदर में उतार दिया गया है। अब अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले ऐसा सर्च किया। इस दौरान हमें जानकारी मिली कि ईरान के पास कोई भी परमाणु पनडुब्बी नहीं है। ईरान की नौसेना के पास केवल गदीर और फतेह श्रेणी की छोटी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं। ऐसे में हमें दावे की सच्चाई पर संदेह हुआ। हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही था कि अगर दावा सच है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। देखिए सच और झूठ क्या है।
2: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई भी विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। इसके बाद हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक इंस्टाग्राम पोस्ट मिली जिसमें हमें वायरल हो रहा वीडियो पोस्ट के जरिए ये पता चला कि ये जेएस राइगेई अटैक सबमरीन है जिसे जापान के मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के लिए बनाया गया है। सर्च के दौरान हमें एक YouTube चैनल पर वायरल हो रहे क्लिप का लंबा वर्जन मिला। यहाँ पर इसे 17 अक्टूबर 2023 को शेयर किया गया था। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के मुताबिक इस सबमरीन को जापान की कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज ने जापानी मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के लिए $470 मिलियन में बनाया था। एक आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक इस पनडुब्बी को 6 मार्च 2025 को कोबे शिपयार्ड में आयोजित एक समारोह में आधिकारिक तौर पर JMSDF में शामिल किया गया। शामिल किए जाने के बाद इसे हिरोशिमा प्रांत के कुरे नेवल बेस पर सबमरीन फ्लोटिला 1 के सबमरीन डिवीजन 1 में तैनात किया गया। इसी तरह हमारी पड़ताल में हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। ये वीडियो अक्टूबर 2023 का है और इसमें जापान को JS राइगेई लॉन्च करते हुए दिखाया गया है जो जापान मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के लिए बनाई गई एक अटैक सबमरीन है। रिधीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
4: 32 फीट ऊंचे विघ्नहर्ता का आगमन, भगवान गणेश का किसान अवतार, रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं, प्लास्टिक के अभिशाप को वरदान दिया। देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आइए आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
9: ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भारत का एक जाबाज जवान बर्फीली वादियों में देश की रक्षा के साथ साथ अपने अटूट भक्ति का उदाहरण पेश करता नजर आ रहा है। इस नजारे को देखकर हर कोई जवान की तारीफ कर रहा है। वीडियो में चारों तरफ बर्फ की मोटी सफेद चादर बिछी है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं। ऐसे कड़ाके के मौसम में जहां आम लोगों के लिए खड़े रहना भी मुश्किल होता है, वहीं इस जवान ने बड़ी ही कुशलता और श्रद्धा से बर्फ को जोड़कर एक सुंदर और व्यवस्थित शिवलिंग का निर्माण किया। जवान ने बेहद बारीक नक्काशी के साथ बर्फ के शिवलिंग को अंतिम रूप दिया और पूरी श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर भगवान शिव का नमन और पूजन किया। यूजर्स इस वीडियो पर खूब प्यार जता रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब चर्चा में है। यहाँ एक बच्चे की मासूमियत और छुपकर खाने वाला अंदाज इतना क्यूट है कि इंटरनेट यूजर्स इसे बार बार देख रहे हैं। वायरल वीडियो में स्कूल की असेंबली में प्रार्थना चल रही है, सभी बच्चे आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं। तभी एक बच्चा मौका देखकर धीरे से अपनी चॉकलेट निकालता है और आंखें बंद कर खाने लगता है। मानो उसे लग रहा हो कि अगर उसने आंख बंद कर ली तो उसे कोई और देख नहीं पाएगा। वीडियो में बच्चे की मासूमियत देखने लायक है, वो बगैर किसी टेंशन के आराम से चॉकलेट खाता दिखता है, जबकि आसपास के बच्चे प्रार्थना में लगे हैं। वहीं बच्चा अपनी चॉकलेट खत्म कर उसका कचरा भी जेब में ही रख लेता है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद प्यारी बच्ची का वीडियो तेजी से वायरल है, जिसमें बच्ची अपने छोटे छोटे हाथों में गिटार थामे दिलकश अंदाज में नजर आ रही है। इस दौरान वो अपनी मधुर आवाज में इतना प्यारा गाना गा रही है कि उसने हर किसी का दिल जीत लिया। गिटार पकड़ने का उसका अंदाज हो, गाने की धुन पर हरकत करती उसकी नन्ही उंगलियां हो, हर किसी का ध्यान ये बच्ची अपनी तरफ खींचती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, उसके एक्सप्रेशन भी दिल जीत ले रहे हैं।

0: भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी का हिस्सा भी है। यहाँ गली मोहल्ले से लेकर स्कूल के मैदान तक, जहाँ थोड़ी सी भी जगह मिल जाए, बच्चे और बड़े बल्ला बॉल लेकर पहुँच जाते हैं। कई बार तो क्रिकेट खेलने के लिए मैदान की भी जरूरत नहीं पड़ती। सड़क हो, छत हो या घर के बाहर की छोटी सी जगह, क्रिकेट का जुनून कहीं भी शुरू हो जाता है। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को ही देख लीजिए, जहां कुछ लड़कों ने तालाब के पास ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। पानी के बीच खड़े होकर लड़कों ने बॉलिंग से लेकर बैटिंग तक खूब धमाल मचाया। उनका खेल देखकर लोग भी वीडियो का मजा लेने लगे। हालांकि इस पूरे मुकाबले में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा आखिरी कैच ने, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। कमाई का असली मकसद सिर्फ घर चलाना या बिल भरना नहीं, बल्कि अपने परिवार के चेहरों पर मुस्कान लाना भी होता है। पश्चिम बंगाल के एक स्विगी डिलीवरी बॉय ने इस बात को साबित भी कर दिखाया।
1: दीदा से बात करो, तुम्हें क्या मन खुशी?
0: दिन रात मेहनत कर और थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर इस राइडर ने अपनी माँ और दादी के लिए नया टीवी खरीदा। जब उसने ये सरप्राइज अपने परिवार को दिया तो उस भावुक पल का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अक्सर अपने अनोखे और नए विचारों के लिए जाना जाता है। इस बार इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक बेहद मनोरंजक और अलग रास्ता चुना है। पलासिया चौराहे पर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों और सिग्नल जंप करने वालों को जागरूक करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने गोरिल्ला कॉस्ट्यूम पहनाकर एक शख्स को सड़क पर उतारा। ये गोरिल्ला गाड़ियों को जेब्रा क्रॉसिंग से पीछे धकेलता है, लोगों को सड़क पार कराता है और ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर ट्रैफिक संभालता है। वीडियो में जब एक कार चालक सिग्नल पर रुकने की बजाय आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो ये विशालकाय गोरिल्ला दौड़कर कार के सामने आ जाता है और हाथों से धक्का देकर कार को पीछे धकेलता है। गोरिल्ला का ये तरीका देखकर ड्राइवर भी मुस्कुराते हुए गाड़ी रोक लेता है। इस वीडियो में सिर्फ गाड़ियों को रोकना ही नहीं बल्कि गोरिल्ला का फ्रेंडली अंदाज भी दिखा। वो सड़क पार कर रहे राहगीरों का हाथ पकड़कर उन्हें सुरक्षित जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करवाता नजर आता है। साथ ही वो ऑन ड्यूटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर से हाथ मिलाता और उनके साथ तालमेल बिठाकर ट्रैफिक कंट्रोल करने में मदद करता भी दिखा। इंदौर पुलिस के इस फनी और क्रिएटिव अभियान को सोशल मीडिया पर खूब सराहना मिल रही है। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो तेजी से वायरल है, जिसे देख लोग हैरान भी हैं और बाबा की तारीफ भी कर रहे हैं।
2: 83
0: वीडियो में एक बुजुर्ग बाबा एक विदेशी टूरिस्ट से फराटेदार अंग्रेजी में बात करते दिख रहे हैं। बाबा जिस आत्मविश्वास के साथ अंग्रेजी बोलते हैं उसे देख विदेशी टूरिस्ट भी मुस्कुराता हुआ दिख रहा है।
3: Everything here is free. What are you getting?
4: Airtime.
0: बैंकॉक की सड़कों पर दौड़ती एक अनोखी टैक्सी इन दिनों इंटरनेट पर खूब धमाल मचा रही है। इस कैब की खासियत यह है कि इसमें कदम रखते ही आपको किसी सुपरमार्केट जैसा एहसास होता है। ड्राइवर ने यात्रियों की सुविधा के लिए कार को एक मिनी मार्ट का रूप दे दिया है, जहां जरूरत का हर सामान बिल्कुल फ्री मिलता है। थाईलैंड की मशहूर मेहमान नवाजी को दर्शाते इस खूबसूरत पहल की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। वीडियो में टैक्सी की पिछली और आगे की सीटों पर हर छोटी बड़ी जरूरत की चीजें करीने से सजाकर रखी हैं। सफर के दौरान यात्रियों को मोजे, टूथब्रश, शीशा, बेबी पाउडर और यहां तक कि बिल्लियों का खाना भी आसानी से मिल जाता है। प्यास या थकान मिटाने के लिए पानी की बॉटल्स और कॉफी भी यहाँ फ्री में उपलब्ध है। ये कोई एक दिन का पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, ये थाई ड्राइवर पिछले 10 सालों से लगातार अपनी टैक्सी में मुफ्त सामान की सेवा दे रहा है। खास बात यह है कि वो यात्रियों से सामान के बदले एक भी रुपया नहीं लेता। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो ने लोगों को खूब आकर्षित किया है। इसमें विदेशी धरती पर भारतीय संस्कृति की खूबसूरत झलक देखने को मिलती है। पारंपरिक अंदाज और लोक संगीत के इस अनोखे मेल ने इंटरनेट यूजर्स को हैरान करने के साथ साथ काफी खुश भी किया हुआ है। वीडियो में कुछ अमेरिकी महिलाएं पारंपरिक राजस्थानी लुक में दिख रही हैं। उन्होंने रंग बिरंगे लहंगा चोली पहने हैं, सिर पर चुनरी भी सजा रखी है। जैसे ही राजस्थानी लोकगीत बजता है, ये महिलाएं पूरे उत्साह के साथ डांस करना शुरू कर देती हैं। न्यूयॉर्क की व्यस्त सड़कों और आसपास मौजूद लोगों के बीच अचानक राजस्थानी लोक संगीत सुनाई देना अपने आप में काफी दिलचस्प नजारा है। इसके बाद जब महिलाओं ने गाने के साथ राजस्थानी डांस स्टेप्स किए, तो वहां से गुजर रहे लोगों का ध्यान भी उनकी तरफ खींच गया।

इस गजराज का पानी पीने का तरीका इतना अनोखा है कि आप अपनी हंसी और हैरानी रोक नहीं पाएंगे। गजराज का ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वीडियो में एक पेड़ के बगल में लगा नल खुला है और उससे पानी बह रहा है। आमतौर पर कोई भी जानवर ऐसे में सीधे मुंह लगाता, लेकिन ये हाथी बेहद चतुर निकला। उसने अपनी लंबी सूंड के निचले हिस्से को घुमाकर बिल्कुल एक कटोरी की तरह बना लिया। नल से गिरता पानी उसकी सूंड के उसी हिस्से में जमा होने लगता है और जैसे ही सूंड में काफी पानी भर जाता है, वो उसे सीधे अपने मुंह में डालकर गटक लेता है। एक बार पानी पीने के बाद जब उसकी प्यास नहीं बुझती तो वो दोबारा अपनी सूंड नल के नीचे लगा देता है। उसकी ये मासूमियत और गजब की सूझबूझ देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीज
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है, खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर, खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है, खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है, ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे,
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: आपका तालमेल आपके बॉस के साथ अच्छा नहीं रहता, किसी भी नौकरी में उच्चाधिकारियों के साथ संबंधों की दिक्कत हो जाती है, कौन से ग्रह बैठाते हैं सामंजस्य, बनाते हैं तालमेल, जानिए मेरे साथ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
3: खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। 32 फीट ऊंचे विघ्नहर्ता का आगमन, भगवान गणेश का किसान अवतार देखिए। रक्षाबंधन का आया त्योहार, भाई बहनों के बीच स्नेह और अटूट प्रेम के प्रतीक इस पर्व पर भद्रा का साया नहीं, और प्लास्टिक के अभिशाप को वरदान दिया, पर्यावरण के सबसे बड़े दुश्मन पर प्रहार। शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
3: नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद मिशन जिंदगी तेज, प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से बात की। भारत की ओर से भेजा जा रहा राहत सामान, यूपी बिहार में प्रशासन अलर्ट पर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने रचा नया कीर्तिमान, नई बसों के मामले में देश में यूपी नंबर वन। महिलाओं के लिए पैनिक बटन से लेकर हेल्पलाइन की कनेक्टिविटी। देश भर में रक्षाबंधन की तैयारियां तेज, वाराणसी में बनाई गई खास एआई राखी, रायपुर में सुरक्षा बल के जवानों को बांधी गई राखियां। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, मुंबई के महाराजा नाम से मशहूर करीब 47 फीट के पप्पा का आगमन, नरसिंह रूप में विराजमान है गणपति। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज, अब मंदिर में मिलेगी निशुल्क शीघ्र दर्शन की सुविधा, प्रशासन के फैसले से लोगों में खुशी। शुरुआत करेंगे अच्छी और सच्ची खबरों की। बात हम सबसे पहले गणेशोत्सव की करेंगे, जिसकी शुरुआत अगले महीने 14 सितंबर से यानी कि 14 तारीख से होने वाली है। तो ऐसे में इस पर्व को लेकर देश भर में तैयारियां इन दिनों जोर शोर से चल रही हैं, खासकर पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र में, जहां पर बड़े बड़े गणेश पूजा पंडाल न सिर्फ सजने शुरू हो गए हैं बल्कि इन पूजा पंडालों में बप्पा की विशाल मूर्तियों का आगमन भी शुरू हो चुका है। और इसी कड़ी में खेतवाड़ी के लंबोदर का आगमन बड़ी धूमधाम से हुआ। इस बार विघ्नहर्ता को अन्नदाता किसान के रूप में पेश किया गया है।

0: विघ्नहर्ता भगवान गणेश से जुड़ा पर्व गणेश चतुर्थी आने में अभी थोड़े दिन बाकी हैं, लेकिन इससे पहले ही इसकी रौनक नजर भी आने लगी है। खासकर मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में गणेशोत्सव को लेकर लोगों में उत्साह हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, जिसकी गवाही मुंबई से आई ये तस्वीरें दे रही हैं। बाप्पा की भक्ति में डूबे ये भक्त झूमते गाते ढोल बजाते खुशी खुशी जब पूजा पंडाल की ओर निकले तो लोगों का हुजूम सड़कों पर उमड़ आया। ये है 32 फीट ऊंची खेतवाड़ी के लंबोदर की गणेश मूर्ति, जिसका आगमन पंडाल में बड़े धूमधाम के साथ हुआ। खेतवाड़ी का ये पंडाल मुंबई के प्रसिद्ध और नामी पूजा पंडालों में से एक है, जहाँ इस साल भगवान गणेश की प्रतिमा को किसान के रूप में दर्शाया गया है।
1: गणेश उत्सव की तैयारी मुंबई में जोरों शोरों से शुरू है। खासियत यह है कि बड़ी बड़ी प्रतिमाएं जो हैं वो पंडालों में लानी शुरू हो गई है। मेरे पीछे आप एक सक्रिय गली देख रहे हैं, बड़ी छोटी सी गली है, इसी से उस बड़ी प्रतिमाओं को लाया गया है और पंडाल में स्थापित किया गया। खास बात यह है कि मैं जहां मौजूद हूं, इलाके का नाम है खेतवाड़ी, और यहां पर इस तरह की जो छोटी छोटी गलियां हैं कई हैं, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार, पांच, छह, सात, फिलहाल मैं चौथी गली में हूं, जहां के बप्पा इस समय लाए गए हैं और विराजमान कर दिए गए हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि खेतवाड़ी के लंबोदर के दरबार में इस समय मौजूद हूं और एक दो दिन पहले ही बप्पा को यहां पर बकायदा धूमधाम से लाया गया है। देखिए कितना विशाल स्वरूप, कितना विशाल रूप बप्पा का यहां पर देखने मिल रहा है। खास बात यह है कि इस तरह से जो लंबी लंबी प्रतिमाएं गणेश जी की होती हैं उनके साथ बहुत बढ़िया बढ़िया थीम भी लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए रखी जाती है।
0: खेतवाड़ी चार लंबोदर मंडल अपनी अलग थीम और भव्यता के लिए मशहूर है। इस गणेश पंडाल में हर साल एक नए थीम पर पंडाल सजता है और इस साल ये अपना 68वां गणेशोत्सव मनाने जा रहे हैं। इस बार इस गणेश मंडल में राज्य के किसानों की समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से किसान बचाओ थीम पर ही पंडाल बनाने का फैसला लिया गया है।
2: संदेश दिया है गवर्नमेंट को कि खेतकारी के लिए बहुत कठोर बात है, इतना मेहनत करके भी उनको मार्केट के अंदर भाव बराबर मिलता नहीं है। एक गवर्नमेंट देखना मांगता है कि शेतकरी है करके अपन लोग है, शेतकरी अनाज नहीं पकाएंगे तो अपन लोग कुछ खा नहीं सकते है। अगर शेतकरी को कुछ नहीं दिया तो शेतकरी किधर से अनाज लाएगा अपने लिए, खत भी नहीं मिलेगा। एक तो इतना महंगाई हो गया है, मार्केट में इनको भाव भी बराबर नहीं मिलता है, कुछ नहीं देते। इसके लिए वो हम लोग ने गवर्नमेंट को ये संदेश दिया है
1: और बकायदा गणपति बप्पा के साथ संदेश दिया है,
2: गणपति बप्पा के साथ दिया है।
0: गली नंबर चार में सजने वाला ये पूजा पंडाल अपनी सामाजिक और देशभक्त थीम के लिए हर साल सुर्खियों में रहता है, इसलिए यहाँ हर साल बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए दौड़े चले आते हैं। मंडल के अध्यक्ष प्रवीण भोसले बताते हैं कि उनकी कोशिश रहती है कि हर साल लोगों को गणेश पूजा के जरिए सामाजिक संदेश भी दिया जाए।
2: पिछले साल लाया वामन अवतार, उसके बाद में लाया वर्ल्ड कप, उसके बाद में लाया ऑपरेशन सिंदूर, अभी शेतकरी आत्महत्या करते हैं इसके ऊपर हम लोग गणराय लेके आए।
1: तो कैसे मतलब आपस में आप लोग बातचीत करते, कमेटी बैठती, कैसे सोच होती है कि इस बार क्या होना
2: चाहिए? बगैर कुछ नहीं होता है, कमेटी एक साथ बैठते हैं हम लोग 5-6 जन है कमेटी में, मेन वो लोग बैठ के हम लोग डिसीजन लेते पूरे। फिर बाद में हम लोग बच्चे लोग को बताते, ये हमारे बच्चे लोग सब राह देखते है 365 साल में कभी आएंगे हमारे पापा, राह देखते रहते, दिन रात मेहनत भी वो लोग बच्चे लोग करते।
0: वैसे तो गणेश उत्सव का ये पर्व पूरे देश में ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता रहा है, लेकिन जैसी विविधता और रौनक इस पर्व को लेकर महाराष्ट्र में नजर आती है वैसी कहीं और दिखाई नहीं पड़ती। यहाँ हर साल छोटे बड़े सैकड़ों पूजा पंडाल सजते हैं, जिनमें बाप्पा को अलग अलग स्वरूपों में विराजित किया जाता है। काला चौकी चा महाराजा और कामराज चा महाराजा की ये प्रतिमा इसका शानदार उदाहरण है।
3: गणपति बाप्पा
0: ये प्रतिमाएं न सिर्फ आकार में बड़ी हैं, बल्कि इनकी सजावट और थीम भी काफी आकर्षक है।
4: और हमारा जो 10 दिन का प्रोग्राम होता है, जितने दिन गणपति बैठते हैं, हम लोग पूरे 10 या 12 दिन पूरे धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन हो गया, ड्राइंग कॉम्पिटिशन, हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन, डेंटल चेकअप वगैरह, हेल्थ चेकअप, बहुत सारे ऐसे हमारे पूरे 10 के 10 दिन कार्यक्रम होते हैं। और हमारा 7वां दिन जो होता है उस दिन हम लोग सत्यनारायण की पूजा करते हैं।
0: 14 सितंबर से शुरू होने वाला गणेश उत्सव सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक एकता और ऐतिहासिक गौरव का भी प्रतीक है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने इसे राज्य महोत्सव घोषित किया है, जिससे इसकी सांस्कृतिक महत्ता और बढ़ गई है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: और हमारा देश उत्सवों का देश है और उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे, यानी यहां पर आपको हर उत्सव के रंग नजर आएंगे। गणेशोत्सव की तैयारियां कैसी चल रही है वो तो हमने आपको दिखा दिया, 14 सितंबर से शुरू हो, लेकिन अब बात रक्षाबंधन की जो दो दिन बाद है। भाई और बहन का ये त्योहार एक दिन बाद यानी कि देश भर में मनाया जाने वाला है, शुक्रवार को ये त्योहार मनाया जाएगा और इसी को देखते हुए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कहीं भगवान के लिए विशाल राखियां बनाई जा रही हैं, कहीं सरहद पर तैनात जवानों के लिए राखी

देखते हुए बाजारों में रौनक अभी से ही देखी जा रही है। एक साधारण मौली से लेकर इस बार नए ट्रेंड की राखियां काफी पसंद की जा रही हैं, जिसमें सोने और चांदी की राखियों की बहुत ज्यादा डिमांड है। इसके अलावा सनातन के प्रतीक भी काफी डिमांड में हैं। तो बहनें अपनी अपनी चॉइस अपने अपने हिसाब से इन राखियों को खरीद रही हैं, ताकि रक्षाबंधन के दिन ये धागा भाई की कलाई पर बांधा जा सके।

0: रक्षाबंधन का आया त्योहार तो बाजार से लेकर सरहद और मंदिरों तक दिखने लगी इस खूबसूरत त्योहार की रौनक। भारत चीन सीमा से आई ये तस्वीर इसी खूबसूरती को बयां कर रही है। वहां नीति घाटी की महिलाओं ने भारत चीन सीमा पर तैनात सेना के जवानों के लिए रक्षाबंधन को बेहद खास बना दिया। नीति घाटी के जुम्मा और कागा गांव की ये महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में गोटिंग आर्मी कैंप पहुंची, जहां उन्होंने जवानों की कलाई पर राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना की। उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य यूपी के झांसी में भी एक कार्यक्रम के दौरान 500 से 600 महिलाओं ने देश की रक्षा में जुटे सैनिकों को राखियां भेजी हैं। खास बात ये रही कि इन महिलाओं ने हर राखी के साथ सैनिकों के लिए अपने हाथों से संदेश लिखे पत्र भी भेजे, ताकि त्योहार पर घरों से दूर जवानों को घर वालों की कमी न खले।
1: राखी का भी एक प्रोग्राम रखा हुआ था, जो अपने देश पे, जो हमारे वीर सैनिक हमारे देश पे, जो हमारी रक्षा की सुरक्षा के लिए वहाँ पे तैनात है, उनके लिए हम लोगों ने 500 राखियाँ पैक करके यहाँ से भिजवाई हैं।
2: उसमें हम लोग अपने सैनिक भाइयों के लिए राखी भेज 500 राखी पैक करके सैनिक भाइयों के लिए भेजे, जिनकी वजह से हम लोग सुरक्षित हैं। जो भाई देश के लिए लड़ते हैं, जिनकी वजह से हम लोग आज़ादी से घूमते फिरते हैं, उनके लिए हम लोगों ने राखी भेजी है।
0: भाई बहन का ये त्योहार देश के प्राचीन मंदिरों में भी बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारी करीब करीब पूरी कर ली गई है। इंदौर में रक्षाबंधन के मौके पर भगवान खजराना गणेश को 40 इंच बाय 40 इंच की भव्य राखी अर्पित की जाएगी। ये राखी करीब 2.5 महीने की मेहनत से तैयार की गई है। इस साल राखी की थीम वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर आधारित है। राखी में भगवान जगन्नाथ, बाबा महाकाल, माँ वागदेवी, माँ महाकाली और माँ महालक्ष्मी के स्वरूपों को उकेरा गया है।
3: 25 सालों से पालरेचा परिवार द्वारा बनाई गई राखी खजराना गणेश जी को राखी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त के दिन अर्पित की जाएगी। यह 40 बाई 40 इंच की राखी विश्व की सबसे बड़ी राखी है। हम लोग हर साल एक थीम बेस राखी बनाते हैं और वंदे मातरम को जो 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं उसको हमने दर्शाते हुए एक सनातन धर्म पर राखी बनाई है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमने कमल के अंदर विराजित जगन्नाथ जी, और जैसा कि सावन का महीना चल रहा है और बाबा महाकाल ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो बाबा महाकाल, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी सभी का हमने इसमें वो किया है। खजराना गणेश जी को यह राखी सिर्फ चिंतामण गणेश जी, महाकालेश्वर, वीर बगीचे, हनुमान मंदिर ऐसे कई मंदिरों में अर्पित की जाएगी। 10 से 15 लोग मिलके हम ये राखी बनाते हैं और करीबन हमको 1 से 2 महीना लगता है इस राखी को कंप्लीट करने में। और इसमें आप देखें कि सूरत के मोती और जयपुर कलकत्ता का बारीक काम किया है, पूरा हैंडवर्क की राखी है और हैंडमेड राखी है।
0: उधर पुरी में भी भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र के लिए स्पेशल राखी तैयार की जा रही है। रक्षाबंधन के दिन महाप्रभु जगन्नाथ को लाल और पीले रंग की राखियां पहनाई जाएगी, जबकि भाई बलभद्र को नीले और बैगनी रंग की राखियों से सजाया जाएगा। इन राखियों का निर्माण बाजार में मिलने वाली सामान्य राखियों की तरह नहीं होता, बल्कि इन्हें श्री मंदिर में जुड़ी परंपराओं के अनुसार विशेष रूप से तैयार किया जा रहा है।
4: ये जो राखी जो हम जो बना रहे हैं, ये प्रस्तुत हो रहा है बासुंगा टसर पार्ट से। ये बासुंगा पार्ट को हम चार कलर में विभक्त करके लाल और हलूद और नीला सबुज 4 कलर में बनाते हैं, और इसका साथ में और भी 4 सुपारी का माला बनाते हैं। ये एक सुपारी का माला में 54 सुपारी रख के इसके अंदर डाल के इसको

0: फूल की तरह बनाते हैं। ये चार गोमल और चार राखी महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर के अंदर हम प्रभु जी को देंगे। वो इन्होंने जगन्नाथ जी महाप्रभु दो राखी परिधान करेंगे और बलभद्र महाप्रभु दो राखी परिधान करेंगे।
1: आपको बता दें कि रक्षाबंधन पर गृह नक्षत्रों की चाल बहुत खास रहने वाली है। इस बार रक्षाबंधन पर ना तो भद्रा का साया रहेगा और ना ही साल के दूसरे चंद्र ग्रहण का प्रभाव इस त्योहार पर होगा। पंचांग के अनुसार भद्रा 27 अगस्त को सुबह 9:08 से रात 9:27 तक रहेगा, जबकि रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जाएगा। यानी इस बार भद्रा त्योहार से एक दिन पहले ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए रक्षाबंधन की रस्मों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात अगर मुहूर्त की करें तो रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए सुबह 5:57 से सुबह 9:48 तक सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा।
2: अगर हम शुभ मुहूर्त की बात करते हैं तो राखी वाले दिन सुबह का शुभ मुहूर्त जो है वो बहुत ही खास है, जो कि शुरू होगा सुबह 5:57 से लेकर सुबह 9:48 तक। हालांकि राखी उदय तिथि के हिसाब से आप सारा दिन मना सकते हैं, लेकिन ये मुहूर्त सबसे खास है। राखी में आपको राहु काल का विशेष ध्यान रखना है कि राहु काल में आपको राखी नहीं बांधनी है। और राहु काल हमारा शुरू होगा 10:46 से लेकर 12:22 तक राहु काल रहने वाला है, तो इस समय में आपको राखी नहीं बांधनी है।
1: वहीं पंचांग के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि यानी रक्षाबंधन के दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है, लेकिन ये चंद्र ग्रहण भारत में नजर नहीं आने वाला है, इसलिए सूतक काल भी मान्य नहीं होगा, जिसके कारण बिना किसी चिंता के राखी बांधी जा सकती है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, झांसी से अजय झा और इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: बात प्लास्टिक के कचरे से जुड़ी क्रिएटिविटी की, जिस प्लास्टिक को प्रकृति और पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, उस पर दिल्ली का एक कपल अपने इनोवेटिव आइडियाज के जरिए लगातार प्रहार कर रहा है। उनका स्टार्टअप रीसाइक्लिंग के जरिए कचरे में फेंके जा रहे प्लास्टिक से सुंदर और इस्तेमाल लायक उत्पाद बना रहा है, जिनमें कुर्सियां भी हैं, डस्टबिन, गमले, यहां तक कि पार्क में बैठने के लिए बड़े साइज के बेंचेस भी शामिल हैं। यानी इस कपल ने प्लास्टिक के अभिशाप को अपने आइडिया के जरिए वरदान में बदल दिया है। जल और हवा को दूषित करने वाला प्लास्टिक मिट्टी की प्रोडक्टिविटी यानी कि उर्वरता को भी घटा देता है। फिर भी देश की एक बड़ी आबादी सिंगल यूज प्लास्टिक से हो रहे प्रदूषण के नुकसान को गंभीरता से नहीं ले रही, जिसे ये कपल अपने उत्पादों के जरिए जागरूक करने की कोशिश करता है।

0: धरती के लिए अभिशाप सिंगल यूज प्लास्टिक का, इससे अच्छा इस्तेमाल नहीं हो सकता। कंक्रीट, आरसीसी या ग्रेनाइट पत्थर की तरह दिखने वाले ये बेंच और टेबल केवल एक बार इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक से बनाए गए हैं। जल, जमीन और हवा को दूषित करने में प्लास्टिक सबसे आगे है। इसमें भी सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे ज्यादा घातक माना जाता है। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक से बनी ऐसी चीजें होती हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार ही हो पाता है, फिर उसे फेंक दिया जाता है। लेकिन दिल्ली के इस कपल ने प्लास्टिक कचरे को नया स्वरूप दे दिया, जो दिखने और इस्तेमाल में अपने मूल आकार और स्वरूप से ज्यादा खूबसूरत है।
1: दिल्ली में प्लास्टिक एक बेहद बहुत ही बड़ी समस्या है, और वो प्लास्टिक के कचरे की अगर हम बात करें और अगर उस कचरे का इस्तेमाल दोबारा से किया जाए तो ये कचरा किसी के भी काम आ सकता है। खास तौर पर ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए जो है बेहद ही फायदेमंद वाली चीज़ हो सकती है। जिस पर मैं बैठी हूँ ये उसी का एक उदाहरण जो है मैं आपको पेश करने की कोशिश कर रही हूँ। आप मेरे पीछे भी और जिस पे मैं बैठी हूँ और आसपास भी देख सकते हैं कि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिख जाएगी जो उसी प्लास्टिक के कचरे से जो है बनी है। इसकी जो शुरुआत हुई है उसी प्लास्टिक के कचरे से हुई है जिसको आप और मैं बेकार समझकर जो है फेंक देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर बेंचेस जो है वो नज़र आ जाएगी, आपको टेबल नज़र आ जाएगी, आपको बहुत सारी यहाँ पर जो है चीज़ें नज़र आने वाली है जो कि रिसाइकल प्लास्टिक से जो है वो बनाई गई है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको जो है बनाया गया था ताकि इसका इस्तेमाल जो है वापस से किया जा सके। आप इसको किसी भी ओपन स्पेस में रख सकते हो, चाहे इन बेंचेस का, इन टेबल का इस्तेमाल पार्क में किया जा सकता है, स्कूल में किया जा सकता है, किसी भी ओपन स्पेस में जो है इसको लगाया जा सकता है।
0: सड़क, पार्किंग, गार्डन और फर्श को मजबूत बनाने और सुंदर दिखने के लिए कंक्रीट या सीमेंट के छोटे टुकड़े का इस्तेमाल होता है जिसे पेवर ब्लॉक कहा जाता है। इसको बनाने में भी अब प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल होने लगा है।
1: तो आपको यहाँ पे पेवमेंट ब्लॉक्स दिख जाएंगे, आपको ये छोटे छोटे इस तरीके की जो टाइल्स जैसे दिखती है पेवमेंट ब्लॉक्स जो है वो नजर आ जाएगा। और ये सभी जो है रिसाइकल प्लास्टिक से जो है बनाया गया है, यानी जिस प्लास्टिक को आप और मैं इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं बेकार समझकर, उसी प्लास्टिक को जो है रिसाइकल करके, प्रोसेस करके इस चीज़ों में, इस तरह की चीज़ों में जो है बदला जा रहा है ताकि उसका इस्तेमाल जो है लंबे समय तक किया जा सके।
0: कंक्रीट की पक्की सड़क के मुकाबले ये लचीली सतह बनाते हैं जिससे जमीन के धंसने पर भी इनमें दरारें नहीं आती हैं। भारी वजन पड़ने पर भी ये आसानी से नहीं टूटते। दिल्ली के रहने वाली सोनल और उनके पति ने प्लास्टिक कचरे के बेहतर इस्तेमाल को अपना लक्ष्य बना लिया। एनआईटी कुरुक्षेत्र से मास्टर्स करने वाले पति पत्नी ने मिलकर एक कॉन्सियस नाम का स्टार्टअप शुरू किया जिसका मकसद प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल करके ऐसी चीजें तैयार करना है जिनका इस्तेमाल सार्वजनिक जगहों पर आम लोगों की सुविधा के लिए किया जा सके।
1: इस पहल की शुरुआत की है दिल्ली के इस कपल ने जो इस वक्त मेरे साथ है, सोनल और वैभव मेरे साथ बैठे हैं। सोनल, मैं आपसे शुरुआत करूंगी कि यह आइडिया कहाँ से आया, क्योंकि प्लास्टिक वाकई में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। हम कितनी भी कोशिश कर लेकिन प्लास्टिक कम नहीं होता, बट उसको थोड़ा सा कम करने की शायद आपने एक पहल जो है वो शुरू करी है।
2: डेफिनेटली प्लास्टिक में शुरुआत हमारी एक्चुअली कोइंसिडेंटली हुई थी। सो हम दोनों ने एमटेक किया एनआईटी कुरुक्षेत्र से, वैभव का मेजर था एनवायरनमेंट में, तो उसमें ही वॉज स्टडिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एज वेल एज जो मेरा एक कॉन्शियस थॉट था टुवर्ड्स डूइंग समथिंग अबाउट द प्लास्टिक वेस्ट। तो हमने वहाँ से शुरुआत करी, कोविड के टाइम पर शुरुआत करी स्पेशली, क्योंकि उस टाइम पर हम देख रहे थे कि बहुत सारा सिंगल यूज प्लास्टिक इन द फॉर्म ऑफ पीपीई किट्स या फिर मास्क कह लीजिए या फिर लोग वैसे भी पैकेजिंग वगैरह ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। तो हमने एक कॉन्शियसली थॉट किया कि दिस इज़ आई फील द बेस्ट टाइम कि हमें कुछ करना चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए एंड ऑल्सो कि हम उसको कुछ कन्वर्ट कर पाएँ ऐसे प्रोडक्ट्स में जो हमें हमारे इन्वायरमेंट को ब्यूटीफाई कर सके। सो ड्यूरिंग कोविड वी स्टार्टेड।
0: शुरुआत में सोनल और वैभव ने प्लास्टिक के कचरे से घर सजावट का सामान बनाना शुरू किया था, लेकिन बाद में पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए उसी के इस्तेमाल पर फोकस कर लिया। यही वजह है प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन के लिए वो पिकअप सुविधा भी देते हैं।
2: प्लास्टिक का जो हमारा कलेक्शन का सेटअप है वो हम दिल्ली में बेस्ड एक स्टार्टअप है, सो हमारा जो भी कलेक्शन सेटअप है दैट इज़ इन दिल्ली एनसीआर। लोग हमसे डायरेक्टली भी कनेक्ट होके हमें प्लास्टिक देते हैं, वी प्रोवाइड अ पिकअप सर्विस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे कुछ एनजीओ पार्टनर्स हैं जो हमारे बिहाफ में वो कलेक्शन करते हैं और फिर हम उनके थ्रू सोर्सिंग करते हैं। एंड उसके अलावा जो हमारे वेस्ट वर्कर्स होते हैं, कबाड़ी वाले भैया दीदी लोग होते हैं, सो हम उनसे भी सोर्सिंग करते हैं।
0: पिछले साल महाकुंभ के दौरान महिला श्रद्धालुओं की सुविधा और गोपनीयता के लिए 1000 से अधिक विशेष चेंजिंग रूम बनाए गए थे जिनको सोनल और वैभव की स्टार्टअप कंपनी ने एक संस्था के साथ मिलकर तैयार किया था, जिसमें करीब 5,00,000 किलो प्लास्टिक को रीयूज यानी दोबारा इस्तेमाल किया गया।
3: ये महाकुंभ का ये जो प्रयागराज में हुआ था 2025 में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट था, तो हमने इस पे एक थॉट दिया कि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सकता है और महिलाओं को एक स्पेस सेफ स्पेस मिलेगी चेंज करने के लिए उनको स्नान के बाद में। तो हमने चेंजिंग रूम्स बनाए 1,000 वहाँ पे, एक चेंजिंग रूम में लगभग 550 किलो प्लास्टिक को हमने इसमें रिसाइकल किया, 550 किलो तो लगभग 5,00,000 केजी तक हमने प्लास्टिक को इसमें रिसाइकल करके हमने चेंजिंग रूम्स बनाए इससे।
0: प्लास्टिक से होने वाला कचरा दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत के लिए कितनी बड़ी समस्या है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। सिंगल यूज प्लास्टिक को एक बार इस्तेमाल करने के बाद खुले में फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से मिट्टी की प्रोडक्टिविटी यानी उर्वरता भी घट जाती है। फिर भी देश की एक बड़ी आबादी सिंगल यूज प्लास्टिक से हो रहे प्रदूषण के नुकसान को गंभीरता से नहीं लेती, जिनको जागरूक करने का बीड़ा सोनल और वैभव ने अपने कंधों पर उठाया है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: क्या आपका तालमेल आपके बॉस के साथ अच्छा नहीं रहता? किसी भी नौकरी में उच्चाधिकारियों के साथ संबंधों की दिक्कत हो जाती है? कौन से ग्रह बैठाते हैं सामंजस्य, बनाते हैं तालमेल, जानिए मेरे साथ।
5: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे
4: गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल
6: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। 27 अगस्त 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, प्रातः 9:08 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं 1:35 तक। राहु काल का समय 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम आपको बता रहे हैं कि आप ऐसा क्या उपाय करें, ऐसे किन बातों का ध्यान रखें कि आपका तालमेल आपके बॉस के साथ, आपके उच्चाधिकारी के साथ बेहतर रहे। देखिए, किसी भी क्षेत्र का जो उच्चाधिकारी होता है वो उस क्षेत्र के मुख्य ग्रह से संबंध रखता है, क्योंकि अगर मुख्य ग्रह प्रबल नहीं होता तो वो व्यक्ति उच्चाधिकारी नहीं बनता। इसके अलावा जो आपसे ऑफिस में ऊंचाई पर बैठा है, जो आपसे उच्च स्थान पर बैठा है, वो सूर्य और मंगल से भी संबंध रखता है। तो आप अपने करियर के मुख्य ग्रह को सूर्य और मंगल को मजबूत करके अपने संबंध अपने बॉस के साथ बेहतर कर सकते हैं। और आपको अपने संबंध अगर अपने बॉस के साथ, अपने कलीग अपने सहयोगियों के साथ बेहतर करने हैं तो अपने कुंडली के कमजोर ग्रहों को भी मजबूत करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपके ग्रह कमजोर होंगे तो आप नौकरी में कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें जरूर करेंगे जिसकी वजह से आपकी नौकरी जाएगी या नौकरी में समस्या पैदा होगी। अगर आप प्रशासनिक सेवा में एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में हैं या अगर आप सेना में हैं तो बॉस के साथ संबंध कैसे बेहतर करेंगे? देखिए, प्रशासनिक सेवा का क्षेत्र और सेना का क्षेत्र मंगल और सूर्य से मुख्य रूप से नियंत्रित होता है। यहां पर अपने उच्चाधिकारी के साथ अगर आप तालमेल चाहते हैं तो आपको इन्हीं ग्रहों को मजबूत करना होगा। क्या करेंगे? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और कार्यालय निकलते समय अगर आप गुड़ खा करके निकलें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अगर आप प्रशासनिक सेवा में हैं, सेना में हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में हैं तो काले रंग का प्रयोग आपको कम से कम करना चाहिए। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, वाहन सावधानी से चलाएं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब अगर आप एजुकेशन के फील्ड में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं या चिकित्सा मेडिकल के क्षेत्र में हैं, तो आप अपने बॉस के साथ तालमेल कैसे अच्छा करेंगे? शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में दो ग्रहों की मुख्य भूमिका होती है, बृहस्पति और चंद्रमा। मुख्य रूप से अगर आप चंद्रमा को मजबूत करें, आप शिक्षा क्षेत्र में हो या चिकित्सा क्षेत्र में हो, बॉस के साथ आपका तालमेल बेहतर होगा। क्या करेंगे? सफेद और पीले रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करिएगा, और जब भी ऑफिस जाएंगे जरा सी मिश्री खाकर जाइएगा, चंद्रमा को ताकत मिलेगी और चंद्रमा बेहतर होगा तो बॉस के साथ तालमेल बेहतर हो जाएगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कारोबार में लाभ होगा, रुका हुआ काम बन जाएगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, संतान पक्ष की उन्नति होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, बेवजह की मानसिक चिंता हो सकती है, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होती रहेगी, चोट चपेट से सावधान रहें, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं, तकनीक में हैं, ट्रांसपोर्ट में हैं, परिवहन के क्षेत्र में हैं, तो बॉस के साथ तालमेल कैसे अच्छा बनेगा? टेक्नोलॉजी का क्षेत्र राहु, केतु, शनि और कहीं कहीं बुध से संबंध रखता है। अगर आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं तो आपको इन्हीं ग्रहों को बेहतर करना होगा। कपड़ा पहनने में अधिक से अधिक हल्के नीले रंग का प्रयोग करिए और बॉस के साथ तालमेल आपका ठीक रहे, कार्यालय जाते समय लौंग खाकर जाइए, कोई मीठी चीज मत खाइए और मंगलवार को लाल रंग के कपड़े, लाल रंग के जूते, लाल रंग का पर्स, इसका प्रयोग करने से परहेज करिए। अगर आप मीडिया, ग्लैमर या फैशन के क्षेत्र में हैं और यहां पर बॉस के साथ अच्छा तालमेल चाहते हैं तो क्या करेंगे? ये क्षेत्र शुद्ध रूप से शुक्र का क्षेत्र है और शुक्र को मजबूत करके आप बॉस को खुश रख सकते हैं और बहुत सारी उन्नति कर सकते हैं। जब भी ऑफिस जाएं, जरा सी दही और चीनी खाकर जाएं और रेगुलरली नियमित रूप से हल्की सुगंध का प्रयोग करें। अगर मीडिया, फैशन, ग्लैमर, फिल्म इन क्षेत्रों में हैं तो खाली पेट घर से ना निकलें, शुक्र कमजोर होगा और तालमेल ऑफिस में खराब होगा। धनु राशि, काम की अधिकता रहेगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है, करियर की स्थिति ठीक रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है, सेहत बेहतर होगी, काम की रुकावट दूर होगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में हो, कॉरपोरेट में हो, मार्केटिंग में हो, सेल्स में हो, तो क्या करें कि बॉस के साथ तालमेल ठीक हो? ये जो कॉरपोरेट सेक्टर है, ये अलग अलग ग्रहों से कंट्रोल होता है। जैसे फाइनेंस यानी वित्त बृहस्पति से, सलाहकारिता कंसल्टेंसी बुध से, मैनेजमेंट बुध और बृहस्पति दोनों से मैनेज होता है। इस क्षेत्र में अगर आप बॉस को खुश रखना चाहते हैं, बेहतर तालमेल चाहते हैं, तो सारे ग्रहों पर संतुलन आवश्यक है। अगर आप कॉरपोरेट सेक्टर में हैं तो नियमित रूप से सूर्य भगवान को सादे जल से, प्लेन वाटर से अर्घ दीजिए। घर से निकलते समय इलायची खाइए, हरी इलायची, और अपनी जेब में एक इलायची जरूर रख लीजिए। देखिए, सबसे मुश्किल क्षेत्र है मार्केटिंग का। यहां पर बॉस के साथ तालमेल बैठा पाना या बॉस को प्रसन्न कर पाना सबसे कठिन काम है। तो अगर आप मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं और बॉस के साथ तालमेल रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? इस क्षेत्र पर संपूर्ण रूप से बुध का अधिकार होता है और इस क्षेत्र में बॉस को खुश रखना और बॉस के साथ तालमेल रखना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। अगर आप मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं तो बॉस के साथ तालमेल के लिए और इस क्षेत्र में सफलता के लिए रोज सवेरे नियमित रूप से भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब अर्पित करें। घर से निकलते समय सौंफ खाकर निकलिए और बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग से परहेज करिए और बृहस्पतिवार के दिन बॉस के साथ रिश्तों पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। देखिए, ऑफिस में कभी भी गंदे और फटे हुए कपड़े पहनकर मत जाइए। फैशन में भी फटे हुए कपड़े पहनकर मत जाइए, अन्यथा आपका शनि खराब होगा और जीवन में हमेशा आपको नौकरी को लेकर के समस्याएं परेशान करेंगी। कि अगर आपका रिश्ता या प्रेम संबंध टूट रहा है, आप उसे बचाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? रोज सवेरे गुलाबी कपड़ा पहन करके सूर्य देव को जल चढ़ाइए। इसके बाद एक बार मधुराष्टक का पाठ करिए और मधुराष्टक का पाठ करने के बाद प्रेम संबंध बचाने की प्रार्थना करिए। आपके रिश्ते, आपका प्रेम संबंध बच जाएंगे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर
9: खबरें। कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: और बात आपके बजट से जुड़ी, लगातार बढ़ते चीनी के दाम पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कुछ कारगर उपाय किए हैं। दिल्ली सरकार ने 35 रुपए किलो चीनी जनता को मुहैया कराने का इंतजाम किया है और इसके साथ ही चीनी की कालाबाजारी रोकने के लिए छापामारी लगातार की जा रही है। चीनी की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस सिलसिले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री के बीच एक अहम बैठक भी हुई है। वहीं चीनी की महंगाई पर ब्रेक लगाने के लिए यूपी में चीनी के उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में 15 अक्टूबर से चीनी मिलों की शुरुआत हो जाएगी। आने वाले दिनों में यूपी में 90 लाख टन चीनी उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है, ऐसे में देश के कई राज्यों में बहनों के लिए उपहार का ऐलान किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया के जरिए 3 बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। इसके मुताबिक पुलिस दीदी योजना, अभया ब्रिगेड के लिए 4,700 स्कूटर और मोटरसाइकिल का लोकार्पण और फ्लैग ऑफ किया गया। इन वाहनों का इस्तेमाल स्कूल और कॉलेज जाने वाली छात्राओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए किया जाएगा। छात्राओं को 10,000 रुपए की पीएचडी फेलोशिप मिलेगी। करीब 1,000 छात्राओं को 4 साल तक ये फेलोशिप मिलेगी। कारोबार और स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना भी शुरू की जाएगी और इस योजना के तहत 50,000 से 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इन सब के अलावा रक्षाबंधन के अवसर पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से 27 और 28 अगस्त को महिलाओं और छात्राओं को मुफ्त में बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। रक्षाबंधन पर बिहार के अलावा कई दूसरे राज्यों में भी लड़कियों और महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा की घोषणा की गई है। यूपी सरकार ने 27 अगस्त से 29 अगस्त तक लड़कियों और महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा और सुविधा देने का ऐलान किया है, जिसमें एक सहयात्री भी शामिल हो सकता है। उत्तराखंड सरकार ने 28 और 29 अगस्त को रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है। हरियाणा में राज्य परिवहन की साधारण बसों में महिलाओं के लिए सफर मुफ्त रहेगा। 27 अगस्त की दोपहर 12 बजे से 28 अगस्त की रात 12 बजे तक बहनों के लिए सुविधा उपलब्ध होगी। महिलाओं के साथ 15 वर्ष तक के बच्चों को भी ये सुविधा मिलेगी। इसमें हरियाणा के साथ ही चंडीगढ़ और दिल्ली तक की यात्रा भी शामिल है। राजस्थान ने 28 और 29 अगस्त को साधारण और एक्सप्रेस बसों में लड़कियों और महिलाओं के लिए राज्य की सीमा के भीतर मुफ्त सफर का ऐलान किया है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: क्या आपका तालमेल आपके बॉस के साथ अच्छा नहीं रहता? किसी भी नौकरी में उच्चाधिकारियों के साथ संबंधों की दिक्कत हो जाती है? कौन से ग्रह बैठाते हैं सामंजस्य, बनाते हैं तालमेल? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे
4: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर।
5: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
4: नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद मिशन जिंदगी तेज। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से की बात, भारत की ओर से भेजा जा रहा राहत सामान। यूपी बिहार में प्रशासन अलर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने रचा नया कीर्तिमान। नई बसों के मामले में देश में यूपी नंबर वन। महिलाओं के लिए पैनिक बटन से लेकर हेल्पलाइन की कनेक्टिविटी। देश भर में रक्षाबंधन की तैयारियां तेज, वाराणसी में बनाई गई खास AI राखी, रायपुर में सुरक्षा बल के जवानों को बांधी गई राखियां। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, मुंबई के महाराजा नाम से मशहूर करीब 47 फीट के बप्पा का आगमन, नरसिंह रूप में विराजमान है गणपति। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज, अब मंदिर में मिलेगी निःशुल्क शीघ्र दर्शन की सुविधा, प्रशासन के फैसले से लोगों में खुशी। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा देहरादून के थानी गांव की महिलाओं की भी है जिन्होंने नशे के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है।
7: समस्या हमारी है तो उसका समाधान भी हमें ही ढूंढना होगा। कुछ ऐसी सोच के साथ देहरादून के थानी गांव की महिलाओं ने नशे के खिलाफ खुद कमर कस ली है और रात में गश्त लगाकर नशेड़ियों को वापस भेज रही हैं। असल में थानी गांव के पास एक सपेरा बस्ती है जिसे अवैध नशीले पदार्थों का केंद्र माना जाता है। ऐसे में नशे के आदि लोग इस गाँव तक भी पहुँच जाते हैं और नशीले पदार्थों की तलाश में घरों के दरवाजे खटखटाते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए गाँव की महिलाएं एकजुट हुई, नारी जागृति महिला संगठन का गठन किया और समूह में गश्त लगाने की तरकीब निकाली। अब गांव के 20 से 60 साल तक की महिलाएं अलग अलग दोपहर 3 बजे से रात 12 बजे तक समूहों में गश्त करती हैं। इस दौरान महिलाएं बारी बारी से एक दूसरे के घरेलू काम भी संभालती हैं। महिलाओं की इस पहल को अब पुरुषों और पुलिस का भी सहयोग मिल रहा है। आस्था और परंपरा की ये दिव्य तस्वीरें जम्मू कश्मीर से आई हैं, जो इस साल की अमरनाथ यात्रा के समापन का समय करीब आने का भी संकेत दे रहे हैं। महादेव की पवित्र छड़ी मुबारक कठिन पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए अब पंचतरणी की ओर बढ़ रही है। इससे पहले जब दशनामी अखाड़े के महंत दीपेंद्र गिरी की अगुवाई में साधु संतों का जत्था पवित्र छड़ी लेकर शेषनाग ट्रांजिट कैंप पहुंचा तो श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक था। साधु संतों और श्रद्धालुओं ने पवित्र छड़ी मुबारक का स्वागत किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विशेष पूजा अर्चना हुई। इसके बाद सुरम्य शेषनाग झील के किनारे पारंपरिक संध्या आरती का आयोजन किया गया। इस आध्यात्मिक माहौल में बड़ी संख्या में साधु और श्रद्धालु शामिल हुए। अब छड़ी मुबारक की यात्रा अगले पड़ाव पंचतरणी की ओर बढ़ चुकी है। यहां दो दिनों तक रुकने के बाद पवित्र छड़ी बाबा अमरनाथ की गुफा की ओर प्रस्थान करेगी। केरलम में ओणम का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस पावन पर्व पर जहां एक ओर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, वहीं हर तरफ लोक संस्कृति की अद्भुत छटा भी बिखरी हुई है। ये तस्वीरें कोच्चि के त्रिक्काकारा मंदिर की हैं, जहां ओणम साध्य और चिंडा मेलम की परंपरा निभाई गई। ओणम साध्य जहां बड़ी तादाद में लोगों ने एक साथ बैठकर पारंपरिक तरीके से सामूहिक भोज का आनंद लिया। इसमें खाना पूरी तरह से शाकाहारी होता है और इसे ताजे केले के पत्ते पर परोसा जाता है। इसमें 24 से 28 तरह के भोजन परोसे जाते हैं। वहीं चिंडा मेलम केरल का मशहूर पारंपरिक ताल वाद्य संगीत समूह है जो अपनी गूंजती और रोमांचक लय के लिए जाना जाता है। ओणम त्योहार में सबसे खास है केरल की मशहूर पारंपरिक लोक कला पुलिकली डांस, जिसे बाघ नृत्य भी कहा जाता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है बाघ के मुखौटे, जिसे पहनकर कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हैं। लेकिन यहाँ इस मुखौटे को डांस के लिए नहीं, साइकिलिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। त्योहार वही है, प्रतीक वही है, बस अंदाज थोड़ा बदला हुआ है। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी के मंदिरों में झूलनोत्सव की रौनक है और इनमें सबसे खास है श्री लक्ष्मीनाथ जी मंदिर, जहां भगवान विष्णु मुख्य आराध्य और नगर सेठ के रूप में पूजे जाते हैं। झूलनोत्सव के मौके पर यहां मंदिर की भव्य सजावट की गई है। जहां एक ओर ठाकुर जी की प्रतिमा का रोज दिव्य श्रृंगार होता है, वहीं मंदिर की फूलों से भव्य सजावट की जाती है। कमल के फूलों से सजे ठाकुर जी के दरबार में रंग बिरंगे फूलों, हरे भरे पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की सुंदर झलक लोगों का मन मोह रही है।
4: और अब बात करते हैं रक्षाबंधन त्यौहार से पहले मिठाइयों में मिलावट की। पनीर और मिठाइयों की मिलावट कम होने का नाम नहीं ले रही। लगातार छापेमारी के बावजूद नकली मिठाई और पनीर मिलने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। आप खरीदते तो मिठाई और पनीर है, लेकिन मिल कुछ और रहा है, यानी कि ऐसी मिलावट जो शरीर को बीमार कर दे। यही नहीं, कई मिठाइयों में तो मिलावट जानलेवा है और यही वजह है कि छापेमारी के बाद जब्त मिठाई और पनीर को खाद्य विभाग नष्ट करवा दे रहा है।

0: रक्षाबंधन पर भाई बहन के प्रेम के साथ मिठाई न हो तो रस कुछ फीका पड़ जाता है। लिहाजा त्योहार के कुछ दिन पहले से ही मिठाई की दुकानों पर खरीदार पहुंचने लगते हैं और बढ़ती डिमांड की सप्लाई पूरा करने के लिए बड़ी तादाद में मिठाइयां तैयार की जाती हैं। इसी दौरान मिलावटखोरी का गोरख धंधा भी शुरू हो जाता है। मिलावटखोरी के इस गोरख धंधे पर नकेल कसने के लिए खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी एक्टिव हो गई हैं। मिठाई, मावा, दूध और पनीर जैसी चीजें बनाने और बेचने वाली दुकानों पर छापेमारी कर मिलावटखोरों की धरपकड़ तेज हो गई है। ये तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर की अकबर मिल्क चिलिंग सेंटर की है। यहाँ दीवार पर लगे बैनर पर नेचुरल बेकरी लिखा हुआ है और यकीन ग्राहक भरोसा भी करते होंगे, लेकिन खाद्य विभाग की टीम ने इस बेकरी पर छापेमारी कर इनके दावे का भंडाफोड़ कर दिया। आरोप है कि यहाँ खाने वाली वस्तुओं में मिलावट की जा रही थी। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर यहाँ बनाए जा रहे प्रोडक्ट के 10 सैंपल लिए, जिसमें 5 सैंपल दूध के, 1 घी, 1 क्रीम, 1 SMP और 2 सैंपल केमिकल के लिए गए। खाद्य विभाग की टीम ने इन सैंपल्स की जांच के लिए लैब भेज दिया है। लैब में जांच के बाद पता चल सकेगा कि इस बेकरी में मिलावट की जा रही थी या नहीं।
1: बुढ़ाना में अकबर चिलिंग सेंटर पे खाद्य सुरक्षा और प्रशासन विभाग की टीम द्वारा कार्रवाई की गई है। यहाँ पर हमने 10 सैंपल लिए हैं, जिसमें कि 5 सैंपल दूध के लिए हैं और 1 सैंपल घी का, 1 क्रीम का, 1 SMP का लिया गया है और 2 केमिकल के सैंपल लिए गए हैं।
2: किस तरह की कार्रवाई, आगे पर्व भी है रक्षाबंधन का, किस तरह की कार्रवाई पूरे जिले में की जा रही है?
1: इस समय रक्षाबंधन का त्यौहार है तो ऑब्वियसली खाद्य पदार्थों की, मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है, दूध की, मावे की, तो इसी वजह से दूध, मावे, पनीर पे फोकस किया जा रहा है और उसी को देखते हुए कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर प्रतिष्ठान में कुछ 2 केमिकल भी प्राप्त हुए हैं हमें और SMP भी प्राप्त हुआ है, तो इसीलिए हमने 10 सैंपल लिए हैं।
0: सेहत से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों की इस करतूत को देखकर आप दांत तले उंगलियां दबा लेंगे। यूपी में मथुरा के कोसी कलां इलाके में खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग की टीम ने छापेमारी कर 1200 किलो पनीर जब्त किया और पुलिस की मदद से इसे नष्ट करा दिया गया। इस नकली पनीर की बाजार में कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल इसका सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजा गया।
3: संदेह के आधार पर पनीर के 3 नमूने संग्रहित किए गए और बाकी जो शेष भी 1200 किलो पनीर था, जिसकी कीमत मूल लगभग 3 लाख रुपए थी, उसको पुलिस बल और सबकी सहायता से उसको गड्ढा खुदवा कर नष्ट करा दिया गया।
0: छापामारी करने पहुंची टीम के मुताबिक उन्हें खबर मिली कि एक गाड़ी से नकली पनीर ले जाया जा रहा है। इसके खबर मिलते ही खाद्य विभाग की टीम ने पुलिस की मदद से इसे पकड़ा और जब इसकी तलाशी ली गई तो 1200 किलो पनीर मिला, जिसे बाजार में बेचा जाना था।
3: कल रात खास सुरक्षा औद्योगिक प्रशासन जनपद मथुरा की टीम द्वारा रात्रि में नेशनल हाईवे 2 हाईवे के समीप पनीर की गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी, जिसी क्रम में हमें एक गाड़ी DL1 जो कि जिसमें लगा कि पनीर लदा हुआ है, उसको रुकवाया गया। जब चेक किया गया तो उसमें ज्ञात हुआ कि वो गाड़ी पनीर से भरी हुई है, जिसमें करीब 1200 किलो पनीर उसमें भंडारित था। जब ड्राइवर चालक से पूछा गया तो उसने अपना नाम सत्यवीर सन ऑफ दिसंबर थाना कामा जनपद डीक बताया और जब उससे उस पनीर के क्रय विक्रय के संबंध में जब अभिलेख मांगे गए तो खाद्य कार्यकर्ता कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए और जब पनीर का निरीक्षण किया गया तो उसमें संदेह लगा कि ये पनीर में कुछ इसकी गुणवत्ता के साथ छेड़छाड़ की गई है और ये जब उसको चखा और टेस्ट किया गया तो उसमें जो पनीर के मानक के अनुरूप वो नहीं लगा।
0: रक्षाबंधन के त्यौहार से पहले गुजरात के सूरत में खाद्य विभाग की टीमें लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। रक्षाबंधन के मौके पर मिठाइयों की जमकर खरीदारी होती है, लिहाजा खाद्य विभाग मिठाई की दुकानों पर छापेमारी कर उनकी क्वालिटी की जांच कर रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों की माने तो सूरत में 12 टीमें एक साथ अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं।
4: आगामी दिनों में रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार आ रहा है, इस त्यौहार में जाहिर जनता द्वारा और मिठाई का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। इस मिठाई के लिए बनाने के लिए मावा का, खोया का इस्तेमाल होता है। इस खोया की शुद्धता

0: कुल 12 जगह अलग अलग टीम बना के वहाँ से सैंपलिंग की कार्यवाही अभी चालू है।
1: यूपी के बरेली में खाद्य विभाग की टीम ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है और कुल 12 टीमें अलग अलग दुकानों और प्रतिष्ठानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि छापेमारी के दौरान अंकुर स्वीट्स से 140 किलो मिलावटी दूध और 350 किलो बर्फी बरामद की गई, जिसकी बाजार में कीमत 49,000 रुपए बताई जा रही है। खाद्य विभाग ने जब्त किए गए दूध और बर्फी को नष्ट करवा दिया क्योंकि यह हमारी आपकी सेहत को खराब कर सकता था। रक्षाबंधन के मौके पर जहां मिलावटखोर मिठाई, मावा और पनीर जैसी वस्तुओं में मिलावट कर रहे हैं, वहीं गुजरात के बनासकांठा में एक अलग ही तस्वीर सामने आई है। बनासकांठा के डीसा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी मिर्च पाउडर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। खबर के मुताबिक श्री दर्शन मार्केटिंग पर छापेमारी के दौरान मिर्च पाउडर में कृत्रिम रंग, गेहूं का भूसा और धनिया पाउडर मिलाने की बात सामने आई है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मौके से मिर्च पाउडर, गेहूं का भूसा, धनिया पाउडर और कलर पाउडर समेत कुल 9 सैंपल जांच के इकट्ठा किए और छापेमारी के दौरान करीब 3,500 किलो संदिग्ध मिर्च पाउडर जब्त किए गए, जिसकी बाजार में कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। यही नहीं, छापेमारी करने पहुंची टीम ने करीब 2,500 किलो एक्सपायरी मिर्च पाउडर को नष्ट करवा दिया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हालांकि ये किसी से छिपा नहीं है कि त्योहारी सीजन में मिलावटखोरी चरम पर होती है। जहां स्थानीय स्तर पर दूध, दही, घी, मावा, मिठाई जैसी वस्तुओं को ताजा और खुशबूदार बनाए रखने के लिए मिलावटखोर इसमें सिंथेटिक दूध, मैदा, वनस्पति घी, आलू और अरारोट मिलाते हैं, वहीं बड़े मिलावटखोर खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए स्टार्च, सोडा, यूरिया, डिटर्जेंट समेत कई केमिकलों का प्रयोग करते हैं। ऐसे में खरीदारी करते समय अगर थोड़ी सावधानी रखी जाए तो ये हमारी सेहत के लिए बेहतर होगा। मिलावट हम चंद मिनटों में पकड़ सकते हैं, मगर इसके लिए परंपरागत के साथ ही वैज्ञानिक तरीकों का ज्ञान होना बेहद जरूरी है और त्योहारों पर मिलावट से बचने के लिए हमेशा भरोसेमंद और लाइसेंस प्राप्त दुकानों से ही सामान खरीदें और खाद्य पदार्थों की क्वालिटी की जाँच भी करें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: बैद्यनाथ धाम में अब श्रद्धालुओं को शीघ्र दर्शन के लिए नहीं लगेगा कोई शुल्क। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
1: नेपाल में आज अचानक आई भीषण बाढ़ ने वहां भारी तबाही मचाई है। इस बीच पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह से फोन पर बातचीत की और वहां हुई जानमाल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया। साथ ही संकट की घड़ी में नेपाल को हर संभव मदद का भी भरोसा दिया। पीएम ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी। खबर ये भी है कि नेपाल के लिए भारत की ओर से राहत सामग्री भी भेजी जा रही है। नेपाल में बाढ़ का असर बिहार में भी होने की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट मोड में है। आपात स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने हाई लेवल टीम का गठन कर दिया है। सीएम सम्राट चौधरी के मुताबिक वो हर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्य सचिव और डीजीपी भी रिव्यू कर रहे हैं। इसके अलावा नेपाल से सटे इलाकों में घूम घूम कर पुलिस अनाउंसमेंट के जरिए लोगों से सतर्कता बरतने की अपील भी कर रही है।
3: नेपाल के त्रिशूल नदी में भूस्खलन हो गया है, जिसके कारण गंडक के किनारे बसे गांव में।
1: रक्षाबंधन से ठीक पहले सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। आज से दिल्ली लक्ष्मी योजना का आगाज हो गया। सीएम ने आज इस स्कीम में आवेदन करने वाली महिलाओं को स्वीकृति पत्र बांटे। इस योजना के तहत महिलाओं को 1 सितंबर से सरकार की ओर से हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। सीएम के मुताबिक इस योजना के तहत अब तक 9 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। देवघर के बैद्यनाथ धाम में अब स्थानीय श्रद्धालुओं को शीघ्र दर्शन के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। जिला प्रशासन के मुताबिक जिन स्थानीय लोगों के पास वैध लोकल आईडी प्रूफ है, उन्हें अब बाबा बैद्यनाथ के शीघ्र दर्शनम के लिए निर्धारित 600 रुपए का शुल्क नहीं देना होगा। जिला प्रशासन के इस फैसले पर स्थानीय लोगों ने खुशी जताई है। भारत चीन सीमा पर तैनात जवानों के लिए नीति घाटी की महिलाओं ने इस रक्षाबंधन को बेहद खास बना दिया। नीति घाटी के जुम्मा और कागा गांव की महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में गोटिंग आर्मी कैंप पहुंची और वहां सीमा की रक्षा में तैनात जवानों की कलाई पर राखी बांधकर जताया कि इस पवित्र त्योहार पर वो अकेले नहीं है।
2: और अब बात रक्षाबंधन की तैयारियों की। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक त्योहार रक्षाबंधन के मौके पर बाजार राखियों से गुलजार हो गए हैं। शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक दुकानों पर रंग बिरंगी राखियां सज गई है। बहन अपने भाई के लिए राखियां खरीदती हैं और उनकी कलाई पर राखी बांधती है। 28 अगस्त यानी कि शुक्रवार को राखी का पावन पर्व है, जिसके लिए

0: भाई बहनों के बीच अटूट प्यार का त्योहार रक्षाबंधन में अब चंद दिन ही बचे हुए हैं। ऐसे में बाजारों में रौनक और चहल पहल पड़ गई है। अलग अलग रंग और डिजाइनों की राखियों से मार्केट गुलजार है। दुकानों पर पारंपरिक राखियों से लेकर नए डिजाइन वाली राखियां बहनों को लुभा रही हैं। रक्षाबंधन से पहले जहां बाजार पारंपरिक और डिजाइनर राखियों से गुलजार हैं, वहीं आगरा में कारीगरों ने पहली बार प्राकृतिक रत्नों का इस्तेमाल कर राखियां तैयार की हैं, जो अपने अनूठे और आकर्षक रूप के लिए पसंद की जा रही हैं। ये राखियां आगरा ताजगंज इलाके में बनाई जा रही हैं। इन्हें तैयार करने वाले कारीगर प्राकृतिक रत्नों के टुकड़ों को तराश कर उनकी चमक और सुंदरता निखार रहे हैं। ताजमहल की पच्चीकारी की तर्ज पर ये कारीगर इन पत्थरों को अपने हाथों से तराशते और पॉलिश करते हैं। प्राकृतिक और रंग बिरंगे नेचुरल सेमी प्रेशस स्टोन से बनी बेहद खूबसूरत और प्रीमियम राखियां खूब पसंद की जा रही हैं।
1: हम लोग फोर्थ जनरेशन से जो हैंडीक्राफ्ट के कारोबार को करते आ रहे हैं, इस बार रक्षाबंधन के त्योहार पर हम लोगों के द्वारा एक नया कॉन्सेप्ट तैयार करा गया, क्योंकि मार्केट के अंदर पहले से बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिक की राखी, ब्रास की राखी, सिल्वर की राखी आती थी, जो आदमी कुछ वक्त के लिए यूज़ करता था, फिर उसको उठा के रख दिया करता था, और फिर हर नए त्यौहार पर एक नई चीज़ को खरीदने की आवश्यकता पड़ती थी। तो हमने ये सब चीज़ें सोचते हुए इस बार मार्केट के अंदर हमने एक नया कॉन्सेप्ट तैयार किया। हमने नेचुरल सेमी प्रेशियस स्टोन्स की राखियों को तैयार कराया, जो कि कारीगरों के द्वारा तैयार करा गया है। हमने इसके अंदर न्यूजीलैंड से मदर ऑफ पर्ल को मंगाया, अफ्रीका से जो है मलाकाइट स्टोन को मंगाया, और ब्राज़ील से हमने एगेट्स को मंगाया, और उसके बाद एक आर्ट वर्क तैयार करके एक राखी बनाई गई है।
0: महाराष्ट्र में अकोला के बाजार रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर सजे हुए हैं। अपने भाइयों के लिए राखी पसंद करने के लिए दुकानों पर बहनों की भीड़ जुट रही है। यहाँ के दुकानों पर पारंपरिक राखियों से लेकर मॉडर्न डिजाइन वाली राखियां मौजूद हैं।
2: रक्षाबंधन के त्योहार के लिए जो है बाजारों में जो है दुकान यहाँ पर लग चुके हैं राखियों के। एक सुंदर सुंदर राखियां जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है संपूर्ण दुकान में लगी हुई है, और इस दुकान में ये सिंपल राखियां, लेकिन ये धागे वाली राखियां जो अपने भाई को बहन बड़े प्यार से और बड़े श्रद्धा के साथ बांधती है, और ये पवित्र बंधन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है सनातन धर्म में। यहाँ पर बहुत ही वैरायटी वाली राखियां है। हम फिलहाल अकोला के एक ऐसे दुकान में है जहाँ पर जो है लगभग 500 रुपए से लेकर तो 10 रुपए तक की राखी है, और ये जो राखी है ये जो है मोतियों की राखी है, कोई रुद्राक्ष वाली है, कोई माला वाली यहाँ पर राखी यहाँ पर दिखाई दे रही है।
0: बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली राखियाँ तो भाई भाभी के लिए कपल राखी। इन सब के अलावा डायमंड लुक वाली राखी, रिंग राखी और ज्वेलरी डिजाइन की राखियों की डिमांड है। बहनें इस बाजार में अपने भाई के लिए राखियां पसंद कर रही हैं।
2: क्या चॉइस है अपने भैया के लिए, क्योंकि एक ही बार त्योहार आता है, कितनी खुशी है। देखिए हंसकर तो आप बता रहे हैं कि भाई के लिए बहुत ही वैरायटी वाली खरीदनी है, क्या प्लान करके आई हो?
3: अभी तो बहुत बढ़िया राखी लेने का इरादा है, लेकिन अभी देख रहे हैं, सोच रहे हैं अभी कौन सी लेनी है, क्या करना है, तो देख रहे हैं अभी।
2: भाई खास हो तो बहन भी उसके लिए खास राखी सोचती है।
3: हाँ, वो तो है, अभी देख रहे हैं जो अच्छे से अच्छी राखी मिलेंगी वो ले लेंगे।
4: रक्षाबंधन ये बहुत स्पेशल ओकेशन होता है, सबके लिए होता है, जिनके भाई होते भी है, जिनके नहीं भी होते हैं, उनके लिए भी बहुत स्पेशल होती है, क्योंकि सबके पास एक ऐसा भाई तो जरूर होता है कि जो उसको सपोर्ट करे, हेल्प करे, और जो जब भी कभी अड़चन आ जाए तो उसके उसके लिए आप जल्दी से आ जाए। मैंने अपने भाई के लिए बहुत हीरे जैसी राखी ली है, आप देख सकते हैं बहुत शानदार हीरा लगा हुआ है, मेरा भाई भी हीरे जैसा ही है।
0: राजस्थान के अलवर की राखियों की डिमांड विदेश तक में है। यहाँ के बाजार में 1 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की अलग अलग तरह की आकर्षक राखियाँ मिल रहे हैं। इस बार खासकर बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर, लाइटिंग और म्यूजिक के साथ ही पतली डोरे वाली राखियों की डिमांड सबसे ज्यादा है।
5: देश विदेश में रक्षाबंधन की तैयारियां जोरों से चल रही हैं, तो अलवर की राखियां देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी खास पहचान रखती है। करीब 4 से 5 हजार डिजाइनों में तैयार होने वाली अलवर की राखियां देश के अलावा करीब 15 देशों में सप्लाई होती है। मैं इस समय एक गोदाम पर मौजूद हूं, जहां पर तरह तरह की राखियां हैं। मैं दिखाना चाहूंगा, ये कार्टून कैरेक्टर की राखियां हैं। ये राखियों के साथ ही इरेजर का भी काम करती हैं। छोटे बच्चों को ये राखियां खास पसंद आ रही हैं, जिसमें अलग अलग तरह के डिजाइंस, एस्ट्रोनॉट तरह के जो कार्टून कैरेक्टर होते हैं उन कैरेक्टर के रूप में इनको तैयार किया गया है। और इन राखियों को रक्षाबंधन के बाद बच्चे अपने बैग, स्कूल बैग में भी काम में ले सकते हैं। इरेजर का ये काम करेंगी। इसके अलावा तरह तरह की राखियां कार्टून कैरेक्टर के रूप में, लाइट वाली राखियां, म्यूजिक वाली राखियों की डिमांड सबसे ज्यादा है।
0: ये परंपरा न केवल सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखे हुए है, बल्कि हजारों परिवारों को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाने का माध्यम भी बन चुकी है। यहां की बनी राखियां देखने में सुंदर तो होती ही है, साथ ही सस्ती भी मिलती है।
6: पूरे अलवर में जब माल यहीं से सप्लाई होता है, तो आप सोच लीजिए वैरायटी तो सबसे ज्यादा यहीं पे है और यहीं से ही हर जगह माल सप्लाई होता है, तो वैरायटी जितनी यहाँ मिलते हैं शायद ही कहीं मिलते होंगे।
5: महिलाओं के लिए कुछ अलग से डिजाइन की डिमांड?
6: हाँ, बहुत टाइप्स के डिजाइन है। आप देख सकते हैं, खुद देख सकते हैं आप यहाँ पे कितने टाइप्स के डिजाइन लगे हुए हैं।
7: बहुत अच्छा होता है रक्षाबंधन का, तो बहनों में तो इतना उत्साह होता है, भाइयों के राखी बांधती है, खूब उत्साह होता है।
5: शॉपिंग करने आप आए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा, किस किस तरह की राखियां पसंद कर रहे हैं?
7: देखो, मुझे पसंद आ जाए तो आए हैं, जैसे जैसे पसंद आएंगे वैसे वैसे ले लेंगे।
5: कोई खास डिजाइन या ऐसा भी अब समय के साथ साथ चेंज होने लगा है?
7: नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा जो पसंद आएगा वैसे ले लेंगे।
8: भैया भाभी का जोड़ा है,
7: जो भैया भाभी का जोड़ा भी है वैसा भी ले सकते हैं, सादा भी ले सकते हैं, जैसे लिबास में आ रही वो भी ले सकते हैं, कैसे भी ले।
0: अलवर के शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में राखी बनाई जाती है, जिसकी वजह से इस कारोबार में हजारों लोग जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में रक्षाबंधन के अवसर पर भगवान खजराना गणेश को विशाल 40 इंच लंबी और 40 इंच चौड़ी भव्य सनातन राखी अर्पित की जाएगी। ये राखी करीब 2.5 महीने की मेहनत से तैयार की गई है और इसमें देश के विभिन्न सांस्कृतिक केंद्रों से मंगाई गई विशेष सामग्री का उपयोग किया गया है। पिछले 24 सालों से सामाजिक और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी कर रहा पालरेचा परिवार ने इस राखी को तैयार किया है। इस विशेष राखी में सनातन संस्कृति, राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक संदेशों को पिरोया गया है।
9: 10 से 15 लोग मिलके हम ये राखी बनाते हैं और करीबन हमको 1 से 2 महीना लगता है इस राखी को कंप्लीट करने में। और इसमें आप देखें कि सूरत के मोती और जयपुर कलकत्ता का बारीक काम किया है, पूरा हैंडवर्क की राखी है और हैंडमेड राखी है।
0: इस साल राखी की थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने पर आधारित है। राखी में भगवान जगन्नाथ, बाबा महाकाल, माँ वाग्देवी, महाकाली और महालक्ष्मी के स्वरूपों के माध्यम से राष्ट्र गौरव, सनातन संस्कृति, समृद्धि, शक्ति और सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया गया है।
9: 25 सालों से पालरेचा परिवार द्वारा बनाई गई राखी खजराना गणेश जी को राखी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त के दिन अर्पित की जाएगी। यह 40x40 इंच की राखी विश्व की सबसे बड़ी राखी है। हम लोग हर साल एक थीम बेस्ड राखी बनाते हैं और वंदे मातरम को जो 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं उसको हमने दर्शाते हुए एक सनातन धर्म पर राखी बनाई है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमने कमल के अंदर विराजित जगन्नाथ जी, और जैसा कि सावन का महीना चल रहा है और बाबा महाकाल ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो बाबा महाकाल, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी सभी का हमने इसमें वो किया है। खजराना गणेश जी को यह राखी सिर्फ चिंतामण गणेश जी, महाकालेश्वर, वीर बगीचे, हनुमान मंदिर ऐसे कई मंदिरों में अर्पित की जाएगी।
0: ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के लिए विशाल राखी तैयार की गई है, जिसे उन्हें रक्षाबंधन के दिन पहनाया जाएगा। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के लिए विशेष पारंपरिक और भव्य राखियां तैयार की गई हैं। ये विशेष राखियां बासुंगा पाट नाम की पवित्र रेशमी कपड़े और पारंपरिक प्राकृतिक रंगों से बनाई गई हैं।
10: जगन्नाथ जी महाप्रभु 2 राखी परिधान करेंगे और बलभद्र महाप्रभु 2 राखी परिधान करेंगे। इसका साथ में 2 माला भी, सुपारी माला भी परिधान करेंगे। ये हम इसको चिताला की अमावस्या से शुरू करते हैं। इसमें हम बनाने के लिए 10-12 दिन लगता है ये अभी काम कंप्लीट हो गया है।
0: इस बार धार्मिक राखियों की भी खूब डिमांड है, जैसे राधा कृष्ण, गणेश, शिव पार्वती और श्री राम की आकृति वाली राखियां। स्टोन वर्क, डायमंड लुक और फैंसी राखियां भी युवतियों और स्टाइलिश राखियों की चाह रखने वालों को खूब पसंद आ रही हैं। हर बजट और पसंद के मुताबिक राखियों की ये अनगिनत वैरायटी रक्षाबंधन को और भी खास बना रही है। इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा, अकोला से धनंजय साबले और अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
11: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
0: हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। बुधवार 26 अगस्त को सेंसेक्स 183 अंक लुढ़ककर 77,473 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 127 अंक फिसला, ये गिरकर 24,208 पर आ गया। सोने की कीमत में हल्की गिरावट आई है। बुधवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 600 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,66,500 रुपए हो गई है। वहीं चांदी 500 रुपए मजबूत हुई, अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 2,50,500 रुपए हो गई। DSW MG Motor India ने अपनी नई SUV हेक्टर टोमाहॉक के ऑल इलेक्ट्रिक और प्लग इन हाइब्रिड दोनों मॉडल को भारत में लॉन्च कर दिया है। हेक्टर टोमाहॉक EV की शुरुआती कीमत करीब 19.5 लाख रुपए रखी गई है।
11: सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की अपकमिंग फिल्म द विवान का टीजर रिलीज हो गया है। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
0: एक्टर अरशद वारसी के फैंस के लिए बड़ी खबर है। उनकी क्राइम कॉमेडी थ्रिलर फिल्म जीवन भीमा योजना का ट्रेलर रिलीज हो गया है। खास बात यह है कि फिल्म में अरशद वारसी पहली बार डबल रोल में नजर आएंगे। वो जीवन और भीमा दोनों किरदार निभा रहे हैं। अभिषेक डोगरा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में संजीदा शेख, विजय राज, पूजा चोपड़ा, बृजेंद्र काला और अतुल परचुरे भी अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म 4 सितंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हॉरर फिल्मों के शौकीनों के लिए डर और रोमांच से भरपूर फिल्म बॉक्सी का ट्रेलर सामने आ गया है। सिक्किम के जंगलों की पृष्ठभूमि पर बनी ये फिल्म नारीवादी लोक कथाओं से प्रेरित है। कहानी में हॉरर के साथ रोमांच और एक लड़की के जीवन में आने वाले बदलावों को दिखाया गया है। भार्गव सैकिया के निर्देशन और हर्ष वैभव की कहानी वाली इस फिल्म में चिराया, प्रसन्ना बिष्ट और सिद्धार्थ शॉ मुख्य भूमिकाओं में है। कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में सराहना पाने के बाद फिल्म 9 अक्टूबर को रिलीज होगी। मिर्जापुर के मुन्ना भैया और गुड्डू पंडित एक बार फिर दर्शकों के बीच लौटने को तैयार हैं। मिर्जापुर द मूवी का नया प्रोमो जारी कर दिया गया है। दिव्यंदु और अली फैजल की झलक ने फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। गुरमीत सिंह के निर्देशन में बनी इस फिल्म को रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया है। पुनीत कृष्णा ने कहानी लिखी है। फिल्म 4 सितंबर को हिंदी और तेलुगु में रिलीज होगी। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की अपकमिंग फिल्म द विवान का टीजर रिलीज हो गया है। टीजर में कैसी काल्पनिक दुनिया की झलक दिखाई गई है, जो दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा रही है। फिल्म का निर्देशन दीपक कुमार मिश्रा ने किया है। निर्माण की जिम्मेदारी शोभा कपूर, एकता आर कपूर, अरुणाव कुमार और नीरज कोठारी ने संभाली है। TVF और 11.11 प्रोडक्शन के सहयोग से बनी ये फिल्म बड़े पर्दे पर 25 सितंबर को रिलीज होगी। पंजाबी सिनेमा की चर्चित जोड़ी गिप्पी गिरेवाल और शहनाज गिल एक बार फिर साथ नजर आने वाली हैं। दोनों की फिल्म सिंह वर्सेस कॉर 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म की शूटिंग पंजाब, कोलकाता और कनाडा में हुई है। नवनीत सिंह के निर्देशन में बनी इस कहानी को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है। गिप्पी गिरेवाल, रवनीत कौर गिरेवाल, श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी इसके निर्माता हैं। फिल्म 11 सितंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
11: चलिए न्यूज पथ में खबरों के सफर को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
11: नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद मिशन जिंदगी तेज, प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से की बात, भारत की ओर से भेजा जा रहा राहत सामान, यूपी बिहार में प्रशासन अलर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने रचा नया कीर्तिमान, नई बसों के मामले में देश में यूपी नंबर वन, महिलाओं के लिए पैनिक बटन से लेकर हेल्पलाइन की कनेक्टिविटी। देश भर में रक्षाबंधन की तैयारियां तेज, वाराणसी में बनाई गई खास एआई राखी, रायपुर में सुरक्षा बल के जवानों को बांधी गई राखियां। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, मुंबई के महाराजा नाम से मशहूर करीब 47 फीट के बप्पा का आगमन, नरसिंह रूप में विराजमान है गणपति। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज, अब मंदिर में मिलेगी निःशुल्क शीघ्र दर्शन की सुविधा, प्रशासन के फैसले से लोगों में खुशी। न्यूज पथ में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
13: भाई बहन के रिश्ते की खूबसूरती शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये तस्वीरें देखकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाए। एक बहन ने अपने पैरों से भाई की कलाई पर राखी बांधी और फिर उसी अंदाज में मिठाई भी खिलाई। जिंदगी में चुनौतियाँ कितनी भी बड़ी हों, हौसला उससे कहीं बड़ा होना चाहिए। इस बिटिया का जज्बा हर किसी के लिए मिसाल बन गया है। चेहरे पर मुस्कान और दिल में भाई के लिए बेशुमार प्यार, सच में इससे अनमोल राखी शायद ही कोई हो। इस बच्चे का टैलेंट देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। प्लास्टिक के गुल्लक में फंसे सिक्कों को निकालने के लिए बच्चे ने ऐसा जुगाड़ लगाया कि हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है। चुंबकीय तकनीक की मदद से सिक्के एक एक करके बाहर आ रहे हैं और अपनी इस कामयाबी पर बच्चा भी बेहद खुश नजर आ रहा है। छोटी सी उम्र में इतनी समझ और प्रयोग करने का जुनून देखकर इसे बचपन का विराट कोहली कहना गलत नहीं होगा। हुनर ऐसा ही रहा तो बड़ा होकर शानदार इंजीनियर बन सकता है। कला जब भक्ति से जुड़ती है तो उसका रूप और भी खास हो जाता है। नारियल पर भगवान गणेश की यह अद्भुत कलाकारी देखकर आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। कलाकार बेहद बारीकी से नारियल की सतह पर गणपति की सुंदर आकृति उकेर रहा है। हर छोटी रेखा में उसकी मेहनत और हुनर साफ दिखाई देता है। साधारण से नारियल को अपनी कला से भगवान गणेश की प्रतिमा में बदल देना वाकई काबिले तारीफ है। भक्ति और रचनात्मकता का यह अनोखा संगम हर किसी का दिल जीत रहा है। इस खेल में सिर्फ ताकत नहीं बल्कि बेहतरीन तालमेल और संतुलन की भी जरूरत है। चार महिलाएं मिलकर एक डिब्बे को उठाती हैं और बिना अपना बैलेंस बिगाड़े उसे दूसरे डिब्बे के ऊपर रखने की कोशिश करती हैं। हर कदम पर एक दूसरे का साथ और सही तालमेल इस खेल को और दिलचस्प बना देता है। महिलाओं का शानदार संतुलन देखकर वहां मौजूद लोग भी इनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। टीम वर्क और समझदारी का ये अनोखा नजारा सोशल मीडिया पर भी खूब पसंद किया जा रहा है।
11: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में महिलाओं को मिली सौगात की। रक्षाबंधन से ठीक पहले कई राज्य सरकारों ने महिलाओं के लिए बड़ी योजनाओं की शुरुआत की है। देश की राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली लक्ष्मी योजना नाम की शुरुआत कर लाभार्थी महिलाओं को पहली किश्त जारी की। दिल्ली लक्ष्मी महिला योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में भेजे जाएंगे। दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए 5110 करोड़ का भारी भरकम बजट आवंटित किया है, जिससे राज्य की लगभग 17 लाख से अधिक महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। आज 26 अगस्त से आधिकारिक तौर पर शुरू हुई इस योजना के लाभार्थियों को 1 सितंबर से पहली किश्त लाखों खातों में ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी। ये योजना 18 से 60 वर्ष की उन महिलाओं के लिए है जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। सरकारी कर्मचारी, करदाता या परिवार में चार पहिया वाहन होने पर इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की वरिष्ठ महिला नागरिकों के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश की 60 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु की सभी बुजुर्ग महिलाओं को यूपी रोडवेज की सरकारी बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है। यात्रा के दौरान महिलाओं को सिर्फ अपना आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड दिखाना होगा, जिससे कि उनकी आयु सत्यापित की जा सके। यूपी की लगभग 1 करोड़ से अधिक बुजुर्ग महिलाओं को लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना के दायरे में लाया गया है। बिहार में भी सीएम सम्राट चौधरी ने महिलाओं के लिए अहम योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है। बिहार में स्कूल और कॉलेज आने वाली छात्राओं की सुरक्षा के लिए पुलिस दीदी यानी कि अभया ब्रिगेड को 4,700 स्कूटर और मोटरसाइकिलें सौंपी जाएंगी। मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना के तहत बिहार की करीब 1,000 योग्य छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए 4 साल तक हर महीने 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना के तहत पात्र महिलाओं को अपना व्यवसाय या फिर स्टार्टअप शुरू करने के लिए 50,000 रुपए से लेकर 2,00,000 रुपए तक की मदद मिलेगी। रक्षाबंधन के मौके पर देश के कई राज्यों ने महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त सफर की सौगात दी है। इनमें यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश शामिल है। जाहिर है देश के कई राज्यों में महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम बनाने के लिए सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को लेकर हमने लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
14: प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का मास्टर स्ट्रोक और सभी 60 वर्ष से ऊपर महिलाओं को फ्री निःशुल्क यात्रा। आप देखिए ये सारी जो बसें हैं इन्हीं बसों से मातृशक्ति योजना के तहत उनको फ्री एक तरीके से अब आजीवन ये सेवा दी जाएगी। और ये मास्टर स्ट्रोक योगी आदित्यनाथ का माना जा रहा है। ये महिलाएं देखिए जो 60 साल से ऊपर की हैं वो सभी इससे निःशुल्क यात्रा कर पाएंगी। पूरे प्रदेश में जहां भी उनको जाना है वो इस बस के जरिए जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल कैबिनेट में इसको पास करने के बाद आज इसका इनॉग्रेशन है। आप देखिए कई महिलाएं अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए तैयार हैं, बस में बैठ रही हैं, चढ़ रही हैं, चूंकि उनको वहां पहुंचना है अपने गंतव्य स्थान पर एक तरीके से। इसको लेकर ये सभी बसों का आज इनॉग्रेशन किया जा रहा है। और इसमें सबसे खास बात है कि वो महिलाएं हैं जो कि पूरी तरीके से अगर माने तो हम सब यहाँ से दूर जाने के लिए बैठी हम भाई कुछ महिलाएं उनसे भी बात कर लेते हैं। जिस माता जी क्या नाम है आपका?
15: इत्रा।
14: ये बताइए जो बस है ये आप फ्री कर दिए योगी जी ने, आप लोगों को कहाँ अभी जाएंगी तो कहाँ के लिए बैठी हैं?
15: मोहनलालगंज।
14: मोहनलालगंज के लिए?
15: हाँ।
14: तो सुविधा कैसी है अब योगी जी ने की है जो? फ्री
15: फ्री
14: सुविधा ठीक है?
15: हाँ।
14: आप बताओ माता जी क्या नाम है?
16: माया देवी।
14: ये बताइए जो सुविधा की है योगी जी ने कि सबको फ्री रहेगी अब बस 60 साल के ऊपर, आपको क्या लगता है कि कैसी योजना?
16: नहीं ठीक है उतना।
14: पहले बसों में पैसा पड़ता था?
16: हाँ पहले पैसा पड़ता था।
17: हमारे योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, वो हमको यात्रा करवा रहे हैं हमारे लोग बुजुर्ग मेरी औरतों को, और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ
14: तो सब फ्री हो गया पूरे यूपी में, कहीं भी यूपी
17: हाँ कहीं भी जाएंगे। ऐसे है हमारे योगी जी और मोदी जी और हमारे यहाँ के राजेश्वर विधायक जी सरोजी नगर के अच्छे से बने रहा है आगे।
14: देखिए आप भी बताइए माता जी क्या कैसी सुविधा है ये जो फ्री कर दिया है सबको?
15: बस फ्री कर दिया है हमने यात्रा करने के लिए फ्री कर दिया। होगी मोगित दी वो हमने बस यात्रा करने जा रहे हैं।
18: तो रेखा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिससे कि उन्होंने हम महिलाओं के बारे में सोचा है इस बार में, तो हमें भी थोड़ा सा अपना अच्छा लगेगा कि किसी से मांगना ना पड़े, तो मुझे तो बहुत खुशी है इस मामले में।
14: त्योहार का सीजन है, कितना मायने रखते हैं ये 2500 रुपए?
18: बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। ये समझ लीजिए कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो हमारे बारे में इतना सोचती है, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद उनका।
19: सर काफी हद तक फायदेमंद है, 2500 रुपए कम नहीं होते हैं, अब एक काम आप महिला के लिए बहुत है। हमने 1500 की आरडी करवाई है, 1000 रुपए कार्ड में है, तो 1000 रुपए अपनी मर्जी से दे, जो भी हमें दे जरूरत की चीज होगी वो ले लेंगे।
20: 2500 रुपए में कुछ अपने लिए शॉपिंग करेंगे, जो घर के खर्चे से हम बचा नहीं सकते थे, अब 2500 रुपए अपने बारे में सोचेंगे, उससे हम खर्चा करें, अपने बारे में सोचें, और कुछ घर वालों को थोड़ी सी मदद हो जाएगी घर के खर्चों में, गृहिणी हूँ तो घर के खर्चों में मदद हो जाएगी उनके।
11: नोएडा की महज 17 साल की राहिणी बंसल अभी 12वीं कक्षा में पढ़ती है, लेकिन उनके हौसले ने सैकड़ों महिलाओं की जिंदगी बदल दी। राहिणी गांव की महिलाओं और लड़कियों को सिलाई, कढ़ाई और बुनाई की ट्रेनिंग देती हैं और फिर उन्हें काम भी उपलब्ध कराती हैं। पर जो बात सबसे खास है वो ये कि राहिणी वेस्ट मटेरियल से डिजाइनर पोशाक तैयार कर रही हैं और इसी काम को लेकर साल 2024 में इन्होंने सूत्रधार नाम से अपना स्टार्टअप खोला है। दो साल पहले 6 महिलाओं से शुरू हुई इनकी इस पहल से अब 250 महिलाएं जुड़ गई हैं। तो चलिए मिलवाते हैं आपको राहिणी से।
1: ट्वेल्थ में पढ़ाई करने वाला 17 साल का बच्चा ये सोच रहा होता है कि स्कूल से निकलने के बाद ट्वेल्थ के बाद करना क्या है, इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टर बनना है कि यूपीएससी की तैयारी करनी है। लेकिन ट्वेल्थ क्लास की ही एक बच्ची ने एक ऐसी अनोखी पहल की शुरुआत कर दी जिसने कई गरीब महिलाओं और लड़कियों की जिंदगी बदल कर रख दी है। मिलवाते हैं आज आपको नोएडा की राहिणी से। तो राहिणी मेरे साथ में है, सिर्फ 17 साल की है, बोर्ड्स के एग्जाम ट्वेल्थ में ये इस बार बैठेंगी, लेकिन जो सोच, जो समझदारी इन्होंने दिखाई है, इनका काम इनकी उम्र से कहीं आगे निकल चुका है, कहीं ज़्यादा इनको उम्र से अपना बड़ा बता रहा है, कम से कम मानसिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर। बहुत सारी चीज़ें आप जो यहाँ पर देख रहे हैं वो सब राहिणी के इनिशिएटिव से तैयार हुई हैं। ये कभी वेस्ट मटीरियल हुआ करता था, फैक्ट्री से कपड़ा निकलता था, नदियों तक पहुँचता था, ना सिर्फ नदियों को दूषित कर रहा था कई बार किसी एक शर्ट में जो 3 कपड़े 4 कपड़े इस्तेमाल हुए हैं वो 3-4 फैक्ट्री से आए हैं, तो वो तो बल्क में आते होंगे, उनको अलग अलग करना, छांटना, ये सब कुछ बड़ा मुश्किल काम होगा
21: ये सब।
1: और फिर वो सब जाके जुड़ेंगे कैसे किसी एक चीज में, ये भी समझ होनी चाहिए।
21: ये सब हमारी लेडीज करती हैं। वर्षा दीदी है जिनने 35 से ज़्यादा वर्कशॉप्स यहाँ पे लिए हैं सूत्रधार में, वो 2 साल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनको डिज़ाइन की काफ़ी अच्छी नॉलेज है, तो उनके साथ साथ हम सब ने सीखा, इनफैक्ट मैंने भी सीखा, और उनने हमारे को सबको ट्रेनिंग दी कि हम लोग काफ़ी सारा बल्क मटेरियल जो हमारे पास बोरियाँ भर भर के आता है किलोज में, उसको हम कैसे सेपरेट करें, हम उसको कैसे अलग अलग करके चूज़ करें कि कौन सा कपड़ा किसके साथ फिट जाएगा।
1: एक तो हम कहते हैं कि स्टिचिंग का सिखाया, फिर आपने बताया कि ये जो ब्लॉक प्रिंटिंग है ये भी आपने लड़कियों को सिखाई, और क्या क्या सिखाया?
22: जैसे टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग होती है, फैब्रिकेशन होता है, जिसको जितना आता है, जैसे कोई सिलाई कढ़ाई में है, किसी को पेंटिंग अच्छी आती है, कोई बुनाई अच्छी कर लेती है, किसी को क्रोशिया आता है, ऊन सिलाई आती है, तो जिसकी जो भी क्वालिटीज होती है उसको उस हिसाब से काम दिया जाता है।
1: लड़कियों से शुरुआत हुई, 6 महिलाओं से शुरुआत हुई, आज ये नंबर 2.5 साल 3 साल में कितना बड़ा हो गया?
21: आज हमारे पास 2050 से ज़्यादा महिला हमारे साथ जुड़ी हुई हैं।
1: 250?
21: 250 से ज़्यादा, और जल्दी ये नंबर 300 तक भी पहुंच जाएगा। जो सेवा भारती है, एक इंस्टीट्यूट है, ग्लोबल इंस्टीट्यूट, उन्होंने सूत्रधर को ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया है ताकि मेरे कॉलेज जाने के बाद वो अपने अंडर सूत्रधर को कंटिन्यू कर पाएँ, तो उसके थ्रू हमारी महिलाएं जब जुड़ जाएंगी तो असली नंबर हमारे पास 10 या 11 हज़ार का हो जाएगा। तो इसके अंडर सूत्रधर ने काफ़ी औरतों को हेल्प करी, 300 औरतों को मात्र, अभी होने वाले 300 औरतें, उनकी डायरेक्टली हेल्प करी।
11: बीजिंग में ह्यूमनाइड रोबोट्स ने पहली बार रस्साकशी में दिखाया अपना दम। आइए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां दुनिया भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
13: बीजिंग में ह्यूमनाइड रोबोट्स ने पहली बार रस्साकशी में अपनी ताकत का दम दिखाया। दो दो रोबोट्स की टीमें आमने सामने रही और 3 राउंड तक मुकाबला चला। रोबोट्स को वजन के आधार पर हल्के और भारी वर्ग में बांटा गया। खास बात यह है कि इन खेलों के जरिए रोबोट्स की इंसानों जैसी क्षमता को परखा जा रहा है। फुटबॉल रेस के साथ फैक्ट्री, रेस्टोरेंट और ऑफिस जैसे माहौल में भी उनकी कार्य क्षमता जांची गई। वर्ल्ड ह्यूमनाइड रोबोट गेम्स में कुल 51 इवेंट रखे गए हैं। बीजिंग में ह्यूमनाइड रोबोट्स ने अपनी ताकत और तकनीक से सबको हैरान कर दिया। बीजिंग की टीम के तियांगोंग अल्ट्रा रोबोट ने हाई जंप में 3.4 मीटर की ऊंचाई पार कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस चलान के साथ उसने अपना ही पुराना रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। मुकाबले में रोबोट के बैलेंस और ताकत की कड़ी परीक्षा हुई। महीनों की प्रैक्टिस के बाद मिली इस कामयाबी ने रोबोट की क्षमता दिखाई। वहीं गैलेक्सिया AI के केंगो ने फ्लोर एक्सरसाइज में खिताब जीता और 360 डिग्री के बटरफ्लाई किक समेत कई शानदार मूव दिखाए। नासा के एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन और ESA की सोफी एडेनो ने स्पेस स्टेशन के बाहर स्पेस वॉक कर अहम काम किया। दोनों ने धरती और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बीच तेज डेटा कनेक्शन के लगाए जा रहे खास एंटीना पर काम किया। इस सिस्टम के पूरा होने से स्पेस स्टेशन से धरती तक तस्वीरें और दूसरी जरूरी जानकारी तेजी से भेजने में मदद मिलेगी। नया एंटीना नासा के ह्यूस्टन कंट्रोल सेंटर और स्पेस स्टेशन के बीच संपर्क को और बेहतर बनाएगा, यानी भविष्य में अंतरिक्ष से डेटा ट्रांसफर ज्यादा तेज और प्रभावी हो सकेगा। अर्जेंटीना में टैंगो का सबसे बड़ा मुकाबला शुरू हो गया है। वर्ल्ड टैंगो चैंपियनशिप में दुनिया भर के 800 से ज्यादा कपल्स हिस्सा ले रहे हैं। हर जोड़ी अपनी शानदार डांस और तालमेल से जजों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। अर्जेंटीना के अलावा कई देशों से डांसर्स यहां पहुंचे हैं, जबकि कुछ ने अलग अलग देशों में हुए क्वालिफाइंग मुकाबलों के जरिए जगह बनाई है। अभी सेमीफाइनल में जोरदार मुकाबला चल रहा है। चैंपियनशिप के फाइनल 1 और 2 सितम्बर को होंगे। टैंगो की शुरुआत 19वीं सदी के आखिर में हुई थी। लंदन के एक फूड हॉल में नेशनल डॉग डे के मौके पर डॉग्स के लिए खास फूड फेस्टिवल शुरू किया गया। यहां डॉग्स को इंसानों की तरह अलग अलग डिश चखने का मौका मिला। मेन्यू में चिकन राइस, सैल्मन, डक नूडल्स, चिकन टैकोस, मिनी स्टेक और फ्राइज शामिल रहे। इतना ही नहीं, डॉग्स के लिए पिज्जा और संडे रोस्ट भी तैयार किया गया। खास बात यह रही कि सभी डिश में डॉग्स के लिए सुरक्षित सामग्री का इस्तेमाल किया गया। नेशनल डॉग डे हर साल 26 अगस्त को मनाया जाता है।
11: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
23: और दुर्भाग्य कहता है
24: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
25: अविश्वास में विश्वास बसता है,
26: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
27: गुड न्यूज टुडे।
28: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
25: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के।
1: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में इतिहास रचने के बाद अब एशियन गेम्स पर है मीराबाई चानू की नजर। खेल जगत से जुड़ी ऐसे इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें खेल चक्कर।
2: भारत के खिलाफ कोलंबो टेस्ट में फॉलो ऑन खेल रही श्रीलंका ने दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए हैं और इस तरह भारत की पहली पारी के स्कोर से 16 रन की बढ़त हासिल कर ली है। बारिश की वजह से चौथे दिन का खेल खत्म करना पड़ा, उस वक्त सुनल दिनुषा और केशवराव नवनाथा क्रीज पर थे। भारत ने पहली पारी 503 रन पर घोषित की थी, जवाब में श्रीलंका 290 रन पर ऑल आउट हुआ था। भारत को 213 रन की बढ़त मिली जिसके बाद फॉलो ऑन दिया गया। जापान में होने वाले एशियन गेम्स में क्रिकेट का शेड्यूल जारी हो गया है। भारतीय टीम 28 सितंबर को सीधे क्वार्टर फाइनल में अपना पहला मुकाबला खेलेगी। भारत का मैच किस टीम से होगा ये अभी तय नहीं है। एशियन गेम्स में 10 पुरुष टीमें हिस्सा ले रही हैं। इनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका सीधे क्वार्टर फाइनल खेलेंगे, वहीं अफगानिस्तान सहित 6 टीमें प्रिलिमिनरी राउंड खेलेंगी। टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान का मैच तभी संभव है जब दोनों टीमें फाइनल में पहुंचे। टूर्नामेंट नागोया के पास कोरोगी एथलेटिक पार्क में होगा। जसप्रीत बुमराह के नंबर वन बॉलर का ताज अब ऑस्ट्रेलिया के 30 गेंदबाज मिचेल स्टार्क के सिर सज गया है। मिचेल स्टार्क ने जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़कर पहली बार आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में नंबर एक का स्थान हासिल कर लिया है। बांग्लादेश के खिलाफ मैकाई टेस्ट में 10 विकेट लेने के बाद स्टार्क 2 स्थान की छलांग लगाकर टॉप पर पहुंचे हैं। उनके 872 रेटिंग पॉइंट हैं जबकि बुमराह 862 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में इतिहास रचने के बाद अब मीराबाई चानू की नजर एशियन गेम्स पर है। भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू के मुताबिक जापान के आईची नागोया में होने वाले एशियन गेम्स 2026 उनके इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग करियर के सबसे मुश्किल मुकाबलों में से एक होंगे। आपको बता दें कि मीराबाई चानू एशियन गेम्स में 5 सदस्यों वाली भारतीय वेटलिफ्टिंग टीम की अगुवाई करेंगी। एशियन गेम्स में वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता 22 से 28 सितंबर तक आईची के टोकाई सिटीजन जिम्नेजियम में होगी।
1: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
3: क्या आपका तालमेल आपके बॉस के साथ अच्छा नहीं रहता? किसी भी नौकरी में उच्चाधिकारियों के साथ संबंधों की दिक्कत हो जाती है? कौन से ग्रह बैठाते हैं सामंजस्य, बनाते हैं तालमेल? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है। गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: तालमेल आपके बॉस के साथ अच्छा नहीं रहता, किसी भी नौकरी में उच्चाधिकारियों के साथ संबंधों की दिक्कत हो जाती है, कौन से ग्रह बैठाते हैं सामंजस्य, बनाते हैं तालमेल, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
4: नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद मिशन जिंदगी तेज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से की बातचीत, भारत की ओर से भेजा जा रहा है राहत सामान, उत्तर प्रदेश बिहार में प्रशासन अलर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने रच दिया नया कीर्तिमान, नई बसों के मामलों में देश में उत्तर प्रदेश नंबर वन, महिलाओं के लिए पैनिक बटन के हेल्पलाइन की भी कनेक्टिविटी। देशभर में रक्षाबंधन की तैयारियां तेज, वाराणसी में बनाई गई खास AI राखी, रायपुर में सुरक्षा बल के जवानों को बांधी गई राखियां। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज, मुंबई के महाराजा नाम से मशहूर करीब 47 फीट के बप्पा का आगमन, नरसिंह रूप में विराजमान है गणपति। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज, अब मंदिर में मिलेगी निःशुल्क शीघ्र दर्शन की सुविधा, प्रशासन के फैसले से लोगों को में खुशी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की
4: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां बात कर रहे हैं राखी के त्यौहार की। घरों में खुशियां हैं और बाजारों में रौनक, शुक्रवार को धूमधाम से पूरे देश में रक्षाबंधन मनाने की तैयारी है, जब भाई की कलाई पर राखी बांधी जाएगी, लेकिन भाई से पहले भगवान को भी राखी बांधने की भी परंपरा है। आज आपको भगवान गणेश और भगवान जगन्नाथ के लिए बनाई गई विशालकाय राखियां दिखाने जा रहे हैं, साथ ही साथ बताएंगे कि रक्षाबंधन त्यौहार पर क्यों भगवान को राखी अर्पित करनी चाहिए, अलग अलग भगवान के लिए अलग रंग की राखियां शुभ मानी जाती हैं, इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी। इसके साथ ही समझेंगे कि भाई की कलाई पर देवताओं की प्रतिमा वाली राखियां बांधना शुभ है या नहीं, ऐसी राखी बांधते हुए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसे भी हम जानकारों से समझने की कोशिश करेंगे। और आखिर में आपको नए दौर की नई राखियां जिनकी बाजार में जबरदस्त डिमांड है वो भी दिखाएंगे। देखिए, रक्षाबंधन पर भाई की कलाई सजाने वाली राखी अब सिर्फ एक धागा नहीं रही, इसका रूप भी बदला है और आकार भी बदल गया है। इंदौर में 40 इंच लंबी चौड़ी विशाल राखी तैयार की गई है, जिसे खजराना गणेश को अर्पित किया जाएगा। वहीं पर पुरी में भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के लिए भी बड़ा रक्षा सूत्र बनाया जा रहा है। खास बात इसमें यह है कि देवी देवताओं को राखी अर्पित करने की परंपरा सदियों पुरानी है, जिसमें गणेश, शिव, विष्णु, कृष्ण और हनुमान को अलग अलग रंगों की राखी चढ़ाने की मान्यता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि राखी पर भगवान गणेश, शिव और हनुमान जी को किस रंग की राखी अर्पित करनी चाहिए।

0: 40 इंच लंबी, 40 इंच चौड़ी, सलमा सितारों से सजी, नग और मोती जड़ी। इस राखी को चाहे तो महाराखी कह लीजिए, क्योंकि ये बनी भी तो महाकाय के लिए है।
1: 25 सालों से पालरेचा परिवार द्वारा बनाई गई राखी खजराना गणेश जी को राखी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त के दिन अर्पित की जाएगी। यह 40x40 इंच की राखी विश्व की सबसे बड़ी राखी है। हम लोग हर साल एक थीम बेस राखी बनाते हैं और वंदे मातरम को जो 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं उसको हमने दर्शाते हुए एक सनातन धर्म पर राखी बनाई है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमने कमल के अंदर विराजित जगन्नाथ जी, और जैसा कि सावन का महीना चल रहा है और बाबा महाकाल ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो बाबा महाकाल, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी सभी का हमने इसमें वो किया है। खजराना गणेश जी को यह राखी सिर्फ चिंतामण गणेश जी, महाकालेश्वर, वीर बगीचे, हनुमान मंदिर ऐसे कई मंदिरों में अर्पित की जाएगी। 10 से 15 लोग मिलके हम ये राखी बनाते हैं और करीबन हमको 1 से 2 महीना लगता है इस राखी को कंप्लीट करने में। और इसमें आप देखें कि सूरत के मोती और जयपुर कलकत्ता का बारीक काम किया है, पूरा हैंडवर्क की राखी है और हैंडमेड राखी है।
0: महाकाय यानी गौरी नंदन, गजपति गणेश, जिनके लिए इंदौर में ये खास राखी बनाई गई है। राखी पर बाबा महाकाल हैं, भगवान जगन्नाथ हैं, और इनके साथ ही महाकाली, महालक्ष्मी और माँ जगदेवी है। दावा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी राखी है। राखी के दिन इंदौर के खजराना गणेश को ये राखी अर्पित होगी। इंदौर में इस मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने कराया था और रोज यहाँ पर दर्शन के लिए हजारों की तादाद में भक्त आते हैं।
2: भगवान खजराना गणेश जी को रक्षाबंधन 28 तारीख के दिन प्रातः 8 बजे यह राखी अर्पण की जाएगी। जो राखी बनाने वाली सामग्री से बनाई गई है, फोम, गत्ता, सलमा, सितारा, नग, नगीना, जरी, गोटा, इसकी सामग्री कलकत्ता, सूरत, मुंबई, दिल्ली, जयपुर से मंगाई गई है। पिछले 2.5 से 3 महीनों से इस पे परिवार के और सभी मिल के 20 से 25 लोग कार्य कर रहे हैं। और इस बार की ये जो राखी है, यह वंदे मातरम जो 150 साल हुए हैं और इसका संविधान में प्रविधान हुआ है, उसको सामने रखकर हमने गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि जो सम्मान, जो गौरव हमारे 150 साल बाद वंदे मातरम को भारत में मिला है, हमारे राष्ट्र में मिला है, वो पूरी दुनिया में ये गौरव हमें वंदे मातरम को प्राप्त हो। और जैसा कि आप देख रहे हैं, भगवान जगन्नाथ, माँ सरस्वती देवी भोजशाला वाली, जो हमारी वाघमयी देवी की मूर्ति लंदन में है, वो हमें पुनः प्राप्त हो, धार को पुनः प्राप्त हो। माँ लक्ष्मी जी की कृपा सभी पे बनी रहे, महाकाल राजा की कृपा बनी रहे, महाकाली कलकत्ते वाली हमें शक्ति प्रदान करे। इन्हीं शुभ भावों के साथ गणेश जी, खजराना गणेश जी मंदिर में सतपाल महाराज, अशोक जी भट्ट और पुनीत जी भट्ट के निर्देशन में अर्पण की जाएगी।
0: इंदौर में गणपति तो पुरी में भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के लिए भी एक विशाल राखी बनाई गई है। लाल, पीला, नीला, हरा, भगवान के लिए बनाई जा रही इस राखी में भावना के तमाम रंग हैं।
3: ये जो राखी जो हम जो बना रहे हैं, ये प्रस्तुत हो रहा है बासुंगा टसर पार्ट से। ये बासुंगा पार्ट को हम चार कलर में विभक्त करके लाल और हलूद और नीला सबुज 4 कलर में बनाते हैं, और इसका साथ में और भी 4 सुपारी का माला बनाते हैं। ये एक सुपारी का माला में 54 सुपारी रख के इसके अंदर डाल के इसको फूल की तरह बनाते हैं। ये 4 ग्वामल और 4 राखी महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर के अंदर हम प्रभु जी को देंगे। वो इन्होंने जगन्नाथ जी महाप्रभु 2 राखी परिधान करेंगे और बलभद्र महाप्रभु 2 राखी परिधान करेंगे। इसका साथ में 2 माला भी, सुपारी माला भी परिधान करेंगे। ये हम इसको चिताला की अमावस्या से शुरू करते हैं। इसमें हम बनाने के लिए 10-12 दिन लगता है। ये अभी काम कंप्लीट हो गया है।
0: त्योहार भाई की कलाई पर प्यार की डोर बांधने का है, पर परंपरा देवताओं को भी रक्षा सूत्र बांधने की है। भगवान गणेश हो या भगवान जगन्नाथ, देवताओं को राखी बांधने की ये परंपरा भक्ति और समर्पण के साथ सुरक्षा की भावना से जुड़ी है। न सिर्फ मंदिरों में बल्कि रक्षाबंधन के अवसर पर घरों में भी देवताओं को राखी अर्पित की जाती है। आमतौर पर शिव जी, विष्णु जी, गणेश जी और हनुमान जी को राखी बांधना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता यह है कि इससे घर परिवार पर संकट नहीं आता और देवता अपनी कृपा से रक्षा करते हैं। केवल भगवान को ही नहीं बल्कि कई जगहों पर तो खेतों, पशुओं और घर के दरवाजों पर भी राखी बांधी जाती है ताकि बुरी नजर और विपत्ति दूर रहे। मान्यता ये भी है कि भाई को राखी बांधने से पहले भगवान गणेश को रक्षा सूत्र अर्पित किया जाना चाहिए।

0: करती हैं। जैसे गणेश जी को लाल या फिर पीले रंग की राखी अर्पित करनी चाहिए। लाल रंग को शक्ति, उत्साह और मंगल का प्रतीक माना जाता है, जबकि पीला रंग ज्ञान और शुभता से जुड़ा है। भगवान शिव को सफेद, लाल या रुद्राक्ष वाली राखी चढ़ाना शुभ माना जाता है। सफेद रंग शांति, पवित्रता और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है। भगवान कृष्ण को प्रेम और रक्षा का प्रतीक माना जाता है। उनके और द्रौपदी के बीच भी राखी का रिश्ता था और इसीलिए कई बहनें कृष्ण को भाई के रूप में राखी बांधती हैं। श्री कृष्ण को पीली, नीली या मोरपंखी रंग की राखी बांधना शुभ माना जाता है। इसी तरह हनुमान जी को लाल या फिर केसरिया रंग की राखी अर्पित करना शुभ माना गया है। और क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय है, तो ज्ञान, समृद्धि, धर्म और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए उन्हें पीले या फिर सुनहरे रंग की राखी अर्पित करना सबसे शुभ माना जाता है। जानकार मानते हैं कि राखी के दिन पूजा स्थान की सफाई करने के बाद भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक जलाना चाहिए, भगवान को तिलक लगाना चाहिए और उसके बाद फूल नैवेद्य अर्पित करके राखी या फिर रक्षा सूत्र अर्पित करना चाहिए। ये तो बात हुई भगवान को राखी अर्पित करने की, लेकिन भावना से जुड़ी राखियों पर भी इन दिनों भक्ति की छाप है। देवी देवता की तस्वीर या फिर उनसे जुड़े प्रतीक वाली राखियों का नया ट्रेंड है और इनकी डिमांड भी खूब है।
1: रक्षाबंधन का त्योहार करीब है और ऐसे में बाजारों में जो रौनक है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर रंग बिरंगी राखियों की बात करें तो हर एक स्टाइल में आपको राखियां जो है वो मिलेगी, चाहे वो आपकी भाभी के लिए हो, भाई के लिए हो या फिर बच्चों के लिए हो। अलग अलग स्टाइल का जो राखियां हैं उससे पूरा बाजार जो है भर चुका है इस वक्त। अगर हम बड़ों के लिए भी बात करें तो बड़ों के लिए आपको यहाँ ऑप्शन दिख जाएंगे। आप देख सकते हैं कि आपको राधे राधे स्टाइल में जो है डिजाइन के साथ विद रुद्राक्ष आपको ये एक डिजाइन मिलने वाला है। लेकिन अगर आप गणेश जी को बहुत मानते हो और राखी में आप उनका आशीर्वाद चाहते हो तो आप कुछ इस तरीके के ऑप्शन भी जो है आपको मिलेंगे कि किस तरीके से मोतियों के साथ आपको जो है ये एक ऑप्शन दिख जाएगा जिसके अंदर आपको गणेश जी दिख जाएंगे। तो वही यहाँ पर आपको दिखेगा त्रिशूल के साथ, डमरू के साथ जो है ये राखी का ऑप्शन दिख जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। नजरिए वाले हर कोई पहनाता है कि उस रिश्ते को कभी किसी की नज़र ना लगे, तो इस तरीके की राखी जो है आपको मार्केट में मिलेगी। आजकल हर कोई जो है खाटू श्याम जी के दर्शन बहुत करता है तो उनकी भी जो है बहुत फैन है, तो ये आपको एक उस स्टाइल में भी जो है ये राखी जो है मिलने वाली। तो जितना भी अपकमिंग जो लेटेस्ट ट्रेंड है, जो डिजाइन्स है, वो आपको यहाँ पर मिलने वाली।
0: राखी पर देवी देवता की तस्वीर रक्षा की भावना से जुड़ी है, लेकिन क्या भाई की कलाई पर भगवान वाली राखी बांधना उचित है? इस पर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन ज्यादातर जानकारों की राय ये है कि ऐसी राखियाँ शुभ होती हैं, इसीलिए कोई परेशानी नहीं। हाँ, पर त्योहार के बाद राखी को संभाल कर या पवित्र जगह पर रख लेना चाहिए।
2: राखी पर भगवान की आकृति बनाना आपको कितना सही या गलत लगता है? इसका उत्तर है कि इसका जवाब सिर्फ सही या गलत ही नहीं देना उचित होगा। अगर किसी व्यक्ति की भावना यह है कि मेरे भाई की रक्षा स्वयं भगवान करेंगे, तो उस श्रद्धा में प्रेम भी है, श्रद्धा भी है, समर्पण भी है और शुभकामना है। लेकिन हमें भगवान की आकृति के साथ जुड़ी पवित्रता मर्यादा को भी ध्यान में रखना चाहिए। राखी एक ऐसी वस्तु है जिसे कुछ समय बाद उतार दिया जाता है, इसलिए मेरा मानना है कि भगवान की आकृति वाली राखी को केवल फैशन या सजावट की वस्तु समझकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इस्तेमाल करें तो उसके साथ उतनी ही श्रद्धा और सम्मान करें। यह विषय मुख्यतः धार्मिक मर्यादा और परंपरा से जुड़ा हुआ है। ऐसा कोई सार्वभौमिक नियम बताना उचित नहीं होगा कि भगवान की आकृति वाली हर राखी निश्चित रूप से अधार्मिक है, लेकिन हिंदू धार्मिक भावनाओं में देवी देवताओं की छवि को सम्मान पूर्वक रखने की परंपरा है। इसलिए सवाल यह नहीं होना चाहिए कि राखी पर भगवान बन सकते हैं या नहीं, बल्कि सवाल यह होना चाहिए कि अगर उन भगवान की आकृति राखी पर है तो हम उनके साथ भगवान के चित्र जैसा ही सम्मान रखेंगे। अगर उत्तर हाँ है तो भावना और व्यवहार में सामंजस्य है।
0: ओम, डमरू, रुद्राक्ष या फिर गदा जैसी धार्मिक प्रतीक वाली राखियों को भी इन दिनों खूब पसंद किया जा रहा है। ये राखियाँ देखने में भी सुंदर हैं और राखी के बाद भी कलाई पर पेंडेंट के तौर पर पहनी जा सकती हैं। लेकिन इनके मामले में भी उनके धार्मिक महत्व का ध्यान रखना जरूरी है।
3: आप चांदी की राखी ले सकते हैं, आप सोने की ले सकते हैं, अन्य धातुओं की भी राखी ले सकते हैं, लेकिन जैसे ट्रेड बदल रहा है, समय बदल रहा है, तो उसी प्रकार से राखी का भी स्वरूप बदल गया है। तो कोशिश ये करें कि अगर उस पर स्वास्तिक का चिन्ह हो तो अति उत्तम, और जो भी हमारे भगवानों का शंख, चक्र, गदा, पद्म अनेक प्रकार के चिन्ह है, उन चिन्ह वाली राखी ले तो भी आपको बड़ा

0: विशेष लाभ होगा। लेकिन यदि आप भगवान के स्वरूप वाली राखी लेते हैं तो भगवान के स्वरूप की राखी तो बंधवा लें, लेकिन वैसे तो नहीं बांधना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि उस रक्षा को जब आप खोल देते हैं कहीं भी यत्र यत्र स्थान पर रख देते हैं तो उससे बड़ा आपको दोष लगता है। जितना ही पुण्य मिलता है रक्षाबंधन का उससे कहीं ज्यादा दोष की भी संभावना बन जाती है। तो इसलिए अगर भगवान के स्वरूप राखी बांधे, रक्षा सूत्र बांधे, तो ये ध्यान रखें कि उसको कूड़े में न फेंकें, उसको इधर उधर न रखें, उसको सही जगह पर रखें और सही जगह उसका या तो फिर जल प्रवाह कर दें, तो उस राखी का आपको विशेष फल मिलेगा।
1: रक्षाबंधन की शुरुआत ही माता लक्ष्मी से मानी जाती है। कथा है कि लक्ष्मी ने सबसे पहले राजा बलि को राखी बांधी थी, इसीलिए आज भी रक्षा सूत्र या फिर राखी बांधते हुए मंत्र पढ़ते हैं। येन बुद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबले तेन त्वम अभिबंधनामि रक्षे माचल माचल। यानी जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था वही सूत्र मैं तुम्हें बांधती हूँ जो तुम्हारी रक्षा करेगा। हे रक्षा तुम स्थिर रहना, स्थिर रहना। रक्षाबंधन का यही धार्मिक आधार भगवान कृष्ण और द्रौपदी की कथा से भी जुड़ता है और इसीलिए भाई बहन के प्यार के प्रतीक यानी राखी के बंधन से देवी देवता भी बंधे हैं। राखी से रक्षा, मंगल कामना और पारिवारिक प्रेम का भाव जुड़ा है, इसीलिए भगवान को रक्षा सूत्र अर्पित किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: कलाई पर सजे रेशमी धागे से लेकर सोने और हीरे की चमक तक बाजार में राखियों का मनमोहक रूप और इंद्रधनुषी रंग नजर आ रहा है। कहीं बहनें अपने नटखट भाइयों के लिए मनपसंद डिजाइन तलाश रही हैं, तो कहीं पर देश की सरहद पर खड़े जवानों तक स्नेह पहुंचाने की तैयारी है। झांसी की महिलाओं ने सैनिक भाइयों के लिए 500 राखियां भेजकर देशभक्ति की मिसाल पेश की। वहीं पर मुंबई में लाखों रुपए तक की कीमती राखियां बाजार में छाई हुई हैं और अलवर में तैयार होने वाली राखियां जो हैं 35 से ज्यादा देशों तक पहुंच रही हैं। यानी इस बार रक्षाबंधन में परंपरा, प्यार और देशभक्ति सभी रंग एक साथ दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।

0: एक धागा जो मान सम्मान और प्यार की पहचान है, अनंत काल से भाई बहन के मजबूत रिश्ते की निशानी है। दौर बदला तो बाजार में राखियों के रंग और अंदाज भी बदल गए, लेकिन इनके पीछे छिपी भावनाएं आज भी वही हैं। कहीं सादगी है, कहीं खूबसूरती, कहीं खास अंदाज है, तो कहीं देश के वीर जवानों के लिए सम्मान। रक्षाबंधन का धागा छोटा जरूर है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। इस बार इसी रिश्ते ने बाजार से लेकर सरहद तक अपनी अलग तस्वीर दिखाई। कहीं भाई की कलाई के लिए खास डिजाइन चुनती बहने हैं, तो कहीं सोने चांदी और हीरों से सजी राखियां अपनी चमक बिखेर रही हैं, तो कहीं सादगी से तैयार किया गया धागा जवान भाइयों तक बहनों का प्यार पहुंचा रहा है। झांसी में महिलाओं ने सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए 500 राखियां तैयार करके भेजी हैं। मुंबई में राखियों की कीमत लाखों तक पहुंच गई और अलवर के कारीगरों की बनाई राखियां 35 से ज्यादा देशों तक पहुंची। यानी एक ही त्योहार मगर रंग भरपूर।
1: हरियाली तीज का त्यौहार मना रहे हैं, तो इसमें एक हम लोगों ने राखी का भी एक प्रोग्राम रखा हुआ था, जो अपने देश पे, जो हमारे वीर सैनिक हमारे देश पे, जो हमारी रक्षा की सुरक्षा के लिए वहाँ पे तैनात है, उनके लिए हम लोगों ने 500 राखियाँ पैक करके यहाँ से भिजवाई हैं।
0: रक्षाबंधन का त्यौहार जैसे जैसे करीब आ रहा है, बाजारों की रौनक बढ़ती जा रही है। अकोला से लेकर मुंबई और अलवर तक दुकानों पर अलग अलग अंदाज की राखियाँ सज चुकी हैं। 5 रुपए की साधारण डोरी से लेकर कीमती धातुओं और हीरों से सजे डिजाइन तक हर बजट और पसंद के हिसाब से विकल्प मौजूद हैं। अकोला के बाजार में बहनों की भीड़ खरीदारी के लिए पहुंच रही है। पारंपरिक रेशमी और कॉटन के धागों के साथ रुद्राक्ष, लुम्बी, रिंग, कपल, डायमंड लुक और ज्वेलरी स्टाइल वाली राखियां पसंद की जा रही हैं। बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर्स वाले डिजाइन भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। सामान्य राखियों की कीमत करीब 5 रुपए से शुरू होकर 500 रुपए तक है, जबकि खास ज्वेलरी डिजाइन इससे ऊपर है।
2: ये राखी जो है बहुत अपने आप में अलग राखी है। ये जो राखी है ये लुम्बी राखी इसे कहा जाता है, जो मारवाड़ी लोगों में अधिकतर इसका जो है त्योहार बहुत ही अच्छी तरीके से मनाते हैं। अलग अलग वेराइटीज, मानो इस राखी की दुकान में जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर राखी है। देखिए आप, ये लुम्बिया राखी जो है, और इस वक्त की ट्रेंडिंग जो है वो खासकर ये जो राखी है ये भाई के लिए, छोटे भाई के लिए बहुत ही अलग राखी है। और ये स्पिनर की राखी है, मानो ये हाथ में बांधी तो घूम जाती है। उसके बाद में ये देखिए किस तरह की राखी है, मानो राखियों में वेराइटी जो है घड़ियों की, जो भाई को राखी बांधने के बजाय जो है वो घड़ी के जरिए जो है वो राखी बांधती है। क्या प्लान करके आई हो?
3: अभी तो बहुत बढ़िया राखी लेने का इरादा है, लेकिन अभी देख रहे हैं, सोच रहे हैं अभी कौन सी लेनी है, क्या करना है, तो देख रहे अभी।
2: भाई खास हो तो बहन भी उसके लिए खास राखी सोचती है।
3: वो तो है, अभी देख रहे हैं, जो अच्छे से अच्छी राखी मिलेंगी वो ले लेंगे।
2: तो देखिए बहन भी कितनी खुश है, कितनी आतुर इसलिए होती है कि ये पवित्र त्योहार जो है वो आज इस इंटरनेट की दुनिया में भी जो है वो आज बहन जो है इस त्योहार की राह इसलिए देखती है, क्योंकि भाई बहन का प्यार भरा ये त्योहार जो है वो आता है। और सबसे अहम बात यह है कि बाजार जो है इस राखियों से फटे पड़े है।
0: बदलते फैशन के साथ राखी का रूप भी बदल रहा है। अब ऐसी ज्वेलरी राखियां बाजार में हैं जिन्हें त्योहार बीतने के बाद भी ब्रेसलेट या फिर आभूषण की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। गोल्ड में ओम, गणेश और धार्मिक प्रतीकों के साथ मॉडर्न मिनिमल डिजाइन दिखाई दे रहे हैं। 925 स्टर्लिंग सिल्वर में रुद्राक्ष, त्रिशूल, ओम, ब्रेसलेट पैटर्न और नाम या इनिशियल वाले विकल्प मौजूद है। डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड वाली राखियां भी आजकल काफी पसंद की जा रही हैं। गोल्ड या सिल्वर बेस पर चमकदार स्टोन इन्हें सामान्य धागे से अलग लुक देता है।
4: 28 अगस्त के दिन इस बार पूरा देश रक्षाबंधन मनाने वाला है, लेकिन इस बार डिमांड सोने और चांदी के राखियों की भी है। ये देखिए यहाँ पर एक से बढ़कर एक ब्रांडेड राखियां रखी गई हैं, जिसमें सिल्वर राखी भी है, गोल्डन राखी भी है और अलग अलग तरह की डिजाइन भी बनाई गई हैं। देखिए सबसे ज्यादा जो पसंद करी जाने वाली राखियां हैं उसमें ओम है, स्वास्तिक बना हुआ है, इसके अलावा त्रिशूल की भी राखियां हैं और इस तरह के अलग अलग डिजाइन स्वास्तिक भी आ जाते हैं और दूसरे भी ईश्वर जिसमें से गणेश जी हैं, शंकर भगवान हैं, ऑर्डर देने पर भी बनाई जाती है और रेडीमेड भी बनती है। सर ये जो राखी आपने पकड़ रखी है इसकी कीमत क्या होगी? तो चांदी की राखी
5: ये करीबन 5 ग्राम के लगभग 4-5 ग्राम की चांदी राखियां होती है, करीबन 1500 रुपए की राखियां होती है।
4: 1500 मतलब बड़े आसानी से एक बहन अपने
5: बजट छोटा रहता है ना, लोगों को राखी के लिए बजट छोटा रहता है तो छोटे बजट में हम लोगों का काम हो जाता है।
4: ये ब्रेसलेट भी है, इसे ब्रेसलेट कहा जा सकता है। ब्रेसलेट के अलावा इस तरह से ये रक्षाबंधन के लिए जो श्रीमंत होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो इस तरह के भी राखियां लेते हैं अपने भाइयों के लिए, जो बहनें हैं इस तरह के भी। सर ये कितना तोला होगा, सर ये कितना, इसका वजन क्या होगा?
5: करीबन 5 तोला है।
4: 5 तोला?
5: हाँ 5 तोला है।
4: अच्छा, तो इसका क्या रेट होगा, प्राइस क्या होगा?
5: करीबन 15-75 हजार के आसपास होगी, अंदाज 75 से 80 हजार के करीबन।
4: हजार? लाख? बिल्कुल, 75 लाख।
5: 75 लाख के करीबन होगी। ये महंगी राखियाँ इंडस्ट्री वालों को काम में लगती है। ये हमारे इंडस्ट्री की ऑर्डर की राखियाँ है।
4: अच्छा, ये बिक गई है, मतलब ये अपने ऑर्डर
5: की है।
4: और ये वाले भी ऑर्डर की?
5: ये भी ऑर्डर की है।
4: तो ये इसमें कितना सोना है, इसमें तो डायमंड भी लगा हुआ है।
5: इसमें तो सोना के साथ में हीरे स्टडेड किए गए हैं ताकि और महंगी हो गए। ये करीबन 5 लाख के करीबन जाएगी।
4: 5 लाख
5: के करीबन।
0: मुंबई के जावेरी बाजार में इस बार महंगी राखियों की खास चर्चा है। गोल्ड से बनी राखियों की कीमत करीब 30,000 रुपए से शुरू होकर 8 लाख रुपए तक जा रही है। वहीं सिल्वर विकल्प लगभग 1,000 रुपए से 5,000 रुपए के दायरे में है। स्टोन स्टडेड राखी, गोल्ड ब्रेसलेट, बिग ब्रेसलेट, एबलाई, डायमंड पेंडेंट, रोज गोल्ड, सिल्वर, ओम और त्रिशूल जैसे डिजाइन ग्राहकों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। सोने की बढ़ी कीमतों के कारण महंगी राखियां मुख्य रूप से ऑर्डर पर तैयार कराई जा रही हैं। दूसरी तरफ चांदी अपेक्षाकृत किफायती होने की वजह से ज्यादा लोगों की पहुंच में है। लेकिन राखी की असली खूबसूरती सिर्फ उसकी कीमत या डिजाइन में नहीं, उसकी भावना में है। और इसी भावना का एक बेहद खूबसूरत रूप झांसी में भी देखने को मिला। हरियाली तीज के कार्यक्रम में करीब 500 से 600 महिलाओं ने हिस्सा लिया। आयोजन के दौरान सीमा पर तैनात सैनिक भाइयों के लिए 500 राखियां तैयार की गई। इन राखियों को रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से भेजा गया। खास बात ये रही कि ये प्रत्येक पैकेट के साथ जवानों के लिए महिलाओं ने अपने हाथों से छोटे छोटे संदेश भी लिखे हैं। इन संदेशों में सैनिकों के प्रति सम्मान, देश सेवा के लिए आभार और बहन भाई के रिश्ते की आत्मीयता दिखाई दी। झांसी की इस पहले रक्षाबंधन के मायने और भी खास बना दिए। जिन बहनों के भाई सरहद पर ड्यूटी निभा रहे हैं, उनके लिए त्योहार घर से दूर गुजरता है। ऐसे में भेजा गया ये धागा सिर्फ एक राखी नहीं, बल्कि देश की बहनों की तरफ से प्यार और सम्मान है। राखियों का सिलसिला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि राजस्थान के अलवर में भी राखी कारोबार के बड़े केंद्र के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। यहाँ तैयार होने वाली राखियों की मांग देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। अमेरिका, फ्रांस, जापान, कनाडा और सऊदी अरब समेत 35 से ज्यादा देशों तक यहाँ के उत्पाद पहुँचते हैं। साल भर हजारों कारीगर अलग अलग डिजाइन तैयार करने में जुटे रहते हैं। कारोबार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। ग्रामीण इलाकों में महिलाएं, युवा और बच्चियां भी सामग्री घर से लेकर राखियां तैयार करती हैं। अलवर सेंट्रल जेल में भी इस काम के जरिए राखियां बनाई जाती हैं। यहां 1 रुपए से लेकर 200-300 रुपए तक के विकल्प मौजूद हैं। डिजाइनर मॉडल की मांग सबसे ज्यादा बताई जा रही है। बच्चों के लिए कार्टून, लाइटनिंग, म्यूजिक और पतली डोरी वाली नए अंदाज की खास राखियां पसंद की जा रही हैं। व्यापारियों के मुताबिक अलवर में 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक के डिजाइन तैयार किए जाते हैं। राखी महंगी हो या सस्ती, सोने की चमक लिए हो या साधारण रेशमी धागे से बनी हो, मायने आखिरकार उसी एहसास के हैं जो इसे बांधते वक्त दिल में होता है। झांसी से अजय झा, मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, अलवर से हिमांशु शर्मा, अकोला से धनंजय सांबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: का तालमेल आपके बॉस के साथ अच्छा नहीं रहता, किसी भी नौकरी में उच्चाधिकारियों के साथ संबंधों की दिक्कत हो जाती है, कौन से ग्रह बैठाते हैं सामंजस्य, बनाते हैं तालमेल, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
8: नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद मिशन जिंदगी तेज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से की बात, भारत की ओर से भेजा जा रहा है राहत सामान, उत्तर प्रदेश बिहार में प्रशासन अलर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने रच दिया नया कीर्तिमान, नई बसों के मामले में देश में उत्तर प्रदेश नंबर वन, महिलाओं के लिए पैनिक बटन से लेकर हेल्पलाइन की कनेक्टिविटी। देश भर में रक्षाबंधन की तैयारियां तेज, वाराणसी में बनाई गई खास AI राखी, रायपुर में सुरक्षा बल के जवानों को बांधी गई राखियां। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज, मुंबई के महाराजा नाम से मशहूर करीब 47 फीट के बप्पा का हुआ आगमन, नरसिंह रूप में विराजमान है गणपति। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज, अब मंदिर में मिलेगी निशुल्क शीघ्र दर्शन की सुविधा, प्रशासन के फैसले से लोगों में खुशी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: गणपति उत्सव को लेकर देश भर में तैयारियां शुरू, अमरावती में बप्पा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे कालिक। अमरावती में मूर्तिकार नरेश जोहरे की कलाकारी मोह रही है सभी का मन। मूर्ति कलाकार नरेश जोहरी ने बनाई लाल बाग राजा के स्वरूप वाली गणेश प्रतिमाएं, भोलेनाथ के स्वरूप वाली गणपति की प्रतिमाएं तैयार। मूर्ति कलाकार नरेश जोहरी ने तैयार की मां पार्वती की गोद में बैठे बप्पा की प्रतिमा। नरेश जोहरी ने के मूर्ति केंद्र में गणपति बप्पा की एक से बढ़कर एक अद्भुत प्रतिमाएं, कहीं नारियल पर विराजे हैं बप्पा, तो कहीं पर भगवान परशुराम के रूप में नजर आ रहे हैं। देश भर में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन के त्योहार की तैयारियां तेज, अलग अलग थीम और रंगों की सुंदर राखियां उपलब्ध। पुरी में भी रक्षाबंधन को लेकर विशेष तैयारियां, भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र की तैयार की जा रही, उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी राखियां। छोटे भाई भगवान जगन्नाथ के लिए लाल और पीले रंग की होती है राखी, जबकि बड़े भाई भगवान बलभद्र के लिए नीले और बैंगनी रंग की होती है राखी। विशेष रेशमी वस्त्र से तैयार की जाती है राखी, देवी सुभद्रा की ओर से उनके भाइयों को बांधी जाती है खास राखी। पूरी मंदिर के विशेष पटारा पिसोई सेवक तैयार करते हैं ये राखियां। पंजाब के पठानकोट में महिलाओं ने सुरक्षा बलों के जवानों को बांधी राखी, लंबी उम्र और सुरक्षित जीवन की प्रार्थना। महिलाओं ने पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के जवानों को भी बांधी राखी, ट्रैफिक पुलिस ने महिलाओं को गिफ्ट में बांटे हेलमेट। पवित्र सावन के बचे हुए कुछ दिनों में भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए मंदिर पहुंचने लगातार श्रद्धालु। हजरत मोहम्मद के 1501वें जन्म जयंती के मौके पर दार्जिलिंग में निकाली गई ईद की जुलूस। महाराष्ट्र के पालघर में धूमधाम से निकाली गई ये जुलूस, बच्चे बुजुर्ग समेत हजारों लोग शामिल हुए। दिल्ली में रक्षाबंधन को लेकर तैयारियां थी, स्वदेशी और हाथ से बनी राखियों की खूब डिमांड। इस साल बाजारों में विकसित भारत, नारी वंदन, आत्मनिर्भर भारत जैसी नई थीम वाली राखियां आकर्षण का मुख्य केंद्र। रक्षाबंधन से पहले दिल्ली समेत देशभर के बाजारों में खरीदारी तेज। आगरा में नेचुरल स्टोन से निर्मित राखियां बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र, सफेद संगमरमर और रंग बिरंगी पत्थर। इन राखियों को अपने हाथों से तराशते हैं आगरा के पारंपरिक कारीगर। रक्षाबंधन के पवित्र मौके पर देश भर से सरहद पर तैनात जवानों को भेजी जा रही है राखी, उधमपुर के छात्रों ने अपने हाथों से तैयार की सैनिकों के लिए राखियां। राखी के साथ छात्रों ने देश की सुरक्षा में तैनात फ्रंटलाइन जवानों के लिए अपने हाथों से तैयार की ग्रीटिंग्स। रक्षाबंधन से पहले झांसी की बहनों का सैनिक भाइयों को खास तोहफा 500 राखियों के साथ भेजा स्नेह भरा संदेश। हरियाली तीज का कार्यक्रम किया गया आयोजित, जिसमें महिलाओं ने राखी तैयार करने के साथ भक्ति गीत भी गाए। जवानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए तैयारियां जारी, भाई बहन के इस पवित्र त्यौहार पर परिवार से दूर देश की सीमाओं पर तैनात जवान भी तैयार। भारत चीन सीमा पर देखी भाई बहन प्रेम और देशभक्ति की अनोखी मिसाल, नीति घाटी की महिलाओं ने बॉर्डर कैंप में सेना के जवानों को बांधी राखी। पारंपरिक वेशभूषा में पहुंची नीति घाटी में जुम्मा और कागा गांव की महिलाएं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में छात्राओं और शिक्षकों ने पुलिस अधिकारियों को बांधी राखी। इंदौर में रक्षाबंधन पर खजराना गणेश को अर्पित की जाएगी विशाल सनातन राखी, करीब 2.5 महीने से बनी है राखी को आकर्षक रूप देने के लिए। कोलकाता, जयपुर, मुंबई, सूरत से मंगवाए गए हैं सलमा सितारे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्नेह की डोर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, महिलाओं ने सुरक्षा बलों को बांधी राखी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंचे। वाराणसी के जूनियर साइंटिस्ट श्याम चौरसिया ने सैनिकों के लिए बनाई स्पेशल एयर राखी। श्याम चौरसिया ने एक निजी स्कूल की छात्राओं के साथ मिलकर बनाई अनोखी राखी, सैनिकों के लिए पहले भी उपकरण बना चुके हैं श्याम। उत्तर प्रदेश की 50,000 बेटियों को मिलेगी स्कूटी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान। 11 नवंबर में शुरू हुई रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। अपने अंतिम चरण में अमरनाथ यात्रा पारंपरिक पड़ाव के तहत शीशनाग पहुंचा पवित्र छड़ी मुबारक का जुलूस। विधि विधान के साथ साधु संतों ने की पवित्र छड़ी मुबारक की पूजा, हर हर महादेव के जयकारे। इसके बाद ही पंचतरणी पहुंचेगी पवित्र छड़ी। अमरनाथ यात्रा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण का प्रतीक मानी जाती है छड़ी मुबारक जुलूस। रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर अमरनाथ गुफा पहुंचेगी पवित्र छड़ी। श्रावण मास के दौरान फतेहपुर के ठाकुर बाड़ी मंदिर में पारंपरिक झूलनोत्सव की जबरदस्त रौनक। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने नगर सेठ की ठाकुर जी की प्रतिमा को भव्य तरीके से सजाया। पूरे मंदिर परिसर में धार्मिक झांकियां पेश की गई, इसमें श्री कृष्ण लीला और राम वनवास की कथा। मंदिर को भी रंग रोगन आकर्षक ढंग से सजाया गया। मेले के दौरान भक्तों की सुरक्षा करने के लिए पुलिस भी पूरी तरीके से सतर्क। जन्माष्टमी को लेकर दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में भव्य तैयारियां, 4 सितंबर को मनाया जाएगा भव्य कृष्ण जन्मोत्सव। जन्माष्टमी से पहले मंदिर को सजाने संवारने और रंग रोगन का काम तेज, जगह जगह लगाए गए हैं पंडाल। आज से शुरू हो जाएगा कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम, शोभा यात्रा में गूंजेंगे हरिनाम के संकीर्तन। मंदिर परिसर में लगातार जारी भजन कीर्तन का कार्यक्रम, इस साल 5 लाख से ज्यादा भक्त पहुंचने की उम्मीद है। 4 सितंबर को मुख्य आयोजन में भगवान को लगेगा 251 से ज्यादा व्यंजनों का भोग। केरल के तिरुवनंतपुरम में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, थिरुवोणम दिवस पर पहुंचे श्रद्धालु। इस पवित्र दिन पर भगवान के दर्शन पाने के लिए मंदिरों में लगी भक्तों की लंबी कतारें। 10 दिवसीय ओणम उत्सव का 10वां और सबसे महत्वपूर्ण दिन है थिरुवोणम दिवस। केरल के वायनाड में लगी फूलों की अंबार, आज ओणम के 10वें दिन पूजा के लिए रंग बिरंगे फूल। थिरुवोणम दिवस पर घरों के आंगन में फूलों की सुंदरता। पुडुचेरी में भी धूमधाम से लगातार मनाया जा रहा ओणम का त्यौहार, मलयाली समुदाय के लोग पहुंचे। स्कूल कॉलेजों में सजाए गए हैं फूल और सुंदर पूक्कलम। ओणम के मौके पर महिला कॉलेज में छात्राओं ने पेश किए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, नजर आए केरल की समृद्ध संस्कृति। पुरी स्थित प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मंगला आरती के साथ सुबह की हो गई शुरुआत। इस पावन मेले में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे। मुंबई में खेतवाड़ी की गली नंबर 11 में लगी गणपति बप्पा की सबसे ऊंची प्रतिमा, 47 फीट ऊंची है। मुंबई के महाराजा पप्पा की यह प्रतिमा 14 सितंबर से शुरू हो रहे हैं गणपति उत्सव की तैयारियां। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में आई हिंदू मुस्लिम भाईचारे की शानदार तस्वीर, ईद के मौके पर हिंदू समाज के लोगों ने जुलूस में शामिल लोगों को मिठाई खिलाई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पानी से भरे गड्ढे में गिरने के चलते कार में सवार लोगों का हुआ रेस्क्यू, मौके पर मौजूद लोगों ने जान पर खेलकर लोगों की बचाई जान। उत्तर प्रदेश के संभल में जल्द शुरू हो जाएगा 24 कोसी परिक्रमा मार्ग का निर्माण। बाबा बैद्यनाथ धाम के स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज, बाबा बैद्यनाथ के शीघ्र दर्शन निःशुल्क कर सकेंगे स्थानीय श्रद्धालु। शीघ्र दर्शन करने के लिए स्थानीय श्रद्धालुओं को नहीं देना होगा 600 रुपए फी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान से बदल रही है युवाओं की जिंदगी, अब हर महीने 20 से 25 हजार कमा रहे हैं फिरोजाबाद के सतीश। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से राजधानी की महिलाओं को रक्षाबंधन पर बड़ा तोहफा, महिलाओं के लिए लक्ष्मी योजना का अप्रूवल पत्र। योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने आएंगे 2500। मुख्यमंत्री योगी ने लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का शुभारंभ कर दिया। रक्षाबंधन के अवसर पर माताओं, बहनों और बेटियों के लिए योगी सरकार का विशेष उपहार, महिलाओं के लिए उपलब्ध कराएंगे उत्तर प्रदेश रोडवेज की विशेष स्पेशल। उत्तर प्रदेश में श्रमिकों के लिए नियुक्ति पत्र अनिवार्य। ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी गुड न्यूज, गुजरात के बनासकांठा में बायो सीएनजी मॉडल प्लांट का लोकार्पण हुआ। सुजुकी मोटर्स और एनडीडीबी ने किया तैयार। बायो सीएनजी मॉडल प्लांट से निकलने वाली स्लरी से बनेगी भूमि अमृत नाम की जैविक खाद। देश में कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने 23,731 करोड़ की लागत वाली गोवर्धन योजना लागू की। कार्यक्रम में सहकारी मॉडल पर आधारित ग्रामीण भारत टैक्सी की हुई शुरुआत। नोएडा की सैकड़ों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जुटी 17 साल की रोहिणी। ट्रेनिंग के बाद महिलाओं को काम भी उपलब्ध कराती है रोहिणी, कपड़ा उद्योग से निकले कतरन से उपयोगी चीजें तैयार करती हैं। कतरन से उपयोगी चीजें बनाकर पर्यावरण को भी रक्षा करती हैं। काम की ट्रेनिंग मिलने और फिर रोजगार मिलने से सशक्त बन रही है महिलाएं। यहां काम करने वाली महिलाओं को हुनर और रोजगार मिलने के साथ होने वाली आमदनी से सुधर रही है जीवन स्तर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पर्यावरण संरक्षण करने के लिए महोत्सव का वन महोत्सव का हुआ आयोजन। वन महोत्सव में मंत्री, सांसद, विधायक और अफसरों के साथ बड़ी संख्या में स्कूली छात्र पहुंचे। पौधारोपण कार्यक्रम के तहत एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत भी जुटे लोग। वन महोत्सव अभियान में शामिल अफसरों और छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पौधारोपण को लेकर स्टूडेंट्स में देखा जबरदस्त उत्साह। दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई रॉकिंग स्टार यश की फिल्म टॉक्सिक। फिल्म में यश के साथ नयनतारा कियारा और हुमा कुरैशी नजर आई। टॉक्सिक के साथ सिल्वर स्क्रीन पर यश, पूरे 4 साल बाद उन्होंने की वापसी। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की अपकमिंग फिल्म द वन का धमाकेदार टीजर हुआ आउट। प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी फिल्म हैवान का ट्रेलर हुआ आउट। 18 साल बाद साथ नजर आया अक्षय सैफ। इमरान हाशमी की फिल्म गनमास्टर G9 का टीजर हुआ आउट। इमरान हाशमी के साथ मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी जेनेलिया देशमुख और अपार शक्ति खुराना। स्पेन में दुनिया के सबसे बड़े टोमाटीना फेस्टिवल का आयोजन किया गया। सनूके फेस्टिवल में हजारों लोग शामिल होते हैं। बुनोल शहर में आयोजित टोमाटीनो फेस्टिवल में लोगों ने एक घंटे तक एक दूसरे पर जमकर फेंके टमाटर। टोमाटीनो फेस्टिवल में स्पेन का के अलावा कई दूसरे देशों से भी लोग बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचते हैं। टोमाटीनो फेस्टिवल में करीब 1500 क्विंटल पके टमाटर का हुआ इस्तेमाल। हर साल अगस्त के अंतिम बुधवार को आयोजित किया जाता है फेस्टिवल। साल 1945 में गांव वालों की एक लड़ाई के बाद शुरू हुई फेस्टिवल।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती हैं।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
8: रक्षाबंधन पर उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो बड़े ऐलान कर दिए हैं। पहला तोहफा है, रक्षाबंधन के मौके पर 3 दिनों तक बसों में महिलाओं का सफर पूरी तरीके से मुफ्त रहेगा। और दूसरा बड़ा ऐलान है, 60 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं को अब आजीवन मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलेगी।
5: महिला स्वावलंबन का एक आदर्श उदाहरण बनेगा। इस पूरी सुविधा का नाम है लोकमाता अहिल्याबाई निशुल्क बस यात्रा। रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और सिटी बस सेवा दोनों में हर बेटी, हर बहन, हर माता को 3 दिन के लिए निशुल्क बस सेवा प्रारंभ करने के लिए और इस सुविधा के लिए प्रदेश भर की पूरी मातृशक्ति का अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं।
9: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का मास्टर स्ट्रोक और सभी 60 वर्ष से ऊपर महिलाओं को फ्री निशुल्क यात्रा। आप देखिए ये सारी जो बसें हैं, इन्हीं बसों से मातृशक्ति योजना के तहत उनको फ्री एक तरीके से अब आजीवन ये सेवा दी जाएगी। और ये मास्टर स्ट्रोक योगी आदित्यनाथ का माना जा रहा है। ये महिलाएं देखिए जो 60 साल से ऊपर की हैं, वो सभी इससे निशुल्क यात्रा कर पाएंगी। पूरे प्रदेश में जहां भी उनको जाना है वो इस बस के जरिए जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल कैबिनेट में इसको पास करने के बाद आज इसका इनॉग्रेशन है। आप देखिए कई महिलाएं अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए तैयार हैं।
10: हमारे योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, वो हमको यात्रा करवा रहे हैं, हमारे लोग बुजुर्ग मेहरी औरतों को, और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ
9: तो सब फ्री हो गया, पूरे यूपी में कहीं भी
10: कहीं भी जाएंगे।
9: कैसी सुविधा है ये जो फ्री कर दिया है सबको,
11: बस फ्री कर दिया है हमने यात्रा करने के लिए फ्री कर दिया।
9: जो 60 वर्ष की महिलाएं हैं वो बैठी हैं और सबके लिए फ्री किया गया है, क्योंकि ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने इसको कैबिनेट में पास करने के बाद अब ये महिलाओं के लिए एक बड़ा उपलब्धि मानी जा रही है कि वो किस तरीके से अब इसी बसों के जरिए पूरे प्रदेश में कहीं भी जा सकती हैं, इन बसों से फ्री यात्रा कर सकती हैं, आजीवन निःशुल्क यात्रा कर सकती हैं, जिनसे कोई भी चार्ज, कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव।
8: पालतू जानवर धरती के वो जीव हैं जो घर की खुशियां और दिल के सबसे वफादार दोस्त होते हैं, उनका प्यार भी बगैर किसी शर्त के होता है। आज इंटरनेशनल डॉग डे है तो ये जानवर सिर्फ पेट नहीं होता बल्कि थोड़ा सा प्यार मिलने पर बदले में अपनी पूरी दुनिया दे देता है।

0: लंदन के वॉक्सहॉल के एक मार्केट प्लेस फूड हॉल में मंगलवार को नजारा कुछ अलग दिखा। यहाँ इंसानों के साथ उनके स्पेशल दोस्तों के लिए भी खास इंतजाम किए गए। नेशनल डॉग डे के मौके पर डॉग्स के लिए एक खास लिमिटेड मेन्यू तैयार हुआ, जिसपे स्वाद भी था और डॉग फ्रेंडली इंग्रेडिएंट्स भी थे। डॉग्स की इस पार्टी में स्वाद के तमाम इंतजाम रहे। उन्हें राइस के साथ सैल्मन और स्प्रेड्स भी दिए गए। चिकन विद राइस का मजा भी इन डॉग्स ने लिया। चिकन के साथ एग नूडल्स भी इन स्पेशल मेहमानों को परोसा गया। और तो और, मिनी स्टेक विद फ्राइज भी मेन्यू का हिस्सा था।
1: We wanted to create a nice, lovely menu of dog-friendly dishes, something that both the humans and the dogs can enjoy.
0: यानी कोशिश यही है कि जब इंसान टेबल पर खाना एंजॉय करे तो उसका स्पेशल दोस्त भी खुद को पार्टी से बाहर महसूस न करे।
1: We have quite a lovely array. So we have dog pizza, so we have a dog poke bowl as well. We have duck, we even have dog tacos.
0: लंदन की ये तस्वीरें भले ही डॉग्स के लिए खास खाने की हों, लेकिन इनके पीछे का संदेश इससे कहीं बड़ा है। क्योंकि डॉग सिर्फ एक पेट नहीं बल्कि इंसान का ऐसा साथी है जो बिना किसी शर्त के प्यार करता है। इसी रिश्ते और इंसान के साथ डॉग्स की खास बॉन्डिंग को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 26 अगस्त को इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत साल 2004 में एनिमल वेलफेयर एडवोकेट और पेट एक्सपर्ट कोलीन पेज ने की थी। 26 अगस्त की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि इसी दिन उन्होंने अपने परिवार संग अपने पहले पालतू कुत्ते शेल्टी को गोद लिया था। डॉग्स को पालने को लेकर भले ही दुनिया में अलग अलग मत हों, लेकिन तमाम रिसर्च कहती हैं कि डॉग्स के साथ वक्त बिताना सिर्फ आपको खुश ही नहीं करता बल्कि आपकी मानसिक सेहत के लिए भी सकारात्मक असर डाल सकता है। किसी डॉग का आपके पास होना, उसका आपको देखकर खुश होना, आपका इंतजार करना, ये छोटे छोटे एहसास ही अकेलेपन और उदासी को कम करने में मदद कर सकते हैं। खासकर बुजुर्गों या अकेले रहने वाले लोगों के लिए तो डॉग्स का साथ बेहद अहम हो सकता है, क्योंकि एक डॉग आपको जिम्मेदारी का एहसास देता है, रोज टहलने की वजह देता है, लोगों से मिलने जुलने का मौका बढ़ाता है और सबसे बड़ी बात, आपको ये एहसास कराता है कि कोई है जो बिना किसी शर्त के आपका इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: आपका तालमेल आपके बॉस के साथ अच्छा नहीं रहता, किसी भी नौकरी में उच्चाधिकारियों के साथ संबंधों की दिक्कत हो जाती है, कौन से ग्रह बैठाते हैं सामंजस्य, बनाते हैं तालमेल, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
4: नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद मिशन जिंदगी तेज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से की बातचीत, भारत की ओर से भेजा जा रहा है राहत सामान, उत्तर प्रदेश बिहार में प्रशासन अलर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने रच दिया नया कीर्तिमान, नई बसों के मामलों में देश में उत्तर प्रदेश नंबर वन, महिलाओं के लिए पैनिक बटन के हेल्पलाइन की भी कनेक्टिविटी। देश भर में रक्षाबंधन की तैयारियां तेज, वाराणसी में बनाई गई खास AI राखी, रायपुर में सुरक्षा बल के जवानों को बांधी गई राखियां। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज, मुंबई के महाराजा नाम से मशहूर करीब 47 फीट के बप्पा का आगमन, नरसिंह रूप में विराजमान है गणपति। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज, अब मंदिर में मिलेगी निशुल्क शीघ्र दर्शन की सुविधा, प्रशासन के फैसले से लोगों को मिली खुशी।

0: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव, और मेरा साथ देने के लिए एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडित जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आज के इस शो में हम क्या चर्चा करने वाले हैं। पंडित जी के साथ चर्चा होने वाली है बॉस के साथ आपके कोऑर्डिनेशन के बारे में। आप किसी दफ्तर में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, आपके तालमेल में कोई दिक्कत आ रही है, उसके लिए आप उपाय चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी और बॉस की बात बन जाए, आपका प्रमोशन हो जाए, या फिर आपके रिश्ते जो हैं वो सुधर जाए, तो इसके लिए आपको क्या कुछ करना चाहिए, बेहतर तालमेल बनाने के लिए आपको कौन कौन से अचूक उपाय करने हैं, पंडित जी विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: देखिए, ऑफिस में कभी भी गंदे और फटे हुए कपड़े पहनकर मत जाइए। फैशन में भी फटे हुए कपड़े पहनकर मत जाइए, अन्यथा आपका शनि खराब होगा और जीवन में हमेशा आपको नौकरी को लेकर के समस्याएं परेशान करेंगी। तो ऑफिस में गंदे और फटे हुए कपड़े पहनकर जाने से जहां तक संभव हो आपको बचना चाहिए।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 27 अगस्त 2026 बृहस्पतिवार के पंचांग के बारे में।
1: दिनांक 27 अगस्त 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, प्रातः 9:08 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं 1:35 तक। राहु काल का समय 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हमने आपको जानकारी दी, हम बात कर रहे हैं बॉस के साथ आपके तालमेल के बारे में। तो बॉस के साथ जो तालमेल होता है, आपका कोऑर्डिनेशन होता है, किन ग्रहों से संबंध होता है पंडित जी, सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं।
1: जी, आज हम आपको बता रहे हैं कि आप ऐसा क्या उपाय करें, ऐसे किन बातों का ध्यान रखें कि आपका तालमेल आपके बॉस के साथ, आपके उच्चाधिकारी के साथ बेहतर रहे। देखिए, किसी भी क्षेत्र का जो उच्चाधिकारी होता है वो उस क्षेत्र के मुख्य ग्रह से संबंध रखता है, क्योंकि अगर मुख्य ग्रह प्रबल नहीं होता तो वो व्यक्ति उच्चाधिकारी नहीं बनता। इसके अलावा जो आपसे ऑफिस में ऊंचाई पर बैठा है, जो आपसे उच्च स्थान पर बैठा है, वो सूर्य और मंगल से भी संबंध रखता है। तो आप अपने करियर के मुख्य ग्रह को, सूर्य और मंगल को मजबूत करके अपने संबंध अपने बॉस के साथ बेहतर कर सकते हैं। और आपको अपने संबंध अगर अपने बॉस के साथ, अपने कलीग, अपने सहयोगियों के साथ बेहतर करने हैं तो अपने कुंडली के कमजोर ग्रहों को भी मजबूत करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपके ग्रह कमजोर होंगे तो आप नौकरी में कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें जरूर करेंगे जिसकी वजह से आपकी नौकरी जाएगी या नौकरी में समस्या पैदा होगी।
0: चलिए अगला प्रश्न पंडित जी से लेते हैं। प्रश्न ये है पंडित जी आपसे कि अगर आप प्रशासनिक सेवा में हैं, सेना में हैं, वहां पर काम करते हैं, तो बॉस के साथ अपने संबंधों को बेहतर करना चाहते हैं, तो कौन कौन से अचूक उपाय हैं जो किए जा सकते हैं?
1: अगर आप प्रशासनिक सेवा में एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में हैं या अगर आप सेना में हैं, तो बॉस के साथ संबंध कैसे बेहतर करेंगे? देखिए, प्रशासनिक सेवा का क्षेत्र और सेना का क्षेत्र मंगल और सूर्य से मुख्य रूप से नियंत्रित होता है। यहां पर अपने उच्चाधिकारी के साथ अगर आप तालमेल चाहते हैं तो आपको इन्हीं ग्रहों को मजबूत करना होगा। क्या करेंगे? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और कार्यालय निकलते समय अगर आप गुड़ खा करके निकलें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अगर आप प्रशासनिक सेवा में हैं, सेना में हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में हैं, तो काले रंग का प्रयोग आपको कम से कम करना चाहिए।
0: चलिए, इसी से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न हैं जो पंडित जी से आगे जाकर पूछेंगे, महाउपाय के बारे में बताएंगे, आपके सवाल भी इस शो में शामिल करेंगे। लेकिन आते हैं राशिफल पर। पहली तीन राशियों का हाल आपको बता देते हैं कैसे रहने वाला है। सबसे पहले बारी है पहली तीन राशियों की, नाम है इनका मेष, वृष और मिथुन।
1: मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
0: चलिए एक और प्रश्न पंडित जी से लेते हैं, इसी मुद्दे के साथ जुड़ा हुआ। पंडित जी, सवाल यह है कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, चिकित्सा क्षेत्र में काम करते हैं, यहां पर अपने बॉस के साथ तालमेल को बेहतर बनाना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि वो सुधर जाए, तो फिर कौन से उपाय किए जा सकते हैं?
1: अब अगर आप एजुकेशन के फील्ड में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं या चिकित्सा मेडिकल के क्षेत्र में हैं, तो आप अपने बॉस के साथ तालमेल कैसे अच्छा करेंगे? शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में दो ग्रहों की मुख्य भूमिका होती है, बृहस्पति और चंद्रमा। मुख्य रूप से अगर आप चंद्रमा को मजबूत करें, आप शिक्षा क्षेत्र में हो या चिकित्सा क्षेत्र में हो, बॉस के साथ आपका तालमेल बेहतर होगा। क्या करेंगे? सफेद और पीले रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करिएगा, और जब भी ऑफिस जाएंगे जरा सी मिश्री खाकर जाइएगा, चंद्रमा को ताकत मिलेगी और चंद्रमा बेहतर होगा तो बॉस के साथ तालमेल बेहतर हो जाएगा।
0: चलिए, इसी के साथ जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न हैं, आपके कंफ्यूजन्स को भी दूर करेंगे, लेकिन आते हैं वापस राशिफल पर। अगली तीन राशियों का हाल आपको बता देते हैं, कैसा रहने वाला है। बारी है अब कर्क, सिंह और कन्या वालों की, जानते हैं इनके भाग्य में आज क्या लिखा है।
1: कर्क राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, वाहन सावधानी से चलाएं।

0: बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कारोबार में लाभ होगा, रुका हुआ काम बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, संतान पक्ष की उन्नति होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं, यानी आप दर्शकों के सवाल और पंडित जी के जवाब। इससे पहले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ूं, इससे पहले आपको सूचित कर देते हैं, कोई भी प्रश्न है आपकी, कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, उसका निवारण आप चाहते हैं तो पंडित जी आपको बताएंगे तमाम उपाय। लेकिन सवाल अगर आप भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या है वो जान लीजिए। आपको ईमेल आईडी के माध्यम से अपने तमाम सवाल इस शो में भेजने हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ पंडित जी।
0: जी, आज का पहला प्रश्न श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव जी ने हमें लिखा है, बेंगलोर से लिखती हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 5 अक्टूबर 2008, जन्म का समय सुबह के 11 बजे, जन्म स्थान है भोपाल। ये पूछ रही हैं कि मेरा बेटा अभी 12वीं की पढ़ाई कर रहा है, आगे इंजीनियरिंग साइड में जाना चाहता है, तो क्या मेरा बेटा अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग कर पाएगा? अर्चना जी, आपके पुत्र की कुंडली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की संभावनाएं ठीक हैं, लेकिन देखिए पढ़ाई में मन नहीं लगता, एकाग्रता कमजोर है, मेहनत नहीं करना चाहते, दिमाग अच्छा है जिस वजह से सफलताएं पा जाते हैं। वैसे कुंडली इनकी कहती है कि आगे किसी एवरेज संस्थान से ये इंजीनियरिंग कर लेंगे, ये संभावना इनकी कुंडली में बन रही है। इतना जरूर ध्यान दीजिए कि इंजीनियरिंग के दौरान ये भटके नहीं, गलत संगति वगैरह में ना पड़ जाएं। इनको अभी से एक पन्ना बनवा करके पहनाइए, लगभग 8-9 रत्ती का पन्ना, चांदी के लॉकेट में, काले धागे में, बुधवार की शाम को इनको गले में धारण करवाएं। और आप इनकी माता जी हैं, इनके लिए रोज सुबह शाम संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें तो काफी बेहतर होगा।
1: चलिए इसी के साथ वक्त हो जा रहा है दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ने का। दूसरे दर्शक का कौन सा सवाल पंडित जी ने इस शो में लिया है वो जान लेते हैं पंडित जी से ही।
0: जी, अगला प्रश्न दीपक गुप्ता जी ने हमें लिखा है, और दीपक जी हमें आगरा से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 जनवरी 1975, जन्म का समय सुबह के 8:15, जन्म स्थान है आगरा। दीपक जी कह रहे हैं कि मैं पहले नौकरी कर रहा था बेंगलोर में, और अब मैं नौकरी छोड़ करके आगरा वापस आ गया हूँ, अपना कोई व्यापार करना चाहता हूँ, तो क्या मेरे लिए व्यापार करना बेहतर होगा?

0: दीपक जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आपको नौकरी ही करनी चाहिए। अभी आपके लिए नौकरी करना ज्यादा बेहतर होगा। 2028 के जुलाई के बाद आप व्यापार में जाने का प्रयत्न करिएगा। अभी का समय नौकरी के लिए ज्यादा उपयुक्त दिखाई दे रहा है। सेहत को लेकर जो परेशानियां हैं वो बड़ी नहीं हैं और स्वास्थ्य आने वाले समय में बेहतर रहेगा। एक मोती बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा।
1: चलिए अगला प्रश्न ये है पंडित जी आपसे कि अगर कोई शख्स तकनीकी क्षेत्र में कार्यरत है, परिवहन के क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर तालमेल बिठाने के जद्दोजहद में वो लगा है, बॉस के साथ किसी वजह से तालमेल बैठ नहीं पा रहा, तो फिर कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं?
0: अगर आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं, तकनीक में हैं, ट्रांसपोर्ट में हैं, परिवहन के क्षेत्र में हैं, तो बॉस के साथ तालमेल कैसे अच्छा बनेगा? टेक्नोलॉजी का क्षेत्र राहु, केतु, शनि और कहीं कहीं बुध से संबंध रखता है। अगर आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं तो आपको इन्हीं ग्रहों को बेहतर करना होगा। कपड़ा पहनने में अधिक से अधिक हल्के नीले रंग का प्रयोग करिए और बॉस के साथ तालमेल आपका ठीक रहे, कार्यालय जाते समय लौंग खाकर जाइए, कोई मीठी चीज मत खाइए और मंगलवार को लाल रंग के कपड़े, लाल रंग के जूते, लाल रंग का पर्स, इसका प्रयोग करने से परहेज करिए।
1: चलिए अगला प्रश्न पंडित जी से लेते हैं। पंडित जी, जो क्षेत्र हमारा है, मीडिया की हम बात कर लेते हैं, ग्लैमर क्षेत्र की बात करते हैं और फैशन क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं, यहाँ पर अगर आप बॉस के साथ रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं तो फिर कौन कौन से उपाय आप बताएंगे?
0: अगर आप मीडिया, ग्लैमर या फैशन के क्षेत्र में हैं और यहाँ पर बॉस के साथ अच्छा तालमेल चाहते हैं तो क्या करेंगे? ये क्षेत्र शुद्ध रूप से शुक्र का क्षेत्र है और शुक्र को मजबूत करके आप बॉस को खुश रख सकते हैं और बहुत सारी उन्नति कर सकते हैं। जब भी ऑफिस जाएं, जरा सी दही और चीनी खाकर जाएं और रेगुलरली नियमित रूप से हल्की सुगंध का प्रयोग करें। अगर मीडिया, फैशन, ग्लैमर, फिल्म इन क्षेत्रों में हैं तो खाली पेट घर से ना निकलें, शुक्र कमजोर होगा और तालमेल ऑफिस में खराब होगा।
1: चलिए राशिफल पर वापस आते हुए बात करते हैं अगली तीन राशियों की। अब बारी है तुला, वृश्चिक और धनु वालों की। जानते हैं इनके भाग्यफल में आज क्या लिखा है, पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे।
0: तुला राशि, बेवजह की मानसिक चिंता हो सकती है, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है, 65% जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होती रहेगी, चोट चपेट से सावधान रहें, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काम की अधिकता रहेगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है, करियर की स्थिति ठीक रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए एक और प्रश्न पंडित जी से लेते हैं। सवाल यह है कि बैंकिंग के क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं, कॉर्पोरेट क्षेत्र में अगर आप कार्यरत हैं, तो यहाँ पर भी किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके काम करने में, या फिर बॉस के साथ रिश्ते जो हैं वो सही नहीं हैं, उनको सही दिशा में ले जाने के लिए कौन कौन से अचूक उपाय हैं पंडित जी आपको बताएंगे क्या कर सकते हैं।
0: अगर आप बैंकिंग सेक्टर में हो, कॉर्पोरेट में हो, मार्केटिंग में हो, सेल्स में हो, तो क्या करें कि बॉस के साथ तालमेल ठीक हो। ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है ये अलग अलग ग्रहों से कंट्रोल होता है, जैसे फाइनेंस यानी वित्त बृहस्पति से, सलाहकारिता कंसल्टेंसी बुध से, मैनेजमेंट बुध और बृहस्पति दोनों से मैनेज होता है। इस क्षेत्र में अगर आप बॉस को खुश रखना चाहते हैं, बेहतर तालमेल चाहते हैं, तो सारे ग्रहों पर संतुलन आवश्यक है। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं तो नियमित रूप से सूर्य भगवान को सादे जल से, प्लेन वाटर से अर्घ दीजिए। घर से निकलते समय इलायची खाइए, हरी इलायची, और अपनी जेब में एक इलायची जरूर रख लीजिए।
1: चलिए अगला सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ। पंडित जी अब ये बताइए कि मार्केटिंग क्षेत्र वालों के लिए कौन कौन से अचूक उपाय हैं कि वो अपने रिश्तों को बेहतर कर लें बॉस के साथ।
0: देखिए सबसे मुश्किल क्षेत्र है मार्केटिंग का। यहां पर बॉस के साथ तालमेल बैठा पाना या बॉस को प्रसन्न कर पाना सबसे कठिन काम है। तो अगर आप मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं और बॉस के साथ तालमेल रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इस क्षेत्र पर संपूर्ण रूप से बुध का अधिकार होता है और इस क्षेत्र में बॉस को खुश रखना और बॉस के साथ तालमेल रखना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। अगर आप मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं तो बॉस के साथ तालमेल के लिए और इस क्षेत्र में सफलता के लिए रोज सवेरे नियमित रूप से भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब अर्पित करें। घर से निकलते समय सौंफ खाकर निकलिए और बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग से परहेज करिए और बृहस्पतिवार के दिन बॉस के साथ रिश्तों पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा।
1: चलिए अंतिम तीन राशियों का हाल भी पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। बारी है मकर, कुंभ और मीन वालों की, जानते हैं इनके भाग्यफल में आज क्या लिखा है।
0: मकर राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है, सेहत बेहतर होगी, काम की रुकावट दूर होगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।

0: नए अवसर मिलेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी दर्शकों का अगला सवाल, और जानते हैं पंडित जी से ही कि कौन सा है अगला प्रश्न। पंडित जी
0: जी, अगला प्रश्न विनीता ने हमें लिखा है, लखनऊ से लिखती हैं। विनीता की जन्म की तारीख है 19 नवंबर 1994। जन्म का समय शाम के 7:10। जन्म स्थान है उरई, उत्तर प्रदेश। विनीता कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? विनीता, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय चल रहा है और जून 2026 से जून 2027 का जो समय है इसमें आपकी शादी हो जाएगी आपकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने व्यक्ति के साथ। वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला के अच्छा है, लेकिन विवाह के बाद आपको लखनऊ से दूर जाना पड़ेगा, हो सकता है विदेश भी जाना पड़े, तो स्थान परिवर्तन की संभावना आपकी विवाह के बाद बन रही है। एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें, रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए वक्त हो चला है अगला प्रश्न इस शो में शामिल करने का, यानी दर्शकों का, आप सबका अंतिम सवाल। तो पंडित जी, कौन सा अंतिम सवाल आप तक आया है?
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न दीप्ति ने हमें लिखा है, और दीप्ति जी हमें जयपुर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 28 अगस्त 1979। जन्म का समय रात में 10:55। जन्म स्थान है जयपुर। दीप्ति कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य काफी समय से अच्छा नहीं चल रहा है और कुछ न कुछ स्वास्थ्य की समस्याएं मुझे लगातार लगी रहती हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य और मेरा जीवन बेहतर हो जाए? दीप्ति, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको केवल अपनी आंखों का और केवल अपने डाइजेशन का ध्यान देने की जरूरत है। अगर अपनी आंखों का और डाइजेशन का ध्यान रखें तो बाकी मामले में कोई बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। बीमारियों को लेकर के बेवजह का वहम, बेवजह का तनाव मत पालिए। एक मूंगा बनवा के पहनिए, 14-15 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करें, रोज सुबह 1 बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, आपके लिए बेहतर होगा।
1: चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि जिन लोगों का जन्मदिन है 27 अगस्त को, उनका हैप्पी बर्थडे, उनका गुड डे उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 27 अगस्त को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर में बड़े परिवर्तन के योग हैं। स्वास्थ्य का मामला बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य के मामलों में लापरवाही ना करें। अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है, क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए आगे बढ़ते हुए पंडित जी से जान लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या शिव जी की पूजा करने का कोई निश्चित समय है? देखिए, शिव जी एक ऐसे देव हैं जिनकी पूजा कभी भी किसी भी समय किसी भी स्थान पर की जा सकती है। वैसे शिव जी की पूजा सूर्यास्त के आसपास यानी प्रदोष काल में करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है।
1: चलिए पंडित जी आपको बताएंगे 27 अगस्त 2026 यानी बृहस्पतिवार के शुभ पहर के बारे में।
0: दिनांक 27 अगस्त 2026 दिन बृहस्पतिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शिव मंत्र का जप करिएगा, स्वास्थ्य की समस्या से निकलने का आपको रास्ता मिलेगा, स्वास्थ्य की समस्या को बेहतर कर पाएंगे। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, 27 अगस्त बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: चलिए पंडित जी से जानते हैं आज के शो की गुडलक राशि यानी आपकी गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की कमियां क्या हैं, कहां सुधार करना चाहिए। आज की गुडलक राशि है कन्या। आपको बेवजह की चालाकी और स्वार्थ दिखाने से बचना चाहिए। जीवन में संतोष रखेंगे, संतोष का भाव रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: चले तमाम उपाय जानकारियां इस शो से जुड़े हुए तमाम प्रश्न और आपके प्रश्न हमने शामिल कर लिए हैं। अब बारी आती है खास उपाय के ऊपर आने की, तो पंडित जी से ही जानते हैं कि आज का महा उपाय जिसका आपको भी इंतजार रहता है, खास उपाय कौन सा है पंडित जी?
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपका रिश्ता या प्रेम संबंध टूट रहा है, आप उसे बचाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? रोज सवेरे गुलाबी कपड़ा पहन करके सूर्य देव को जल चढ़ाइए। इसके बाद एक बार मधुराष्टक का पाठ करिए और मधुराष्टक का पाठ करने के बाद प्रेम संबंध बचाने की प्रार्थना करिए। आपके रिश्ते आपका प्रेम संबंध बच जाएंगे।
1: तो पंडित जी इस जानकारी के लिए और तमाम उपाय बताने के लिए और महा उपाय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: और चलिए आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अच्छे पॉजिटिव खबरें दिन भर जारी है, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: बात करेंगे गणेशोत्सव की, जिसकी शुरुआत अगले महीने की 14 तारीख से हो रही है। ऐसे में इस पर्व को लेकर देश भर में तैयारियां इन दोनों जोर शोर से चल रही हैं, खासकर पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र में, जहां बड़े बड़े गणेश पूजा पंडाल न सिर्फ सजने शुरू हो चुके हैं, बल्कि इन पूजा पंडालों में बप्पा की विशाल मूर्तियों का आगमन भी अब शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में खेतवाड़ी के लंबोदर का आगमन बड़ी धूमधाम से किया गया। इस बार विघ्नहर्ता को अन्नदाता किसान के रूप में पेश किया गया है।

0: विघ्नहर्ता भगवान गणेश से जुड़ा पर्व गणेश चतुर्थी आने में अभी थोड़े दिन बाकी हैं, लेकिन इससे पहले ही इसकी रौनक नजर भी आने लगी है। खासकर मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में गणेशोत्सव को लेकर लोगों में उत्साह हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, जिसकी गवाही मुंबई से आई ये तस्वीरें दे रही हैं। बाप्पा की भक्ति में डूबे ये भक्त झूमते गाते ढोल बजाते खुशी खुशी जब पूजा पंडाल की ओर निकले तो लोगों का हुजूम सड़कों पर उमड़ आया। ये है 32 फीट ऊंची खेतवाड़ी के लंबोदर की गणेश मूर्ति, जिसका आगमन पंडाल में बड़े धूमधाम के साथ हुआ। खेतवाड़ी का ये पंडाल मुंबई के प्रसिद्ध और नामी पूजा पंडालों में से एक है, जहाँ इस साल भगवान गणेश की प्रतिमा को किसान के रूप में दर्शाया गया है।
1: गणेश उत्सव की तैयारी मुंबई में जोरों शोरों से शुरू है। खासियत यह है कि बड़ी बड़ी प्रतिमाएं जो हैं वो पंडालों में लानी शुरू हो गई है। मेरे पीछे आप एक सक्रिय गली देख रहे हैं, बड़ी छोटी सी गली है, इसी से उस बड़ी प्रतिमाओं को लाया गया है और पंडाल में स्थापित किया गया। खास बात यह है कि मैं जहां मौजूद हूं, इलाके का नाम है खेतवाड़ी, और यहां पर इस तरह की जो छोटी छोटी गलियां हैं कई हैं, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार, पांच, छह, सात, फिलहाल मैं चौथी गली में हूं जहां के बप्पा इस समय लाए गए हैं और विराजमान कर दिए गए हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि खेतवाड़ी के लंबोदर के दरबार में इस समय मौजूद हूं और एक दो दिन पहले ही बप्पा को यहां पर बकायदा धूमधाम से लाया गया है। देखिए कितना विशाल स्वरूप, कितना विशाल रूप बप्पा का यहां पर देखने मिल रहा है। खास बात यह है कि इस तरह से जो लंबी लंबी प्रतिमाएं गणेश जी की होती हैं उनके साथ बहुत बढ़िया बढ़िया थीम भी लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए रखी जाती है।
0: खेतवाड़ी चार लंबोदर मंडल अपनी अलग थीम और भव्यता के लिए मशहूर है। इस गणेश पंडाल में हर साल एक नए थीम पर पंडाल सजता है और इस साल ये अपना 68वां गणेशोत्सव मनाने जा रहे हैं। इस बार इस गणेश मंडल में राज्य के किसानों की समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से किसान बचाओ थीम पर ही पंडाल बनाने का फैसला लिया गया है।
2: संदेश दिया है गवर्नमेंट को कि खेतकरी के लिए बहुत कठोर बात है, इतना मेहनत करके भी उनको मार्केट के अंदर भाव बराबर मिलता नहीं है। एक गवर्नमेंट ने देखना मांगता है कि शेतकरी है करके अपन लोग है, शेतकरी अनाज नहीं पकाएंगे तो अपन लोग कुछ खा नहीं सकते है। अगर शेतकरी को कुछ नहीं दिया तो शेतकरी किधर से अनाज लाएगा अपने लिए, खत भी नहीं मिलेगा। एक तो इतना महंगाई हो गया है, मार्केट में इनको भाव भी बराबर नहीं मिलता है, कुछ नहीं देते। इसके लिए वो हम लोग ने गवर्नमेंट को ये संदेश दिया है
1: और बकायदा गणपति बप्पा के साथ संदेश दिया है,
2: गणपति बप्पा के साथ दिया है।
0: गली नंबर चार में सजने वाला ये पूजा पंडाल अपनी सामाजिक और देशभक्त थीम के लिए हर साल सुर्खियों में रहता है, इसलिए यहाँ हर साल बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए दौड़े चले आते हैं। मंडल के अध्यक्ष प्रवीण भोसले बताते हैं कि उनकी कोशिश रहती है कि हर साल लोगों को गणेश पूजा के जरिए सामाजिक संदेश भी दिया जाए।
2: साल लाया वामन अवतार, उसके बाद में लाया वर्ल्ड कप, उसके बाद में लाया ऑपरेशन सिंदूर, अभी शेतकरी आत्महत्या करते हैं, इसके ऊपर हम लोग गणराय लेके आए।
1: तो कैसे मतलब आपस में आप लोग बातचीत करते, कमेटी बैठती, कैसे सोच होती है कि इस बार क्या होना
2: चाहिए? बगैर कुछ नहीं होता है, कमेटी एक साथ बैठते हैं हम लोग 5-6 जन है कमेटी में, मेन मेन वो लोग बैठ के हम लोग डिसीजन लेते पूरे, फिर बाद में हम लोग बच्चे लोग को बताते। यहाँ हमारे बच्चे लोग सब राह देखते है, 365 साल में कभी आएंगे हमारे पप्पा, राह ही देखते रहते, दिन रात मेहनत भी वो लोग बच्चे लोग करते।
0: वैसे तो गणेश उत्सव का ये पर्व पूरे देश में ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता रहा है, लेकिन जैसी विविधता और रौनक इस पर्व को लेकर महाराष्ट्र में नजर आती है वैसी कहीं और दिखाई नहीं पड़ती। यहाँ हर साल छोटे बड़े सैकड़ों पूजा पंडाल सजते हैं जिनमें बाप्पा को अलग अलग स्वरूपों में विराजित किया जाता है। काला चौकी चा महाराजा और कामराज चा महाराजा की ये प्रतिमा इसका शानदार उदाहरण है।
3: गणपति बाप्पा
0: ये प्रतिमाएं न सिर्फ आकार में बड़ी हैं, बल्कि इनकी सजावट और थीम भी काफी आकर्षक है।
4: और हमारा जो 10 दिन का प्रोग्राम होता है, जितना दिन गणपति बैठते हैं, हम लोग पूरे 10 या 12 दिन पूरे धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन हो गया, ड्राइंग कॉम्पिटिशन, हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन, डेंटल चेकअप वगैरह, हेल्थ चेकअप, बहुत सारे ऐसे हमारे पूरे 10 के 10 दिन कार्यक्रम होते हैं। और हमारा 7वां दिन जो होता है उस दिन हम लोग सत्यनारायण की पूजा करते हैं।
0: 14 सितंबर से शुरू होने वाला गणेश उत्सव सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक एकता और ऐतिहासिक गौरव का भी प्रतीक है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने इसे राज्य महोत्सव घोषित किया है, जिससे इसकी सांस्कृतिक महत्ता और बढ़ गई है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: बात करेंगे प्लास्टिक के कचरे से जुड़ी क्रिएटिविटी की। जिस प्लास्टिक को प्रकृति और पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, उस पर दिल्ली का एक कपल अपने इनोवेटिव आइडिया के जरिए लगातार प्रहार कर रहा है। उनका स्टार्टअप रीसाइक्लिंग के जरिए कचरे में फेंके जा रहे प्लास्टिक से सुंदर और इस्तेमाल लायक उत्पाद बना रहे हैं, जिसमें कुर्सियां, डस्टबिन, गमले और जहां तक कि पार्क में बैठने वाले बड़े साइज के बेंच भी शामिल हैं।

0: धरती के लिए अभिशाप सिंगल यूज प्लास्टिक का इससे अच्छा इस्तेमाल नहीं हो सकता। कंक्रीट, आरसीसी या ग्रेनाइट पत्थर की तरह दिखने वाले ये बेंच और टेबल केवल एक बार इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक से बनाए गए हैं। जल, जमीन और हवा को दूषित करने में प्लास्टिक सबसे आगे है। इसमें भी सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे ज्यादा घातक माना जाता है। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक से बनी ऐसी चीजें होती हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार ही हो पाता है, फिर उसे फेंक दिया जाता है। लेकिन दिल्ली के इस कपल ने प्लास्टिक कचरे को नया स्वरूप दे दिया जो दिखने और इस्तेमाल में अपने मूल आकार और स्वरूप से ज्यादा खूबसूरत है।
1: दिल्ली में प्लास्टिक एक बेहद बहुत ही बड़ी समस्या है और वो प्लास्टिक के कचरे की अगर हम बात करें और अगर उस कचरे का इस्तेमाल दोबारा से किया जाए तो ये कचरा किसी के भी काम आ सकता है। खास तौर पर ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए जो है बेहद ही फायदेमंद वाली चीज़ हो सकती है। जिस पर मैं बैठी हूँ ये उसी का एक उदाहरण जो है मैं आपको पेश करने की कोशिश कर रही हूँ। आप मेरे पीछे भी और जिस पर मैं बैठी हूँ और आसपास भी देख सकते हैं कि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिख जाएगी जो उसी प्लास्टिक के कचरे से जो है बनी है। इसकी जो शुरुआत हुई है उसी प्लास्टिक के कचरे से हुई है जिसको आप और मैं बेकार समझकर जो है फेंक देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर बेंचेस जो है वो नज़र आ जाएगी, आपको टेबल नज़र आ जाएगी, आपको बहुत सारी यहाँ पर जो है चीज़ें नज़र आने वाली है जो कि रिसाइकल प्लास्टिक से जो है वो बनाई गई है और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको जो है बनाया गया था ताकि इसका इस्तेमाल जो है वापस से किया जा सके। आप इसको किसी भी ओपन स्पेस में रख सकते हो, चाहे इन बेंचेस का, इन टेबल का इस्तेमाल पार्क में किया जा सकता है, स्कूल में किया जा सकता है, किसी भी ओपन स्पेस में जो है इसको लगाया जा सकता है।
0: सड़क, पार्किंग, गार्डन और फर्श को मजबूत बनाने और सुंदर दिखने के लिए कंक्रीट या सीमेंट के छोटे टुकड़े का इस्तेमाल होता है जिसे पेवर ब्लॉक कहा जाता है। इसको बनाने में भी अब प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल होने लगा है।
1: तो आपको यहाँ पे पेवमेंट ब्लॉक्स दिख जाएंगे, आपको ये छोटे छोटे इस तरीके की जो टाइल्स जैसे दिखती है पेवमेंट ब्लॉक्स जो है वो नजर आ जाएगा और ये सभी जो है रिसाइकल प्लास्टिक से जो है बनाया गया है। यानी जिस प्लास्टिक को आप और मैं इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं बेकार समझकर, उसी प्लास्टिक को जो है रिसाइकल करके, प्रोसेस करके इस चीज़ों में, इस तरह की चीज़ों में जो है बदला जा रहा है ताकि उसका इस्तेमाल जो है लंबे समय तक किया जा सके।
0: कंक्रीट की पक्की सड़क के मुकाबले ये लचीली सतह बनाते हैं जिससे जमीन के धंसने पर भी इनमें दरारें नहीं आती हैं। भारी वजन पड़ने पर भी ये आसानी से नहीं टूटते। दिल्ली के रहने वाली सोनल और उनके पति ने प्लास्टिक कचरे के बेहतर इस्तेमाल को अपना लक्ष्य बना लिया। NIT कुरुक्षेत्र से मास्टर्स करने वाले पति पत्नी ने मिलकर एक कॉन्सियस नाम का स्टार्टअप शुरू किया जिसका मकसद प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल करके ऐसी चीजें तैयार करना है जिनका इस्तेमाल सार्वजनिक जगहों पर आम लोगों की सुविधा के लिए किया जा सके।
1: इस पहल की शुरुआत की है दिल्ली के इस कपल ने जो इस वक्त मेरे साथ है, सोनल और वैभव मेरे साथ बैठे हैं। सोनल, मैं आपसे शुरुआत करूंगी कि यह आइडिया कहाँ से आया, क्योंकि प्लास्टिक वाकई में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। हम कितनी भी कोशिश कर लेकिन प्लास्टिक कम नहीं होता, बट उसको थोड़ा सा कम करने की शायद आपने एक पहल जो है वो शुरू करी है।
2: डेफिनेटली प्लास्टिक में शुरुआत हमारी एक्चुअली कोइंसिडेंटली हुई थी। सो हम दोनों ने MTech किया NIT कुरुक्षेत्र से। वैभव का मेजर था एनवायरमेंट में, तो उसमें ही वॉज स्टडिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एज वेल एज जो मेरा एक कॉन्शियस थॉट था टुवर्ड्स डूइंग समथिंग अबाउट द प्लास्टिक वेस्ट। तो हमने वहाँ से शुरुआत करी, कोविड के टाइम पर शुरुआत करी स्पेशली, क्योंकि उस टाइम पर हम देख रहे थे कि बहुत सारा सिंगल यूज प्लास्टिक इन द फॉर्म ऑफ PPE किट्स या फिर मास्क कह लीजिए या फिर लोग वैसे भी पैकेजिंग वगैरह ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। तो हमने एक कॉन्शियसली थॉट किया कि दिस इज़ आई फील द बेस्ट टाइम कि हमें कुछ करना चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए एंड ऑल्सो कि हम उसको कुछ कन्वर्ट कर पाएँ ऐसे प्रोडक्ट्स में जो हमें हमारे इन्वायरमेंट को ब्यूटिफाई कर सकें। सो ड्यूरिंग कोविड वी स्टार्टेड।
0: शुरुआत में सोनल और वैभव ने प्लास्टिक के कचरे से घर सजावट का सामान बनाना शुरू किया था, लेकिन बाद में पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए उसी के इस्तेमाल पर फोकस कर लिया। यही वजह है प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन के लिए वो पिकअप सुविधा भी देते हैं।
2: प्लास्टिक का जो हमारा कलेक्शन का सेटअप है वो हम दिल्ली में बेस्ड एक स्टार्टअप है। सो हमारा जो भी कलेक्शन सेटअप है दैट इज़ इन दिल्ली NCR। लोग हमसे डायरेक्टली भी कनेक्ट होकर हमें प्लास्टिक देते हैं। वी प्रोवाइड अ पिकअप सर्विस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे कुछ NGO पार्टनर्स हैं जो हमारे बिहाफ में वो कलेक्शन करते हैं और फिर हम उनके थ्रू सोर्सिंग करते हैं। एंड उसके अलावा जो हमारे वेस्ट वर्कर्स होते हैं, कबाड़ी वाले भैया दीदी लोग होते हैं, सो हम उनसे भी सोर्सिंग करते हैं।
0: पिछले साल महाकुंभ के दौरान महिला श्रद्धालुओं की सुविधा और गोपनीयता के लिए 1000 से अधिक विशेष चेंजिंग रूम बनाए गए थे जिनको सोनल और वैभव की स्टार्टअप कंपनी ने एक संस्था के साथ मिलकर तैयार किया था, जिसमें करीब 5,00,000 किलो प्लास्टिक को रीयूज यानी दोबारा इस्तेमाल किया गया।
3: ये महाकुंभ का ये जो प्रयागराज में हुआ था 2025 में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट था, तो हमने इस पे एक थॉट दिया कि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सकता है और महिलाओं को एक स्पेस सेफ स्पेस मिलेगी चेंज करने के लिए उनको स्नान के बाद में। तो हमने वो चेंजिंग रूम्स बनाए 1,000, वहाँ पे एक चेंजिंग रूम में लगभग 550 किलो प्लास्टिक को हमने इसमें रिसाइकल किया, 550 किलो, तो लगभग 5,00,000 केजी तक हमने प्लास्टिक को इसमें रिसाइकल करके हमने चेंजिंग रूम्स बनाए इससे।
0: प्लास्टिक से होने वाला कचरा दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत के लिए कितनी बड़ी समस्या है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। सिंगल यूज प्लास्टिक को एक बार इस्तेमाल करने के बाद खुले में फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से मिट्टी की प्रोडक्टिविटी यानी उर्वरता भी घट जाती है। फिर भी देश की एक बड़ी आबादी सिंगल यूज प्लास्टिक से हो रहे प्रदूषण के नुकसान को गंभीरता से नहीं लेती, जिनको जागरूक करने का बीड़ा सोनल और वैभव ने अपने कंधों पर उठाया है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: केरल में ओणम की धूम है, खेतों में लहलाती फसल और घन आंगन में फूलों की रंगोली के बीच केरल अपने सबसे बड़े त्यौहार का जश्न मना रहा है। 24 अगस्त से शुरू हुए इस उत्सव में राजधानी तिरुवनंतपुरम समेत राज्य भर में एक हफ्ते तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। ओणम सिर्फ त्यौहार नहीं बल्कि राजा महाबली के सुशासन और उनके स्वागत की परंपरा से जुड़ी केरल की सांस्कृतिक पहचान है, लेकिन इस बार ओणम का अंदाज थोड़ा नया है। कॉलेज कैंपस में स्टूडेंट और टीचर्स मिलकर ओणम के रंग में पूरी तरीके से रंगे नजर आए। कहीं पर फूलों की रंगोली की प्रतियोगिता हुई तो कहीं पर पारंपरिक खेलों और मुकाबले नजर आए।

0: केरल में आज रंग है, उमंग है, खेतों से लेकर कैंपस तक और परंपरा से लेकर सोशल मीडिया तक, हर तरफ बस ओणम का रंग चढ़ा हुआ है। कहीं फूलों की खुशबू है, कहीं गीतों की गूंज है, कहीं ढोल की थाप है, तो कहीं पारंपरिक परिधानों में झूमता युवा जोश है। यानी पूरा केरल आज ओणम के जश्न में डूबा है। ये वही ओणम है जिसका इंतजार हर मलयाली साल भर करता है। मान्यता है कि 10 दिनों तक चलने वाले इस त्यौहार में राजा महाबली अपनी प्रजा से मिलने धरती पर आते हैं और अपने प्रिय राजा के स्वागत में पूरा केरल सज उठता है। घरों के आंगन में फूलों से खूबसूरत उकलम सजता है, गीतों की गूंज सुनाई देती है और केले के पत्ते पर परोसी जाने वाली स्वाद से भरपूर साध्या के साथ त्यौहार की खुशियां और भी बढ़ जाती हैं। लेकिन इस बार ओणम की सबसे खूबसूरत और दिलचस्प तस्वीरें केरल के कैंपस से सामने आ रही हैं। कई फूलों से खूबसूरत पुकल्लम बनाने की होड़ है, कहीं ओणम गेम्स का रोमांच है, तो कहीं रस्सा कशी में पूरा कैंपस एक टीम बनकर अपनी ताकत और जोश दिखा रहा है। लड़के हो या लड़कियां, पारंपरिक परिधानों में सजे छात्र छात्राएं कभी खेल के मैदान में अपना दम दिखा रहे हैं, तो कभी दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हुए ओणम के इस खूबसूरत पलों को कैमरे में कैद कर रहे हैं। और यही तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर पहुंचती हैं, तो ओणम का रंग और भी नया खो जाता है। रील्स बन रही हैं, सेल्फी क्लिक हो रही हैं और ट्रेंडिंग म्यूजिक के साथ युवा अपने अंदाज में इसकी खुशियां मना रहे हैं। एक तरह से कह लीजिए ये है आज का जेन ज़ी वाला ओणम, जहाँ परंपरा भी पूरी शिद्दत से निभाई जा रही है और सेलिब्रेशन का अंदाज भी बिल्कुल नया है। उकल्लम वही है, पारंपरिक परिधान वही है, महाबली के स्वागत की भावना वही है, लेकिन उसे कैमरे में कैद करने और दुनिया तक पहुंचाने का तरीका बदल गया है। क्योंकि ओणम सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, बल्कि उस दौर की याद है जब राजा महाबली के शासन को खुशहाली, समानता और भाईचारे की मिसाल माना जाता था। शायद यही वजह है कि केरल हो या दुनिया का कोई भी कोना, मलयाली जहां भी है वहां ओणम जरूर है। और महाबली के स्वागत की ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी उसी उत्साह के साथ आगे बढ़ रही है। बदलते वक्त के साथ त्योहार मनाने का अंदाज जरूर बदला है। अब हाथों में फूलों के साथ कैमरा भी है, पुकल्लम के साथ रील्स भी हैं और पारंपरिक गीतों के साथ सोशल मीडिया का ट्रेंडिंग म्यूजिक भी है। लेकिन इन सबके बीच एक चीज आज भी बिल्कुल नहीं बदली और वो है अपनों के साथ खुशियां बांटने का जज्बा। यही तो है केरल का ओणम, जहां परंपरा के रंग है, नई पीढ़ी का जोश है, सेलिब्रेशन का अपना अलग अंदाज है और हर चेहरे पर अपनों के साथ खुशियां बांटने की चमक है। महाबली के स्वागत में सजा ये केरल आज भी कह रहा है ओणम आया है, खुशियां लाया है और हर दिल को अपनी रंग में रंग गया है। शिवी मोर केजी, गुड न्यूज टुडे, तिरुवनंतपुरम।
1: बात करेंगे लोगों के बजट से जुड़ी हुई। लगातार बढ़ते चीनी के दाम पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कुछ कारगर उपाय किए हैं। दिल्ली सरकार ने 3500 रुपये किलो चीनी जनता को मुहैया कराने का इंतजाम किया है, जिसके साथ ही चीनी की कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमारी की जाएगी। चीनी की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस सिलसिले में दिल्ली की मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री की एक अहम बैठक भी हुई। वहीं पर चीनी की महंगाई पर ब्रेक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर से चीनी मिलों की शुरुआत हो जाएगी। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में 90 लाख टन चीनी उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश
4: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा गुप्ता। साहिल देव, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात रंग, राशि और राखी के संयोग की। राखी क्या है? एक डोर है, प्रेम और दोस्ती के धागों से बुनी हुई। और ये प्यारा सा त्योहार उसी रिश्ते का तो प्रतीक है। तभी तो रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई पर प्रेम से कोई एक धागा भी बांध देना काफी होता है। और जहां तक बात है गिफ्ट की, तो बहन के लिए भाई का प्यार और साथ ही सबसे बड़ा उपहार है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कुछ खास रंगों की राखी इस रिश्ते में स्नेह के रंगों को और गहरा कर सकती है। ज्योतिष विज्ञान के मुताबिक राखी के दिन राशि के मुताबिक रंगों की राखी भाई की कलाई पर बांध उनके जीवन में शुभता और सौभाग्य ला सकता है। तो वहीं अगर बहना के लिए उपहार उसकी राशि के अनुसार चुना जाए तो उसके जीवन में मंगल और सौभाग्य की बरसात हो सकती है। तो चलिए आइए ज्योतिषाचार्य से जान लेते हैं कि बहनें अलग अलग राशियों के आधार पर अपने भाइयों को कौन कौन सी राखी बांध सकती हैं और भाई अपने बहन को ढेर सारे प्यार के साथ और कौन सा उपहार दे सकते हैं।
1: बात करते हैं कि राशि के अनुसार आप अपने भाई को कौन से रंग की राखी बांध सकते हैं और भाई अपनी बहनों को राशि के अनुसार क्या गिफ्ट दे सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें लाल या मैरून कलर की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन मेष राशि की है तो आप उन्हें लाल रंग के कपड़े गिफ्ट कर सकते हैं। आप उन्हें स्पोर्ट्स एक्सेसरीज गिफ्ट कर सकते हैं, रेड कलर का हैंड बैग, मैरून कलर का हैंड बैग या कोई फिटनेस रिलेटेड आइटम आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। बात करेंगे वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें पेस्टल शेड की राखी, सिल्वर कलर की या पिंक कलर की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन वृषभ राशि की है तो आप उन्हें पेस्टल शेड के कपड़े, परफ्यूम, इत्र या फिर कॉस्मेटिक आइटम्स आप अपनी बहन को गिफ्ट कर सकते हैं। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप अपने भाई को हरे रंग की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन मिथुन राशि की है तो आप उन्हें उनकी राशि के अनुसार ग्रीन एमरल्ड दे सकते हैं। आप उन्हें बुक्स गिफ्ट कर सकते हैं, आप उन्हें गैजेट्स गिफ्ट कर सकते हैं या फिर उन्हें ग्रीन कलर के कपड़े भी गिफ्ट कर सकते हैं।
0: यानी भाई बहन इन उपायों को अपनाकर रिश्तों में और मिठास खोल सकते हैं। बाकी की राशि वाले भाई बहनों के लिए क्या कुछ उपाय हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं वो अनोखी राखियां जिन्हें संसार की सबसे बड़ी राखी बताया जा रहा है। ये राखियां प्रेम और आस्था के धागों से बुनी गई हैं। श्रद्धालुओं ने अपने हाथों से इन्हें अपने आराध्य के लिए बनाया है और तैयार किया है।

0: हर साल जाते जाते सावन का महीना हमारे लिए प्रेम के उस पर्व की सौगात छोड़ जाता है जो भाई बहन के स्नेह और लगाव का सबसे बड़ा पर्व है। सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को आने वाला रक्षाबंधन पर्व सनातन धर्म का बेहद खास त्योहार है। वो त्योहार जहां बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधकर उसके आयुष्मान होने और उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं, तो वहीं भाई भी अपनी लाडली बहन की रक्षा और हर हाल में उसका साथ निभाने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर समर्पण और सुभाशीष का कुछ ऐसा ही आदान प्रदान भक्त अपने आराध्य के साथ भी किया करते हैं। तभी तो राखी की तैयारी का असर देश भर के मंदिरों में भी नजर आने लगा है। जगन्नाथपुरी में हर साल की तरह भगवान जगन्नाथ के लिए बेहद खास राखी तैयार की जा रही है। भक्तों का ये दावा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी राखी है जिसे भगवान जगन्नाथ को रक्षा बंधन के दिन अर्पित किया जाएगा। जगन्नाथ मंदिर के खास सेवायत पटारा बिसोई पीढ़ियों से भगवान के लिए राखी बनाने का काम करते आ रहे हैं। अब की बार भी जगन्नाथ प्रभु की ये खास राखी बनकर तैयार है।
1: ये जो राखी, ये दुनिया का सबसे बड़ा राखी है और ये जब महाप्रभु परिधान करेंगे तो दिल से बहुत खुशी मिलती है और ये सब सिर्फ भाग्यवान बहुत खुद को फील होता है। और ये मैं बहुत छोटे से दादाजी के साथ करता आ रहा हूँ। यह जो सेवा है, ये हमारा पीढ़ी पे पीढ़ी सेवा है।
0: जगन्नाथ धाम में हर साल ये परंपरा निभाई जाती है। अब की बार रक्षा बंधन के लिए रेशम के चार रंग वाले धागों को पिरोकर चार विशाल काय राखियां बनाई जा रही हैं। इसके साथ ही सुपारी के पत्तों की विशाल मालाएं भी तैयार हो रही हैं।
2: ये जो राखी जो हम जो बना रहे हैं, ये प्रस्तुत हो रहा है बासुंगा टसर पार्ट से। ये बासुंगा पार्ट को हम चार कलर में विभक्त करके लाल और हलूद और नीला सबुज चार कलर में बनाते हैं और इसका साथ में और भी चार सुपारी का माला बनाते हैं। ये एक सुपारी का माला में 54 सुपारी रख के इसके अंदर डाल के इसको फूल की तरह बनाते हैं।
0: श्रावण महीने की अमावस्या से ही राखियां बनाने का काम शुरू हो जाता है। पटारा बिसोई सेवायत 10 से 12 दिनों में इन विशाल राखियों को बनाने का काम पूरा करते हैं। आखिरकार राखी के दिन भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र को ये राखी और मालाएं अर्पित की जाती हैं।
2: ये चार गुआमल और चार राखी महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर के अंदर हम प्रभु जी को देंगे। वो इन्होंने जगन्नाथ जी महाप्रभु 2 राखी परिधान करेंगे और बलभद्र महाप्रभु 2 राखी परिधान करेंगे। इसका साथ में 2 माला भी सुपारी माला भी परिधान करेंगे।

0: रक्षाबंधन से पहले आस्था के रंगों में पगी कुछ ऐसी ही तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर से भी आई हैं। इंदौर में भक्तों ने खजराना गणेश भगवान के लिए दुनिया की सबसे बड़ी राखी बनाने का दावा किया है। रक्षाबंधन के अवसर पर इस बार भगवान खजराना गणेश को 40 इंच बाय 40 इंच की भव्य सनातन राखी अर्पित की जाएगी। पिछले कई सालों से इस मंदिर में खास राखी अर्पित करने की परंपरा रही है। अब की बार खजराना गणेश जी के लिए बनी विशेष राखी में सनातन संस्कृति, राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक संदेशों को समाहित किया गया है।
1: यह 40 बाय 40 इंच की राखी विश्व की सबसे बड़ी राखी है। हम लोग हर साल एक थीम बेस राखी बनाते हैं और वंदे मातरम को जो 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं उसको हमने दर्शाते हुए एक सनातन धर्म पे राखी बनाई है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमने कमल के अंदर विराजित जगन्नाथ जी, और जैसा कि सावन का महीना चल रहा है और बाबा महाकाल ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो बाबा महाकाल, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी सभी का हमने इसमें वो किया है। खजराना गणेश जी को यह राखी सिर्फ चिंतामण गणेश जी, महाकालेश्वर, वीर बगीचे, हनुमान मंदिर ऐसे कई मंदिरों में अर्पित की जाएगी।
0: बताया जा रहा है कि इस राखी को 10 से 15 लोगों की टीम ने करीब 2.5 महीनों की मेहनत से तैयार किया है। इसे बनाने में कोलकाता, जयपुर, मुंबई और सूरत से मंगवाई गई विशेष सामग्री का उपयोग किया गया है। भारत की कई समृद्ध हैंडीक्राफ्ट कलाओं की झलक इस राखी पर नजर आ रही है।
1: 10 से 15 लोग मिलके हम ये राखी बनाते हैं और करीबन हमको 1 से 2 महीना लगता है इस राखी को कंप्लीट करने में। और इसमें आप देखें कि सूरत के मोती और जयपुर, कलकत्ता का बारीक काम किया है। पूरा हैंडवर्क की राखी है और हैंडमेड राखी है।
0: ये केवल एक राखी नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान, सांस्कृतिक एकता और धार्मिक चेतना का जीवंत प्रतीक है। जब राखी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ये राखी भगवान खजराना गणेश को अर्पित की जाएगी तो आस्था के भाव के साथ साथ ये राखी देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के दर्शन का माध्यम भी बनेगी। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो अभी हमने आपको बताया था कि मेष से मिथुन राशि वाले भाई बहन अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। अब ये जान लेते हैं कि ज्योतिष के आधार पर कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोग भाई बहन से संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठा सकते हैं।
3: अगर आपके भाई कर्क राशि के हैं तो कर्क राशि वाले भाइयों को आप सिल्वर या व्हाइट कलर की राखी बांध सकते हैं। वहीं भाई अपनी बहनों को जो कि कर्क राशि की हैं, उन्हें सिल्वर की कोई आइटम गिफ्ट कर सकते हैं। आप सिल्वर कलर के क्लोथ गिफ्ट कर सकते हैं, पर्ल आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, पर्ल की ज्वेलरी गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें कोई भी ऐसा लिक्विड आइटम जो कि उनकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो, उनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करे, ऐसा आप उन्हें कुछ गिफ्ट कर सकते हैं। बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें ऑरेंज या ब्राइट येलो कलर की राखी जरूर बांधे। और वहीं अगर आपकी बहन सिंह राशि की है तो आप उन्हें गोल्ड के आइटम आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें तांबे की कोई अच्छी सी मूर्ति गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें ऑरेंज या कॉपर शेड के कपड़े गिफ्ट कर सकते हैं जिससे कि उनकी जिंदगी में प्रगति आए। कन्या राशि की यदि हम बात करें तो कन्या राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें हरे या पेस्टल शेड या फिर अर्दी शेड की राखी आप उन्हें बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन कन्या राशि की है तो आप उनको कुछ प्रीमियम प्लानर या फिर डेस्क ऑर्गेनाइजर या फिर कोई स्मार्ट वॉच या फिर ग्रीन कलर के कपड़े या ग्रीन कलर की ज्वेलरी जैसे कि एमरल्ड हो गई, ग्रीन एवेंचुरियन क्रिस्टल हो गया, ये आप अपनी बहनों को गिफ्ट कर सकते हैं।
2: चूंकि भाई बहन के पवित्र रिश्ते का ये पर्व बेहद नजदीक आ गया है, ऐसे में बाजार रक्षाबंधन के त्योहार के लिए पूरी तरह सज चुके हैं। बाजार में एक से बढ़कर एक राखियां बिक रही हैं। रंग बिरंगी राखियों के बीच में इस बार सोने चांदी से बनी राखियों की खूब डिमांड है। अलग अलग डिजाइन और स्टाइल वाली राखियां लोगों को खूब पसंद आ रही हैं। इनमें डायमंड राखी से लेकर हल्के काम वाली गोल्ड राखी का भी क्रेज दिखाई दे रहा है।
4: शुरुआत करेंगे इन प्रीमियम सिल्वर राखी की, और आप देख सकते हैं कि आपको जो है सामने बहुत सारे ऑप्शन जो है राखी के दिखने वाले। तो ये 925 स्टर्लिंग सिल्वर की राखियां हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और इस सीजन में जो है ये खास होने वाली है वो इसलिए क्योंकि

0: जो है इसको कैरी कर सकते हो। तो ऑप्शंस में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ किस तरीके से आपको सिल्वर के ऑप्शन जो है वो नजर आने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम बच्चों की राखी से शुरू करेंगे क्योंकि बच्चों के लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑप्शन जो है आपको दिखेंगे। शुरुआत ही मैं इन छोटी छोटी राखियों से करूंगी। आपको दिखेगा कि किस तरीके से बच्चों को कार्टून करेक्टर्स वाली राखियाँ पसंद होती है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि आपको स्पॉन्ज बॉब की राखी की बात करें या फिर एंग्री बर्ड की राखी की बात करें, आपको बच्चों के लिए हर एक ऑप्शन जो है नजर आने वाले हैं। आप यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको लड़कियों के लिए यूनिकॉर्न वाली राखियां जो है वो दिख जाएगी, आपको मिकी माउस वाली राखियां जो है वो दिख जाएगी, और सभी प्योर सिल्वर में आपको ये राखियां जो है दिखने वाली है। सिल्वर की अगर हम बात करें तो आपको ये वैरायटी दिखने वाली है। अच्छा, अगर इनकी कीमतों की बात करूं तो ये सभी जो जितनी भी धागे वाली राखियां जो आप देख रहे हैं सिल्वर के साथ, इनकी कीमत जो 1000 से सिर्फ 1500 के बीच में आपको नजर आ जाएगी। वही अगर आप कुछ इस स्टाइल की राखियों की बात करें, ये स्पेशली जो ऊपर की राखियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ सिल्वर में, ये भाभियों के लिए राखी है। अगर आपको अपनी भाभी को पहनाना है तो आप इस तरीके का ट्रेडिशनल लुक के साथ आप इनको कुछ ऐसी राखियाँ जो है पहना सकते हैं कि राखी का त्यौहार भी मने और साथ ही साथ कुछ परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस तरीके का ट्रेडिशनल लुक वो जो है पहन सके। आपको कुछ इस सिल्वर में इस तरीके की राखियाँ भी जो है वो मार्केट में दिख जाएगी। और इनकी अगर रेट की बात करें तो ये कभी आपको 3 से 4 हज़ार के बीच में जो है पड़ेगी। और भाई बहन के लिए, जिस तरीके से कहते हैं कि कपल जो एक राखी होती है भाई भाभी की राखी, वो आपको ये राखियाँ मिल जाएगी कि भाई भाभी भी मेंशन है। तो सिल्वर की हम ऑप्शंस दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर अच्छी खासी जो वैरायटी है वो दिखने वाली है, क्योंकि प्रीमियम राखियों की तरफ हर कोई रुक जो है लेता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जब बात सोने की हो तो सोने की चमक के आगे आपको हर कुछ फीका लगता है। तो सोने की आपको मैं वैरायटी दिखा रही हूँ, और उसके साथ ही डायमंड, प्रीमियम डायमंड जो है अमेरिकन डायमंड कट के साथ जो है वो राखियों के ऑप्शन भी आपको दिखने वाले हैं। हालांकि कस्टमाइज आप करवा सकते हैं, लेकिन ये कुछ राखियों के मैं ऑप्शंस आपको दिखा रही हूँ जो कि आपको यहाँ पर नजर आने वाला है। और सोने की छोटी सी प्लेट आपको बीच में नजर आ जाएगी। आपको चाहे भगवान गणेश जी की बात करें या फिर ओम के डिजाइन की बात करें, एक आपको यहाँ पर आपको माता रानी का डिजाइन जो है वो दिख जाएगा। तो और बारीक धागे के साथ, क्योंकि कोई धागे को बहुत ही पवित्र मानता है, तो धागे के साथ इन्होंने गोल्ड को जो है अटैच करने की पूरी तरीके से कोशिश की है। अगर उसके साथ ये भी आप देख सकते हैं कि आपको इसमें काला धागा नजर आएगा, क्योंकि लोग जो है काला धागा ज़रूर पहनाते ताकि नज़र से जो है वो बचा जा सके। तो गोल्ड की राखियों में कई तरह के डिज़ाइन जो है आपको नज़र आ जाएंगे। कुछ राखी आपको बेहद ही मिनिमल डिज़ाइन के साथ दिखेगी, तो कुछ में आपको इस तरीके का कट जो है वो नज़र आ जाएगा। और ये जितनी भी ये राखियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 22 कैरेट गोल्ड में जो है आपको नज़र आने वाली है। लेकिन जिनका बजट थोड़ा कम है लेकिन त्यौहार भी मनाना है, तो उनके लिए ये नीचे के ऑप्शंस आपको नज़र आ जाएंगे कि ये आपके 14 कैरेट गोल्ड से इनका आपको ये राखियाँ जो है वो उपलब्ध है। इसके अंदर आपको डायमंड कट जो है वो नज़र आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि 14 कैरेट गोल्ड की आपको चेन नज़र आ जाएगी, लेकिन अगर आप बीच में डिज़ाइंस की बात करेंगे तो आपको ये डायमंड में सारे ऑप्शंस जो है वो मिलने वाले हैं।
1: तो राखियों के इन ट्रेंड के बाद अब एक बार फिर से लेकर चलते हैं ज्योतिषाचार्य के पास और जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले भाई बहन इस त्यौहार को खास बनाने के लिए कौन कौन से रंग वाली राखी और सौगात तैयार कर सकते हैं।
2: अगर आपके भाई तुला राशि के हैं तो आप अपने भाइयों को पिंक कलर की या सिल्वर कलर की या फिर रेशम की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहनें तुला राशि की हैं तो तुला राशि वाली बहनों को आप सिल्क की साड़ी, सिल्क का सूट दे सकते हैं, कुछ कॉस्मेटिक आइटम दे सकते हैं, कुछ सिल्वर की ज्वेलरी या फिर आप डायमंड या अमेरिकन डायमंड की ज्वेलरी आप उन्हें दे सकते हैं, या फिर आप उन्हें रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल भी दे सकते हैं जिससे आपकी बहनों की जिंदगी में खुशियां भर जाए। वहीं बात करते हैं वृश्चिक राशि की, अगर आपके भाई हैं तो आप अपने भाई को रेड कलर, ऑरेंज कलर या फिर मरून कलर की आप उन्हें राखी दे सकते हैं। और वहीं अगर आपकी बहन वृश्चिक राशि की है तो आप उन्हें रेड मैरून कलर की ज्वेलरी आइटम दे सकते हैं या कपड़े दे सकते हैं, साथ ही आप उन्हें कॉपर शेड का कोई ड्रेस मटेरियल भी लेके दे सकते हैं, आप उन्हें तांबे के बर्तन लेके दे सकते हैं, और साथ ही आप उन्हें रेड कोरल ज्वेलरी जो है उसकी भी ज्वेलरी आप उन्हें दे सकते हैं, या फिर रेड जैस्पर क्रिस्टल भी आप अपनी बहनों को गिफ्ट कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं धनु राशि की कि अगर आपके भाई धनु राशि के हैं तो आप उन्हें पीले रंग की राखी जरूर बांधे या फिर गोल्डन कलर की राखी बांधे। वहीं अगर आपकी बहन धनु राशि की है तो आप उन्हें येलो कलर के कपड़े या गिफ्ट आइटम्स, येलो मिठाई, येलो कलर का कुछ बैग या गोल्डन बैग, या फिर आप उन्हें गोल्ड की ज्वेलरी, या फिर आप उन्हें पंच धातु की कोई ज्वेलरी, या फिर आप उन्हें जो है येलो सफायर या येलो सिट्रीन क्रिस्टल आप उन्हें

0: गिफ्ट कर सकते हैं।
1: चलिए अब हम आपको राशि के हिसाब से परफेक्ट राखियां तो बता ही रहे हैं, साथ ही आपको ये भी दिखा रहे हैं कि आजकल ट्रेंडिंग राखियां कौन कौन सी हैं। दरअसल बदलते वक्त के साथ राखियां भी ट्रेंडी हो चुकी हैं। राखी को लेकर भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। मसलन आगरा में रक्षाबंधन के लिए पत्थरों से खास राखियां बनाई जा रही हैं। ये उसी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कारीगर इन राखियों को बनाने में दिन रात जुटे हैं। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन राखियों को तैयार करने में मेहनत भी काफी लग रही है। ये राखियां यूनिक तो है ही, आकर्षक भी हैं। रंग बिरंगी पत्थर की ये राखियां इतनी खूबसूरत हैं कि किसी का भी मन इन्हें खरीदने के लिए मचल उठेगा। इसी तरह अलग अलग स्टाइल की राखियां शहर शहर इन दिनों नजर आ रही हैं। शहर शहर राखी की दुकानें सजी हुई हैं, जहां पारंपरिक से लेकर मॉडर्न डिजाइन की तमाम राखियां उपलब्ध हैं। बच्चों और बड़ों सभी को ख्याल में रखकर अलग अलग राखियां डिजाइन की गई हैं। महाराष्ट्र का अकोला हो या राजस्थान का अलवर, राखी के लिए हमेशा से मशहूर रहे बाजार इन दिनों खरीदारों के साथ गुलजार हैं।

0: भाई बहन के पावन त्योहार रक्षाबंधन को लेकर देश भर के बाजार गुलजार हैं। यहाँ एक से बढ़कर एक राखी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के अकोला के बाजार भी रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर सजे हुए हैं। अपने भाइयों के लिए राखी पसंद करने दुकानों पर बहनों की भीड़ जुट रही है। यहाँ की दुकानों पर पारंपरिक राखियों से लेकर मॉडर्न डिजाइन वाली राखियाँ मौजूद हैं।
1: रक्षाबंधन के त्योहार के लिए जो है बाजारों में जो है दुकान यहाँ पर लग चुके हैं राखियों के। और ये जो राखी है ये जो है मोतियों की राखी है, कोई रुद्राक्ष वाली है, कोई माला वाली यहाँ पर राखी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये लुम्बी राखी इसे कहा जाता है। ये सुंदर राखियाँ जो है वो ये भैया भाभी की राखी इसे कहा जाता है। और इस तरीके के अलग अलग वेराइटी जो है, देखिए ये बैंगल के साथ ये राखी इस तरीके की दी है। और खासकर यहाँ देखिए जो है एक कमल के फूल पर ये जो राखी है ये बहुत ही अच्छी इस वक्त की ट्रेंडिंग है।
0: भाई भाभी के लिए कपल राखी, तो बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली राखियाँ। इन सब के अलावा डायमंड लुक वाली राखी, रिंग राखी और ज्वेलरी डिजाइन की राखियाँ भी दुकानों में मिल रही हैं। कोई बहन अपने भाई के लिए राखी पसंद कर रही है तो किसी ने खरीद भी ली है।
2: जो अच्छे से अच्छी राखी मिलेंगी वो ले लेंगे।
3: मैंने अपने भाई के लिए बहुत हीरे जैसी राखी ली है, आप देख सकते हैं बहुत शानदार हीरा लगा हुआ है। मेरा भाई भी हीरे जैसा ही है, मुझे बहुत प्यार करता है, मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा और भाई का रिश्ता बहुत ही अनमोल है मेरे लिए।
0: अलग अलग डिजाइन के हिसाब से राखियों की कीमत भी अलग अलग है।
4: 5 रुपए से लेके तो 500 रुपए तक की अवेलेबल है। 500-400 रुपए वाला माल था वो सबसे पहले खत्म हो जाता है। हैवी रेंज की राखी के ट्रेड डिमांड सबसे ज्यादा थी। अब की बार स्टोन डायमंड की राखी, इसकी डिमांड हर साल रहती है, इस साल कुछ ज्यादा ही थी। और कार्टून की राखी की विशेष डिमांड है ये बार, लाइट के स्पिनर कार्टून की राखी में इस टाइप की राखी सबसे ज्यादा चल रही है।
0: अकोला से लेकर अलवर तक में राखियों की दुकानें सजी हुई हैं। राजस्थान के अलवर की राखियों की डिमांड विदेश तक में है। हजारों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कारोबार से जुड़े रहते हैं। यहाँ की राखियाँ देखने में सुंदर होने के साथ ही सस्ती भी मिलती है।
5: एक गोदाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर तरह तरह की राखियाँ हैं। मैं दिखाना चाहूंगा ये कार्टून कैरेक्टर की राखियाँ हैं। ये राखियों के साथ ही इरेजर का भी काम करती हैं। छोटे बच्चों को ये राखियाँ खास पसंद आ रही हैं, जिसमें अलग अलग तरह के डिजाइंस, एस्ट्रोनॉट तरह के जो कार्टून कैरेक्टर होते हैं उन कैरेक्टर के रूप में इनको तैयार किया गया है। और इन राखियों को रक्षाबंधन के बाद बच्चे अपने बैग, स्कूल बैग में भी काम में ले सकते हैं। इरेजर का ये काम करेंगी। इसके अलावा तरह तरह की राखियां कार्टून कैरेक्टर के रूप में, लाइट वाली राखियां, म्यूजिक वाली राखियों की डिमांड सबसे ज्यादा है।
0: यहाँ के बाजार में 1 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की अलग अलग तरह की आकर्षक राखियां मिल रही हैं। इस बार खासकर बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर, लाइटिंग और म्यूजिक के साथ ही पतली डोरे वाली राखियों की डिमांड सबसे ज्यादा है।
6: हमारे पास सब तरह की वैरायटी है, फैंसी राखियां भी हैं, बच्चों के लिए एक से एक स्पेशल आइटम बनाए हुए हैं हमने। इस बार बच्चों के लाइटिंग में जैसे ये सब लाइटिंग वाली आइटम है, ये देखिए इस तरह की लाइटिंग वाली आइटम है, ये छोटे बच्चों की आइटम है सारी, ये सब म्यूजिकल लाइट बच्चों के साथ में लाइटिंग वाली आइटम आएगी इस तरीके से। ये पर्स वाली आइटम है, जैसे बच्चों के बेल्ट मारने वाला होता है, इसके अंदर बच्चों के टॉयज वगैरह सब कुछ मौजूद है इसके अंदर। ये वाली सब म्यूजिकल लाइट के साथ है, ट्यूनिंग लाइटिंग के साथ आ रहा है अपना। इस तरह की आइटम बच्चों के छोटे करेक्टर वगैरह बहुत सारे आइटम है, मतलब कहने का।
0: यहाँ कई बड़े राखी व्यापारी हैं जो देश विदेश में राखियाँ सप्लाई करते हैं।
7: इस साल हमने करीब 50,000 से ज्यादा डिजाइन बनाए हैं और सप्लाई ऑल ओवर इंडिया तो है ही, और अवार्ड में भी हो रही है, करीब 30-35 कंट्रीज में माल जा रहा है।
0: यहाँ रक्षाबंधन के पर्व को लेकर सजी दुकानों में बहन अपने भाइयों के लिए राखी खरीदने लगातार पहुँच रही हैं।
8: राखियों के इतने डिजाइन मिलते हैं शायद कहीं भी पॉसिबल नहीं है। अलवर छोड़ो, इंडिया छोड़ो, एशिया तक इनकी राखी फेमस है,
9: कि यहाँ की राखियाँ जो है ऑल इंडिया में फेमस है, इसीलिए हम हर साल यहाँ आते हैं राखी लेने।
0: अलवर के शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में राखी बनाई जाती है, जिसके चलते यहाँ 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। अकोला से धनंजय सावले और अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: चलिए अब आखिर में जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि वाले भाई बहन इस राखी पर राशि के मुताबिक कौन कौन से रंगों को चुनकर अपने त्योहार में खुशियों और शुभता के रंग भर सकते हैं।
11: शनि की दो राशियां मकर और कुंभ राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें नीले या बैंगनी रंग की राखी बांध सकते हैं या फिर सिरोसी रंग की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन मकर या कुंभ राशि की है तो आप उन्हें लेदर से रिलेटेड कोई भी आइटम गिफ्ट कर सकते हैं, कोई प्रीमियम बैग गिफ्ट कर सकते हैं या फिर उन्हें कुछ होम गैजेट्स गिफ्ट कर सकते हैं जो उनकी किचन में या उनके होम में एक्सेसरीज में काम आए। और साथ ही आप उन्हें ब्लू सफायर या ब्लू सफायर की ज्वेलरी भी गिफ्ट कर सकते हैं या फिर आप उन्हें नीले या बैंगनी रंग के कपड़े भी गिफ्ट कर सकते हैं। अंत में बात करेंगे मीन राशि की कि अगर आपके भाई मीन राशि के हैं तो आप उन्हें पीले या गोल्डन कलर की राखी जरूर बांधे और अगर आपकी बहन मीन राशि की है तो आप उन्हें गोल्डन कलर के कपड़े, गोल्डन कलर की एक्सेसरीज गिफ्ट कर सकते हैं या फिर आप उन्हें कोई रिलीजियस बुक्स गिफ्ट कर सकते हैं या फिर कोई सुंदर सी भगवान की मूर्ति गिफ्ट कर सकते हैं। गोल्ड के आइटम भी आप अपनी बहन को गिफ्ट कर सकते हैं। आप सभी को राखी के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
10: तो चलिए रक्षाबंधन के त्यौहार से जुड़ी हुई ऐसी ही कुछ और तस्वीरें भी लगातार जीएनटी पर आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल आज की इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: रक्षाबंधन पर देश के कई राज्यों में बहनों के लिए उपहार का ऐलान किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया के जरिए 3 बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। इसके मुताबिक पुलिस दीदी यानी अभयता ब्रिगेड के लिए 4,700 स्कूटर और मोटरसाइकिल का लोकार्पण और फ्लैग ऑफ किया जाएगा। इन वाहनों का इस्तेमाल स्कूल और कॉलेज जाने वाली छात्राओं की सुरक्षा और उनके संरक्षण के लिए किया जाएगा। छात्राओं को 10,000 रुपए की PhD फेलोशिप भी मिलेगी। करीब 1,000 छात्राओं को 4 साल तक की फेलोशिप दी जाएगी। कारोबार और स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना की भी शुरुआत की जाएगी। देखिए, इस योजना के तहत 50,000 से 2,00,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। और इन सब के अलावा रक्षाबंधन के अवसर पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से 27 और 28 अगस्त को महिलाओं और छात्राओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा भी मिलेगी। यानी रक्षाबंधन पर बिहार के अलावा कई दूसरे राज्यों में भी लड़कियों और महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा की घोषणा की गई है। तो देखिए, यूपी सरकार ने 27 अगस्त से 29 अगस्त तक लड़की और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा सुविधा देने का ऐलान किया है, जिसमें एक सह यात्री भी रह सकता है, यानी को पैसेंजर भी सवार हो सकता है बस में, कोई पैसे नहीं लगेंगे उसके। उत्तराखंड सरकार ने 28 और 29 अगस्त को रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में राज्य परिवहन की साधारण बसों में महिलाओं के लिए जो सफर है वो मुफ्त होगा। 27 अगस्त की दोपहर 12 बजे से 28 अगस्त की रात 12 बजे, ये टाइम पीरियड है, इस तक बहनों के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है और महिलाओं के साथ 15 साल तक के बच्चों को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा। इसमें हरियाणा के साथ ही चंडीगढ़ और दिल्ली तक की यात्रा भी शामिल है। वहीं देखिए, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान सरकार ने 28 और 29 अगस्त को साधारण और एक्सप्रेस बसों में लड़की और महिलाओं के लिए राज्य की सीमा के भीतर मुफ्त सफर का ऐलान किया है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद मिशन जिंदगी तेज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से की बातचीत। भारत की ओर से भेजा जा रहा है राहत सामान, उत्तर प्रदेश बिहार में प्रशासन अलर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने रच दिया नया कीर्तिमान, नई बसों के मामलों में देश में उत्तर प्रदेश नंबर वन। महिलाओं के लिए पैनिक बटन के हेल्पलाइन की भी कनेक्टिविटी। देशभर में रक्षाबंधन की तैयारियां तेज, वाराणसी में बनाई गई खास AI राखी, रायपुर में सुरक्षा बल के जवानों को बांधी गई राखियां। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज, मुंबई के महाराजा नाम से मशहूर करीब 47 फीट के बप्पा का आगमन, नरसिंह रूप में विराजमान है गणपति। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज, अब मंदिर में मिलेगी निःशुल्क शीघ्र दर्शन की सुविधा, प्रशासन के फैसले से लोगों को में खुशी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं, आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं और इन्हें आगे शेयर कर देते हैं। यही शुरू होती है अफवाहों की आंधी। लेकिन फैक्ट चेक के जरिए हम सच और झूठ के बीच की रेखा, धुंधली रेखा को साफ करते हैं और खबरों की पड़ताल करते हैं। सही और सच्ची खबर हम आप तक लेकर आते हैं। ऐसी दो खबरों की पड़ताल आज हम करने जा रहे हैं, जिसमें आज सबसे पहले वायरल हो रहे उस दावे की सच्चाई की पड़ताल हम करेंगे, जिसके जरिए कहा यह जा रहा है कि सांसद कंगना रनौत पर दूसरी बार हमला हुआ है। जेनजी पर विवादित टिप्पणी करने के बाद उन पर चप्पल फेंकी गई। क्या है सच्चाई, आगे जानिए। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो के से जुड़ी होगी, जिसके जरिए कहा जा रहा है कि ईरान की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी तैयार है, जिसे ईरान ने समंदर में उतार दिया है। क्या है इसकी सच्चाई, आगे बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: यहाँ पर एक्ट्रेस बीजेपी सांसद कंगना रनौत का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए लोग कह रहे हैं कि जेनजी पर विवादित टिप्पणी के बाद उन पर चप्पल फेंकी गई है, हमला किया गया है। लेकिन इस हमले की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती ये रिपोर्ट देखिए।

0: हिमाचल प्रदेश की मंडी से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद अभिनेत्री कंगना रनौत ने हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले हुए छात्र आंदोलन के दौरान इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा के लिए जेनजी को गटर जनरेशन कहा था। इस बयान के बाद काफी हंगामा मचा, जिसके बाद कंगना रनौत ने सफाई देते हुए ये कहा कि उनका बयान पूरी युवा पीढ़ी या जेनजी के लिए नहीं था। ये टिप्पणी केवल जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले कुछ विशेष लोगों के लिए थी जो खुद को कॉकरोच कहते हैं और गटर से निकलते हैं। इसके बाद अब सोशल मीडिया पर कंगना रनौत का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो किसी जगह पर पुलिस से घिरी हुई दिख रही हैं। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर दावा कर रहे हैं कि एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता ने कंगना रनौत पर चप्पल फेंकी है, उन पर दूसरी बार हमला हुआ है। एक इंस्टाग्राम यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि प्रोग्राम के दौरान कंगना रनौत के मुंह पर चप्पल फेंकी, पुलिस ने तुरंत संभाला। कंगना पर दूसरी बार अटैक, चप्पल फेंकने वाला भी बीजेपी का था। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल हाल के दिनों में बीजेपी सांसद कंगना रनौत काफी सुर्खियों में हैं। अपने विवादित बयानों की वजह से वो सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर है और खास तौर पर जेनजी को लेकर उनके विवादित टिप्पणियों की वजह से उन पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। हालांकि जब विवाद बढ़ने लगा तब कंगना रनौत ने सफाई देते हुए कहा कि उनका बयान पूरी युवा पीढ़ी की या फिर जेनजी के लिए नहीं था। ये टिप्पणी केवल जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले कुछ विशेष लोगों के लिए थी जो खुद को कॉकरोच कहते हैं और गटर से निकलते हैं। इन सब के बीच सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा और वीडियो किसी स्थल पर पुलिस से घिरी हुई कंगना रनौत को यहां पर दिखाया गया। इस वीडियो को शेयर करते हुए यूजर्स की कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कंगना रनौत पर चप्पल फेंकी, उन पर दूसरी बार हमला हुआ है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। इसमें इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। हमने इसकी पड़ताल शुरू की और दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान वीडियो में एक जगह पर जहां से कंगना एंट्री ले रही है वहां पर नजर आ रहे बोर्ड पर हमारा ध्यान गया, उसमें मराठी में कुछ लिखा हुआ नजर आया था। इससे यह इशारा मिलता है कि वायरल हो रहा वीडियो महाराष्ट्र का हो सकता है। साथ ही वीडियो में आ रही आवाजों को भी जब हमने गौर से सुना तो सामने आया कि यह मराठी भाषा है, लेकिन सर्च के दौरान ऐसी कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। क्योंकि वाकई अगर ऐसा हुआ होता तो फिर जाहिर सी बात है कि अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होती। सर्च के दौरान ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं मिली। इसके अलावा वीडियो में कहीं पर भी कंगना पर चप्पल फेंकते हुए किसी भी शख्स को देखा भी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर कंगना पर हमला हुआ होता तो वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी एक्शन में जरूर नजर आते। फैक्ट चेक टीम ने कंगना रनौत के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी खंगाला, लेकिन वहां पर भी ऐसी कोई पोस्ट हमें नहीं मिली। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही था कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की तहकीकात में जुटी। सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि हाल फिलहाल में अगर ऐसी कोई घटना हुई होती तो वो सुर्खियों में जरूर होती। इसके बाद हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक इंस्टाग्राम अकाउंट मिला। 18 अगस्त को इस अकाउंट से वायरल वीडियो शेयर किया गया था। जानकारी के अनुसार ये वीडियो मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर का है जहां कंगना गई थी। एक वेबसाइट पर 18 अगस्त को छपी एक रिपोर्ट में कंगना के मंदिर जाने की क्लिप भी मिली। इस रिपोर्ट के अनुसार कंगना 18 अगस्त को सिद्धि विनायक और मुंबा देवी के मंदिर पहुंची। खबर में हमें कहीं भी वायरल दावे जैसा कोई जिक्र नहीं मिला। कंगना के इंस्टाग्राम हैंडल से भी 18 अगस्त को कुछ तस्वीरों को पोस्ट करते हुए जानकारी दी गई थी कि वो मुंबई में सिद्ध विनायक और मुंबा देवी मंदिर गई। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वायरल वीडियो मुंबई के सिद्ध विनायक मंदिर का है जहां वो 18 अगस्त को गई थी। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे।
1: ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये कह रहे हैं कि ईरान की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है जिसे ईरान ने समंदर में उतार दिया है। लेकिन सच्चाई क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में।
2: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। अमेरिका ने ईरान पर भारी वित्तीय शिकंजा कसने और उसकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह अलग थलग करने की चेतावनी दी है, जिसके जवाब में ईरान ने होर्मुज में सख्ती बढ़ा दी है। दोनों देश झुकने को तैयार नहीं है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक पनडुब्बी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पनडुब्बी पानी में धीरे धीरे उतर रही है। इस वीडियो के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि ये ईरान की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। इसी दावे के साथ सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पनडुब्बी लॉन्च की तस्वीरें धड़ल्ले से शेयर की जा रही हैं। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इसे लगातार शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच कुछ लोग वीडियो के जरिए ये कह रहे हैं कि ये ईरान की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है जिसे अब समंदर में उतार दिया गया है। अब अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले ऐसे सर्च किया। इस दौरान हमें जानकारी मिली कि ईरान के पास कोई भी परमाणु पनडुब्बी नहीं है। ईरान की नौसेना के पास केवल गदीर और फतेह श्रेणी की छोटी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं। ऐसे में हमें दावे की सच्चाई पर संदेह हुआ। हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही था कि अगर दावा सच है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। देखिए सच और झूठ क्या है।
2: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई भी विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। इसके बाद हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक इंस्टाग्राम पोस्ट मिली जिसमें हमें वायरल हो रहा वीडियो पोस्ट के जरिए ये पता चला कि ये जेएस राइगेई अटैक सबमरीन है जिसे जापान के मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के लिए बनाया गया है। सर्च के दौरान हमें एक YouTube चैनल पर वायरल हो रहे क्लिप का लंबा वर्जन मिला। यहाँ पर इसे 17 अक्टूबर 2023 को शेयर किया गया था। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के मुताबिक इस सबमरीन को जापान की कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज ने जापानी मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के लिए $470 मिलियन में बनाया था। एक आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक इस पनडुब्बी को 6 मार्च 2025 को कोबे शिपयार्ड में आयोजित एक समारोह में आधिकारिक तौर पर JMSDF में शामिल किया गया। शामिल किए जाने के बाद इसे हिरोशिमा प्रांत के कुरे नेवल बेस पर सबमरीन फ्लोटिला 1 के सबमरीन डिवीजन 1 में तैनात किया गया। इसी तरह हमारी पड़ताल में हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। ये वीडियो अक्टूबर 2023 का है और इसमें जापान को JS राइगेई लॉन्च करते हुए दिखाया गया है जो जापान मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के लिए बनाई गई एक अटैक सबमरीन है। रिधीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर। राह सच्चाई की रात।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आइए आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
5: ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें भारत का एक जाबाज जवान बर्फीली वादियों में देश की रक्षा के साथ साथ अपने अटूट भक्ति का उदाहरण पेश करता नजर आ रहा है। इस नजारे को देखकर हर कोई जवान की तारीफ कर रहा है। वीडियो में चारों तरफ बर्फ की मोटी सफेद चादर बिछी है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं। ऐसे कड़ाके की मौसम में जहां आम लोगों के लिए खड़े रहना भी मुश्किल होता है, वहीं इस जवान ने बड़ी ही कुशलता और श्रद्धा से बर्फ को जोड़कर एक सुंदर और व्यवस्थित शिवलिंग का निर्माण किया। जवान ने बेहद बारीक नक्काशी के साथ बर्फ के शिवलिंग को अंतिम रूप दिया और पूरी श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर भगवान शिव का नमन और पूजन किया। यूजर्स इस वीडियो पर खूब प्यार जता रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब चर्चा में है। यहाँ एक बच्चे की मासूमियत और छुपकर खाने वाला अंदाज इतना क्यूट है कि इंटरनेट यूजर्स इसे बार बार देख रहे हैं। वायरल वीडियो में स्कूल के असेंबली में प्रार्थना चल रही है, सभी बच्चे आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं। तभी एक बच्चा मौका देखकर धीरे से अपनी चॉकलेट निकालता है और आंखें बंद कर खाने लगता है। मानो उसे लग रहा हो कि अगर उसने आंख बंद कर ली तो उसे कोई और देख नहीं पाएगा। वीडियो में बच्चे की मासूमियत देखने लायक है, वो बगैर किसी टेंशन के आराम से चॉकलेट खाता दिखता है, जबकि आसपास के बच्चे प्रार्थना में लगे हैं। वहीं बच्चा अपनी चॉकलेट खत्म कर उसका कचरा भी जेब में ही रख लेता है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद प्यारी बच्ची का वीडियो तेजी से वायरल है, जिसमें बच्ची अपने छोटे छोटे हाथों में गिटार थामे दिलकश अंदाज में नजर आ रही है। इस दौरान वो अपनी मधुर आवाज में इतना प्यारा गाना गा रही है कि उसने हर किसी का दिल जीत लिया। गिटार पकड़ने का उसका अंदाज हो, गाने की धुन पर हरकत करती उसकी नन्ही उंगलियां हो, हर किसी का ध्यान ये बच्ची अपनी तरफ खींचती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, उसके एक्सप्रेशन भी दिल जीत ले रहे हैं। भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी का हिस्सा भी है। यहाँ गली मोहल्ले से लेकर स्कूल के मैदान तक, जहाँ थोड़ी सी भी जगह मिल जाए, बच्चे और बड़े बल्ला बॉल लेकर पहुँच जाते हैं। कई बार तो क्रिकेट खेलने के लिए मैदान की भी जरूरत नहीं पड़ती। सड़क हो, छत हो या घर के बाहर की छोटी सी जगह, क्रिकेट का जुनून कहीं भी शुरू हो जाता है। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को ही देख लीजिए, जहां कुछ लड़कों ने तालाब के पास ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। पानी के बीच खड़े होकर लड़कों ने बॉलिंग से लेकर बैटिंग तक खूब धमाल मचाया। उनका खेल देखकर लोग भी वीडियो का मजा लेने लगे। हालांकि इस पूरे मुकाबले में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा आखिरी कैच ने, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। कमाई का असली मकसद सिर्फ घर चलाना या बिल भरना नहीं, बल्कि अपने परिवार के चेहरों पर मुस्कान लाना भी होता है। पश्चिम बंगाल के एक स्विगी डिलीवरी बॉय ने इस बात को साबित भी कर दिखाया।
6: दीदा से बात करो, तुम्हें क्या मन खुशी?
5: दिन रात मेहनत कर और थोड़े थोड़े पैसे जोड़ कर इस राइडर ने अपनी माँ और दादी के लिए नया टीवी खरीदा। जब उसने ये सरप्राइज अपने परिवार को दिया तो उस भावुक पल का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अक्सर अपने अनोखे और नए विचारों के लिए जाना जाता है। इस बार इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक बेहद मनोरंजक और अलग रास्ता चुना है। पलासिया चौराहे पर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों और सिग्नल जंप करने वालों को जागरूक करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने गोरिल्ला कॉस्ट्यूम पहनाकर एक शख्स को सड़क पर उतारा। ये गोरिल्ला गाड़ियों को जेब्रा क्रॉसिंग से पीछे धकेलता है, लोगों को सड़क पार कराता है और ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर ट्रैफिक संभालता है। वीडियो में जब एक कार चालक सिग्नल पर रुकने की बजाय आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो ये विशालकाय गोरिल्ला दौड़कर कार के सामने आ जाता है और हाथों से धक्का देकर कार को पीछे धकेलता है। गोरिल्ला का ये तरीका देखकर ड्राइवर भी मुस्कुराते हुए गाड़ी रोक लेता है। इस वीडियो में सिर्फ गाड़ियों को रोकना ही नहीं बल्कि गोरिल्ला का फ्रेंडली अंदाज भी दिखा। वो सड़क पार कर रहे राहगीरों का हाथ पकड़कर उन्हें सुरक्षित जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करवाता नजर आता है। साथ ही वो ऑन ड्यूटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर से हाथ मिलाता और उनके साथ तालमेल बिठाकर ट्रैफिक कंट्रोल करने में मदद करता भी दिखा। इंदौर पुलिस के इस फनी और क्रिएटिव अभियान को सोशल मीडिया पर खूब सराहना मिल रही है। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो तेजी से वायरल है जिसे देख लोग हैरान भी हैं और बाबा की तारीफ भी कर रहे हैं।
7: 83
5: वीडियो में एक बुजुर्ग बाबा एक विदेशी टूरिस्ट से फराटेदार अंग्रेजी में बात करते दिख रहे हैं। बाबा जिस आत्मविश्वास के साथ अंग्रेजी बोलते हैं उसे देख विदेशी टूरिस्ट भी मुस्कुराता हुआ दिख रहा है।
7: डोंट वरी गॉड इज ऑलवेज प्रोटेक्ट जय हनुमान।
8: Everything here is free. What are you getting?
9: Air time.
5: बैंकॉक की सड़कों पर दौड़ती एक अनोखी टैक्सी इन दिनों इंटरनेट पर खूब धमाल मचा रही है। इस कैब की खासियत यह है कि इसमें कदम रखते ही आपको किसी सुपरमार्केट जैसा एहसास होता है। ड्राइवर ने यात्रियों की सुविधा के लिए कार को एक मिनी मार्ट का रूप दे दिया है जहां जरूरत का हर सामान बिल्कुल फ्री मिलता है। थाईलैंड की मशहूर मेहमान नवाजी को दर्शाते इस खूबसूरत पहल की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। वीडियो में टैक्सी की पिछली और आगे की सीटों पर हर छोटी बड़ी जरूरत की चीजें करीने से सजा कर रखी हैं। सफर के दौरान यात्रियों को मोजे, टूथब्रश, शीशा, बेबी पाउडर और यहां तक कि बिल्लियों का खाना भी आसानी से मिल जाता है। प्यास या थकान मिटाने के लिए पानी की बॉटल्स और कॉफी भी यहाँ फ्री में उपलब्ध है। ये कोई एक दिन का पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। ये थाई ड्राइवर पिछले 10 सालों से लगातार अपनी टैक्सी में मुफ्त सामान की सेवा दे रहा है। खास बात ये है कि वो यात्रियों से सामान के बदले एक भी रुपया नहीं लेता। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो ने लोगों को खूब आकर्षित किया है। इसमें विदेशी धरती पर भारतीय संस्कृति की खूबसूरत झलक देखने को मिलती है। पारंपरिक अंदाज और लोक संगीत के इस अनोखे मेल ने इंटरनेट यूजर्स को हैरान करने के साथ साथ काफी खुश भी किया हुआ है। वीडियो में कुछ अमेरिकी महिलाएं पारंपरिक राजस्थानी लुक में दिख रही हैं। उन्होंने रंग बिरंगे लहंगा चोली पहने हैं, सिर पर चुनरी भी सजा रखी है। जैसे ही राजस्थानी लोकगीत बजता है ये महिलाएं पूरे उत्साह के साथ डांस करना शुरू कर देती हैं। न्यूयॉर्क की व्यस्त सड़कों और आसपास मौजूद लोगों के बीच अचानक राजस्थानी लोक संगीत सुनाई देना अपने आप में काफी दिलचस्प नजारा है। इसके बाद जब महिलाओं ने गाने के साथ राजस्थानी डांस स्टेप्स किए तो वहां से गुजर रहे लोगों का ध्यान भी उनकी तरफ खींच गया।

इस गजराज का पानी पीने का तरीका इतना अनोखा है कि आप अपनी हंसी और हैरानी रोक नहीं पाएंगे। गजराज का ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वीडियो में एक पेड़ के बगल में लगा नल खुला है और उससे पानी बह रहा है। आमतौर पर कोई भी जानवर ऐसे में सीधे मुंह लगाता, लेकिन ये हाथी बेहद चतुर निकला। उसने अपनी लंबी सूंड के निचले हिस्से को घुमाकर बिल्कुल एक कटोरी की तरह बना लिया। नल से गिरता पानी उसकी सूंड के उसी हिस्से में जमा होने लगता है और जैसे ही सूंड में काफी पानी भर जाता है वो उसे सीधे अपने मुंह में डालकर गटक लेता है। एक बार पानी पीने के बाद जब उसकी प्यास नहीं बुझती तो वो दोबारा अपनी सूंड नल के नीचे लगा देता है। उसकी ये मासूमियत और गजब की सूझबूझ देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: सावन मास में ठाकुर जी की भक्ति के रंग से पूरा ब्रज क्षेत्र सराबोर रहता है। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में इस पूरे मास में अलग अलग घटाओं का आयोजन होता है और उसी कड़ी में मंगलवार शाम को लहरिया घटा का दिव्य आयोजन हुआ। इस विशेष अवसर पर मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा।

0: रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर मंदिर, दिव्य सजावट, आकर्षक झूलों से झूलते ठाकुर जी और भाव विभोर श्रद्धालु। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर की ये छटा लहरिया घटा की है। द्वारकाधीश मंदिर में मंगलवार की शाम लहरिया घटा सजाई गई और भगवान द्वारकाधीश ने लहरिया घटा में भक्तों को दर्शन दिए। लहरिया घटा के लिए पूरे मंदिर परिसर को सतरंगी लहरिया कपड़ों से सजाया गया। अलग अलग तरह की रंग बिरंगी रोशनी और फूल पत्तियों से मंदिर को आकर्षक रूप दिया गया। इस भव्य सजावट के बीच लगाए गए 9 हिंडोले श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध करते रहे।
1: ये द्वारकाधीश मंदिर में 9 झूले हैं, जो है सोने के और चांदी के भी। तो ये देखकर और झांकी जो सजी है उसको देखकर बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है।
2: आज के दिन लहरिया घटा है अपने द्वारकाधीश के मंदिर में। तो 3 सोने चांदी के झूले हैं, 3 लकड़ी के झूले हैं और 3 फल फूलों के झूले हैं। मनोहर दर्शन है आज के, अद्भुत, जिसका वर्णन नहीं कर सकते।
3: एकदम आनंद आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है यहाँ पे। राधे राधे।
0: इस लहरिया घटा के आयोजन के लिए लाए गए फब्बारों से लेकर गायों की सीनरी, मोर की खूबसूरत आकृति, बंदरों के कटआउट हर किसी को आकर्षित कर रहे थे।
4: श्रावण मास समाप्त हो रहा है तो इसलिए जो लहरिया घटा है वो मंदिर प्रांगण में सजाई गई है। पूरे मंदिर को दिव्यता और भव्यता के साथ सजाया गया है। 9 झूले हैं आज और 9 झूला में ठाकुर जी अपने ग्वाल ग्वालों के साथ, अपने परिवार के साथ विराज कर झूला झूल रहे हैं। और जो स्वर्ण हिडोरा लगा हुआ है और रजत हिडोरा लगा हुआ है, तो सोने के हिडोले में भी ठाकुर जी झूल रहे हैं और उधर लकड़ी के हिडोले में भी ठाकुर जी झूल रहे हैं। तो ठाकुर जी का जो उत्सव है ना सावन का पूरा, वो बड़ा अद्भुत और अनोखा है, क्योंकि ठाकुर जी बाल रूप में यहाँ विराजते हैं। तो बाल रूप में बालक को मंदिर परिसर से बाहर नहीं ले जाया जाता, वो मंदिर में ही रखा जाता है। सावन में ब्रज में बड़े श्रद्धालु आते हैं और भगवान के दर्शन कर जो झूला उत्सव है उसको मनाते हैं।
0: पूरे सावन माह में मंदिर में 9 तरह की घटाएं सजाई जाती है। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में जिस दिन सावन मास प्रारंभ होता है उस दिन ठाकुर जी को स्वर्ण और रजत हिंडोले में झुलाया जाता है। झूला झुलाने की ये परंपरा पूरे ब्रजमंडल में है। द्वारकाधीश मंदिर में लहरिया घटा की छटा देखने हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर में विराजमान ठाकुर जी बाल स्वरूप में है, इसीलिए उन्हें बाहर नहीं ले जाया जाता, लेकिन उन्हें बाहर के मौसम की अनुभूति कराने के लिए सावन मास में काली घटा, गुलाबी घटा, लहरिया घटा, सफेद घटा जैसी 9 घटाओं का आयोजन होता है। इस परंपरा के तहत अलग अलग स्वरूपों और सजावट के माध्यम से ठाकुर जी के दर्शन कराए जाते हैं।
5: बाहर के मौसम की अनुभूति कराने के लिए घटाओं के आयोजन होते हैं, क्योंकि आज बाहर का मौसम गुलाबी है तो गुलाबी घटा का आयोजन है। आज बाहर का मौसम सफ़ेद हो रहा है तो वो सबसे लास्ट घटा होती है, सफ़ेद वाली घटा। काली घटा बीच में होती है, बड़ी फेमस घटा होती है। तो इस प्रकार से लगभग 9 घटाओं का आयोजन ठाकुर मंदिर द्वारकाधीश में होता है। और श्रावण मास जब तक रहता है तब तक ठाकुर जी हिडोले में प्रतिदिन 5:10 से 5:40 झूलते हैं। घटाओं का जो टाइमिंग है वो सायंकाल 7 बजे से 8 बजे तक रहता है, और एक दिन छोड़ के, क्योंकि तिथि घड़ी पल और नक्षत्र के हिसाब से सभी घटाओं के आयोजन होते हैं। पूर्णमासी जैसे 28 को है तो 27 को सफ़ेद घटा का आयोजन होगा, इससे यह माना जाएगा बाहर का मौसम बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है और श्रावण मास समाप्त है।
0: लहरिया घटा के अनुरूप नीले पीले रंग की लहरिया छटा से की गई दिव्य सजावट के बीच ठाकुर जी को झूला झूलाते देखकर श्रद्धालु भक्ति के रंग में पूरी तरह डूब गए। एक सुर में भक्त गोविंद गोपाल की जय जय करने के अलावा अपने अपने अंदाज में ठाकुर जी के प्रति अपने भक्ति भाव को प्रदर्शित करते दिखे।

0: लहरिया घटा और नौ रोले लाला झूलन पधारो झोंके आए बदला लाला झूलन पधारो।
1: मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद मिशन जिंदगी तेज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से की बातचीत, भारत की ओर से भेजा जा रहा है राहत सामान, उत्तर प्रदेश बिहार में प्रशासन अलर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने रच दिया नया कीर्तिमान, नई बसों के मामलों में देश में उत्तर प्रदेश नंबर वन, महिलाओं के लिए पैनिक बटन के हेल्पलाइन की भी कनेक्टिविटी। देशभर में रक्षाबंधन की तैयारियां तेज, वाराणसी में बनाई गई खास एआई राखी, रायपुर में सुरक्षा बल के जवानों को बांधी गई राखियां। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, मुंबई के महाराजा नाम से मशहूर करीब 47 फीट के बप्पा का आगमन, नरसिंह रूप में विराजमान है गणपति। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज, अब मंदिर में मिलेगी निशुल्क शीघ्र दर्शन की सुविधा, प्रशासन के फैसले से लोगों को मिली खुशी।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा गुप्ता। साहिल देव, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात रंग, राशि और राखी के संयोग की। राखी क्या है? एक डोर है, प्रेम और दोस्ती के धागों से बुनी हुई। और ये प्यारा सा त्योहार उसी रिश्ते का तो प्रतीक है। तभी तो रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई पर प्रेम से कोई एक धागा भी बांध देना काफी होता है। और जहां तक बात है गिफ्ट की, तो बहन के लिए भाई का प्यार और साथ ही सबसे बड़ा उपहार है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कुछ खास रंगों की राखी इस रिश्ते में स्नेह के रंगों को और गहरा कर सकती है। ज्योतिष विज्ञान के मुताबिक राखी के दिन राशि के मुताबिक रंगों की राखी भाई की कलाई पर बांध उनके जीवन में शुभता और सौभाग्य ला सकता है। तो वहीं अगर बहना के लिए उपहार उसकी राशि के अनुसार चुना जाए तो उसके जीवन में मंगल और सौभाग्य की बरसात हो सकती है। तो चलिए आइए ज्योतिषाचार्य से जान लेते हैं कि बहनें अलग अलग राशियों के आधार पर अपने भाइयों को कौन कौन सी राखी बांध सकती हैं और भाई अपने बहन को ढेर सारे प्यार के साथ और कौन सा उपहार दे सकते हैं।
1: बात करते हैं कि राशि के अनुसार आप अपने भाई को कौन से रंग की राखी बांध सकते हैं और भाई अपनी बहनों को राशि के अनुसार क्या गिफ्ट दे सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें लाल या मैरून कलर की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन मेष राशि की है तो आप उन्हें लाल रंग के कपड़े गिफ्ट कर सकते हैं। आप उन्हें स्पोर्ट्स एक्सेसरीज गिफ्ट कर सकते हैं, रेड कलर का हैंडबैग, मैरून कलर का हैंडबैग या कोई फिटनेस रिलेटेड आइटम आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। बात करेंगे वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें पेस्टल शेड की राखी, सिल्वर कलर की या पिंक कलर की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन वृषभ राशि की है तो आप उन्हें पेस्टल शेड के कपड़े, परफ्यूम, इत्र या फिर कॉस्मेटिक आइटम्स आप अपनी बहन को गिफ्ट कर सकते हैं। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप अपने भाई को हरे रंग की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन मिथुन राशि की है तो आप उन्हें उनकी राशि के अनुसार ग्रीन एमरल्ड दे सकते हैं। आप उन्हें बुक्स गिफ्ट कर सकते हैं, आप उन्हें गैजेट्स गिफ्ट कर सकते हैं या फिर उन्हें ग्रीन कलर के कपड़े भी गिफ्ट कर सकते हैं।
0: यानी भाई बहन इन उपायों को अपनाकर रिश्तों में और मिठास खोल सकते हैं। बाकी की राशि वाले भाई बहनों के लिए क्या कुछ उपाय हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं वो अनोखी राखियां जिन्हें संसार की सबसे बड़ी राखी बताया जा रहा है। ये राखियां प्रेम और आस्था के धागों से बुनी गई हैं। श्रद्धालुओं ने अपने हाथों से इन्हें अपने आराध्य के लिए बनाया है और तैयार किया है।

0: हर साल जाते जाते सावन का महीना हमारे लिए प्रेम के उस पर्व की सौगात छोड़ जाता है जो भाई बहन के स्नेह और लगाव का सबसे बड़ा पर्व है। सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को आने वाला रक्षाबंधन पर्व सनातन धर्म का बेहद खास त्योहार है। वो त्योहार जहां बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधकर उसके आयुष्मान होने और उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं, तो वहीं भाई भी अपनी लाडली बहन की रक्षा और हर हाल में उसका साथ निभाने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर समर्पण और शुभाशीष का कुछ ऐसा ही आदान प्रदान भक्त अपने आराध्य के साथ भी किया करते हैं। तभी तो राखी की तैयारी का असर देश भर के मंदिरों में भी नजर आने लगा है। जगन्नाथपुरी में हर साल की तरह भगवान जगन्नाथ के लिए बेहद खास राखी तैयार की जा रही है। भक्तों का ये दावा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी राखी है जिसे भगवान जगन्नाथ को रक्षा बंधन के दिन अर्पित किया जाएगा। जगन्नाथ मंदिर के खास सेवायत पटारा बिसोई पीढ़ियों से भगवान के लिए राखी बनाने का काम करते आ रहे हैं। अब की बार भी जगन्नाथ प्रभु की ये खास राखी बनकर तैयार है।
1: ये जो राखी, ये दुनिया का सबसे बड़ा राखी है और ये जब महाप्रभु परिधान करेंगे तो दिल से बहुत खुशी मिलती है और ये सब सिर्फ भाग्यवान बहुत खुद को फील होता है। और ये मैं बहुत छोटे से दादाजी के साथ करता आ रहा हूँ। यह जो सेवा है, ये हमारा पीढ़ी पे पीढ़ी सेवा है।
0: जगन्नाथ धाम में हर साल ये परंपरा निभाई जाती है। अब की बार रक्षा बंधन के लिए रेशम के चार रंग वाले धागों को पिरोकर चार विशाल काय राखियां बनाई जा रही हैं। इसके साथ ही सुपारी के पत्तों की विशाल मालाएं भी तैयार हो रही हैं।
2: ये जो राखी जो हम जो बना रहे हैं, ये प्रस्तुत हो रहा है बासुंगा टसर पार्ट से। ये बासुंगा पार्ट को हम चार कलर में विभक्त करके लाल और हलूद और नीला सबुज चार कलर में बनाते हैं और इसका साथ में और भी चार सुपारी का माला बनाते हैं। ये एक सुपारी का माला में 54 सुपारी रख के इसके अंदर डाल के इसको फूल की तरह बनाते हैं।
0: श्रावण महीने की अमावस्या से ही राखियां बनाने का काम शुरू हो जाता है। पटारा बिसोई सेवायत 10 से 12 दिनों में इन विशाल राखियों को बनाने का काम पूरा करते हैं। आखिरकार राखी के दिन भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र को ये राखी और मालाएं अर्पित की जाती हैं।
2: ये चार गुआमल और चार राखी महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर के अंदर हम प्रभु जी को देंगे। वो इन्होंने जगन्नाथ जी महाप्रभु 2 राखी परिधान करेंगे और बलभद्र महाप्रभु 2 राखी परिधान करेंगे। इसका साथ में 2 माला भी सुपारी माला भी परिधान करेंगे।

0: रक्षाबंधन से पहले आस्था के रंगों में पगी कुछ ऐसी ही तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर से भी आई हैं। इंदौर में भक्तों ने खजराना गणेश भगवान के लिए दुनिया की सबसे बड़ी राखी बनाने का दावा किया है। रक्षाबंधन के अवसर पर इस बार भगवान खजराना गणेश को 40 इंच बाय 40 इंच की भव्य सनातन राखी अर्पित की जाएगी। पिछले कई सालों से इस मंदिर में खास राखी अर्पित करने की परंपरा रही है। अब की बार खजराना गणेश जी के लिए बनी विशेष राखी में सनातन संस्कृति, राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक संदेशों को समाहित किया गया है।
1: यह 40 बाय 40 इंच की राखी विश्व की सबसे बड़ी राखी है। हम लोग हर साल एक थीम बेस राखी बनाते हैं और वंदे मातरम को जो 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं उसको हमने दर्शाते हुए एक सनातन धर्म पे राखी बनाई है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमने कमल के अंदर विराजित जगन्नाथ जी, और जैसा कि सावन का महीना चल रहा है और बाबा महाकाल ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो बाबा महाकाल, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी सभी का हमने इसमें वो किया है। खजराना गणेश जी को यह राखी सिर्फ चिंतामण गणेश जी, महाकालेश्वर, वीर बगीचे, हनुमान मंदिर ऐसे कई मंदिरों में अर्पित की जाएगी।
0: बताया जा रहा है कि इस राखी को 10 से 15 लोगों की टीम ने करीब 2.5 महीनों की मेहनत से तैयार किया है। इसे बनाने में कोलकाता, जयपुर, मुंबई और सूरत से मंगवाई गई विशेष सामग्री का उपयोग किया गया है। भारत की कई समृद्ध हैंडीक्राफ्ट कलाओं की झलक इस राखी पर नजर आ रही है।
1: 10 से 15 लोग मिलके हम ये राखी बनाते हैं और करीबन हमको 1 से 2 महीना लगता है इस राखी को कंप्लीट रखिए और हैंडमेड राखी है।
0: ये केवल एक राखी नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान, सांस्कृतिक एकता और धार्मिक चेतना का जीवंत प्रतीक है। जब राखी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ये राखी भगवान खजराना गणेश को अर्पित की जाएगी तो आस्था के भाव के साथ साथ ये राखी देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के दर्शन का माध्यम भी बनेगी। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो अभी हमने आपको बताया था कि मेष से मिथुन राशि वाले भाई बहन अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। अब ये जान लेते हैं कि ज्योतिष के आधार पर कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोग भाई बहन से संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठा सकते हैं।
3: अगर आपके भाई कर्क राशि के हैं तो कर्क राशि वाले भाइयों को आप सिल्वर या व्हाइट कलर की राखी बांध सकते हैं। वहीं भाई अपनी बहनों को जो कि कर्क राशि की हैं उन्हें सिल्वर की कोई आइटम गिफ्ट कर सकते हैं। आप सिल्वर कलर के क्लोथ्स गिफ्ट कर सकते हैं, पर्ल आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, पर्ल की ज्वेलरी गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें कोई भी ऐसा लिक्विड आइटम जो कि उनकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो, उनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करे, ऐसा आप उन्हें कुछ गिफ्ट कर सकते हैं। बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें ऑरेंज या ब्राइट येलो कलर की राखी जरूर बांधे, और वहीं अगर आपकी बहन सिंह राशि की है तो आप उन्हें गोल्ड के आइटम आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें तांबे की कोई अच्छी सी मूर्ति गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें ऑरेंज या कॉपर शेड के कपड़े गिफ्ट कर सकते हैं जिससे कि उनकी जिंदगी में प्रगति आए। कन्या राशि की यदि हम बात करें तो कन्या राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें हरे या पेस्टल शेड या फिर अर्दी शेड की राखी आप उन्हें बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन कन्या राशि की है तो आप उनको कुछ प्रीमियम प्लानर या फिर डेस्क ऑर्गेनाइजर या फिर कोई स्मार्ट वॉच या फिर ग्रीन कलर के कपड़े या ग्रीन कलर की ज्वेलरी जैसे कि एमरल्ड हो गई, ग्रीन एवेंचुरियन क्रिस्टल हो गया, ये आप अपनी बहनों को गिफ्ट कर सकते हैं।
2: चूंकि भाई बहन के पवित्र रिश्ते का ये पर्व बेहद नजदीक आ गया है, ऐसे में बाजार रक्षाबंधन के त्योहार के लिए पूरी तरह सज चुके हैं। बाजार में एक से बढ़कर एक राखियां बिक रही हैं। रंग बिरंगी राखियों के बीच में इस बार सोने चांदी से बनी राखियों की खूब डिमांड है। अलग अलग डिजाइन और स्टाइल वाली राखियां लोगों को खूब पसंद आ रही हैं। इनमें डायमंड राखी से लेकर हल्के काम वाली गोल्ड राखी का भी क्रेज दिखाई दे रहा है।
4: शुरुआत करेंगे इन प्रीमियम सिल्वर राखी की, और आप देख सकते हैं कि आपको जो है सामने बहुत सारे ऑप्शन जो है राखी के दिखने वाले। तो ये 925 स्टर्लिंग सिल्वर की राखियां हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और इस सीजन में जो है ये खास होने वाली है वो इसलिए क्योंकि सिर्फ राखी

के फेस्टिवल के बाद जो है आप एक धागे की तरह इसको उतार कर नहीं रख सकते, बल्कि आप बाद में भी जो है इसको कैरी कर सकते हैं, एक ब्रेसलेट के तौर पर जो है आप इसको पहन सकते हैं और पूरे साल जो है इसको आप बहन भाई की जो प्यार की निशानी है उसके साथ जो है इसको कैरी कर सकते हैं। तो ऑप्शन मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ किस तरीके से आपको सिल्वर के ऑप्शन जो है वो नजर आने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम बच्चों की राखी से शुरू करेंगे क्योंकि बच्चों के लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑप्शन जो है आपको दिखेंगे। शुरुआती

0: पर सबसे ज्यादा ऑप्शन जो है आपको दिखेंगे। शुरुआत ही मैं इन छोटी छोटी राखियों से करूंगी। आपको दिखेगा कि किस तरीके से बच्चों को कार्टून करेक्टर्स वाली राखियां पसंद होती है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि आपको स्पॉन्ज बॉब की राखी की बात करें या फिर एंग्री बर्ड की राखी की बात करें, आपको बच्चों के लिए हर एक ऑप्शन जो है नजर आने वाले हैं। आप यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको लड़कियों के लिए यूनिकॉर्न वाली राखियां जो है वो दिख जाएगी, आपको मिकी माउस वाली राखियां जो है वो दिख जाएगी, और सभी प्योर सिल्वर में आपको ये राखियां जो है दिखने वाली है। सिल्वर की अगर हम बात करें तो आपको ये वैरायटी दिखने वाली है। अच्छा, अगर इनकी कीमतों की बात करूं तो ये सभी जो जितनी भी धागे वाली राखियां जो आप देख रहे हैं सिल्वर के साथ, इनकी कीमत जो 1000 से सिर्फ 1500 के बीच में आपको नजर आ जाएगी। वही अगर आप कुछ इस स्टाइल के राखियों की बात करें, ये स्पेशली जो ऊपर की राखियां मैं आपको दिखा रही हूँ सिल्वर में, ये भाभियों के लिए राखी है। अगर आपको अपनी भाभी को पहनाना है तो आप इस तरीके का ट्रेडिशनल लुक के साथ आप इनको कुछ ऐसी राखियां जो है पहना सकते हैं कि राखी का त्यौहार भी मने और साथ ही साथ कुछ परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस तरीके का ट्रेडिशनल लुक वो जो है पहन सके। आपको कुछ इस सिल्वर में इस तरीके की राखियां भी जो है वो मार्केट में दिख जाएगी, और इनकी अगर रेट की बात करें तो ये कभी आपको 3 से 4 हज़ार के बीच में जो है पड़ेगी। और भाई बहन के लिए, जिस तरीके से कहते हैं कि कपल जो एक राखी होती है भाई भाभी की राखी, वो आपको ये राखियाँ मिल जाएगी कि भाई भाभी भी मेंशन है। तो सिल्वर की हम ऑप्शन दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर अच्छी खासी जो वेराइटी है वो दिखने वाली है, क्योंकि प्रीमियम राखियों की तरफ हर कोई रुख जो है लेता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जब बात सोने की हो तो सोने की चमक के आगे आपको हर कुछ फीका लगता है। तो सोने की आपको मैं वैरायटी दिखा रही हूँ, और उसके साथ ही डायमंड, प्रीमियम डायमंड जो है अमेरिकन डायमंड कट के साथ जो है वो राखियों के ऑप्शन भी आपको दिखने वाले हैं। हालांकि कस्टमाइज आप करवा सकते हैं, लेकिन ये कुछ राखियों के मैं ऑप्शन आपको दिखा रही हूँ जो कि आपको यहाँ पर नजर आने वाला है, और सोने की छोटी सी प्लेट आपको बीच में नजर आ जाएगी। आपको चाहे भगवान गणेश जी की बात करें या फिर ओम के डिजाइन की बात करें, एक एक आपको यहाँ पे आपको माता रानी का डिजाइन जो है वो दिख जाएगा। तो और बारीक धागे के साथ, क्योंकि कोई धागे को बहुत ही पवित्र मानता है, तो धागे के साथ इन्होंने गोल्ड को जो है अटैच करने की पूरी तरीके से कोशिश की है। अगर उसके साथ ये भी आप देख सकते हैं कि आपको इसमें काला धागा नजर आएगा, क्योंकि लोग जो है काला धागा ज़रूर पहनाते ताकि नज़र से जो है वो बचा जा सके। तो गोल्ड की राखियों में कई तरह के डिज़ाइन जो है आपको नज़र आ जाएंगे। कुछ राखी आपको बेहद ही मिनिमल डिज़ाइन के साथ दिखेगी, तो कुछ में आपको इस तरीके का कट जो है वो नज़र आ जाएगा। और ये जितनी भी ये राखियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 22 कैरेट गोल्ड में जो है आपको नज़र आने वाली है। लेकिन जिनका बजट थोड़ा कम है लेकिन त्यौहार भी मनाना है, तो उनके लिए ये नीचे के ऑप्शंस आपको नज़र आ जाएंगे कि ये आपके 14 कैरेट गोल्ड से इनका आपको ये राखियां जो है वो उपलब्ध है। इसके अंदर आपको डायमंड कट जो है वो नज़र आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि 14 कैरेट गोल्ड की आपको चेन नज़र आ जाएगी, लेकिन अगर आप बीच में डिज़ाइंस की बात करेंगे तो आपको ये डायमंड में सारे ऑप्शंस जो है वो मिलने वाले हैं।
1: तो राखियों के इन ट्रेंड के बाद अब एक बार फिर से लेकर चलते हैं ज्योतिषाचार्य के पास और जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले भाई बहन इस त्यौहार को खास बनाने के लिए कौन कौन से रंग वाली राखी और सौगात तैयार कर सकते हैं।
2: अगर आपके भाई तुला राशि के हैं तो आप अपने भाइयों को पिंक कलर की या सिल्वर कलर की या फिर रेशम की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहनें तुला राशि की हैं तो तुला राशि वाली बहनों को आप सिल्क की साड़ी, सिल्क का सूट दे सकते हैं, कुछ कॉस्मेटिक आइटम दे सकते हैं, कुछ सिल्वर की ज्वेलरी या फिर आप डायमंड या अमेरिकन डायमंड की ज्वेलरी आप उन्हें दे सकते हैं, या फिर आप उन्हें रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल भी दे सकते हैं, जिससे आपकी बहनों की जिंदगी में खुशियां भर जाए। वहीं बात करते हैं वृश्चिक राशि की, अगर आपके भाई हैं तो आप अपने भाई को रेड कलर, ऑरेंज कलर या फिर मरून कलर की आप उन्हें राखी दे सकते हैं। और वहीं अगर आपकी बहन वृश्चिक राशि की है तो आप उन्हें रेड मैरून कलर की ज्वेलरी आइटम दे सकते हैं या कपड़े दे सकते हैं, साथ ही आप उन्हें कॉपर शेड का कोई ड्रेस मटेरियल भी दे के दे सकते हैं, आप उन्हें तांबे के बर्तन लेके दे सकते हैं, और साथ ही आप उन्हें रेड कोरल ज्वेलरी जो है उसकी भी ज्वेलरी आप उन्हें दे सकते हैं, या फिर रेड जैस्पर क्रिस्टल भी आप अपनी बहनों को गिफ्ट कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं धनु राशि की कि अगर आपके भाई धनु राशि के हैं तो आप उन्हें पीले रंग की राखी जरूर बांधे या फिर गोल्डन कलर की राखी बांधे। वहीं अगर आपकी बहन धनु राशि की है तो आप उन्हें येलो कलर के कपड़े या गिफ्ट आइटम्स, येलो मिठाई, येलो कलर का कुछ बैग या गोल्डन बैग, या फिर आप उन्हें गोल्ड की ज्वेलरी, या फिर आप उन्हें पंच धातु की कोई ज्वेलरी, या फिर आप उन्हें जो है येलो सफायर या येलो सिट्रीन क्रिस्टल आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं।
1: चलिए अब हम आपको राशि के हिसाब से परफेक्ट राखियां तो बता ही रहे हैं, साथ ही आपको ये भी दिखा रहे हैं कि आजकल ट्रेंडिंग राखियां कौन कौन सी हैं। दरअसल

बदलते वक्त के साथ राखियां भी ट्रेंडी हो चुकी हैं। राखी को लेकर भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। मसलन आगरा में रक्षाबंधन के लिए पत्थरों से खास राखियां बनाई जा रही हैं। ये उसी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कारीगर इन राखियों को बनाने में दिन रात जुटे हैं। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन राखियों को तैयार करने में मेहनत भी काफी लग रही है। ये राखियां यूनिक तो है ही, आकर्षक भी हैं। रंग बिरंगी पत्थर की ये राखियां इतनी खूबसूरत हैं कि किसी का भी मन इन्हें खरीदने के लिए मचल उठेगा। इसी तरह अलग अलग स्टाइल की राखियां शहर शहर इन दिनों नजर आ रही हैं। शहर शहर राखी की दुकानें सजी हुई हैं, जहां पारंपरिक से लेकर मॉडर्न डिजाइन की तमाम राखियां उपलब्ध हैं। बच्चों और बड़ों सभी को ख्याल में रखकर अलग अलग राखियां डिजाइन की गई हैं। महाराष्ट्र का अकोला हो या राजस्थान का अलवर, राखी के लिए हमेशा से मशहूर रहे बाजार इन दिनों खरीदारों के साथ गुलजार हैं।

0: भाई बहन के पावन त्योहार रक्षाबंधन को लेकर देश भर के बाजार गुलजार हैं। यहाँ एक से बढ़कर एक राखी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के अकोला के बाजार भी रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर सजे हुए हैं। अपने भाइयों के लिए राखी पसंद करने दुकानों पर बहनों की भीड़ जुट रही है। यहाँ की दुकानों पर पारंपरिक राखियों से लेकर मॉडर्न डिजाइन वाली राखियाँ मौजूद हैं।
1: रक्षाबंधन के त्योहार के लिए जो है बाजारों में जो है दुकान यहाँ पर लग चुके हैं राखियों के। और ये जो राखी है ये जो है मोतियों की राखी है, कोई रुद्राक्ष वाली है, कोई माला वाली यहाँ पर राखी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये लुम्बी राखी इसे कहा जाता है। ये सुंदर राखियाँ जो है वो ये भैया भाभी की राखी इसे कहा जाता है। और इस तरीके के अलग अलग वेराइटी जो है, देखिए ये बैंगल के साथ ये राखी इस तरीके की दी है। और खासकर यहाँ देखिए जो है एक कमल के फूल पर ये जो राखी है ये बहुत ही अच्छी इस वक्त की ट्रेंडिंग है।
0: भाई भाभी के लिए कपल राखी, तो बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली राखियाँ। इन सब के अलावा डायमंड लुक वाली राखी, रिंग राखी और ज्वेलरी डिजाइन की राखियाँ भी दुकानों में मिल रही हैं। कोई बहन अपने भाई के लिए राखी पसंद कर रही है तो किसी ने खरीद भी ली है।
2: जो अच्छे से अच्छी राखी मिलेंगी वो ले लेंगे।
3: मैंने अपने भाई के लिए बहुत हीरे जैसी राखी ली है, आप देख सकते हैं बहुत शानदार हीरा लगा हुआ है। मेरा भाई भी हीरे जैसा ही है, मुझे बहुत प्यार करता है, मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा और भाई का रिश्ता बहुत ही अनमोल है मेरे लिए।
0: अलग अलग डिजाइन के हिसाब से राखियों की कीमत भी अलग अलग है।
4: 5 रुपए से लेके तो 500 रुपए तक की अवेलेबल है। 500-400 रुपए वाला माल था वो सबसे पहले खत्म हो जाता है। हैवी रेंज की राखी के ट्रेड डिमांड सबसे ज्यादा थी। आपकी बार स्टोन डायमंड की राखी इसकी डिमांड हर साल रहती है, इस साल कुछ ज्यादा ही थी। और कार्टून की राखी की विशेष डिमांड है ये बार। लाइट के स्पिनर कार्टून की राखी में इस टाइप की राखी सबसे ज्यादा चल रही है।
0: अकोला से लेकर अलवर तक में राखियों की दुकानें सजी हुई है। राजस्थान के अलवर की राखियों की डिमांड विदेश तक में है। हजारों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कारोबार से जुड़े रहते हैं। यहाँ की राखियाँ देखने में सुंदर होने के साथ ही सस्ती भी मिलती है।
5: एक गोदाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर तरह तरह की राखियाँ हैं। मैं दिखाना चाहूंगा ये कार्टून कैरेक्टर की राखियाँ हैं। ये राखियों के साथ ही इरेजर का भी काम करती हैं। छोटे बच्चों को ये राखियाँ खास पसंद आ रही हैं, जिसमें अलग अलग तरह के डिजाइंस, एस्ट्रोनॉट तरह के जो कार्टून कैरेक्टर होते हैं उन कैरेक्टर के रूप में इनको तैयार किया गया है। और इन राखियों को रक्षाबंधन के बाद बच्चे अपने बैग, स्कूल बैग में भी काम में ले सकते हैं। इरेजर का ये काम करेंगी। इसके अलावा तरह तरह की राखियां कार्टून कैरेक्टर के रूप में, लाइट वाली राखियां, म्यूजिक वाली राखियों की डिमांड सबसे ज्यादा है।
0: यहां के बाजार में 1 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की अलग अलग तरह की आकर्षक राखियां मिल रही हैं। इस बार खासकर बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर, लाइटिंग और म्यूजिक के साथ ही पतली डोरे वाली राखियों की डिमांड सबसे ज्यादा है।
6: हमारे पास सब तरह की वैरायटी है, फैंसी राखियां भी हैं, बच्चों के लिए एक से एक स्पेशल आइटम बनाए हुए हैं हमने। इस बार बच्चों के लाइटिंग में जैसे ये सब लाइटिंग वाली आइटम है, ये देखिए इस तरह की लाइटिंग वाली आइटम है, ये छोटे बच्चों के आइटम है सारी, ये सब म्यूजिकल लाइट बच्चों के साथ में लाइटिंग वाली आइटम आएगी इस तरीके से। ये पर्स वाली आइटम है, जैसे बच्चों के बेल्ट मारने वाला होता है इसके अंदर, बच्चों के टॉयज वगैरह सब कुछ मौजूद है इसके अंदर। ये वाली सब म्यूजिकल लाइट के साथ है, ट्यूनिंग लाइटिंग के साथ आ रहा है अपना। इस तरह की आइटम बच्चों के छोटे करेक्टर वगैरह बहुत सारी आइटम है मतलब कहने का।
0: यहाँ कई बड़े राखी व्यापारी हैं जो देश विदेश में राखियाँ सप्लाई करते हैं।
7: इस साल हमने करीब 50,000 से ज्यादा डिजाइन बनाए हैं और सप्लाई ऑल ओवर इंडिया तो है ही, और अवार्ड में भी हो रही है, करीब 30-35 कंट्रीज में माल जा रहा है।
0: यहाँ रक्षाबंधन के पर्व को लेकर सजी दुकानों में बहन अपने भाइयों के लिए राखी खरीदने लगातार पहुँच रही हैं।
8: राखियों के इतने डिजाइन मिलते हैं शायद कहीं भी पॉसिबल नहीं है। अलवर छोड़ो, इंडिया छोड़ो, एशिया तक इनकी राखी फेमस है। यहाँ की राखियाँ जो है ऑल इंडिया में फेमस है, इसीलिए हम हर साल यहाँ आते हैं राखी लेने।
0: अलवर के शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में राखी बनाई जाती है, जिसके चलते यहाँ 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। अकोला से धनंजय सावले और अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: चलिए अब आखिर में जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि वाले भाई बहन इस राखी पर राशि के मुताबिक कौन कौन से रंगों को चुनकर अपने त्योहार में खुशियों और शुभता के रंग भर सकते हैं।
10: शनि की दो राशियां मकर और कुंभ राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें नीले या बैंगनी रंग की राखी बांध सकते हैं या फिर फिरोजी रंग की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन मकर या कुंभ राशि की हैं तो आप उन्हें लेदर से रिलेटेड कोई भी आइटम गिफ्ट कर सकते हैं, कोई प्रीमियम बैग गिफ्ट कर सकते हैं या फिर उन्हें कुछ होम गैजेट्स गिफ्ट कर सकते हैं जो उनकी किचन में या उनके होम में एक्सेसरीज में काम आए। और साथ ही आप उन्हें ब्लू सफायर या ब्लू सफायर की ज्वेलरी भी गिफ्ट कर सकते हैं या फिर आप उन्हें नीले या बैंगनी रंग के कपड़े भी गिफ्ट कर सकते हैं। अंत में बात करेंगे मीन राशि की कि अगर आपके भाई मीन राशि के हैं तो आप उन्हें पीले या गोल्डन कलर की राखी जरूर बांधे और अगर आपकी बहन मीन राशि की है तो आप उन्हें गोल्डन कलर के कपड़े, गोल्डन कलर की एक्सेसरीज गिफ्ट कर सकते हैं या फिर आप उन्हें कोई रिलीजियस बुक्स गिफ्ट कर सकते हैं या फिर कोई सुंदर सी भगवान की मूर्ति गिफ्ट कर सकते हैं। गोल्ड के आइटम भी आप अपनी बहन को गिफ्ट कर सकते हैं। आप सभी को राखी के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
9: तो चलिए रक्षाबंधन के त्यौहार से जुड़ी हुई ऐसी ही कुछ और तस्वीरें भी लगातार जीएनटी पर आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल आज की इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: रक्षाबंधन पर देश के कई राज्यों में बहनों के लिए उपहार का ऐलान किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया के जरिए 3 बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। इसके मुताबिक पुलिस दीदी यानी अभयता ब्रिगेड के लिए 4,700 स्कूटर और मोटरसाइकिल का लोकार्पण और फ्लैग ऑफ किया जाएगा। इन वाहनों का इस्तेमाल स्कूल और कॉलेज जाने वाली छात्राओं की सुरक्षा और उनके संरक्षण के लिए किया जाएगा। छात्राओं को 10,000 रुपए की PhD फेलोशिप भी मिलेगी। करीब 1,000 छात्राओं को 4 साल तक ये फेलोशिप दी जाएगी। कारोबार और स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना की भी शुरुआत की जाएगी। देखिए, इस योजना के तहत 50,000 से 2,00,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। और इन सबके अलावा रक्षाबंधन के अवसर पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से 27 और 28 अगस्त को महिलाओं और छात्राओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा भी मिलेगी। यानी रक्षाबंधन पर बिहार के अलावा कई दूसरे राज्यों में भी लड़कियों और महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा की घोषणा की गई है। तो देखिए, यूपी सरकार ने 27 अगस्त से 29 अगस्त तक लड़की और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा सुविधा देने का ऐलान किया है, जिसमें एक सह यात्री भी रह सकता है, यानी को पैसेंजर भी सवार हो सकता है बस में, कोई पैसे नहीं लगेंगे उसके। उत्तराखंड सरकार ने 28 और 29 अगस्त को रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में राज्य परिवहन की साधारण बसों में महिलाओं के लिए जो सफर है वो मुफ्त होगा। 27 अगस्त की दोपहर 12 बजे से 28 अगस्त की रात 12 बजे ये टाइम पीरियड है, इस तक बहनों के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है और महिलाओं के साथ 15 साल तक के बच्चों को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा। इसमें हरियाणा के साथ ही चंडीगढ़ और दिल्ली तक की यात्रा भी शामिल है। वहीं देखिए, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान सरकार ने 28 और 29 अगस्त को साधारण और एक्सप्रेस बसों में लड़की और महिलाओं के लिए राज्य की सीमा के भीतर मुफ्त सफर का ऐलान किया है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद मिशन जिंदगी तेज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से की बातचीत। भारत की ओर से भेजा जा रहा है राहत सामान, उत्तर प्रदेश बिहार में प्रशासन अलर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने रच दिया नया कीर्तिमान, नई बसों के मामलों में देश में उत्तर प्रदेश नंबर वन। महिलाओं के लिए पैनिक बटन के हेल्पलाइन की भी कनेक्टिविटी। देशभर में रक्षाबंधन की तैयारियां तेज, वाराणसी में बनाई गई खास AI राखी, रायपुर में सुरक्षा बल के जवानों को बांधी गई राखियां। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज, मुंबई के महाराजा नाम से मशहूर करीब 47 फीट के बप्पा का आगमन, नरसिंह रूप में विराजमान है गणपति। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज, अब मंदिर में मिलेगी निःशुल्क शीघ्र दर्शन की सुविधा। प्रशासन के फैसले से लोगों को मिली खुशी।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: नवजोत रंधावा, सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं, आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है, और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं और इन्हें आगे शेयर कर देते हैं। यही शुरू होती है अफवाहों की आंधी। लेकिन फैक्ट चेक के जरिए हम सच और झूठ के बीच की रेखा, धुंधली रेखा को साफ करते हैं और खबरों की पड़ताल करते हैं। सही और सच्ची खबर हम आप तक लेकर आते हैं। ऐसी दो खबरों की पड़ताल आज हम करने जा रहे हैं, जिसमें आज सबसे पहले वायरल हो रहे उस दावे की सच्चाई की पड़ताल हम करेंगे, जिसके जरिए कहा यह जा रहा है कि सांसद कंगना रनौत पर दूसरी बार हमला हुआ है, जेनजी पर विवादित टिप्पणी करने के बाद उन पर चप्पल फेंकी गई। क्या है सच्चाई, आगे जानिए। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो के से जुड़ी होगी, जिसके जरिए कहा जा रहा है कि ईरान की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी तैयार है, जिसे ईरान ने समंदर में उतार दिया है। क्या है इसकी सच्चाई, आगे बताएंगे। शुरुआत करते फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: मीडिया पर एक्ट्रेस बीजेपी सांसद कंगना रनौत का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए लोग कह रहे हैं कि जेनजी पर विवादित टिप्पणी के बाद उन पर चप्पल फेंकी गई है, हमला किया गया है। लेकिन इस हमले की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती ये रिपोर्ट देखिए।

0: हिमाचल प्रदेश की मंडी से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद अभिनेत्री कंगना रनौत ने हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले हुए छात्र आंदोलन के दौरान इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा के लिए जेनजी को गटर जनरेशन कहा था। इस बयान के बाद काफी हंगामा मचा, जिसके बाद कंगना रनौत ने सफाई देते हुए ये कहा कि उनका बयान पूरी युवा पीढ़ी या जेनजी के लिए नहीं था। ये टिप्पणी केवल जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले कुछ विशेष लोगों के लिए थी जो खुद को कॉकरोच कहते हैं और गटर से निकलते हैं। इसके बाद अब सोशल मीडिया पर कंगना रनौत का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो किसी जगह पर पुलिस से घिरी हुई दिख रही हैं। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर दावा कर रहे हैं कि एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता ने कंगना रनौत पर चप्पल फेंकी है, उन पर दूसरी बार हमला हुआ है। एक इंस्टाग्राम यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि प्रोग्राम के दौरान कंगना रनौत के मुंह पर चप्पल फेंकी, पुलिस ने तुरंत संभाला। कंगना पर दूसरी बार अटैक, चप्पल फेंकने वाला भी बीजेपी का था। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल हाल के दिनों में बीजेपी सांसद कंगना रनौत काफी सुर्खियों में हैं अपने विवादित बयानों की वजह से। वो सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर है और खास तौर पर जेनजी को लेकर उनके विवादित टिप्पणियों की वजह से उन पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। हालांकि जब विवाद बढ़ने लगा तब कंगना रनौत ने सफाई देते हुए कहा कि उनका बयान पूरी युवा पीढ़ी की या फिर जेनजी के लिए नहीं था। ये टिप्पणी केवल जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले कुछ विशेष लोगों के लिए थी जो खुद को कॉकरोच कहते हैं और गटर से निकलते हैं। इन सब के बीच सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा और वीडियो किसी स्थल पर पुलिस से घिरी हुई कंगना रनौत को यहां पर दिखाया गया। इस वीडियो को शेयर करते हुए यूजर्स की कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कंगना रनौत पर चप्पल फेंकी, उन पर दूसरी बार हमला हुआ है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। इसमें इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। हमने इसकी पड़ताल शुरू की और दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान वीडियो में एक जगह पर जहां से कंगना एंट्री ले रही है वहां पर नजर आ रहे बोर्ड पर हमारा ध्यान गया, उसमें मराठी में कुछ लिखा हुआ नजर आया था। इससे यह इशारा मिलता है कि वायरल हो रहा वीडियो महाराष्ट्र का हो सकता है। साथ ही वीडियो में आ रही आवाजों को भी जब हमने गौर से सुना तो सामने आया कि यह मराठी भाषा है, लेकिन सर्च के दौरान ऐसी कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। क्योंकि वाकई अगर ऐसा हुआ होता तो फिर जाहिर सी बात है कि अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होती। सर्च के दौरान ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं मिली। इसके अलावा वीडियो में कहीं पर भी कंगना पर चप्पल फेंकते हुए किसी भी शख्स को देखा भी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर कंगना पर हमला हुआ होता तो वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी एक्शन में जरूर नजर आते। फैक्ट चेक टीम ने कंगना रनौत के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी खंगाला, लेकिन वहां पर भी ऐसी कोई पोस्ट हमें नहीं मिली। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही था कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की तहकीकात में जुटी। सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि हाल फिलहाल में अगर ऐसी कोई घटना हुई होती तो वो सुर्खियों में जरूर होती। इसके बाद हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक इंस्टाग्राम अकाउंट मिला। 18 अगस्त को इस अकाउंट से वायरल वीडियो शेयर किया गया था। जानकारी के अनुसार ये वीडियो मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर का है जहां कंगना गई थी। एक वेबसाइट पर 18 अगस्त को छपी एक रिपोर्ट में कंगना के मंदिर जाने की क्लिप भी मिली। इस रिपोर्ट के अनुसार कंगना 18 अगस्त को सिद्धि विनायक और मुंबा देवी के मंदिर पहुंची। खबर में हमें कहीं भी वायरल दावे जैसा कोई जिक्र नहीं मिला। कंगना के इंस्टाग्राम हैंडल से भी 18 अगस्त को कुछ तस्वीरों को पोस्ट करते हुए जानकारी दी गई थी कि वो मुंबई में सिद्धि विनायक और मुंबा देवी मंदिर गई। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वायरल वीडियो मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर का है जहां वो 18 अगस्त को गई थी। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे।
1: ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये कह रहे हैं कि ईरान की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है जिसे ईरान ने समंदर में उतार दिया है। लेकिन सच्चाई क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में।
2: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। अमेरिका ने ईरान पर भारी वित्तीय शिकंजा कसने और उसकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह अलग थलग करने की चेतावनी दी है, जिसके जवाब में ईरान ने होर्मुज में सख्ती बढ़ा दी है। दोनों देश झुकने को तैयार नहीं है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक पनडुब्बी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पनडुब्बी पानी में धीरे धीरे उतर रही है। इस वीडियो के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि ये ईरान की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। इसी दावे के साथ सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पनडुब्बी लॉन्च की तस्वीरें धड़ल्ले से शेयर की जा रही हैं। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इसे लगातार शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच कुछ लोग वीडियो के जरिए ये कह रहे हैं कि ये ईरान की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है जिसे अब समंदर में उतार दिया गया है। अब अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले ऐसा सर्च किया। इस दौरान हमें जानकारी मिली कि ईरान के पास कोई भी परमाणु पनडुब्बी नहीं है। ईरान की नौसेना के पास केवल गदीर और फतेह श्रेणी की छोटी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं। ऐसे में हमें दावे की सच्चाई पर संदेह हुआ। हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही था कि अगर दावा सच है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। देखिए सच और झूठ क्या है।
2: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई भी विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। इसके बाद हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक इंस्टाग्राम पोस्ट मिली जिसमें हमें वायरल हो रहा वीडियो पोस्ट के जरिए ये पता चला कि ये जेएस राइगेई अटैक सबमरीन है जिसे जापान के मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के लिए बनाया गया है। सर्च के दौरान हमें एक YouTube चैनल पर वायरल हो रहे क्लिप का लंबा वर्जन मिला। यहाँ पर इसे 17 अक्टूबर 2023 को शेयर किया गया था। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के मुताबिक इस सबमरीन को जापान की कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज ने जापानी मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के लिए $470 मिलियन में बनाया था। एक आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक इस पनडुब्बी को 6 मार्च 2025 को कोबे शिपयार्ड में आयोजित एक समारोह में आधिकारिक तौर पर JMSDF में शामिल किया गया। शामिल किए जाने के बाद इसे हिरोशिमा प्रांत के कुरे नेवल बेस पर सबमरीन फ्लोटिला 1 के सबमरीन डिवीजन 1 में तैनात किया गया। इसी तरह हमारी पड़ताल में हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। ये वीडियो अक्टूबर 2023 का है और इसमें जापान को JS राइगेई लॉन्च करते हुए दिखाया गया है जो जापान मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के लिए बनाई गई एक अटैक सबमरीन है। रिधीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
1: वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आइए आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
5: ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें भारत का एक जाबाज जवान बर्फीली वादियों में देश की रक्षा के साथ साथ अपने अटूट भक्ति का उदाहरण पेश करता नजर आ रहा है। इस नजारे को देखकर हर कोई जवान की तारीफ कर रहा है। वीडियो में चारों तरफ बर्फ की मोटी सफेद चादर बिछी है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं। ऐसे कड़ाके की मौसम में जहां आम लोगों के लिए खड़े रहना भी मुश्किल होता है, वहीं इस जवान ने बड़ी ही कुशलता और श्रद्धा से बर्फ को जोड़कर एक सुंदर और व्यवस्थित शिवलिंग का निर्माण किया। जवान ने बेहद बारीक नक्काशी के साथ बर्फ के शिवलिंग को अंतिम रूप दिया और पूरी श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर भगवान शिव का नमन और पूजन किया। यूजर्स इस वीडियो पर खूब प्यार जता रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब चर्चा में है। यहाँ एक बच्चे की मासूमियत और छुपकर खाने वाला अंदाज इतना क्यूट है कि इंटरनेट यूजर्स इसे बार बार देख रहे हैं। वायरल वीडियो में स्कूल के असेंबली में प्रार्थना चल रही है, सभी बच्चे आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं। तभी एक बच्चा मौका देखकर धीरे से अपनी चॉकलेट निकालता है और आंखें बंद कर खाने लगता है। मानो उसे लग रहा हो कि अगर उसने आंख बंद कर ली तो उसे कोई और देख नहीं पाएगा। वीडियो में बच्चे की मासूमियत देखने लायक है, वो बगैर किसी टेंशन के आराम से चॉकलेट खाता दिखता है, जबकि आसपास के बच्चे प्रार्थना में लगे हैं। वहीं बच्चा अपनी चॉकलेट खत्म कर उसका कचरा भी जेब में ही रख लेता है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद प्यारी बच्ची का वीडियो तेजी से वायरल है, जिसमें बच्ची अपने छोटे छोटे हाथों में गिटार थामे दिलकश अंदाज में नजर आ रही है। इस दौरान वो अपनी मधुर आवाज में इतना प्यारा गाना गा रही है कि उसने हर किसी का दिल जीत लिया। गिटार पकड़ने का उसका अंदाज हो, गाने की धुन पर हरकत करती उसकी नन्ही उंगलियां हो, हर किसी का ध्यान ये बच्ची अपनी तरफ खींचती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, उसके एक्सप्रेशन भी दिल जीत ले रहे हैं। भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी का हिस्सा भी है। यहाँ गली मोहल्ले से लेकर स्कूल के मैदान तक, जहाँ थोड़ी सी भी जगह मिल जाए, बच्चे और बड़े बल्ला बॉल लेकर पहुँच जाते हैं। कई बार तो क्रिकेट खेलने के लिए मैदान की भी जरूरत नहीं पड़ती, सड़क हो, छत हो या घर के बाहर की छोटी सी जगह, क्रिकेट का जुनून कहीं भी शुरू हो जाता है। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को ही देख लीजिए, जहां कुछ लड़कों ने तालाब के पास ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। पानी के बीच खड़े होकर लड़कों ने बॉलिंग से लेकर बैटिंग तक खूब धमाल मचाया। उनका खेल देखकर लोग भी वीडियो का मजा लेने लगे। हालांकि इस पूरे मुकाबले में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा आखिरी कैच ने, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। कमाई का असली मकसद सिर्फ घर चलाना या बिल भरना नहीं, बल्कि अपने परिवार के चेहरों पर मुस्कान लाना भी होता है। पश्चिम बंगाल के एक स्विगी डिलीवरी बॉय ने इस बात को साबित भी कर दिखाया।
6: दीदा से बात करो, तुम्हें क्या मन खुशी?
5: दिन रात मेहनत कर और थोड़े थोड़े पैसे जोड़ कर इस राइडर ने अपनी माँ और दादी के लिए नया टीवी खरीदा। जब उसने ये सरप्राइज अपने परिवार को दिया तो उस भावुक पल का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अक्सर अपने अनोखे और नए विचारों के लिए जाना जाता है। इस बार इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक बेहद मनोरंजक और अलग रास्ता चुना है। पलासिया चौराहे पर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों और सिग्नल जंप करने वालों को जागरूक करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने गोरिल्ला कॉस्ट्यूम पहनाकर एक शख्स को सड़क पर उतारा। ये गोरिल्ला गाड़ियों को जेब्रा क्रॉसिंग से पीछे धकेलता है, लोगों को सड़क पार कराता है और ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर ट्रैफिक संभालता है। वीडियो में जब एक कार चालक सिग्नल पर रुकने की बजाय आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो ये विशालकाय गोरिल्ला दौड़कर कार के सामने आ जाता है और हाथों से धक्का देकर कार को पीछे धकेलता है। गोरिल्ला का ये तरीका देखकर ड्राइवर भी मुस्कुराते हुए गाड़ी रोक लेता है। इस वीडियो में सिर्फ गाड़ियों को रोकना ही नहीं बल्कि गोरिल्ला का फ्रेंडली अंदाज भी दिखा। वो सड़क पार कर रहे राहगीरों का हाथ पकड़कर उन्हें सुरक्षित जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करवाता नजर आता है। साथ ही वो ऑन ड्यूटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर से हाथ मिलाता और उनके साथ तालमेल बिठाकर ट्रैफिक कंट्रोल करने में मदद करता भी दिखा। इंदौर पुलिस के इस फनी और क्रिएटिव अभियान को सोशल मीडिया पर खूब सराहना मिल रही है। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो तेजी से वायरल है जिसे देख लोग हैरान भी हैं और बाबा की तारीफ भी कर रहे हैं।
7: 83
5: वीडियो में एक बुजुर्ग बाबा एक विदेशी टूरिस्ट से फराटेदार अंग्रेजी में बात करते दिख रहे हैं। बाबा जिस आत्मविश्वास के साथ अंग्रेजी बोलते हैं उसे देख विदेशी टूरिस्ट भी मुस्कुराता हुआ दिख रहा है।
7: डोंट वरी, गॉड इज ऑलवेज प्रोटेक्ट, जय हनुमान।
8: Everything here is free. What are you getting?
9: Airtime.
5: बैंकॉक की सड़कों पर दौड़ती एक अनोखी टैक्सी इन दिनों इंटरनेट पर खूब धमाल मचा रही है। इस कैब की खासियत यह है कि इसमें कदम रखते ही आपको किसी सुपरमार्केट जैसा एहसास होता है। ड्राइवर ने यात्रियों की सुविधा के लिए कार को एक मिनी मार्ट का रूप दे दिया है जहां जरूरत का हर सामान बिल्कुल फ्री मिलता है। थाईलैंड की मशहूर मेहमान नवाजी को दर्शाते इस खूबसूरत पहल की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। वीडियो में टैक्सी की पिछली और आगे की सीटों पर हर छोटी बड़ी जरूरत की चीजें करीने से सजा कर रखी हैं। सफर के दौरान यात्रियों को मोजे, टूथब्रश, शीशा, बेबी पाउडर और यहाँ तक कि बिल्लियों का खाना भी आसानी से मिल जाता है। प्यास या थकान मिटाने के लिए पानी की बॉटल्स और कॉफी भी यहाँ फ्री में उपलब्ध है। ये कोई एक दिन का पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। ये थाई ड्राइवर पिछले 10 सालों से लगातार अपनी टैक्सी में मुफ्त सामान की सेवा दे रहा है। खास बात यह है कि वो यात्रियों से सामान के बदले एक भी रुपया नहीं लेता। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो ने लोगों को खूब आकर्षित किया है। इसमें विदेशी धरती पर भारतीय संस्कृति की खूबसूरत झलक देखने को मिलती है। पारंपरिक अंदाज और लोक संगीत के इस अनोखे मेल ने इंटरनेट यूजर्स को हैरान करने के साथ साथ काफी खुश भी किया हुआ है। वीडियो में कुछ अमेरिकी महिलाएं पारंपरिक राजस्थानी लुक में दिख रही हैं। उन्होंने रंग बिरंगे लहंगा चोली पहने हैं, सिर पर चुनरी भी सजा रखी है। जैसे ही राजस्थानी लोकगीत बजता है ये महिलाएं पूरे उत्साह के साथ डांस करना शुरू कर देती हैं। न्यूयॉर्क की व्यस्त सड़कों और आसपास मौजूद लोगों के बीच अचानक राजस्थानी लोक संगीत सुनाई देना अपने आप में काफी दिलचस्प नजारा है। इसके बाद जब महिलाओं ने गाने के साथ राजस्थानी डांस स्टेप्स किए तो वहां से गुजर रहे लोगों का ध्यान भी उनकी तरफ खींच गया।

इस गजराज का पानी पीने का तरीका इतना अनोखा है कि आप अपनी हंसी और हैरानी रोक नहीं पाएंगे। गजराज का ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वीडियो में एक पेड़ के बगल में लगा नल खुला है और उससे पानी बह रहा है। आमतौर पर कोई भी जानवर ऐसे में सीधे मुंह लगाता, लेकिन ये हाथी बेहद चतुर निकला। उसने अपनी लंबी सूंड के निचले हिस्से को घुमाकर बिल्कुल एक कटोरी की तरह बना लिया। नल से गिरता पानी उसकी सूंड के उसी हिस्से में जमा होने लगता है और जैसे ही सूंड में काफी पानी भर जाता है वो उसे सीधे अपने मुंह में डालकर गटक लेता है। एक बार पानी पीने के बाद जब उसकी प्यास नहीं बुझती तो वो दोबारा अपनी सूंड नल के नीचे लगा देता है। उसकी ये मासूमियत और गजब की सूझबूझ देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
3: सावन मास में ठाकुर जी की भक्ति के रंग से पूरा ब्रज क्षेत्र सराबोर रहता है। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में इस पूरे मास में अलग अलग घटाओं का आयोजन होता है और उसी कड़ी में मंगलवार शाम को लहरिया घटा का दिव्य आयोजन हुआ। इस विशेष अवसर पर मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा।

0: रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर मंदिर, दिव्य सजावट, आकर्षक झूलों से झूलते ठाकुर जी और भाव विभोर श्रद्धालु। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर की ये छटा लहरिया घटा की है। द्वारकाधीश मंदिर में मंगलवार की शाम लहरिया घटा सजाई गई और भगवान द्वारकाधीश ने लहरिया घटा में भक्तों को दर्शन दिए। लहरिया घटा के लिए पूरे मंदिर परिसर को सतरंगी लहरिया कपड़ों से सजाया गया। अलग अलग तरह की रंग बिरंगी रोशनी और फूल पत्तियों से मंदिर को आकर्षक रूप दिया गया। इस भव्य सजावट के बीच लगाए गए 9 हिंडोले श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध करते रहे।
1: ये द्वारकाधीश मंदिर में 9 झूले हैं, जो है सोने के और चांदी के भी। तो ये देखकर और झांकी जो सजी है उसको देखकर बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है।
2: आज के दिन लहरिया घटा है अपने द्वारकाधीश के मंदिर में। तो 3 सोने चांदी के झूले हैं, 3 लकड़ी के झूले हैं और 3 फल फूलों के झूले हैं। मनोहर दर्शन है आज के, अद्भुत, जिसका वर्णन नहीं कर सकते।
3: एकदम आनंद आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है यहाँ पे। राधे राधे।
0: इस लहरिया घटा के आयोजन के लिए लाए गए फब्बारों से लेकर गायों की सीनरी, मोर की खूबसूरत आकृति, बंदरों के कटआउट हर किसी को आकर्षित कर रहे थे।
4: श्रावण मास समाप्त हो रहा है तो इसलिए जो लहरिया घटा है वो मंदिर प्रांगण में सजाई गई है। पूरे मंदिर को दिव्यता और भव्यता के साथ सजाया गया है। 9 झूले हैं आज और 9 झूला में ठाकुर जी अपने ग्वाल वालों के साथ, अपने परिवार के साथ विराजकर झूला झूल रहे हैं। और जो तो स्वर्ण हिडोरा लगा हुआ है और रजत हिडोरा लगा हुआ है, तो सोने के हिडोले में भी ठाकुर जी झूल रहे हैं और उधर लकड़ी के हिडोले में भी ठाकुर जी झूल रहे हैं। तो ठाकुर जी का जो उत्सव है ना सावन का पूरा, वो बड़ा अद्भुत और अनोखा है, क्योंकि ठाकुर जी बाल रूप में यहाँ विराजते हैं। तो बाल रूप में बालक को मंदिर परिसर से बाहर नहीं ले जाया जाता, वो मंदिर में ही रखा जाता है। सावन में ब्रज में बड़े श्रद्धालु आते हैं और भगवान के दर्शन कर जो झूला उस समय उसको मनाते हैं।
0: पूरे सावन माह में मंदिर में 9 तरह की घटाएं सजाई जाती है। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में जिस दिन सावन मास प्रारंभ होता है उस दिन ठाकुर जी को स्वर्ण और रजत हिंडोले में झुलाया जाता है। झूला झुलाने की ये परंपरा पूरे ब्रजमंडल में है। द्वारकाधीश मंदिर में लहरिया घटा की छटा देखने हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर में विराजमान ठाकुर जी बाल स्वरूप में हैं, इसीलिए उन्हें बाहर नहीं ले जाया जाता, लेकिन उन्हें बाहर के मौसम की अनुभूति कराने के लिए सावन मास में काली घटा, गुलाबी घटा, लहरिया घटा, सफेद घटा जैसी 9 घटाओं का आयोजन होता है। इस परंपरा के तहत अलग अलग स्वरूपों और सजावट के माध्यम से ठाकुर जी के दर्शन कराए जाते हैं।
5: बाहर के मौसम की अनुभूति कराने के लिए घटाओं के आयोजन होते हैं, क्योंकि आज बाहर का मौसम गुलाबी है तो गुलाबी घटा का आयोजन है, आज बाहर का मौसम सफ़ेद हो रहा है तो वो सबसे लास्ट घटा होती है सफ़ेद वाली घटा, काली घटा बीच में होती है, बड़ी फेमस घटा होती है। तो इस प्रकार से लगभग 9 घटाओं का आयोजन ठाकुर मंदिर द्वारकाधीश में होता है। और श्रावण मास जब तक रहता है तब तक ठाकुर जी हिडोले में प्रतिदिन 5:10 से 5:40 झूलते हैं। घटाओं का जो टाइमिंग है वो सायंकाल 7 बजे से 8 बजे तक रहता है और एक दिन छोड़ के, क्योंकि तिथि घड़ी पल और नक्षत्र के हिसाब से सभी घटाओं के आयोजन होते हैं। पूर्णमासी जैसे 28 को है तो 27 को सभी घटाओं के आयोजन होते हैं। पूर्णमासी जैसे 28 को है तो 27 को
0: झूला झुलाते देखकर श्रद्धालु भक्ति के रंग में पूरी तरह डूब गए। एक सुर में भक्त गोविंद गोपाल की जय जय करने के अलावा अपने अपने अंदाज में ठाकुर जी के प्रति अपने भक्ति भाव को प्रदर्शित करते दिखे।
6: तेरी कृपा को है खेल अनुपम, बाकी पार के पाई भी को कौन सोचारो।
7: लहरिया घटा और 9 झूले, लाला झूलन पधारो झोंके आए बदला झूलन।
0: मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुडनेस टुडे।
8: गुडनेस टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुडनेस टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद मिशन जिंदगी तेज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से की बातचीत। भारत की ओर से भेजा जा रहा है राहत सामान, उत्तर प्रदेश बिहार में प्रशासन अलर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने रच दिया नया कीर्तिमान। नई बसों के मामलों में देश में उत्तर प्रदेश नंबर वन। महिलाओं के लिए पैनिक बटन के हेल्पलाइन की भी कनेक्टिविटी। देशभर में रक्षाबंधन की तैयारियां तेज। वाराणसी में बनाई गई खास एआई राखी। रायपुर में सुरक्षा बल के जवानों को बांधी गई राखियां। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज। मुंबई के महाराजा नाम से मशहूर करीब 47 फीट के बप्पा का आगमन। नरसिंह रूप में विराजमान है गणपति। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज। अब मंदिर में मिलेगी निःशुल्क शीघ्र दर्शन की सुविधा। प्रशासन के फैसले से लोगों को मिली खुशी।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात रंग, राशि और राखी के संयोग की। राखी क्या है? एक डोर है, प्रेम और दोस्ती के धागों से बुनी हुई, और ये प्यारा सा त्योहार उसी रिश्ते का तो प्रतीक है। तभी तो रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई पर प्रेम से कोई एक धागा भी बांध देना काफी होता है। और जहां तक बात है गिफ्ट की, तो बहन के लिए भाई का प्यार और साथ ही सबसे बड़ा उपहार है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कुछ खास रंगों की राखी इस रिश्ते में स्नेह के रंगों को और गहरा कर सकती है। ज्योतिष विज्ञान के मुताबिक राखी के दिन राशि के मुताबिक रंगों की राखी भाई की कलाई पर बांध उनके जीवन में शुभता और सौभाग्य ला सकता है। तो वहीं अगर बहना के लिए उपहार उसकी राशि के अनुसार चुना जाए तो उसके जीवन में मंगल और सौभाग्य की बरसात हो सकती है। तो चलिए आइए ज्योतिषाचार्य से जान लेते हैं कि बहनें अलग अलग राशियों के आधार पर अपने भाइयों को कौन कौन सी राखी बांध सकती हैं, और भाई अपने बहन को ढेर सारे प्यार के साथ और कौन सा उपहार दे सकते हैं।
1: बात करते हैं कि राशि के अनुसार आप अपने भाई को कौन से रंग की राखी बांध सकते हैं और भाई अपनी बहनों को राशि के अनुसार क्या गिफ्ट दे सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें लाल या मैरून कलर की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन मेष राशि की है तो आप उन्हें लाल रंग के कपड़े गिफ्ट कर सकते हैं। आप उन्हें स्पोर्ट्स एक्सेसरीज गिफ्ट कर सकते हैं, रेड कलर का हैंडबैग, मैरून कलर का हैंडबैग या कोई फिटनेस रिलेटेड आइटम आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। बात करेंगे वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें पेस्टल शेड की राखी, सिल्वर कलर की या पिंक कलर की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन वृषभ राशि की है तो आप उन्हें पेस्टल शेड के कपड़े, परफ्यूम, इत्र या फिर कॉस्मेटिक आइटम्स आप अपनी बहन को गिफ्ट कर सकते हैं। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप अपने भाई को हरे रंग की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन मिथुन राशि की है तो आप उन्हें उनकी राशि के अनुसार ग्रीन एमरल्ड दे सकते हैं। आप उन्हें बुक्स गिफ्ट कर सकते हैं, आप उन्हें गैजेट्स गिफ्ट कर सकते हैं या फिर उन्हें ग्रीन कलर के कपड़े भी गिफ्ट कर सकते हैं।
0: यानी भाई बहन इन उपायों को अपनाकर रिश्तों में और मिठास खोल सकते हैं। बाकी की राशि वाले भाई बहनों के लिए क्या कुछ उपाय हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं वो अनोखी राखियां जिन्हें संसार की सबसे बड़ी राखी बताया जा रहा है। ये राखियां प्रेम और आस्था के धागों से बुनी गई हैं। श्रद्धालुओं ने अपने हाथों से इन्हें अपने आराध्य के लिए बनाया है और तैयार किया है।

0: हर साल जाते जाते सावन का महीना हमारे लिए प्रेम के उस पर्व की सौगात छोड़ जाता है जो भाई बहन के स्नेह और लगाव का सबसे बड़ा पर्व है। सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को आने वाला रक्षाबंधन पर्व सनातन धर्म का बेहद खास त्योहार है। वो त्योहार जहां बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधकर उसके आयुष्मान होने और उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं, तो वहीं भाई भी अपनी लाडली बहन की रक्षा और हर हाल में उसका साथ निभाने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर समर्पण और सुभाशीष का कुछ ऐसा ही आदान प्रदान भक्त अपने आराध्य के साथ भी किया करते हैं। तभी तो राखी की तैयारी का असर देश भर के मंदिरों में भक्त के लिए बेहद खास राखी तैयार की जा रही है। भक्तों का ये दावा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी राखी है जिसे भगवान जगन्नाथ को रक्षाबंधन के दिन अर्पित किया जाएगा। जगन्नाथ मंदिर के खास सेवायत पटारा बिसोई पीढ़ियों से भगवान के लिए राखी बनाने का काम करते आ रहे हैं। अब की बार भी जगन्नाथ प्रभु की ये खास राखी बनकर तैयार है।
1: ये जो राखी, ये दुनिया का सबसे बड़ा राखी है और ये जब महाप्रभु परिधान करेंगे तो दिल से बहुत खुशी मिलती है और ये सब सिर्फ भाग्यवान बहुत खुद को फील होता है। और ये मैं बहुत छोटे से दादाजी के साथ करता आ रहा हूँ। यह जो सेवा है, ये हमारा पीढ़ी पे पीढ़ी सेवा है।
0: जगन्नाथ धाम में हर साल ये परंपरा निभाई जाती है। अब की बार रक्षाबंधन के लिए रेशम के चार रंग वाले धागों को पिरोकर चार विशाल काय राखियां बनाई जा रही हैं। इसके साथ ही सुपारी के पत्तों की विशाल मालाएं भी तैयार हो रही हैं।
2: ये जो राखी जो हम जो बना रहे हैं, ये प्रस्तुत हो रहा है बासुंगा टसर पार्ट से। ये बासुंगा पार्ट को हम चार कलर में विभक्त करके लाल और हलूद और नीला सबुज चार कलर में बनाते हैं और इसका साथ में और भी चार सुपारी का माला बनाते हैं। ये एक सुपारी का माला में 54 सुपारी रख के इसके अंदर डाल के इसको फूल की तरह बनाते हैं।
0: श्रावण महीने की अमावस्या से ही राखियां बनाने का काम शुरू हो जाता है। पटारा बिसोई सेवायत 10 से 12 दिनों में इन विशाल राखियों को बनाने का काम पूरा करते हैं। आखिरकार राखी के दिन भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र को ये राखी और मालाएं अर्पित की जाती हैं।
2: ये चार गुआमल और चार राखी महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर के अंदर हम प्रभु जी को देंगे। वो इन्होंने जगन्नाथ जी महाप्रभु दो राखी परिधान करेंगे और बलभद्र महाप्रभु दो राखी परिधान करेंगे। इसका साथ में दो दो माला भी, सुपारी माला भी परिधान करेंगे।

0: रक्षाबंधन से पहले आस्था के रंगों में पगी कुछ ऐसी ही तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर से भी आई हैं। इंदौर में भक्तों ने खजराना गणेश भगवान के लिए दुनिया की सबसे बड़ी राखी बनाने का दावा किया है। रक्षाबंधन के अवसर पर इस बार भगवान खजराना गणेश को 40 इंच बाय 40 इंच की भव्य सनातन राखी अर्पित की जाएगी। पिछले कई सालों से इस मंदिर में खास राखी अर्पित करने की परंपरा रही है। अब की बार खजराना गणेश जी के लिए बनी विशेष राखी में सनातन संस्कृति, राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक संदेशों को समाहित किया गया है।
1: यह 40 बाय 40 इंच की राखी विश्व की सबसे बड़ी राखी है। हम लोग हर साल एक थीम बेस राखी बनाते हैं और वंदे मातरम को जो 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं उसको हमने दर्शाते हुए एक सनातन धर्म पे राखी बनाई है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमने कमल के अंदर विराजित जगन्नाथ जी, और जैसा कि सावन का महीना चल रहा है और बाबा महाकाल ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो बाबा महाकाल, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी सभी हमने इसमें वो किया है। खजराना गणेश जी को यह राखी सिर्फ चिंतामण गणेश जी, महाकालेश्वर, वीर बगीचे, हनुमान मंदिर ऐसे कई मंदिरों में अर्पित की जाएगी।
0: बताया जा रहा है कि इस राखी को 10 से 15 लोगों की टीम ने करीब 2.5 महीनों की मेहनत से तैयार किया है। इसे बनाने में कोलकाता, जयपुर, मुंबई और सूरत से मंगवाई गई विशेष सामग्री का उपयोग किया गया है। भारत की कई समृद्ध हैंडीक्राफ्ट कलाओं की झलक इस राखी पर नजर आ रही है।
1: 10 से 15 लोग मिलके हम ये राखी बनाते हैं और करीबन हमको 1 से 2 महीना लगता है इस राखी को कंप्लीट करने में। और इसमें आप देखें कि सूरत के मोती और जयपुर, कलकत्ता का बारीक काम किया है। पूरा हैंडवर्क की राखी है और हैंडमेड राखी है।
0: ये केवल एक राखी नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान, सांस्कृतिक एकता और धार्मिक चेतना का जीवंत प्रतीक है। जब राखी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ये राखी भगवान खजराना गणेश को अर्पित की जाएगी तो आस्था के भाव के साथ साथ ये राखी देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के दर्शन का माध्यम भी बनेगी। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो अभी हमने आपको बताया था कि मेष से मिथुन राशि वाले भाई बहन अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। अब ये जान लेते हैं कि ज्योतिष के आधार पर कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोग भाई बहन से संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठा सकते हैं।
3: अगर आपके भाई कर्क राशि के हैं तो कर्क राशि वाले भाइयों को आप सिल्वर या व्हाइट कलर की राखी बांध सकते हैं। वहीं भाई अपनी बहनों को जो कि कर्क राशि की हैं उन्हें सिल्वर की कोई आइटम गिफ्ट कर सकते हैं। आप सिल्वर कलर के क्लोथ गिफ्ट कर सकते हैं, पर्ल आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, पर्ल की ज्वेलरी गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें कोई भी ऐसा लिक्विड आइटम जो कि उनकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो, उनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करे, ऐसा आप उन्हें कुछ गिफ्ट कर सकते हैं। बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें ऑरेंज या ब्राइट येलो कलर की राखी जरूर बांधे। और वहीं अगर आपकी बहन सिंह राशि की है तो आप उन्हें गोल्ड के आइटम आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें तांबे की कोई अच्छी सी मूर्ति गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें ऑरेंज या कॉपर शेड के कपड़े गिफ्ट कर सकते हैं जिससे कि उनकी जिंदगी में प्रगति आए। कन्या राशि की यदि हम बात करें तो कन्या राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें हरे या पेस्टल शेड या फिर अर्दी शेड की राखी आप उन्हें बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन कन्या राशि की है तो आप उनको कुछ प्रीमियम प्लानर या फिर डेस्क ऑर्गेनाइजर या फिर कोई स्मार्ट वॉच या फिर ग्रीन कलर के कपड़े या ग्रीन कलर की ज्वेलरी जैसे कि एमरल्ड हो गई, ग्रीन एवेंचुरियन क्रिस्टल हो गया, ये आप अपनी बहनों को गिफ्ट कर सकते हैं।
2: चूंकि भाई बहन के पवित्र रिश्ते का ये पर्व बेहद नजदीक आ गया है, ऐसे में बाजार रक्षाबंधन के त्योहार के लिए पूरी तरह सज चुके हैं। बाजार में एक से बढ़कर एक राखियां बिक रही हैं। रंग बिरंगी राखियों के बीच में इस बार सोने चांदी से बनी राखियों की खूब डिमांड है। अलग अलग डिजाइन और स्टाइल वाली राखियां लोगों को खूब पसंद आ रही हैं। इनमें डायमंड राखी से लेकर हल्के काम वाली गोल्ड राखी का भी क्रेज दिखाई दे रहा है।
4: शुरुआत करेंगे इन प्रीमियम सिल्वर राखी की। और आप देख सकते हैं कि आपको जो है सामने बहुत सारे ऑप्शन जो है राखी के दिखने वाले। तो ये 925 स्टर्लिंग सिल्वर की राखियां हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और इस सीजन में जो है ये खास होने वाली है, वो इसलिए क्योंकि सिर्फ राखी के फेस्टिवल के बाद जो है आप एक धागे की तरह इसको उतार कर नहीं रख सकते, बल्कि आप बाद में भी जो है इसको कैरी कर सकते हैं, एक ब्रेसलेट के तौर पर जो है आप इसको पहन सकते हैं। और पूरे साल जो है इसको आप बहन भाई की जो प्यार की निशानी है उसके साथ जो है इसको कैरी कर सकते हैं। तो ऑप्शंस में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ किस तरीके से आपको सिल्वर के ऑप्शन जो है वो नजर आने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम बच्चों की राखी से शुरू करेंगे क्योंकि बच्चों के लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑप्शन जो है आपको दिखेंगे। शुरुआती मैं इन छोटी छोटी राखियों से करूंगी। आपको दिखेगा कि किस तरीके से बच्चों को कार्टून करेक्टर्स वाली राखियां पसंद होती है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि आपको स्पॉन्ज बॉब की राखी की बात करें या फिर एंग्री बर्ड की राखी की बात करें, आपको बच्चों के लिए हर एक ऑप्शन जो है नजर आने वाले हैं। आप यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको लड़कियों के लिए यूनिकॉर्न वाली राखियां जो है वो दिख जाएगी।

0: अगर इनकी कीमतों की बात करूं तो ये सभी जो जितनी भी धागे वाली राखियां जो आप देख रहे हैं सिल्वर के साथ, इनकी कीमत जो 1000 से सिर्फ 1500 के बीच में आपको नजर आ जाएगी। वही अगर आप कुछ इस स्टाइल के राखियों की बात करें, ये स्पेशली जो ऊपर की राखियां मैं आपको दिखा रही हूँ सिल्वर में, ये भाभियों के लिए राखी है। अगर आपको अपनी भाभी को पहनाना है तो आप इस तरीके का ट्रेडिशनल लुक के साथ आप इनको कुछ ऐसी राखियां जो है पहना सकते हैं कि राखी का त्यौहार भी मने और साथ ही साथ कुछ परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस तरीके का ट्रेडिशनल लुक वो जो है पहन सके। आपको कुछ इस सिल्वर में इस तरीके की राखियां भी जो है वो मार्केट में दिख जाएगी। और इनकी अगर रेट की बात करें तो ये आपको 3 से 4 हज़ार के बीच में जो है पड़ेगी। और भाई बहन के लिए जिस तरीके से कहते हैं कि कपल जो एक राखी होती है भाई भाभी की राखी, वो आपको ये राखियाँ मिल जाएगी कि भाई भाभी भी मेंशन है। तो सिल्वर की हम ऑप्शन दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर अच्छी खासी जो वैरायटी है वो दिखने वाली है, क्योंकि प्रीमियम राखियों की तरफ हर कोई रुख जो है लेता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जब बात सोने की हो तो सोने की चमक के आगे आपको हर कुछ फीका लगता है। तो सोने की आपको मैं वैरायटी दिखा रही हूँ और उसके साथ ही डायमंड, प्रीमियम डायमंड जो है अमेरिकन डायमंड कट के साथ जो है वो राखियों के ऑप्शन भी आपको दिखने वाले हैं। हालांकि कस्टमाइज आप करवा सकते हैं, लेकिन ये कुछ राखियों के मैं ऑप्शंस आपको दिखा रही हूँ जो कि आपको यहाँ पर नजर आने वाला है। और सोने की छोटी सी प्लेट आपको बीच में नजर आ जाएगी। आपको चाहे भगवान गणेश जी की बात करें या फिर ओम के डिजाइन की बात करें, एक आपको यहाँ पे आपको माता रानी का डिजाइन जो है वो दिख जाएगा। तो और बारीक धागे के साथ, क्योंकि कोई धागे को बहुत ही पवित्र मानता है, तो धागे के साथ इन्होंने गोल्ड को जो है अटैच करने की पूरी तरीके से कोशिश की है। अगर उसके साथ ये भी आप देख सकते हैं कि आपको इसमें काला धागा नजर आएगा, क्योंकि लोग जो है काला धागा ज़रूर पहनाते ताकि नज़र से जो है वो बचा जा सके। तो गोल्ड की राखियों में कई तरह के डिज़ाइन जो है आपको नज़र आ जाएंगे। कुछ राखी आपको बेहद ही मिनिमल डिज़ाइन के साथ दिखेगी तो कुछ में आपको इस तरीके का कट जो है वो नज़र आ जाएगा। और ये जितनी भी ये राखियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 22 कैरेट गोल्ड में जो है आपको नज़र आने वाली है। लेकिन जिनका बजट थोड़ा कम है लेकिन त्यौहार भी मनाना है, तो उनके लिए ये नीचे के ऑप्शंस आपको नजर आ जाएंगे कि ये आपके 14 कैरेट गोल्ड से इनका आपको ये राखियां जो है वो उपलब्ध है। इसके अंदर आपको डायमंड कट जो है वो नजर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि 14 कैरेट गोल्ड की आपको चेन नज़र आ जाएगी, लेकिन अगर आप बीच में डिजाइन की बात करेंगे तो आपको ये डायमंड में सारे ऑप्शंस जो है वो मिलने वाले हैं।
1: तो राखियों के इन ट्रेंड के बाद अब एक बार फिर से लेकर चलते हैं ज्योतिषाचार्य के पास और जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले भाई बहन इस त्यौहार को खास बनाने के लिए कौन कौन से रंग वाली राखी और सौगात तैयार कर सकते हैं।
2: अगर आपके भाई तुला राशि के हैं तो आप अपने भाइयों को पिंक कलर की या सिल्वर कलर की या फिर रेशम की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहनें तुला राशि की हैं तो तुला राशि वाली बहनों को आप सिल्क की साड़ी, सिल्क का सूट दे सकते हैं, कुछ कॉस्मेटिक आइटम दे सकते हैं, कुछ सिल्वर की ज्वेलरी या फिर आप डायमंड या अमेरिकन डायमंड की ज्वेलरी आप उन्हें दे सकते हैं, या फिर आप उन्हें रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल भी दे सकते हैं जिससे आपकी बहनों की जिंदगी में खुशियां भर जाए। वहीं बात करते हैं वृश्चिक राशि की, अगर आपके भाई हैं तो आप अपने भाई को रेड कलर, ऑरेंज कलर या फिर मरून कलर की आप उन्हें राखी दे सकते हैं। और वहीं अगर आपकी बहन वृश्चिक राशि की है तो आप उन्हें रेड मैरून कलर की ज्वेलरी आइटम दे सकते हैं या कपड़े दे सकते हैं, साथ ही आप उन्हें कॉपर शेड का कोई ड्रेस मटेरियल भी देके दे सकते हैं, आप उन्हें तांबे के बर्तन लेके दे सकते हैं और साथ ही आप उन्हें रेड कोरल ज्वेलरी जो है उसकी भी ज्वेलरी आप उन्हें दे सकते हैं या फिर रेड जैस्पर क्रिस्टल भी आप अपनी बहनों को गिफ्ट कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं धनु राशि की कि अगर आपके भाई धनु राशि के हैं तो आप उन्हें पीले रंग की राखी जरूर बांधे या फिर गोल्डन कलर की राखी बांधे। वहीं अगर आपकी बहन धनु राशि की है तो आप उन्हें येलो कलर के कपड़े या गिफ्ट आइटम्स, येलो मिठाई, येलो कलर का कुछ बैग या गोल्डन बैग, या फिर आप उन्हें गोल्ड की ज्वेलरी, या फिर आप उन्हें पंच धातु की कोई ज्वेलरी, या फिर आप उन्हें जो है येलो सफायर या येलो सिट्रीन क्रिस्टल आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं।
1: चलिए अब हम आपको राशि के हिसाब से परफेक्ट राखियां तो बता ही रहे हैं, साथ ही आपको ये भी दिखा रहे हैं कि आजकल ट्रेंडिंग राखियां कौन कौन सी हैं। दरअसल बदलते वक्त के साथ राखियां भी ट्रेंडी हो चुकी हैं। राखी को लेकर भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। मसलन आगरा में रक्षाबंधन के लिए पत्थरों से खास राखियां बनाई जा रही हैं। ये उसी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कारीगर इन राखियों को बनाने में दिन रात जुटे हैं। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन राखियों को तैयार करने में मेहनत भी काफी लग रही है। ये राखियां यूनिक तो है ही, आकर्षक भी हैं। रंग बिरंगी पत्थर की ये राखियां इतनी खूबसूरत हैं कि किसी का भी मन इन्हें खरीदने के लिए मचल उठेगा। इसी तरह अलग अलग स्टाइल की राखियां शहर

शहर इन दिनों नजर आ रही हैं। शहर शहर राखी की दुकानें सजी हुई हैं, जहां पारंपरिक से लेकर मॉडर्न डिजाइन की तमाम राखियां उपलब्ध हैं। बच्चों और बड़ों सभी को ख्याल में रखकर अलग अलग राखियां डिजाइन की गई हैं। महाराष्ट्र का अकोला हो या राजस्थान का अलवर, राखी के लिए हमेशा से मशहूर रहे बाजार इन दिनों खरीदारों के साथ गुलजार हैं।

0: भाई बहन के पावन त्योहार रक्षाबंधन को लेकर देश भर के बाजार गुलजार हैं। यहाँ एक से बढ़कर एक राखी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के अकोला के बाजार भी रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर सजे हुए हैं। अपने भाइयों के लिए राखी पसंद करने दुकानों पर बहनों की भीड़ जुट रही है। यहाँ की दुकानों पर पारंपरिक राखियों से लेकर मॉडर्न डिजाइन वाली राखियाँ मौजूद हैं।
1: रक्षाबंधन के त्योहार के लिए जो है बाजारों में जो है दुकान यहाँ पर लग चुके हैं राखियों के। और ये जो राखी है ये जो है मोतियों की राखी है, कोई रुद्राक्ष वाली है, कोई माला वाली यहाँ पर राखी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये लुम्बी राखी इसे कहा जाता है। ये सुंदर राखियाँ जो है वो ये भैया भाभी की राखी इसे कहा जाता है। और इस तरीके के अलग अलग वेराइटी जो है, देखिए ये बैंगल के साथ ये राखी इस तरीके की दी है। और खासकर यहाँ देखिए जो है एक कमल के फूल पर ये जो राखी है ये बहुत ही अच्छी इस वक्त की ट्रेंडिंग है।
0: भाई भाभी के लिए कपल राखी तो बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली राखियाँ, इन सब के अलावा डायमंड लुक वाली राखी, रिंग राखी और ज्वेलरी डिजाइन की राखियाँ भी दुकानों में मिल रही हैं। कोई बहन अपने भाई के लिए राखी पसंद कर रही है तो किसी ने खरीद भी ली है।
2: जो अच्छे से अच्छी राखी मिलेंगी वो ले लेंगे।
3: मैंने अपने भाई के लिए बहुत हीरे जैसी राखी ली है, आप देख सकते हैं बहुत शानदार हीरा लगा हुआ है। मेरा भाई भी हीरे जैसा ही है, मुझे बहुत प्यार करता है, मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा और भाई का रिश्ता बहुत ही अनमोल है मेरे लिए।
0: अलग अलग डिजाइन के हिसाब से राखियों की कीमत भी अलग अलग है।
4: 5 रुपए से लेके तो 500 रुपए तक की अवेलेबल है। 500-400 रुपए वाला माल था वो सबसे पहले खत्म हो जाता है। हैवी रेंज की राखी के ट्रेड डिमांड सबसे ज्यादा थी। अब की बार स्टोन डायमंड की राखी इसकी डिमांड हर साल रहती है, इस साल कुछ ज्यादा ही थी। और कार्टून की राखी की विशेष डिमांड है ये बार। लाइट के स्पिनर कार्टून की राखी में इस टाइप की राखी सबसे ज्यादा चल रही है।
0: अकोला से लेकर अलवर तक में राखियों की दुकानें सजी हुई है। राजस्थान के अलवर की राखियों की डिमांड विदेश तक में है। हजारों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कारोबार से जुड़े रहते हैं। यहाँ की राखियाँ देखने में सुंदर होने के साथ ही सस्ती भी मिलती है।
5: एक गोदाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर तरह तरह की राखियाँ हैं। मैं दिखाना चाहूंगा ये कार्टून कैरेक्टर की राखियाँ हैं। ये राखियों के साथ ही इरेजर का भी काम करती हैं। छोटे बच्चों को ये राखियाँ खास पसंद आ रही हैं, जिसमें अलग अलग तरह के डिजाइंस, एस्ट्रोनॉट तरह के जो कार्टून कैरेक्टर होते हैं उन कैरेक्टर के रूप में इनको तैयार किया गया है। और इन राखियों को रक्षाबंधन के बाद बच्चे अपने बैग, स्कूल बैग में भी काम में ले सकते हैं। इरेजर का ये काम करेंगी। इसके अलावा तरह तरह की राखियां कार्टून कैरेक्टर के रूप में, लाइट वाली राखियां, म्यूजिक वाली राखियों की डिमांड सबसे ज्यादा है।
0: यहाँ के बाजार में 1 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की अलग अलग तरह की आकर्षक राखियां मिल रही हैं। इस बार खासकर बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर, लाइटिंग और म्यूजिक के साथ ही पतली डोरे वाली राखियों की डिमांड सबसे ज्यादा है।
6: हमारे पास सब तरह की वैरायटी है, फैंसी राखियां भी हैं, बच्चों के लिए एक से एक स्पेशल आइटम बनाए हुए हैं हमने। इस बार बच्चों के लाइटिंग में जैसे ये सब लाइटिंग वाली आइटम है, ये देखिए इस तरह की लाइटिंग वाली आइटम है, ये छोटे बच्चों के आइटम है सारी, ये सब म्यूजिक लाइट बच्चों के साथ में लाइटिंग वाली आइटम आएगी इस तरीके से। ये पर्स वाली आइटम है, जैसे बच्चों के बेल्ट मारने वाला होता है इसके अंदर, बच्चों के टॉयज वगैरह सब कुछ मौजूद है इसके अंदर। ये वाली सब म्यूजिक लाइट के साथ है, ट्यूनिंग लाइटिंग के साथ आ रहा है अपना। इस तरह की आइटम बच्चों के छोटे करेक्टर वगैरह बहुत सारी आइटम है। मतलब
0: यहाँ कई बड़े राखी व्यापारी हैं जो देश विदेश में राखियाँ सप्लाई करते हैं।
7: इस साल हमने करीब 50,000 से ज्यादा डिजाइन बनाए हैं और सप्लाई ऑल ओवर इंडिया तो है ही, और अवार्ड में भी हो रही है, करीब 30-35 कंट्रीज में माल जा रहा है।
0: यहाँ रक्षाबंधन के पर्व को लेकर सजी दुकानों में बहन अपने भाइयों के लिए राखी खरीदने लगातार पहुँच रही हैं।
8: राखियों के इतने डिजाइन मिलते हैं शायद कहीं भी पॉसिबल नहीं है। अलवर छोड़ो, इंडिया छोड़ो, एशिया तक इनकी राखी फेमस है कि यहाँ की राखियाँ जो है ऑल इंडिया में फेमस है, इसीलिए हम हर साल यहाँ आते हैं राखी।
0: अलवर के शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में राखी बनाई जाती है, जिसके चलते यहाँ 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। अकोला से धनंजय सावले और अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: चले अब आखिर में जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि वाले भाई बहन इस राखी पर राशि के मुताबिक कौन कौन से रंगों को चुनकर अपने त्योहार में खुशियों और शुभता के रंग भर सकते हैं।
10: शनि की दो राशियां मकर और कुंभ राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें नीले या बैंगनी रंग की राखी बांध सकते हैं या फिर फिरोजी रंग की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन मकर या कुंभ राशि की हैं तो आप उन्हें लेदर से रिलेटेड कोई भी आइटम गिफ्ट कर सकते हैं, कोई प्रीमियम बैग गिफ्ट कर सकते हैं या फिर उन्हें कुछ होम गैजेट्स गिफ्ट कर सकते हैं जो उनकी किचन में या उनके होम में एक्सेसरीज में काम आए। और साथ ही आप उन्हें ब्लू सफायर या ब्लू सफायर की ज्वेलरी भी गिफ्ट कर सकते हैं या फिर आप उन्हें नीले या बैंगनी रंग के कपड़े भी गिफ्ट कर सकते हैं। अंत में बात करेंगे मीन राशि की कि अगर आपके भाई मीन राशि के हैं तो आप उन्हें पीले या गोल्डन कलर की राखी जरूर बांधे और अगर आपकी बहन मीन राशि की है तो आप उन्हें गोल्डन कलर के कपड़े, गोल्डन कलर की एक्सेसरीज गिफ्ट कर सकते हैं या फिर आप उन्हें कोई रिलीजियस बुक्स गिफ्ट कर सकते हैं या फिर कोई सुंदर सी भगवान की मूर्ति गिफ्ट कर सकते हैं। गोल्ड के आइटम भी आप अपनी बहन को गिफ्ट कर सकते हैं। आप सभी को राखी के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
9: तो चलिए रक्षाबंधन के त्यौहार से जुड़ी हुई ऐसी ही कुछ और तस्वीरें भी लगातार जीएनटी पर आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल आज की इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: रक्षाबंधन पर देश के कई राज्यों में बहनों के लिए उपहार का ऐलान किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया के जरिए तीन बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। इसके मुताबिक पुलिस दीदी यानी अभयता ब्रिगेड के लिए 4,700 स्कूटर और मोटरसाइकिल का लोकार्पण और फ्लैग ऑफ किया जाएगा। इन वाहनों का इस्तेमाल स्कूल और कॉलेज जाने वाली छात्राओं की सुरक्षा और उनके संरक्षण के लिए किया जाएगा। छात्राओं को 10,000 रुपए की PhD फेलोशिप भी मिलेगी। करीब 1,000 छात्राओं को 4 साल तक ये फेलोशिप दी जाएगी। कारोबार और स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना की भी शुरुआत की जाएगी। देखिए इस योजना के तहत 50,000 से 2,00,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। और इन सबके अलावा रक्षाबंधन के अवसर पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से 27 और 28 अगस्त को महिलाओं और छात्राओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा भी मिलेगी। यानी रक्षाबंधन पर बिहार के अलावा कई दूसरे राज्यों में भी लड़कियों और महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा की घोषणा की गई है। तो देखिए यूपी सरकार ने 27 अगस्त से 29 अगस्त तक लड़की और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा सुविधा देने का ऐलान किया है, जिसमें एक सह यात्री भी रह सकता है, यानी को पैसेंजर भी सवार हो सकता है बस में, कोई पैसे नहीं लगेंगे उसके। उत्तराखंड सरकार ने 28 और 29 अगस्त को रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में राज्य परिवहन की साधारण बसों में महिलाओं के लिए जो सफर है वो मुफ्त होगा। 27 अगस्त की दोपहर 12 बजे से 28 अगस्त की रात 12 बजे ये टाइम पीरियड है, इस तक बहनों के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है और महिलाओं के साथ 15 साल तक के बच्चों को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा। इसमें हरियाणा के साथ ही चंडीगढ़ और दिल्ली तक की यात्रा भी शामिल है। वहीं देखिए राजस्थान की बात करें तो राजस्थान सरकार ने 28 और 29 अगस्त को साधारण और एक्सप्रेस बसों में लड़की और महिलाओं के लिए राज्य की सीमा के भीतर मुफ्त सफर का ऐलान किया है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे,
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम।
7: नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद मिशन जिंदगी तेज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से की बातचीत। भारत की ओर से भेजा जा रहा है राहत सामान, उत्तर प्रदेश बिहार में प्रशासन अलर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने रच दिया नया कीर्तिमान, नई बसों के मामलों में देश में उत्तर प्रदेश नंबर वन। महिलाओं के लिए पैनिक बटन के हेल्पलाइन की भी कनेक्टिविटी। देश भर में रक्षाबंधन की तैयारियां तेज, वाराणसी में बनाई गई खास AI राखी, रायपुर में सुरक्षा बल के जवानों को बांधी गई राखियां। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज। मुंबई के महाराजा नाम से मशहूर करीब 47 फीट के बप्पा का आगमन। नरसिंह रूप में विराजमान है गणपति। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज। अब मंदिर में मिलेगी निःशुल्क शीघ्र दर्शन की सुविधा। प्रशासन के फैसले से लोगों को में खुशी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
2: मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं, आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है, और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं और इन्हें आगे शेयर कर देते हैं। यही शुरू होती है अफवाहों की आंधी। लेकिन फैक्ट चेक के जरिए हम सच और झूठ के बीच की रेखा, धुंधली रेखा को साफ करते हैं और खबरों की पड़ताल करते हैं। सही और सच्ची खबर हम आप तक लेकर आते हैं। ऐसी दो खबरों की पड़ताल आज हम करने जा रहे हैं, जिसमें आज सबसे पहले वायरल हो रहे उस दावे की सच्चाई की पड़ताल हम करेंगे, जिसके जरिए कहा यह जा रहा है कि सांसद कंगना रनौत पर दूसरी बार हमला हुआ है। जेनजी पर विवादित टिप्पणी करने के बाद उन पर चप्पल फेंकी गई। क्या है सच्चाई, आगे जानिए। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो के से जुड़ी होगी, जिसके जरिए कहा जा रहा है कि ईरान की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी तैयार है, जिसे ईरान ने समंदर में उतार दिया है। क्या है इसकी सच्चाई, आगे बताएंगे। शुरुआत करते फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
2: सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस बीजेपी सांसद कंगना रनौत का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए लोग कह रहे हैं कि जेनजी पर विवादित टिप्पणी के बाद उन पर चप्पल फेंकी गई है, हमला किया गया है। लेकिन इस हमले की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती ये रिपोर्ट देखिए।

0: हिमाचल प्रदेश की मंडी से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद अभिनेत्री कंगना रनौत ने हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले हुए छात्र आंदोलन के दौरान इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा के लिए जेनजी को गटर जनरेशन कहा था। इस बयान के बाद काफी हंगामा मचा, जिसके बाद कंगना रनौत ने सफाई देते हुए ये कहा कि उनका बयान पूरी युवा पीढ़ी या जेनजी के लिए नहीं था। ये टिप्पणी केवल जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले कुछ विशेष लोगों के लिए थी जो खुद को कॉकरोच कहते हैं और गटर से निकलते हैं। इसके बाद अब सोशल मीडिया पर कंगना रनौत का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो किसी जगह पर पुलिस से घिरी हुई दिख रही हैं। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर दावा कर रहे हैं कि एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता ने कंगना रनौत पर चप्पल फेंकी है, उन पर दूसरी बार हमला हुआ है। एक इंस्टाग्राम यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि प्रोग्राम के दौरान कंगना रनौत के मुंह पर चप्पल फेंकी, पुलिस ने तुरंत संभाला। कंगना पर दूसरी बार अटैक, चप्पल फेंकने वाला भी बीजेपी का था। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल हाल के दिनों में बीजेपी सांसद कंगना रनौत काफी सुर्खियों में हैं। अपने विवादित बयानों की वजह से वो सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर है और खास तौर पर जेनजी को लेकर उनके विवादित टिप्पणियों की वजह से उन पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। हालांकि जब विवाद बढ़ने लगा तब कंगना रनौत ने सफाई देते हुए कहा कि उनका बयान पूरी युवा पीढ़ी की या फिर जेनजी के लिए नहीं था, ये टिप्पणी केवल जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले कुछ विशेष लोगों के लिए थी जो खुद को कॉकरोच कहते हैं और गटर से निकलते हैं। इन सब के बीच सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा और वीडियो किसी स्थल पर पुलिस से घिरी हुई कंगना रनौत को यहां पर दिखाया गया। इस वीडियो को शेयर करते हुए यूजर्स ये कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कंगना रनौत पर चप्पल फेंकी, उन पर दूसरी बार हमला हुआ है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। इसमें इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। हमने इसकी पड़ताल शुरू की और दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान वीडियो में एक जगह पर जहां से कंगना एंट्री ले रही है वहां पर नजर आ रहे बोर्ड पर हमारा ध्यान गया, उसमें मराठी में कुछ लिखा हुआ नजर आया था। इससे यह इशारा मिलता है कि वायरल हो रहा वीडियो महाराष्ट्र का हो सकता है। साथ ही वीडियो में आ रही आवाजों को भी जब हमने गौर से सुना तो सामने आया कि यह मराठी भाषा है, लेकिन सर्च के दौरान ऐसी कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। क्योंकि वाकई अगर ऐसा हुआ होता तो फिर जाहिर सी बात है कि अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होती। सर्च के दौरान ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं मिली। इसके अलावा वीडियो में कहीं पर भी कंगना पर चप्पल फेंकते हुए किसी भी शख्स को देखा भी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर कंगना पर हमला हुआ होता तो वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी एक्शन में जरूर नजर आते। फैक्ट चेक टीम ने कंगना रनौत के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी खंगाला, लेकिन वहां पर भी ऐसी कोई पोस्ट हमें नहीं मिली। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही था कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की तहकीकात में जुटी। सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि हाल फिलहाल में अगर ऐसी कोई घटना हुई होती तो वो सुर्खियों में जरूर होती। इसके बाद हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक इंस्टाग्राम अकाउंट मिला। 18 अगस्त को इस अकाउंट से वायरल वीडियो शेयर किया गया था। जानकारी के अनुसार ये वीडियो मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर का है जहां कंगना गई थी। एक वेबसाइट पर 18 अगस्त को छपी एक रिपोर्ट में कंगना के मंदिर जाने की क्लिप भी मिली। इस रिपोर्ट के अनुसार कंगना 18 अगस्त को सिद्धि विनायक और मुंबा देवी के मंदिर पहुंची। खबर में हमें कहीं भी वायरल दावे जैसा कोई जिक्र नहीं मिला। कंगना के इंस्टाग्राम हैंडल से भी 18 अगस्त को कुछ तस्वीरों को पोस्ट करते हुए जानकारी दी गई थी कि वो मुंबई में सिद्धि विनायक और मुंबा देवी मंदिर गई। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वायरल वीडियो मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर का है जहां वो 18 अगस्त को गई थी। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे।
1: ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये कह रहे हैं कि ईरान की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है जिसे ईरान ने समंदर में उतार दिया है, लेकिन सच्चाई क्या है देखिए इस रिपोर्ट में।
2: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। अमेरिका ने ईरान पर भारी वित्तीय शिकंजा कसने और उसकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह अलग थलग करने की चेतावनी दी है, जिसके जवाब में ईरान ने होर्मुज में सख्ती बढ़ा दी है। दोनों देश झुकने को तैयार नहीं है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक पनडुब्बी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पनडुब्बी पानी में धीरे धीरे उतर रही है। इस वीडियो के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि ये ईरान की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। इसी दावे के साथ सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पनडुब्बी लॉन्च की तस्वीरें धड़ल्ले से शेयर की जा रही हैं। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इसे लगातार शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच कुछ लोग वीडियो के जरिए ये कह रहे हैं कि ये ईरान की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है जिसे अब समंदर में उतार दिया गया है। अब अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले ऐसा सर्च किया। इस दौरान हमें जानकारी मिली कि ईरान के पास कोई भी परमाणु पनडुब्बी नहीं है। ईरान की नौसेना के पास केवल गदीर और फतेह श्रेणी की छोटी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं। ऐसे में हमें दावे की सच्चाई पर संदेह हुआ। हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही था कि अगर दावा सच है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। देखिए सच और झूठ क्या है।
2: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई भी विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। इसके बाद हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक इंस्टाग्राम पोस्ट मिली जिसमें हमें वायरल हो रहा वीडियो पोस्ट के जरिए ये पता चला कि ये जेएस राइगेई अटैक सबमरीन है जिसे जापान के मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के लिए बनाया गया है। सर्च के दौरान हमें एक यूट्यूब चैनल पर वायरल हो रहे क्लिप का लंबा वर्जन मिला। यहाँ पर इसे 17 अक्टूबर 2023 को शेयर किया गया था। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के मुताबिक इस सबमरीन को जापान की कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज ने जापानी मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के लिए $470 मिलियन में बनाया था। एक आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक इस पनडुब्बी को 6 मार्च 2025 को कोबे शिपयार्ड में आयोजित एक समारोह में आधिकारिक तौर पर JMSDF में शामिल किया गया। शामिल किए जाने के बाद इसे हिरोशिमा प्रांत के कुरे नेवल बेस पर सबमरीन फ्लोटिला 1 के सबमरीन डिवीजन 1 में तैनात किया गया। इसी तरह हमारी पड़ताल में हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। ये वीडियो अक्टूबर 2023 का है और इसमें जापान को JS राइगेई लॉन्च करते हुए दिखाया गया है जो जापान मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के लिए बनाई गई एक अटैक सबमरीन है। रिधीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
1: वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आइए आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
7: ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें भारत का एक जाबाज जवान बर्फीली वादियों में देश की रक्षा के साथ साथ अपने अटूट भक्ति का उदाहरण पेश करता नजर आ रहा है। इस नजारे को देखकर हर कोई जवान की तारीफ कर रहा है। वीडियो में चारों तरफ बर्फ की मोटी सफेद चादर बिछी है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं। ऐसे कड़ाके की मौसम में जहां आम लोगों के लिए खड़े रहना भी मुश्किल होता है, वहीं इस जवान ने बड़ी ही कुशलता और श्रद्धा से बर्फ को जोड़कर एक सुंदर और व्यवस्थित शिवलिंग का निर्माण किया। जवान ने बेहद बारीक नक्काशी के साथ बर्फ के शिवलिंग को अंतिम रूप दिया और पूरी श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर भगवान शिव का नमन और पूजन किया। यूजर्स इस वीडियो पर खूब प्यार जता रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब चर्चा में है। यहाँ एक बच्चे की मासूमियत और छुपकर खाने वाला अंदाज इतना क्यूट है कि इंटरनेट यूजर्स इसे बार बार देख रहे हैं। वायरल वीडियो में स्कूल की असेंबली में प्रार्थना चल रही है। सभी बच्चे आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं। तभी एक बच्चा मौका देखकर धीरे से अपनी चॉकलेट निकालता है और आंखें बंद कर खाने लगता है। मानो उसे लग रहा हो कि अगर उसने आंख बंद कर ली तो उसे कोई और देख नहीं पाएगा। वीडियो में बच्चे की मासूमियत देखने लायक है। वो बगैर किसी टेंशन के आराम से चॉकलेट खाता दिखता है, जबकि आसपास के बच्चे प्रार्थना में लगे हैं। वहीं बच्चा अपनी चॉकलेट खत्म कर उसका कचरा भी जेब में ही रख लेता है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद प्यारी बच्ची का वीडियो तेजी से वायरल है, जिसमें बच्ची अपने छोटे छोटे हाथों में गिटार थामे दिलकश अंदाज में नजर आ रही है। इस दौरान वो अपनी मधुर आवाज में इतना प्यारा गाना गा रही है कि उसने हर किसी का दिल जीत लिया। गिटार पकड़ने का उसका अंदाज हो, गाने की धुन पर हरकत करती उसकी नन्ही उंगलियां हो, हर किसी का ध्यान ये बच्ची अपनी तरफ खींचती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, उसके एक्सप्रेशन भी दिल जीत ले रहे हैं। भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी का हिस्सा भी है। यहाँ गली मोहल्ले से लेकर स्कूल के मैदान तक, जहाँ थोड़ी सी भी जगह मिल जाए, बच्चे और बड़े बल्ला बॉल लेकर पहुँच जाते हैं। कई बार तो क्रिकेट खेलने के लिए मैदान की भी जरूरत नहीं पड़ती। सड़क हो, छत हो या घर के बाहर की छोटी सी जगह, क्रिकेट का जुनून कहीं भी शुरू हो जाता है। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को ही देख लीजिए, जहां कुछ लड़कों ने तालाब के पास ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। पानी के बीच खड़े होकर लड़कों ने बॉलिंग से लेकर बैटिंग तक खूब धमाल मचाया। उनका खेल देखकर लोग भी वीडियो का मजा लेने लगे। हालांकि इस पूरे मुकाबले में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा आखिरी कैच ने, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। कमाई का असली मकसद सिर्फ घर चलाना या बिल भरना नहीं, बल्कि अपने परिवार के चेहरों पर मुस्कान लाना भी होता है। पश्चिम बंगाल के एक स्विगी डिलीवरी बॉय ने इस बात को साबित भी कर दिखाया।
8: दीदा से बात करो, तुम्हें क्या मन खुशी?
7: दिन रात मेहनत कर और थोड़े थोड़े पैसे जोड़ कर इस राइडर ने अपनी माँ और दादी के लिए नया टीवी खरीदा। जब उसने ये सरप्राइज अपने परिवार को दिया तो उस भावुक पल का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अक्सर अपने अनोखे और नए विचारों के लिए जाना जाता है। इस बार इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक बेहद मनोरंजक और अलग रास्ता चुना है। पलासिया चौराहे पर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों और सिग्नल जंप करने वालों को जागरूक करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने गोरिल्ला कॉस्ट्यूम पहनाकर एक शख्स को सड़क पर उतारा। ये गोरिल्ला गाड़ियों को जेब्रा क्रॉसिंग से पीछे धकेलता है, लोगों को सड़क पार कराता है और ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर ट्रैफिक संभालता है। वीडियो में जब एक कार चालक सिग्नल पर रुकने की बजाय आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो ये विशालकाय गोरिल्ला दौड़कर कार के सामने आ जाता है और हाथों से धक्का देकर कार को पीछे धकेलता है। गोरिल्ला का ये तरीका देखकर ड्राइवर भी मुस्कुराते हुए गाड़ी रोक लेता है। इस वीडियो में सिर्फ गाड़ियों को रोकना ही नहीं बल्कि गोरिल्ला का फ्रेंडली अंदाज भी दिखा। वो सड़क पार कर रहे राहगीरों का हाथ पकड़कर उन्हें सुरक्षित जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करवाता नजर आता है। साथ ही वो ऑन ड्यूटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर से हाथ मिलाता और उनके साथ तालमेल बिठाकर ट्रैफिक कंट्रोल करने में मदद करता भी दिखा। इंदौर पुलिस के इस फनी और क्रिएटिव अभियान को सोशल मीडिया पर खूब सराहना मिल रही है। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो तेजी से वायरल है, जिसे देख लोग हैरान भी हैं और बाबा की तारीफ भी कर रहे हैं।
9: 83
7: वीडियो में एक बुजुर्ग बाबा एक विदेशी टूरिस्ट से फराटेदार अंग्रेजी में बात करते दिख रहे हैं। बाबा जिस आत्मविश्वास के साथ अंग्रेजी बोलते हैं, उसे देख विदेशी टूरिस्ट भी मुस्कुराता हुआ दिख रहा है।
9: डोंट वरी, गॉड इज ऑलवेज प्रोटेक्ट, जय हनुमान।
10: Everything here is free. What you're getting?
7: Air time. बैंकॉक की सड़कों पर दौड़ती एक अनोखी टैक्सी इन दिनों इंटरनेट पर खूब धमाल मचा रही है। इस कैब की खासियत यह है कि इसमें कदम रखते ही आपको किसी सुपरमार्केट जैसा एहसास होता है। ड्राइवर ने यात्रियों की सुविधा के लिए कार को एक मिनी मार्ट का रूप दे दिया है, जहां जरूरत का हर सामान बिल्कुल फ्री मिलता है। थाईलैंड की मशहूर मेहमान नवाजी को दर्शाते इस खूबसूरत पहल की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। वीडियो में टैक्सी की पिछली और आगे की सीटों पर हर छोटी बड़ी जरूरत की चीजें करीने से सजा कर रखी हैं। सफर के दौरान यात्रियों को मोजे, टूथब्रश, शीशा, बेबी पाउडर और यहाँ तक कि बिल्लियों का खाना भी आसानी से मिल जाता है। प्यास या थकान मिटाने के लिए पानी की बॉटल्स और कॉफी भी यहाँ फ्री उपलब्ध है। ये कोई एक दिन का पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। ये थाई ड्राइवर पिछले 10 सालों से लगातार अपनी टैक्सी में मुफ्त सामान की सेवा दे रहा है। खास बात यह है कि वो यात्रियों से सामान के बदले एक भी रुपया नहीं लेता। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो ने लोगों को खूब आकर्षित किया है। इसमें विदेशी धरती पर भारतीय संस्कृति की खूबसूरत झलक देखने को मिलती है। पारंपरिक अंदाज और लोक संगीत के इस अनोखे मेल ने इंटरनेट यूजर्स को हैरान करने के साथ साथ काफी खुश भी किया हुआ है। वीडियो में कुछ अमेरिकी महिलाएं पारंपरिक राजस्थानी लुक में दिख रही हैं। उन्होंने रंग बिरंगे लहंगा चोली पहने हैं, सिर पर चुनरी भी सजा रखी है। जैसे ही राजस्थानी लोकगीत बजता है, ये महिलाएं पूरे उत्साह के साथ डांस करना शुरू कर देती हैं। न्यूयॉर्क की व्यस्त सड़कों और आसपास मौजूद लोगों के बीच अचानक राजस्थानी लोक संगीत सुनाई देना अपने आप में काफी दिलचस्प नजारा है। इसके बाद जब महिलाओं ने गाने के साथ राजस्थानी डांस स्टेप्स किए, तो वहां से गुजर रहे लोगों का ध्यान भी उनकी तरफ खींच गया।

इस गजराज का पानी पीने का तरीका इतना अनोखा है कि आप अपनी हंसी और हैरानी रोक नहीं पाएंगे। गजराज का ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वीडियो में एक पेड़ के बगल में लगा नल खुला है और उससे पानी बह रहा है। आमतौर पर कोई भी जानवर ऐसे में सीधे मुंह लगाता, लेकिन ये हाथी बेहद चतुर निकला। उसने अपनी लंबी सूंड के निचले हिस्से को घुमाकर बिल्कुल एक कटोरी की तरह बना लिया। नल से गिरता पानी उसकी सूंड के उसी हिस्से में जमा होने लगता है और जैसे ही सूंड में काफी पानी भर जाता है, वो उसे सीधे अपने मुंह में डालकर गटक लेता है। एक बार पानी पीने के बाद जब उसकी प्यास नहीं बुझती तो वो दोबारा अपनी सूंड नल के नीचे लगा देता है। उसकी ये मासूमियत और गजब की सूझबूझ देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
3: सावन मास में ठाकुर जी की भक्ति के रंग से पूरा ब्रज क्षेत्र सराबोर रहता है। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में इस पूरे मास में अलग अलग घटाओं का आयोजन होता है और उसी कड़ी में मंगलवार शाम को लहरिया घटा का दिव्य आयोजन हुआ। इस विशेष अवसर पर मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा।

0: रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर मंदिर, दिव्य सजावट, आकर्षक झूलों से झूलते ठाकुर जी और भाव विभोर श्रद्धालु। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर की ये छटा लहरिया घटा की है। द्वारकाधीश मंदिर में मंगलवार की शाम लहरिया घटा सजाई गई और भगवान द्वारकाधीश ने लहरिया घटा में भक्तों को दर्शन दिए। लहरिया घटा के लिए पूरे मंदिर परिसर को सतरंगी लहरिया कपड़ों से सजाया गया। अलग अलग तरह की रंग बिरंगी रोशनी और फूल पत्तियों से मंदिर को आकर्षक रूप दिया गया। इस भव्य सजावट के बीच लगाए गए 9 हिंडोले श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध करते रहे।
1: ये द्वारकाधीश मंदिर में 9 झूले हैं, जो है सोने के और चांदी के भी। तो ये देखकर और झांकी जो सजी है उसको देखकर बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है।
2: आज के दिन लहरिया घटा है अपने द्वारकाधीश के मंदिर में। तो 3 सोने चांदी के झूले हैं, 3 लकड़ी के झूले हैं और 3 फल फूलों के झूले हैं। मनोहर दर्शन है आज के, अद्भुत, जिसका वर्णन नहीं कर सकते।
3: एकदम आनंद आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है यहाँ पे। राधे राधे।
0: इस लहरिया घटा के आयोजन के लिए लाए गए फब्बारों से लेकर गायों की सीनरी, मोर की खूबसूरत आकृति, बंदरों के कटआउट हर किसी को आकर्षित कर रहे थे।
4: श्रावण मास समाप्त हो रहा है तो इसलिए जो लहरिया घटा है वो मंदिर प्रांगण में सजाई गई है। पूरे मंदिर को दिव्यता और भव्यता के साथ सजाया गया है। 9 झूले हैं आज और 9 झूला में ठाकुर जी अपने ग्वाल ग्वालों के साथ, अपने परिवार के साथ विराज कर झूला झूल रहे हैं। और जो तो स्वर्ण हिडोरा लगा हुआ है और रजत हिडोरा लगा हुआ है, तो सोने के हिडोले में भी ठाकुर जी झूल रहे हैं और उधर लकड़ी के हिडोले में भी ठाकुर जी झूल रहे हैं। तो ठाकुर जी का जो उत्सव है ना सावन का पूरा, वो बड़ा अद्भुत और अनोखा है, क्योंकि ठाकुर जी बाल रूप में यहाँ विराजते हैं। तो बाल रूप में बालक को मंदिर परिसर से बाहर नहीं ले जाया जाता, वो मंदिर में ही रखा जाता है। सावन में ब्रज में बड़े श्रद्धालु आते हैं और भगवान के दर्शन कर जो झूला उत्सव है उसको मनाते हैं।
0: पूरे सावन माह में मंदिर में 9 तरह की घटाएं सजाई जाती है। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में जिस दिन सावन मास प्रारंभ होता है उस दिन ठाकुर जी को स्वर्ण और रजत हिंडोले में झुलाया जाता है। झूला झुलाने की ये परंपरा पूरे ब्रजमंडल में है। द्वारकाधीश मंदिर में लहरिया घटा की छटा देखने हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर में विराजमान ठाकुर जी बाल स्वरूप में है, इसीलिए उन्हें बाहर नहीं ले जाया जाता, लेकिन उन्हें बाहर के मौसम की अनुभूति कराने के लिए सावन मास में काली घटा, गुलाबी घटा, लहरिया घटा, सफेद घटा जैसी 9 घटाओं का आयोजन होता है। इस परंपरा के तहत अलग अलग स्वरूपों और सजावट के माध्यम से ठाकुर जी के दर्शन कराए जाते हैं।
5: बाहर के मौसम की अनुभूति कराने के लिए घटाओं के आयोजन होते हैं, क्योंकि आज बाहर का मौसम गुलाबी है तो गुलाबी घटा का आयोजन है, आज बाहर का मौसम सफ़ेद हो रहा है तो वो सबसे लास्ट घटा होती है सफ़ेद वाली घटा, काली घटा बीच में होती है, बड़ी फेमस घटा होती है। तो इस प्रकार से लगभग 9 घटाओं का आयोजन ठाकुर मंदिर द्वारकाधीश में होता है। और श्रावण मास जब तक रहता है तब तक ठाकुर जी हिडोले में प्रतिदिन 5:10 से 5:40 झूलते हैं। घटाओं का जो टाइमिंग है वो सायंकाल 7 बजे से 8 बजे तक रहता है, और एक दिन छोड़ के, क्योंकि तिथि घड़ी पल और नक्षत्र के हिसाब से सभी घटाओं के आयोजन होते हैं। पूर्णमासी जैसे 28 को है तो 27 को सफ़ेद घटा का आयोजन होगा, इससे यह माना जाएगा बाहर का मौसम बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है और श्रावण मास समाप्त हो गया।
0: लहरिया घटा के अनुरूप नीले पीले रंग की लहरिया छटा से की गई दिव्य सजावट के बीच ठाकुर जी को झूला झूलाते देखकर श्रद्धालु भक्ति के रंग में पूरी तरह डूब गए। एक सुर में भक्त गोविंद गोपाल की जय जय करने के अलावा अपने अपने अंदाज में ठाकुर जी के प्रति अपने भक्ति भाव को प्रदर्शित करते दिखे।
6: तेरी कृपा को है खेल अनुपम, बाकी पार के पाई भी को कौन सोचारो। लहरिया घटा और 9 झूले, लाला झूलन पधारो झोंके आए बदला, लाला झूलन पधारो।
0: मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
8: नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद मिशन जिंदगी तेज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से की बातचीत, भारत की ओर से भेजा जा रहा है राहत सामान, उत्तर प्रदेश बिहार में प्रशासन अलर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने रच दिया नया कीर्तिमान। नई बसों के मामलों में देश में उत्तर प्रदेश नंबर वन। महिलाओं के लिए पैनिक बटन के हेल्पलाइन की भी कनेक्टिविटी। देशभर में रक्षाबंधन की तैयारियां तेज। वाराणसी में बनाई गई खास एआई राखी। रायपुर में सुरक्षा बल के जवानों को बांधी गई राखियां। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज। मुंबई के महाराजा नाम से मशहूर करीब 47 फीट के बप्पा का आगमन। नरसिंह रूप में विराजमान है गणपति। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज। अब मंदिर में मिलेगी निःशुल्क शीघ्र दर्शन की सुविधा। प्रशासन के फैसले से लोगों को मिली खुशी।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात रंग, राशि और राखी के संयोग की। राखी क्या है? एक डोर है, प्रेम और दोस्ती के धागों से बुनी हुई। और ये प्यारा सा त्योहार उसी रिश्ते का तो प्रतीक है। तभी तो रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई पर प्रेम से कोई एक धागा भी बांध देना काफी होता है। और जहां तक बात है गिफ्ट की, तो बहन के लिए भाई का प्यार और साथ ही सबसे बड़ा उपहार है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कुछ खास रंगों की राखी इस रिश्ते में स्नेह के रंगों को और गहरा कर सकती है। ज्योतिष विज्ञान के मुताबिक राखी के दिन राशि के मुताबिक रंगों की राखी भाई की कलाई पर बांधना उनके जीवन में शुभता और सौभाग्य ला सकता है। तो वहीं अगर बहना के लिए उपहार उसकी राशि के अनुसार चुना जाए तो उसके जीवन में मंगल और सौभाग्य की बरसात हो सकती है। तो चलिए आइए ज्योतिषाचार्य से जान लेते हैं कि बहनें अलग अलग राशियों के आधार पर अपने भाइयों को कौन कौन सी राखी बांध सकती हैं और भाई अपने बहन को ढेर सारे प्यार के साथ और कौन सा उपहार दे सकते हैं।
1: बात करते हैं कि राशि के अनुसार आप अपने भाई को कौन से रंग की राखी बांध सकते हैं और भाई अपनी बहनों को राशि के अनुसार क्या गिफ्ट दे सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें लाल या मैरून कलर की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन मेष राशि की है तो आप उन्हें लाल रंग के कपड़े गिफ्ट कर सकते हैं। आप उन्हें स्पोर्ट्स एक्सेसरीज गिफ्ट कर सकते हैं, रेड कलर का हैंडबैग, मैरून कलर का हैंडबैग या कोई फिटनेस रिलेटेड आइटम आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। बात करेंगे वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें पेस्टल शेड की राखी, सिल्वर कलर की या पिंक कलर की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन वृषभ राशि की है तो आप उन्हें पेस्टल शेड के कपड़े, परफ्यूम, इत्र या फिर कॉस्मेटिक आइटम्स आप अपनी बहन को गिफ्ट कर सकते हैं। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप अपने भाई को हरे रंग की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन मिथुन राशि की है तो आप उन्हें उनकी राशि के अनुसार ग्रीन एमरल्ड दे सकते हैं। आप उन्हें बुक्स गिफ्ट कर सकते हैं, आप उन्हें गैजेट्स गिफ्ट कर सकते हैं या फिर उन्हें ग्रीन कलर के कपड़े भी गिफ्ट कर सकते हैं।
0: यानी भाई बहन इन उपायों को अपनाकर रिश्तों में और मिठास खोल सकते हैं। बाकी की राशि वाले भाई बहनों के लिए क्या कुछ उपाय हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं वो अनोखी राखियां जिन्हें संसार की सबसे बड़ी राखी बताया जा रहा है। ये राखियां प्रेम और आस्था के धागों से बुनी गई हैं। श्रद्धालुओं ने अपने हाथों से इन्हें अपने आराध्य के लिए बनाया है और तैयार किया है।

0: हर साल जाते जाते सावन का महीना हमारे लिए प्रेम के उस पर्व की सौगात छोड़ जाता है जो भाई बहन के स्नेह और लगाव का सबसे बड़ा पर्व है। सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को आने वाला रक्षाबंधन पर्व सनातन धर्म का बेहद खास त्योहार है। वो त्योहार जहां बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधकर उसके आयुष्मान होने और उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं, तो वहीं भाई भी अपनी लाडली बहन की रक्षा और हर हाल में उसका साथ निभाने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर समर्पण और शुभाशीष का कुछ ऐसा ही आदान प्रदान भक्त अपने आराध्य के साथ भी किया करते हैं। तभी तो राखी की तैयारी का असर देश भर के मंदिरों में भी नजर आने लगा है। जगन्नाथपुरी में हर साल की तरह भगवान जगन्नाथ के लिए बेहद खास राखी तैयार की जा रही है। भक्तों का ये दावा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी राखी है जिसे भगवान जगन्नाथ को रक्षाबंधन के दिन अर्पित किया जाएगा। जगन्नाथ मंदिर के खास सेवायत पटारा बिसोई पीढ़ियों से भगवान के लिए राखी बनाने का काम करते आ रहे हैं। अब की बार भी जगन्नाथ प्रभु की ये खास राखी बनकर तैयार है।
1: ये जो राखी, ये दुनिया का सबसे बड़ा राखी है और ये जब महाप्रभु परिधान करेंगे तो दिल से बहुत खुशी मिलती है और ये सब सिर्फ भाग्यवान बहुत खुद को फील होता है। और ये मैं बहुत छोटे से दादाजी के साथ करता आ रहा हूँ। यह जो सेवा है, ये हमारा पीढ़ी पे पीढ़ी सेवा है।
0: जगन्नाथ धाम में हर साल ये परंपरा निभाई जाती है। अब की बार रक्षाबंधन के लिए रेशम के चार रंग वाले धागों को पिरोकर चार विशाल काय राखियां बनाई जा रही हैं। इसके साथ ही सुपारी के पत्तों की विशाल मालाएं भी तैयार हो रही हैं।
2: ये जो राखी जो हम जो बना रहे हैं, ये प्रस्तुत हो रहा है बासुंगा टसर पाट से। ये बासुंगा पाट को हम चार कलर में विभक्त करके लाल और हलूद और नीला सबुज चार कलर में बनाते हैं और इसका साथ में और भी चार सुपारी का माला बनाते हैं। ये एक सुपारी का माला में 54 सुपारी रख के इसके अंदर डाल के इसको फूल की तरह बनाते हैं।
0: श्रावण महीने की अमावस्या से ही राखियां बनाने का काम शुरू हो जाता है। पटारा बिसोई सेवायत 10 से 12 दिनों में इन विशाल राखियों को बनाने का काम पूरा करते हैं। आखिरकार राखी के दिन भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र को ये राखी और मालाएं अर्पित की जाती हैं।
2: ये चार गुआमल और चार राखी महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर के अंदर हम प्रभु जी को देंगे। वो इन्होंने जगन्नाथ जी महाप्रभु दो राखी परिधान करेंगे और बलभद्र महाप्रभु दो राखी परिधान करेंगे। इसका साथ में दो माला भी सुपारी माला भी परिधान करेंगे।

0: रक्षाबंधन से पहले आस्था के रंगों में पगी कुछ ऐसी ही तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर से भी आई हैं। इंदौर में भक्तों ने खजराना गणेश भगवान के लिए दुनिया की सबसे बड़ी राखी बनाने का दावा किया है। रक्षाबंधन के अवसर पर इस बार भगवान खजराना गणेश को 40 इंच बाय 40 इंच की भव्य सनातन राखी अर्पित की जाएगी। पिछले कई सालों से इस मंदिर में खास राखी अर्पित करने की परंपरा रही है। अब की बार खजराना गणेश जी के लिए बनी विशेष राखी में सनातन संस्कृति, राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक संदेशों को समाहित किया गया है।
1: यह 40 बाय 40 इंच की राखी विश्व की सबसे बड़ी राखी है। हम लोग हर साल एक थीम बेस राखी बनाते हैं और वंदे मातरम को जो 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं उसको हमने दर्शाते हुए एक सनातन धर्म पर राखी बनाई है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमने कमल के अंदर विराजित जगन्नाथ जी, और जैसा कि सावन का महीना चल रहा है और बाबा महाकाल ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो बाबा महाकाल, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी सभी हमने इसमें वो किया है। खजराना गणेश जी को यह राखी सिर्फ चिंतामण गणेश जी, महाकालेश्वर, वीर बगीचे, हनुमान मंदिर ऐसे कई मंदिरों में अर्पित की जाएगी।
0: बताया जा रहा है कि इस राखी को 10 से 15 लोगों की टीम ने करीब 2.5 महीनों की मेहनत से तैयार किया है। इसे बनाने में कोलकाता, जयपुर, मुंबई और सूरत से मंगवाई गई विशेष सामग्री का उपयोग किया गया है। भारत की कई समृद्ध हैंडीक्राफ्ट कलाओं की झलक इस राखी पर नजर आ रही है।
1: 10 से 15 लोग मिलके हम ये राखी बनाते हैं और करीबन हमको 1 से 2 महीना लगता है इस राखी को कंप्लीट करने में। और इसमें आप देखें कि सूरत के मोती और जयपुर, कलकत्ता का बारीक काम किया है। पूरा हैंडवर्क की राखी है और हैंडमेड राखी है।
0: ये केवल एक राखी नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान, सांस्कृतिक एकता और धार्मिक चेतना का जीवंत प्रतीक है। जब राखी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ये राखी भगवान खजराना गणेश को अर्पित की जाएगी तो आस्था के भाव के साथ साथ ये राखी देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के दर्शन का माध्यम भी बनेगी। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो अभी हमने आपको बताया था कि मेष से मिथुन राशि वाले भाई बहन अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। अब ये जान लेते हैं कि ज्योतिष के आधार पर कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोग भाई बहन से संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठा सकते हैं।
3: अगर आपके भाई कर्क राशि के हैं तो कर्क राशि वाले भाइयों को आप सिल्वर या व्हाइट कलर की राखी बांध सकते हैं। वहीं भाई अपनी बहनों को जो कि कर्क राशि की हैं उन्हें सिल्वर की कोई आइटम गिफ्ट कर सकते हैं। आप सिल्वर कलर के क्लोथ गिफ्ट कर सकते हैं, पर्ल आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, पर्ल की ज्वेलरी गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें कोई भी ऐसा लिक्विड आइटम जो कि उनकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो, उनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करे, ऐसा आप उन्हें कुछ गिफ्ट कर सकते हैं। बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें ऑरेंज या ब्राइट येलो कलर की राखी जरूर बांधे। और वहीं अगर आपकी बहन सिंह राशि की है तो आप उन्हें गोल्ड के आइटम आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें तांबे की कोई अच्छी सी मूर्ति गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें ऑरेंज या कॉपर शेड के कपड़े गिफ्ट कर सकते हैं जिससे कि उनकी जिंदगी में प्रगति आए। कन्या राशि की यदि हम बात करें तो कन्या राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें हरे या पेस्टल शेड या फिर अर्दी शेड की राखी आप उन्हें बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन कन्या राशि की है तो आप उनको कुछ प्रीमियम प्लानर या फिर डेस्क ऑर्गेनाइजर या फिर कोई स्मार्ट वॉच या फिर ग्रीन कलर के कपड़े या ग्रीन कलर की ज्वेलरी जैसे कि एमरल्ड हो गई, ग्रीन एवेंचुरियन क्रिस्टल हो गया, ये आप अपनी बहनों को गिफ्ट कर सकते हैं।
2: चूंकि भाई बहन के पवित्र रिश्ते का ये पर्व बेहद नजदीक आ गया है, ऐसे में बाजार रक्षाबंधन के त्योहार के लिए पूरी तरह सज चुके हैं। बाजार में एक से बढ़कर एक राखियां बिक रही हैं। रंग बिरंगी राखियों के बीच में इस बार सोने चांदी से बनी राखियों की खूब डिमांड है। अलग अलग डिजाइन और स्टाइल वाली राखियां लोगों को खूब पसंद आ रही हैं। इनमें डायमंड राखी से लेकर हल्के काम वाली गोल्ड राखी का भी क्रेज दिखाई दे रहा है।
4: शुरुआत करेंगे इन प्रीमियम सिल्वर राखी की। और आप देख सकते हैं कि आपको जो है सामने बहुत सारे ऑप्शन जो है राखी के दिखने वाले। तो ये 925 स्टर्लिंग सिल्वर की राखियां हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और इस सीजन में जो है ये खास होने वाली है, वो इसलिए क्योंकि सिर्फ राखी के फेस्टिवल के बाद जो है आप एक धागे की तरह इसको उतार कर नहीं रख सकते, बल्कि आप बाद में भी जो है इसको कैरी कर सकते हैं, एक ब्रेसलेट के तौर पर जो है आप इसको पहन सकते हैं। और पूरे साल जो है इसको आप बहन भाई की जो प्यार की निशानी है उसके साथ जो है इसको कैरी कर सकते। तो ऑप्शंस में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ किस तरीके से आपको सिल्वर के ऑप्शन जो है वो नजर आने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम बच्चों की राखी से शुरू करेंगे क्योंकि बच्चों के लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑप्शन जो है आपको दिखेंगे। शुरुआती मैं इन छोटी छोटी राखियों से करूंगी। आपको दिखेगा कि किस तरीके से बच्चों को कार्टून करेक्टर्स वाली राखियां पसंद होती है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि आपको स्पॉन्ज बॉब की राखी की बात करें या फिर एंग्री बर्ड की राखी की बात करें, आपको बच्चों के लिए हर एक ऑप्शन जो है नजर आने वाले हैं। आप यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको लड़कियों के लिए यूनिकॉर्न वाली राखियां जो है वो दिख जाएगी, आपको मिकी माउस वाली राखियां जो है वो दिख जाएगी, और सभी प्योर सिल्वर में आपको ये राखियां जो है दिखने वाली है। सिल्वर की अगर हम बात करें तो आपको ये वैरायटी दिखने वाली है। अच्छा, अगर इनकी कीमतों की बात करूं तो ये सभी जो जितनी भी धागे वाली राखियां जो आप देख रहे हैं सिल्वर के साथ, इनकी कीमत जो 1000 से सिर्फ 1500 के बीच में आपको नजर आ जाएगी। वही अगर आप कुछ इस स्टाइल के राखियों की बात करें, ये स्पेशली जो ऊपर की राखियां मैं आपको दिखा रही हूँ सिल्वर में, ये भाभियों के लिए राखी है। अगर आपको अपनी भाभी को पहनाना है तो आप इस तरीके का ट्रेडिशनल लुक के साथ आप इनको कुछ ऐसी राखियां जो है पहना सकते हैं कि राखी का त्यौहार भी

0: 4,000 के बीच में जो है पड़ेगी। और भाई बहन के लिए जिस तरीके से कहते हैं कि कपल जो एक राखी होती है भाई भाभी की राखी, वो आपको ये राखियाँ मिल जाएगी कि भाई भाभी भी मेंशन है। तो सिल्वर की हम ऑप्शन दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर अच्छी खासी जो वेराइटी है वो दिखने वाली है, क्योंकि प्रीमियम राखियों की तरफ हर कोई रुख जो है लेता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जब बात सोने की हो तो सोने की चमक के आगे आपको हर कुछ फीका लगता है। तो सोने की आपको मैं वेराइटी दिखा रही हूँ, और उसके साथ ही डायमंड, प्रीमियम डायमंड जो है अमेरिकन डायमंड कट के साथ जो है वो राखियों के ऑप्शन भी आपको दिखने वाले हैं। हालांकि कस्टमाइज आप करवा सकते हैं, लेकिन ये कुछ राखियों के मैं ऑप्शंस आपको दिखा रही हूँ जो कि आपको यहाँ पर नज़र आने वाला है। और सोने की छोटी सी प्लेट आपको बीच में नज़र आ जाएगी। आपको चाहे भगवान गणेश जी की बात करें या फिर ओम के डिज़ाइन की बात करें, एक आपको यहाँ पे आपको माता रानी का डिज़ाइन जो है वो दिख जाएगा। तो और बारीक धागे के साथ, क्योंकि कोई धागे को बहुत ही पवित्र मानता है, तो धागे के साथ इन्होंने गोल्ड को जो है अटैच करने की पूरी तरीके से कोशिश की है। अगर उसके साथ ये भी आप देख सकते हैं कि आपको इसमें काला धागा नज़र आएगा, क्योंकि लोग जो है काला धागा ज़रूर पहनाते ताकि नज़र से जो है वो बचा जा सके। तो गोल्ड की राखियों में कई तरह के डिज़ाइन जो है आपको नज़र आ जाएंगे। कुछ राखी आपको बेहद ही मिनिमल डिज़ाइन के साथ दिखेगी, तो कुछ में आपको इस तरीके का कट जो है वो नज़र आ जाएगा। और ये जितनी भी ये राखियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 22 कैरेट गोल्ड में जो है आपको नज़र आने वाली है। लेकिन जिनका बजट थोड़ा कम है लेकिन त्यौहार भी मनाना है, तो उनके लिए ये नीचे के ऑप्शंस आपको नज़र आ जाएंगे कि ये आपके 14 कैरेट गोल्ड से इनका आपको ये राखियाँ जो है वो उपलब्ध है। इसके अंदर आपको डायमंड कट जो है वो नज़र आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि 14 कैरेट गोल्ड की आपको चेन नज़र आ जाएगी, लेकिन अगर आप बीच में डिज़ाइंस की बात करेंगे तो आपको ये डायमंड में सारे ऑप्शंस जो है वो मिलने वाले हैं।
1: तो राखियों के इन ट्रेंड के बाद अब एक बार फिर से लेकर चलते हैं ज्योतिषाचार्य के पास और जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले भाई बहन इस त्यौहार को खास बनाने के लिए कौन कौन से रंग वाली राखी और सौगात तैयार कर सकते हैं।
2: अगर आपके भाई तुला राशि के हैं तो आप अपने भाइयों को पिंक कलर की या सिल्वर कलर की या फिर रेशम की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहनें तुला राशि की हैं तो तुला राशि वाली बहनों को आप सिल्क की साड़ी, सिल्क का सूट दे सकते हैं, कुछ कॉस्मेटिक आइटम दे सकते हैं, कुछ सिल्वर की ज्वेलरी या फिर आप डायमंड या अमेरिकन डायमंड की ज्वेलरी आप उन्हें दे सकते हैं, या फिर आप उन्हें रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल भी दे सकते हैं जिससे आपकी बहनों की जिंदगी में खुशियां भर जाएंगी। वहीं बात करते हैं वृश्चिक राशि की, अगर आपके भाई हैं तो आप अपने भाई को रेड कलर, ऑरेंज कलर या फिर मरून कलर की आप उन्हें राखी दे सकते हैं। और वहीं अगर आपकी बहन वृश्चिक राशि की है तो आप उन्हें रेड मैरून कलर की ज्वेलरी आइटम दे सकते हैं या कपड़े दे सकते हैं, साथ ही आप उन्हें कॉपर शेड का कोई ड्रेस मटेरियल भी लेके दे सकते हैं, आप उन्हें तांबे के बर्तन लेके दे सकते हैं, और साथ ही आप उन्हें रेड कोरल ज्वेलरी जो है उसकी भी ज्वेलरी आप उन्हें दे सकते हैं, या फिर रेड जैस्पर क्रिस्टल भी आप अपनी बहनों को गिफ्ट कर सकते हैं। वही बात करते हैं धनु राशि की कि अगर आपके भाई धनु राशि के हैं तो आप उन्हें पीले रंग की राखी जरूर बांधे या फिर गोल्डन कलर की राखी बांधे। वहीं अगर आपकी बहन धनु राशि की है तो आप उन्हें येलो कलर के कपड़े या गिफ्ट आइटम्स, येलो मिठाई, येलो कलर का कुछ बैग या गोल्डन बैग, या फिर आप उन्हें गोल्ड की ज्वेलरी, या फिर आप उन्हें पंच धातु की कोई ज्वेलरी, या फिर आप उन्हें जो है येलो सफायर या येलो सिट्रीन क्रिस्टल आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं।
1: चलिए अब हम आपको राशि के हिसाब से परफेक्ट राखियां तो बता ही रहे हैं, साथ ही आपको ये भी दिखा रहे हैं कि आजकल ट्रेंडिंग राखियां कौन कौन सी हैं। दरअसल बदलते वक्त के साथ राखियां भी ट्रेंडी हो चुकी हैं। राखी को लेकर भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। मसलन आगरा में रक्षाबंधन के लिए पत्थरों से खास राखियां बनाई जा रही हैं। ये उसी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कारीगर इन राखियों को बनाने में दिन रात जुटे हैं। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन राखियों को तैयार करने में मेहनत भी काफी लग रही है। ये राखियां यूनिक तो हैं ही, आकर्षक भी हैं। रंग बिरंगी पत्थर की ये राखियां इतनी खूबसूरत हैं कि किसी का भी मन इन्हें खरीदने के लिए मचल उठेगा। इसी तरह अलग अलग स्टाइल की राखियां शहर शहर इन दिनों नजर आ रही हैं। शहर शहर राखी की दुकानें सजी हुई हैं, जहां पारंपरिक से लेकर मॉडर्न डिजाइन की तमाम राखियां उपलब्ध हैं। बच्चों और बड़ों सभी को ख्याल में रखकर अलग अलग राखियां डिजाइन की गई हैं। महाराष्ट्र का अकोला हो या राजस्थान का अलवर, राखी के लिए हमेशा से मशहूर रहे बाजार इन दिनों खरीदारों के साथ गुलजार हैं।

0: देखकर देश भर के बाजार गुलजार हैं। यहाँ एक से बढ़कर एक राखी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के अकोला के बाजार भी रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर सजे हुए हैं। अपने भाइयों के लिए राखी पसंद करने दुकानों पर बहनों की भीड़ जुट रही है। यहाँ की दुकानों पर पारंपरिक राखियों से लेकर मॉडर्न डिजाइन वाली राखियाँ मौजूद हैं।
1: रक्षाबंधन के त्योहार के लिए जो है बाजारों में जो है दुकान यहाँ पर लग चुके हैं राखियों के। और ये जो राखी है ये जो है मोतियों की राखी है, कोई रुद्राक्ष वाली है, कोई माला वाली यहाँ पर राखी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये लुम्बी राखी इसे कहा जाता है। ये सुंदर राखियाँ जो है वो ये भैया भाभी की राखी इसे कहा जाता है। और इस तरीके के अलग अलग वेराइटी जो है, देखिए ये बैंगल के साथ ये राखी इस तरीके की दी है। और खासकर यहाँ देखिए जो है एक कमल के फूल पर ये जो राखी है ये बहुत ही अच्छी इस वक्त की ट्रेंडिंग है।
0: भाई भाभी के लिए कपल राखी तो बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली राखियाँ, इन सब के अलावा डायमंड लुक वाली राखी, रिंग राखी और ज्वेलरी डिजाइन की राखियाँ भी दुकानों में मिल रही हैं। कोई बहन अपने भाई के लिए राखी पसंद कर रही है तो किसी ने खरीद भी ली है।
2: जो अच्छे से अच्छी राखी मिलेंगी वो ले लेंगे।
3: मैंने अपने भाई के लिए बहुत हीरे जैसी राखी ली है, आप देख सकते हैं बहुत शानदार हीरा लगा हुआ है। मेरा भाई भी हीरे जैसा ही है, मुझे बहुत प्यार करता है, मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा और भाई का रिश्ता बहुत ही अनमोल है मेरे लिए।
0: अलग अलग डिजाइन के हिसाब से राखियों की कीमत भी अलग अलग है।
4: 5 रुपए से लेके तो 500 रुपए तक की अवेलेबल है। 500-400 रुपए वाला माल था वो सबसे पहले खत्म हो जाता है। हैवी रेंज की राखी के ट्रेड डिमांड सबसे ज्यादा थी। अब की बार स्टोन डायमंड की राखी इसकी डिमांड हर साल रहती है, इस साल कुछ ज्यादा ही थी। और कार्टून की राखी की विशेष डिमांड है ये बार। लाइट के स्पिनर कार्टून की राखी में इस टाइप की राखी सबसे ज्यादा चल रही है।
0: अकोला से लेकर अलवर तक में राखियों की दुकानें सजी हुई है। राजस्थान के अलवर की राखियों की डिमांड विदेश तक में है। हजारों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कारोबार से जुड़े रहते हैं। यहाँ की राखियाँ देखने में सुंदर होने के साथ ही सस्ती भी मिलती है।
5: एक गोदाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर तरह तरह की राखियाँ हैं। मैं दिखाना चाहूंगा ये कार्टून कैरेक्टर की राखियाँ हैं। ये राखियों के साथ ही इरेजर का भी काम करती हैं। छोटे बच्चों को ये राखियाँ खास पसंद आ रही हैं, जिसमें अलग अलग तरह के डिजाइंस, एस्ट्रोनॉट तरह के जो कार्टून कैरेक्टर होते हैं उन कैरेक्टर के रूप में इनको तैयार किया गया है। और इन राखियों को रक्षाबंधन के बाद बच्चे अपने बैग, स्कूल बैग में भी काम में ले सकते हैं। इरेजर का ये काम करेंगी। इसके अलावा तरह तरह की राखियां कार्टून कैरेक्टर के रूप में, लाइट वाली राखियां, म्यूजिक वाली राखियों की डिमांड सबसे ज्यादा है।
0: यहाँ के बाजार में 1 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की अलग अलग तरह की आकर्षक राखियां मिल रही हैं। इस बार खासकर बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर, लाइटिंग और म्यूजिक के साथ ही पतली डोरे वाली राखियों की डिमांड सबसे ज्यादा है।
6: हमारे पास सब तरह की वैरायटी है, फैंसी राखियां भी हैं, बच्चों के लिए एक से एक स्पेशल आइटम बनाए हुए हैं हमने। इस बार बच्चों के लाइटिंग में जैसे ये सब लाइटिंग वाली आइटम है, ये देखिए इस तरह की लाइटिंग वाली आइटम है, ये छोटे बच्चों की आइटम है सारी, ये सब म्यूजिकल लाइट बच्चों के साथ में लाइट वाली आइटम आएगी इस तरीके से। ये पर्स वाली आइटम है, जैसे बच्चों के बेल्ट मारने वाला होता है, इसके अंदर बच्चों के टॉयज वगैरह सब कुछ मौजूद है इसके अंदर। ये वाली सब म्यूजिकल लाइट के साथ है, ट्यूनिंग लाइटिंग के साथ आ रहा है अपना। इस तरह की आइटम बच्चों के छोटे करेक्टर वगैरह बहुत सारी आइटम है। मतलब
0: यहाँ कई बड़े राखी व्यापारी है जो देश विदेश में राखियाँ सप्लाई करते हैं।
7: इस साल हमने करीब 50,000 से ज्यादा डिजाइन बनाए हैं और सप्लाई ऑल ओवर इंडिया तो है ही, और अवार्ड में भी हो रही है, करीब 30-35 कंट्रीज में माल जा रहा है।
0: यहाँ रक्षाबंधन के पर्व को लेकर सजी दुकानों में बहन अपने भाइयों के लिए राखी खरीदने लगातार पहुँच रही हैं।
8: राखियों के इतने डिजाइन मिलते हैं शायद कहीं भी पॉसिबल नहीं है, अलवर छोड़ो इंडिया छोड़ो।
9: तो चलिए रक्षाबंधन के त्यौहार से जुड़ी हुई ऐसी ही कुछ और तस्वीरें भी लगातार जीएनटी पर आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल आज की इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।

0: भी संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: रक्षाबंधन पर देश के कई राज्यों में बहनों के लिए उपहार का ऐलान किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया के जरिए 3 बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। इसके मुताबिक पुलिस दीदी यानी अभयता ब्रिगेड के लिए 4,700 स्कूटर और मोटरसाइकिल का लोकार्पण और फ्लैग ऑफ किया जाएगा। इन वाहनों का इस्तेमाल स्कूल और कॉलेज जाने वाली छात्राओं की सुरक्षा और उनके संरक्षण के लिए किया जाएगा। छात्राओं को 10,000 रुपए की PhD फेलोशिप भी मिलेगी। करीब 1,000 छात्राओं को 4 साल तक ये फेलोशिप दी जाएगी। कारोबार और स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना की भी शुरुआत की जाएगी। देखिए, इस योजना के तहत 50,000 से 2,00,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। और इन सबके अलावा रक्षाबंधन के अवसर पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से 27 और 28 अगस्त को महिलाओं और छात्राओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा भी मिलेगी। यानी रक्षाबंधन पर बिहार की
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
1: नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद मिशन जिंदगी तेज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से की बातचीत। भारत की ओर से भेजा जा रहा है राहत सामान, उत्तर प्रदेश बिहार में प्रशासन अलर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने रच दिया नया कीर्तिमान। नई बसों के मामलों में देश में उत्तर प्रदेश नंबर वन। महिलाओं के लिए पैनिक बटन के हेल्पलाइन की भी कनेक्टिविटी। देश भर में रक्षाबंधन की तैयारियां तेज। वाराणसी में बनाई गई खास एआई राखी। रायपुर में सुरक्षा बल के जवानों को बांधी गई राखियां। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज। मुंबई के महाराजा नाम से मशहूर करीब 47 फीट के बप्पा का आगमन। नरसिंह रूप में विराजमान है गणपति। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज। अब मंदिर में मिलेगी निःशुल्क शीघ्र दर्शन की सुविधा। प्रशासन के फैसले से लोगों को में खुशी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं, आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है, और लोग बिना जांचे परखे ने सच

0: मान लेते हैं और इन्हें आगे शेयर कर देते हैं। यही शुरू होती है अफवाहों की आंधी, लेकिन फैक्ट चेक के जरिए हम सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली रेखा को साफ करते हैं और खबरों की पड़ताल करते हैं। सही और सच्ची खबर हम आप तक लेकर आते हैं। ऐसी दो खबरों की पड़ताल आज हम करने जा रहे हैं, जिसमें आज सबसे पहले वायरल हो रहे उस दावे की सच्चाई की पड़ताल हम करेंगे, जिसके जरिए कहा यह जा रहा है कि सांसद कंगना रनौत पर दूसरी बार हमला हुआ है, जेनजी पर विवादित टिप्पणी करने के बाद उन पर चप्पल फेंकी गई। क्या है सच्चाई, आगे जानिए। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो के से जुड़ी होगी, जिसके जरिए कहा जा रहा है कि ईरान की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी तैयार है, जिसे ईरान ने समंदर में उतार दिया है। क्या है इसकी सच्चाई, आगे बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
0: मीडिया पर एक्ट्रेस बीजेपी सांसद कंगना रनौत का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए लोग कह रहे हैं कि जेनजी पर विवादित टिप्पणी के बाद उन पर चप्पल फेंकी गई है, हमला किया गया है, लेकिन इस हमले की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती ये रिपोर्ट देखिए।

0: हिमाचल प्रदेश की मंडी से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद अभिनेत्री कंगना रनौत ने हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले हुए छात्र आंदोलन के दौरान इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा के लिए जेनजी को गटर जनरेशन कहा था। इस बयान के बाद काफी हंगामा मचा, जिसके बाद कंगना रनौत ने सफाई देते हुए ये कहा कि उनका बयान पूरी युवा पीढ़ी या जेनजी के लिए नहीं था। ये टिप्पणी केवल जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले कुछ विशेष लोगों के लिए थी जो खुद को कॉकरोच कहते हैं और गटर से निकलते हैं। इसके बाद अब सोशल मीडिया पर कंगना रनौत का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो किसी जगह पर पुलिस से घिरी हुई दिख रही हैं। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर दावा कर रहे हैं कि एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता ने कंगना रनौत पर चप्पल फेंकी है, उन पर दूसरी बार हमला हुआ है। एक इंस्टाग्राम यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि प्रोग्राम के दौरान कंगना रनौत के मुंह पर चप्पल फेंकी, पुलिस ने तुरंत संभाला। कंगना पर दूसरी बार अटैक, चप्पल फेंकने वाला भी बीजेपी का था। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल हाल के दिनों में बीजेपी सांसद कंगना रनौत काफी सुर्खियों में है अपने विवादित बयानों की वजह से। वो सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर है और खास तौर पर जेनजी को लेकर उनके विवादित टिप्पणियों की वजह से उन पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। हालांकि जब विवाद बढ़ने लगा तब कंगना रनौत ने सफाई देते हुए कहा कि उनका बयान पूरी युवा पीढ़ी की या फिर जेनजी के लिए नहीं था। ये टिप्पणी केवल जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले कुछ विशेष लोगों के लिए थी जो खुद को कॉकरोच कहते हैं और गटर से निकलते हैं। इन सब के बीच सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा और वीडियो किसी स्थल पर पुलिस से घिरी हुई कंगना रनौत को यहां पर दिखाया गया। इस वीडियो को शेयर करते हुए यूजर्स की कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कंगना रनौत पर चप्पल फेंकी, उन पर दूसरी बार हमला हुआ है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। इसमें इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। हमने इसकी पड़ताल शुरू की और दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान वीडियो में एक जगह पर जहां से कंगना एंट्री ले रही है वहां पर नजर आ रहे बोर्ड पर हमारा ध्यान गया, उसमें मराठी में कुछ लिखा हुआ नजर आया था। इससे यह इशारा मिलता है कि वायरल हो रहा वीडियो महाराष्ट्र का हो सकता है। साथ ही वीडियो में आ रही आवाजों को भी जब हमने गौर से सुना तो सामने आया कि मराठी भाषा है, लेकिन सर्च के दौरान ऐसी कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। क्योंकि वाकई अगर ऐसा हुआ होता तो फिर जाहिर सी बात है कि अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होती। सर्च के दौरान ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं मिली। इसके अलावा वीडियो में कहीं पर भी कंगना पर चप्पल फेंकते हुए किसी भी शख्स को देखा भी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर कंगना पर हमला हुआ होता तो वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी एक्शन में जरूर नजर आते। फैक्ट चेक टीम ने कंगना रनौत के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी खंगाला, लेकिन वहां पर भी ऐसी कोई पोस्ट हमें नहीं मिली। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही था कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की तहकीकात में जुटी। सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि हाल फिलहाल में अगर ऐसी कोई घटना हुई होती तो वो सुर्खियों में जरूर होती। इसके बाद हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक इंस्टाग्राम अकाउंट मिला। 18 अगस्त को इस अकाउंट से वायरल वीडियो शेयर किया गया था। जानकारी के अनुसार ये वीडियो मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर का है जहां कंगना गई थी। एक वेबसाइट पर 18 अगस्त को छपी एक रिपोर्ट में कंगना के मंदिर जाने की क्लिप भी मिली। इस रिपोर्ट के अनुसार कंगना 18 अगस्त को सिद्धि विनायक और मुंबा देवी के मंदिर पहुंची। खबर में हमें कहीं भी वायरल दावे जैसा कोई जिक्र नहीं मिला। कंगना के इंस्टाग्राम हैंडल से भी 18 अगस्त को कुछ तस्वीरों को पोस्ट करते हुए जानकारी दी गई थी कि वो मुंबई में सिद्ध विनायक और मुंबा देवी मंदिर गई। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वायरल वीडियो मुंबई के सिद्ध विनायक मंदिर का है जहां वो 18 अगस्त को गई थी। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे।
1: ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये कह रहे हैं कि ये ईरान की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है जिसे ईरान ने समंदर में उतार दिया है। लेकिन सच्चाई क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में।
2: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। अमेरिका ने ईरान पर भारी वित्तीय शिकंजा कसने और उसकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह अलग थलग करने की चेतावनी दी है, जिसके जवाब में ईरान ने होर्मुज में सख्ती बढ़ा दी है। दोनों देश झुकने को तैयार नहीं हैं। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक पनडुब्बी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पनडुब्बी पानी में धीरे धीरे उतर रही है। इस वीडियो के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि ये ईरान की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। इसी दावे के साथ सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पनडुब्बी लॉन्च की तस्वीरें धड़ल्ले से शेयर की जा रही हैं। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इसे लगातार शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच कुछ लोग वीडियो के जरिए ये कह रहे हैं कि ये ईरान की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है जिसे अब समंदर में उतार दिया गया है। अब अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले ऐसा सर्च किया। इस दौरान हमें जानकारी मिली कि ईरान के पास कोई भी परमाणु पनडुब्बी नहीं है। ईरान की नौसेना के पास केवल गदीर और फतेह श्रेणी की छोटी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं। ऐसे में हमें दावे की सच्चाई पर संदेह हुआ। हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही था कि अगर दावा सच है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। देखिए सच और झूठ क्या है।
2: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई भी विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। इसके बाद हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक इंस्टाग्राम पोस्ट मिली जिसमें हमें वायरल हो रहा वीडियो पोस्ट के जरिए ये पता चला कि ये जेएस राइगेई अटैक सबमरीन है जिसे जापान के मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के लिए बनाया गया है। सर्च के दौरान हमें एक यूट्यूब चैनल पर वायरल हो रहे क्लिप का लंबा वर्जन मिला। यहाँ पर इसे 17 अक्टूबर 2023 को शेयर किया गया था। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के मुताबिक इस सबमरीन को जापान की कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज ने जापानी मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के लिए $470 मिलियन में बनाया था। एक आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक इस पनडुब्बी को 6 मार्च 2025 को कोबे शिपयार्ड में आयोजित एक समारोह में आधिकारिक तौर पर JMSDF में शामिल किया गया। शामिल किए जाने के बाद इसे हिरोशिमा प्रांत के कुरे नेवल बेस पर सबमरीन फ्लोटिला 1 के सबमरीन डिवीजन 1 में तैनात किया गया। इसी तरह हमारी पड़ताल में हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। ये वीडियो अक्टूबर 2023 का है और इसमें जापान को JS राइगेई लॉन्च करते हुए दिखाया गया है जो जापान मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के लिए बनाई गई एक अटैक सबमरीन है। रिधीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़।
1: वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आइए आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
7: ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें भारत का एक जाबाज जवान बर्फीली वादियों में देश की रक्षा के साथ साथ अपने अटूट भक्ति का उदाहरण पेश करता नजर आ रहा है। इस नजारे को देखकर हर कोई जवान की तारीफ कर रहा है। वीडियो में चारों तरफ बर्फ की मोटी सफेद चादर बिछी है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं। ऐसे कड़ाके के मौसम में जहां आम लोगों के लिए खड़े रहना भी मुश्किल होता है, वहीं इस जवान ने बड़ी ही कुशलता और श्रद्धा से बर्फ को जोड़कर एक सुंदर और व्यवस्थित शिवलिंग का निर्माण किया। जवान ने बेहद बारीक नक्काशी के साथ बर्फ के शिवलिंग को अंतिम रूप दिया और पूरी श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर भगवान शिव का नमन और पूजन किया। यूजर्स इस वीडियो पर खूब प्यार जता रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब चर्चा में है। यहाँ एक बच्चे की मासूमियत और छुपकर खाने वाला अंदाज इतना क्यूट है कि इंटरनेट यूजर्स इसे बार बार देख रहे हैं। वायरल वीडियो में स्कूल की असेंबली में प्रार्थना चल रही है। सभी बच्चे आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं। तभी एक बच्चा मौका देखकर धीरे से अपनी चॉकलेट निकालता है और आंखें बंद कर खाने लगता है। मानो उसे लग रहा हो कि अगर उसने आंख बंद कर ली तो उसे कोई और देख नहीं पाएगा। वीडियो में बच्चे की मासूमियत देखने लायक है। वो बगैर किसी टेंशन के आराम से चॉकलेट खाता दिखता है, जबकि आसपास के बच्चे प्रार्थना में लगे हैं। वहीं बच्चा अपनी चॉकलेट खत्म कर उसका कचरा भी जेब में ही रख लेता है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद प्यारी बच्ची का वीडियो तेजी से वायरल है, जिसमें बच्ची अपने छोटे छोटे हाथों में गिटार थामे दिलकश अंदाज में नजर आ रही है। इस दौरान वो अपनी मधुर आवाज में इतना प्यारा गाना गा रही है कि उसने हर किसी का दिल जीत लिया। गिटार पकड़ने का उसका अंदाज हो, गाने की धुन पर हरकत करती उसकी नन्ही उंगलियां हो, हर किसी का ध्यान ये बच्ची अपनी तरफ खींचती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, उसके एक्सप्रेशन भी दिल जीत ले रहे हैं। भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी का हिस्सा भी है। यहाँ गली मोहल्ले से लेकर स्कूल के मैदान तक, जहाँ थोड़ी सी भी जगह मिल जाए, बच्चे और बड़े बल्ला बॉल लेकर पहुँच जाते हैं। कई बार तो क्रिकेट खेलने के लिए मैदान की भी जरूरत नहीं पड़ती। सड़क हो, छत हो या घर के बाहर की छोटी सी जगह, क्रिकेट का जुनून कहीं भी शुरू हो जाता है। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को ही देख लीजिए, जहां कुछ लड़कों ने तालाब के पास ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। पानी के बीच खड़े होकर लड़कों ने बॉलिंग से लेकर बैटिंग तक खूब धमाल मचाया। उनका खेल देखकर लोग भी वीडियो का मजा लेने लगे। हालांकि इस पूरे मुकाबले में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा आखिरी कैच ने, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। कमाई का असली मकसद सिर्फ घर चलाना या बिल भरना नहीं, बल्कि अपने परिवार के चेहरों पर मुस्कान लाना भी होता है। पश्चिम बंगाल के एक स्विगी डिलीवरी बॉय ने इस बात को साबित भी कर दिखाया।
8: दीदा से बात करो, तुम्हें क्या मन खुशी?
7: दिन रात मेहनत कर और थोड़े थोड़े पैसे जोड़ कर इस राइडर ने अपनी माँ और दादी के लिए नया टीवी खरीदा। जब उसने ये सरप्राइज अपने परिवार को दिया तो उस भावुक पल का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अक्सर अपने अनोखे और नए विचारों के लिए जाना जाता है। इस बार इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक बेहद मनोरंजक और अलग रास्ता चुना है। पलासिया चौराहे पर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों और सिग्नल जंप करने वालों को जागरूक करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने गोरिल्ला कॉस्ट्यूम पहनाकर एक शख्स को सड़क पर उतारा। ये गोरिल्ला गाड़ियों को जेब्रा क्रॉसिंग से पीछे धकेलता है, लोगों को सड़क पार कराता है और ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर ट्रैफिक संभालता है। वीडियो में जब एक कार चालक सिग्नल पर रुकने की बजाय आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो ये विशालकाय गोरिल्ला दौड़कर कार के सामने आ जाता है और हाथों से धक्का देकर कार को पीछे धकेलता है। गोरिल्ला का ये तरीका देखकर ड्राइवर भी मुस्कुराते हुए गाड़ी रोक लेता है। इस वीडियो में सिर्फ गाड़ियों को रोकना ही नहीं बल्कि गोरिल्ला का फ्रेंडली अंदाज भी दिखा। वो सड़क पार कर रहे राहगीरों का हाथ पकड़कर उन्हें सुरक्षित जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करवाता नजर आता है। साथ ही वो ऑन ड्यूटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर से हाथ मिलाता और उनके साथ तालमेल बिठाकर ट्रैफिक कंट्रोल करने में मदद करता भी दिखा। इंदौर पुलिस के इस फनी और क्रिएटिव अभियान को सोशल मीडिया पर खूब सराहना मिल रही है। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो तेजी से वायरल है, जिसे देख लोग हैरान भी हैं और बाबा की तारीफ भी कर रहे हैं।
9: 83, 83, 38, 42।
7: वीडियो में एक बुजुर्ग बाबा एक विदेशी टूरिस्ट से फराटेदार अंग्रेजी में बात करते दिख रहे हैं। बाबा जिस आत्मविश्वास के साथ अंग्रेजी बोलते हैं, उसे देख विदेशी टूरिस्ट भी मुस्कुराता हुआ दिख रहा है।
10: Everything here is free. What you're getting?
7: Airtime. बैंकॉक की सड़कों पर दौड़ती एक अनोखी टैक्सी इन दिनों इंटरनेट पर खूब धमाल मचा रही है। इस कैब की खासियत यह है कि इसमें कदम रखते ही आपको किसी सुपरमार्केट जैसा एहसास होता है। ड्राइवर ने यात्रियों की सुविधा के लिए कार को एक मिनी मार्ट का रूप दे दिया है, जहां जरूरत का हर सामान बिल्कुल फ्री मिलता है। थाईलैंड की मशहूर मेहमान नवाजी को दर्शाते इस खूबसूरत पहल की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। वीडियो में टैक्सी की पिछली और आगे की सीटों पर हर छोटी बड़ी जरूरत की चीजें करीने से सजा कर रखी हैं। सफर के दौरान यात्रियों को मोजे, टूथब्रश, शीशा, बेबी पाउडर और यहाँ तक कि बिल्लियों का खाना भी आसानी से मिल जाता है। प्यास या थकान मिटाने के लिए पानी की बॉटल्स और कॉफी भी यहाँ फ्री में उपलब्ध है। ये कोई एक दिन का पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। ये थाई ड्राइवर पिछले 10 सालों से लगातार अपनी टैक्सी में मुफ्त सामान की सेवा दे रहा है। खास बात यह है कि वो यात्रियों से सामान के बदले एक भी रुपया नहीं लेता। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो ने लोगों को खूब आकर्षित किया है। इसमें विदेशी धरती पर भारतीय संस्कृति की खूबसूरत झलक देखने को मिलती है। पारंपरिक अंदाज और लोक संगीत के इस अनोखे मेल ने इंटरनेट यूजर्स को हैरान करने के साथ साथ काफी खुश भी किया हुआ है। वीडियो में कुछ अमेरिकी महिलाएं पारंपरिक राजस्थानी लुक में दिख रही हैं। उन्होंने रंग बिरंगे लहंगा चोली पहने हैं, सिर पर चुनरी भी सजा रखी है। जैसे ही राजस्थानी लोकगीत बजता है, ये महिलाएं पूरे उत्साह के साथ डांस करना शुरू कर देती हैं। न्यूयॉर्क की व्यस्त सड़कों और आसपास मौजूद लोगों के बीच अचानक राजस्थानी लोक संगीत सुनाई देना अपने आप में काफी दिलचस्प नजारा है। इसके बाद जब महिलाओं ने गाने के साथ राजस्थानी डांस स्टेप्स किए, तो वहां से गुजर रहे लोगों का ध्यान भी उनकी तरफ खींच गया।

इस गजराज का पानी पीने का तरीका इतना अनोखा है कि आप अपनी हंसी और हैरानी रोक नहीं पाएंगे। गजराज का ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वीडियो में एक पेड़ के बगल में लगा नल खुला है और उससे पानी बह रहा है। आमतौर पर कोई भी जानवर ऐसे में सीधे मुंह लगाता, लेकिन ये हाथी बेहद चतुर निकला। उसने अपनी लंबी सूंड के निचले हिस्से को घुमाकर बिल्कुल एक कटोरी की तरह बना लिया। नल से गिरता पानी उसकी सूंड के उसी हिस्से में जमा होने लगता है और जैसे ही सूंड में काफी पानी भर जाता है वो उसे सीधे अपने मुंह में डालकर गटक लेता है। एक बार पानी पीने के बाद जब उसकी प्यास नहीं बुझती तो वो दोबारा अपनी सूंड नल के नीचे लगा देता है। उसकी ये मासूमियत और गजब की सूझबूझ देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: सावन मास में ठाकुर जी की भक्ति के रंग से पूरा ब्रज क्षेत्र सराबोर रहता है। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में इस पूरे मास में अलग अलग घटाओं का आयोजन होता है और उसी कड़ी में मंगलवार शाम को लहरिया घटा का दिव्य आयोजन हुआ। इस विशेष अवसर पर मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा।

0: रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर मंदिर, दिव्य सजावट, आकर्षक झूलों से झूलते ठाकुर जी और भाव विभोर श्रद्धालु। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर की यह छटा लहरिया घटा की है। द्वारकाधीश मंदिर में मंगलवार की शाम लहरिया घटा सजाई गई और भगवान द्वारकाधीश ने लहरिया घटा में भक्तों को दर्शन दिए। लहरिया घटा के लिए पूरे मंदिर परिसर को सतरंगी लहरिया कपड़ों से सजाया गया। अलग अलग तरह की रंग बिरंगी रोशनी और फूल पत्तियों से मंदिर को आकर्षक रूप दिया गया। इस भव्य सजावट के बीच लगाए गए 9 हिंडोले श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध करते रहे।
1: ये द्वारकाधीश मंदिर में 9 झूले हैं, जो है सोने के और चांदी के भी। तो ये देखकर और झांकी जो सजी है उसको देखकर बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है।
2: आज के दिन लहरिया घटा है अपने द्वारकाधीश के मंदिर में। 3 सोने चांदी के झूले हैं, 3 लकड़ी के झूले हैं और 3 फल फूलों के झूले हैं। मनोहर दर्शन है आज के, अद्भुत, जिसका वर्णन नहीं कर सकते।
3: एकदम आनंद आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है यहाँ पे। राधे राधे।
0: इस लहरिया घटा के आयोजन के लिए लाए गए फब्बारों से लेकर गायों की सीनरी, मोर की खूबसूरत आकृति, बंदरों के कटआउट हर किसी को आकर्षित कर रहे थे।
4: श्रावण मास समाप्त हो रहा है तो इसलिए जो लहरिया घटा है वो मंदिर प्रांगण में सजाई गई है। पूरे मंदिर को दिव्यता और भव्यता के साथ सजाया गया है। 9 झूले हैं आज और 9 झूला में ठाकुर जी अपने ग्वाल ग्वालों के साथ, अपने परिवार के साथ विराज कर झूला झूल रहे हैं। और जो स्वर्ण हिडोरा लगा हुआ है और रजत हिडोरा लगा हुआ है, तो सोने के हिडोले में भी ठाकुर जी झूल रहे हैं और उधर लकड़ी के हिडोले में भी ठाकुर जी झूल रहे हैं। तो ठाकुर जी का जो उत्सव है ना सावन का पूरा, वो बड़ा अद्भुत और अनोखा है, क्योंकि ठाकुर जी बाल रूप में यहाँ विराजते हैं। तो बाल रूप में बालक को मंदिर परिसर से बाहर नहीं ले जाया जाता, वो मंदिर में ही रखा जाता है। सावन में ब्रज में बड़े श्रद्धालु आते हैं और भगवान के दर्शन कर जो झूला उत्सव है उसको मनाते हैं।
0: पूरे सावन माह में मंदिर में 9 तरह की घटाएं सजाई जाती है। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में जिस दिन सावन मास प्रारंभ होता है उस दिन ठाकुर जी को स्वर्ण और रजत हिंडोले में झुलाया जाता है। झूला झुलाने की ये परंपरा पूरे ब्रजमंडल में है। द्वारकाधीश मंदिर में लहरिया घटा की छटा देखने हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर में विराजमान ठाकुर जी बाल स्वरूप में है, इसीलिए उन्हें बाहर नहीं ले जाया जाता, लेकिन उन्हें बाहर के मौसम की अनुभूति कराने के लिए सावन मास में काली घटा, गुलाबी घटा, लहरिया घटा, सफेद घटा जैसी 9 घटाओं का आयोजन होता है। इस परंपरा के तहत अलग अलग स्वरूपों और सजावट के माध्यम से ठाकुर जी के दर्शन कराए जाते हैं।
5: बाहर के मौसम की अनुभूति कराने के लिए घटाओं के आयोजन होते हैं, क्योंकि आज बाहर का मौसम गुलाबी है तो गुलाबी घटा का आयोजन है। आज बाहर का मौसम सफ़ेद हो रहा है तो वो सबसे लास्ट घटा होती है, सफ़ेद वाली घटा। काली घटा बीच में होती है, बड़ी फेमस घटा होती है। तो इस प्रकार से लगभग 9 घटाओं का आयोजन ठाकुर मंदिर द्वारकाधीश में होता है। और श्रावण मास जब तक रहता है तब तक ठाकुर जी हिडोले में प्रतिदिन 5-10 से 5-40 झूलते हैं। घटाओं का जो टाइमिंग है वो सायंकाल 7 बजे से 8 बजे तक रहता है, और एक दिन छोड़ के, क्योंकि तिथि घड़ी पल और नक्षत्र के हिसाब से सभी घटाओं के आयोजन होते हैं। पूर्णमासी जैसे 28 को है तो 27 को सफ़ेद घटा का आयोजन होगा, इससे यह माना जाएगा बाहर का मौसम बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है और श्रावण मास समाप्त हो गया।
0: लहरिया घटा के अनुरूप नीले पीले रंग की लहरिया छटा से की गई दिव्य सजावट के बीच ठाकुर जी को झूला झूलाते देखकर श्रद्धालु भक्ति के रंग में पूरी तरह डूब गए। एक सुर में भक्त गोविंद गोपाल की जय जय करने के अलावा अपने अपने अंदाज में ठाकुर जी के प्रति अपने भक्ति भाव को प्रदर्शित करते दिखे।
6: तेरी कृपा को है खेल अनुपम, बाकी पार के पाई भी को कौन सोचारो।
7: लहरिया घटा और 9 झूले, लाला झूलन पधारो झोंके आए बदला, लाला झूलन पधारो।
0: मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
9: और आपको समझाएंगे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद मिशन जिंदगी तेज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से की बातचीत। भारत की ओर से भेजा जा रहा है राहत सामान, उत्तर प्रदेश बिहार में प्रशासन अलर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने रच दिया नया कीर्तिमान। नई बसों के मामलों में देश में उत्तर प्रदेश नंबर वन। महिलाओं के लिए पैनिक बटन के हेल्पलाइन की भी कनेक्टिविटी। देशभर में रक्षाबंधन की तैयारियां तेज। वाराणसी में बनाई गई खास एआई राखी। रायपुर में सुरक्षा बल के जवानों को बांधी गई राखियां। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज। मुंबई के महाराजा नाम से मशहूर करीब 47 फीट के बप्पा का आगमन। नरसिंह रूप में विराजमान है गणपति। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज। अब मंदिर में मिलेगी निःशुल्क शीघ्र दर्शन की सुविधा। प्रशासन के फैसले से लोगों को मिली खुशी।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात रंग, राशि और राखी के संयोग की। राखी क्या है? एक डोर है, प्रेम और दोस्ती के धागों से बुनी हुई, और ये प्यारा सा त्योहार उसी रिश्ते का तो प्रतीक है। तभी तो रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई पर प्रेम से कोई एक धागा भी बांध देना काफी होता है। और जहां तक बात है गिफ्ट की, तो बहन के लिए भाई का प्यार और साथ ही सबसे बड़ा उपहार है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कुछ खास रंगों की राखी इस रिश्ते में स्नेह के रंगों को और गहरा कर सकती है। ज्योतिष विज्ञान के मुताबिक राखी के दिन राशि के मुताबिक रंगों की राखी भाई की कलाई पर बांध उनके जीवन में शुभता और सौभाग्य ला सकता है। तो वहीं अगर बहना के लिए उपहार उसकी राशि के अनुसार चुना जाए तो उसके जीवन में मंगल और सौभाग्य की बरसात हो सकती है। तो चलिए आइए ज्योतिषाचार्य से जान लेते हैं कि बहनें अलग अलग राशियों के आधार पर अपने भाइयों को कौन कौन सी राखी बांध सकती हैं, और भाई अपने बहन को ढेर सारे प्यार के साथ और कौन सा उपहार दे सकते हैं।
1: बात करते हैं कि राशि के अनुसार आप अपने भाई को कौन से रंग की राखी बांध सकते हैं और भाई अपनी बहनों को राशि के अनुसार क्या गिफ्ट दे सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें लाल या मैरून कलर की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन मेष राशि की है तो आप उन्हें लाल रंग के कपड़े गिफ्ट कर सकते हैं। आप उन्हें स्पोर्ट्स एक्सेसरीज गिफ्ट कर सकते हैं, रेड कलर का हैंडबैग, मैरून कलर का हैंडबैग या कोई फिटनेस रिलेटेड आइटम आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। बात करेंगे वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें पेस्टल शेड की राखी, सिल्वर कलर की या पिंक कलर की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन वृषभ राशि की है तो आप उन्हें पेस्टल शेड के कपड़े, परफ्यूम, इत्र या फिर कॉस्मेटिक आइटम्स आप अपनी बहन को गिफ्ट कर सकते हैं। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप अपने भाई को हरे रंग की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन मिथुन राशि की है तो आप उन्हें उनकी राशि के अनुसार ग्रीन एमरल्ड दे सकते हैं। आप उन्हें बुक्स गिफ्ट कर सकते हैं, आप उन्हें गैजेट्स गिफ्ट कर सकते हैं या फिर उन्हें ग्रीन कलर के कपड़े भी गिफ्ट कर सकते हैं।
0: यानी भाई बहन इन उपायों को अपनाकर रिश्तों में और मिठास खोल सकते हैं। बाकी की राशि वाले भाई बहनों के लिए क्या कुछ उपाय हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं वो अनोखी राखियां जिन्हें संसार की सबसे बड़ी राखी बताया जा रहा है। ये राखियां प्रेम और आस्था के धागों से बुनी गई हैं। श्रद्धालुओं ने अपने हाथों से इन्हें अपने आराध्य के लिए बनाया है और तैयार किया है।

0: हर साल जाते जाते सावन का महीना हमारे लिए प्रेम के उस पर्व की सौगात छोड़ जाता है जो भाई बहन के स्नेह और लगाव का सबसे बड़ा पर्व है। सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को आने वाला रक्षाबंधन पर्व सनातन धर्म का बेहद खास त्योहार है। वो त्योहार जहां बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधकर उसके आयुष्मान होने और उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं, तो वहीं भाई भी अपनी लाडली बहन की रक्षा और हर हाल में उसका साथ निभाने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर समर्पण और सुभाशीष का कुछ ऐसा ही आदान प्रदान भक्त अपने आराध्य के साथ भी किया करते हैं। तभी तो राखी की तैयारी का असर देश भर के मंदिरों में भी नजर आने लगा है। जगन्नाथपुरी में हर साल की तरह भगवान जगन्नाथ के लिए बेहद खास राखी तैयार की जा रही है। भक्तों का ये दावा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी राखी है जिसे भगवान जगन्नाथ को रक्षाबंधन के दिन अर्पित किया जाएगा। जगन्नाथ मंदिर के खास सेवायत पटारा बिसोई पीढ़ियों से भगवान के लिए राखी बनाने का काम करते आ रहे हैं। अब की बार भी जगन्नाथ प्रभु की ये खास राखी बनकर तैयार है।
1: ये जो राखी, ये दुनिया का सबसे बड़ा राखी है और ये जब महाप्रभु परिधान करेंगे तो दिल से बहुत खुशी मिलती है और ये सब सिर्फ भाग्यवान बहुत खुद को फील होता है। और ये मैं बहुत छोटे से दादाजी के साथ करता आ रहा हूँ। ये जो सेवा है, ये हमारा पीढ़ी पे पीढ़ी सेवा है।
0: जगन्नाथ धाम में हर साल ये परंपरा निभाई जाती है। अब की बार रक्षाबंधन के लिए रेशम के चार रंग वाले धागों को पिरोकर चार विशाल काय राखियां बनाई जा रही हैं। इसके साथ ही सुपारी के पत्तों की विशाल मालाएं भी तैयार हो रही हैं।
2: ये जो राखी जो हम जो बना रहे हैं, ये प्रस्तुत हो रहा है बासुंगा टसर पार्ट से। ये बासुंगा पार्ट को हम चार कलर में विभक्त करके लाल और हलूद और नीला सबुज चार कलर में बनाते हैं और इसका साथ में और भी चार सुपारी का माला बनाते हैं। ये एक सुपारी का माला में 54 सुपारी रख के इसके अंदर डाल के इसको फूल की तरह बनाते हैं।
0: श्रावण महीने की अमावस्या से ही राखियां बनाने का काम शुरू हो जाता है। पटारा बिसोई सेवायत 10 से 12 दिनों में इन विशाल राखियों को बनाने का काम पूरा करते हैं। आखिरकार राखी के दिन भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र को ये राखी और मालाएं अर्पित की जाती हैं।
2: ये चार गुआमल और चार राखी महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर के अंदर हम प्रभु जी को देंगे। वो इन्होंने जगन्नाथ जी महाप्रभु दो राखी परिधान करेंगे और बलभद्र महाप्रभु दो राखी परिधान करेंगे। इसका साथ में दो माला भी, सुपारी माला भी परिधान करेंगे।

0: रक्षाबंधन से पहले आस्था के रंगों में पगी कुछ ऐसी ही तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर से भी आई हैं। इंदौर में भक्तों ने खजराना गणेश भगवान के लिए दुनिया की सबसे बड़ी राखी बनाने का दावा किया है। रक्षाबंधन के अवसर पर इस बार भगवान खजराना गणेश को 40 इंच बाय 40 इंच की भव्य सनातन राखी अर्पित की जाएगी। पिछले कई सालों से इस मंदिर में खास राखी अर्पित करने की परंपरा रही है। अब की बार खजराना गणेश जी के लिए बनी विशेष राखी में सनातन संस्कृति, राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक संदेशों को समाहित किया गया है।
1: यह 40 बाय 40 इंच की राखी विश्व की सबसे बड़ी राखी है। हम लोग हर साल एक थीम बेस राखी बनाते हैं और वंदे मातरम को जो 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं उसको हमने दर्शाते हुए एक सनातन धर्म पर राखी बनाई है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमने कमल के अंदर विराजित जगन्नाथ जी, और जैसा कि सावन का महीना चल रहा है और बाबा महाकाल ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो बाबा महाकाल, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी सभी हमने इसमें वो किया है। खजराना गणेश जी को यह राखी सिर्फ चिंतामण गणेश जी, महाकालेश्वर, वीर बगीचे, हनुमान मंदिर ऐसे कई मंदिरों में अर्पित की जाएगी।
0: बताया जा रहा है कि इस राखी को 10 से 15 लोगों की टीम ने करीब 2.5 महीनों की मेहनत से तैयार किया है। इसे बनाने में कोलकाता, जयपुर, मुंबई और सूरत से मंगवाई गई विशेष सामग्री का उपयोग किया गया है। भारत की कई समृद्ध हैंडीक्राफ्ट कलाओं की झलक इस राखी पर नजर आ रही है।
1: 10 से 15 लोग मिलके हम ये राखी बनाते हैं और करीबन हमको 1 से 2 महीना लगता है इस राखी को कंप्लीट करने में। और इसमें आप देखें कि सूरत के मोती और जयपुर, कलकत्ता का बारीक काम किया है। पूरा हैंडवर्क की राखी है और हैंडमेड राखी है।
0: ये केवल एक राखी नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान, सांस्कृतिक एकता और धार्मिक चेतना का जीवंत प्रतीक है। जब राखी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ये राखी भगवान खजराना गणेश को अर्पित की जाएगी तो आस्था के भाव के साथ साथ ये राखी देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के दर्शन का माध्यम भी बनेगी। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो अभी हमने आपको बताया था कि मेष से मिथुन राशि वाले भाई बहन अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। अब ये जान लेते हैं कि ज्योतिष के आधार पर कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोग भाई बहन से संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठा सकते हैं।
3: अगर आपके भाई कर्क राशि के हैं तो कर्क राशि वाले भाइयों को आप सिल्वर या व्हाइट कलर की राखी बांध सकते हैं। वहीं भाई अपनी बहनों को जो कि कर्क राशि की हैं, उन्हें सिल्वर की कोई आइटम गिफ्ट कर सकते हैं। आप सिल्वर कलर के क्लोथ गिफ्ट कर सकते हैं, पर्ल आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, पर्ल की ज्वेलरी गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें कोई भी ऐसा लिक्विड आइटम जो कि उनकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो, उनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करे, ऐसा आप उन्हें कुछ गिफ्ट कर सकते हैं। बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें ऑरेंज या ब्राइट येलो कलर की राखी जरूर बांधे। और वहीं अगर आपकी बहन सिंह राशि की है तो आप उन्हें गोल्ड के आइटम आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें तांबे की कोई अच्छी सी मूर्ति गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें ऑरेंज या कॉपर शेड के कपड़े गिफ्ट कर सकते हैं जिससे कि उनकी जिंदगी में प्रगति आए। कन्या राशि की यदि हम बात करें तो कन्या राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें हरे या पेस्टल शेड या फिर अर्दी शेड की राखी आप उन्हें बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन कन्या राशि की है तो आप उनको कुछ प्रीमियम प्लानर या फिर डेस्क ऑर्गेनाइजर या फिर कुछ स्मार्ट वॉच या फिर ग्रीन कलर के कपड़े या ग्रीन कलर की ज्वेलरी जैसे कि एमरल्ड हो गई, ग्रीन एवेंचुरियन क्रिस्टल हो गया, ये आप अपनी बहनों को गिफ्ट कर सकते हैं।
2: चूंकि भाई बहन के पवित्र रिश्ते का ये पर्व बेहद नजदीक आ गया है, ऐसे में बाजार रक्षाबंधन के त्योहार के लिए पूरी तरह सज चुके हैं। बाजार में एक से बढ़कर एक राखियां बिक रही हैं। रंग बिरंगी राखियों के बीच में इस बार सोने चांदी से बनी राखियों की खूब डिमांड है। अलग अलग डिजाइन और स्टाइल वाली राखियां लोगों को खूब पसंद आ रही हैं। इनमें डायमंड राखी से लेकर हल्के काम वाली गोल्ड राखी का भी क्रेज दिखाई दे रहा है।
4: शुरुआत करेंगे इन प्रीमियम सिल्वर राखी की। और आप देख सकते हैं कि आपको जो है सामने बहुत सारे ऑप्शन जो है राखी के दिखने वाले। तो ये 925 स्टर्लिंग सिल्वर की राखियां हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और इस सीजन में जो है ये खास होने वाली है, वो इसलिए क्योंकि सिर्फ राखी के फेस्टिवल के बाद जो है आप एक धागे की तरह इसको उतार कर नहीं रख सकते, बल्कि आप बाद में भी जो है इसको कैरी कर सकते हैं, एक ब्रेसलेट के तौर पर जो है आप इसको पहन सकते हैं और पूरे साल जो है इसको आप बहन भाई की जो प्यार की निशानी है उसके साथ जो है इसको कैरी कर सकते। तो ऑप्शंस में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ किस तरीके से आपको सिल्वर के ऑप्शन जो है वो नजर आने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम बच्चों की राखी से शुरू करेंगे क्योंकि बच्चों के लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑप्शन जो है आपको दिखेंगे। शुरुआती मैं इन छोटी छोटी राखियों से करूंगी। आपको दिखेगा कि किस तरीके से बच्चों को कार्टून करेक्टर्स वाली राखियां पसंद होती है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि आपको स्पॉन्ज बॉब की राखी की बात करें या फिर एंग्री बर्ड की राखी की बात करें, आपको बच्चों के लिए हर एक ऑप्शन जो है नजर आने वाले हैं। आप यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको लड़कियों के लिए यूनिकॉर्न वाली राखियां जो है वो दिख जाएगी, आपको मिकी माउस वाली राखियां जो है वो दिख जाएगी, और सभी प्योर सिल्वर में आपको ये राखियां जो है दिखने वाली है। सिल्वर की अगर हम बात करें तो आपको ये वैरायटी दिखने वाली है। अच्छा, अगर इनकी कीमतों की बात करूं तो ये सभी जो जितनी भी धागे वाली राखियां जो आप देख रहे हैं सिल्वर के साथ, इनकी कीमत जो 1000 से सिर्फ 1500 के बीच में आपको नजर आ जाएगी। वही अगर आप कुछ इस स्टाइल की राखियों की बात करें, ये स्पेशली जो ऊपर की राखियां मैं आपको दिखा रही हूँ सिल्वर में, ये भाभियों के लिए राखी है। अगर आपको अपनी भाभी को पहनाना है तो आप इस तरीके का ट्रेडिशनल लुक के साथ आप इनको कुछ ऐसी राखियां जो है पहना सकते हैं कि राखी का त्यौहार भी मने और साथ ही साथ कुछ परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस तरीके का ट्रेडिशनल लुक वो जो है पहन सके। आपको कुछ इस सिल्वर में इस तरीके की राखियां भी जो है वो मार्केट में दिख जाएगी। और इनकी अगर रेट की बात करें तो ये कभी आपको 3 से 4 हज़ार के बीच में जो है पड़ेगी। और भाई बहन के लिए, जिस तरीके से कहते हैं कि कपल जो एक राखी होती है भाई भाभी की राखी, वो आपको ये राखियाँ मिल जाएगी कि भाई भाभी भी मेंशन है। तो सिल्वर की हम ऑप्शन दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर अच्छी खासी जो वेराइटी है वो दिखने वाली है, क्योंकि प्रीमियम राखियों की तरफ हर कोई रुख जो है लेता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जब बात सोने की हो तो सोने की चमक के आगे आपको हर कुछ फीका लगता है। तो सोने की आपको मैं वैरायटी दिखा रही हूँ, और उसके साथ ही डायमंड, प्रीमियम डायमंड जो है अमेरिकन डायमंड कट के साथ जो है वो राखियों के ऑप्शन भी आपको दिखने वाले हैं। हालांकि कस्टमाइज आप करवा सकते हैं, लेकिन ये कुछ राखियों के मैं ऑप्शन आपको दिखा रही हूँ जो कि आपको यहाँ पर नजर आने वाला है। और सोने की छोटी सी प्लेट आपको बीच में नजर आ जाएगी। आपको चाहे भगवान गणेश जी की बात करें या फिर ओम के डिजाइन की बात करें, एक, एक आपको यहाँ पे आपको माता रानी का डिजाइन जो है वो दिख जाएगा। तो और बारीक धागे के साथ, क्योंकि कोई धागे को बहुत ही पवित्र मानता है, तो धागे के साथ इन्होंने गोल्ड को जो है अटैच करने की पूरी तरीके से कोशिश की है। अगर उसके साथ ये भी आप देख सकते हैं कि आपको इसमें काला धागा नजर आएगा, क्योंकि लोग जो है काला धागा ज़रूर पहनाते ताकि नज़र से जो है वो बचा जा सके। तो गोल्ड की राखियों में कई तरह के डिज़ाइन जो है आपको नज़र आ जाएंगे। कुछ राखी आपको बेहद ही मिनिमल डिज़ाइन के साथ दिखेगी, तो कुछ में आपको इस तरीके का कट जो है वो नज़र आ जाएगा। और ये जितनी भी ये राखियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 22 कैरेट गोल्ड में जो है आपको नज़र आने वाली है। लेकिन जिनका बजट थोड़ा कम है लेकिन त्यौहार भी मनाना है, तो उनके लिए ये नीचे के ऑप्शंस आपको नज़र आ जाएंगे कि ये आपके 14 कैरेट गोल्ड से इनका आपको ये राखियां जो है वो उपलब्ध है। इसके अंदर आपको डायमंड कट जो है वो नज़र आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि 14 कैरेट गोल्ड की आपको चेन नज़र आ जाएगी, लेकिन अगर आप बीच में डिज़ाइंस की बात करेंगे तो आपको ये डायमंड में सारे ऑप्शंस जो है वो मिलने वाले हैं।
2: तो राखियों के इन ट्रेंड के बाद अब एक बार फिर से लेकर चलते हैं ज्योतिषाचार्य के पास और जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले भाई बहन इस त्यौहार को खास बनाने के लिए कौन कौन से रंग वाली राखी और सौगात तैयार कर सकते हैं।
3: अगर आपके भाई तुला राशि के हैं तो आप अपने भाइयों को पिंक कलर की या सिल्वर कलर की या फिर रेशम की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहनें तुला राशि की हैं तो तुला राशि वाली बहनों को आप सिल्क की साड़ी, सिल्क का सूट दे सकते हैं, कुछ कॉस्मेटिक आइटम दे सकते हैं, कुछ सिल्वर की ज्वेलरी या फिर आप डायमंड या अमेरिकन डायमंड की ज्वेलरी आप उन्हें दे सकते हैं, या फिर आप उन्हें रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल भी दे सकते हैं, जिससे आपकी बहनों की जिंदगी में खुशियां भर जाए। वहीं बात करते हैं वृश्चिक राशि की, अगर आपके भाई हैं तो आप अपने भाई को रेड कलर, ऑरेंज कलर या फिर मरून कलर की आप उन्हें राखी दे सकते हैं। और वहीं अगर आपकी बहन वृश्चिक राशि की है तो आप उन्हें रेड मैरून कलर की

0: कॉपर शेड का कोई ड्रेस मटेरियल भी लेके दे सकते हैं, आप उन्हें तांबे के बर्तन लेके दे सकते हैं, और साथ ही आप उन्हें रेड कोरल ज्वेलरी जो है उसकी भी ज्वेलरी आप उन्हें दे सकते हैं, या फिर रेड जैस्पर क्रिस्टल भी आप अपनी बहनों को गिफ्ट कर सकते हैं। वही बात करते हैं धनु राशि की, कि अगर आपके भाई धनु राशि के हैं तो आप उन्हें पीले रंग की राखी जरूर बांधे या फिर गोल्डन कलर की राखी बांधे। वहीं अगर आपकी बहन धनु राशि की है तो आप उन्हें येलो कलर के कपड़े या गिफ्ट आइटम्स, येलो मिठाई, येलो कलर का कुछ बैग या गोल्डन बैग, या फिर आप उन्हें गोल्ड की ज्वेलरी, या फिर आप उन्हें पंच धातु की कोई ज्वेलरी, या फिर आप उन्हें जो है येलो सफायर या येलो सिट्रीन क्रिस्टल आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं।
1: चलिए अब हम आपको राशि के हिसाब से परफेक्ट राखियां तो बता ही रहे हैं, साथ ही आपको ये भी दिखा रहे हैं कि आजकल ट्रेंडिंग राखियां कौन कौन सी हैं। दरअसल बदलते वक्त के साथ राखियां भी ट्रेंडी हो चुकी हैं। राखी को लेकर भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। मसलन आगरा में रक्षाबंधन के लिए पत्थरों से खास राखियां बनाई जा रही हैं। ये उसी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कारीगर इन राखियों को बनाने में दिन रात जुटे हैं। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन राखियों को तैयार करने में मेहनत भी काफी लग रही है। ये राखियां यूनिक तो हैं ही, आकर्षक भी हैं। रंग बिरंगी पत्थर की ये राखियां इतनी खूबसूरत हैं कि किसी का भी मन इन्हें खरीदने के लिए मचल उठेगा। इसी तरह अलग अलग स्टाइल की राखियां शहर शहर इन दिनों नजर आ रही हैं। शहर शहर राखी की दुकानें सजी हुई हैं, जहां पारंपरिक से लेकर मॉडर्न डिजाइन की तमाम राखियां उपलब्ध हैं। बच्चों और बड़ों सभी को ख्याल में रखकर अलग अलग राखियां डिजाइन की गई हैं। महाराष्ट्र का अकोला हो या राजस्थान का अलवर, राखी के लिए हमेशा से मशहूर रहे बाजार इन दिनों खरीदारों के साथ गुलजार हैं।

0: भाई बहन के पावन त्योहार रक्षाबंधन को लेकर देश भर के बाजार गुलजार हैं। यहाँ एक से बढ़कर एक राखी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के अकोला के बाजार भी रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर सजे हुए हैं। अपने भाइयों के लिए राखी पसंद करने दुकानों पर बहनों की भीड़ जुट रही है। यहाँ की दुकानों पर पारंपरिक राखियों से लेकर मॉडर्न डिजाइन वाली राखियाँ मौजूद हैं।
1: रक्षाबंधन के त्योहार के लिए जो है बाजारों में जो है दुकान यहाँ पर लग चुके हैं राखियों के। और ये जो राखी है ये जो है मोतियों की राखी है, कोई रुद्राक्ष वाली है, कोई माला वाली यहाँ पर राखी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये लुम्बी राखी इसे कहा जाता है। ये सुंदर राखियाँ जो है वो ये भैया भाभी की राखी इसे कहा जाता है। और इस तरीके के अलग अलग वेराइटी जो है, देखिए ये बैंगल के साथ ये राखी इस तरीके की दी है। और खासकर याद देखिए जो है एक कमल के फूल पर ये जो राखी है ये बहुत ही अच्छी इस वक्त की ट्रेंडिंग है।
0: भाई भाभी के लिए कपल राखी, तो बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली राखियाँ। इन सब के अलावा डायमंड लुक वाली राखी, रिंग राखी और ज्वेलरी डिजाइन की राखियाँ भी दुकानों में मिल रही हैं। कोई बहन अपने भाई के लिए राखी पसंद कर रही है तो किसी ने खरीद भी ली है।
2: जो अच्छे से अच्छी राखी मिलेंगी वो ले लेंगे।
3: मैंने अपने भाई के लिए बहुत हीरे जैसी राखी ली है, आप देख सकते हैं बहुत शानदार हीरा लगा हुआ है। मेरा भाई भी हीरे जैसा ही है, मुझे बहुत प्यार करता है, मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा और भाई का रिश्ता बहुत ही अनमोल है मेरे लिए।
0: अलग अलग डिजाइन के हिसाब से राखियों की कीमत भी अलग अलग है।
4: 5 रुपए से लेके तो 500 रुपए तक की अवेलेबल है। 500-400 रुपए वाला माल था वो सबसे पहले खत्म हो जाता है। हैवी रेंज की राखी के ट्रेड डिमांड सबसे ज्यादा थी। अब की बार स्टोन डायमंड की राखी, इसकी डिमांड हर साल रहती है, इस साल कुछ ज्यादा ही थी। और कार्टून की राखी की विशेष डिमांड है ये बार। लाइट के स्पिनर कार्टून की राखी में इस टाइप की राखी सबसे ज्यादा चल रही है।
0: अकोला से लेकर अलवर तक में राखियों की दुकानें सजी हुई हैं। राजस्थान के अलवर की राखियों की डिमांड विदेश तक में है। हजारों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कारोबार से जुड़े रहते हैं। यहाँ की राखियाँ देखने में सुंदर होने के साथ ही सस्ती भी मिलती है।
5: एक गोदाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर तरह तरह की राखियाँ हैं। मैं दिखाना चाहूंगा ये कार्टून कैरेक्टर की राखियाँ हैं। ये राखियों के साथ ही इरेजर का भी काम करती हैं। छोटे बच्चों को ये राखियाँ खास पसंद आ रही हैं, जिसमें अलग अलग तरह के डिजाइन, एस्ट्रोनॉट तरह के जो कार्टून कैरेक्टर होते हैं उन कैरेक्टर के

0: रूप में इनको तैयार किया गया है और इन राखियों को रक्षाबंधन के बाद बच्चे अपने बैग, स्कूल बैग में भी काम में ले सकते हैं। इरेजर का ये काम करेंगी। इसके अलावा तरह तरह की राखियां, कार्टून कैरेक्टर के रूप में लाइट वाली राखियां, म्यूजिक वाली राखियों की डिमांड सबसे ज्यादा है।
1: यहाँ के बाजार में 1 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की अलग अलग तरह की आकर्षक राखियां मिल रही हैं। इस बार खासकर बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर, लाइटिंग और म्यूजिक के साथ ही पतली डोरे वाली राखियों की डिमांड सबसे ज्यादा है।
2: हमारे पास सब तरह की वैरायटी है, फैंसी राखियां भी हैं, बच्चों के लिए एक से एक स्पेशल आइटम बनाए हुए हैं हमने। इस बार बच्चों के लाइटिंग में जैसे ये सब लाइटिंग वाली आइटम है, ये देखिए इस तरह की लाइटिंग वाली आइटम है, ये छोटे बच्चों की आइटम है सारी, ये सब म्यूजिकल लाइट बच्चों के साथ में लाइट वाली आइटम आएगी इस तरीके से। ये पर्स वाली आइटम है, जैसे बच्चों के बेल्ट मारने वाला होता है, इसके अंदर बच्चों के टॉयज वगैरह सब कुछ मौजूद है इसके अंदर। ये वाली सब म्यूजिकल लाइट के साथ है, ट्यूनिंग लाइटिंग के साथ आ रहा है अपना। इस तरह की आइटम बच्चों के छोटे करेक्टर वगैरह बहुत सारी आइटम है। मतलब
1: यहाँ कई बड़े राखी व्यापारी है जो देश विदेश में राखियाँ सप्लाई करते हैं।
3: इस साल हमने करीब 50,000 से ज्यादा डिजाइन बनाए हैं और सप्लाई ऑल ओवर इंडिया तो है ही, और अवार्ड में भी हो रही है, करीब 30 से 35 कंट्रीज में माल जा रहा है।
1: यहाँ रक्षाबंधन के पर्व को लेकर सजी दुकानों में बहन अपने भाइयों के लिए राखी खरीदने लगातार पहुँच रही हैं।
4: राखियों के इतने डिजाइन मिलते हैं शायद कहीं भी पॉसिबल नहीं है। ऑल ओवर, छोड़ो इंडिया छोड़ो एशिया तक, इनकी राखी फेमस है कि यहाँ की राखियाँ जो है ऑल इंडिया में फेमस है, इसीलिए हम हर साल यहाँ आते हैं राखी।
1: अलवर के शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में राखी बनाई जाती है, जिसके चलते यहाँ 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। अकोला से धनंजय सावले और अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: चलिए अब आखिर में जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि वाले भाई बहन इस राखी पर राशि के मुताबिक कौन कौन से रंगों को चुनकर अपने त्योहार में खुशी और शुभता के रंग भर सकते हैं।
6: शनि की दो राशियां मकर और कुंभ राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें नीले या बैंगनी रंग की राखी बांध सकते हैं या फिर फिरोजी रंग की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन मकर या कुंभ राशि की हैं तो आप उन्हें लेदर से रिलेटेड कोई भी आइटम गिफ्ट कर सकते हैं, कोई प्रीमियम बैग गिफ्ट कर सकते हैं या फिर उन्हें कुछ होम गैजेट्स गिफ्ट कर सकते हैं जो उनकी किचन में या उनके होम में एक्सेसरीज में काम आए। और साथ ही आप उन्हें ब्लू सफायर या ब्लू सफायर की ज्वेलरी भी गिफ्ट कर सकते हैं या फिर आप उन्हें नीले या बैंगनी रंग के कपड़े भी गिफ्ट कर सकते हैं। अंत में बात करेंगे मीन राशि की कि अगर आपके भाई मीन राशि के हैं तो आप उन्हें पीले या गोल्डन कलर की राखी जरूर बांधें, और अगर आपकी बहन मीन राशि की है तो आप उन्हें गोल्डन कलर के कपड़े, गोल्डन कलर की एक्सेसरीज गिफ्ट कर सकते हैं या फिर आप उन्हें कोई रिलीजियस बुक्स गिफ्ट कर सकते हैं या फिर कोई सुंदर सी भगवान की मूर्ति गिफ्ट कर सकते हैं। गोल्ड के आइटम भी आप अपनी बहन को गिफ्ट कर सकते हैं। आप सभी को राखी के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
5: तो चलिए रक्षाबंधन के त्योहार से जुड़ी हुई ऐसी ही कुछ और तस्वीरें भी लगातार जीएनटी पर आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल आज की इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
2: रक्षाबंधन पर देश के कई राज्यों में बहनों के लिए उपहार का ऐलान किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया के जरिए तीन बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। इसके मुताबिक पुलिस दीदी यानी अभयता ब्रिगेड के लिए 4,700 स्कूटर और मोटरसाइकिल का लोकार्पण और फ्लैग ऑफ किया जाएगा। इन वाहनों का इस्तेमाल स्कूल और कॉलेज जाने वाली छात्राओं की सुरक्षा और उनके संरक्षण के लिए किया जाएगा। छात्राओं को 10,000 रुपए की PhD फेलोशिप भी मिलेगी। करीब 1,000 छात्राओं को 4 साल तक की फेलोशिप दी जाएगी। कारोबार और स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना की भी शुरुआत की जाएगी। देखिए, इस योजना के तहत 50,000 से 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। और इन सबके अलावा रक्षाबंधन के अवसर पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से 27 और 28 अगस्त को महिलाओं और छात्राओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा भी मिलेगी। यानी रक्षाबंधन पर बिहार के अलावा कई दूसरे राज्यों में भी लड़कियों और महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा की घोषणा की गई है। तो देखिए, यूपी सरकार ने 27 अगस्त से 29 अगस्त तक लड़की और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा सुविधा देने का ऐलान किया है, जिसमें एक सह यात्री भी रह सकता है, यानी को पैसेंजर भी सवार हो सकता है बस में, कोई पैसे नहीं लगेंगे उसके। उत्तराखंड सरकार ने 28 और 29 अगस्त को रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में राज्य परिवहन की साधारण बसों में महिलाओं के लिए जो सफर है वो मुफ्त होगा। 27 अगस्त की दोपहर 12 बजे से 28 अगस्त की रात 12 बजे ये टाइम पीरियड है, इस तक बहनों के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है और महिलाओं के साथ 15 साल तक के बच्चों को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा। इसमें हरियाणा के साथ ही चंडीगढ़ और दिल्ली तक की यात्रा भी शामिल है। वहीं देखिए, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान सरकार ने 28 और 29 अगस्त को साधारण और एक्सप्रेस बसों में लड़की और महिलाओं के लिए राज्य की सीमा के भीतर मुफ्त सफर का ऐलान किया है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो